0: हो, अपनी दोस्त की भी तैयारी।
1: हम इसको कुछ सहारा नहीं दे रहे, बस इसको हम थोड़ा सा रास्ता दिखाते कि नहीं ऐसा पढ़ा।
2: मोटिवेट किए हैं बहुत ज्यादा।
3: इन बेटियों से आंख मिलाकर झारखंड सरकार क्या कह पाएगी कि अब एक भी भर्ती भ्रष्टाचार के अधीन नहीं होगी? लेकिन वो तो पुलिस की लाठियों को वाजिब ठहराने में जुटी है, जहाँ मुख्यमंत्री कहते हैं प्रशासन ने बहुत धैर्य सोमवार को दिखाया है।
4: प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है।
3: देखें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना धैर्य प्रशासन ने सोमवार शाम को विधानसभा के गेट के पास दिखाया। इतना धैर्य की लाठियों के बेरोजगारों के हाथ सिर पर चटकने की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन आंख खुले तो मुख्यमंत्री और पूरी सरकार देखें किस तरह बहुत दूर नहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रांची पुलिस के धैर्य वाले लाठीचार्ज का गवाह बने बेटे और बेटियां बैठे। आंख खोल कर देखे सरकार, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कंधा, किसी की कोहनी, किसी का चेहरा, किसी का सिर, लाठियों के निशान मौजूद है।
5: इन्हीं को तो सबसे ज्यादा लगा।
6: कहाँ कहाँ कहाँ लगा?
7: गर्दन में था, हाथ में था, अंदर।
8: सात साढ़े सात बजे तक लाठी चार्ज किया गया, बैरिकेड लगा कर मारा गया, बैरिकेड लगा कर मारा गया। जैसे कि एक मतलब एक जानवर को पीटा जाता है ना, उस तरह से हम लोग पे ट्रीट किया गया है, हम लोग को इस तरह से मारा गया है। तो बताइए,
0: बहन को पैर में भी लगा हुआ है
9: सर, बहुत गंदा मारा है सर, बहुत।
0: आपको भी
9: जी सर, देखिए ना सर,
10: बांस का डंटा था सर, बांस का डंटा, मोटा डंटा सर, बांस का डंटा से मारा है सर,
9: जबकि हम लोग पिस्तौल
10: नहीं थी।
3: लेकिन जो सरकार लाठीचार्ज को लाठीचार्ज ना माने उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? मिलिए सत्ता की अंधेरगर्दी के दूसरे किरदार, नाम है इरफान अंसारी, पावरफुल मंत्री, स्वास्थ्य विभाग झारखंड में संभालते हैं। लेकिन इनको लगता है कि रांची में पुलिस ने सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कहीं कुछ नहीं किया।
11: हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं। हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।
3: कोई कार्रवाई ना कहते हुए मंत्री जी की जुबान रत्ती भर लड़खड़ाई नहीं। जहाँ ना आंसू गैस का गोला इनको दिखा, न दिखते हैं सरकार के कटीले तार, न मार खाते बेरोजगार, न आंसू, न तड़प, न चीख, न पीठ पर लाठी के निशान।
11: हम लोगों ने मार खाया, हमारा सर पूटा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स में एडमिट है वो।
12: तो ये लाठी चार्ज हुआ था कि नहीं इरफान जी?
11: देखिए, हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं नहीं नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठी चार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में, बस।
3: सोचिए ये हाल है, जहां मुख्यमंत्री पुलिस की कार्रवाई को अभूतपूर्व धैर्य वाला बताते, स्वास्थ्य मंत्री मानते नहीं कि लाठीचार्ज हो, और महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद कहती है सरकार ने संयम बरता।
13: कल जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था उसमें कई बसों में भर भर के बंगाल से लोगों को भेजा गया, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें व्यवस्था देकर भेजा गया है। छात्रों के प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने में भाजपा का ही कहीं ना कहीं पीछे से वो रोल निभा रही है। भाजपा का जो ये चाल है पीछे से छात्रों को उकसाने का, उसकी वजह से कल जो गड़बड़ियां हुई, आपको पता होगा कि आठ आठ बैरिकेड तोड़े हैं, फिर भी सरकार ने, वहां की सरकार ने संयम बरता। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि छात्रों के साथ बहुत ही संवेदनशील तरीके से पेश आए, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
3: तो क्या बिना कार्रवाई के खून विक्रम कुमार जैसे छात्रों का बहा?
14: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग शब्द भी नहीं बोले हैं, और अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा नहीं कर रहे,
15: लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं,
14: ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
3: यही वजह है कि जब सरकार कहती है कि वो छात्रों की बहुत सी मांगों को मान चुकी, तो भी सोनी कुमारी जैसी छात्राओं को रत्ती भर भरोसा नहीं होता, वो रोने लगती है। क्योंकि जो सरकार यही ना माने कि लाठीचार्ज हुआ है, वो कैसे ये भरोसा दे देगी कि आगे परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी।
13: छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए, जबकि सरकार सीआईडी के बाद रिटायर्ड जज से जांच करवाने की बात कह रही है। इसके अलावा सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग बड़ी है, जिस पर सोरेन सरकार सहमत नहीं है।
2: बहुत मुश्किल है सर, हम लोग इतना उम्मीद से और इतना कंडीशन खराब होने के बावजूद भी इतना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं ना, फिर भी यहाँ रिजल्ट कोई सही तरीके से देखने को नहीं मिलता है, तो इससे बहुत तकलीफ होता है हम लोग को।
15: सीजीएल भी दिए थे दो तीन बार, इतना बार आंदोलन उसके लिए किया गया, उसको रद्द करने के लिए पेपर लीक के वजह से, लेकिन ये सरकार सुनी नहीं, पहले भी नहीं सुनी, और ये महाआंदोलन जो कल था उसमें हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया कि हम लोग बता नहीं सकते।
16: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया। और रद्द क्यों नहीं करिएगा जी, आपका एक अभय तिवारी का पूरा रिलेटिव बीएसओ पद पर है, क्या ये संयोग है? नहीं, ये प्रयोग है। आपने पैसा लेकर उन लोगों को नौकरी दिया, या फिर अगर पैसा आपने नहीं लिया दिया तो वैसे लोगों को क्यों टेंडर आप दिए जो अपने ही परिवार।
17: छात्रों का कहना है कि कुछ भी हो जाए यहाँ जमे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे।
18: जमशेदपुर जिला में एक ही सेंटर में एक ही लैंग्वेज पेपर, कोटा में सभी टॉप किए, एक से लेकर मेरे पास पांच तो टॉप किए हैं, रैंकिंग रैंक लाए हैं, किसका 98% किसका 96% किसका 97%। तो बोलना चाहते हैं ये तो जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो उतना कैसे मार्क्स आ सकता है, सारे के सारे सीट को बेच दिया गया। गरीब लड़का जो दौड़ में पास किया ईमानदारी से और 10 साल से तैयारी किया, वो जहाँ का तहाँ रह गया, जो एक रात पढ़ा वो टॉप करके नौकरी ले लिया गया।
19: हम यहाँ झारखंड में ही रहे थे, यहीं पले बड़े हैं, और जो यहाँ झारखंड के आंदोलन में भी हम लोग शामिल हुए थे और आंदोलन करके इस राज्य को अलग किए थे। उसके बाद यहाँ पास ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को राज की गद्दी मिली है और वो अपना राज चला रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने फाइनल एग्जाम दिया आपका सहायक आचार्य टीचर का, और उस पास होने के बाद चार एग्जाम लिया गया हम लोग से, चारों एग्जाम में हम सफलतापूर्वक पास कर गए। पास करने के बाद फिर हम लोग का रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट जारी में हम लोग पास कर गए। पास करने के बाद हम लोग का जेएससी ऑफिस में मेरी सर्टिफिकेट की सारी सर्टिफिकेट की जांच हुई, सारी जांच में हमने ओके पाया। उसके बाद फिर वो दूसरे जिला में हम लोग को भेजा गया, यहाँ पर सर्टिफिकेट मेरे पास है, दूसरे जिले का यहाँ पास लिखा हुआ है और ये हमारा रोल नंबर है। और दूसरे जिला में गए थे कोडरमा में, वहाँ भी हमारा सफलता।
20: ये कब हुआ?
19: ये अभी पिछला साल का बात है सर।
20: उसके बाद अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई?
19: नहीं, अभी ज्वाइनिंग अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला सर।
13: छात्रों के मुद्दे पर संसद में सदन से लेकर बाहर परिसर तक सियासी जबरदस्त जंग देखी गई। कांग्रेस और विपक्ष जहां दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृहमंत्री से सवाल कर रहे हैं, वहीं मंगलवार को बीजेपी सांसद भी परिसर में राहुल गांधी क्यों झारखंड में लाठीचार्ज और युवा के मुद्दे पर चुप हैं ऐसे बैनर्स लेकर प्रदर्शन करने के लिए निकले। दोनों ही तरफ से नारेबाजी होती रही, तस्वीरें देखिए।
21: सर हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर? झारखंड में आपकी बात हुई
22: थी? हमारे लोग क्या
21: सर?
22: वो इश्यू अलग है, सौ इश्यू होते हैं, सौ को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है, क्या सौ सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं?
21: सर अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन से?
23: आपको लगता है मैम, लगता है क्या राहुल जी डर रहा है?
24: शरम करो राहुल गांधी, शरम करो, शरम करो, शरम करो।
25: राहुल जी ने झारखंड
24: जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड क्यों नहीं गए? राहुल गांधी शरम करो, माफी मांगो।
26: माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
27: ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे, अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते, तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं ना उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का।
28: उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है, इसीलिए जब गृहमंत्री जी जवाब देने को तैयार है तब वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए, ना वो रांची जा रहे हैं ना सदन में सुन रहे हैं। इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा, उनकी स्थिति ये है जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है।
29: पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, अमित शाह जी पूरा लापता है सरकार से, पार्लियामेंट से उसमें आते हैं, उनके कमरे में बैठते हैं, बट उसका अंदर नहीं आते।
0: इतने दिन से हल्ला कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, अब क्या हुआ? आपके पूरे झारखंड में बच्चों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले, और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? 6-7 परीक्षाएं में जो नौकरियां बिकी हैं, जिसके प्रमाण आए हैं, उसकी सीबीआई जांच कराओ, बाकी कराओ। तो राहुल गांधी उस पर खामोश है, वहां लाठीचार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
1: पूछिए गृहमंत्री से, ये डर किस बात का है? नौजवानों के सामने आने से डरते हैं, नौजवानों के जो प्रतिनिधि हैं विपक्ष में उनके सामने आने से डरते हैं, सदन में आने से डरते हैं, इतने डरपोक कैसे हो गए आप? आप तो अपने आप को लौह पुरुष मानते थे, ऐसे लौह पुरुष?
4: अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं यहाँ पर, जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? तो इस तरह की जो ये इनकी करतूतें हैं, देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं।
5: ये आप मानिए इस बात को कि दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो, और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे, क्योंकि अब यहाँ आरटीआई फाइल हुई है, वहां पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पायलट्स गन से इंजरी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पायलट्स गन्स नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी।
0: राहुल गांधी का चेहरा अब दोगला चेहरा हो गया। सरकार कई दिनों से कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, लेकिन इन्हें चर्चा नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए।
6: कल भी ये बात हुई थी कि ठीक है, सोल्यूशन निकल सकता है अगर जो है सरकार जो है जवाब दे, जो छात्रों के आंदोलन पे पायलट गोली क्यों चली। और दूसरा जो विषय था वो था कि इसके साथ साथ जो अयोध्या का चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी का मामला, उस पर भी बयान दे। खड़गे जी बार बार खड़े होते हैं, जैसे वो राम मंदिर बोलते हैं वैसे हाउस जॉन हाउस स्थगित कर देते, इतना डर है कि पूछो मत।
7: मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब जब कोई फ्लाईओवर, हाईवे, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं तो तीन बात पर जोर दिया जाता है। पहली, उनकी सरकार ने कितना पैसा लगाकर जनता को कितनी बड़ी सौगात दी है। दूसरी बात पर जोर दिया जाता है कि विकास के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है और गंभीर है, संजीदा है। तीसरी बात, ये सब पहले की सरकार में नहीं होता था। यही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है, जहां एमपी नगर में करीब 121 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनता है। 1.5 साल भी नहीं हुए और 121 करोड़ के विकास की चमक वाले फ्लाईओवर पर गड्ढों का मुहासा निकल आया है।
8: 23 जनवरी 2025 मंच पर लिखी तारीख नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा, हाथ से रिमोट दबाया, एनिमेटेड पर्दा हटा। 1.5 साल पहले कुछ इस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर का लोकार्पण किया, लेकिन महज 18 महीने पहले जनता का 121 करोड़ रुपए लगाकर जनता के लिए जो फ्लाईओवर बना, जनता को जिसकी सौगात दी गई, जनता के पैसे से बने, जनता के उसी फ्लाईओवर पर विकास के दावे गड्ढों में बदलते दिखने लगे हैं। इसीलिए रवीश पाल सिंह आज तक संवाददाता भोपाल से इस सच से आपको खबरदार कर रहे हैं।
9: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरकारी काम में किस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, उसकी एक और तस्वीर देखने को मिल रही है। करीब 1.5 साल पहले ही बनकर तैयार हुए भोपाल के सबसे बड़े फ्लाईओवर में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। हम इस वक्त जीजी फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, करीब 3.25 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर है, लेकिन 1.5 साल के भीतर ही इस फ्लाईओवर की हालत देख लीजिए। 121 करोड़ रुपए की लागत और इस फ्लाईओवर को बनने में लगा था करीब करीब 4 साल का समय, लेकिन इसके बावजूद यहाँ फ्लाईओवर पर बनी हुई सड़क मानसून की पहली तेज बारिश ही नहीं झेल पाई 1.5 साल के भीतर ही, और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इसका अंदाजा लगाइए आपकी, खासतौर से यहाँ से जब दोपहिया वाहन कोई इस गड्ढे के ऊपर से गुजर रहा है तो उसके सामने यहाँ पे दुर्घटना होने की एक बड़ी वजह ये बड़े बड़े गड्ढे भी हैं।
8: 3 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर जहाँ 121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहाँ ये हाल कैसे हो गया? क्या ये चूक है, लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार, जहाँ बारिश को जिम्मेदार ठहरा कर बचा जाता है? और कहानी सिर्फ फ्लाईओवर की नहीं, फ्लाईओवर के नीचे एमपी नगर की सड़क का हाल भी देखिए। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं। हिचकोले खाती गाड़ियां, गड्ढों से बचने के लिए कलाबाजी करते ड्राइवर और हादसे का डर।
9: भोपाल के फ्लाईओवर हो या फिर फ्लाईओवर के नीचे की सड़क हो, दोनों ही जगहों पर इस बारिश में गड्ढे ही गड्ढे बन रहे हैं। हम भोपाल के एमपी नगर जोन 2 में मौजूद हैं और ये आप देखिए, ये सड़क का गड्ढा देखिए आप और अंदाजा लगाइए, ये पूरी की पूरी सड़क जो है इस वक्त एक बड़ा हिस्सा जो है सड़क का वो गड्ढों में तब्दील हो चुका है। मेट्रो जब लाइन यहाँ बनी थी उसके बाद इस सड़क को दुरुस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद पहली ही बारिश में ये सड़क एक बार फिर से गड्ढों में बदल गई है। आलम यह है कि यहाँ से रोजाना हजारों गाड़ियां जब गुजरती हैं तो इन्हीं गड्ढों से हिचकोले खाते हुए इन गाड़ियों को गुजरना होता है। दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो, दोनों इन्हीं गड्ढों से होकर निकलते हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा हिस्सा जो है तकरीबन 400 मीटर का हिस्सा ऐसे ही है सड़क का, जो पूरी तरीके से गड्ढों में बदल गया है।
2: काफी टाइम हो गया सर, गाड़ी गड्ढों में गिरती है, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं सर।
9: अच्छा,
2: काफी दिक्कत आती है गाड़ी से।
3: जब से मेट्रो का काम हुआ है अपना, जब से ये स्थिति है यहाँ की, कई बार अपने ये बैटरी वाले ऑटो उनमें बैलेंसिंग नहीं रहता, पलटते हैं, कई बार मेरी गाड़ी के ऊपर पलटते पलटते बचे, दो बार मैं बचा हूँ उनसे,
9: इन्हीं गड्ढों की वजह से।
3: हाँ, इन्हीं गड्ढों की वजह से।
8: सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सड़क टूट क्यों गई, गड्ढे क्यों हो गए, सवाल है कि नई सड़क इतनी जल्दी कैसे टूटने लगी है। अगर सड़क निर्माण की गुणवत्ता सही थी तो 1.5 साल में फ्लाईओवर पर गड्ढे क्यों हो गए, और अगर जिम्मेदारों को इसकी जानकारी है तो फिर मरम्मत के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं। क्या सरकारें मानती हैं कि जनता का क्या है, वो तो गड्ढों पर भी चल लेंगे और चू तक नहीं करेंगे। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
7: महाराष्ट्र में स्कूल की बच्चियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे प्रशासन को भी एक्शन लेना पड़ा। रायगढ़ के कर्जत में रोड की हालत काफी समय से खराब थी, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और बारिश में इसमें पानी भर जाने की वजह से स्कूली बच्चों को बड़ी ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। लेकिन इस समस्या को सिर्फ देखने के बजाय कुछ ऐसा किया गया कि अब सब उनकी तारीफ कर रहे हैं और बहुत ही जल्द इस सड़क की मरम्मत करवा दी जाएगी।
10: स्कूल की इस छात्रा के इस रिपोर्टिंग को जिसने भी देखा बस देखता रह गया। हाथ में माइक के तौर पर छाता लिए ये है नेहा घारे, जिनका इंटरव्यू ले रही हैं उस बच्ची का नाम है ज्योत्सना मुकाने और कैमरे से वीडियो बनाने वाली बच्ची का नाम है मानसी पवार। देखने में ये तस्वीरें सरल हैं, लेकिन इसके पीछे का मैसेज बहुत बड़ा है।
11: खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये।
12: तर आजची न्यूज इथे संपते, रिपोर्टर नेहा घारे सोबत कॅमेरामन मानसी पवार, धन्यवाद।
10: तस्वीरें रायगढ़ के कर्जत तालुका की है। ये बच्चियां इसी सड़क से गुजरते हुए स्कूल जाती हैं। मजाक मजाक में इन बच्चियों ने सिस्टम की पोल खोल के रख दी।
14: महाराष्ट्र के कर्जत तालुका में कुंदीवाड़े एक सामान्य गांव है। वो सामान्य गांव में कुछ स्कूल की जाने वाली बच्चियों ने एक रील बनाई। वो रील महाराष्ट्र में और अब देश भर में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो रील क्या थी, तो ये जो रास्ता है कई लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए, ये बच्चियां भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करती हैं। रायगढ़ एक ऐसा तालुका है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कई बहुत ज्यादा बारिश होती है, कर्जत में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, और जब ये लोग स्कूल जाते हैं, सड़क पर चलकर स्कूल जाते हैं, तब आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो इनके यूनिफॉर्म पर जो है कीचड़ उछालती है, उसके बाद इनको कभी कभी यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति का ध्यान रखते हुए इन लड़कियों ने सोचा कि जो आप कह सकते हैं कुछ तरह के एक्सपीरियंसेस जो है स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो उसी तरह का एक न्यूज जो रील है वो इन बच्चियों ने बनाया। और इस वक्त हमारे साथ नेहा घारे हैं जो क्वेश्चन पूछ रही थी उस रील में, जो रील वायरल हुई है, ज्योत्सना मुकने हैं जो जवाब दे रही थी, और पवार, आपका नाम मानसी पवार है, जो कि मोबाइल पर अपने एक फ्रेंड के मोबाइल पर ये वीडियो जो है शूट कर रही थी। ये थोड़ा अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को कि आप लोगों ने जो 40 सेकंड की सिर्फ रील बनाई उसके जरिए आपने क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी।
13: हमारे रास्ते ठीक होने चाहिए। हमें स्कूल में जाने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए इन रास्तों का। यही
14: ये आपको लगता है मैसेज पहुंचा है पूरे महाराष्ट्र भर में?
13: हाँ पहुंचा है ना, सबने रील हमारी बहुत वायरल हुई थी, सबने देखी और बहुत सारे न्यूज चैनल भी आए थे हमारे पास, सबने हमारा इंटरव्यू लिया और हमने बताया कि कितने गड्ढे हैं हमारे रास्ते में। तो हमारी रील वायरल हुई तो दूसरे ही दिन ये देखो खड़ी डाल दी उन्होंने।
14: तो आप लोगों के रील वायरल होने के बाद ये सरकार ने कल ये डाली है, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं। हाँ। तो रास्ते और खराब थे,
13: रास्ते पे वो खड्डे है, तो आपको जो वीडियो वायरल देखा होगा आपने, तो तभी की वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति आप देख सकते हो कि सरकार ने हमारी सुनी।
10: इनके पिता कहते हैं कि बच्चियों पर गर्व है।
15: लड़की का वो रील वायरल हो गया, मुझे गर्व है कि मेरे लड़की ने बिंदा से बात किया और ये होना चाहिए था। महाराष्ट्र में अभी चल बिचल सरकार है, कोई किसी का सुनता नहीं है और इसका मजा सरकारी गवर्नमेंट अधिकारी ले रहा है। ये सरकारी अधिकारी जैसा अपना 10 बजे ऑफिस आना, शाम को 5 बजे निकल जाना, उतना ही काम करते हैं, बाकी कुछ काम करता नहीं। समझो ये MSRDC का रोड है, तो वो रोड का ऑफिसर ये रोड के यहाँ आना जाना चाहिए, कहाँ खराबी है कहाँ ये देखना चाहिए, कुछ करते नहीं है। आपने ये जो सब्जेक्ट है या आपने दिल्ली तक पहुंचाना चाहिए, ये मेरी मांग है।
10: इन बच्चियों का ये वीडियो वायरल हुआ तो CJP के अभिजीत दीपके ने इनकी तारीफ की, बोले ये जेन अल्फा हैं जो बर्बाद सिस्टम के सबूत दिखा रहे हैं।
16: कर्ज बंदी वगैरे रस्त्याचे जे काय आता खड्डे पडलेले आहेत, आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे की आज या वर्षी राज्यामध्ये कर्जत तालुक्यामध्ये पावसाचं प्रमाण हे जास्त प्रमाणात असल्यामुळे बऱ्याचशा ठिकाणी रस्त्यांना खड्डे पडलेले आहेत, ते आम्ही नाकारत त्या ठिकाणी नाही आहे, परंतु त्या रस्त्यांचं खड्ड्यांचं काम तात्काळ आजही जर आपण जाऊन पाहिलं तर ते काम सुरू केलेलं आहे।
10: इन बच्चियों ने मजाक में ये वीडियो बनाया था, मगर इनका संदेश काफी गहरा और बड़ा था। नीति नियंताओं की नजर जहां नहीं पहुंच सकी, वहां 40 सेकंड का ये वीडियो बनाकर बच्चियों ने पूरे देश तक अपनी बात पहुंचाई। उम्मीद कीजिए कि इन बच्चियों का मकसद पूरा हो जाए। मुस्तफा शेख, गर्जन आज तक।
7: इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

लेकर तकरार सदन में पेश किए जाने को लेकर सस्पेंस, आज फैसला संभव। कांग्रेस बोली बिल वापस ले सरकार, जेपीसी को भेजने पर भी विचार। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जसवंत वर्मा को लेकर लोकसभा में पेश की जाएगी जांच रिपोर्ट। सरकारी आवास से मिले जले नोट मामले में 3 सदस्यीय कमेटी ने की जांच। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द होने तक छात्र जारी रखेंगे आंदोलन। 10 अगस्त के एक्शन के खिलाफ बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। सोरेन बोले बीजेपी का काम झूठ, फरेब और साजिश। हिमाचल में पेट्रोल के बढ़े दाम, 60 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। अनाथ और विधवा से इसके रूप में बढ़ी कीमतें। हाई स्पीड डीजल की महंगाई, रात 12 बजे से नई दरें लागू।

0: की शुरुआत करते हैं मुंबई की खबर के साथ। मुंबई के विलेपार्ले वेस्ट से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां एक बहुमंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर देर रात भीषण आग लग गई। आग और धुएं के बीच बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई है। दमकल की करीब 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां शुरू किया गया। इस दौरान छत पर फंसे 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं आग की चपेट में आए 6 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 अन्य घायल बताए जा रहे हैं, उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। करीब 3 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी है इस आग पर काबू पाने के लिए। फिलहाल आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई और मामले की जांच चल रही है। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है, लेकिन किन कारणों की वजह से वहां पर आग लगी अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है। इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 11वीं मंजिल जिस पर यह भीषण आग लगी, छत पर लगभग 15 लोग फंस गए थे जिनका रेस्क्यू किया गया, लेकिन 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वो उनको बचाया नहीं जा सका। अभी किन कारणों से ये आग लगी है इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। तो दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने इस मोर्चे को संभाला और 15 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है 11वीं मंजिल पे। ये तस्वीर आप देखिए, कितनी भयंकर ये आग है। आग की लपटें धू धू कर कर उठ रही हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, छत पर 15 लोग फंस गए और 11वीं मंजिल पर यह आग लगी, जिसके बाद रेस्क्यू के लिए 20 गाड़ियां वहां पर पहुंची, जिन्होंने कम से कम 11 लोगों को वहां से बचा लिया है। और लेकिन 2 लोगों की अभी मौत की खबर सामने आई है। क्या वो कारण थे, किस वजह से, क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था या कोई और वजह थी, अभी इस बात इसके बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। जांच पड़ताल की जा रही है कि किन कारणों की वजह से वहां पर ये भीषण आग लगी। ये तस्वीर आप देखिए, 11वीं मंजिल का ये पूरा हादसा और भयंकर आग की तस्वीर यहां पर सामने आई है। आग की लपटें काफी तेजी से उठती हुई नजर आ रही है, काले धुएं का गुबार दिख रहा है। ऐसे में 15 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है, लेकिन 2 लोगों को बचाया नहीं जा सका, उनकी मौके पर मौत हो गई है। कई घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 घंटे की लगभग मशक्कत करनी पड़ी है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में।
1: मैं मेरे बेटे के साथ डिनर करते करते हम लोग थोड़ा बाहर आए थे एंड मेरे बेटे ने बोला लुक अपस्टेयर्स कुछ हुआ है, स्मोक आ रहा था। और मेरा बेटा मुझे दिखा रहा है कि भाई मम्मा स्मोक आ रहा है, एंड आई आल्सो केम आउट कि भाई हुआ क्या। और जब तक हम रियलाइज करें कि भाई फायर है, तब तक वो पूरी फ्लेम्स बाहर आ चुकी थी। सो आई थिंक द फर्स्ट फोटोग्राफ आई टुक वाज 8:57। सो यस, तब तक तो आई थिंक मे बी 5-10 मिनट पहले वो शुरू हुआ होगा। और जब हमने रियलाइज किया तब लोग ऐसे, उनकी बिल्डिंग के लोग नीचे से, बिकॉज इट वाज टॉप फ्लोर, तो उनकी नीचे के फ्लोर के लोग ऐसे बाहर आके देख रहे थे, क्योंकि उनको पता नहीं लग रहा था कि शोर किस चीज का हो रहा है। एंड वो अंदर आग लगी थी तो वो कांच वाँच सब ऐसे टूटने लग गए थे और शोर बहुत होने लग गया था। तब तक थोड़ा थोड़ा आई थिंक उनकी पूरी बिल्डिंग को पता ला होते होते काफी टाइम लग गया। बट हम लोग सामने से चिल्लाते रहे कि भाई निकलो, क्योंकि आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है। जो ये बिल्डिंग में नीचे थे उनको पता नहीं लगा था कि ऊपर कितनी, मतलब किस लेवल तक हो चुकी है। हम लोग सामने थे, हम लोगों को डर लग रहा था, बिकॉज आई एम जस्ट अक्रॉस, आई एम लाइक द फ्लेम्स आर कमिंग, यू नो, कुछ भी उड़ के इस तरफ आए तो यस वी वर स्केयर्ड, बट देन नीचे वाले धीरे धीरे आई थिंक दे वर कमिंग डाउन।
2: आज शाम करीब 21:56 को इधर आग लगी थी और ये हमारा L2 टाइप का फायर था। 11वें माले पे 2 फ्लोर थे, वो 2 फ्लोर पे पूरा अंदर लगा था। उसमें एक अंदर 3 व्यक्ति थे, वो सफोकेट हो गए धुआं की वजह से। इनहेल होने के बाद वो उनको हमने निकाल के नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती किया था। उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 इंजर्ड है, उनको ट्रीटमेंट के लिए उधर भर्ती करा दिया गया है।
0: तो देखिए, कर आग की तस्वीरें, और जैसा कि हमने सुना कि काफी तेजी से यह आग लगी, बस लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। 11वीं मंजिल पर यह पूरा हादसा हुआ है, काले धुएं का गुबार उठा, आग की लपटें धू धू कर कर उठ रही हैं। जिस बीच जब दमकल की गाड़ियां पहुंची, 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 15 लोगों को वहां से बचाया गया, लेकिन 2 लोगों की वहीं पर मौत हो गई है। अभी फिलहाल कई लोगों का इलाज चल रहा है, घायल बताए जा रहे हैं।
3: मंगलवार देर रात हम मुंबई के विले पार्ले पश्चिम स्थित शांता भुवन नामक एक हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में जो जानकारी मिल पा रही है उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस बिल्डिंग के बाहर, तस्वीर में देख सकते हैं ये वही शांता भुवन नामक जो है हाई राइज बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के जो है 11th फ्लोर पर जो है रात में जो है देर रात आग लगी थी, जिसके बाद जो अफरा तफरी का माहौल हो गया था उसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर आई, मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर आई और जो ऊपर फंसे हुए लगभग 15 से अधिक लोग थे उन सभी को निकाला गया फायर ब्रिगेड के थ्रू। उसके बाद जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके अंदर से जो है 4 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया और सभी लोगों को जो नजदीक के नानावटी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन इस घटना में जो अंदर में झुलस गए थे एक करीब 23 साल की युवती है और एक छोटा बच्चा है, उसकी इस हादसे में मौत हो गई है, जबकि 2 और लोग हैं उनकी स्थिति भी गंभीर है। आग की तीव्रता इतनी थी कि फायर ब्रिगेड की यहाँ पर करीब 15 से 20 गाड़ी यहाँ पर आई और आग को जो है फिलहाल काबू पा लिया गया है।
0: तो वहीं झारखंड में भर्ती धांधलियों के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्रों के आंदोलन का आज 19वां दिन है और रांची से दिल्ली तक सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन हमारे देश में छात्रों के मुद्दे पर सियासत के काफी ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है और ऐसे में चुप्पी भी साधी जाती है, वहीं इस बार भी यही हो रहा है। झारखंड में छात्रों की अहम मांग अनसुनी करने के बाद मानो अब सोरेन सरकार आंख भी बंद कर रखी है, जिसे छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं दिखता, जिसे लगता है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल बढ़िया हो रहा है।
4: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री आंदोलन करते अपने राज्य के युवाओं को खारिज कर देने वाली राजनीतिक फैशन के शिकार है। जो सदन में खड़े होकर भर्तियों में धांधली के खिलाफ 18 दिन से प्रदर्शन करते और 17वें दिन पुलिस की लाठी आंसू गैस का गोला खाए छात्रों को सियासी मोहरा बताने में जुट चुके हैं।
5: अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं, जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं।
4: इसीलिए तो रो पड़ती हैं ये बेटियां।
6: बहुत ऐसा बात रतन पर हम बोल नहीं पाते, किस तरकत में हम तैयारी कर रहे हैं। कल भी हम गए थे आंदोलन में, हर बार एग्जाम निकलता है इस तरीके से होता है कि 1-2 नंबर के लिए नहीं होता है। आप ही लोग सोच के देखिए, अगर इस तरीके से पैसा वाला का होगा तो हम लोग जैसा मेहनत करने वाला को कैसे होगा।
4: गुमला से झारखंड की राजधानी रांची आकर दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने रहने खाने और पढ़ने का खर्च उठाकर एक आदिवासी बेटी को झारखंड में इतना भरोसा भी सरकार नहीं दे पाती है कि उसकी मेहनत से पास हुई परीक्षा में सब कुछ ईमानदारी से हुआ है।
6: मानते कि मेरा एग्जाम हुआ है, रिजल्ट हुआ है, हम नहीं चाहते कि जिस तरह का रिजल्ट हुआ है इस तरीका से हमको रिजल्ट नहीं चाहिए। हम
7: पास हो गई फिर भी

0: अपना घर चलाते
1: हैं। हम खुद कमाई करते, दूसरा का घर में खाना बनाने जाते, कहे की दुकान उकान में जाएंगे तो हमको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा बोल के, कि हमको 6 से 8 घंटे टाइम मिले कि हम अच्छा से पढ़ सके, मेहनत कर सके, अभी मेरा सारा एग्जाम क्लियर है। लेकिन इस तरीका से धांधली हो रहा है, हम नहीं चाह रहे कि हमको रिजल्ट चाहिए।
2: एक आदिवासी बेटी रोती है तो भविष्य की भर्तियों के लिए तैयारी करती दूसरी बेटी रांची में प्रदर्शन करते हुए आंसू नहीं रोक पाती।
0: आप क्यों रो रहे हो, क्या हुआ क्या हुआ? अभी तो आप तैयारी कर रहे हो ना, आपने तो नहीं दिया।
1: मेरे ही पे तैयारी करते हैं, हम इसको समझाएं अभी तैयारी करने के लिए तो मजबूर किए।
0: आपकी बहन है छोटी?
1: छोटी बहन नहीं है, मेरी फ्रेंड है। हम जहाँ तैयारी करते ही आई ना, तो हम इसको समझा कर भी अपने इसे तैयारी करवा रहे इसको, इसीलिए।
0: मतलब खुद का भी तैयारी कर रही हो, अपनी दोस्त की भी तैयारी?
1: हम इसको कुछ सहारा नहीं दे रहे, बस इसको हम थोड़ा सा रास्ता दिखाते कि नहीं ऐसा पढ़ो।
3: मोटिवेट किए हैं बहुत ज्यादा ये।
2: इन बेटियों से आंख मिलाकर झारखंड सरकार क्या कह पाएगी कि अब एक भी भर्ती भ्रष्टाचार के अधीन नहीं होगी? लेकिन वो तो पुलिस की लाठियों को वाजिब ठहराने में जुटी है, जहां मुख्यमंत्री कहते हैं प्रशासन ने बहुत धैर्य सोमवार को दिखाया है।
4: प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है।
2: देखें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना धैर्य प्रशासन ने सोमवार शाम को विधानसभा के गेट के पास दिखाया। इतना धैर्य की लाठियों के बेरोजगारों के हाथ सिर पर चटकने की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन आंख खुले तो मुख्यमंत्री और पूरी सरकार देखें किस तरह बहुत दूर नहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रांची पुलिस के धैर्य वाले लाठीचार्ज का गवाह बने बेटे और बेटियां बैठे। आंख खोल कर देखे सरकार, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कंधा, किसी की कोहनी, किसी का चेहरा, किसी का सिर, लाठियों के निशान मौजूद है।
5: इन्हीं को तो सबसे ज्यादा लगा।
6: कहाँ कहाँ कहाँ लगा?
7: गर्दन में, हाथ में था,
3: तक लाठी चार्ज किया गया, बैरिकेड लगाकर मारा गया, बैरिकेड लगाकर मारा गया। जैसे कि एक मतलब एक जानवर को पीटा जाता है ना, उस तरह से हम लोग को ट्रीट किया गया है, हम लोग को इस तरह से मारा गया है। तो बताइए,
0: बहन को पैर में भी लगा हुआ है।
8: सर बहुत गंदा मारा है सर, बहुत।
0: आपको भी?
8: जी सर, देखिए ना सर,
9: बांस का डंडा था सर, बांस का डंडा, मोटा मोटा डंडा सर, बांस का डंडा से मारा है सर,
8: जबकि हम लोग पिस्तौल नहीं थी।
2: लेकिन जो सरकार लाठी चार्ज को लाठी चार्ज ना माने उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? मिलिए सत्ता की अंधेरगर्दी के दूसरे किरदार, नाम है इरफान अंसारी, पावरफुल मंत्री, स्वास्थ्य विभाग झारखंड में संभालते हैं। लेकिन इनको लगता है कि रांची में पुलिस ने सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कहीं कुछ नहीं किया।
10: हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं। हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।
2: कोई कार्रवाई ना कहते हुए मंत्री जी की जुबान रत्ती भर लड़खड़ाई नहीं। जहां ना आंसू गैस का गोला इनको दिखा, न दिखते हैं सरकार के कटी लेता, न मार खाते बेरोजगार, न आंसू, न तड़प, न चीख, न पीठ पर लाठी के निशान।
10: हम लोगों ने मार खाया, हमारा सर पूटा, हमारे सैकड़ों जवान घायल हैं, रिम्स में एडमिट है वो।
3: तो ये लाठी चार्ज हुआ था कि नहीं इरफान जी?
10: देखिए हल्का फुल्का जो जानकारी मुझे मिला, नहीं नहीं नहीं मैडम, कोई छात्र, देखिए मैडम, कोई लाठी चार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में, बस।
2: सोचिए ये हाल है, जहां मुख्यमंत्री पुलिस की कार्रवाई को अभूतपूर्व धैर्य वाला बताते, स्वास्थ्य मंत्री मानते नहीं कि लाठीचार्ज हो, और महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद कहती है सरकार ने संयम बरता।
11: कल जो स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट था उसमें कई बसों में भर भर के बंगाल से लोगों को भेजा गया, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें व्यवस्था देकर भेजा गया है। छात्रों के प्रोटेस्ट को हिंसक बनाने में भाजपा का ही कहीं ना कहीं पीछे से वो रोल निभा रही है। भाजपा का जो ये चाल है पीछे से छात्रों को उकसाने का, उसकी वजह से कल जो गड़बड़ियां हुई, आपको पता होगा कि 8-8 बैरिकेड तोड़े हैं, फिर भी सरकार ने, वहां की सरकार ने संयम बरता। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि छात्रों के साथ

0: बहुत ही संवेदनशील तरीके से पेश आए, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
1: तो क्या बिना कार्रवाई के खून विक्रम कुमार जैसे छात्रों का बहा?
2: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग भी ऐसा शब्द भी नहीं बोले हैं, और अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है। ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे।
1: यही वजह है कि जब सरकार कहती है कि वो छात्रों की बहुत सी मांगों को मान चुकी, तो भी सोनी कुमारी जैसी छात्राओं को रत्ती भर भरोसा नहीं होता, वो रोने लगती। क्योंकि जो सरकार यही ना माने कि लाठी चार्ज हुआ, वो कैसे ये भरोसा दे देगी कि आगे परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी।
3: तो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि सीबीआई से जांच कराई जाए, जबकि सरकार सीआईडी के बाद रिटायर्ड जज से जांच कराने की बात कहती है। इसके अलावा सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग बड़ी है और इस पर सोरेन सरकार सहमत नहीं है।
4: बहुत मुश्किल है सर, हम लोग इतना उम्मीद से और इतना कंडीशन खराब होने के बावजूद भी इतना मुश्किल से पढ़ाई करते हैं ना, फिर भी यहाँ रिजल्ट कोई सही तरीके से देखने को नहीं मिलता है, तो इससे बहुत तकलीफ होता है हम लोग को।
5: सीजीएल भी दिए थे 2-3 बार, इतना बार आंदोलन उसके लिए किया गया, उसको रद्द करने के लिए पेपर लीक की वजह से, लेकिन ये सरकार सुनी नहीं, पहले भी नहीं सुनी, और ये महाआंदोलन जो कल था उसमें हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया कि हम लोग बता नहीं सकते।
6: किसी भी शर्त पर यहाँ से नहीं हटने वाले जब तक सरकार घोषणा नहीं कर दे कि सीजीएल रद्द हो गया। और रद्द क्यों नहीं करिएगा जी, आपका एक अभय तिवारी का पूरा रिलेटिव बीएसओ पद पर है, क्या ये संयोग है? नहीं, ये प्रयोग है। आपने पैसा लेकर उन लोगों को नौकरी दिया, या फिर अगर पैसा आपने नहीं लिया दिया तो वैसे लोगों को क्यों टेंडर आप दिए जो अपने ही परिवार।
7: छात्रों का कहना है कि कुछ भी हो जाए यहाँ जमे रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे।
8: जमशेदपुर जिला में एक ही सेंटर में एक ही लैंग्वेज पेपर, कोटा में सभी टॉप किए, एक से लेकर मेरे पास पांच टॉप किए हैं, रैंकिंग रैंक लाए हैं, किसका 98%, 96%, किसका 97%। तो बोलना चाहते हैं ये तो जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो उतना कैसे मार्क्स आ सकता है, सारे के सारे सीट को बेच दिया गया। गरीब लड़का जो दौड़ में पास किया ईमानदारी से और 10 साल से तैयारी किया, वो जहाँ का तहाँ रह गया, जो एक रात पढ़ा वो टॉप करके नौकरी ले लिया गया।
9: हम यहाँ झारखंड में ही रहे थे, यहीं पले बड़े हैं, और यहाँ झारखंड के आंदोलन में भी हम लोग शामिल हुए थे और आंदोलन करके इस राज्य को अलग किए थे। उसके बाद यहाँ पास ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को राज की गद्दी मिली है और वो अपना राज चला रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए हक की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने फाइनल एग्जाम दिया आपका सहायक आचार्य टीचर का, और उस पास होने के बाद 4 एग्जाम लिया गया हम लोग से, 4 एग्जाम में हम सफलतापूर्वक पास कर गए। पास करने के बाद फिर हम लोग का रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट जारी में हम लोग पास कर गए। पास करने के बाद हम लोग का जेएससी ऑफिस में मेरी सारी सर्टिफिकेट की जांच हुई, सारी जांच में हमने ओके पाया। उसके बाद फिर वो दूसरे जिला में हम लोग को भेजा गया, यहाँ पर सर्टिफिकेट मेरे पास है, दूसरे जिले का यहाँ पास लिखा हुआ है और ये हमारा रोल नंबर है। और दूसरे जिला में गए थे कोडरमा में, वहाँ भी हमारा सफलता।
10: ये कब हुआ?
9: ये अभी पिछला साल का बात है सर।
10: उसके बाद अभी आपकी ज्वाइनिंग हुई?
9: नहीं, अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला सर।
3: तो उधर संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने वाला है, महज 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन अब तक दोनों सदनों में सियासत शोर जारी है। और इस बीच अब एफसीआरए बिल को लेकर भी सियासत तेज है, संभावना जताई जा रही है कि इस बिल को आज सदन में पेश किया जा सकता है। खबर जेपीसी को भेजने पर विचार की है और इस मुद्दे पर सस्पेंस भी कायम है।
11: सरकार के सामने विरोध के 3 मोर्चे हैं, पहला है चढ़ावा चोरी का, दूसरा है छात्रों का मुद्दा और तीसरा मोर्चा है एफसीआरए का। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026 पर भी विपक्ष ने विरोध की आवाज बुलंद की है। संसद के मॉनसून सत्र में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 13 अगस्त आखिरी दिन है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि एफसीआरए बिल कब पेश किया जाएगा। वैसे माना जा रहा है कि आज सरकार एफसीआरए बिल को पेश करने की कोशिश करेगी। इस बिल को लेकर सरकार को घेरने में विपक्षी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस और टीएमसी चाहती है कि सरकार एफसीआरए बिल को वापस ले, वही बीजेडी चाहती है इसे जेपीसी के पास भेजा जाए। डीएमके दुविधा में है, जो चाहती है कि या तो बिल वापस लिया जाए या उसे जेपीसी के पास भेजा जाए।
12: लेकिन सरकार के नियत में ही मैंने कहा नियत में खोट है। इसका मकसद कोई पारदर्शी तरीके से एक नियंत्रित ढंग से उसका उपयोग हो या फिर उसका उपयोग दुरुपयोग ना है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में वो पैसे का उपयोग हो, ऐसी बात को सरकार को देखना चाहिए, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य ये नहीं था, उनके उद्देश्य ये था कि कैसे हम एक तो पंजाब को चुनाव मान ले, फिर सबसे बड़ी बात है माइनॉरिटी को इससे वो प्रताड़ित करने का एक माध्यम वो बनाना चाहते हैं।
11: हालांकि सूत्र बताते हैं कि सरकार FCRA बिल को JPC के पास भेजने पर भी विचार कर रही है।
13: जिस तरीके से देश में अन्य देशों से विदेशी फंड का दुरुपयोग किया जाता है, बहुत सारी असंवैधानिक गतिविधियों में उसका उपयोग किया जाता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उनको सहयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और चर्चा के बाद इस बिल को पास करना चाहिए।
11: FCRA बिल को विपक्ष पूरी तरह असंवैधानिक बताता रहा है। तमिलनाडु विधानसभा में तो इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर चुका है। केरल और पूर्वोत्तर के कुछ संगठनों ने भी आपत्ति जताई है। ऐसे में सभी की निगाहें सरकार के भावी कदम की ओर है।
14: दुनिया का सबसे बड़ा
11: आज तक ब्यूरो।
3: तो वहीं छात्रों के मुद्दे पर संसद में सदन से लेकर बाहर परिसर तक में सियासी जंग चल रही है और कांग्रेस और विपक्ष जहां दिल्ली में जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गृहमंत्री से सवाल करता है, वहीं मंगलवार को बीजेपी सांसद भी परिसर में राहुल गांधी क्यों झारखंड में लाठीचार्ज और युवा के मुद्दे पर चुप है ऐसे बैनर लेकर प्रदर्शन करने निकले। दोनों तरफ से नारेबाजी होती रही।
15: सर हेमंत सोरेन से बात हुई क्या सर? झारखंड में आपकी बात हुई
16: है? वहाँ पर क्या लोग है कि डबल स्टैंडर्ड देख सकता है क्या
17: सर? अरे वो इश्यू अलग है, सौ इश्यू होते हैं, सौ को अलग अलग हमेशा डिस्कशन होता है, क्या सौ सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं?
15: सर अपने नेताओं को बोला है बात करने के लिए वहाँ हेमंत सोरेन?
18: आपको लगता है मैम लगता है क्या राहुल जी डर रहे हैं? शरम करो
19: राहुल जी ने झारखंड के
20: माननीय गृह मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ और पूरे फैक्ट्स के साथ अपने विषय को रखने के लिए जब उन्होंने प्रस्ताव कल दिया तो राहुल गांधी सदन से भाग खड़े हुए हैं और सदन के सामने आकर बहस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
21: ये तो कोई राजा महाराजा का तो दरबार नहीं कि जब चर्चा हुई तब अनुपस्थित रहेंगे, अब सदन के आखिरी समय पे अब वो प्रकट होंगे, अब वो चर्चा करना चाहते, तो ये तो उनका ये पाठशाला नहीं ना उनका ये कार्यशाला है, ये सदन है जिम्मेवारी का।
22: उनका उद्देश्य सिर्फ अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करना है, इसीलिए जब गृहमंत्री जी जवाब देने को तैयार है तब वो सुनने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को सदन में आके सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए, ना वो रांची जा रहे हैं ना सदन में सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनसे कहना चाहूंगा उनकी स्थिति ये है जब जो बात मांग ली जाती है वो उस बिगड़े दिल शहजादे की तरह है जिसे कोई बात सुननी नहीं है।
23: पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, अमित शाह जी पूरा लापता है सरकार से, पार्लियामेंट से उसमें आते हैं कमरे में बैठते हैं बट नहीं
24: आते। इतने दिन से हल्ला कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दे रहे हैं, अब क्या हुआ आपके पूरे झारखंड में? बच्चों पर लाठी चली, बच्चों पर आंसू गैस चले और बच्चे क्या मांग कर रहे हैं? 6-7 परीक्षाएं में नौकरियां बिकी हैं, जिसके प्रमाण आए हैं, उसकी CBI जांच कराओ, बाकी कराओ, तो राहुल गांधी उस पर खामोश है। वहां लाठी चार्ज हुई तो फिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
25: पूछिए गृहमंत्री से ये डर किस बात का है? नौजवानों के सामने आने से डरते हैं, नौजवानों के जो प्रतिनिधि हैं विपक्ष में उनके सामने आने से डरते हैं, सदन में आने से डरते हैं, इतने डरपोक कैसे हो गए आप? आप तो अपने आप को लौह पुरुष मानते थे, ऐसे लौह पुरुष?
26: अब जब डिस्कशन मिल रही है तो राहुल गांधी भगौड़े बने हुए हैं, यहाँ पर जो है अमित शाह जी को सुनना नहीं चाह रहे हैं, तो बताइए कैसे संसद चलेगा? तो इस तरह की जो ये इनकी करतूते हैं देश देख रहा है कि ये कितनी देशद्रोही शक्तियों के हाथ में आ चुके हैं।
27: ये आप मानिए इस बात को कि दोनों मुद्दों पे हम चाहते हैं स्टेटमेंट्स हो और होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि वो आए सदन में और स्टेटमेंट दे। क्योंकि अभी जहां आरटीआई फाइल हुई है वहां पे भी पता चला है कि कम से कम 10 बच्चों को पायलट्स गन से इंजरी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार कह रही थी कि पायलट्स गन्स नहीं चली हैं, तो ये तो साफ दर्शाता है कि सरकार झूठ बोल रही थी।
0: राहुल गांधी का चेहरा अब दोगला चेहरा हो गया। सरकार कई दिनों से कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार तैयार है, लेकिन इन्हें चर्चा नहीं चाहिए, केवल हंगामा चाहिए।
1: कल भी ये बात हुई थी कि ठीक है सोल्यूशन निकल सकता है अगर जो है सरकार जो है जवाब दे जो छात्रों के आंदोलन पे पायलट गोली क्यों चली। और दूसरा जो विषय था वो था कि इसके साथ साथ जो अयोध्या का चढ़ावा चोरी चंदा चोरी का मामला उस पर भी बयान दे। खड़गे जी बार बार खड़े होते हैं, जैसे वो राम मंदिर बोलते हैं वैसे हाउस जज जॉन हाउस स्थगित कर देते, इतना डर है कि पूछो मत।
3: क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
4: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ePaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या है सूर्य ग्रहण की महिमा, सूर्य ग्रहण का कैसा होगा देश दुनिया पर प्रभाव, राशियों के लिए सूर्य ग्रहण की कैसी रहेगी स्थिति, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: मुंबई के विले पार्ले में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग। 11वीं मंजिल पर हादसे में एक बच्चे समेत दो लोगों की मौत, 15 लोग सुरक्षित निकले। करीब 3 घंटे बाद आग पर नियंत्रण। संसद में अब FCRA बिल को लेकर तकरार, सदन में पेश किए जाने को लेकर सस्पेंस, आज फैसला संभव। कांग्रेस बोली बिल वापस ले सरकार, जेपीसी को भेजने पर भी विचार। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर लोकसभा में पेश की जाएगी जांच रिपोर्ट, सरकारी आवास से मिले जले नोट मामले में 3 सदस्यीय कमेटी ने की जांच। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द होने तक छात्र जारी रखेंगे आंदोलन, 10 अगस्त के एक्शन के खिलाफ बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। सोरेन बोले बीजेपी का काम झूठ, फरेब और साजिश। हिमाचल में पेट्रोल के बढ़े दाम, 60 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। अनाथ और विधवा सेस के रूप में बढ़ी कीमतें, हाई स्पीड डीजल भी महंगा, रात 12 बजे से नई दरें लागू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा। बुलेटिन में बात करते हैं सबसे पहले यूपी में शुरू हुई जेंजी पॉलिटिक्स की। जी हां, मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल बोलकर नई बहस छेड़ दी है। दरअसल 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों के लिए सियासी पिच पर उतरे आकाश आनंद न सिर्फ आक्रामक तेवर में नजर आते हैं बल्कि योगी और बीजेपी की सरकार से लेकर कांग्रेस को भी निशाने पर ले रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव को अंकल बताकर जेंजी वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आकाश आनंद के सहारे क्या मायावती का जेंजी वाला गेम प्लान बदलेगा।
1: यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव, जेंजी वाला गेम प्लान, जंतर मंतर आंदोलन के बाद यूपी में जेंजी वाली सियासत। आकाश आनंद ने अखिलेश को बोला अंकल, मामला पॉलिटिकल,
2: इनकी हरकतों के लिए अकाउंटेबल होल्ड करने।
1: अंकल पर अखिलेश यादव का जवाब, एक सिक्के के दो पहलू।
3: यूपी में
1: आकाश आनंद ने योगी सरकार को घेरा, बीजेपी पर हमला बोला।
4: आरोप लगाया सरकार पे।
1: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन ने सियासत का पूरा पैटर्न बदल दिया है। 20 जुलाई को सीजेपी के चलो संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज हुआ तो पूरा विपक्ष छात्रों के समर्थन में उतर गया, और जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो सियासत में सबको समझ में आ गया कि जेंजी जहां है ताकत वहां है। जब राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, डिंपल यादव और उनकी पार्टी खुद को जेंजी का हिमायती साबित करने में जुटी है और पूरी सियासत को छात्रों और युवाओं पर फोकस कर रही है, ऐसे में मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाथरस में पहली बड़ी रैली की तो उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहकर खुद को युवाओं यानी जेंजी के बीच एक युवा विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश की है। पहले तो आकाश आनंद ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया और फिर राहुल गांधी को अंकल कहकर संबोधित किया।
5: चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ भाजपा कर रही है।
1: इसके बाद आकाश आनंद ने अखिलेश यादव को भी अंकल बोला और वो ये भी बताते हैं कि उनकी उम्र अभी 30 साल है।
5: रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूँ। उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताओ। तो हमारे लिए तो वो बड़े
6: अखिलेश भैया,
5: अखिलेश अंकल हैं, अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं।
1: राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहना संयोग नहीं बल्कि जेन जी वाला वो प्रयोग है जिस वर्ग को अपने पाले में खींचने के लिए हर राजनीतिक पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है। यूपी में कैसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जेन जी याद आ रहे हैं और यूपी में जेन जी वोटर्स का चुनावी गणित क्या है, उसे दिखाने से पहले आपको आकाश आनंद के अंकल वाले बयान पर अखिलेश यादव का जवाब सुनवाते हैं।
3: ऐसा है, उस बहस में हम और आप न उलझे और जो सीएस बात है, एक सिक्के के दो पहलू और जो अंडरग्राउंड लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से तो काम चलता ही रहे, तो अगर शिक्षा परीक्षा से काम नहीं हो पा रहा है तो अयोध्या से काम चले। वो बात तो आपको हमको पता ही है कि ये बोरे भर के कहां गए थे, कंडों में पैसे निकले थे और हम लोगों को बदनाम करने के लिए कितनी साजिश की गई। एक दिन में इतने कॉल किए गए, संभव है क्या इतने कॉल किए गए हों और सरकार को न पता हो? सुनने में आया कि यहाँ जो छात्र नौजवान आए थे, नेटवर्क से उनका डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, तो भविष्य में सरकार पता नहीं क्या करे। इसलिए दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या समझिए एक सिक्के के दो पहलू हैं। बीजेपी और उनके संगी साथी दोनों इस मुद्दे से जुड़े हुए लोग हैं।
1: अब अखिलेश के एक ही सिक्के के दो पहलू का मतलब क्या है, ये यूपी में राजनीति की समझ रखने वाले समझ रहे हैं, लेकिन अब बात यूपी में जेन जी वोटर्स की करते हैं। आपको बता दें कि यूपी में कुल वोटर्स करीब 13 करोड़ हैं। इसमें जेन जी यानी 18 से 27 साल के वोटर्स 2 करोड़ 7 लाख हैं, यानी लगभग 15%। यूपी में जिन सीटों पर जेन जी वोटर्स का असर है वो यूपी विधानसभा की 403 में से लगभग 80 से 120 सीटें हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब करीब 5 महीने का वक्त रह गया है, इसलिए बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियां ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि इस पीढ़ी को क्या चीज प्रेरित करती है और उन तक कैसे पहुंच बनाया जाए।
6: युवाओं की पॉलिटिक्स अखिलेश यादव और राहुल गांधी करते दिख रहे हैं, लेकिन अब बहुजन की पॉलिटिक्स से आगे बढ़ते बढ़ते हुए आकाश आनंद अब जेन जी की पॉलिटिक्स पर आ रहे हैं। उम्र उनके साथ है, 30 साल उनकी उम्र है और शायद यही वजह है कि उन्होंने कहा कि 52 साल और 50 साल के लोगों को अगर हम अंकल ना कहें तो क्या कहें। मकसद साफ है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को पुरानी पीढ़ी के नेता घोषित करना और खुद को जेन जी के साथ खड़ा करना। लेकिन ये इतना आसान भी इसलिए नहीं है क्योंकि आकाश आनंद लंबे वक्त के बाद दोबारा से सामने आए हैं और अगर इसी तरीके से ब्रेक लेकर वो आते रहे तो फिर उनके लिए जड़ें जमाना मुश्किल होगा।
1: इसलिए आकाश आनंद ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल बोला तो बड़ी बहस छिड़ गई।
7: राहुल जी को, अखिलेश जी को आप अंकल कहो, स्वागत है आपका, लेकिन अगर आप में हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो और मायावती जी की इजाजत हो तो एक बार नरेंद्र मोदी जी को दादाजी भी तो कहकर के संबोधित करो।
8: इस बीच में जेन जी,
9: देखिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी हों या समाजवादी पार्टी के नेता हों, इन्होंने हमेशा हमारे युवाओं को बरगलाने बहकाने का काम किया है। 12 से लेकर 17 तक इसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सरकारी नौकरियों की बोली लगती थी।
10: अब ऐसे तो हम लोग भी बुआ जी कहते हैं बहन जी को, और आकाश जी ने किस भाव से कहा ये उन्हीं से पूछे तो बेहतर बता सकते हैं।
0: तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में इस बार जेन जी मतदाताओं को वोट बैंक माना जा रहा है। उनकी हिस्सेदारी लगभग 15% है जो कि कई सीटों के नतीजों को प्रभावित भी कर सकती है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत सभी दल 2027 के चुनाव में युवा वोटर्स को साधने की रणनीति बना रहे हैं। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने राहुल और अखिलेश को अंकल कहा, जो कि योगी सरकार और बीजेपी पर भी वार किया गया।
1: आपको बता दें कि यूपी में खुद सीएम योगी ने पूरा फोकस युवाओं पर किया है। जी हां, सीएम योगी ने नई युवा नीति तैयार करने के लिए निर्देश दिया है कि यूपी के 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को समझा जाए।
11: राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं है, आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कड़घरे में खड़ा कर देती है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग चाहिए। आज आप राजनीति कर रहे हैं, उस नौजवान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं आपके समय में इस नौजवान की नौकरी में डकैती पड़ती थी।
1: लेकिन आकाश आनंद ने योगी सरकार पर भी करारा प्रहार किया। आकाश आनंद ने कहा कि पिछले 10 सालों में जनता के टैक्स के पैसे यानी 7,000 करोड़ रुपए से बीजेपी सरकार ने सिर्फ अपनी नाकामी छुपाई है।
5: पिछले 10 सालों में 7,000 करोड़, साथियों 7,000 करोड़ से ज्यादा आपके टैक्स के पैसों से इस बीजेपी की सरकार ने अपनी नाकामियां छुपाई है। 7,000 करोड़ के अपनी कमियां छुपाने के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूर कर सकते हैं, पर 4 लाख से ज्यादा जो सरकारी पद इनके खाली पड़े हैं उनको भरने के लिए इनके पास पैसे नहीं।
1: इतना ही नहीं, मायावती के भतीजे ने योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और योगी सरकार को एनकाउंटर की सरकार बताते हुए यूपी पुलिस को भी घेरा।
5: मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये एनकाउंटर या बाबा की सरकार, जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहाँ पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे आप?
1: आकाश आनंद ने महंगाई के मुद्दे पर भी योगी सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक प्रहार किया।
5: इन्होंने कहा था डबल इंजन की सरकार लाएंगे और आपके सारे दुख दर्द खत्म कर देंगे। उन्होंने नारा दिया कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। 2014 में गैस सिलेंडर 400 रुपए हुआ करता था और उस पे इनके सभी नेता लोग सड़क पर उतर के गैस सिलेंडर सर पे रखकर छाती पीट कर बोल रहे थे, अरे महंगाई है, मर गए हमारे आम लोग। आज 1200 रुपए का है, सड़क भूल गए क्या? जिसका पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं है वो ही जाके कागजों पे साइन करके बोल रहा है मैंने E100 ले आया। आज आपको मिलावटी तेल मिलेगा, आज भी E20 का मिलावटी पेट्रोल का तेल, पेट्रोल का भाव 110 रुपया कर दिया है।
1: जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में युवाओं के बीच जो जो मुद्दे उछले उन्हें विपक्ष न सिर्फ पकड़ रहा है बल्कि सियासत का आधार उन्हीं को बना रहा है। और आज का सूरत हाल ये है कि विपक्ष हो या बीजेपी या फिर RSS, हर किसी का फोकस जेन जी पर आ गया है। आज तक ब्यूरो।
0: तो देखिए, रांची में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का अनशन अभी भी जारी है। दरअसल छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया। दिन भर छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा लेकिन शाम होते ही रांची पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस की कार्रवाई में 20 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं, जबकि 2 छात्र ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने जख्मी छात्रों से बात की है और उनका दर्द जाना, सुनिए।
8: किसी का कंधा टूटा,
12: दौड़ा के मारा गया, जीते जैसे हम लोग को खेत में दौड़ा दौड़ा के गिर के कीचड़ में हमको मारा गया।
8: किसी की टांगे टूटी, किसी की पीठ पर लाठी,
12: ना लड़की देखा सर, ना टीचर देखा, ना स्टूडेंट देखा, रात का अंधेरा में मौका मिला और ना कोई इशारा दिया सर, एकदम इतना दौड़ा दौड़ा के मारने लगा।
8: किसी के हाथ पर चोट,
12: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है इस लड़की सबको।
8: 1, 2, 3, 4, 5 गिनते चले जाइए, इनके जख्मों का आंकड़ा भी बढ़ता चला जाएगा। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान जो हुआ, सत्ता तंत्र ने फिर साबित कर दिया कि सिर्फ जगह बदलती है, फितरत नहीं बदलती। चाहे दिल्ली हो या रांची, विरोध की बुलंद आवाज किसी भी सरकार को मंजूर नहीं है। रांची में जो हुआ वो कितना भयावह और क्रूर है, ये आप इन छात्रों की आप बीती सुनकर जान जाएंगे।
13: देखे सर, 2-2 किलोमीटर दौड़ा के मारा गया है सर।
8: आप लोग भी वहीं पर?
12: ना लड़की देखा सर, ना टीचर देखा, ना स्टूडेंट देखा, रात का अंधेरा में मौका मिला और ना कोई इशारा दिया सर, एकदम इतना दौड़ा दौड़ा के मारने लगा, लगा कि हम लोग आतंकवादी हैं, एकदम 2-2 किलोमीटर सर, 2-2 किलोमीटर
14: सर, लड़की सबको विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है इस लड़की सबको।
15: लाठियों से मारा है, लाठियों से पूरा दौड़ा दौड़ा के मार रहे थे, पुलिस लग रहा था कि हम लोग आतंकवादी हैं। इतने यदि इसमें हिम्मत है तो तो जाकर के बॉर्डर को सील करो, अस्ती करो, उसके बाद हम लोग छात्र
13: लोग सर खेत में घुस जा रहे थे, लोग पुलिस खेत में घुस घुस के मारी है लड़की लोग को, लड़की लोग को गाली दे के मारा गया है सर, इतना बुरी तरह से पीटा गया हम लोग को, और जबकि हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, कभी कहीं पे कोई हिंसा नहीं हुई है।
16: लेकिन लाठियां झेलकर जख्म सहकर भी ये सरकार के सामने डटे हैं और सख्त जान की तरह खड़े हैं, और सरकार है कि लाठीचार्ज को लाठीचार्ज नहीं मान रही है, तो फिर उसकी बात पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। नाम है इरफान अंसारी, पावरफुल मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग झारखंड में संभालते हैं। जी हाँ, इनको लगता है कि रांची में पुलिस ने कुछ नहीं किया।
17: हम लोग मार खाते रहे, हमारे पुलिस मार खाता रहा, लेकिन हम लोगों ने युवाओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। आपने देखा होगा, एक बैरियर पार किया, दो बैरियर पार किया, तीन चार पांच छह सात आठ, उसके बाद भी हम मार खाते रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे युवा हैं। हम लोग बंदूक गोली पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग वार्ता पर विश्वास करते हैं। हम लोग मार खाए, हम लोग कोई कार्रवाई नहीं किए।
18: हेमंत सोरेन जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हम लोग शब्द भी नहीं बोले हैं, और अचानक पीछे से पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, ये अच्छा नहीं कर रहे,
19: लेकिन कोई रिपब्लिक
18: ये अच्छा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं।
16: यही वजह है कि जब सरकार कहती है वो छात्रों की बहुत सी मांगों को मान चुकी है, तभी छात्रों का भरोसा डिगने लगता है, क्योंकि जो सरकार यही न माने कि लाठीचार्ज हुआ है, वो कैसे ये भरोसा देगी कि आगे परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी। रांची से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो वहीं महाराष्ट्र में स्कूल के बच्चियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे प्रशासन को भी एक्शन लेना पड़ा। रायगढ़ के करजत में रोड की हालत काफी समय से खराब थी, सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे थे और बारिश में इनमें पानी भर जाने की वजह से स्कूली बच्चों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन इस समस्या को सिर्फ देखने के बजाय कुछ ऐसा किया गया कि अब सब जगह उनकी तारीफ हो रही है।
20: स्कूल की इस छात्रा के इस रिपोर्टिंग को जिसने भी देखा बस देखता रह गया। हाथ में माइक के तौर पर छाता लिए यह है नेहा घरे, जिनका इंटरव्यू ले रही हैं। उस बच्चे का नाम है ज्योत्सना मुकाने और कैमरे से वीडियो बनाने वाली बच्ची का नाम है मानसी पवार। देखने में ये तस्वीरें सरल हैं, लेकिन इसके पीछे का मैसेज बहुत बड़ा है।
21: खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाहीये।
22: तर आजची न्यूज इथे संपते, रिपोर्टर नेहा घारे सोबत कॅमेरामन मानसी पवार, धन्यवाद।
20: तस्वीरें रायगढ़ के करजत तालुका की है। ये बच्चियां इसी सड़क से गुजरते हुए स्कूल जाती हैं। मजाक मजाक में इन बच्चियों ने सिस्टम की पोल खोल के रखी है।
23: महाराष्ट्र के करजत तालुका में कोंदीवाड़े एक सामान्य गांव है। वो सामान्य गांव में कुछ स्कूल की जाने वाली बच्चियों ने एक रील बनाई। वो रील महाराष्ट्र में और अब देश भर में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। वो रील क्या थी? तो ये जो रास्ता है, कई लोग इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए, ये बच्चियां भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करती हैं। रायगढ़ एक ऐसा तालुका है, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कई बहुत ज्यादा बारिश होती है। करजत में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, और जब ये लोग स्कूल जाते हैं, सड़क पर चलकर स्कूल जाते हैं, तब आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो इनके यूनिफॉर्म पर जो है कीचड़ उछालती है, उसके बाद इनको कभी कभी यूनिफॉर्म चेंज करना पड़ता है। तो इस परिस्थिति का ध्यान रखते हुए इन लड़कियों ने सोचा कि जो आप कह सकते हैं कुछ तरह के एक्सपीरियंसेस जो है स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो उसी तरह का एक न्यूज जो रील है वो इन बच्चियों ने बनाया। और इस वक्त हमारे साथ नेहा घारे हैं, जो क्वेश्चन पूछ रही थी उस रील में, जो रील वायरल हुई है, ज्योत्सना मुकने हैं जो जवाब दे रही थी, और पवार, आपका नाम मानसी पवार है, जो कि मोबाइल पर अपने एक फ्रेंड के मोबाइल पर ये वीडियो जो है शूट कर रही थी। ये थोड़ा अगर आप बता सके हमारे दर्शकों को कि आप लोगों ने जो 40 सेकंड की सिर्फ रील बनाई उसके जरिए आपने क्या मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की थी?
22: हमारे रास्ते ठीक होने चाहिए, हमें स्कूल में जाने के लिए दिक्कत होती है, इसलिए ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए इन रस्तों।
0: चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद थी, लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन और छात्रों पर पुलिस एक्शन की सियासी टेंशन से विपक्ष का एजेंडा बदल गया। लेकिन अब जब मानसून सत्र के महज 3 दिन शेष है तो विपक्ष इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की तैयारी में लगा है। विपक्ष अब भी इस मुद्दे को धार देने की कोशिश में है। यही वजह है कि 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया। यानी विपक्ष की रणनीति यही है कि यूपी के चुनाव से पहले आस्था के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए। हालांकि बीजेपी विपक्ष की रणनीति के जवाब में लगी है। योगी आदित्यनाथ के जनसभाओं और रैलियां में विपक्ष पर हो रहे हमलों में इसकी साफ झलक दिख रही है। माना जा रहा है कि छात्रों के मुद्दे के साथ साथ संसद में आज चढ़ावा चोरी पर भी जबरदस्त उबाल दिखेगा। आज तक ब्यूरो

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: गांधी जवाब दो,
1: जवाब दो, जवाब दो।
2: संसद में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के सीधे टकराव की तस्वीरें हैं। एक और एनडीए सांसद झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमलावर हैं। दूसरी ओर विपक्ष चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आक्रामक है। इन दोनों ही मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में तकरार है और उसका असर यूपी की सियासत में भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रयागराज में राहुल के कार्यक्रम के बाद छात्रों का मुद्दा भी यूपी के चुनाव से पहले अहम हो गया है। वहीं चढ़ावा चोरी का सवाल तो सीधे यूपी की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि एक ओर बीजेपी और एनडीए राहुल गांधी पर हमलावर है, तो अब सीएम योगी ने भी राहुल गांधी को सीधी चुनौती दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है तो उत्तर सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है। गृहमंत्री अमित शाह विद्यार्थियों से जुड़े विषय पर सदन में विस्तार पूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूर्णतः तैयार है। कांग्रेस और समूचे विपक्ष से अपेक्षा है कि तथ्यों का सामना करें, सदन की गरिमा बनाए रखें और उत्तर को पूरा सुने। लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद। समाजवादी पार्टी की रणनीति तैयार थी, कांग्रेस भी साथ था, इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन था, सरकार की घेराबंदी का पूरा खाका तैयार था। लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन, छात्रों पर पुलिस एक्शन पर सियासी टेंशन से विपक्ष का एजेंडा बदल गया। लेकिन अब छात्रों के मुद्दे की गूंज है और चढ़ावा चोरी पर भी संग्राम है। यूपी में इन दोनों ही मुद्दे पर सियासी रणनीति तैयार होनी शुरू हो गई है। आज तक पेरो।

मुंबई के विले पार्ले में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग। 11वीं मंजिल पर हादसे में एक बच्चे समेत दो लोगों की मौत, 15 लोग सुरक्षित निकले। करीब 3 घंटे बाद आग पर नियंत्रण। संसद में अब FCRA बिल को लेकर तकरार, सदन में पेश किए जाने को लेकर सस्पेंस, आज फैसला संभव। कांग्रेस बोली बिल वापस ले सरकार, जेपीसी को भेजने पर भी विचार। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर लोकसभा में पेश की जाएगी जांच रिपोर्ट, सरकारी आवास से मिले जले नोट मामले में 3 सदस्यीय कमेटी ने की जांच। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द होने तक छात्र जारी रखेंगे आंदोलन, 10 अगस्त के एक्शन के खिलाफ बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना। सोरेन बोले बीजेपी का काम झूठ फरेब और साजिश। हिमाचल में पेट्रोल के बढ़े दाम, 60 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। अनाथ और विधवा सेस के रूप में बढ़ी कीमतें, हाई स्पीड डीजल भी महंगा। रात 12 बजे से नई दरें लागू।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज का भाग्य चक्र विशेष है। आज हम बात करेंगे आज रात में लगने वाले सूर्य ग्रहण की। ये सूर्य ग्रहण कितना महत्वपूर्ण है, देश दुनिया पर और आपकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय में विस्तार से बात करेंगे। और सूर्य ग्रहण के दौरान और उसके बाद आप क्या उपाय करें जिससे आपको लाभ हो, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि जो सूर्य ग्रहण आज लग रहा है इसकी पूरी स्थिति क्या है। देखिए, इस बार जो सूर्य ग्रहण है ये 12 अगस्त को लग रहा है। 12 अगस्त का रात के समय का सूर्य ग्रहण है। इसका आरंभ भारतीय समय से 12 अगस्त को रात में 9:04 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय 12 अगस्त की रात को 11:16 पर होगा और इस ग्रहण का समापन होगा जब 12 अगस्त की मध्य रात्रि बीत जाएगी, 13 अगस्त आरंभ होगा। तो 13 अगस्त की प्रातः वेरी अर्ली मॉर्निंग 1:27 पर यह ग्रहण खत्म हो जाएगा। यानी 12 और 13 तारीख की मध्य रात्रि में यह ग्रहण लग रहा है आज। और इस ग्रहण का जो आरंभ है वो है रात में 9:04 पर और इस ग्रहण का समापन है 1:27 पर। अगर ज्योतिष के नजरिए से देखें तो ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है। और ये ग्रहण सामान्य ग्रहण नहीं है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं होगा। चूंकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, भारत में दर्शनीय नहीं होगा, इसीलिए किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सूतक का कोई भी नियम इसमें लागू नहीं होगा। आप जैसे सामान्य जीवन जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, वो सब कर सकते हैं। मंदिरों में भी पूजा चलती रहेगी, मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे। चूंकि भारत में सूतक लगेगा ही नहीं, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये बात आप समझ लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण जरूर है लेकिन चूंकि भारत में नहीं दिखेगा इसीलिए सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। देखिए, सूर्य ग्रहण भारत में दिखे या ना दिखे, लेकिन सूर्य पूरी दुनिया में एक ही है। और सूर्य चूंकि इस ग्रहण में प्रभावित होंगे इसीलिए पूरे देश पर, पूरी दुनिया पर इस ग्रहण का असर पड़ेगा। और देश दुनिया पर इस ग्रहण का प्रभाव अगले 3 तक पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा देश दुनिया पर?
इस सूर्य ग्रहण के लगने के समय मीन लग्न उदित हो रहा है। मीन लग्न से इस ग्रहण का आरंभ हो रहा है और ग्रहण काल में मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में हैं और जो ग्रहण की शुरुआती कुंडली है उसमें पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है। राहु और मंगल ग्रहण काल के आरंभ में निकट अंशों में हैं, एक दूसरे से क्लोज डिग्री में हैं। अब आप देखिए ग्रहण की शुरुआत है मीन लग्न में, ग्रहण लग रहा है कर्क राशि में, दोनों जल की राशियां हैं, तो इस ग्रहण से दुनिया भर में जलीय और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, भूकंप की संभावनाएं बन सकती हैं और जल से संबंधित मुश्किलें हो सकती हैं। सत्ता में जो लोग उच्च स्थानों पर बैठे हुए हैं उनको अपना पद छोड़ना पड़ सकता है या उनको पद से हटाया जा सकता है। स्वतंत्र भारत की जो कुंडली बनती है वो कर्क राशि की है और ग्रहण लग रहा है कर्क राशि में, इसलिए भारत में आप देखेंगे कि अगले 3 महीने में आंतरिक कलह की स्थिति बनेगी, इंटरनल झगड़े झंझट और बेवजह के विवाद पैदा होंगे। इस समय न्यायालय द्वारा कोई बहुत बड़ा फैसला आ सकता है जिसका प्रभाव जनता पर और सरकार पर दोनों पर पड़ेगा। मंगल राहु का क्लोज डिग्री कनेक्शन है, इसीलिए विस्फोट की संभावना, युद्ध का गड़बड़ होना और आतंकवादी घटनाओं का होना ऐसा घट सकता है। जो तटीय स्थान हैं, जो भारत के कोस्टल एरियाज हैं, उड़ीसा है, बंगाल है, तमिलनाडु है, गुजरात का तटीय इलाका है, इन स्थानों पर विशेष प्राकृतिक आपदाओं से समस्या हो सकती है। यानी ये सूर्य ग्रहण प्राकृतिक आपदा के और अशांति के संकेत दे रहा है, साथ ही साथ आतंकवादी घटनाओं के घटने की और युद्ध के भीषण होने की संभावना भी दिखा रहा है। सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो लगने के 3 महीने तक देश और दुनिया पर पड़ता है। अलग अलग राशियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक पड़ता रहता है। तो इस सूर्य ग्रहण का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आइए समझते हैं। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए ग्रहण के परिणाम अच्छे नहीं हैं। इस समय आपको आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, पैसे का झटका लग सकता है, पैसे का नुकसान हो सकता है। मेष राशि के लोग इस समय वाहन सावधानी से चलाएंगे,
चोट चपेट से बचाव करेंगे, दुर्घटना की संभावना बन सकती है, चोट लग सकती है। अगर आपने अपने करियर के लिए, अपने जीवन के लिए कोई योजना बनाई है तो अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, अपनी योजनाएं दूसरों को न बताएं, वरना बना बनाया काम बिगड़ सकता है। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण के बाद यानी 13 अगस्त को दिन में किसी भी समय अगर आप गुड़ का दान करें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। अब जानते हैं कि वृषभ राशि वालों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव कैसा रहने वाला है। देखिए, वृषभ वालों के लिए ग्रहण के परिणाम बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। पूरी ताकत लगाइए, पूरा प्रयास करिए तो ग्रहण से आपको लाभ होगा। करियर में विशेष सफलताएं भी इस समय आपको मिलेंगी। और ऐसा लग रहा है कि वृषभ राशि वालों का इस समय मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है, यानी वृषभ वालों के बहुत सारे रुके हुए काम बनेंगे, महत्वपूर्ण चीजें रास्ते पर आनी शुरू हो जाएंगी। क्या करेंगे वृषभ वाले? ग्रहण जितनी

चालीसा पढ़िएगा और ग्रहण के बाद अगले दिन 13 तारीख को एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ा आइएगा। अगर आप ऐसा कर लें तो ग्रहण से आपको लाभ होगा, आपके जीवन और काम की रुकावटें दूर होंगी। देखिए, अगर मिथुन राशि को समझना चाहें कि मिथुन वालों के ऊपर ग्रहण का प्रभाव कैसा पड़ेगा, ग्रहण का कैसा इंपैक्ट होगा इनके ऊपर, तो मिथुन वालों के लिए सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इनके स्वास्थ्य के ऊपर। तो मिथुन राशि के लोग अब अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, सेहत को लेकर बहुत सतर्क रहें। मिथुन वालों के महत्वपूर्ण काम अगले 1 महीने तक रुक सकते हैं, इसलिए परेशान ना हो, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, महत्वपूर्ण काम अभी के लिए रुकेंगे। यात्राओं पर अगर जाना है, लंबी यात्रा में जाना है, तो यात्राओं में बड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि यात्रा के दौरान आपको मुश्किलें हो सकती हैं, इसीलिए यात्राओं में सावधानी बनाए रखेंगे। जितने समय ग्रहण चलेगा उसमें थोड़ा सा समय निकाल करके नारायण कवच का पाठ करिएगा, एक बार कम से कम। और ग्रहण के बाद अगले दिन यानी 13 अगस्त को गुड़ का और आटे का दान कर दीजिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहण से आने वाली समस्याओं से बच जाएंगे। देखिए, ग्रहण जिस राशि में लगने जा रहा है वो कर्क राशि है, तो कर्क राशि पर ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ेगा। क्या होगा कर्क राशि पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव? कर्क राशि वालों के करियर में आप देखेंगे समस्या आ सकती है, करियर में दिक्कत आने की संभावना बनेगी, सतर्क रहिए। और इस समय प्रेशर में आकर या बिना वजह के आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन और रिश्तों का बहुत ध्यान रखिएगा, जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं वो टूट सकते हैं, वैवाहिक जीवन में आपके दिक्कतें आ सकती हैं। ग्रहण का परिणाम प्रभाव आपके करियर और आपके रिश्तों में दिक्कत दिखा सकता है। क्या करेंगे? ग्रहण के दौरान जितने समय ग्रहण है कम से कम 108 बार सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। और ग्रहण के बाद 13 अगस्त को सुबह सुबह या दिन के समय में किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और आटे का दान करिएगा, तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। अब जानते हैं सिंह राशि के ऊपर ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा।

सिंह वालों को किस बात का ध्यान अगले एक महीने तक बनाए रखना है। सिंह राशि वाले ये जान लें कि आपके वैवाहिक जीवन में, आपकी मैरिटल लाइफ में समस्याएं हो सकती हैं। दुर्घटनाओं से

विवाद आपके हो सकते हैं। जैसा आपका रोजगार चल रहा है, जैसा आपका करियर चल रहा है, वैसा चलने दीजिए। अभी करियर में कोई जोखिम, कोई बदलाव मत कीजिएगा, वरना मामला उल्टा पड़ेगा और करियर में दिक्कतें आएंगी। सिंह वाले करियर और दुर्घटना, इन दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान बनाए रखें। ग्रहण के दौरान अगर आप सूर्य मंत्र का जप करें, जितना समय ग्रहण चलेगा उस समय में थोड़ा सा वक्त लेकर कम से कम 108 बार ओम आदित्याय नमः सूर्य मंत्र का जप करेंगे तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। कन्या राशि, सूर्य ग्रहण का प्रभाव अगले एक महीने तक कन्या राशि पर कैसा रहेगा? ग्रहण का प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रयास करें इस समय तो आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। करियर में आपको विशेष सफलताएं मिलेंगी, करियर में आपको विशेष लाभ होगा, ये संभावना कन्या वालों की दिख रही है। अगर आप बहुत समय से चेंज ऑफ प्लेस की कोशिश कर रहे थे तो आपका स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है, तो कन्या वालों को हर तरफ से इस समय सफलता मिलेगी। अगर कन्या वाले कोशिश करें तो अगले 15 दिन से एक महीने में जीवन रास्ते पर आना शुरू हो जाएगा। जिस समय ग्रहण चल रहा हो उसके बीच में कम से कम एक बार या तीन बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। ग्रहण के अगले दिन यानी 13 अगस्त को एक लोटा जल अगर आप शिव जी को अर्पित कर दें तो आपको बहुत लाभ होगा। अब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव तुला राशि वालों पर कैसा पड़ने वाला है। तुला राशि वालों के लिए भी ग्रहण के परिणाम अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आपके करियर और जीवन में जो काम की रुकावट चली आ रही थी वो काम की रुकावट दूर होगी। स्वास्थ्य के मामले में, जीवन के मामले में सुधार होगा, चिंताएं कम होंगी, प्रेशर कम होंगे, मन प्रसन्न होगा और इस समय आपको आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। यानी करियर के मामले में, धन के मामले में लाभ होगा और इस समय आप जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे उसका अच्छा फल आपको मिलेगा। क्या उपाय करेंगे? ग्रहण के दौरान तुला राशि के लोग थोड़ा समय निकालकर एक बार या तीन बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों पर
सूर्य ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ग्रहण ये कह रहा है कि स्वास्थ्य की समस्याएं आपको अगले 15 दिन एक महीने में परेशान कर सकती हैं। सेहत को लेके, खास तौर से डाइजेशन को लेकर के, कोल्ड कफ को लेकर के, साइनस की समस्या को लेकर के आपको दिक्कत हो सकती है। और वृश्चिक वालों को पारिवारिक समस्या, खास तौर से पति पत्नी के संबंधों को लेकर समस्या हो सकती है। करियर में अगर आप कोई रिस्क लेंगे या अगर आप कोई लापरवाही करेंगे तो करियर में अचानक समस्या आ सकती है, करियर में दिक्कत की संभावना बन सकती है। इसलिए वृश्चिक वाले मुख्यतः अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने संबंध और करियर को लेकर के अगले एक महीने तक बहुत सतर्क रहेंगे। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण के बाद आपको गुड़ का दान करना चाहिए। मंदिर में दे आएं, गाय को खिला दें, गरीब आदमी को दे दें, जैसा भी आपको ठीक लगे। 13 अगस्त को यानी ग्रहण के अगले दिन आप गुड़ का दान करें तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। अब जानते हैं कि धनु राशि वालों के लिए ये ग्रहण क्या संकेत दे रहा है। अष्टम भाव में ग्रहण लग रहा है, मामला थोड़ा जटिल है, थोड़ा गंभीर है। धनु राशि के लोग अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान बनाए रखें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे। इस समय आप चोट की चपेट में आ सकते हैं, वाहन दुर्घटना के या तेज दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। अगले एक महीने तक बहुत सतर्क रहें। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। इस समय जोश में आकर, जल्दबाजी में आकर करियर का, पैसे का कोई निर्णय लेंगे तो वो निर्णय आपके लिए गलत हो सकता है। आपकी मुश्किलें ज्यादा हैं, इसलिए आप ऐसा करिए, जितने समय ग्रहण है उस ग्रहण काल में कम से कम एक बार नारायण कवच का पाठ करिएगा। अगर पढ़ने में कठिनाई लगती है तो मोबाइल पर लगा करके सुन लीजिएगा। और ग्रहण के बाद अगले दिन 13 अगस्त को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का अगर आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ग्रहण का प्रभाव मकर राशि पर कैसा पड़ने वाला है। अगले एक महीने तक मकर राशि को क्या प्रभाव डालेगा ये ग्रहण, आइए जानते हैं। देखिए, मकर वालों के लिए भी ये ग्रहण बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। आपके करियर में इस समय समस्या आ सकती है, करियर में दिक्कतें हो सकती हैं। बेवजह का, बिना प्रयास के, प्रेशर के कारण इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। कठिन समय आपके करियर में दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन का
और अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखिएगा। मकर वाले करियर को लेकर ज्यादा अलर्ट रहें, ऐसा कुछ मत करें जिससे उनके करियर में दिक्कतें हो जाएं। मुश्किल से बचने के लिए ग्रहण के दौरान जिस समय ग्रहण चल रहा है उस समय कम से कम 108 बार सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। और ग्रहण के बाद गुड़ का और आटे का दान करिएगा, यानी ग्रहण के अगले दिन 13 अगस्त को किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ और आटे का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि पर से शनि की 7.5 उतर रही है, ऐसे में क्या सूर्य ग्रहण से इनको कुछ राहत मिलेगी? देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहण के परिणाम बेहतर दिखाई दे रहे हैं। ग्रहण आपके लिए राहत लेकर आ रहा है, तो कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में सुधार होगा, इनकी सेहत भी बेहतर होगी और इनकी मानसिक स्थिति भी बेहतर होगी। हो सकता है इस समय आप कोई नया काम शुरू करें या करियर में नए मौके मिलें, करियर की शुरुआत आपकी हो सकती है। कुंभ वाले अगर कोशिश करें तो करियर में इस समय बड़ी सफलता मिल सकती है। करियर का मामला कुंभ वालों का कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है और बहुत सारी चिंताएं बहुत सारी दिक्कतें इस एक महीने में समाप्त होंगी। क्या करेंगे? ग्रहण के दौरान जब ग्रहण चल रहा हो उस समय एक बार या 3 बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा और ग्रहण के अगले दिन यानी 13 अगस्त को एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाइएगा, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। सूर्य ग्रहण का प्रभाव मीन राशि पर कैसा पड़ सकता है? देखिए, ग्रहण आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मीन राशि के लोग स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें, खास तौर से डाइजेशन का, पेट को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। महत्वपूर्ण काम जो आपके करियर और धन से जुड़े हुए थे वो तमाम काम इस समय आपके रुक सकते हैं। अगर किसी यात्रा पर जाना है तो यात्राओं में बड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि यात्राओं में आपको दिक्कत हो सकती है। मीन वाले थोड़ा धैर्य रखेंगे इस समय, क्योंकि महत्वपूर्ण काम कुछ समय के लिए रुकेंगे लेकिन कुछ समय बाद आपके तमाम काम बन जाएंगे। क्या करेंगे? ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्र का जप करेंगे कम से कम 108 बार, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करेंगे। ग्रहण के बाद गुड़ और आटे का दान करेंगे।
अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

मुंबई के विलेपार्ले में बहुमंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी भीषण आग, दो की मौत, दो को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग और धुएं से मची अफरा तफरी, ऊपरी मंजिलों में फंस गए कई। धुएं के कारण ऊपरी मंजिलों पर फंसे कई लोग, दमकल विभाग ने रेस्क्यू कर छत से 15 लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट की आशंका के बीच जांच जारी। संसद के मानसून सत्र के सिर्फ 2 दिन बाकी, गतिरोध खत्म करने की कोशिशों के बीच हंगामे के आसार बरकरार। एफसीआरए बिल पर सरकार विपक्ष आमने सामने, कांग्रेस ने बिल वापस लेने की मांग की। एफसीआरए बिल को जेपीसी भेजने पर सरकार तैयार, लेकिन विपक्ष में मतभेद, टीएमसी, कांग्रेस और डीएमके के अलग अलग रुख। एफसीआरए में नया प्रावधान बना, विवाद की वजह विदेशी फंड और संपत्तियों की निगरानी के लिए अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव, विपक्ष ने जताई आपत्ति। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई को लेकर अमित शाह के जवाब पर अड़ा विपक्ष, सरकार बोली पहले हो उचित चर्चा फिर गृहमंत्री देंगे जवाब। झारखंड छात्र आंदोलन का 19वां दिन, मांगों पर अड़े छात्र, जयपाल स्टेडियम में धरना अभी भी जारी। लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड के छात्रों का प्रदर्शन थे, सरकार से आर पार के संकेत। छात्र आंदोलन के बीच परीक्षा सुधार की पहल, सरकार ने युवाओं से मांगे सुझाव, 8,500 युवाओं ने रखी अपनी बात। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद पर आंदोलन जारी, सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग। देवेंद्र महतो ने अस्पताल से इंसाफ के नाम जारी किया एक खुला पत्र, अस्पताल में 10वें दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी, लिखा न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले पहले भगवा कपड़ों में भ्रम फैलाते थे, अब छात्रों के वेश में करते हैं ये सब, लखनऊ की कंपनी पर भी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। प्रशांत किशोर ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को बताया गलत, कहा लाठीचार्ज से युवाओं की आवाज नहीं दबेगी, रोजगार और शिक्षा की समस्याओं का समाधान करे सरकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का आरोप, बोले बीजेपी ने लोगों को भेजकर छात्रों के प्रदर्शन को भड़काने की कोशिश की है। राजस्थान के डिप्टी सीएम रिया कुमारी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा राजस्थान में 1920 पेपर लीक हुए तब चुप रही कांग्रेस, दिल्ली में हंगामा, झारखंड में भी साधु चुप्पी। अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के छात्रों का समर्थन किया, बोले सरकार तुरंत उनकी मांगे माने, छात्रों के खिलाफ हिंसा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। पीएम मोदी आज जारी करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा, विज्ञान भवन में सुबह 9:30 बजे होगा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के संघर्ष और राष्ट्रपति पद तक के सफर पर आधारित आत्मकथा। भारत चीन सीमा पर शांति को लेकर एमईए का बड़ा बयान, रणधीर जायसवाल बोले एलएसी पर शांति और स्थिरता बेहद ही अहम। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई की चार्जशीट पर आज कोर्ट का फैसला, करीब 20,000 पन्नों की चार्जशीट में 13 आरोपी। नीट यूजी पेपर लीक के आरोपी को झटका, पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की याचिका खारिज। बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, कहा 1 से 2 साल में 10,000 बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने का दावा। बांकीपुर के बेरोजगार युवाओं से बायोडेटा जमा करने की अपील की गई, प्रशांत किशोर बोले देशभर में निजी कंपनियों में रोजगार दिलाने की करेंगे कोशिश। पश्चिम बंगाल विधानसभा का आज विशेष सत्र, कोलकाता हावड़ा वार्ड परिसीमन बिल पर होगी चर्चा, कोलकाता नगर निगम में 144 से बढ़कर 209 होंगे वार्ड। कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ लगे चोर चोर के नारे, नेताजी के सम्मान में टीएमसी के कार्यक्रम के दौरान हंगामा। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ की तलाश तेज हुई, 5,200 आवेदनों में से करीब 18 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। कर्नाटक विधानसभा सत्र से पहले सीएम की अहम बैठक, कल से शुरू हो रहे हैं सत्र की रणनीति पर मंत्रियों और विधायकों संग होगा मंथन। वाल्मीकि विकास बोर्ड घोटाले को लेकर बीजेपी जेडीएस का सरकार पर हमला, मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग की गई, विधानसभा में हंगामे के आसार। कैशवेट रेजिडेंस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर जांच रिपोर्ट आज संसद में होगी पेश, लोकसभा राज्यसभा में रखी जाएगी रिपोर्ट। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच कमेटी की रिपोर्ट संसद में होगी टेबल, 2 खंडों के साथ मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य भी रखे जाएंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में संसद में आगे बढ़ेगी कार्रवाई, जांच रिपोर्ट में क्या निकला आज होगा खुलासा। दिल्ली में एनडीए सांसद निकालेंगे तिरंगा बाइक रैली, भारत मंडपम में नेशनल स्टेडियम तक निकाली गई यात्रा। ताजमहल में पूजा की मांग वाली याचिका पर आज आगरा कोर्ट में सुनवाई, स्मारक को तेजो महाले मंदिर बताने का दावा।
हिमाचल में आधी रात से महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम से इसके जरिए बढ़ोतरी। साइबर अपराध के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 3,718 फर्जी मोबाइल ऐप ब्लॉक, 11,158 करोड़ की ठगी रोकी गई। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में सोलापुर से एक और गिरफ्तारी, अब तक 16 आरोपी पुलिस के शिकंजे में। हिमाचल के कुल्लू में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, पहाड़ी से गिरे भारी पत्थर, मलबे की चपेट में आई कार, दो लोग थे सवार। गंगापुर में झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न, शहर में जलभराव के चलते लोगों को आवागमन में करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। बिजनौर में तेज बारिश के चलते सड़कें जलमग्न, बिजली घर में भी घुसा पानी, जलभराव से लोगों की बड़ी मुश्किलें। ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पार्किंग एरिया जलमग्न हुआ, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। एयरपोर्ट के टर्मिनल से पार्किंग जाने वाले रास्ते पर भरा बारिश का पानी, यात्रियों को हो रही है काफी परेशानी। कांगड़ा में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड, फोर लेन हाईवे और कांगड़ा शिमला एनएच पर यातायात प्रभावित। शिवपुरी में लगातार बारिश से आफत, सड़कें और अंडरपास जलमग्न, एनएच 46 पर जलभराव से लगा जाम। भारी बारिश के चलते एक रेलवे अंडरपास में भरा बारिश का पानी, पानी भरने के कारण गांव का टूटा संपर्क। बूंदी में दो दिन की लगातार बारिश से शहर जलमग्न, सड़कों ने लिया नदी का रूप। कठुआ में उफनती उजा नदी में फंसे 7 लोगों का रेस्क्यू, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ ने 6 महिलाओं समेत एक बच्चे को सुरक्षित निकाला। जम्मू कश्मीर में बारिश से उफनाए दरिया, बमियाल की सड़क पर बह रहा है जलालिया का पानी। पठानकोट के बमियाल सेक्टर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए, उफान पर उजौर जलियाल दरिया। महीसागर में भारी बारिश के कारण हुआ जलभराव, एक गांव का दूसरे गांव से टूटा संपर्क, 25 से 30 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पौड़ी में बारिश ने बढ़ाई छात्रों की मुसीबत, एक साल से नहीं बना बहा पुल, उफनते पानी और जंगल के रास्ते स्कूल जाने को मजबूर हुए बच्चे। असम के कचार में एनएच 6 के क्लाइन मालीदर में बदहालत हालात काफी ज्यादा खराब दिखे, इसकी वजह से परेशानी बढ़ी। मुजफ्फरनगर में दिखा भक्ति का अलग रंग, स्कूटी से गंगा जल लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचे ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर परशुराम शर्मा। हरिद्वार से हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे 85 साल के बुजुर्ग चंद्र का जोरदार स्वागत किया गया। हरिद्वार से कांवड़ लेकर पहुंचने पर गांव वालों ने किया स्वागत। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी के बागपत में कांवड़ियों के साथ बारिश में व्यवस्था संभालते दिखे पुलिस वाले, एसपी खुद बारिश में व्यवस्था बनाते दिखे। यूपी के सहारनपुर में भी महाभारत कालीन अनोखा शिव मंदिर, दरअसल मान्यता है कि इस मंदिर को दुर्योधन ने बनवाया था और भीम ने दिया। अपनी अनोखी वास्तुकला के जरिए मशहूर इस पश्चिम मुखी शिव मंदिर में मन्नतें लेकर दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु, यहां पर सावन में लगता है मेला। बेहतर होगी जयपुर की परिवहन व्यवस्था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम ई बस सेवा के तहत 16 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। गुजरात में आज शक्तिदूत 2.0 खेल योजना का शुभारंभ, 388 करोड़ से ज्यादा की खेल योजनाओं का होगा उद्घाटन। नई दिल्ली में सल्यूट तिरंगा क्रिकेट लीग का शुभारंभ, 10 शहरों में होगी फ्री ओपन ट्रायल, 8 फ्रेंचाइजी टीमें लेंगी हिस्सा। मध्य प्रदेश के विकास को मिलेगी रफ्तार, राज्य सरकार ने 47,990 करोड़ के विकास कार्यों को दी मंजूरी। कटिंग के फॉर्मूला 1 में आतिका मीर के नाम हुई नई उपलब्धि। गुरुग्राम के लग्जरी सोसाइटी में हाउस हेल्प से जमकर मारपीट की गई, काम को लेकर हुई कहा सुनी, 52 साल की फ्लैट मालकिन गिरफ्तार। सूरत में पीवीसी के गोदाम में लगी भीषण आग, 3 लोगों ने सूझबूझ से बचाई जान। इंदौर में प्रॉपर्टी ब्रोकर जीतू साहू की मौत का खुलासा, हत्या नहीं हादसा थी मौत की वजह। पीलीभीत में स्कूल की दीवार गिरी, मलबे में दबे 6 बच्चे और 2 शिक्षिकाएं। जशपुर में शराब के नशे में विवाद में बाद लड़खड़ाते हुए लकड़हारे की हत्या कर दी गई, लाठी पत्थर से वार का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। देवास में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हुई, गम में डूबा गांव। गोरखपुर में 4 दिन पहले हुए ठेकेदार हत्याकांड का वीडियो वायरल, तलवार से हमला करते हुए आरोपी राहुल कैमरे में कैद हुआ। मुजफ्फरपुर में चलती हुई स्कॉर्पियो बनी आग का गोला, ड्राइवर समेत 3 लोगों ने कूद कर बचाई जान। बनासकांठा के दांता के पास फोरलेन हाईवे पर जीप में लगी भीषण आग, भारी नुकसान। जामनगर में वेल्डिंग के दौरान एक स्कूटर में अचानक से लगी आग, मची अफरातफरी। जलगांव में डिपो से एसटी बस चोरी, टायर पंचर होने की वजह से शाहपुर के पास छोड़कर भागे चोर, सीसीटीवी में कैद वारदात। पालघर में 19 साल की युवती से गैंगरेप हुआ, 6 संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज, 3 को हिरासत में लिया गया। महाराष्ट्र में आयुर्वेदिक दवा निर्माताओं पर बड़ी कार्रवाई, 10 कंपनियों के लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द, 135 को नोटिस। गाजियाबाद में फैक्ट्री में सो रहे सुपरवाइजर की गर्दन पर कैंची से ताबड़तोड़ वार, खून से लथपथ मिला शव। मोतिहारी में स्कूल बस ने 2 राहगीरों को मारी टक्कर, 1 की हालत गंभीर, गुस्साई भीड़ ने बस में की तोड़फोड़।
सोशल मीडिया के साथ ही कारोबार जगत और कोर्ट तक छाई जेंजी। 15 अगस्त को लाल किले में भी जेंजी से को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की तैयारी में जुटी सरकार। होर्मुज डील की उम्मीद और सेंट्रल बैंक की खरीद से 10 हफ्तों के हाई पर पहुंचा गोल्ड। इंटरनेशनल मार्केट में एक हफ्ते में सोने 7 और चांदी 10% महंगी हुई। टमाटर प्याज और आलू महंगे होने की वजह से जुलाई में वेज थाली 4% महंगी होकर 28.10 रुपये पर पहुंची। सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने से डीजल में एथेनॉल मिलाने का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। जांच में एथेनॉल के इस्तेमाल से फ्लैश पॉइंट घटने की बात सामने आई। 13 मई से 2 अगस्त के बीच सोना चांदी और प्लैटिनम के इंपोर्ट से सरकारी खजाने में करीब 10,500 करोड़ का आया। वहीं कुल रिसिप्ट में सोने का योगदान 10,000 करोड़ रूपये का। पश्चिमी कोलंबिया में आए जबरदस्त भूकंप की वजह से भारी तबाही। 7.4 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 132 लोगों की मौत हुई। पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टर्की से लौटे हुए एक गुप्त मिलिट्री फ्लाइट ली, वहीं जबकि व्हाइट हाउस का कहना था कि वो एयरफोर्स वन में सवार थे। ईरान के सुप्रीम लीडर मोसबा खामेनेई ने शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और सशस्त्र बलों में 6 नई नियुक्तियां की। मेजर जनरल पायलट अली अब्दुल्ले को सशस्त्र बलों का चीफ ऑफ स्टाफ और ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को आईआरजीसी का कमांडर इन चीफ बनाया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा, उत्तर कोरिया रूस की मदद के लिए सैनिकों की एक और टुकड़ी और मिसाइलें भेजने की कर रहा है तैयारी। सीरिया की अदालत का बड़ा फैसला, पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को हत्या और हत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया मौत की सजा।

0: joys of finding myself. That's my moment of Sarah.
1: बहुत टायर्ड हो गई. Take a date,
2: not bites. No added sugar, preservative के बिना. Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया. Lion Dates Nut Bites.
3: Lion Date Nut Bites.
4: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम.
5: AU
6: सोच बदलो और बैंक भी.
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील TMT से बना.
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड.
10: बिजली का बिल पेड
11: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया.
12: कैसे?
11: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने. भीम ऐप से करो पे.
12: इतना माही वे.
13: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
14: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक.
13: विमल बोलो जुबां केसरी. हिंट बड़े आराम से.
15: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले. पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें.

क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिसीमन बिल पर अटकलों के बीच सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट के सभी 8 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि शायद शरद पवार का हृदय परिवर्तन होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद गुट के सांसद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका दल पाला बदलने वाला है। वैसे बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट के सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच करीब आधे घंटे की बैठक हुई। एनसीपी एसपी सांसद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने महाराष्ट्र में सूखे और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई। इससे पहले भी एनसीपी शरद गुट ऐलान कर चुका है कि वो परिसीमन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, लेकिन सियासत में जो होता है वो कहा नहीं जाता है, और अक्सर जो कहा जाता है वो होता नहीं है। बार बार पीएम मोदी से शरद पवार या उनके सांसदों का मिलना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, इससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है। इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष क्यों बेचैन है, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि पीएम से मिलते जुलते रहते हैं। इधर शिवसेना यूबीटी पूछ रही है कि परिसीमन बिल से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी। हालांकि सुप्रिया सुले ने प्रस्तावित एफसीआरए बिल के प्रति अपनी पार्टी के कड़े विरोध को दोहराया और मांग की कि इसे वापस लिया जाए या जेपीसी को भेजा जाए। एफसीआरए बिल पर फडणवीस ने कहा कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, इस पर विपक्ष ऐतराज क्यों जता रहा है। फिलहाल इंडिया गठबंधन की नज़र शरद पवार के अगले कदम पर है। उन्हें आशंका है कि पवार परिसीमन बिल का समर्थन करने के बहाने एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पवार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे या एनडीए में जाएंगे ये बात सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही जानते हैं। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद थी, लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन और छात्रों पर पुलिस एक्शन की सियासी टेंशन से विपक्ष का एजेंडा बदल गया। लेकिन अब जब मानसून सत्र के महज 3 दिन शेष है तो विपक्ष इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की तैयारी में लगा है। विपक्ष अब भी इस मुद्दे को धार देने की कोशिश में है। यही वजह है कि 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया। यानी विपक्ष की रणनीति यही है कि यूपी के चुनाव से पहले आस्था के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए। हालांकि बीजेपी विपक्ष की रणनीति के जवाब में लगी है। योगी आदित्यनाथ के जनसभाओं और रैलियां में विपक्ष पर हो रहे हमलों में इसकी साफ झलक दिख रही है। माना जा रहा है कि छात्रों के मुद्दे के साथ साथ संसद में आज चढ़ावा चोरी पर भी जबरदस्त उबाल दिखेगा। आज तक ब्यूरो।
2: संसद में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के सीधे टकराव की तस्वीरें हैं। एक और एनडीए सांसद झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमलावर है। दूसरी ओर विपक्ष चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आक्रामक है। इन दोनों ही मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में तकरार है और उसका असर यूपी की सियासत में भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रयागराज में राहुल के कार्यक्रम के बाद छात्रों का मुद्दा भी यूपी के चुनाव से पहले अहम हो गया है। वहीं चढ़ावा चोरी का सवाल तो सीधे यूपी की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि एक ओर बीजेपी और एनडीए राहुल गांधी पर हमलावर है तो अब सीएम योगी ने भी राहुल गांधी को सीधी चुनौती दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है तो उत्तर सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है। गृहमंत्री अमित शाह विद्यार्थियों से जुड़े विषय पर सदन में विस्तार पूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूर्णतः तैयार है। कांग्रेस और समूचे विपक्ष से अपेक्षा है कि तथ्यों का सामना करें, सदन की गरिमा बनाए रखें और उत्तर को पूरा सुने। लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद। समाजवादी पार्टी की रणनीति तैयार थी, कांग्रेस भी साथ था, इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन था, सरकार की घेराबंदी का पूरा खाका तैयार था। लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन, छात्रों पर पुलिस एक्शन पर सियासी टेंशन से विपक्ष का एजेंडा बदल गया। लेकिन अब छात्रों के मुद्दे की गूंज है और चढ़ावा चोरी पर भी संग्राम है। यूपी में इन दोनों ही मुद्दे पर सियासी रणनीति तैयार होनी शुरू हो गई है। आज तक पेरो।

0: पेट्रोल की बढ़ती लागत और E20 पेट्रोल को लेकर बनी आशंकाओं के बीच कार खरीदारों की पसंद बदलती दिख रही है। जो लोग कल तक पेट्रोल गाड़ियों को पहली पसंद मानते थे, वो आज CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का हिसाब किताब लगाने में जुटे हैं। नतीजा ये है कि भारतीय ऑटो बाजार में अल्टरनेट फ्यूल गाड़ियां पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से सड़क पर उतर रही हैं, जिससे CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल गाड़ियों की बादशाहत को पहली बार इतनी बड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि जुलाई में कुल बिक्री में CNG, हाइब्रिड और EV गाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़कर 40.6% पर पहुंच गई। वहीं पेट्रोल गाड़ियों की हिस्सेदारी 41.7% पर आ गई। एक साल पहले दोनों के बीच करीब करीब 13% पॉइंट्स का अंतर था, जो अब महज 1% अंक पर आ गया है। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह कम रनिंग कॉस्ट मानी जा रही है। साथ ही E20 पेट्रोल को लेकर भी ग्राहकों के बीच कई सवाल बने हुए हैं, जिससे CNG वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 24% पर पहुंच गई है। वहीं EV का हिस्सा भी बढ़कर करीब 8% हो गया है। उधर हाइब्रिड गाड़ियों की मांग भी लगातार बढ़ रही है और अल्टरनेटिव फ्यूल वाहनों और पेट्रोल वाहनों की हिस्सेदारी के बीच का अंतर तेजी से घटा है। ऑटो डीलर्स का कहना है कि E20 पेट्रोल को लेकर बाजार में काफी भ्रम है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक शिकायत सामने नहीं आई है जिसमें E20 की वजह से गाड़ियों में दिक्कत साबित हुई हो। दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव ऐसे समय में आ रहा है जब कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री भी मजबूत बनी हुई है। नई लॉन्चिंग और वैकल्पिक ईंधन वाले मॉडल्स की बढ़ती संख्या ग्राहकों को आकर्षित कर रही है। डेटा के मुताबिक जुलाई में पैसेंजर व्हीकल रिटेल बिक्री में 19% से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं CNG का सबसे बड़ा वैकल्पिक ईंधन सेगमेंट बना हुआ है। उधर EV और हाइब्रिड गाड़ियां भी तेजी से बाजार हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं और इससे ऑटो बाजार में ईंधन का समीकरण तेजी से बदल रहा है। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में ग्राहकों का फोकस इंजन से ज्यादा रनिंग कॉस्ट और फ्यूल एफिशिएंसी पर रहेगा। साफ है, भारतीय कार बाजार में बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। पेट्रोल गाड़ियां अभी नंबर 1 है, लेकिन CNG, हाइब्रिड और EV तेजी से उनके बराबरी की तरफ बढ़ रही हैं। अगर यही रफ्तार बनी रही तो पेट्रोल गाड़ियों और अल्टरनेटिव फ्यूल वाहनों के बीच का अंतर खत्म हो जाएगा। आदित्य के राणा, आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

भी हंगामे के आसार। गृहमंत्री के बयान के बाद एफसीआरए बिल भी लेकर तकरार। कांग्रेस टीएमसी बिल के खिलाफ, डीएमके बीजेडी ने भी जेपीसी को भेजने की मांग की। बिल को लेकर सस्पेंस। संसद में संग्राम के बीच राष्ट्रवाद वाला दांव। थोड़ी देर में भारत मंडपम से निकलेगी एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। हर घर तिरंगा के संदेश के साथ नेशनल स्टेडियम तक मार्च। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर लोकसभा में पेश की जाएगी जांच रिपोर्ट। सरकारी आवास से मिले जले नोट मामले में 3 सदस्यीय कमेटी ने की जांच। झारखंड छात्र आंदोलन का 19वां दिन। मांगों पर अड़े छात्र, सरकार से टकराव जारी। सीएम सोरेन का बीजेपी पर हमला। पहले भगवा चोला पहनकर बीजेपी आई या प्रदर्शनकारियों का भेष। मुंबई के विलेपार्ले में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग। 11वीं मंजिल पर हादसे में एक बच्चे समेत 2 की मौत। 15 लोग सुरक्षित निकाले गए। करीब 3 घंटे बाद आग पर नियंत्रण।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ पूजा। सुबह के 8 बजे है और वक्त हो गया है खास बुलेटिन सुपर रात का। दरअसल इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपके सामने होंगी। बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की सबसे पहले, साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए क्या क्या पूछे गए हैं सवाल। बताएंगे कि रांची में क्यों छात्र धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। साथ ही खबर जस्टिस वर्मा पर लोकसभा में पेश की जाने वाली एक रिपोर्ट की। संसद में अब एफसीआरए पर नई टेंशन भी, बताएंगे आपको उसकी पूरी डिटेल। खबर कोलकाता से भी होगी जहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि मुंबई में कहां पर भयंकर हादसा हुआ है और बताएंगे कि उत्तराखंड में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर क्या अपडेट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की खबर के साथ, जहां इस वक्त भारत मंडपम से सभी एनडीए सांसद तिरंगा बाइक रैली निकाल रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सांसद ये रैली कर रहे हैं। भारत मंडपम से रैली की शुरुआत हो रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। नेशनल स्टेडियम तक सांसद इस रैली को निकालेंगे और सांसदों का ये अभियान हर घर तिरंगा अभियान का ही एक हिस्सा है। एनडीए सांसदों की ये तिरंगा बाइक रैली मंगल मिलन कार्यक्रम के बाद हो रही है, जिसमें पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने तिरंगा लहराया। भारत मंडपम से इसकी शुरुआत हुई है आयोजन की तिरंगा बाइक रैली। थोड़ी देर में एनडीए सांसदों की रैली की शुरुआत हो जाएगी, तैयारी पूरी हो चुकी है, तस्वीरें भी सामने आने लगी है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये रैली हो रही है। हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, क्या अपडेट है, बस कितनी देर में सांसदों की तिरंगा रैली शुरू होने वाली है?
1: बिल्कुल, देखिए ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए इस तिरंगा रैली में पूजा सिर्फ नेता नहीं, सिर्फ सांसद नहीं, बल्कि आपको सबसे आगे जो नजर आएंगे वो देखिए एनएसजी कमांडोज, यहाँ पे आपको सीआरपी के जवान नजर आ रहे हैं अपनी देखिए तमाम बाइक के साथ, जो ये पूरा आगे की तरफ चलेंगे। और ये तैयारी है आपको दिखेगी जो भारत मंडपम में जो इस वक्त तैयारी है, अगर दूर तक अगर आपकी निगाह जाए तो हर तरफ आपको अगर कुछ नजर आएगा तो चारों तरफ तिरंगा आपको नजर आएगा। और ये छठी रैली है, 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी और आप ये देखिए यहाँ पर जैसे जैसे अगला साल बीत रहा है जो तैयारी है, जो रंग है वो और यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो फोर्सेस के जवान,
0: चलिए ठीक है मानशु, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही रैली शुरू होगी तुरंत आपके पास लौटेंगे। उधर दिल्ली में ही केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भी हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने रैली निकाली है, वो तस्वीरें देखिए। दिल्ली में अब रैली की शुरुआत होने वाली है और मनसुख मांडविया ने भी वॉलंटियर्स के साथ रैली निकाली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये वॉलंटियर्स हैं जिनके साथ वो रैली कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत एनडीए सांसदों ने इसका आयोजन किया है। तो वहीं श्रीनगर में भी आज तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। वहां पर एसकेआईसीसी में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई है। ये तस्वीरें श्रीनगर की आप देख रहे हैं, यहां पर भी तिरंगा रैली की शुरुआत हुई। यहां एसकेआईसीसी में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई है। तो जहां भारत मंडपम से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। अब आपको बता देते हैं कि दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य हिस्से ऐसे हैं यहां पर हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की जा चुकी है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली श्रीनगर से जो सामने आ रही हैं। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस को शान से मनाने की अपील की, साथ ही उन्होंने ये कहा कि हर घर तिरंगा लहराया जाएगा।
2: 15 अगस्त को आन बान शान से मनाए, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दे, विकसित भारत का संकल्प ले। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
3: भारत माता की जय।
0: अब खबर रांची की, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन आज 19वें दिन भी जारी है। राज्य सरकार और छात्रों में 10 अगस्त के एक्शन के बाद से फिलहाल कोई भी बातचीत नहीं हुई है। छात्रों ने पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। अब फिर से दोहराया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्र इस बात पर अड़े हुए हैं, 19वां दिन है ये प्रदर्शन का और अभी भी छात्रों का धरना प्रदर्शन उसी तरीके से उसी जज्बे के साथ अभी भी जारी है। छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो प्रदर्शन जारी रखेंगे।
4: जो हमारी आगे की रणनीति है, हम लोग अब कुछ ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द हम लोग यह घोषणा करने जा रहे हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और कुछ सख्त कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक प्रशासन से सरकार से अनुनय भी नहीं किया है, बदले में सरकार ने हम लोगों पे लाठियां चलाई हैं। अब हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं कि जो महाजुटान हम लोगों का हुआ था विधानसभा घेराव का, रणनीति बिल्कुल तैयार कर रहे हैं। सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो उसी प्रकार का कुछ ठोस कदम हम लोग उठाएंगे।
0: तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के अनशन का आज 11वां दिन है। सदर अस्पताल में भर्ती हैं वो। देवेंद्र नाथ महतो ने वहीं से एक दिन पहले संघर्ष और इंसाफ के नाम खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने विधानसभा घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी सहयोगियों को धन्यवाद कहा है। साथ ही मांग की है कि शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई हो। उन्होंने ये भी कहा है कि समर्पण न्याय तक संघर्ष जारी रहे। उधर रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद से आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सियासत जबरदस्त चल रही है। बीजेपी से हेमंत सोरेन सरकार को घेरने में जुटी हुई है।
5: छात्र अड़े हुए हैं, उनका जुलूस मार्च और धरना प्रदर्शन भी जारी है, उसके साथ ही सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। छात्रों की मांगों के समर्थन में बीजेपी खुलकर फ्रंट फुट पर खेल रही है। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर 10 अगस्त को हुए पुलिस एक्शन को लेकर सोरेन सरकार को घेर रही है।
6: जब शांतिपूर्ण ढंग से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो फिर रास्ता में क्या बोलते हैं, ब्लेड वायर, कटेली तार, ये सब किन के आदेश से लगाया गया।
5: बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा है कि ये झारखंड का युवा है, 1857 की क्रांति के पहले ही हम 1855 में फूल क्रांति कर चुके थे। अभी रांची की सड़कें छात्रों से भरी पड़ी हैं, न्याय तो हम लेंगे ही। वहीं मुख्यमंत्री सोरेन बीजेपी पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं।
7: आज छात्रों की आड़ में
5: मंगलवार को विधानसभा में बोलते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि परजीवी लोग मामले में राजनीति कर रहे हैं।
7: ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे।
5: तेज सियासत के बीच सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी ने चौंकाने वाला बयान दे दिया।
8: कल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बाल बाल बच गए। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लोग, सदन यहाँ चल रहा है लेकिन मुख्यमंत्री आवास में धरना दिया, वो धरना नहीं था, वो हत्या करने का प्रयास था।
5: सियासी घमासान के बीच छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे हुए हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार आज एक बार फिर प्रदर्शनकारी छात्रों से संपर्क कर सकती है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
0: अब खबर संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हुई। मानसून सत्र में अब महज 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन अब तक दोनों सदनों में सियासी शोर जारी है। छात्रों पर एक्शन और चढ़ावा चोरी के मामले के बीच अब FCRA बिल को लेकर सियासत तेज है। संभावना जताई जा रही है कि इस बिल को सरकार आज सदन में पेश करने की कोशिश कर सकती है। खबर तो ये भी है कि सरकार इसे JPC को भेजने पर विचार कर रही है। इस मुद्दे पर सस्पेंस कायम है। अब आज तस्वीर साफ होने की उम्मीद की जा रही है।
5: सरकार के सामने विरोध के 3 मोर्चे हैं। पहला है चढ़ावा चोरी का, दूसरा है छात्रों का मुद्दा और तीसरा मोर्चा है FCRA का। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026 पर भी विपक्ष ने विरोध की आवाज बुलंद की है। संसद के मानसून सत्र में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 13 अगस्त आखिरी दिन है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है FCRA बिल कब पेश किया जाएगा। वैसे माना जा रहा है कि आज सरकार FCRA बिल को पेश करने की कोशिश करेगी। इस बिल को लेकर सरकार को घेरने में विपक्षी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी।

0: चाहती है इसे जेपीसी के पास भेजा जाए। डीएम के दुविधा में है, जो चाहती है कि या तो बिल वापस लिया जाए या उसे जेपीसी के पास भेजा जाए।
1: लेकिन सरकार के नियत में, मैंने कहा नियत में खोट है, इसका मकसद कोई पारदर्शी तरीके से एक नियंत्रित ढंग से उसका उपयोग हो या फिर उसका उपयोग दुरुपयोग ना है, एंटी नेशनल को एक्टिविटीज में वो पैसे का उपयोग हो, ऐसी बात को सरकार को देखना चाहिए, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य ये नहीं था, उनके उद्देश्य ये था कि कैसे हम एक तो पंजाब को चुनाव मान ले, फिर सबसे बड़ी बात है माइनॉरिटी को इससे वो प्रताड़ित करने का एक माध्यम वो बनाना चाहते हैं।
0: हालांकि सूत्र बताते हैं कि सरकार एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेजने पर भी विचार कर रही है।
2: जिस तरीके से देश में अन्य देशों से विदेशी फंड का दुरुपयोग किया जाता है, बहुत सारी असंवैधानिक गतिविधियों में उसका उपयोग किया जाता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उनको सहयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और चर्चा के बाद इस बिल को पास करना चाहिए।
0: एफसीआरए बिल को विपक्ष पूरी तरह असंवैधानिक बताता रहा है। तमिलनाडु विधानसभा में तो इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर चुका है। केरल और पूर्वोत्तर के कुछ संगठनों ने भी आपत्ति जताई है। ऐसे में सभी की निगाहें सरकार के भावी कदम की ओर है।
3: दुनिया का सबसे बड़ा
0: आज तक ब्यूरो।
4: तो इस बिल में तीन सेक्शन पर बवाल हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं, वो आपको समझाते हैं। विपक्षी दल एफसीआरए बिल के तीन सेक्शन को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि सेक्शन 14B एफसीआरए सर्टिफिकेट के खत्म होने की बात करता है। इसके तहत कहा गया है कि अगर कोई भी संस्था रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं करती है या उसका रिन्यूअल नामंजूर हो जाता है या रिन्यू हुए बिना ही सर्टिफिकेट की मियाद खत्म हो जाती है तो सर्टिफिकेट खत्म माना जाएगा। वहीं सेक्शन 16A के प्रावधान में अहम है कि किसी भी संस्था सर्टिफिकेशन खत्म हो गया हो तो उसे मिले विदेशी फंड और उसकी संपत्तियां एक निर्धारित अथॉरिटी के अधिकार में आ जाएंगी, यानी कि इस तरह की संपत्ति पर निर्धारित अथॉरिटी का कंट्रोल हो जाएगा। जिसे और वहीं तीसरा सेक्शन 16B पर विवाद है, उसके मुताबिक पुराने कानून के तहत पहले से ही किसी अथॉरिटी के अधिकार में आ चुकी संपत्तियों पर नए नियम लागू करने की इजाजत होगी। और विपक्षी दलों का आरोप है कि इसका सबसे ज्यादा प्रभावित ईसाई और मुस्लिमों से जुड़ी संस्थाएं होंगी। तो वहीं अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी हुई। उनके सरकारी आवास से जले हुए नोट बरामद होने के मामले में जांच की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की जाएगी। तीन सदस्य समिति ने मामले की जांच की है। पिछले साल मार्च में उनके सरकारी आवास पर जले हुए नोट मिले थे और इसके बाद उनका तबादला किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में तबादला कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने इस साल 9 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन राष्ट्रपति ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका नाम अभी भी लिस्ट में है। आपको बता दें कि 200 से ज्यादा सांसदों ने उन्हें हटाने की मांग करते हुए स्पीकर को एक याचिका सौंपी थी। स्पीकर ने तीन सदस्यों वाली एक जांच समिति बनाई थी और इस समिति की रिपोर्ट आज पेश की जाने वाली है। अब आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा का ये पूरा मामला आखिर है क्या। और देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से जले हुए नोट बरामद हुए थे पिछले साल, हमने देखा था मार्च 2025 में ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद स्पीकर की गठित कमेटी की अब रिपोर्ट सामने आने वाली है। पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा उन्होंने दिया, लेकिन वो इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। अब तक आज लोकसभा में इस रिपोर्ट को जारी किया जाएगा, जो जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी लोकसभा में, लेकिन अभी तक उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया गया है। वहीं अब खबर यूपी और पंजाब की, जहां पर चुनावी चाल चली जा रही है, दांव आजमाए जा रहे हैं, सियासी दल एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं। देखिए खास रिपोर्ट।
5: सभी को सम्मानित किया और अब वोकल है कि आइए हम उनको।
0: संत कबीर नगर पहुंचे योगी ने कल कहा कि अब मूर्ति दुर्गा पूजा पंडाल सुरक्षित है, कोई भय नहीं। उन्होंने पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए,
6: बच्चा लेता एडमिशन कहां लेता?
0: कहा कि समाजवादी पार्टी को चार बार सरकार बनाने का अवसर मिला था, लेकिन वो इंसेफ्लाइटिस को खत्म करने में नाकाम रहे। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाएगा। लगे हाथ राजभर ने अब्बू आजमी को चुनौती दे डाली कि अगर हिम्मत है तो अखिलेश से मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करवा कर दिखाएं। मंत्री का दावा है कि अब्बू आजमी ने ऐसा किया तो उन्हें ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।

0: जमाना जेन जी का है, तो हर दल उन्हें लुभाने में जुटे हैं। अब यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी ऐसी ही कवायद करती दिखी है। उन्होंने कहा है कि देश का जेन जी रोजगार, भर्ती और अन्य समस्याओं को लेकर परेशान है। एक दिन पहले मायावती ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने छात्रों और जेन जी से कहा कि वे राजनीतिक षड्यंत्र से दूर रहें। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी है। अब पार्टी के 15 विधायकों ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है और उनसे मिलने का समय मांगा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधायक राहुल से मिलकर 2027 के चुनाव पर और पार्टी में जारी खटपट पर भी बात कर सकते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने जॉम्बी ड्रग से जुड़ा ये वीडियो पोस्ट किया तो पंजाब में सियासत में घमासान शुरू हो गया है। आप उनके खिलाफ हमलावर हैं। पार्टी का कहना है कि बीजेपी एमपी पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उनसे माफी की मांग की है। हालांकि भज्जी ने कह दिया है कि मुझे ट्रोल करने की बजाय सरकार इस गंभीर समस्या को कंट्रोल करने का उपाय करे।
1: तो वहीं पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक बार फिर से बंगाल में नारेबाजी की गई। इस बार ये नारेबाजी कोलकाता में ही हुई है। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अपमान के विरोध में ममता उतरी और तभी कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए।
0: 3 दिन में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब ममता बनर्जी के खिलाफ भीड़ ने ऐसी नारेबाजी की हो। 9 अगस्त को उत्तरी 24 परगना में कुछ लोगों ने विरोध किया, नारेबाजी की, ममता की कार पर हमला भी किया था। अब 11 अगस्त को कोलकाता में कुछ ऐसे ही नारे लगे। यहाँ ममता बनर्जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अपमान के खिलाफ सड़क पर उतरी थी। नेताजी पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज के विवादित बयान को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। वो कोलकाता के श्याम बाजार में नेताजी की मूर्ति के सामने पहुंची और नेताजी के सम्मान में गीत भी गाया, तभी ये नारेबाजी हुई। कोलकाता में नारेबाजी से नाराज ममता ने उत्तरी 24 परगना का हवाला देते हुए फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है।
2: जो पत्थर मारा गया था हमारा गाड़ी में, जो बड़ा बड़ा ईंट, उसमें हमारा चेस्ट में पेन हुआ था। आज भी आने के लिए हम रेडी नहीं था, लेकिन तब भी हम लोगों ने सोचा कि ये प्रोग्राम हमारा आईटी टीम का है, हम क्यों ना जाए। इसी के लिए हम लोगों ने आई हुई है। किसको अरेस्ट करेगा नहीं करेगा, पुलिस का काम है तृणमूल कांग्रेस को अरेस्ट करना। आज भी हमारा तृणमूल कांग्रेस का भवन में जाके हमारा उपासना प्रियंका, ये जो लोग पापा, ये लोग जो थे, ये लोगों के ऊपर बीजेपी को लेकर पुलिस जाके अत्याचार किया है।
0: टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के समर्थकों ने जानबूझकर विरोध प्रदर्शन किया ताकि ममता के कार्यक्रम में बाधा डाली जा सके और उनका अपमान किया जा सके। हालांकि बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और टीएमसी के बागी रत्नव्रत बनर्जी ऐसी नारेबाजी से हैरान नहीं है।
3: मुझे लगता है 15 साल का जो रेजिम, जिसका हॉलमार्क है ऑर्गेनाइज लूट एंड लीगलाइज प्लंडर, इसका एक डायरेक्ट रिलेशन ये चोट चोट चांद से है। लोग स्पॉन्टेनियसली ये सब बोल रहे हैं बाहर निकलकर।
0: ममता के विरोध में लगे नारों के बीच अब सियासत फिर से तेज। तापस सेन गुप्ता, कोलकाता आज तक।
1: अब खबर अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुका है। दरअसल आज दूसरा दिन है और पहले दिन कल 18 में से 8 उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए। मंगलवार को चयन प्रक्रिया के पहले दिन 10 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के इंटरव्यू लिए गए। जानकारी के मुताबिक इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों से कई अहम सवाल पूछे गए। उनसे प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सवाल भी पूछे गए हैं। उनके व्यवहार कुशलता के बारे में भी उनसे पूछा गया। साथ ही ये भी पूछा गया है कि क्या वो शिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं या फिर शुद्ध शाकाहारी हैं या मांसाहारी भोजन खाते हैं। शराब के सेवन को लेकर भी उनसे सवाल जवाब हुए और अब आज बाकी शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के इंटरव्यू पूरे किए जा सकते हैं। खबर मुंबई से जुड़ी। दरअसल विले पार्ले वेस्ट इलाके में एक बहुमंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर देर रात भीषण आग लगी। आग और धुएं के बीच बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई है। इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 15 लोग वहां पर फंसे हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 15 लोगों को वहां से बचाया गया है। 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस हादसे की खबर लगते ही बीती रात दमकल की करीब 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। सुपर एट में यहां वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: आगे आगे,
7: अरे उधर
6: उधर गया,
7: करेक्ट करेक्ट,
8: मिल गया। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
3: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
4: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
5: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
6: लायन डेट नट बाइट्स।

0: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: I wake up wearing some

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: बिजली का बिल पेड
2: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
3: कैसे?
2: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
3: इतना माही वे।
4: In association with
5: Sarah Sanitaryware, it's your moment of Sarah. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
7: राजस्थान की सड़कों पर सैलाब, आसमान से आफत बनकर बरसा पानी, बूंदी से लेकर झालावाड़ बारिश ने किया हाल बेहाल। मानसूनी बारिश के चलते राजस्थान के कई इलाकों में हालात खराब हो गए हैं। ये तस्वीर राजस्थान के बूंदी इलाके की है, जहां कुछ घंटों की बारिश ने सड़कों पर सैलाब ला दिया। बूंदी के नागदी बाजार, सदर बाजार और मीरा गेट वाली सड़क पर पानी मानो नदी की तरह बहने लगा और इसकी चपेट में खड़ी कई बाइक और स्कूटी आ गईं, जो तिनके की तरह पानी के साथ बहने लगी। ये तस्वीर देखिए, जहां अपनी बाइक को बचाने के लिए बाइक सवार पानी में दौड़ा, लेकिन तेज बहाव के चलते उसे पकड़ नहीं पाया। बाइक ही नहीं, सड़क पर खड़ी स्कूटी भी पानी के तेज बहाव में बह गई। बूंदी ही नहीं, टोंक में भी आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। भारी बारिश के बाद टोड़ा रायसिंह इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया और इसकी चपेट में कई बाइक सवार आ गए। बूंदी ही नहीं, राजस्थान के झालावाड़ में भी बारिश से हाल बेहाल हो गया है। जहां लगातार हो रही बारिश के चलते एक सरकारी स्कूल में पानी भर गया और देखते ही देखते स्कूल एक टापू में तब्दील हो गया। स्कूल में पानी भर जाने की वजह से करीब 35 बच्चे और स्कूल टीचर फंस गए थे, जिनको बचाने के लिए SDRF टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को सुरक्षित निकाला। बूंदी से भवानी सिंह और झालावाड़ से चेतन गुर्जर के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: तांबे के आसार, गृह मंत्री के बयान के बाद एफसीआरए बिल पर भी तकरार। कांग्रेस टीएमसी बिल के खिलाफ, डीएम के बीजेडी ने की जेपीसी को भेजने की मांग, बिल को लेकर सस्पेंस। संसद में संग्राम के बीच राष्ट्रवाद वाला दाव, भारत मंडपम से निकल रही है एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। हर घर तिरंगा के संदेश के साथ नेशनल स्टेडियम तक मार्च, पूरा देश तिरंगामय। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर लोकसभा में पेश की जाएगी जांच रिपोर्ट। सरकारी आवास से मिले जले हुए नोट मामले में 3 सदस्यीय कमेटी की जांच। झारखंड छात्र आंदोलन का 19वां दिन, मांगों पर अड़े छात्र, सरकार से टकराव जारी। सीएम सोरेन का बीजेपी पर हमला, कहा परजीवी बीजेपी पहले भगवा चोला पहनकर आई या प्रदर्शनकारियों का भेष। मुंबई के विलेपार्ले में महुबन जिला इमारत में लगी भीषण आग, 11वीं मंजिल पर हादसे में एक बच्चे समेत 2 की मौत, 15 लोग सुरक्षित निकाले गए। करीब 3 घंटे बाद आग पर नियंत्रण।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: मुंबई के विलेपार्ले में बहुमंजिला इमारत में 11वीं मंजिल पर भीषण आग, 2 की मौत, 2 का अस्पताल में इलाज जारी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग और धुएं से मची अफरा तफरी में ऊपरी मंजिलों पर फंसे कई लोग। धुएं के कारण ऊपरी मंजिलों पर फंसे कई लोग, दमकल विभाग ने रेस्क्यू कर 6 से 15 लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट की आशंका के बीच जांच जारी। संसद के मॉनसून सत्र के सिर्फ 2 दिन बाकी, गतिरोध खत्म करने की कोशिशों के बीच हंगामे के आसार अभी भी बरकरार। एफसीआरए बिल पर सरकार विपक्ष आमने सामने, कांग्रेस ने बिल वापस लेने की मांग की। एफसीआरए बिल को जेपीसी भेजने का सरकार तैयार, लेकिन विपक्ष में मतभेद, टीएमसी कांग्रेस और डीएमके के अलग अलग। एफसीआरए में नया प्रावधान बना, विवाद की वजह विदेशी फंड और संपत्तियों की निगरानी के लिए अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव, विपक्ष ने जताई आपत्ति। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई को लेकर अमित शाह के जवाब पर अड़ा विपक्ष, सरकार बोली पहले हो उचित चर्चा फिर गृहमंत्री देंगे जवाब। झारखंड छात्र आंदोलन का 19वां दिन, मांगों पर अड़े हैं छात्र, जयपाल स्टेडियम में धरना अभी भी जारी। लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड के छात्रों का प्रदर्शन तेज, सरकार से आर पार के संकेत। छात्र आंदोलन के बीच परीक्षा सुधार की पहल, सरकार ने युवाओं से मांगे सुझाव, 8,500 युवाओं ने रखी अपनी बात। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद पर आंदोलन अभी भी जारी, सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग। देवेंद्र महतो ने अस्पताल से इंसाफ के नाम जारी किया खुला पत्र, अस्पताल में 10वें दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी, लिखा न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले पहले भगवा कपड़ों में भ्रम फैलाते थे, अब छात्रों के वेश में कर रहे हैं काम। वहीं लखनऊ की कंपनी पर भी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को बताया गलत, कहा लाठीचार्ज से युवाओं की आवाज नहीं दबेगी, रोजगार और शिक्षा की समस्याओं का समाधान करे सरकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का आरोप, बोले बीजेपी ने लोगों को भेजकर छात्रों को प्रदर्शन को भड़काने की कोशिश की। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर बोला हल्ला, कहा राजस्थान में 1920 पेपर लीक हुए तब चुप रही कांग्रेस, दिल्ली में हंगामा, झारखंड में भी साधी चुकी। अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के छात्रों का समर्थन किया, बोले सरकार तुरंत उनकी मांगे माने, छात्रों के खिलाफ हिंसा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। पीएम मोदी आज जारी करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा, ट्रिम्की ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का होगा विमोचन। विज्ञान भवन में सुबह 9:30 होगा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के संघर्ष और राष्ट्रपति पद तक के सफर पर आधारित आत्मकथा। भारत चीन सीमा पर शांति को लेकर एमईए का बड़ा बयान, रणधीर जायसवाल बोले एलएसी पर शांति और स्थिरता बेहद ही अहम, दोनों देश बातचीत जारी रखेंगे। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई की चार्जशीट पर आज कोर्ट का फैसला, करीब 20,000 पन्नों की चार्जशीट में 13 आरोपी। नीट यूजी पेपर लीक के आरोपी को झटका, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की याचिका खारिज। बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, प्रशांत किशोर ने कहा कि 1 से 2 साल में 10,000 बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने का दावा। बांकीपुर के बेरोजगार युवाओं से बायोडेटा जमा कराने की अपील, प्रशांत किशोर बोले देशभर में निजी कंपनियों में रोजगार दिलाने की करेंगे कोशिश। पश्चिम बंगाल विधानसभा का आज विशेष सत्र, कोलकाता हावड़ा वार्ड परिसीमन बिल पर होगी चर्चा, कोलकाता नगर निगम में 144 से बढ़कर 209 होंगे वार्ड। कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ लगे चोर चोर के नारे, नेताजी के सम्मान में टीएमसी के कार्यक्रम के दौरान हंगामा। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ की तलाश तेज, 5,200 आवेदनों में से करीब 18 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए गए। कर्नाटक विधानसभा सत्र से पहले सीएम की अहम बैठक, कल से शुरू हो रहे सत्र की रणनीति पर मंत्रियों और विधायकों संघों का मंथन। वाल्मीकि विकास बोर्ड घोटाले को लेकर बीजेपी जेडीएस का सरकार पर हमला, मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग, विधानसभा में हंगामे के आसार। कैशवेट रेजिडेंस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर जांच रिपोर्ट आज संसद में होगी पेशी, लोकसभा राज्यसभा में रखी जाएगी रिपोर्ट। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच कमेटी की रिपोर्ट संसद में होगी टेबल, दो खंडों के साथ मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य भी रखे जाएंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में संसद में आगे बढ़ेगी कार्यवाही, जांच रिपोर्ट में क्या निकला आज होगा इसका खुलासा। दिल्ली में एनडीए सांसद निकालेंगे तिरंगा बाइक रैली, भारत में अनुपम से नेशनल स्टेडियम तक निकाली गई यात्रा। ताजमहल में पूजा की मांग वाली याचिका पर आज आगरा कोर्ट में सुनवाई, स्मारक को तेजो महाले मंदिर बताने का दावा। हिमाचल में आधी रात से महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम, सेस के जरिए बढ़ोतरी। साइबर अपराध के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 3,718 फर्जी मोबाइल ऐप ब्लॉक, 11,158 करोड़ की ठगी रोकी गई। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक मामले में सोलापुर से एक और गिरफ्तारी, अब तक 16 आरोपी पुलिस के शिकंजे में। हिमाचल के कुल्लू में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, पहाड़ी में गिरे भारी पत्थर, मलबे की चपेट में आई कार, दो लोग सवार। गंगापुर में झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न, शहर में जलभराव के चलते लोगों को आवागमन में करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। बिजनौर में तेज बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हुई, बिजली घर में भी घुसा पानी, जलभराव से लोगों की बड़ी मुश्किल। ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पार्किंग एरिया जलमग्न, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। एयरपोर्ट के टर्मिनल से पार्किंग जाने वाले रास्ते पर भरा बारिश का पानी, यात्रियों को हुई काफी परेशानी, 30 मिनट में जलभराव साफ करने का दावा। कांगड़ा में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड, फोर लेन हाईवे और कांगड़ा शिमला एनएच पर यातायात प्रभावित। शिवपुरी में लगातार बारिश की वजह से आफत, सड़कें और अंडरपास जलमग्न हुए, एनएच 46 पर जलभराव से लगा जाम। भारी बारिश के चलते एक रेलवे अंडरपास में भरा बारिश का पानी, पानी भरने की वजह से गांव का टूटा संपर्क, लोगों को आवागमन में हो रहा है दिक्कतों का सामना। बूंदी में दो दिन की लगातार बारिश से शहर जलमग्न, सड़कों ने लिया नदी का।

जम्मू कश्मीर में बारिश से उफनाए दरिया, बमियाल की सड़क पर बह रहा जलालिया का पानी। पठानकोट के बमियाल सेक्टर में बाढ़ जैसे हालात, उफान पर उजो और जलालिया दरिया। महीसागर में भारी बारिश के कारण हुआ जलभराव, एक गांव का दूसरे गांव से टूटा संपर्क, 25 से 30 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पौड़ी में बारिश ने बढ़ाई छात्र की मुसीबत, एक साल से नहीं बना बहा पुल, उफनते पानी और जंगल के रास्ते स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। महाराष्ट्र के ठाणे में जोरदार बारिश से नदी नालों में उफान, जलाशय और झीलें भी लबालब भरी हुई नजर आई, नदी किनारे बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा। मुजफ्फरनगर में दिखा भक्ति का अलग रंग, स्कूटी से गंगा जल लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचे ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर परशुराम शर्मा। हरिद्वार से हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचे 85 साल के बुजुर्ग चंद्र का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। हरिद्वार से कावड़ लेकर पहुंचने पर गांव वालों ने किया स्वागत। कावड़ यात्रा के दौरान यूपी के बागपत में कावड़ियों के साथ बारिश में व्यवस्था संभालते दिखे पुलिस वाले, एसपी खुद बारिश में व्यवस्था बनाते दिखे। यूपी के सहारनपुर में है महाभारत कालीन अनोखा शिव मंदिर, मान्यता है कि इस मंदिर को दुर्योधन ने बनवाया था और भीम ने दिशा बदली थी। अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए मशहूर इस पश्चिम मुखी शिव मंदिर में मन्नतें लेकर दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु, यहां पर सावन में लगता है मेला।

0: चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। एनडीए सांसदों की बाइक तिरंगा रैली की शुरुआत हो चुकी है, वो तस्वीरें सामने आ गई है भारत मंडपम से इसकी शुरुआत हुई है। हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए ज्यादा जानकारी। हिमांशु तस्वीरें दिखाइएगा, कैसा नजारा वहां पर है?
1: जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अभी उपराष्ट्रपति और एनडीए के तमाम जो नेता थे उन्होंने झंडा दिखाया और बाइक रैली की शुरुआत की। अब तमाम जो तमाम नेता थे, एनडीए के तमाम सांसद यहाँ पहुंचे थे, वो सभी अब बाहर जो बाइक थी उस पर आप देखिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सबसे आगे यहाँ पर एनएसजी के कमांडोज हैं, उसके बाद सीआरपी के कमांडो हैं जो अपनी बाइक से पहुंचे हैं। तो ये पहली बार है जब इस तरीके से कमांडोज भी शामिल हो रहे हैं जो सबसे आगे इस पूरी रैली में रहेंगे। उसके बाद तमाम जो नेता हैं, एनडीए के सांसद हैं, वो सभी लोग यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार ये छठा साल है जब ये होने जा रहा है, क्या संदेश देंगे?
2: इस तिरंगा यात्रा से देश में एकता, अखंडता, भाईचारा, सद्भाव मजबूत होता है और राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है।
1: ये देखिए, ये तमाम नेता लोग पहुंचे हुए हैं और अब शुरुआत हो चुकी है। तकरीबन पूजा आप कहें तो 4 किलोमीटर, 3 से 4 किलोमीटर का ये पूरा रन है जो शुरू होगा यहाँ से भारत मंडपम से जहाँ पर हम मौजूद हैं और नेशनल स्टेडियम तक जाएगा। तो ये आप देखिए, ये इस वक्त हम मौजूद हैं भारत मंडपम में जहाँ से अब तमाम जो बाइक्स हैं और ये आगे कुछ लोग जो अपनी गाड़ियों पे मौजूद हैं, ये सभी लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और सीधे नेशनल स्टेडियम जाएंगे। इस पूरे रूट को सैनिटाइज किया गया है, ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद है ताकि कहीं किसी तरीके की न सिक्योरिटी और न ही किसी और तरीके की बाधा हो। तो पूरे रास्ते को सैनिटाइज किया गया है। अब आप देखिए, आपकी नजर जहां भी जाएगी आपको यहां पर तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा। जिस तरफ भी आपकी नजर जाएगी आपको तिरंगा ही तिरंगा पूजा नजर आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से एनडीए के कई सांसद, कई विधायक यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए किस तरीके से हाथ में तिरंगा लेकर के लोग मौजूद है और तिरंगा लहराते हुए। तो एक एक बाइक पर आप देखिए दो दो सांसद, दो दो नेता यहाँ पर मौजूद है जो आगे की तरफ आप देखिए पूरी तैयारी से। और आप अगर देखेंगी तो ज्यादातर नेताओं ने हेलमेट लगा के रखा गया है, हेलमेट पहन के रखा हुआ है, यानी कि सिक्योरिटी की पूरी यहाँ पर जो ट्रैफिक के रूल है उनका भी फॉलो किया जा रहा है। जी
0: हिमांशु, अभी आप वहां पर कौन से वो बड़े चेहरे देख पा रहे हैं जो इस रैली में शामिल हैं और उनसे बात भी करिएगा, वो इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर भारत मंडपम में जहाँ से इसकी शुरुआत है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आगे नेतागण जो मौजूद है, पीछे अगर हम आए तो यहाँ पर आप देखिए सीआरपी के जवान आपको नजर आएंगे। एक तरफ अगर आप देखें इस तरफ तो आपको यहाँ पे एनएसजी के जवान नजर आएंगे। तो तमाम जो नेता है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जबकि जो तमाम जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो भी साथ साथ है। तो कोऑर्डिनेट करके आगे निकालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि यहाँ पर
0: ठीक है। मानशु आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते वक्त हो गया है भाग्य चक्र का। देखिए भाग्य चक्र पंडित शैलेंद्र पांडे के साथ।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, रात के 11:06 तक, नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, प्रातः 7:59 तक, चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक, उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन हानि से बचाव करें, यात्रा में आज सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, धन के खर्चों पर ध्यान दें, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके
दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

राशि धन लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज

राशि, धन की समस्या दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, सेहत में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान की चिंता हो सकती है, यात्राओं में सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

हल होगी, धन की दशा में सुधार होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग होगा आज के लिए धानी।

लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शांति बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: कोलंबिया में मचा कोहराम। भूकंप के झटकों से कांपा साउथ अमेरिकी देश। ढहीं कई इमारतें, मलबे में दबे लोग, कोलंबिया में 10 अगस्त की सुबह तबाही का मंजर लेकर आई। सुबह करीब 7:30 बजे कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया, जिसके बाद हर तरफ कोहराम मच गया। ये तस्वीर कोलंबिया के पेरेरा की है, जहां भूकंप के तेज झटकों से इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके बाद हर तरफ हाहाकार मच गया। एक और तस्वीर देखिए, ये पेरेरा के एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां भूकंप के झटके आने के बाद टेबल के नीचे बैठकर अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। भूकंप से मचे हाहाकार की ये तस्वीर देखिए, जहां तेज झटकों से एक अस्पताल की इमारत का ऊपरी हिस्सा गिर गया और लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। पश्चिमी कोलंबिया के साथ साथ सेंट्रल कोलंबिया में भी कई इमारतें ढह गईं। पेरेरा, कैली, मणिजाले में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए, साथ ही कई लोगों के मलबे में भी दबे होने की आशंका है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र चोको इलाके में सैन जोसे डेल पाल्मार के पास था। भूकंप की गहराई 107 किलोमीटर थी। कोलंबिया की सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है और राष्ट्रपति ने इमरजेंसी कमेटी की बैठक बुलाकर राहत और बचाव अभियान तेज करने को कहा है। कोलंबिया में आए इस भूकंप के झटके इक्वाडोर, वेनेजुएला और पनामा तक महसूस किए गए हैं। इससे पहले वेनेजुएला में इसी साल जून में शक्तिशाली भूकंप आया था, जहां हजारों लोगों की मौत हुई है। आज तक ब्यूरो।
1: सोने में निवेश करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले लोग ज्वेलरी शॉप या बैंक का रुख करते थे, लेकिन अब मोबाइल ऐप पर कुछ क्लिक करके 10 रुपए से भी गोल्ड खरीदा जा सकता है। डिजिटल गोल्ड की इसी बढ़ती लोकप्रियता ने सरकार का ध्यान खींचा है। ऐसे में निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डिजिटल गोल्ड सेक्टर के लिए नए नियमों की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत डिजिटल गोल्ड के लिए अगले साल नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ सकता है। इसमें निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने पर फोकस होगा। इसके लिए DPMACI ने वित्त मंत्रालय, RBI और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के साथ चर्चा की है। दरअसल भारत में डिजिटल गोल्ड का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग छोटी रकम से भी सोने में निवेश कर रहे हैं और यही वजह है कि इस सेक्टर के लिए औपचारिक नियमों की मांग भी तेज हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 से 26 में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए करीब 10 टन सोना खरीदा गया। वही डिजिटल गोल्ड सेक्टर में भरोसा बढ़ाने के लिए ही DPMACI का गठन किया गया है, जिससे सेफ गोल्ड, MMTC, PAMP, ऑगमॉन्ट, फोन पे और गुल्लक जैसे प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं। डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बहुत छोटी रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। युवाओं और छोटे निवेशकों के बीच इसकी लोकप्रियता की बड़ी वजह यही है कि बिना ज्वेलरी खरीदे भी सोने में निवेश किया जा सकता है। निवेशक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि 10 या 100 रुपए जैसी छोटी रकम से भी डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। ये कंपनियाँ खरीदी गई मात्रा के बराबर सोना सुरक्षित वॉल्ट में रखने का दावा करती हैं और जरूरत पड़ने पर निवेशक इसे बेच सकते हैं या फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। दुनिया के कई देशों में डिजिटल गोल्ड के लिए नियम और निगरानी व्यवस्था पहले से मौजूद है। इस पहल के बाद भारत भी इसी दिशा में कदम बढ़ाता दिख रहा है। साफ है कि डिजिटल गोल्ड निवेश का लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। ऐसे में अगर नया रेगुलेटरी ढांचा लागू होता है तो इस बाजार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

संसद में संग्राम के बीच राष्ट्रवाद वाला दांव, भारत मंडपम से निकली एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। हर घर तिरंगा के संदेश के साथ नेशनल स्टेडियम तक मार्च, पूरा देश तिरंगामय। संसद में आज भी हंगामे के आसार, गृहमंत्री के बयान के बाद एफसीआरए बिल पर भी तकरार। कांग्रेस टीएमसी बिल के खिलाफ, डीएमके बीजेडी ने भी जेपीसी को भेजने की मांग की, बिल को लेकर सस्पेंस। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा को लेकर लोकसभा में पेश की जाएगी जांच रिपोर्ट। सरकारी आवास से मिले जले नोट मामले में 3 सदस्य कमेटी ने की है जांच। झारखंड छात्र आंदोलन का 19वां दिन, मांगों पर अड़े छात्र, सरकार से टकराव जारी। सीएम सुरेन का बीजेपी पर हमला, कहा परजीवी, बीजेपी पहले भगवा चोला पहनकर आई, अब प्रदर्शनकारियों का भेष। और मुंबई के विले पार्ले में बहुमंजिला इमारत में आग, 11वीं मंजिल पर हादसे में एक बच्चे समेत 2 की मौत, 15 लोग सुरक्षित बाहर निकले। करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया।

0: स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। रांची की बात करेंगे जहां पर छात्रों के धरना स्थल पर आधी रात क्यों पहुंची पुलिस, ये आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही कौन बनेगा अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ, इंटरव्यू का है आज दूसरा दिन, दिखाएंगे इनसाइड स्टोरी। देश में कहां कहां हो रही है मूसलाधार बारिश, दिखाएंगे जगह जगह से ग्राउंड रिपोर्ट। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 सौ शेयर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं घर घर तिरंगा यात्रा के साथ, जहां पर हर घर में तिरंगा हर दिल में तिरंगा का नारा है। 15 अगस्त में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में देशभक्ति के जज्बे को जगाने के लिए देश भर में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो चुका है। आज दिल्ली में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। भारत मंडपम से सांसदों की भव्य तिरंगा बाइक रैली शुरू हो चुकी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तिरंगा बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं सांसद भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक मार्च करेंगे, बाइक से तिरंगा लेकर वहां तक पहुंचा जाएगा। वैसे तो हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त से शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली का ये इवेंट मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस साल इसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है।
1: देखिए, तिरंगा केवल हमारा राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प की शक्ति का प्रतीक है, हमारी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक है। और इसीलिए ये जो आज बाइक रैली आप देख रहे हैं, हमसे पहले जो पीढ़ी आई जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको नमन करती है। आज का जो युवा है और जो आने वाली पीढ़ी हमारे देश का भावी नेतृत्व भी है, हमारे देश का भविष्य भी है, उसको सेलिब्रेट करती है। स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था स्वप्न स्वतंत्र भारत का, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है विकसित भारत का, जिसे इस देश का युवा इस संकल्प को सिद्धि तक निश्चित लेके जाएगा।
2: तिरंगा यात्रा आज पूरे भारत में निकाली जा रही है और छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक आज ये चिंता कर रहे हैं कि घर में तिरंगा छत पर लगाने के लिए आ गया कि नहीं आ गया। ये तिरंगा हम सबकी पहचान है, हमारे देश की आनबान शान है और हमारे देश के शहीदों ने इसी तिरंगे के लिए अपने बलिदान दिया था। आज इस पीढ़ी का फर्ज बनता है कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए देश को समर्पण करें और देश के लिए काम करें, इसलिए तिरंगा यात्रा हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, कहाँ तक पहुंची है ये यात्रा?
3: देखिए, टोटल 3 से 4 किलोमीटर का ये पूरा ट्रेवल है, जिसमें जो आगे का जो पूरा एग्जाम कह सकते हैं कि वो पहुंच चुका है, क्योंकि पूरे रोड को खाली कराया गया था, पूरे रोड को सैनिटाइज कराया गया था ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। आज वर्किंग डे है, इसलिए और ज्यादा पूरे ट्रैफिक पुलिस को मशक्कत कर ली थी। और उसके बाद जो पीछे जो आगे जो तमाम नेता लोग थे, जो जो सियासी और जवान थे, वो अपनी बाइक लेकर के नेशनल स्टेडियम पहुंच गए, जबकि पीछे जो काफी लंबी और बड़ी रैली थी आज ये आगे, जो आमतौर पर हमने देखा है कि जितने लोग उतरे थे उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि आज हमने देखा कि एनएससी के तमाम जो कमांडो थे वो शामिल थे, सियासी के कमांडो शामिल थे, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान शामिल थे और तमाम जो एनडीए के नेता थे वो अपने सहयोगियों के साथ इस रैली ज्वाइन किए थे। तो बहुत बड़ी रैली और सबसे बड़ी हमने इस बात देखी कि आगे की तरफ का जो पूरा हिस्सा था उसमें ऊपरी गाड़ियां लिए कई सारे नेता जो है वो पहुंचे हुए थे अपनी,
4: जो है वो पहुंचे हुए थे अपनी, तो जिसमें तिरंगा लेकर के उनके तमाम सहयोगी शामिल थे। तो एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी ये बाइक रैली निकाली गई, जिसमें नेता, आम लोग, जवान, सभी लोग शामिल हुए। और ये पूरा जो ट्रेवल है महज 10 मिनट की दूरी है, लेकिन ये लंबी रैली होने की वजह से, लंबा जो ज्यादा लोगों की होने की वजह से तकरीबन 20 मिनट हम कह सकते हैं कि पूरी रैली को स्टेडियम में पहुंचने में लग सकता है। और हमने देखा कि जो भी जो नेता आए थे, जो एनडीए के अलग अलग पार्टियों से जो एनडीए में शामिल है,
5: बलिदानियों से प्रेरणा लेकर के हम सब लोग देश के लिए योगदान करें, देश की युवा शक्ति की ऊर्जा देश को विकसित करने के लिए बने जुटे, इस दृष्टिकोण से तिरंगा यह रैली आयोजित की जा रही है।
6: नई पीढ़ी तमाम तरीके से हम देख रहे हैं देश भर में उनके मन में अलग विचार चल रहे हैं इस समय पर, नई पीढ़ी को क्या संदेश आप?
5: मुझे लगता है कि देश की नई पीढ़ी के मन में देश को विकसित करने का जज्बा, जोश और जुनून पुरानी पीढ़ियों की अपेक्षा कहीं बहुत अधिक है, कहीं बहुत ज्यादा है, और वो लोग पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ में देश को विकसित करने के संकल्प, क्योंकि वो ये जानते हैं कि देश का विकसित होना उनके लिए एक दिव्य अवसर है, क्योंकि उनके रहते ही देश उनके प्रयासों से, उनके योगदान से देश न केवल विकसित होगा अपितु वो विकसित देश में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त कर सके। थैंक यू।
7: भारत माता की
8: जय।
7: वंदे वंदे
8: मातरम।
7: वंदे
8: मातरम।
7: भारत माता की
8: जय।
5: भारत माता की
8: जय।
0: और इससे पहले आज केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में तिरंगा यात्रा में शिरकत की, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम तिरंगा यात्रा को लेकर मनसुख मांडविया ने इसे हरी झंडी दिखाई, और यहाँ पर दरअसल बाइक रैली नहीं बल्कि साइकिल रैली निकाली गई जिसमें छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मनसुख मांडविया खुद आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर इसकी अगुवाई करते हुए।
9: दिल्ली में माई भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। चलो हम सब लोग साइकिलिंग करके हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा सशक्त रहे, देश के युवा सक्षम रहे, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए रेगुलर साइकिलिंग करते रहे।
0: तो देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले जम्मू कश्मीर के कई जिलों में कल तिरंगा रैली निकाली गई थी। 6 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर श्रीनगर में सीआरपीएफ जवानों ने बाइक रैली निकाली, कुलगाम और शोपियां में तिरंगा रैली हुई। सबसे बड़ा आकर्षण गुलमर्ग में था जहां ऑल टेरेन व्हीकल से जवानों ने तिरंगा रैली निकाली। और ये ऑल टेरेन व्हीकल से निकाली गई रैली आप देख रहे हैं, ये दरअसल गुलमर्ग की तस्वीरें हैं जहां पर जवानों ने इसमें शिरकत की। ये भव्य नजारा दरअसल पूरे देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से निकाला जा रहा है। और अब बात रांची की, यहां से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर छात्र आंदोलन पर अभी भी बैठे हुए हैं। पंडाल से बिजली रात से काट दी गई है और माना जा रहा है कि छात्रों पर आंदोलन वापस लेने का दबाव बनाने के लिए ऐसा किया गया है। कल रात उस समय हड़कंप मच गया जब पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी धरनास्थल जयपाल स्टेडियम पहुंचे, और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के पहुंचने की खबर मिलते ही बीजेपी नेता भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना था कि असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए वहां गए हैं, जबकि बीजेपी का आरोप है कि छात्रों को हटाने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए वहां पर पुलिस आई थी। तो प्रोटेस्ट साइट से इस वक्त मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, बिजली जानबूझकर पंडाल से काटी गई है, जिस तरह के आरोप बीजेपी लगा रही है कि वहां पर पुलिस सिर्फ परेशान कर रही है छात्रों को, क्या है सच्चाई?
8: रात से ही काट दी गई थी जब वो अधिकारी सारे आए थे। देखिए आंदोलनों में ना रात को आंदोलन कैसे खत्म किए जाते हैं इसकी कई मिसालें हमने देखी हैं। तो सबसे पहले रात से बिजली काट दी गई और अब क्या ना आज बहुत तेज धूप है। अब यहाँ पंखे वंखे अगर चलाने हो तो छात्रों के पास अपना जनरेटर, अभी मैंने देखा जो इनके इलेक्ट्रीशियन थे वो तार वार जोड़ रहे थे। तो रात से ही यहाँ पर आसपास स्ट्रीट और पूरे इलाके के तो बिजली काट दी गई है। रात को क्या क्या हुआ था, बिजली कब से काटी फिर आपने?
10: बिजली 12:30 बजे जब प्रशासन यहाँ आई ना उसी समय से काट दिया गया। दो रिटर्न गाड़ी लगाया गया पूरा रोड में, जिस तरह विधानसभा में

0: छात्रों के नंबर ले गए, उनके परिवार वालों के नंबर ले गए। यहां तक कहा गया कि जो जेएचयू की जेएसपीसी की परीक्षा रद्द करने का ऐलान हुआ तो वो चले जाएं, आपको एडमिट कार्ड दिखाने होंगे, यहां सिर्फ सीजीएल वाले रहेंगे। और क्या होता है ना, 19 दिन के बाद एक आंदोलन की नियति क्या होती है, नहीं आपको मैं तस्वीर दिखाऊं। आज आपको वो भीड़ नहीं दिखाई देगी जो सुबह 9 बजे के बाद यहां पर आमतौर पर दिखाई देती है, क्योंकि कई सारे छात्र हैं ना, वो कहते हैं ना कि प्रशासन का डर सबको होता है। फिर अगर पंडाल का बाकी का हिस्सा देखेंगे, यहां पर भी बाकी दिनों के मुकाबले जो है वो छात्रों की जो संख्या होती थी वो कम दिखाई देती थी। आसपास के इलाकों में आते थे लोग सुबह चाय नाश्ता लेकर के, आज उसको भी आने में देरी हुई। हालांकि अभी कुछ लोग हैं जो स्थानीय मदद करने के लिए आए हैं, तो वो कुछ खाना नाश्ता लेकर के आए हैं। जो बचे कुछ यहाँ पर छात्र थे वो लाइन में लगे हैं।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस वक्त का अपडेट आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं कल रात की तस्वीर, जब आधी रात को पुलिस के पहुंचने के बाद वहां हड़कंप मच गया। पुलिस के पहुंचने की खबर मिलते ही बीजेपी के नेता भी वहां पहुंच गए।
2: पर पट्टी और हाथों में मशाल, पुलिस लाठी चार्ज के खिलाफ कल शाम रांची में छात्रों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। रैली में छात्र जो बैनर और पोस्टर लहरा रहे थे उस पर गौर कीजिए। जन्मदिन का रिटर्न गिफ्ट देने के लिए धन्यवाद, केक की तस्वीर के नीचे लिखा है लाठी चार्ज। एक अन्य प्लेकार्ड देखिए, हम छात्र हैं अपराधी नहीं। कुछ और नारों पर गौर कीजिए, लाठी के निशान मिट जाएंगे पर सवाल मिटेंगे नहीं। छात्रों पर लाठी चार्ज बंद करो और जेएसएससी सीजीएल रद्द करो। लाठी चार्ज के खिलाफ छात्रों में भारी गुस्सा है, छात्र बिना मांगे पूरी हुए हटने को तैयार नहीं है। इस बीच कल जयपाल स्टेडियम में उस समय सरगर्मी तेज हो गई जब पुलिस और प्रशासन के लोग छात्रों के बीच पहुंच गए।
3: टीम प्रशासन की टीम दोनों टीम आई थी, छात्रों से बातचीत भी करी गई है, हालचाल भी पूछा गया है, हालचाल पूछा गया है, बाकी लोगों से भी पूछताछ हुई है, कुछ लोगों को आइडेंटिफाई भी किया गया है। एक लड़का मिला भी था जो मास्क लगा के घूम रहा था, जिसने मास्क हटाने जब एसएसपी सर आए थे उन्होंने बोला कि अपना नाम बताइए मास्क हटाइए, तो बोलता कि क्यों हटाऊं मैं मास्क, क्यों मैं नाम बताऊं, क्यों ऐसा करूं। वो दूसरी स्टेट से आया हुआ था कम से कम, और ये जो मेन जो कोर कमेटी है वो लोग जो है कोर कमेटी वाले, उन्होंने वे खुद बोल रहे हैं कि हमारे बीच में कौन लोग आता है कौन नहीं आता है, हम वेरीफाई खुद नहीं कर पा रहे हैं।
2: छात्र नेताओं के मुताबिक पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने छात्रों से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की।
4: डीसी सर आए थे, एसएसपी सर आए थे, सिटी एसपी आए थे, बहुत सारे प्रशासन आए थे। हमारे जो भूख हड़ताल में उन लोग अपील कर रहे थे कि भूख हड़ताल तोड़ दीजिए, लेकिन हमारे साथी जो है सो भूख हड़ताल नहीं तोड़े। उनका कहना है कि ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जैसे सीजीएल एग्जाम रद्द नहीं हो जाती, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा इतना भी एग्जाम लिया गया है रद्द नहीं हो जाते हैं, जो सो हम जो है सो भूख हड़ताल नहीं तोड़ सकते हैं।
2: पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के पहुंचने की खबर जब बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को मिली तो तड़के वो भी मौके पर पहुंच गए।
5: पुलिस रात में शायद 1-1.5 बजे या 2 बजे ऐसे यहाँ आए, तो बता रहे 2 बजे पहुंचे थे। सिटी एसपी पहुंचे हैं, एसएसपी पहुंचे हैं और डीसी भी पहुंचे हैं, और बच्चों को हटाने के लिए, आंदोलन को समाप्त करने के लिए हो सके वो बल भी शायद प्रयोग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, और आंदोलन को कमजोर करने की ये कोशिश कर रहे हैं, लड़कों को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से भी यहाँ हमें लोग बताया गया।
2: छात्रों की मांगों के समर्थन में बीजेपी खुलकर फ्रंट फुट पर खेल रही है। वहीं मुख्यमंत्री सोरेन बीजेपी पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं।
6: आज छात्रों की आड़ में
2: मंगलवार को विधानसभा में बोलते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि परजीवी लोग मामले में राजनीति कर रहे हैं।
6: ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे।
2: तेज सियासत के बीच सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी ने चौंकाने वाला बयान दे दिया।
7: कल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी बाल बाल बच गए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लोग, सदन यहाँ चल रहा है लेकिन मुख्यमंत्री आवास में धरना दिया, वो धरना नहीं था, वो हत्या करने का प्रयास था।
2: सियासी घमासान के

0: छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे हुए हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार आज एक बार फिर प्रदर्शनकारी छात्रों से संपर्क कर सकती है। आशुतोष मिश्रा के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
1: और अब बात अयोध्या की करेंगे, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए इंटरव्यू का आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन 10 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के इंटरव्यू लिए गए। इंटरव्यू में 3 पूर्व आईएएस, 1 सेवानिवृत्त आईपीएस और 4 पूर्व सैन्य एवं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। अभ्यर्थियों से प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ राम मंदिर और भगवान श्री राम के प्रति उनकी आस्था से जुड़े सवाल पूछे गए। धार्मिक या सामाजिक संस्थानों के संचालन में उनके अनुभव और मंदिर के भविष्य को लेकर विजन को परखा गया। इंटरव्यू का अगला दौर आज भी जारी रहेगा। इंटरव्यू अयोध्या राम मंदिर परिसर में उत्तरी हिस्से में स्थित ग्रीन हाउस में बंद कमरे में लिया जा रहा है, जहां गोपनीयता बरती गई है। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, पहले तो प्रोसीजर बताइए इंटरव्यू का कल क्या रहा। वही प्रोसीजर जाहिर है आज भी फॉलो होगा। कितने लोग अभी तक इंटरव्यू दे चुके हैं और इसमें किस स्तर और किस लेवल के लोग शामिल हैं?
2: देखिए नेहा, सबसे बड़ी बात है कि ये 2 दिन जो सीईओ का है वो इंटरव्यू चल रहा है और इसमें पहले दिन तकरीबन 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 10 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से पूर्व आईपीएस थे, आईएएस थे, सेवानिवृत्त जो सेना से थे वो थे। इन सभी से जो प्रोसीजर है उसमें सवाल पूछा गया। एक तो जब उन्होंने सीवी दिया था उसके संदर्भ में भी सवाल पूछे गए, दूसरा उन्हें हिंदू आस्था से भी जुड़े हुए कई सवाल पूछे गए, तीसरा उनसे मांस मदिरा से जुड़े हुए कई सवाल पूछे गए, साथ ही साथ उनसे राम मंदिर का स्ट्रक्चर जब से बना है और राम मंदिर की कथा एक तरीके से पूरा उनसे जानकारी ली गई कि वो आखिर कितना इस बारे में जानते हैं। यहाँ तक जानकारी है कि कई बार जो ये भी पूछा गया कि वो जिस तरीके से पूजा पाठ होता है उसमें उनका क्या पार्टिसिपेट है, किस तरीके से वो करते हैं, कितना मानते हैं, तो आस्था का भी एक मानक रखा गया। ये सारे पॉइंट थे जिनको अलग अलग वेरिएशन किया गया। और ये इंटरव्यू आपको मैं बताऊं कि तकरीबन 45 मिनट एक व्यक्ति से इंटरव्यू लिया गया, जिसमें 3 सदस्य तो थे ही, साथ ही साथ वहां ट्रस्ट के सचिव भी मौजूद रहे, जो बारी बारी से उनसे परख रहे थे, उनको जांच रहे थे और उनसे इंटरव्यू ले रहे थे। बाकी क्योंकि 5,300 पूरे एप्लीकेशन थे, जिसके बाद से 55 लोगों ने तकरीबन बाद में शॉर्टलिस्ट किया और अब ये 18 लोगों का होना है, जिसमें से 10 लोगों का हो गया कल, आज 8 लोगों का और होना है, जिसके बाद ये फाइनल हो जाएगा। 3 नामों की शॉर्टलिस्ट दी जाएगी और उसमें से एक नाम चुना जाएगा। नया तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इंटरव्यू में हर उस चीज को पूछा जा रहा है जो राम मंदिर की आस्था से जुड़ा हुआ है।
1: और ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, देखना दिलचस्प होगा कि कौन चुना जाता है। अब बात संसद के मॉनसून सत्र की करेंगे। इस सत्र में अब महज 2 दिन बाकी हैं, लेकिन अब तक गतिरोध जारी है और छात्रों के पर एक्शन का मामला हो या फिर चढ़ावा चोरी का मामला हो, अब FCRA बिल को लेकर भी सियासत तेज है और संभावना यही जताई जा रही है कि इस बिल को सरकार आज सदन में पेश करने की कोशिश कर सकती है।
0: सरकार के सामने विरोध के 3 मोर्चे हैं। पहला है चढ़ावा चोरी का, दूसरा है छात्रों का मुद्दा और तीसरा मोर्चा है FCRA का। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026 पर भी विपक्ष ने विरोध की आवाज बुलंद की है। संसद के मॉनसून सत्र में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 13 अगस्त आखिरी दिन है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि FCRA बिल कब पेश किया जाएगा। वैसे माना जा रहा है कि आज सरकार FCRA बिल को पेश करने की कोशिश करेगी। इस बिल को लेकर सरकार को घेरने में विपक्षी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस और TMC चाहती है कि सरकार FCRA बिल को वापस ले, वही BJD चाहती है इसे JPC के पास भेजा जाए। DMK दुविधा में है, जो चाहती है कि या तो बिल वापस लिया जाए या उसे JPC के पास भेजा जाए।
3: लेकिन सरकार के नियत में ही, मैंने कहा नियत में खोट है। इसका मकसद कोई पारदर्शी तरीके से एक नियंत्रित ढंग से उसका उपयोग हो या फिर उसका उपयोग दुरुपयोग ना है, एंटी नेशनल को एक्टिविटीज में वो पैसे का उपयोग हो, ऐसी बात को सरकार को देखना चाहिए, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य ये नहीं था, उनके उद्देश्य ये था कि कैसे हम एक तो पंजाब को चुनाव मान ले, फिर सबसे बड़ी बात है माइनॉरिटी को इससे वो प्रताड़ित करने का एक माध्यम वो बनाना चाहते हैं।
0: हालांकि सूत्र बताते हैं कि सरकार FCRA बिल को JPC के पास भेजने पर भी विचार कर रही है।
4: जिस तरीके से देश में अन्य देशों से विदेशी फंड का दुरुपयोग किया जाता है, बहुत सारी असंवैधानिक गतिविधियों में उसका उपयोग किया जाता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उनको सहयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और चर्चा के बाद इस बिल को पास करना चाहिए।
0: एफसीआरए बिल को विपक्ष पूरी तरह असंवैधानिक बताता रहा है। तमिलनाडु विधानसभा में तो इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर चुका है। केरल और पूर्वोत्तर के कुछ संगठनों ने भी आपत्ति जताई है। ऐसे में सभी की निगाहें सरकार के भावी कदम की ओर है।
5: दुनिया का सबसे बड़ा
0: आज तक ब्यूरो
1: जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, जिस तरीके से संसद में गतिरोध जारी है, लगता नहीं कि आज भी एफसीआरए बिल पेश हो पाएगा संसद में, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष भी दो फाड़ है इस बिल को लेकर। कौन कौन सी पार्टियां इसके साथ हैं और कौन इनके विरोध में है, क्योंकि डीएमके भी इस वक्त असमंजस में दिखाई दे रही है।
6: देखिए, एफसीआरए बिल को लेकर के जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों में खासतौर पर कांग्रेस पार्टी लगातार ये बोल रही है कि इस बिल को पूरी तरीके से सरकार वापस ले, क्योंकि ये अल्पसंख्यकों से जुड़ी हुई जो एनजीओ हैं या जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही। तो वहीं दूसरी अन्य पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी हो या फिर दूसरी पार्टियां, वो तमाम पार्टियां जो है इस पूरे बिल को वापस लेने की बात कह रही। सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो सरकार लगातार ये कह रही है कि जो विदेशों से पैसा रहा, करीब 13,000 से ज्यादा जो एनजीओज हैं, अगर पिछले साल की बात करें तो उसमें 55,000 करोड़ के आसपास रुपए आए हैं, तो उसकी जो पैसे आए हैं उसमें किस तरीके से नियमित तरीके से उसको करना है, इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार एफसीआरए बिल लाना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सवाल खड़ा कर रही है। ऐसे में आज जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के जैसे कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही है और वो कह रही है कि बिल को वापस लिया जाना चाहिए, तो सूत्र ये भी बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के सत्ता पक्ष ये चाहता है कि इसको जेपीसी में भेजा जाए और जिसके बाद जो है एक लंबा टाइम मिल जाएगा 3 से 4 महीने का, उस दौरान इस पर चर्चा
1: भेजने के लिए विचार कर रही है सरकार। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये बिल पेश कब हो पाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर घाटकोपर इलाके में लैंडस्लाइड हुई है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घाटकोपर इलाके की यह घटना जहां पर यह बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, 2 लोगों की जान इसमें गई है बताया जा रहा है। इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे लगातार बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही। 3 से 4 लोगों के फंसे होने की आशंका मलबे में जताई जा रही है, जिसके चलते ये रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा खिंच सकता है। दीपेश त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। दीपेश, क्या इस वक्त दिक्कतें आ रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में और कितने लोग फंसे हो सकते हैं?
7: जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त घटना स्थल पर हैं जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। मुंबई का साकिनाका ये इलाका है और यहां पे अभी भी 3 से 4 लोग जो हैं अंदर फंसे होने की बात जो है वो कही जा रही है। यहां के स्थानीय डीसीपी हैं गणेश शिंदे, उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा कि 3 से 4 लोग जो हैं अभी भी अंदर ट्रैप हो सकते हैं, जबकि 4 लोगों को निकाला गया जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई है। मुंबई महानगर पालिका का जो मैसेज था उसमें कहा गया था कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई और दो लोग हैं उन पर इलाज जो है वो शुरू है। फिलहाल मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े घटनास्थल पर आके गई हैं और उन्होंने जो मृतक हैं उनके लिए 3 लाख रुपए की मदद जो है वो जाहिर की है और साथ ही आश्वासन दिया है कि जो लोग अभी भी यहां रह रहे हैं इस लैंडस्लाइड के आसपास के हिस्से में जो रह रहे हैं उनको यहां से स्थानांतरित किया जाएगा, किसी सुरक्षित जगह पर उनको रहने की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि इससे पहले सिर्फ उनको नोटिस इशू किया गया था, लेकिन उस नोटिस के बाद जिन लोगों ने घर खाली नहीं किए थे उनको कहीं शिफ्ट करने का कोई इंतजाम बीएमसी द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन अब इस घटना के बाद बीएमसी जो है वो हरकत में आई है और जो लोग हैं उनको वहां से निकाल कर कहीं सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाएगा और 3 लाख रुपए की मदद जो है वो बीएमसी ने जो मृतक हैं उनके लिए डिक्लेयर की है।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और बात देश भर में आई मानसूनी आफत की करेंगे। नोएडा से लेकर झालावाड़ तक से बारिश की तस्वीरें आ रही हैं और ये परेशान करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि मानसून अपने साथ आफत लेकर आया।
0: उत्तर उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया का ये वीडियो है। मंगलवार को मूसलाधार बारिश ने जेवर एयरपोर्ट के पार्किंग कंपाउंड को पानी पानी कर दिया। ये वीडियो देखिए, पार्किंग में लगे एस्केलेटर तक पानी पहुंचा है। एयरपोर्ट स्टाफ युद्ध स्तर पर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वाइपर से पानी निकालने वाली गाड़ी से यहां तक तख्तियों से भी पानी को बाहर धकेला जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट के पार्किंग एरिया में पानी का वीडियो वायरल हुआ तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से एक बयान जारी किया गया। बयान के मुताबिक तेज बारिश के कारण टर्मिनल से पार्किंग एरिया को जोड़ने वाले मार्ग में कुछ समय के लिए बारिश का पानी भर गया था। एयरपोर्ट की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 30 मिनट के अंदर ही जल भराव को पूरी तरह साफ कर दिया। एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक इस जल भराव का उड़ान संचालन या एयरपोर्ट की अन्य व्यवस्थाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हर साल मानसून मानो सिस्टम की पोल खोलने के लिए ही आता है। अब राजस्थान के झालावाड़ का हाल देखिए। चार घंटे के भीतर 300 मिलीमीटर बारिश हुई और इलाके में लोग त्राहिमाम कर उठे। ये स्कूल का वीडियो है, यहाँ पानी ऐसे बह रहा है मानो बांध खुल गया हो। पानी में फंसे बच्चों को निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया।
5: इस भारी वर्षा के कारण से नदी नालों का जो प्रवाह है उसने विकराल रूप धारण कर लिया और सभी जगह सड़कों पर नालों पर जल प्रवाह बढ़ गया था। इसके चलते हमारे क्षेत्र के कई गांवों में कई घरों में कल पानी भर गया था। दो जगह स्कूलों में बच्चे भी फंस गए थे, लेकिन प्रशासन की सक्रियता से और ग्रामवासियों के सहयोग से बच्चों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया।
0: अब राजस्थान के बूंदी का वीडियो देखिए। रेगिस्तानी सूबे के शहर में मूसलाधार बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। दो दिन की लगातार बारिश से बूंदी शहर के इस बाजार का ये हाल है। दोनों तरफ दुकानें और बीच की सड़क पानी से लबालब। बूंदी के छत्रपुरा इलाके का हाल देखिए। सड़कों से लेकर घरों की रसोई और दुकानों तक में पानी घुस गया। लोगों का आरोप है कि समय रहते प्रशासन ने बरसाती नालों की सफाई नहीं करवाई, जिसके कारण ये हालात बने। सड़क हो, मकान हो या दुकान, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। राजस्थान का गंगापुर भी करीब घंटे भर की बारिश में त्राहिमाम कर उठा। मंगलवार शाम करीब 4 बजे बारिश शुरू हुई और घंटे भर के बाद गंगापुर सिटी का ये हाल था। नया बाजार, फव्वारा चौक, उदय मोद्दा, सालोदा, ईदगाह, कचहरी रोड समेत कई इलाके जलमग्न हो गए। और अब एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ की, जहां अचानक आई बाढ़ में 7 जिंदगियां फंस गईं। ये तस्वीरें कठुआ के माहीचक इलाके की हैं। वहां उंझ नदी में उफान बढ़ा तो नदी के बीच एक टापू पर लोग पानी से घिर गए। उन सभी को बचाने के लिए पुलिस और SDRF के तेज बचाव अभियान के बाद कठुआ में अचानक आई बाढ़ के दौरान 7 लोगों की जान बच पाई। आज तक ब्यूरो।
1: तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।

रांची में अनशन पर बैठे छात्रों के पंडाल से काटी गई बिजली। स्टेडियम में देर रात पहुंचे अफसर। गर्मी और उमस के बीच डटे छात्र। पूछताछ में आरोपी अभय तिवारी ने खोली पूरे नेटवर्क की पोल। संसद में संग्राम के बीच राष्ट्रवाद वाला दांव। भारत मंडपम से निकली एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। हर घर तिरंगा के संदेश के साथ नेशनल स्टेडियम तक मार्च। पूरा देश तिरंगा में। संसद में आज भी हंगामे के आसार। गृहमंत्री के बयान के बाद एफसीआरए बिल पर तकरार। कांग्रेस सीएमसी बिल के खिलाफ। डीएमके बीजेडी ने जेपीसी को भेजने की मांग की। बिल को लेकर सस्पेंस। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर लोकसभा में पेश की जाएगी जांच रिपोर्ट। सरकारी आवास से मिले जले नोट। इस मामले में 3 सदस्य कमेटी ने की है जांच। और राम मंदिर सीईओ पद के फाइनल इंटरव्यू का आज आखिरी दिन। दावेदारों से कमेटी के लिए अनुभव और निजी खान पान से जुड़े सवाल। लिस्ट में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस और अयोध्या के पूर्व डीएम भी शामिल।

संसद में संग्राम के बीच एनडीए का राष्ट्रवाद दांव, भारत भवन से निकली तिरंगा बाइक रैली, हर घर तिरंगा के संदेश के साथ एनडीए सांसदों का नेशनल स्टेडियम तमाश, तिरंगे के रंग में रंगा देश। दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व, डीयू के माई भारत वॉलंटियर्स भी शामिल। श्रीनगर में सीआरपीएफ की हर घर तिरंगा रैली, जवानों ने तिरंगा लेकर दिया देशभक्ति का संदेश। संसद के मॉनसून सत्र में सिर्फ दो दिन बाकी, गतिरोध खत्म करने की कोशिश के बीच हंगामे के आसार बरकरार। एफसीआरए बिल पर सरकार विपक्ष आमने सामने, कांग्रेस ने बिल वापस लेने की मांग की। एफसीआरए बिल को जेपीसी भेजने की सरकार तैयार, लेकिन विपक्ष में मतभेद, टीएमसी कांग्रेस और डीएमके के अलग अलग विचार। एफसीआरए में नया प्रावधान बना, विवाद की वजह विदेशी फंड और संपत्तियों की निगरानी के लिए अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव, विपक्ष ने जताई आपत्ति। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई को लेकर अमित शाह के जवाब पर अड़ा विपक्ष, सरकार बोली पहले उचित चर्चा फिर गृहमंत्री देंगे जवाब। रांची में छात्रों के आंदोलन का 19वां दिन, प्रदर्शनकारियों की संख्या आधे से कम, समर्थन में आई कमी, रोज चाय नाश्ता और खाना लेकर आने वाले समर्थक नहीं दिखे। रांची में अनशन में बैठे छात्रों की भंडार से काटी गई बिजली, स्टेडियम में देर तक पहुंचे अफसर, पूछताछ में आरोपी अभय तिवारी ने खोली पूरे नेटवर्क की पोल। छात्र आंदोलन के बीच परीक्षा सुधार की पहल, सरकार ने युवाओं से मांगे सुझाव, 8,500 युवाओं ने रखी अपनी बात। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद पर आंदोलन जारी, सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग। देवेंद्र महतो ने अस्पताल से इंसाफ के नाम जारी किया खुला पत्र, अस्पताल में 10वें दिन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जारी है उनका अनशन, लिखा न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर आरोप, बोले पहले भगवा कपड़ों में भ्रम फैलाते थे, अब छात्रों के वेश में कर रहे हैं उत्पात, लखनऊ की कंपनी पर भी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। प्रशांत किशोर ने छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को बताया गलत, कहा लाठीचार्ज से युवाओं की आवाज नहीं दबेगी, रोजगार शिक्षा की समस्याओं का समाधान करे सरकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का आरोप, बोले बीजेपी के लोगों को भेजकर छात्रों के प्रदर्शन को भड़काने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर किया हमला, बोली राजस्थान में 19-20 पेपर लीक हुए तब चुप रही कांग्रेस, दिल्ली में हंगामा, झारखंड में साधी चुप्पी। अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के छात्रों का समर्थन किया, बोले सरकार तुरंत उनकी मांगे मान ले। पीएम मोदी आज जारी करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा, ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का होगा विमोचन। विज्ञान भवन में हो चुका है पुस्तक विमोचन कार्यक्रम, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के संघर्ष और राष्ट्रपति पद तक के सफर पर आधारित है आत्मकथा। भारत चीन सीमा पर शांति को लेकर एनडीए का बड़ा बयान, रणधीर जायसवाल बोले एलएसी पर शांति और स्थिरता बेहद अहम। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई की चार्जशीट पर आज कोर्ट में फैसला, करीब 20,000 पन्नों की चार्जशीट में 13 आरोपी। नीट यूजी पेपर लीक के आरोपियों को झटका, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की याचिका खारिज। बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, कहा एक दो साल में 10,000 बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने का दावा। बांकीपुर के बेरोजगार युवाओं से बायोडेटा जमा कराने की अपील, प्रशांत किशोर बोले देश भर में निजी कंपनियों में रोजगार दिलाने की करेंगे कोशिश। पश्चिम बंगाल विधानसभा का आज विशेष सत्र, कोलकाता हावड़ा वार्ड परिसीमन बिल पर होगी चर्चा। कोलकाता में ममता बैनर्जी के खिलाफ लगे चोर चोर के नारे, नेताजी के सम्मान में टीएमसी के कार्यक्रम के दौरान हुआ हंगामा। कर्नाटक विधानसभा सत्र से पहले सीएम की बैठक, कल से शुरू हो रहे सत्र पर रणनीति पर चर्चा, मंत्री और विधायकों संग होगा मंथन। वाल्मीकि विकास बोर्ड घोटाले को लेकर बीजेपी जेडीएस का सरकार पर हमला, मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग, विधानसभा में हंगामे के आसार। कैश एट रेजिडेंस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर जांच रिपोर्ट आज संसद में होगी पेश, लोकसभा राज्यसभा में रखी जाएगी रिपोर्ट। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच कमेटी की रिपोर्ट संसद में होगी टेबल, दो खंडों के साथ मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य रखे जाएंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में संसद में आगे बढ़ेगी कार्रवाई, जांच रिपोर्ट में क्या निकला आज होगा खुलासा। राम मंदिर में फुल टाइम सीईओ की रेस तेज, 5,200 आवेदन में 18 शॉर्टलिस्ट, इंटरव्यू में आस्था से लेकर नेतृत्व क्षमता तक की परीक्षा, शिक्षा जनेऊ से लेकर शाकाहार और शराब तक सवाल। 2 सितंबर तक ट्रस्ट को मिलेंगे 3 नाम, पूर्व आईएएस आईपीएस अधिकारियों समेत 18 उम्मीदवारों की दावेदारी, मंदिर प्रशासन वित्त सुरक्षा श्रद्धालु व्यवस्था संभालेगा नया सीईओ। 2027 की चुनावी जंग से पहले सीएम योगी का जनसंवाद प्लान, 1 महीने में 100 से ज्यादा विधानसभा सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर सपा कांग्रेस पर साधा निशाना। गोरखपुर में सीएम योगी ने सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों का किया उद्घाटन, गोरखपुर को विकास की नई सौगात। यूपी में युवाओं की नाराजगी दूर करने के मैदान में उतरेंगे यूएफ के मंत्री, जेएनजी चौपाल में सुनेंगे समस्याएं, बताएंगे सरकार की योजनाएं। यूपी चुनाव को लेकर सपा का बड़ा सर्वे प्लान, 403 विधानसभा सीटों पर चल रहा है 3 स्तरीय आंतरिक सर्वे, टिकट बंटवारे से पहले बूथ बूथ का जातीय गणित खंगाल रही है सपा।
नोएडा एयरपोर्ट पे जल भराव पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा एयरपोर्ट पर नाव चलेगी। अखिलेश का बीजेपी सरकार पर हमला, बोला जहां बीजेपी की सरकार वहां है भ्रष्टाचार। जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होने पर बरेली के असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राहत नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का सरकार पर आरोप, दोहरा चरित्र अपना रही है सरकार। लखनऊ प्रार्थना सभा में हंगामा, धर्मांध के दो बकरी पानी की टंकी का लालच देने का आरोप, पादरी हिरासत में, हिंदू संतों ने कार्रवाई और सख्त कानून की मांग की। नोएडा के पीजी में 19 वर्षीय युवती का शव मिलने से सनसनी, धारदार हथियार से हत्या की आशंका। ताजमहल में पूजा की मांग वाली याचिका पर आज आगरा कोर्ट में सुनवाई, स्मारक को तेजो महाले मंदिर बताने का दावा। हिमाचल में आधी रात महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम, सेस के जरिए बढ़ोतरी। राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला, बोले सरकार बोले समझौता कर चुके पीएम ने भारत के हित बेचने पर मजबूर किया। बद्रीनाथ मंदिर दान चोरी मामले में बीकेटीसी का बड़ा एक्शन, जांच जारी, संवेदनशील जगहों पर लगेंगे हाईटेक कैमरे। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित कर्मचारी में दहशत, आतंकी संगठन की धमकी के बाद बड़ी संख्या में जम्मू पहुंचे सरकारी कर्मचारियों को 20 अगस्त तक घर में रहने की सलाह। हिमाचल कुल्लू में नेशनल हाईवे पर हादसा, पहाड़ी से गिरे भारी पत्थर, मलबे की चपेट में आई कार, दो लोग थे सवार। गंगापुर में झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न, शहर में जलभराव के चलते लोगों को आवागमन में करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। बिजनौर में तेज बारिश के चलते सड़कें जलमग्न, बिजली घर में घुसा पानी, जलभराव से लोगों की बड़ी मुश्किल। ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पार्किंग एरिया जलमग्न, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। एयरपोर्ट के टर्मिनल से पार्किंग जाने वाले रास्ते पर भरा बारिश का पानी, यात्रियों को परेशानी, 30 मिनट में जलभराव। कांगड़ा में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड, फोर लेन हाईवे और कांगड़ा शिमला एनएच पर यातायात प्रभावित। शिवपुरी में लगातार बारिश से आफत, सड़कें और अंडरपास जलमग्न, NH46 पर जलभराव। भारी बारिश के चलते रेलवे अंडरपास से भरा बारिश का पानी, गांव का टूटा संपर्क, आवाजाही के लिए करना पड़ रहा है लोगों को दिक्कतों का सामना। बूंदी में दो दिन की बारिश से शहर जलमग्न, सड़कों ने लिया दरिया का रूप। कठुआ में फंती उज्ज नदी में फंसे 7 लोग रेस्क्यू, JNK पुलिस और SDRF ने 6 महिलाओं समेत एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर बारिश से उपनाए दरिया, बमियाल की सड़क बह रहा है जलालिया का पानी। पठानकोट के बमियाल सेक्टर में बाढ़ जैसे हालात, उफान पर उज्ज और जलालिया दरिया। महीसागर में भारी बारिश के कारण जलभराव, एक गांव का दूसरे गांव से टूटा संपर्क, 25 से 30 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बॉडी में बारिश ने बढ़ाई छात्रों की मुसीबत, एक साल से नहीं बना है पुल, उफनते पानी और जंगल के रास्ते स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। महाराष्ट्र थाने में जोरदार बारिश से नदी नालों में उफान, जलाशय और झीलें लबालब भरी, नदी किनारे बसे गांव पर बाढ़ का खतरा। मुंबई के घाटकों पर में लैंडस्लाइड, 7 घरों का गिरा पहाड़ का हिस्सा, 2 लोगों की मौत, मलबे में कई के फंसे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ फ्लैश फ्लड की जताई आशंका। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी में लापता 2 युवकों की तलाश, तीसरे दिन भी जारी, NDRF और SDRF टीमें चला रही हैं सर्च ऑपरेशन। JNK में कठुआ में फ्लैश फ्लड का कहर, उज नदी में 7 लोगों के फंसे होने की आशंका, पुलिस ने किया रेस्क्यू। माहीचक इलाके में अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, फोर लेन हाईवे की एक लेन को बंद किया गया। मुंबई के विले पार्ले में बहुमंजिला इमारत की 11वीं मंजिल भीषण आग, 2 की मौत, 2 का अस्पताल में इलाज जारी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर, आग और धुएं से मची अफरा तफरी, ऊपरी मंजिलों पर फंसे कई लोग, धुएं के कारण ऊपरी मंजिलों पर फंसे कई लोग, दमकल विभाग ने रेस्क्यू कर 6 से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट की आशंका के बीच जांच जारी। राजस्थान के जैसलमेर में स्कूली बच्चों से भरी बस में लगी आग, 17 छात्र से सवार ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। पटना में अज्ञात कारणों से बाइक पर आए अपराधियों ने युवक को मारी गोली, घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र जालना में तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक को मारी टक्कर, बाद में नियंत्रण खोते कुएं में गिरी। गोंडा में बेटी की हत्या मामले, पिता और सौतेली मां को उम्र कैद, 2 साल पहले गला रेत कर की थी हत्या। अंबिकापुर में हैरान करने वाला मामला, 42 दिन पहले सिपाही की मौत, कागजों में चलता रहा इलाज, फिर आज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं का मैसेज। राजस्थान के धौलपुर में कार और ट्रक की आमने सामने से टक्कर, 6 की मौत। बिहार के गोपालगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 75 लाख की शराब को बुलडोजर से नष्ट किया गया। गुजरात के गांधीनगर में इंस्टाग्राम पर फर्जी कंपनी बनाकर 2,53,00,000 की ठगी, साइबर टीम ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के बांका में आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत, 10 घायल। बिहार के लखीसराय, बांका और पटना में आकाशीय बिजली गिरने से कुल 9 की मौत, सीएम सम्राट ने मृतकों के परिजनों के 4,00,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। KGMU में मरीजों से बाहर से लेंस मंगाने के दावे पर बड़ा एक्शन, डॉक्टर सस्पेंड, प्रो वीसी पद से हटाई गई विभाग की अध्यक्ष। पीलीभीत में स्कूल की दीवार गिरी, मलबे में दबे 6 बच्चे और 2 शिक्षिकाएं, रेस्क्यू ऑपरेशन
के बाद भेजा गया अस्पताल। गोरखपुर में चार दिन पहले हुए ठेकेदार हत्याकांड के वीडियो वायरल, तलवार से हमला करते हुए आरोपी राहुल कैमरे में कैद। गाजियाबाद फैक्ट्री में सो रहे सुपरवाइजर की गर्दन पर कैंची से वार, खून से लथपथ मिला शव। यूपी के बांदा में रिक्शे में ठूस कर ले जाए जा रहे स्कूली बच्चे, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में दिखा भक्ति का अलग रंग, स्कूटी में गंगा जल लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचे ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर परशुराम शर्मा। हरिद्वार से हरियाणा तक फरीदाबाद पहुंचे 85 साल के बुजुर्ग चंदर का जोरदार स्वागत, हरियाणा से कांवड़ लेकर पहुंचने पर गांव वालों ने किया स्वागत। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी के बागपत में कांवड़ियों के साथ बारिश व्यवस्था संभालते दिखे पुलिस वाले। सहारनपुर में महाभारत कालीन का अनोखा शिव मंदिर, मान्यता के इस मंदिर में दुर्योधन ने बनवाया था और भीम ने इसे बदला था। अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता है पश्चिमुखी शिव मंदिर, मन्नतें लेकर दूर दूर से आते हैं भक्त।

0: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
1: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
0: छक्का
1: सब कैशलेस हो गया है।
0: हाँ ला भाई मेरा बैट,
2: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
3: अभी तो डिस्चार्ज हुआ यार।
4: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: बिजली का बिल पेड,
7: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
8: कैसे?
7: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
8: माही वे।
9: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
10: Take a date, not bites.
11: No added sugar, preservative के बिना dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
10: Lion Date Nut Bites.

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
2: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर ये है खबरें 7 तक देखते रहिए आज तक।

0: क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होना चाहते हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि परिसीमन बिल पर अटकलों के बीच सुप्रिया सुले की अगुवाई में एनसीपी शरद गुट के सभी 8 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है, जिससे एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि शायद शरद पवार का हृदय परिवर्तन होने वाला है। हालांकि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शरद गुट के सांसद इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनका दल पाला बदलने वाला है। वैसे बताया जा रहा है कि शरद पवार गुट के सांसदों और प्रधानमंत्री के बीच करीब आधे घंटे की बैठक हुई। एनसीपी एसपी सांसद दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने महाराष्ट्र में सूखे और सिंचाई से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई। इससे पहले भी एनसीपी शरद गुट ऐलान कर चुका है कि वो परिसीमन बिल के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ है, लेकिन सियासत में जो होता है वो कहा नहीं जाता है और अक्सर जो कहा जाता है वो होता नहीं है। बार बार पीएम मोदी से शरद पवार या उनके सांसदों का मिलना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है, इससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मच गई है। इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विपक्ष क्यों बेचैन है, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि पीएम से मिलते जुलते रहते हैं। इधर शिवसेना यूबीटी पूछ रही है कि परिसीमन बिल से क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी। हालांकि सुप्रिया सुले ने प्रस्तावित एफसीआरए बिल के प्रति अपनी पार्टी के कड़े विरोध को दोहराया और मांग की कि इसे वापस लिया जाए या जेपीसी को भेजा जाए। एफसीआरए बिल पर फडणवीस ने कहा कि ये बिल किसी के खिलाफ नहीं है, इस पर विपक्ष एतराज क्यों जता रहा है। फिलहाल इंडिया गठबंधन की नजर शरद पवार के अगले कदम पर है। उन्हें आशंका है कि पवार परिसीमन बिल का समर्थन करने के बहाने एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पवार इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे या एनडीए में जाएंगे ये बात सिर्फ और सिर्फ शरद पवार ही जानते हैं। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ मौसमी सिंह और पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद थी, लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन और छात्रों पर पुलिस एक्शन की सियासी टेंशन से विपक्ष का एजेंडा बदल गया। लेकिन अब जब मानसून सत्र के महज 3 दिन शेष है तो विपक्ष इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की तैयारी में लगा है। विपक्ष अब भी इस मुद्दे को धार देने की कोशिश में है। यही वजह है कि 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया। यानी विपक्ष की रणनीति यही है कि यूपी के चुनाव से पहले आस्था के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए। हालांकि बीजेपी विपक्ष की रणनीति के जवाब में लगी है। योगी आदित्यनाथ के जनसभाओं और रैलियों में विपक्ष पर हो रहे हमलों में इसकी साफ झलक दिख रही है। माना जा रहा है कि छात्रों के मुद्दे के साथ साथ संसद में आज चढ़ावा चोरी पर भी जबरदस्त उबाल दिखेगा। आज तक ब्यूरो।
1: राहुल गांधी जवाब दो,
2: जवाब दो, जवाब दो।
3: संसद में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के सीधे टकराव की तस्वीरें हैं। एक और एनडीए सांसद झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमलावर है। दूसरी ओर विपक्ष चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आक्रामक है। इन दोनों ही मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में तकरार है और उसका असर यूपी की सियासत में भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रयागराज में राहुल के कार्यक्रम के बाद छात्रों का मुद्दा भी यूपी के चुनाव से पहले अहम हो गया है। वहीं चढ़ावा चोरी का सवाल तो सीधे यूपी की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि एक और बीजेपी और एनडीए राहुल गांधी पर हमलावर है, तो अब सीएम योगी ने भी राहुल गांधी को सीधी चुनौती दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है तो उत्तर सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है। गृहमंत्री अमित शाह विद्यार्थियों से जुड़े विषय पर सदन में विस्तार पूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूर्णतः तैयार है। कांग्रेस और समूचे विपक्ष से अपेक्षा है कि तथ्यों का सामना करें, सदन की गरिमा बनाए रखें और उत्तर को पूरा सुने। लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद। समाजवादी पार्टी की रणनीति तैयार थी, कांग्रेस भी साथ था, इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन था, सरकार की घेराबंदी का पूरा खाका तैयार था। लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन, छात्रों पर पुलिस एक्शन पर सियासी टेंशन से विपक्ष का एजेंडा बदल गया। लेकिन अब छात्रों के मुद्दे की गूंज है और चढ़ावा चोरी पर भी संग्राम है। यूपी में इन दोनों ही मुद्दे पर सियासी रणनीति तैयार होनी शुरू हो गई है। आज तक पेरो।

0: ईएमआई में राहत का इंतजार करने वालों को आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के बाद मायूसी हाथ लगी है। दरअसल उम्मीद के अनुसार ही सेंट्रल बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर स्थिर रखा है। रेपो रेट स्थिर रहने से एफडी और बचत खातों की ब्याज दरों पर तत्काल असर की संभावना कम है। वहीं आरबीआई ने अपना रुख न्यूट्रल रखा है, यानी आगे हालात देखकर फैसला होगा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the economic outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%. Consequently, the STF rate remains at 5% and the MSF rate and the bank rate at 5.5%.
0: लेकिन रसोई के बजट पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। दुनिया भर में चल रहे तनाव और कच्चे तेल के दामों में उतार चढ़ाव की वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने का सामान थोड़ा महंगा हो सकता है। आशंका है कि सब्जी और तेल के दाम बढ़ने से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अल नीनो और मानसून को लेकर बनी अनिश्चितता का असर खेती और खाद्य कीमतों पर पड़ सकता है। खास बात है कि खाद्य और ईंधन कीमतों को छोड़ दिया जाए तो कोर इन्फ्लेशन फिलहाल काबू में है। राहत की बात यह है कि ग्लोबल मार्केट में भारी उथल पुथल के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है।
1: बॉन्ड मार्केट सेंटिमेंट्स रिमेन बेयरिश, रिफ्लेक्टिंग फिस्कल सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स। हाउएवर, इक्विटी मार्केट्स ड्रिवन बाय टेक स्टॉक्स रिमेन अपबीट।
0: कुल मिलाकर आरबीआई ने फिलहाल ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में ईएमआई में राहत का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। हालांकि केंद्रीय बैंक का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और महंगाई पर नजर बनाए रखते हुए ग्रोथ को समर्थन दिया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

रांची में अनशन पर बैठे छात्रों के पंडाल में काटी गई बिजली। स्टेडियम में देर रात पहुंचे अफसर। गर्मी और उमस के बीच डटे छात्र। पूछताछ में आरोपी अभय तिवारी ने खोली पूरे नेटवर्क की पोल। संसद में संग्राम के बीच राष्ट्रवाद वाला दांव। भारत मंडपम से निकली एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। हर घर तिरंगा के संदेश के साथ नेशनल स्टेडियम तक मार्च। पूरा देश तिरंगामय। संसद में आज भी हंगामे के आसार। गृहमंत्री के बयान के बाद एफसीआरए बिल पर भी तकरार। कांग्रेस टीएमसी बिल के खिलाफ। डीएमके बीजेडी ने की जेपीसी की को भेजने की मांग। बिल को लेकर सस्पेंस। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर लोकसभा में पेश की जाएगी जांच रिपोर्ट। सरकारी आवास से मिले जले नोट मामले में 3 सदस्यीय कमेटी ने की है जांच। और राम मंदिर सीईओ पद के फाइनल इंटरव्यू का आखिरी दिन। दावेदारों ने कमेटी के सामने बताया अपना अनुभव और निजी खानपान लिस्ट में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस और अयोध्या के पूर्व डीएम भी शामिल।

0: आज सुबह में आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा पर बनी किताब का विमोचन किया है। इस किताब में रामनाथ कोविंद के जीवन के संघर्ष की कहानी है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी सभा को संबोधित भी कर रहे हैं।
1: साथियों, बचपन के इन संघर्षों के बीच कोविंद जी ने शिक्षा को अपने सामर्थ्य को बढ़ाने का मार्ग बनाया। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने संसाधनों की कमी को कमजोर नहीं बनने दिया और एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जिसकी कल्पना भी तब लोगों ने नहीं की होगी। वो भारत जैसे विशाल देश के राष्ट्रपति बने। साथियों, इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी कोविंद जी का विनम्र व्यक्तित्व, उनकी सादगी ऐसे ही कायम रही। मुझे याद है, प्रधानमंत्री के तौर पर मैं राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने जाता था। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो बातें नहीं हो सकती हैं वो बातें वो करते थे। वो प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए गाड़ी के दरवाजे तक आते थे। मैं शुरू में उनको प्रार्थना करता रहता था, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन उन्होंने जीवन के आखिर तक अपने उस विनम्रता को भी छोड़ा नहीं। राष्ट्रपति बनने के बाद जब अपने गांव परों गए तो उन्होंने वहां अपने गुरुओं के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। गांव की मिट्टी को नमन करके उन्होंने गांव के सामान्य लोगों का धन्यवाद किया। पूरे देश ने वो भावुक दृश्य देखा था। उनके इस आचरण ने दुनिया के सामने भारत के संस्कारों की ऐसी तस्वीर सामने रखी जिस पर हर भारतवासी गर्व करता है। साथियों, गुलामी के सैकड़ों साल में हमारे देश ने आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत कुछ खोया था। हमारे पूर्वजों ने सदियों तक संघर्ष किया। महात्मा गांधी, बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ऐसी कितनी ही महान विभूतियों ने भारत के नवनिर्माण का सपना देखा था। एक ऐसा भारत जहां गरीब से गरीब, वंचित से वंचित को शिखर तक पहुंचने का अवसर मिल सके। कोविंद जी जैसे व्यक्तित्वों ने अपने श्रम और काबिलियत से केवल खुद का जीवन ही बदला, इतना नहीं है, उन्होंने सदियों के उन स्वप्न को, उस विजन को भी साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और इस दिशा में हम सबके प्रयास अभी भी जारी है। हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा। साथियों, ऐसे युवा शक्ति के निर्माण के लिए जो प्रेरणा चाहिए, कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी उसका अहम स्रोत बन सकती है। साथियों, कोविंद जी ने अपने जीवन में मोरारजी भाई देसाई के साथ अनुभवों के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया है। कोविंद जी के भीतर देश सेवा की जो भावना थी, मोरारजी भाई के साथ काम करके उन्होंने जो सीखने को मिला, जो रास्ता मिला, कोविंद जी ने राजनीति और समाज सेवा को अपना मार्ग बनाया। वो अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित रहे, सेवा को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाकर काम किया। संसद में उनका कार्यकाल गवाह है। राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। राष्ट्रपति के रूप में भी हमें उनकी यही कर्तव्य निष्ठा दिखाई देती रही, यहां तक कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद से सेवा मुक्त होने के बाद भी उन्होंने विश्राम नहीं लिया है। वो अभी भी एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर काम कर रहे हैं, देश को जगा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसका समाधान देश के लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू कर सकता है। मैं मानता हूं कोविंद जी की इस कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव से देश के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, सामाजिक जीवन में सक्रिय रहते हुए ऑटोबायोग्राफी के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता, कैसे वही आदर्श आगे चलकर हमारे जीवन का आधार बनते हैं, हमारे कठिन समय के मूल्य किस तरह जीवन भर में हमें रोशनी देते रहते हैं, कैसे इस पवित्रता से हमें राष्ट्र सेवा की शक्ति मिलती है। अलग अलग पदों का दायित्व निभाते हुए कोविंद जी ने समाज को निरंतर इसकी प्रेरणा दी है। साथियों, मुझे विश्वास है कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी इसमें उनके जीवन की ही नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की भी अहम स्मृतियां सुरक्षित होंगी। मैं एक बार फिर उन्हें उनकी आत्मकथा के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं खासकर के युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, रील का जमाना है,

0: सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है। इतिहास से काफी निकट होता है वो कालखंड बायोग्राफी का, और इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि कोविंद जी की जो मेहनत है वो आने वाली पीढ़ियों को काम आए, युवा पीढ़ी को विशेष रूप से काम आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज तक पर है अब सबसे बड़ा खुलासा। रांची से इस वक्त जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है। जेपीएससी की 14वीं पीटी में गड़बड़ी के आरोपी अभय तिवारी से सीआईडी की पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने सिर्फ 14वीं जेपीएससी पीटी ही नहीं बल्कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी तक की परीक्षाओं में भी पैसे के लेन देन और इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने की जानकारी सीआईडी को दी है। दावा यह है कि इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने के लिए लाखों रुपए की डील हुई। अभय तिवारी

0: 20 से 25 लाख रुपए, जबकि ACF के लिए 30 से 35 लाख रुपए तक की बोली लगाए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं CDPO परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख रुपए लेने की बात कबूल किए जाने का दावा किया जा रहा है इस इन्वेस्टिगेशन में। अब इस मामले में CID की पूछताछ का दायरा और बढ़ने लगा है। तत्कालीन JPSC सदस्य डॉक्टर अनिमा हंसदा से आज पूछताछ होनी है। दूसरी मेंबर अजीता भट्टाचार्य से CID पहले ही पूछताछ कर चुकी है और इसी बीच JSSC JEE पेपर लीक केस में भी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। रांची पुलिस की स्पेशल टीम ने मुंबई से बिंसिस एजेंसी के संचालक सह निदेशक अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया है। अब CID उसके रिमांड की तैयारी में है और JSSC JEE केस को अपने हाथ में लेने की संभावना है। आपको दिखाते हैं कि दरअसल इस पूरे मामले में क्या क्या खुलासे हो रहे हैं CID की पूछताछ में। तो आपको बता दें कि ये पूछताछ जो चल रही है उसमें धांधली सामने आ रही है और ये महज 14वीं पीटी तक नहीं सीमित है, 11वीं से लेकर 13वीं वो भी पाया जा रहा है अब पूछताछ के बाद कि उसमें भी धांधली की गई थी। तो ये दावा सामने आया, साथ में टेस्ट और इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने की डील की गई ताकि अगर लिखित में मार्क्स ना भी आए तो इंटरव्यू में भी बढ़ाए जा सके नंबर, और इसके लिए पैसे वसूले जाते थे। पैसों का खेल कैसे चलता था? करीब 20 अभ्यर्थियों से 5.8 करोड़ यानी कि 5,80,00,000 रुपए वसूले गए और फिर उनको ये आश्वासन दिया गया कि ये नौकरी उन्हें ही मिलेगी। ये देखिए पदों के लिए कितना पैसा दिया गया। FRO के पद के लिए 20 से 25 लाख रुपए की वहां पे दावा किया गया और साथ में आपको बता दें ACF के लिए भी पैसे लिए गए। चलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी सत्यजीत का और उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था इस पूरे मामले में। सत्यजीत, बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, बताइए पूरा नेटवर्क कैसे एक्सपोज हो रहा है।
1: देखिए बिल्कुल शुरू से यहाँ सिंडिकेट जो है वो हावी रहा है, जब भी JPSC या JSSC में बहालियां हुई है और ये एकदम इंसेप्शन काल से ही देखा जाए तो यहाँ पे कम 10 एग्जामिनेशन जो है उससे ज्यादा CBI जांच के दायरे में है। पहला और दूसरा JPSC जब हुआ था उसकी जांच पूरी कर ली है, CBI ने रिपोर्ट सौंप दिया है। 60 लोग चार्जशीटेड है तो उसमें से मान लीजिए कुछ अधिकारी होंगे लेकिन बाकी तो कैंडिडेट थे, ना उनकी बर्खास्तगी हुई ना उसके ऊपर सरकार ने कोई एक्शन लिया उस वक्त, जिसकी भी सरकार रही हो। लेकिन ये रिपोर्ट अगर इस सरकार के पास है तो उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। इसके अलावा 11वीं से लेके अगर हम 14वीं JPSC तक की बात करें तो अभय तिवारी जो है उसने 12 साल में 13 इम्तिहान खुद पास किया और ये एस्टैब्लिश किया कैंडिडेट्स में कि वो बहुत पावरफुल है और उसका क्लाउड जो है वो इनॉर्मस है, वो कुछ भी करवा सकता है, इसलिए उसके ऊपर भरोसा किया जाए। और उसी बहाने उस पूरे सिंडिकेट ने पैसे की उगाही की। रिमांड पर जो लिया गया है, जो सूत्र बताते हैं रिमांड पर CBI ने जब पूछताछ की तो हाई प्लेस सोर्सेस जो हैं वो रिवील करते हैं कि बिल्कुल बातें उसने कही है।
0: जी सत्यजीत, आइए समझने की भी कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। झारखंड में पिछले 19 दिन के दौरान आज तक जब लगातार इन छात्रों के बीच मौजूद रहकर इनकी समस्या सुनता है तो पता चलता है कि सब केवल एक भर्ती नहीं बल्कि तमाम भर्तियों में हुई धांधली के पीड़ित है जो चाहते हैं कि अब बदलाव हो। इसकी नौबत क्यों आई है, कुछ आंकड़े सुन लीजिए। लंबे हैं, सुनकर आपको भी लगेगा कि क्या वाकई एक परीक्षा ढंग से नहीं हो रही है। पहला, साल 2026 में 14वीं JPSC की प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को आंदोलन के चलते रद्द करने का ऐलान पहले ही सरकार कर चुकी है। इसी साल फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर यानी कि FRO की परीक्षा हुई है, आरोप है कि होटलों में परीक्षा के प्रश्न पत्र रटाए गए लोगों को। इसी साल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO की भी परीक्षा में आरोप है कि पेपर लीक हुआ है। CDPO परीक्षा का फाइनल हुआ, इसमें आरोप है कि भर्ती बाहरी राज्यों के लोगों की हो गई है। नर्सिंग परीक्षा में भर्ती राजस्थान समेत दूसरे राज्यों से होती है तो आरोप लगता है कि इसमें पैसा चला है। PGT में 2023 की भर्ती निकली, आरोप है कि बोकारो के एक ही सेंटर से ज्यादा बच्चों का चयन हुआ है। सहायक टीचर के लिए 26,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 2024 में हुई लेकिन 2 साल से नियुक्ति प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई है। TET झारखंड के फॉर्म भरे गए 2024 में लेकिन नियमावली रद्द

0: हो गई और फिर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 2025 में झारखंड पुलिस में 5000 पद की भर्ती निकली, लेकिन परीक्षा हुई ही नहीं। 2012 के बाद पहली बार 2025 में एलडीसी के 863 पदों के लिए भर्ती निकली। नोटिफिकेशन 2023 में निकला, लेकिन 4 बार फॉर्म भरे गए, वैकेंसी वापस ले ली गई। आशु लिपिक के 408 पद के लिए 2023 में भर्ती निकली, 2 साल फॉर्म भरे भी गए, लेकिन सरकार ने वैकेंसी वापस ले ली। टीजीटी की 9000 सीटों के लिए 2016 में भर्ती निकली थी, 2025 में सरकार ने पदों को ही खत्म कर दिया, जबकि राज्य में टीचरों की कमी है। बिजली विभाग में 3200 सीटों के लिए 2015 में भर्ती निकली, फॉर्म भरे गए, लेकिन परीक्षा का कोई आता पता ही नहीं है। नगर निगम में 2022 में भर्ती निकली, 2023 में 600 पदों के लिए परीक्षा भी हुई, पेपर लीक हो गया। जेएसएससी की जेई भर्ती साल 2024 में परीक्षा हुई, लेकिन पेपर लीक के चलते इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। झारखंड टेक्निकल सीजीएल के लिए 600 पदों के लिए साल 2023 में भर्ती निकली, परीक्षा 2026 में हुई, लेकिन नतीजे ही नहीं आए। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए साल 2023 में परीक्षा हुई, लेकिन 2026 में परीक्षा हुई, लेकिन एक सेंटर में पेपर ही नहीं पहुंचा और अब तक नतीजे नहीं आए हैं। इसलिए छात्र रांची में अब प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात को मनवाने पर डटे हुए हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लगातार रांची में ही है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आशुतोष, ये पूरी लिस्ट पढ़ते पढ़ते सांस चढ़ जाती है। ये सोचिए कि अगर लिस्ट पढ़ने में इतनी दिक्कत हुई है, जिन लोगों ने इसे झेला है उनकी दिक्कत कैसी रही होगी, हमें बताएं।
1: उनकी दिक्कत तो ये समझिए कि जो छात्र दरोगा की भर्ती की तैयारी कर रहा था 10 साल पहले कि भर्ती आएगी, और भर्ती आई तो पता चला कि उसकी उम्र 6 दिन कम है, वो एलिजिबिलिटी नहीं है। लेकिन उसके बाद जब वो दोबारा दरोगा के परीक्षा भर्ती के इंतजार कर रहा है, अब उसकी उम्र निकल चुकी है, वो भर्ती दोबारा नहीं आई है। जिस सीजीएल परीक्षा को लेकर विवाद हो रहा है, सोचिए साल 2014-15 का नोटिफिकेशन, हम 2026 में हैं, अब जाकर के नियुक्तियां हुई और पता चलता है कि नियुक्तियां ऐसी हुई हैं कि उसमें एक अभय तिवारी है जिसने शायद ऐसी कोई एग्जाम हो जो पास ना किया हो, वो ये सीजीएल भी क्रैक कर लेता है। और इसी वजह से छात्र कह रहे हैं कि भाई इसको आप जो है बंद कीजिए, सीजीएल को वापस लीजिए, पारदर्शी तरीके से दोबारा कराइए। सरकार कह रही है जब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसको हरी झंडी दे दी है तो हम क्या कर सकते हैं, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। और इसी वजह से आज 19वें दिन भी छात्र यहां पर डटे हुए हैं। ये जरूर है कि बीती रात को जो क्रैकडाउन प्रशासन की ओर से हुआ, छात्रों का आरोप है कि वो आए यहां पर आईडी पूछ रहे थे। मैं एक बार लोकेंद्र को कहूंगा कि आपको पैन इंडिया तब ये पैन करके तस्वीरें भी दिखाएं 360 डिग्री में, कि 19वां दिन बाकी दिनों के मुकाबले जरूर अलग है। छात्र कह रहे हैं हमारा आंदोलन जारी है, लेकिन क्या होता है ना कि डर सबको लगता है। प्रशासन पहुंचते, उन्होंने आईडी पूछे, घर वालों के नाम नंबर पूछे, बसें व्यवस्था कर दी गई, उसकी वजह से उस संख्या बल में कमी जरूर दिखाई दे रही है। छात्र कह रहे हैं हम अपने आंदोलन पर डटे रहेंगे, जो आसपास हैं देर रात तक जगे हैं, आएंगे लौटेंगे। लेकिन क्या होता है कि एक समय हर आंदोलन की सीमा होती है। अब क्या है कि विधानसभा का घेराव कर लिया, तो बीजेपी ने झारखंड बंद करना था, वो भी कर लिया।
0: जी बिल्कुल आशुतोष, और लगातार हमारी नजर बनी हुई है इस आंदोलन पर। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
5: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
6: लायन डेट नट बाइट्स।
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: बिजली का बिल पेड
2: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
3: कैसे?
2: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
3: इतना माही वे।
4: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
5: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: आगे आगे
8: करेक्ट करेक्ट
9: मिल गया।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: पापा
12: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
11: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
12: छक्का?
11: सब कैशलेस हो गया है।
12: हाँ ओ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
11: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
12: ला बैट किसका है?
13: टाटा AIG है तो भरोसा है।
14: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: बिजली का बिल पेड
3: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
4: कैसे?
3: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
4: इतना माही वे।

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर.
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक.
4: राजस्थान की सड़कों पर सैलाब, आसमान से आफत बनकर बरसा पानी. बूंदी से लेकर झालावाड़, बारिश ने किया हाल बेहाल. मानसूनी बारिश के चलते राजस्थान के कई इलाकों में हालात खराब हो गए हैं. ये तस्वीर राजस्थान के बूंदी इलाके की है, जहां कुछ घंटों की बारिश ने सड़कों पर सैलाब ला दिया. बूंदी के नागदी बाजार, सदर बाजार और मीरा गेट वाली सड़क पर पानी मानो नदी की तरह बहने लगा और इसकी चपेट में खड़ी कई बाइक और स्कूटी आ गईं, जो तिनके की तरह पानी के साथ बहने लगीं. ये तस्वीर देखिए, जहां अपनी बाइक को बचाने के लिए बाइक सवार पानी में दौड़ा, लेकिन तेज बहाव के चलते उसे पकड़ नहीं पाया. बाइक ही नहीं, सड़क पर खड़ी स्कूटी भी पानी के तेज बहाव में बह गई. बूंदी ही नहीं, टोंक में भी आफत बनकर बरस रहे हैं बादल. भारी बारिश के बाद टोड़ा रायसिंह इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए. सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया और इसकी चपेट में कई बाइक सवार आ गए. बूंदी ही नहीं, राजस्थान के झालावाड़ में भी बारिश से हाल बेहाल हो गया है. जहां लगातार हो रही बारिश के चलते एक सरकारी स्कूल में पानी भर गया और देखते ही देखते स्कूल एक टापू में तब्दील हो गया. स्कूल में पानी भर जाने की वजह से करीब 35 बच्चे और स्कूल टीचर फंस गए थे, जिनको बचाने के लिए SDRF टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को सुरक्षित निकाला. बूंदी से भवानी सिंह और झालावाड़ से चेतन गुर्जर के साथ आज तक ब्यूरो.
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर. पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक. एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

रांची में अनशन पर बैठे छात्रों के पंडाल में काटी गई बिजली। स्टेडियम में देर रात पहुंचे अफसर, गर्मी और उमस के बीच डटे छात्र। पूछताछ में आरोपी अभय तिवारी ने खोली पूरे नेटवर्क की पोल। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन में पीएम मोदी का नौजवानों को संदेश, मुश्किलों से ना हारे, रील और शॉर्टकट के जमाने में भी ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। संसद में आज भी हंगामे के आसार। तकरार के बाद एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेज सकती है सरकार। राज्यसभा में अमित शाह पेश कर सकते हैं सहकारिता और केरल का नाम बदलने से जुड़े दो बिल। संसद में संग्राम के बीच राष्ट्रवाद वाला दांव। भारत मंडपम से निकली एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। हर घर तिरंगा के संदेश के साथ नेशनल स्टेडियम तक मार्च, पूरा देश तिरंगा में। और राम मंदिर सीईओ पद के फाइनल इंटरव्यू का आखिरी दिन। दावेदारों से पूछे गए अनुभव और खान पान से जुड़े निजी सवाल। लिस्ट में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस और अयोध्या के पूर्व डीएम भी शामिल।

0: आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब रुक करते हैं संसद का, जहां आज भी हंगामे के आसार है। विपक्ष गृह मंत्री के बयान पर अड़ा हुआ है तो सत्ता पक्ष बयान की शर्तों के साथ तैयार है। तो एनडीए ने झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ मोर्चाबंदी लगातार की हुई है। विदेशों में फंडिंग बिल, विदेशों से जो फंडिंग आती है उसको लेकर जो बिल है उस पर भी घमासान चल रहा है। सरकार के ने बदलाव के साथ इसको लाने की कोशिश की है और विपक्ष इसके खिलाफ लगातार लामबंद नजर आ रहा है। कांग्रेस और टीएमसी इसके बिल्कुल खिलाफ है, तो डीएमके और बीजेडी इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजना चाहती हैं। तो आपको बता दें कि यही माना जा रहा है कि आज संसद में फिर से भारी हंगामा रहेगा, लेकिन अब मुद्दा सिर्फ छात्रों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का ही नहीं है, सिर्फ राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का नहीं है, अब इसमें एक और अहम बिल जुड़ गया है जो कि एफसीआरए से जुड़ा हुआ है। उसमें कुछ संशोधन की बात है जिसे लेकर सरकार आना चाह रही है, लेकिन विपक्षी पार्टियों का इस पर रुख थोड़ा अलग अलग नजर आ रहा है। जहां डीएमके चाहती है कि इस एक्ट को भेजा जाए जेपीसी के पास, जो इसको देख सके, इसको अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर सके, इस पर अपनी सजेशंस दे सके, वहीं टीएमसी और कांग्रेस इसके बिल्कुल खिलाफ नजर आ रही हैं। इस पर कुछ पेच हैं जो लगातार अड़े हुए हैं और इन्हीं पेचों को लेकर सरकार हालांकि तैयार है कि इस एक्ट को भेज दिया जाए जेपीसी के पास ताकि इस पर अध्ययन हो सके। लेकिन आज संसद में क्या रहेगा, क्या आज भी वही देखने को मिलेगा? ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अब सीधा संसद परिसर से। तो वही तस्वीरें, वही विरोध, लगातार दोनों तरफ से प्रदर्शन चल रहा है। ये सिलसिला लगातार बरकरार है। एक तरफ एनडीए के सांसद हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ, और दूसरी तरफ विपक्ष है जो लगातार प्रदर्शन करता आ रहा है।
1: राहुल गांधी तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए सरकार? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उनपे लाठी बरसाते हो, आप उनपे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उनपे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस।
0: तो आप सुन रहे थे प्रियंका गांधी को। तो फिर से एक बार वही मांग कि जवाब दिया जाए कि आखिर छात्रों पर पैलेट गन किसने चलाई, बिहार में गोली किसने चलाई, यही सवाल, और इस पर अड़ गए।
2: एक तरफ जहां झारखंड बीजेपी के सांसद यहां संसद परिसर में राहुल गांधी से जवाब की बात कर रहे हैं, और यहां आप देखिए कि मकर द्वार पर लगातार झारखंड बीजेपी के तमाम सांसद जो हैं यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में इनके इस वक्त जो आप देख रहे हैं जो पोस्टर बैनर लगे हुए हैं जिसमें झारखंड में छात्रों के साथ हुई अमानवीयता पर राहुल गांधी जवाब दो, राहुल गांधी के जवाब को लेकर के लगातार जो है इनके द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहां जो कांग्रेस के तमाम सांसद हैं वो प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ तमाम जो दूसरे सांसद यहां पर, समाजवादी पार्टी के भी सांसद मौजूद हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस के सांसद यहां पर मौजूद है। दो तरीके का इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के सांसद ये मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो आकर के सदन के अंदर जवाब दें। हालांकि अगर सरकार की बात करें तो सरकार लगातार ये कह रही है कि गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रदर्शन एक तरफ जहां यहां पर बीजेपी के तमाम सांसद जो हैं वो कर रहे हैं राहुल गांधी के जवाब देने की और सदन में आने की बात झारखंड के मुद्दे को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद इस वक्त संसद परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आकर के जवाब दें। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
0: तो आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, जो तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त संसद परिसर से, उसमें दोनों ही पक्ष जो हैं अब वो बहुत ही कंफर्टेबल हो गए हैं, साथ साथ खड़े हैं, आसपास खड़े हैं, दोनों अपना अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो जनता है वो ये देख रही है कि कोई चर्चा सदन के अंदर हो ही नहीं रही। तो ये हो क्या रहा है?
3: देखिए बेसिकली यही है कि जब से झारखंड के अंदर ये जो छात्रों का प्रदर्शन है पेपर लीक मामले को लेकर, वो उसने जो है एक तरीके से हाइप बनी है, उसके बाद से जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर, तब से जो है सत्ता पक्ष के सांसद भी जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, आइए चर्चा कीजिए, गृहमंत्री जवाब देंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि आप राम मंदिर चंदा चोरी पर भी जो है वो चर्चा कर लीजिए और गृहमंत्री को जवाब देना चाहिए। तो ये एक तरीके से दोनों ही तरफ से जो है वो ये कहा जा रहा है कि हम जो है सदन की कार्रवाई चलाना चाहते हैं, सदन में जो गतिरोध है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन दरअसल जो है वो दोनों ही जो है हंगामा सदन के अंदर जो है जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी चालू कर देते हैं और सदन के बाहर एक दूसरे पर जो है वो आरोप प्रत्यारोप का जो ये जो दौर है वो चल रहा है। झारखंड के अंदर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है उसका जवाब जो है विपक्ष से मांग रहे हैं, विपक्षी दल इस चीज़ को लेकर जवाब मांग रहे हैं कि जो 20 जुलाई को हुआ उसका जवाब कौन देगा।
0: और साथ ही साथ जो है राम मंदिर में अगर ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है कि दोनों ही पक्ष खड़े होकर के अब साथ में खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे हैं, तो संसदीय कार्य मंत्री अब जो पहले कोशिश कर रहे थे अब क्या कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो हो, दो दिन बचे हैं।
3: देखिए दो दिन बचे हैं और सरकार को भी ये बात मालूम है कि विपक्ष जो है अपनी मांगों पे अड़ा हुआ है और कल सरकार की तरफ से ये हिंट दिया गया था कि हम छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर उस पर भी चर्चा के लिए तैयार है, राम मंदिर पे भी चर्चा के लिए तैयार है। अब सरकार ने ये बात विपक्ष को कही है, क्या विपक्ष तैयार होगा, क्या आम सहमति बनेगी संसद की कार्रवाई को चलाने के लिए, इसकी जो संभावना है वो बहुत कम है क्योंकि दोनों ही जो है अपनी अपनी तरफ से अड़े हुए हैं, अपनी अपनी अलग अलग तरीके की मांगे हैं और उन्हीं मांगों के बीच में जो है संसद।
0: लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर ये कितना जायज है इस तरीके का विरोध प्रदर्शन। आपको ये तस्वीर दिखाते हैं जो हमारे सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल लेकर आ रही है सदन से, माफ कीजिएगा संसद से।
4: विपक्षी पार्टियां सारी की सारी मकर द्वार पर मौजूद हैं और वो सब इस समय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। पीछे आपको प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आ रही हैं और यहां पर दो खेमे बटे हुए हैं, एक तरफ विपक्षी जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग। इन लोगों का ये कहना है कि एक तरफ विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह आए सदन के अंदर, वो पार्लियामेंट आ रहे हैं लेकिन अब वो लोकसभा आए और जवाब दें। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग हैं जिन लोगों का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जवाब सुने और भागे ना और आखिरकार झारखंड में क्या हो रहा है इसका जवाब भी उनको चाहिए। यह है मकर द्वार, जिस दिन से संसद चालू हुआ है इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन पीछे नजर आ रहा है। एक तरफ यहाँ पर विपक्षी जो नेता है वो नजर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ आपको सत्ता पक्ष के लोग नजर आ रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल, दिल्ली आज तक।
0: तो इस सब के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर कह दिया है कि संसद में अमित शाह को जवाब तो देना ही होगा।
5: ये लाठीचार्ज ये सब होने के उद्देश्य बहुत से बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल चले गए और 100 से भी ज्यादा छोटी मोटी जो भी जख्म हो गई और बहुत से रेड गन से जो स्टूडेंट्स को मारे उनको घायल हो गए। इसके बारे में हम चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट दे, लेकिन 15-20 दिन हो गया, सॉरी 18 दिन हो गया, वो स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसा हम एक बार बोल के तो उसके बाद निकल जाएंगे, ये उनकी मंशा है।
0: तो आपने देखा किस तरीके से दोनों ही पक्ष अपना अपना विरोध कर रहे हैं और वो भी साथ में खड़े होकर। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज लेकर आ रहे हैं रिपोर्ट संसद परिसर से।
6: आज लगभग सेकंड लास्ट डे है और आज भी मकर द्वार के ठीक बाहर विपक्षी सांसदों द्वारा नारेबाजी हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर मांग कर रहे हैं 20 जुलाई को जो घटनाक्रम दिल्ली में छात्रों के खिलाफ हुआ, गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए इंडिया गठबंधन के सांसद इस वक्त लगातार नारे लगा रहे हैं। सभी अगुवाई संजना जाटव कांग्रेस पार्टी की, बाकी सांसद भी साथ में नारे लगा रहे हैं। मनोज झा हैं आरजेडी के, वो नारा लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद गांधी वाड्रा खुद एक बार ट्वीट करते हुए दिख रही है। तो आज एक तरफ जहां उम्मीद लगाई जा रही थी कि FCRA के बिल पर क्या कोई चर्चा हो पाएगी, क्योंकि अब प्रयास लगाए जा रहे हैं ये बिल JPC में जाएगा। सूत्रों के हवाले से बात कही गई कि JPC ने FCRA
7: का बिल जाने वाला है। इसके साथ साथ गृह मंत्री के बयान की मांग आज भी लगातार विपक्ष मानसून सत्र के सेकेंड लास्ट डे पर भी कर रहा है। सदन के बाहर नारेबाजी हो रही है, तो क्या ये मान के चला जाए कि आज की कार्रवाई भी इस गतिरोध में खत्म हो जाएगी। अमित भारद्वाज, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स, आज तक।
0: तो छात्रों पर एक्शन और चढ़ावा चोरी के मामलों के बीच अब FCRA बिल को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि इस बिल को सरकार आज सदन में पेश करने की कोशिश कर सकती है।
8: सरकार के सामने विरोध के तीन मोर्चे हैं। पहला है चढ़ावा चोरी का, दूसरा है छात्रों का मुद्दा और तीसरा मोर्चा है FCRA का। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026 पर भी विपक्ष ने विरोध की आवाज बुलंद की है। संसद के मॉनसून सत्र में सिर्फ दो दिन बचे हैं, 13 अगस्त आखिरी दिन है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि FCRA बिल कब पेश किया जाएगा। वैसे माना जा रहा है कि आज सरकार FCRA बिल को पेश करने की कोशिश करेगी। इस बिल को लेकर सरकार को घेरने में विपक्षी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस और TMC चाहती है कि सरकार FCRA बिल को वापस ले, वही BJD चाहती है इसे JPC के पास भेजा जाए। DMK दुविधा में है, जो चाहती है कि या तो बिल वापस लिया जाए या उसे JPC के पास भेजा जाए।
9: लेकिन सरकार के नियत में, मैंने कहा नियत में खोट है। इसका मकसद कोई पारदर्शी तरीके से एक नियंत्रित ढंग से उसका उपयोग हो या फिर उसका उपयोग दुरुपयोग ना है, इंटरनेशनल को एक्टिविटीज में वो पैसे का उपयोग हो, ऐसी बात को सरकार को देखना चाहिए। हम लोग भी मानते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य ये नहीं था। उनके उद्देश्य ये था कि कैसे हम एक तो पंजाब को चुनाव मान ले, फिर सबसे बड़ी बात है माइनॉरिटी को इससे वो प्रताड़ित करने का एक माध्यम वो बनाना चाहते हैं।
8: हालांकि सूत्र बताते हैं कि सरकार FCRA बिल को JPC के पास भेजने पर भी विचार कर रही है।
10: जिस तरीके से देश में अन्य देशों से विदेशी फंड का दुरुपयोग किया जाता है, बहुत सारी असंवैधानिक गतिविधियों में उसका उपयोग किया जाता है, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो हमारे विपक्ष के साथी हैं उनको सहयोग करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और चर्चा के बाद इस बिल को पास करना चाहिए।
8: FCRA बिल को विपक्ष पूरी तरह असंवैधानिक बताता रहा है। तमिलनाडु विधानसभा में तो इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर चुका है। केरल और पूर्वोत्तर के कुछ संगठनों ने भी आपत्ति जताई है। ऐसे में सभी की निगाहें सरकार के भावी कदम की ओर है।
11: दुनिया का सबसे बड़ा
8: आज तक ब्यूरो।
0: और आइए अब आपको दिखाते हैं एक तस्वीर तिरंगा यात्रा की। लगातार आज NDA के सांसदों ने एक तिरंगा यात्रा निकाली थी और एक तिरंगा प्लान पूरा तैयार है NDA के सांसदों का। भारत मंडपम से नेशनल स्टेडियम तक ये तिरंगा रैली निकाली गई थी, जिसमें सांसदों ने अपनी बाइक्स, अपने कार, इन पर तिरंगा लगाया और ले चले वो इस तिरंगा रैली को दिल्ली की सड़कों पर। यह सुबह के वक्त हुआ और तस्वीरों में जैसे कि आप देख सकते हैं कि घर घर तिरंगा वाला एक मैसेज भी है, उसे भी शायद कहीं तक पहुंचाने की कोशिश।
12: देखिए, तिरंगा केवल हमारा राष्ट्रीय ध्वज ही नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प की शक्ति का प्रतीक है, हमारी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक है। और इसीलिए ये जो आज बाइक रैली आप देख रहे हैं, हमसे पहले जो पीढ़ी आई, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको नमन करती है। आज का जो युवा है और जो आने वाली पीढ़ी हमारे देश का भावी नेतृत्व भी है, हमारे देश का भविष्य भी है, उसको सेलिब्रेट करती है। स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था स्वप्न स्वतंत्र भारत का, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है विकसित भारत का, जिसे इस देश का युवा इस संकल्प को सिद्धि तक निश्चित लेके जाएगा।
0: और आइए इस वक्त अखिलेश यादव बोल रहे हैं, सीधा सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं।
13: प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है।
0: तो आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को कि कहीं ना कहीं वो नोएडा एयरपोर्ट की जो तस्वीर सामने आई थी नए एयरपोर्ट की, उस पर तंज कस रहे थे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर है संसद परिसर से आपको दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त NDA के सांसद सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी से। वो कह रहे हैं कि झारखंड के छात्रों पर जो अमानवीयता हुई, जो बेरहमी दिखाई गई उस पर राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां रांची में छात्रों का प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें कल रात बिजली काटी गई थी और अब वहां से जनरेटर भी हटा दिया गया है। तो इस गर्मी और उमस भरे माहौल में उनका जनरेटर भी हटा दिया गया है। सवाल ये उठता है कि जनरेटर किस वजह से हटाया गया, क्योंकि ये खुद छात्रों के प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने लगवाया था। जब बिजली गई, कल रात को बिजली काट दी गई थी, उसके बाद अब जनरेटर को हटाया जा रहा है। तो ये कौन लोग हैं जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जनरेटर हटाते हुए, तार हटाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये सरकार की तरफ से किया जा रहा है, क्या ये प्रशासन कर रही है? ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये जनरेटर कौन हटा रहा है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: कोलंबिया में मचा कोहराम। भूकंप के झटकों से कांपा साउथ अमेरिकी देश। ढहीं कई इमारतें, मलबे में दबे लोग, कोलंबिया में 10 अगस्त की सुबह तबाही का मंजर लेकर आई। सुबह करीब 7:30 बजे कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया, जिसके बाद हर तरफ कोहराम मच गया। ये तस्वीर कोलंबिया के पेरेरा की है, जहां भूकंप के तेज झटकों से इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, जिसके बाद हर तरफ हाहाकार मच गया। एक और तस्वीर देखिए, ये पेरेरा के एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां भूकंप के झटके आने के बाद टेबल के नीचे बैठकर अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं। भूकंप से मचे हाहाकार की ये तस्वीर देखिए, जहां तेज झटकों से एक अस्पताल की इमारत का ऊपरी हिस्सा गिर गया और लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। पश्चिमी कोलंबिया के साथ साथ सेंट्रल कोलंबिया में भी कई इमारतें ढह गईं। पेरेरा, कैली, मनीजाले में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए, साथ ही कई लोगों के मलबे में भी दबे होने की आशंका है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र चोको इलाके में सैन जोसे डेल पाल्मार के पास था। भूकंप की गहराई 107 किलोमीटर थी। कोलंबिया की सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है और राष्ट्रपति ने इमरजेंसी कमेटी की बैठक बुलाकर राहत और बचाव अभियान तेज करने को कहा है। कोलंबिया में आए इस भूकंप के झटके इक्वाडोर, वेनेजुएला और पनामा तक महसूस किए गए हैं। इससे पहले वेनेजुएला में इसी साल जून में शक्तिशाली भूकंप आया था, जहां हजारों लोगों की मौत हुई है। आज तक ब्यूरो,
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: काटी बिजली, अब हटाया जनरेटर। गर्मी और उमस के बीच भी जारी है धरना। पूछताछ से मास्टरमाइंड ने खोली जेपीएससी नेटवर्क की पोल।
1: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन में पीएम का नौजवानों को संदेश, मुश्किलों से ना हारें, रील और शॉर्टकट के जमाने में भी ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें।
0: संसद भवन परिसर में एनडीए और विपक्ष का एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन। रांची लाठीचार्ज पर सत्ता पक्ष का विरोध, तो जंतर मंतर मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की नारेबाजी। सदन में आज भी हंगामे के आसार।
1: संसद में संग्राम के बीच राष्ट्रवाद वाला दांव। भारत मंडपम से निकली एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली। हर घर तिरंगा के संदेश के साथ नेशनल स्टेडियम तक मार्च, पूरा देश तिरंगा में।
0: और राम मंदिर सीईओ पद के फाइनल इंटरव्यू का आखिरी दिन। दावेदारों से पूछे गए अनुभव और खान पान से जुड़े निजी सवाल। लिस्ट में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस और अयोध्या के पूर्व डीएम शामिल।

0: खबरों का डबल डोज एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बात।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। सबसे पहले आपको संसद की कार्यवाही दिखाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई।
2: मेरा आप सबसे अनुरोध रहता है कि सदन चले, मतभेद हमारे हो सकते हैं, नीतियों में मतभेद हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। देश के लोगों का मत है कि नीतियों विचारों में मतभेद हो, गंभीर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन ये विचारों में अभिव्यक्त होना चाहिए। और इसलिए समय समय मैंने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की, विचार विमर्श किया, व्यक्तिगत भी की, सामूहिक भी की। मेरा आज फिर आपसे आग्रह है कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और विश्व स्तर पर भारत के युवाओं ने शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उद्यमिता, कई क्षेत्रों के अंदर विशेष पहचान बनाई है। आज उनका सामर्थ्य के कारण भारत का नाम दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों पर चर्चा हो। सरकार ने भी सहमति दे दी है, गृह मंत्री जी भी अपने वक्तव्य को देने को तैयार हैं। चर्चा हो, अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों सहमति बनाएं, विचारों को विमर्श करें। लोकतंत्र में आपस में सहमति बनती है। मेरा आप सबसे आग्रह है, पुनः आग्रह, निवेदन है, देश की भावनाओं को समझना चाहिए। देश चाहता है संसद चले, संवाद हो, चर्चा हो, और इसकी प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक सबकी है। मेरा आपसे आग्रह रहता है हमेशा कि संसद की प्रतिष्ठा को मत गिरने दो। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संसद की प्रतिष्ठा को इस तरीके से तख्तियां, नारेबाजी से गिरना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ नेता हैं, देश का नेतृत्व करते हैं। बालू जी, आप सीनियर लीडर हैं, मैं आपको अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर दूंगा। मेरा मत है कि प्रश्नकाल चलने दें, प्रश्नकाल के बाद आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अवसर पर्याप्त दूंगा। प्रश्नकाल में चलने दें, आप तख्तियां लेकर सदन पे बैठे, अपनी अपनी सीट पे विराजें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी आप सदन में गतिरोध कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
3: रूल्स 9 और 10 ऑफ द जजेस इंक्वायरी रूल्स 1969।
0: बीच लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारी हंगामा एक बार फिर वही स्थिति और एक बार फिर वही बयान स्पीकर द्वारा कि लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित है।
1: लोगों की भी जिम्मेदारी है, जिन्होंने अपने सांसदों को चुनकर भेजा है, भले ही किसी भी दल का हो, तो उनसे पूछें जरूर कि आप तो हमारे मुद्दे उठाने के लिए संसद पहुंचे थे, लेकिन संसद तो चली ही नहीं, तो हमारे मुद्दे कब उठाए आपने?
0: और अब वक्त हो गया है शतक आज तक का।

0: मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रियम्प ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के संघर्ष और राष्ट्रपति पद तक के सफर पर आधारित है आत्मकथा। पीएम का नौजवानों को एक संदेश भी कि मुश्किलों से हारे ना, रील और शॉर्टकट के जमाने में भी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ें। भारत चीन सीमा पर शांति को लेकर एमईए का बड़ा बयान, रणधीर जायसवाल बोले कि एलएसी पर शांति और स्थिरता बेहद अहम, दोनों ही देश बातचीत जारी रखेंगे। नीट यूजी पेपरली केस में सीबीआई की चार्जशीट पर आज कोर्ट का फैसला, लगभग 20,000 पन्नों की चार्जशीट में 13 आरोपी। नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपियों को झटका, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट की याचिका खारिज। संसद में संग्राम के बीच में एनडीए का राष्ट्रवाद वाला दांव, भारत मंडपम से निकली तिरंगा बाइक रैली, हर घर तिरंगा का संदेश, एनडीए सांसदों का नेशनल स्टेडियम तक मार्च, तिरंगे के रंग में रंगा दिखा देश। दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिखाई हरी झंडी, उपराष्ट्रपति ने हर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ किया। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व किया, डीयू के माई भारत वॉलंटियर्स भी शामिल हुए। श्रीनगर में सीआरपीएफ ने हर घर तिरंगा रैली की और जवानों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया।
1: संसद के मॉनसून सत्र में दो दिन बाकी, हंगामा बरकरार। संसद भवन परिसर में एनडीए और विपक्ष के सांसदों का एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन, रांची लाठीचार्ज पर सत्ता पक्ष का विरोध, जंतर मंतर के में मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की नारेबाजी। एफसीआरएफ बिल पर सरकार विपक्ष आमने सामने, कांग्रेस से बिल वापस लेने की मांग की। एफसीआरएफ बिल को जेपीसी भेजने को तैयार है सरकार, लेकिन विपक्ष में मतभेद, टीएमसी कांग्रेस और डीएमके के अलग अलग रुख। एफसीआरएफ में नया प्रावधान बना, विवाद की वजह विदेशी फंड और संपत्तियों की निगरानी के लिए अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव, विपक्ष जताई आपत्ति। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई को लेकर अमित शाह के जवाब पर अड़ा विपक्ष, सरकार बोली पहले उचित चर्चा फिर गृहमंत्री देंगे जवाब। रांची में छात्रों के आंदोलन का 19वां दिन, प्रदर्शनकारियों की संख्या आधे से कम, समर्थन में आई कमी, रोज चाय नाश्ता और खाना लेकर आने वाले समर्थक भी नहीं दिखे। रांची मेंशन में पहले छात्रों के मैदान में काटी गई बिजली, स्टेडियम में देर रात पहुंचे अफसर, पूछताछ में आरोपी अभय तिवारी ने खोली पूरे नेटवर्क की पोल। छात्र आंदोलन के बीच परीक्षा सुधार की पहल, सरकार ने युवाओं से मांगे सुझाव, 8,500 युवाओं ने रखी अपनी बात। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद पर आंदोलन जारी, सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग। देवेंद्र महतो ने अस्पताल से इंसाफ के नाम पर जारी किया खुला पत्र, अस्पताल में 10वें दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जारी है उनका अनशन।
0: हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले कि पहले भगवा कपड़ों में भ्रम फैलाते थे, अब छात्रों के वेश में कर रहे हैं, और लखनऊ की कंपनी पर भी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। प्रशांत किशोर ने छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई को गलत कहा, लाठीचार्ज से युवाओं की आवाज दबेगी नहीं, रोजगार और शिक्षा की समस्याओं का समाधान सरकार करे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का आरोप, बोले कि बीजेपी के लोगों को भेजकर छात्रों के प्रदर्शन को भड़काने की कोशिश की। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि राजस्थान में 19-20 पेपर लीक हुए तब चुप रही कांग्रेस, दिल्ली में हंगामा, झारखंड में भी चुप्पी। अरविंद केजरीवाल ने झारखंड में छात्रों का समर्थन किया, बोले कि सरकार तुरंत उनकी मांग माने, छात्रों के खिलाफ हिंसा स्वीकार्य नहीं। बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, कहा 1-2 साल में 10,000 बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने का दावा। बांकीपुर के बेरोजगार युवाओं के बायोडेटा जमा करने की भी अपील, प्रशांत किशोर बोले कि देश भर में निजी कंपनियों में रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र आज, कोलकाता हावड़ा वार्ड पर सीमन बिल पर चर्चा, कोलकाता नगर निगम में 144 से बढ़ाकर 209 यहां पर वार्ड होंगे। कोलकाता में ममता बनर्जी के खिलाफ लगे चोर चोर के नारे, नेताजी के सम्मान में टीएमसी के कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ।
1: कर्नाटक विधानसभा सत्र से पहले सीएम की अहम बैठक, कल से शुरू हो रहे सत्र की रणनीति पर मंत्री और विधायकों संग हो गया मंथन। वाल्मीकि विकास बोर्ड घोटाले को लेकर बीजेपी जेडीएस का सरकार पर हमला, मंत्री राघेन्द्र के इस्तीफे की मांग, विधानसभा में हंगामे के आसार। कैश एट रेजिडेंस मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा पर जांच रिपोर्ट आज संसद में होगी पेश। यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच कमेटी की रिपोर्ट संसद में होगी टेबल, दो खंडों के साथ मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य रखे जाएंगे। यशवंत वर्मा मामले में संसद में आगे बढ़ेगी कार्रवाई, जांच रिपोर्ट में क्या निकला आज होगा खुलासा। राम मंदिर में फुल टाइम सीईओ की रेस तेज, 5,200 आवेदन में 18 शॉर्टलिस्ट, इंटरव्यू में आस्था से लेकर नेतृत्व क्षमता तक की परीक्षा, शिखा जनेऊ से लेकर शाकाहार और शराब पर सवाल। 2 सितंबर तक ट्रस्ट को मिलेंगे 3 नाम। पूर्व आईएएस आईपीएस अधिकारियों समेत 18 उम्मीदवारों की दावेदारी। मंदिर प्रशासन, वित्त सुरक्षा और श्रद्धालु व्यवस्था संभालेगा नया सीईओ। 2027 चुनावी जंग से पहले सीएम योगी का जनसंवाद प्लान। 1 महीने में 100 से ज्यादा विधानसभा सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर सपा कांग्रेस पर साधा निशाना। गोरखपुर में सीएम योगी ने सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों का किया उद्घाटन। गोरखपुर को विकास की नई सौगात। यूपी में युवाओं की नाराजगी दूर करने मैदान में उतरेंगे यूपी के मंत्री जयंत जी चौपाल। में सुनेंगे समस्याएं, बताएंगे सरकार की योजनाएं।
0: नोएडा एयरपोर्ट में जलभराव पर अखिलेश यादव का तंज। अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी? अखिलेश का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। यूपी चुनाव को लेकर सपा का बड़ा सर्वे प्लान। 403 विधानसभा सीटों पर चल रहा है 3 स्तरीय आंतरिक सर्वे। टिकट बंटवारे से पहले बूथ बूथ का जातीय गणित भी खंगाल रही है सपा। अयोध्या चंदा चोरी मामले पर सांसद अवधेश प्रसाद का दावा, बड़ी मछली को बचाने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया जेल। अवधेश प्रसाद का आरोप, पहले लाखों की भीड़ और सोने चांदी का चढ़ावा आता था, अब 10,000 भी नहीं आ रहा है। अयोध्या की मर्यादा को कलंकित करने का आरोप। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा का जिला अस्पताल में छापा, बद इंतजामी देखकर भड़क गए विधायक। औचक निरीक्षण का वीडियो वायरल। ताजमहल में पूजा की मांग वाली याचिका पर आज आगरा कोर्ट में सुनवाई और स्मारक को तेजो महालय मंदिर बताने का दावा किया गया। हिमाचल में आधी रात को महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, 60 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम, सेस के जरिए बढ़ोतरी। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोले समझौता कर चुके पीएम ने भारत के हित बेचने पर मजबूर किया। बद्रीनाथ मंदिर दान चोरी मामले में बीकेटीसी का बड़ा एक्शन, जांच जारी है। संवेदनशील जगहों पर हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित कर्मचारी दहशत में, आतंकी संगठन की धमकी के बाद से बड़ी संख्या में जम्मू पहुंचे।
1: हिमाचल कुल्लू में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, पहाड़ से गिरे भारी पत्थर मलबे की चपेट में आई कार, 2 लोग थे सवार। गंगापुर में झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न, शहर में जलभराव के चलते लोगों का आवागमन दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। बिजनौर में तेज बारिश के चलते सड़कें जलमग्न, बिजली घर में घुसा पानी, जलभराव से लोगों की बड़ी मुश्किल। ग्रेटर नोएडा में तेज बारिश से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पार्किंग एरिया जलमग्न, सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। एयरपोर्ट के टर्मिनल से पार्किंग जाने वाले रास्ते पर भरा बारिश का पानी, यात्रियों को हुई परेशानी, 30 मिनट में जलभराव।

0: NH46 पर जलभराव से लगा जाम। भारी बारिश के चलते एक रेलवे अंडरपास में भरा बारिश का पानी, गांव का संपर्क टूटा, लोगों की आवाजाही में दिक्कत। बूंदी में दो दिन की बारिश से शहर जलमग्न, सड़कों ने लिया नदी का रूप। कठुआ में फंती उज नदी में फंसे 7 लोगों का रेस्क्यू, जे एन के पुलिस और एसडीआरएफ ने 6 महिलाओं समेत एक बच्चे को सुरक्षित निकाला।
1: जम्मू कश्मीर में बारिश से उफना ये दरिया, बमियल में सड़क पर बह रहा है पानी। पठानकोट के बामियल सेक्टर में बाढ़ जैसे हालात हैं, उफान पर है उज और जलालिया दरिया। महीसागर में भारी बारिश के चलते जल भरा हुआ एक गांव का दूसरे गांव से भी संपर्क टूटा, 25 से 30 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पौड़ी में बारिश ने बढ़ाई छात्रों की मुसीबत, एक साल से नहीं बन पाया यहां पर पुल और वो बह गया, एक साल पहले ही बना था। पंथी पानी और जंगल के रास्ते स्कूल जाने को मजबूर है छात्र।

0: मुंबई के घाट घूपर में लैंडस्लाइड, लगभग 7 घरों पर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा, 5 लोगों की मौत, मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू जारी। जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी है, मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ साथ फ्लैश फ्लड की आशंका जताई है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चेनाब नदी में लापता 2 युवकों की तलाश तीसरे दिन भी जारी है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फ्लैश फ्लड का कहर दिखा और उजहर नदी में फंसे हुए 7 लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू किया। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से परेशानी, 4-लेन हाईवे को 1 लेन बंद किया गया।
1: मुंबई के विलेपाले बहुमंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर भीषण आग, 2 की मौत, 2 का अस्पताल में इलाज जारी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर रवाना। आग और धुएं से मौके पर मची अफरा तफरी, ऊपरी मंजिलों पर फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। धुएं के कारण ऊपरी मंजिलों पर फंस गए कई लोग, दमकल विभाग ने रेस्क्यू कर छत से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट की आशंका के बीच जांच जारी। जैसलमेर में स्कूली बच्चों से भरी बस में लगी आग, हादसे में 17 छात्र सवार, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। पटना में अज्ञात कारणों से बाइक पर आए अपराधियों ने युवक को मारी गोली, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र जालना में तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक को मारी टक्कर, बाद में नियंत्रण खोते हुए कुएं में गिरी, हादसे में 2 की मौत। गोंडा में बेटी की हत्या मामले में पिता और सौतेली मां को उम्र कैद, 2 साल पहले गला रेत कर हत्या। अंबिकापुर में हैरान करने वाला मामला, 42 दिन पहले सिपाही की मौत, कागजों में चलता रहा इलाज।

0: नाउ श्रीमान सतनाम सिंह साधु जी।
1: थैंक यू सर। मैं पंजाब दी आन बान ते शान शेरे पंजाब महाराजा
0: आई एम ऑलरेडी गिवन माय रूलिंग
1: एंड द मुद्दा
0: इफ एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग यू कैन कम टू माय चैंबर
1: चेयरमैन साहब
0: एनीबॉडी वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स आई एम इनवाइटिंग एवरी मेंबर।
2: और अब आपको दिखाते हैं कि ऐसा वायरल वीडियो जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि वो माफिया अतीक अहमद की बेटी की गाड़ी के एक्सीडेंट के ठीक पहले का वीडियो है। दरअसल ये वीडियो उस गाड़ी के शूट होने का दावा है जो अतीक के बेटे की कार की ठीक पीछे चल रही थी। उसी कार के डैशबोर्ड पर लगे कैमरे से लिए गए इस कथित वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक सफेद कार आगे आगे चल रही है। वो कार एक गाड़ी को ओवरटेक करती है और चंद सेकंड्स के बाद अचानक वो डिवाइडर से टकरा जाती है। टक्कर होते ही स्पीड की वजह से कार उछलती है, उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। इसी एक्सीडेंट में अतीक के छोटे बेटे की मौत हो गई थी। प्रशासन का दावा है कि इस वीडियो की जांच कर रहा है और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी।
3: वायरल वीडियो ये दर्शा रहा है कि एक तो स्पीड कितनी ज्यादा थी, बहुत स्पीड में ये गाड़ी दिखाई दे रही है और फिर जब जैसे ही ओवरटेक ये गाड़ी करते हैं और उसके बाद वो पलट जाते हैं और इतनी स्पीड में जो कोई भी गाड़ी हो तो उसमें बैठे हुए लोगों का बच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिस स्पीड में दिखाई दे रहे हैं। अभी इस वीडियो की जांच चल रही है। ये वही उसी हादसे का वीडियो है जिसमें अतीक अहमद की बेटी की मौत हुई थी। ये अभी क्लियर नहीं है, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद के बेटे की गाड़ी के पीछे गाड़ी चल रही थी, उसमें डैश कैम लगा हुआ था, उसमें सब रिकॉर्ड हो रहा था। ये दावा है अभी और प्रशासन इसकी जांच कर रहा है।
2: समर्थ से योगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, क्या पुष्टि हो गई है वीडियो की? ये वही वीडियो है एक्सीडेंट का?
4: नहीं, देखिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का वो बेटा जिसका नाम अबान है, जिसकी हाल ही में कार एक्सीडेंट में मौत हुई है, उसकी गाड़ी का ये वीडियो बताया जा रहा है जो चर्चा इस वक्त चल रही है। पीछे जो एक गाड़ी आ रही थी उसके डैश कैम में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि अबान की अगर वो गाड़ी है तो बहुत तेज गति में वो गाड़ी चल रही है और कहीं ना कहीं आगे जाकर वो गाड़ी कंट्रोल खो देती है और आगे खड़े एक डिवाइडर से इस तरीके से टकराती है कि गाड़ी उछल कर दूसरे छोर पर गिरती है और वहां उस स्थिति में गाड़ी में जो बैठे लोग हैं, खासकर जो आगे बैठे होंगे, उनका बचना बेहद ही मुश्किल होता है और ऐसे में अबान की इस पूरी घटनाक्रम में मौत भी हो जाती है। हालांकि इस वीडियो की अभी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन पुलिस अधिकारियों के पास यह वीडियो पहुंचा है और झांसी पुलिस इस वीडियो की फिलहाल जांच कर रही है, पता लगा रही है क्या ये वही वीडियो है जिसमें अबान की मौत हुई है या ये वही गाड़ी है जिसमें अबान सवार था, अतीक अहमद का बेटा, जिसमें आपने देखा कि अतीक अहमद के अन्य जो बेटे जो जेल में थे वो भी वहां पर पहुंचे जब अबान की मिट्टी वहां पर हुई। तो कुल मिलाकर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और देखने में काफी भयावह लगता है। जिस प्रकार ये एक्सीडेंट हुआ है उसमें किसी का बच पाना बेहद मुश्किल लगता है। डैश कैम क्योंकि आजकल कार्स में चले हैं जो यूजुअली लगे होते हैं, उससे जो आगे या पीछे हो रहा है वो उसमें रिकॉर्ड होता चलता है और उसी डैश कैम का ये एक वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें बताया ये जा रहा है।
3: समर्थ, आपके पास लौटते हैं, इसमें राज्यसभा में जेपी नड्डा बोल रहे हैं।
5: सुष्मिता देव हैज टू से दैट शुड बी आल्सो ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड एंड सो प्लीज अलाउ सुष्मिता देव टू स्पीक। द हाउस विल मीट अगेन एट 2 PM टुडे।
2: तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को 2 बजे तक ले स्थगित कर दिया है। इसको इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: to finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबा केसरी हिंट बड़े आराम से.
2: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।

अगस्त में आसमान से बरस रही है आफत। बादल फटने के बाद चमोली में तबाही का मंजर। पहाड़ों से आए मलबे ने सब कुछ बहाया। सावन का महीना चल रहा है और देवभूमि में मानसूनी आफत का सिलसिला जारी है। चमोली की नीत घाटी में सोमवार को भारी बारिश के बीच बादल फटने से तमक नाले में ऐसा सैलाब आया कि जो भी चपेट में आया सब बह गया। ये तस्वीरें देखिए, पहाड़ों से आ रहे मलबे को देखकर जेसीबी चालक जेसीबी को पीछे की तरफ लेने की कोशिश करता है, लेकिन सैलाब की रफ्तार को वो मात नहीं दे पाया और जेसीबी पानी की धार में बहने लगी। गनीमत ये रही कि वो बच गया। लेकिन सैलाब के रौद रूप में एक गाड़ी बह गई। एक और तस्वीर देखिए, पहाड़ों से आए मलबे की रफ्तार इतनी तेज है कि लोहे का पुल ताश के पत्तों की तरह बह रहा है। महज 30 से 35 सेकंड में मलबा अपने साथ पुल को ले गया। पुल बहने से नीत घाटी के 13 गांव का जोशीमठ से संपर्क टूट गया है। नीत घाटी में मलबा तो बह गया लेकिन अपने पीछे एक तबाही का मंजर छोड़ गया है। अब चमोली पुलिस SDRF और NDRF की टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। बादल फटने के बाद आए मलबे ने भारी तबाही मचाई है। नदी किनारे के खेतों में मलबा, पत्थर और बोल्डर से भारी नुकसान पहुंचा है। चमोली से कमल नयन सिडोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: रांची में अंचल पर बैठे छात्रों पर दबाव बनाने की कोशिश, रात में काटी बिजली, अब हटाया जनरेटर, गर्मी और उमस के बीच जारी है धरना, पूछताछ मासूमाई ने खोली जेपीएससी नेटवर्क की पोल।
1: जबरदस्त हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित, संसद परिसर में एनडीए और विपक्ष का एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन, रांची लाठीचार्ज पर सत्ता पक्ष तो जंतर मंतर मसले पर इंडिया गठबंधन का विरोध।
0: रामनाथ कोविंद की आत्मकथा के विमोचन में पीएम की नौजवानों को संदेश, मुश्किलों से ना हारे, रील और शॉर्टकट के जमाने में ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़े।
1: संसद में संग्राम के बीच राष्ट्रवाद वाला दांव, भारत मंडपम से निकली एनडीए सांसदों की तिरंगा बाइक रैली, हर घर तिरंगा के संदेश के साथ नेशनल स्टेडियम तक मार्च।
0: सीईओ पद के फाइनल इंटरव्यू का आखिरी दिन, दावेदारों से पूछे गए अनुभव और खान पान से जुड़े निजी सवाल, लिस्ट में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, आईपीएस और अयोध्या के पूर्व डीएम शामिल।

0: गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं।
1: रांची में छात्र आंदोलन का आज 19वां दिन है और अब इस आंदोलन की रफ्तार और धार थोड़ी धीमी होती दिख रही है। धरना स्थल पर गहमा गहमी कम है। मौका देखकर सरकार ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। खबर यह है कि धरना स्थल को सप्लाई होने वाली बिजली काट दी गई।
2: अब उधर इस पूरे मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने कुछ अहम खुलासे किए हैं। अब सीआईडी को यह बताया गया है कि आखिर कैसे सालों से पैसे फेंको और नौकरी पाओ वाला खेल चल रहा था।
1: तो झारखंड की परीक्षाओं में कई सालों से धांधली चल रही थी। लाखों रुपए लेकर पदों और नौकरियों की बंदर बांट हो रही थी। सीआईडी की गिरफ्त में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने खुद ये खुलासा किया कि उसने लाखों रुपए लेकर नौकरियां दिलवाई।
2: अभय तिवारी ने यह खुलासा किया और अभय तिवारी की अगर माने तो हर परीक्षा के लिए रेट लिस्ट तय थी। पैसा फेंको और मलाईदार नौकरी पाओ, ये सिलसिला सालों तक झारखंड में चलता रहा और भ्रष्टाचार की इस लूट में तमाम बड़े अधिकारी शामिल थे। तमाम बड़े अधिकारी अभय तिवारी ने खुलासा किया है। 11वीं से लेकर 14वीं जेपीएससी तक इंटरव्यू में नंबर बढ़ाने की बकायदा डील हुई थी।
3: आपने मूसलाधार बारिश के बीच छात्रों के आंदोलन की आग देखी। आपने विधानसभा घेराव के दौरान इन छात्रों का हौसला देखा। आपने छात्रों पर रांची पुलिस की ज्यादती देखी। छात्रों पर लाठियां बरसते देखा और उन्हें एक एक कर घायल होते देखा।
4: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो,
5: पूरे देश के युवाओं पे लाठी चले।
4: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, लाठी चार्ज कर रही है पुलिस। हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है। हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
3: रांची में दो दिन पहले क्या क्या हुआ इसे पूरे देश ने देखा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सहानुभूति के बजाय पुलिस का बचाव करते दिखे।
6: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है। अध्यक्ष महोदय, जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आता।
3: सोरेन यहीं ठहर जाते तब भी गनीमत होती, लेकिन अब वो जुल्म पर उतर आए हैं, बदले पर उतर आए हैं। खबर है कि रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
7: घड़ी में छात्रों की संख्या बढ़ने लगती थी, वो आज अब आधे से भी कम होने लगी है। ज्यादातर छात्र या तो जा चुके हैं या इस समय धरना स्थल पर मौजूद नहीं है। बीती रात प्रशासन यहां पर आया। छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई, और अब इस उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोग?
8: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी और सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी। अब इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था। जो हम लोग का लाइट वो जल रहा था, जो जनरेटर से हम लोग का चल रहा था।
3: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। सरकार ये बात समझती है, इसलिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये दबाव उस सच को नहीं दबा सकता जो एक एक कर सामने आ रहा। सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। ACF के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने CDPO परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली।
9: झारखंड में JPSC और JSSC की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही राज्य की CID के सामने अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने CID से पूछताछ में बताया है कि कैसे अलग अलग परीक्षाओं में लाखों रुपए में नौकरी की डील हुई। अभय तिवारी ने यह बताया है कि उसने किन परीक्षाओं में करोड़ों की राशि की वसूली की, कैसे एजेंट्स के जरिए जो नियोक्ता एजेंसियां थी उनको लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में CID अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और TDPL कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि CID की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनका यह कहना है कि CBI जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशिभूषण, आज तक रांची।
2: तो सिर्फ यही नहीं बल्कि पूर्व की परीक्षाएं भी अब सवालों के घेरे में। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ गए, आशुतोष मिश्रा हमारे साथ है, शशिभूषण हमारे साथ है। लेकिन शशिभूषण, अब जो ये खुलासे हुए हैं, इन खुलासों के बाद सरकार क्या करेगी? क्या पुरानी परीक्षाएं जो हुई हैं और उसमें जो चयनित हुए हैं उनको फिर से जो है परीक्षाओं में बैठना होगा, फिर नए सिरे से सारी चीजें शुरू होंगी, या फिर सब नजरअंदाज कर दिया जाएगा?
9: देखिए राजीव, जो सबसे अहम सवाल है वही सवाल आप पूछ रहे हैं और सरकार के सामने यही यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि जो CGL की परीक्षा हुई उसमें जो नियुक्तियां हो गई जिसमें गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है, जो सेवा में आ गए उनको कैसे सेवा से बर्खास्त किया जाए? अगर आप कैंसिल करते हैं उस पूरी प्रक्रिया को, तो फिर जो सेवा में है वो न्यायालय का रुख करेंगे, फिर उनका दबाव होगा कि उनकी नियुक्ति जब हो गई तो कैसे उसको निरस्त किया जा रहा है। तो वहां पर सरकार की चिंता है या पूरा पेंच पे फंसा हुआ नजर आ रहा है। रही बात जो बड़ी मांग एक छात्रों की और है, जो दूसरी बड़ी मांग कि CBI की जांच हो, सरकार की तरफ से CID जांच कराई जा रही है। CID ने जो पूछताछ की है अभय तिवारी से, उसमें जो जानकारियां छन करके बाहर आई हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं, वो खबर अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं कि किस परीक्षा में लगभग कितने की डील हुई, कैसे कौन कौन से एजेंट्स काम कर रहे थे। एक शख्स की कल गिरफ्तारी हुई मुंबई से जो बिहार के नालंदा का रहने वाला है, उसकी भी एक भूमिका है, उसकी भी एक जांच हो रही है, उसको आज CID रिमांड पर लेने वाली है। अब दूसरे लोगों से भी पूछताछ CID लगातार कर रही है। लेकिन इन सबके बीच में अगर CBI जांच के लिए सरकार तैयार नहीं है, हेमंत सोरेन सरकार, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि अगर CBI की एंट्री जो है JSSC के मामले में होती है, CGL के मामले में होती है, तो उन परिस्थितियों में जो केंद्रीय एजेंसी है उसका दबाव सरकार या सरकार से जुड़े उन लोगों के ऊपर होगा या हो आगे बढ़ सकता है, जो लोग सरकार की तरफ से, मतलब मौजूदा हेमंत सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए थे आयोग में, जो करीबी हैं सरकार के, तो उनकी परेशानी शायद और ज्यादा बढ़ जाए CBI की जब एंट्री होगी। और इसी वजह से शायद सरकार के जो 3 मंत्री बातचीत कर रहे थे नेहा, वो ये कह रहे थे कि CBI का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, इसलिए हम लोग उसके लिए तैयार नहीं है। जी
1: आशुतोष मिश्रा से मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, इस आंदोलन को गति देने के लिए छात्र क्या करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है, जो लोग इन्हें खाने के तौर पर मदद पहुंचा रहे थे वो भी अब कहीं ना कहीं नदारद दिख रहे हैं, बिजली वहां से काट दी गई है, कैसे ये आंदोलन अब उसी तरीके से गति पकड़ेगा जैसे पहले या दूसरे दिन था?
7: बहुत मुश्किल लगता है, 19वां दिन है, और अगर मैं एक बार कैमरा घुमा करके आपको संख्या दिखाऊं तो आमतौर पर सुबह के इस वक्त जो पंडाल भर जाता था, अब वहां 10-15% से ज्यादा लोग आम दिनों के मुकाबले नहीं बचे हैं। कई सारे छात्र जब प्रशासन रात को आया, उनके ID चेक होने लगे, पूछताछ होने लगे, और डर हर किसी को लगता है, और वो बच्चे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं, तो आखिरकार है ना, एक रेजिस्टेंस की भी एक सीमा होती है, वो कितना बर्दाश्त करें। स्टेज पर हालांकि अभी भी अनशनकारी डटे हैं, 2 अनशनकारी यहां पर भी हैं, जो यहां पर जो कोर ग्रुप है वो भी जस का तस बना हुआ है। यहां पीछे जो ब्लू आपको बड़ा इन्वर्टर दिखाई दे रहा है, जनरेटर, अब ये चल रहा था, इसको इसके तार काट ले गए, उन्होंने नहीं पता, कह रहे जिसका था वो लेकर के जा रहे हैं। एक छोटे जनरेटर के सहारे इस उमस भरी गर्मी में, जहां फील्ड टेम्परेचर 45 डिग्री हो जाता है, नमी मार देती है, बारिश में लाइट में परेशानी हो, उसके सहारे अभी आंदोलन चल रहा है। लेकिन कोर ग्रुप के जो छात्र हैं, मैं जरूरी आपसे जानना चाहूंगा, धरना हो गया, मार्च हो गया, BJP का प्रदर्शन हो गया, कोई रास्ता दिख रहा है? यहां से आगे रास्ता क्या है?
10: रास्ता भी लंबी है, बार बार लड़ाई लंबी अभी और लड़ना है, हम लोग लड़ते रहना है।
11: कोई तो दिशा होगी, कुछ तो तय किया होगा।
10: दिशा अभी हम लोग है, सब छात्र लोग आ रहे हैं, जन आंदोलन का होगा, जन आंदोलन।
11: जीवन 18 दिन और आज 19वां दिन, क्या फर्क नहीं दिखाई दे रहा है?
12: बिल्कुल फर्क है। फर्क इस बात से भी है कि सरकार के जो प्रशासनिक इकाई है उनके ऊपर काफी दबाव है, इसीलिए 18 दिनों के बाद कल रात 19वें दिन का जो रात है।
1: ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब संसद भवन लिए चलेंगे, जहां पर छात्रों के आंदोलन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने दिखाई दिए। एक तरफ विपक्ष के सांसद थे जो गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद जो चर्चा से दूर भागने पर राहुल गांधी की घेराबंदी कर रहे थे।
13: एक तरफ जहां झारखंड बीजेपी के सांसद यहां संसद परिसर में राहुल गांधी से जवाब की बात कर रहे हैं, और यहां आप देखिए कि मकर द्वार पर लगातार झारखंड बीजेपी के तमाम सांसद जो हैं यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में इनके इस वक्त जो आप देख रहे हैं जो पोस्टर बैनर लगे हुए हैं, जिसमें झारखंड में छात्रों के साथ हुई अमानवीयता पर राहुल गांधी जवाब दो, राहुल गांधी के जवाब को लेकर के लगातार जो है इनके द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वही दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ जो कांग्रेस के तमाम सांसद हैं वो प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ तमाम जो दूसरे सांसद यहाँ पर, समाजवादी पार्टी के भी सांसद मौजूद हैं, इसके साथ साथ कांग्रेस के सांसद यहाँ पर मौजूद है। दो तरीके का इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस के सांसद ये मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जो आकर के सदन के अंदर जवाब दें। हालांकि अगर सरकार की बात करें तो सरकार लगातार ये कह रही है कि गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रदर्शन एक तरफ जहां यहां पर बीजेपी के तमाम सांसद जो हैं वो कर रहे हैं राहुल गांधी के जवाब देने की और सदन में आने की बात झारखंड के मुद्दे को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद इस वक्त संसद परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आकर के जवाब दें। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
2: हेमंत सोरेन की सरकार और उनकी पार्टी के सांसद अब जोर देकर कह रहे हैं कि आंदोलन में बाहरी तत्व शामिल हो गए हैं और राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। जेएमएम के सांसद विजय कुमार हंसंदा ने ये तमाम बातें कही हैं, क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको।
14: मांग है छात्रों की कि इस पूरे मामले में सीबीआई प्रोब हो, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है सर, क्यों नहीं आप रिकमेंड कर देते कि इसमें सीबीआई प्रोब?
15: देखिए, हर मांग हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ जगहों पे अगर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े तो बेहतर रहेगी। सेंट्रल एजेंसीज की का इस्तेमाल झारखंड में पहले भी किस तरह से हुआ है वो कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हमारे यहाँ कार्रवाई में अगर कमी हो रही है तब फिर हम बोलेंगे कि भाई हमें किसी और की आवश्यकता है। लोग अरेस्ट हुए हैं, कार्रवाई लगातार हो रही है, जो संशोधन की जरूरत है उसको सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं और सरकार ने संवाद का दरवाजा खुला हुआ है, और जो सक्षम प्रयास हो रहा है उसे सिर्फ भ्रमित करने का प्रयास, कुछ लोग लगातार उसमें दिख रहे हैं जो आंदोलन को खराब करना चाहते हैं या आंदोलन को भटकाना चाहते हैं, तो ये प्रयास हमारा उस ओर ध्यान भी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो छात्रों के लिए बेहतर और हमारे स्टेट में जो एग्जाम्स कंडक्ट होते रहे बेहतर तरीके से उस पे हम लोग काम करें।
14: लखनऊ की कंपनी, यूपी, बिहार के लोग, इस तरह की बातें मुख्यमंत्री ने कही है, क्या लगता है, क्या तात्पर्य है?
15: देखिए, अगर वैसा अगर हम लोग कहें तो हर जगह पे कोई ना कोई कंपनी काम कर रही है। हमारा इतना ही कहना है कि जो भी कंपनी इसमें या जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं इस पूरे गोरख धंधा में, उनको उनके सजा की जगह तक पहुंचाया जाएगा। अरेस्ट हुए भी हैं और आगे भी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। इवन कोर्ट के भी इसमें कई वक्तव्य हैं और लगातार उस पर जो है चल रही है काम।
1: और बात तिरंगा यात्रा की, संसद में संग्राम के बीच एनडीए सांसदों ने दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली और सांसद भारत मंडपम से लेकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक पहुंचे, बाइक से ये तिरंगा यात्रा निकाली गई।
2: वैसे तो हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त को ही शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली का ये इवेंट अब मुख्य आकर्षण का केंद्र है और इस साल इसका विशेष महत्व भी इसलिए है क्योंकि इस वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसे आयोजित किया जा रहा है।
16: तिरंगे को साक्षी मानकर के हम देश के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें, नियोजित करें।
17: जो है ये हमारा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा और महत्वाकांक्षाओं का भी प्रतीक है।
18: ये तिरंगा भारत की शान है और ये आज आह्वान है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है।
3: 15 अगस्त पर तिरंगा की ऐसी झांकी पहले कभी नहीं देखी गई। दिल्ली के भारत मंडपम से एनडीए सांसदों की निकली ये बाइक यात्रा भी अभूतपूर्व है। 15 अगस्त में अभी 3 दिन शेष है, लेकिन पूरा देश तिरंगा में हो रहा है।
19: 3 से 4 किलोमीटर का ये पूरा रन है जो शुरू होगा यहाँ से भारत मंडपम से जहाँ पर हम मौजूद है और नेशनल स्टेडियम तक जाएगा। तो ये आप देखिए, ये इस वक्त हम मौजूद है भारत मंडपम में जहाँ से अब तमाम जो बाइक्स हैं और ये आगे कुछ लोग जो अपनी गाड़ियों पे मौजूद है, ये सभी लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और सीधे नेशनल स्टेडियम जाएंगे। इस पूरे रूट को सैनिटाइज किया गया है, ट्रैफिक पुलिस के जवान मौजूद है ताकि कहीं किसी तरीके की न सिक्योरिटी और न ही किसी और तरीके की बाधा हो। तो पूरे रास्ते को सैनिटाइज किया गया है। अब आप देखिए, आपकी नजर जहां भी जाएगी आपको यहां पर तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा।
3: देश के कोने कोने से तिरंगा यात्रा की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। इन तस्वीरों को देख कर साफ कहा जा सकता है कि यह आयोजन खास है और इसका मकसद भी विशेष है।
18: विकसित भारत का संकल्प लेकर नौजवान निकले हैं पूरे देश में। ये तिरंगा भारत की शान है और ये आज आह्वान है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, भारत झुकने वाला नहीं है।
17: तिरंगा जो है ये हमारा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षा और महत्वाकांक्षाओं का भी प्रतीक है। ये रैली सेलिब्रेशन है, नमन है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को और सेलिब्रेशन है हमारे देश के युवा को जो विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा।
3: एक दिन पहले एनडीए सांसदों की मंगल मिलन बैठक में जमकर तिरंगा लहराया गया। बैठक में पीएम मोदी ने भी तिरंगा लहराया और अब एक दिन बाद तिरंगे के साथ एनडीए सांसदों की बाइक रैली निकली है। तिरंगे को लेकर पीएम मोदी का ये संदेश भी खास है।
20: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
3: गौर करने वाली बात यह है कि आखिर बीजेपी और एनडीए की इस तिरंगा रैली का मकसद क्या है? राष्ट्रवाद का मजबूत संदेश, राष्ट्रीय एकता का संदेश, विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त करना, एनडीए की एकजुटता दिखाना। गौर करने वाली बात यह है कि ये तिरंगा बाइक रैली ऐसे वक्त में हो रही है जब केंद्र की मोदी सरकार को कुछ दिन पहले ही छात्रों के आंदोलन का सामना करना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और ये बाइक रैली उस वक्त भी हो रही है जब राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर विपक्ष की ओर से रोजाना हमलों की बौछार हो रही है। हिमांशु मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
1: रेकर 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
21: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
22: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
23: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
24: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
23: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
25: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
26: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
27: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
28: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
23: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम मेलो केंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
29: संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद थी, लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन और छात्रों पर पुलिस एक्शन की सियासी टेंशन से विपक्ष का एजेंडा बदल गया। लेकिन अब जब मानसून सत्र के महज 3 दिन शेष है तो विपक्ष इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की तैयारी में लगा है। विपक्ष अब भी इस मुद्दे को धार देने की कोशिश में है। यही वजह है कि 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर पीएम मोदी को ही निशाने पर ले लिया। यानी विपक्ष की रणनीति यही है कि यूपी के चुनाव से पहले आस्था के मुद्दे पर बीजेपी को बैकफुट पर लाया जाए। हालांकि बीजेपी विपक्ष की रणनीति के जवाब में लगी है। योगी आदित्यनाथ के जनसभाओं और रैलियां में विपक्ष पर हो रहे हमलों में इसकी साफ झलक दिख रही है। माना जा रहा है कि छात्रों के मुद्दे के साथ साथ संसद में आज चढ़ावा चोरी पर भी जबरदस्त उबाल दिखेगा। आज तक ब्यूरो।
3: संसद में यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के सीधे टकराव की तस्वीरें हैं। एक और एनडीए सांसद झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमलावर है। दूसरी ओर विपक्ष चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आक्रामक। इन दोनों ही मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में तकरार है और उसका असर यूपी की सियासत में भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रयागराज में राहुल के कार्यक्रम के बाद छात्रों का मुद्दा भी यूपी के चुनाव से पहले अहम हो गया है। वहीं चढ़ावा चोरी का सवाल तो सीधे यूपी की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि एक ओर बीजेपी और एनडीए राहुल गांधी पर हमलावर है, तो अब सीएम योगी ने भी राहुल गांधी को सीधी चुनौती दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है तो उत्तर सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है। गृह मंत्री अमित शाह विद्यार्थियों से जुड़े विषय पर सदन में विस्तार पूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूर्णतः तैयार है। कांग्रेस और समूचे विपक्ष से अपेक्षा है कि तथ्यों का सामना करें, सदन की गरिमा बनाए रखें और उत्तर को पूरा सुने। लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद। समाजवादी पार्टी की रणनीति तैयार थी, कांग्रेस भी साथ था, इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन था, सरकार की घेराबंदी का पूरा खाका तैयार था। लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन, छात्रों पर पुलिस एक्शन पर सियासी टेंशन से विपक्ष का एजेंडा बदल गया। लेकिन अब छात्रों के मुद्दे की गूंज है और चढ़ावा चोरी पर भी संग्राम है। यूपी में इन दोनों ही मुद्दे पर सियासी रणनीति तैयार होनी शुरू हो गई है। आज तक पेरो।

0: पेट्रोल की बढ़ती लागत और E20 पेट्रोल को लेकर बनी आशंकाओं के बीच कार खरीदारों की पसंद बदलती दिख रही है। जो लोग कल तक पेट्रोल गाड़ियों को पहली पसंद मानते थे, वो आज CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का हिसाब किताब लगाने में जुटे हैं। नतीजा ये है कि भारतीय ऑटो बाजार में अल्टरनेट फ्यूल गाड़ियां पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से सड़क पर उतर रही हैं, जिससे CNG, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल गाड़ियों की बादशाहत को पहली बार इतनी बड़ी चुनौती मिल रही है, क्योंकि जुलाई में कुल बिक्री में CNG, हाइब्रिड और EV गाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़कर 40.6% पर पहुंच गई। वहीं पेट्रोल गाड़ियों की हिस्सेदारी 41.7% पर आ गई। एक साल पहले दोनों के बीच करीब करीब 13% पॉइंट्स का अंतर था, जो अब महज 1% अंक पर आ गया है। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह कम रनिंग कॉस्ट मानी जा रही है। साथ ही E20 पेट्रोल को लेकर भी ग्राहकों के बीच कई सवाल बने हुए हैं, जिससे CNG वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 24% पर पहुंच गई है। वहीं EV का हिस्सा भी बढ़कर करीब 8% हो गया है। उधर हाइब्रिड गाड़ियों की मांग भी लगातार बढ़ रही है, और अल्टरनेटिव फ्यूल वाहनों और पेट्रोल वाहनों की हिस्सेदारी के बीच का अंतर तेजी से घटा है। ऑटो डीलर्स का कहना है कि E20 पेट्रोल को लेकर बात
1: और से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, NDA की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है।
2: ये बहुत बड़ी खबर है, गृहमंत्री अमित शाह का बयान आ गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने ऑपोजिशन के सवालों पर जवाब देने की बात कही है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, आप मुझसे स्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं, संसदीय परंपरा में जैसे स्टेटमेंट दी जाती है हम वैसे ही देंगे। उन्होंने कटाक्ष भी किया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप 2 बजे पत्र दे दीजिए, 3 बजे से चर्चा शुरू करिए और कल 3 बजे तक चर्चा करिए, कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा।
1: देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज तीन बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे और कल दोपहर 3 बजे तक, हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है।
2: गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान है। गृहमंत्री अमित शाह ने अब गेंद विपक्ष के पाले में डाल दी है और एक तरीके से अब एक प्रेशर भी बन गया है ओपोजिशन को चर्चा में, अब ऐसा लगता आना होगा, क्योंकि ओपोजिशन की यही तो मांग थी कि गृहमंत्री क्यों नहीं आ रहे सदन में, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे। और अब गृहमंत्री ने खुद ही स्टेटमेंट दे दिया। अब तक तो सरकार के नुमाइंदे कह रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, ओपोजिशन अब भागे ना, लेकिन अब गृहमंत्री ने खुद कह दिया है कि आप दीजिए 2 बजे पत्र, 3 बजे से चर्चा शुरू करते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ गए। ऐश्वर्या, अब यहां से विपक्ष को मतलब वो तो यही मांग कर रहे थे, अब तो गृहमंत्री ने सामने से आकर कह दिया है, तो क्या ओपोजिशन चर्चा करेगा?
3: ये देखिए बहुत बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष आखिरकार ये चर्चा करेगा या नहीं करेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, एक बार नहीं बल्कि कई बार जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है किरण रिजिजू, वो एलओपी यानी कि राहुल गांधी, एक बार तो उनके चैम्बर में गए, उसके बाद उनसे फोन पे बात करी और ये कहा कि अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह तैयार हैं। और वही गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार में अपनी स्टेटमेंट में भी कहा, उन्होंने कहा आपको संसद को चलने देना होगा। ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि मैं आता ही नहीं हूं, कि मैं भाग गया हूं, मैं भाग कर आखिर जाऊंगा कहां। और ये देखिए वास्तविकता यही है कि गृह मंत्री अमित शाह जिस दिन से सदन चालू हुआ है उस दिन से गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर आ रहे हैं, विस्तार के अंदर स्टेटमेंट भी देना चाहते हैं और जितनी लंबी चर्चा विपक्ष करना चाहता है, सरकार ये डे वन से साफ कर चुकी है कि उतनी लंबी चर्चा के लिए चाहे 10 घंटे हो या 12 घंटे हो, भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरा का पूरा तैयार है। देखिए जो हमें समझ में आता है, कहते हैं ना द बॉल इज इन द ऑपोजिशन कोर्ट, अब जो फैसला लेना होगा वो विपक्षी पार्टियों को लेना होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से एकदम खुला प्रस्ताव है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि आज 3 बजे से लेके, क्योंकि देखिए संसद जो है वो स्थगित है, राज्यसभा लोकसभा दोनों 2 बजे तक के लिए, तो उन्होंने ये बात एकदम स्पष्ट की है कि आपको अगर चर्चा चाहिए तो आज 3 बजे से लेके कल 3 बजे तक का समय भी दिया गया है कि इतने घंटों की चर्चा हो सकती है। अब जो जवाब है वो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को देना होगा, क्योंकि देखिए अब अगर विपक्षी पार्टियां मानती नहीं है तो वो सरकार पर उंगली नहीं उठा सकती और वो ये नहीं बोल सकती कि सरकार जवाब देने से भाग रही है, क्योंकि सरकार गृह मंत्री ने खुद सामने आकर ये स्पष्ट किया है कि मैं बात करना चाहता हूं।
2: बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या दोपहर 2 बजे विपक्षी दल क्या पत्र देंगे, 3 बजे से क्या वो चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब गृह मंत्री ने तो स्पष्ट कह दिया है कि हम तो चर्चा के लिए तैयार है, मैं तो लगातार संसद में आ रहा हूँ, लगातार आ रहा हूं, लेकिन आप हंगामा कर रहे हैं तो सदन में आकर आदमी करे क्या? आपको सुनाते हैं गृहमंत्री अमित शाह ने क्या कहा।
1: खासा। देखिए सबसे पहले तो लापता भाग गए भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है, संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है।
2: तो गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ स्टेटमेंट नहीं होती, बहुत गंभीर विषय है और जो है हम चर्चा के लिए तैयार है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मौसमी सिंह भी इस खबर पर जुड़ गए। मौसमी, अब विपक्ष की तरफ गेंद है, क्या ऑपोजिशन अब चर्चा करेगा?
3: देखिए, राहुल गांधी अभी थोड़ी देर में इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और जाहिर तौर पे राहुल गांधी ये कहेंगे कि ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि लगातार विस्तार से चर्चा की मांग नहीं कर रहा है विपक्ष, वो सिर्फ अमित शाह का बयान चाह रहा है। जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं। पाल साहब, क्या कहना है आपका इस पे?
4: इससे साफ है कि कौन भाग रहा है सदन से, जब गृह मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हम सदन में जवाब देंगे चर्चा का, और इसके बाद अब विपक्ष अगर कह रहा है कि हम चर्चा नहीं चाहते हैं, हम केवल वक्तव्य भी चाहते हैं, तो गोल पोस्ट चेंज करना हुआ। और अब ये देश की जनता इस बात को जाने कि पूरा जो मानसून सत्र समा किया और जिस तरह से लगातार मांग कर रहे थे कि गृहमंत्री जी सदन में आए, वो रोज पार्लियामेंट में है और सदन में भी, कल भी संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, स्पीकर साहब ने कि गृहमंत्री जी जवाब देंगे चर्चा हो, लेकिन जिस तरह से सदन शुरू होते ही हंगामा कर रहे हैं और अब गृहमंत्री जी का खुद बयान आ गया कि मैं 3 बजे सदन में जवाब देने के लिए तैयार हूं, इसके बावजूद अब राहुल गांधी क्या प्रतिक्रिया देंगे?
3: और गृहमंत्री ये कह रहे हैं कि 3 से 3 बजे तक की चर्चा के लिए तैयार हूं, 8 से 3 बजे तक, कल से 3 बजे तक, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि विस्तार से हमें चर्चा नहीं चाहिए, सिर्फ गृहमंत्री के बयान चाहिए।
4: इससे साफ है कि विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, उसे कोई चिंता नहीं है। अगर गृह मंत्री से वो जवाब मांग रहे थे, गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं, तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर वो रांची की घटनाओं पे, उन युवाओं पे लाठीचार्ज पे क्यों उन्होंने चुप्पी साध रखा है। तो उनके पास जवाब नहीं है, न वो चर्चा होने देना चाहते हैं और न गृह मंत्री का जवाब चाहते हैं। ये केवल राजनीति का,
3: केवल राजनीति कर रहे हैं। राजीव, आप सुन रहे किस तरीके से तमाम यहाँ पे बीजेपी के जो सांसद हैं वो गृह मंत्री के बयान पे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बताया जा रहा है राहुल गांधी इसका विरोध करने वाले हैं। राहुल गांधी ये चेक
2: ठीक है,
3: नहीं चाहिए।
2: मौसमी, आप बने रहे हमारे साथ। इस समय कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब इमरान साहब, गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि 2 बजे पत्र दीजिए, 3 बजे से चर्चा शुरू करिए, कल दोपहर 3 बजे तक चर्चा करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी अब चर्चा करेगी?
5: नहीं, चर्चा क्या करेंगे, जवाबदेही पहले बताइए ना। जवाब तो ये तो बताइए, प्राइम मिनिस्टर पहले माफी तो मांगे कि बच्चों के ऊपर गोली चलाई। चर्चा से क्या मतलब है कि सिर्फ चर्चा करेंगे? चर्चा किस बात के लिए करेंगे? चर्चा इस बात के लिए करेंगे कि बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाई गई? चर्चा इस बात के लिए करेंगे कि बच्चों के ऊपर कांटोदार लाठी से हमला किया गया? किस बात के लिए चर्चा करेंगे साहब? जवाबदेही तय होनी चाहिए, जवाबदेही के बिना क्या मतलब है बात का।
2: तो इमरान मसूद साहब, जो आप सवाल पूछ रहे हैं यही है ना कि किसने चलाई, किसने आदेश दिया, क्यों चलिए, सारे सवालों का जवाब देंगे ना वो, लेकिन क्या आप चर्चा करेंगे?
5: जिम्मेदार तो पहले प्रधानमंत्री जी माफी मांगे हैं, देश से माफी मांगे कि उन्होंने बच्चों के साथ जुल्म किया है। प्रधानमंत्री जी माफी मांगे, जो राहुल जी बार बार बोल रहे हैं, और अमित शाह जी जिम्मेदार है, अमित शाह जी को बोलना पड़ेगा।
2: इमरान मसूद साहब, अगर उनको माफी भी मांगनी होगी, जो भी चीजें आप तर्क रखेंगे ना, उसके लिए चर्चा तो शुरू हो, उसमें सारी बातें आप रखेंगे, फिर अंतिम में उनका संबोधन होगा, उनकी बात होगी, एटलीस्ट चर्चा तो शुरू होगी, तो आप क्या उस प्रक्रिया का पालन करेंगे, क्या चर्चा करेंगे?
5: ठीक है, अभी ये पार्टी तय करेगी, अभी
2: ठीक है। इमरान मसूद साहब, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक बार फिर से सरकार पर हमलावरी है, लेकिन क्या चर्चा करेंगे इस पर उन्होंने सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि तय होगा, हो सकता है कि राहुल गांधी कुछ देर में ही उनका भी जो है स्टेटमेंट आ जाए। लेकिन हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। हिमांशु, एक सवाल सत्ता पक्ष से भी है कि गृहमंत्री अमित शाह जिन्होंने आज बयान,
6: इमेजिनेशन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। We are interested in one simple thing, and when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. Right? This is a... आपने मुझे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करते हैं।

0: नहीं करते हैं आप, हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए
1: सर उनका जो।
0: एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines, we don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 din ke liye, 20 din ke liye gayab ho gaye. Yahan baithe the, gaadi aati thi jaati thi, 30 gaadiyan unke, student should know this, 30 cars around Amit Shah. Unke ghar ke samne jaiye, wahan pe matlab 1000 police wale khade hue hain ki koi bachcha na aa jaye. Right? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। हमने खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. राइट, दिस इज आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं? नहीं नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करती हैं? नहीं, मेरा जवाब बोल दीजिए, आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए
1: सर उनका जो।
0: एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines, वी डोंट केयर what ही हैज टू से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। राइट, तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू।
2: राहुल गांधी की स्टेटमेंट और उनकी स्टेटमेंट की दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम दिलचस्पी इसमें नहीं दिखाते,
0: वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, ठीक है
1: सर? एक आखिरी सवाल ले लीजिए सर,
3: 2 बजे तक देंगे आप लोग।
2: तो ये राहुल गांधी की स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा कि वी डोंट केयर, हमें इसकी परवाह नहीं है। इस स्टेटमेंट से यह भी लगता है कि क्या आप कांग्रेस पार्टी शायद चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते, जो गृहमंत्री अमित शाह कह रहे थे। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता है। हिमांशु, राहुल गांधी के स्टेटमेंट से तो ये लगता है कि उनको कोई चर्चा नहीं चाहिए, उनको एक स्टेटमेंट ही चाहिए बस।
4: देखिए, कल तक कांग्रेस

0: की तरफ से या विपक्षी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इस पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन परसों से जब से सरकार तैयार हुई है कि हम इस विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, तब से विपक्ष ये कह रहा है कि हमें चर्चा नहीं चाहिए, हमें गृहमंत्री का जो है वो स्टेटमेंट चाहिए जो 20 जुलाई से हुआ, लाठीचार्ज हुआ है जिसमें टीयर गैस छोड़ा गया है, उसके ऊपर जो है गृहमंत्री जवाब दे दे। और यही कारण है कि सरकार की तरफ से आज गृहमंत्री अमित शाह ने जो है वो मोर्चा संभाला और उन्होंने कहा कि आज 2 बजे तक जो है विपक्षी दल खासकर कांग्रेस जो है ये लिख के दे दें कब से चर्चा चाहते हैं, 3 बजे से चर्चा शुरू हो जाएगी, किस नियम के तहत चर्चा होगी ये लिख के देना होगा, और उसके बाद कल 3 बजे जो है दोपहर वो पूरी चर्चा का जो है जवाब देंगे, सदन में वो मौजूद रहेंगे, हर सांसद की बात को सुनेंगे और उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि उनको चर्चा नहीं चाहिए, उन्हें जवाब चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए। तो अब देखना यह है कि सरकार का क्या रुख रहेगा, क्या सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट जो है गृहमंत्री सदन में पढ़ेंगे, या फिर सरकार इस चीज को लेकर ही अड़ी रहेगी कि हम चर्चा चाहते हैं, आप चर्चा चाहते थे, हम भी चर्चा के लिए तैयार है, आप चर्चा करिए, चर्चा के बाद जो है गृहमंत्री सभी चीजों पर जो है जवाब देंगे। क्योंकि इसको लेकर काफी लंबे समय से जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो है रस्साकसी चल रही है, और अब जब सरकार तैयार है तो विपक्ष कह रहा है कि स्टेटमेंट दे दीजिए,
1: बिल्कुल, गतिरोध
0: और
1: भीतर
0: सत्ता
1: भी और
0: पक्ष कह रहा
1: बाहर
0: है
1: भी
0: कि नहीं
1: बना
0: हम
1: हुआ।
0: चर्चा चाहते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: हिमांशु, बने रहे आप हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। पहले गृहमंत्री अमित शाह ने बयान दिया और उसके बाद राहुल गांधी ने भी बयान दिया है। राहुल गांधी ने भी क्लियर कर दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी डोंट केयर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं यहीं पर आ रहा था। और अब सुनाते हैं क्या
2: तो
1: कहा
2: पहले
1: उन्होंने।
2: तो लापता भाग गए भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं, चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार है। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे और कल दोपहर 3 बजे तक, हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है।
1: हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, अब विपक्ष आए और चर्चा करे, ये स्पष्ट गृहमंत्री ने कहा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि हमें एक स्टेटमेंट चाहिए। मौसमी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। मौसमी, राहुल गांधी के स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि वो चर्चा तो नहीं चाहते हैं, तो क्या वो चर्चा नहीं करेंगे 3 बजे से, पत्र नहीं देंगे 2 बजे?
3: देखिए राजीव, हम लोग ने पहले ही आपको इंडिकेट किया था कि राहुल गांधी किसी भी कीमत पर तैयार नहीं होंगे कि इस पूरे मसले पर विस्तार से चर्चा हो। आप सुन रहे हैं कि किस तरह से गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसे मसले पर सिर्फ स्टेटमेंट नहीं हो सकता, 30-40 सवालों का जवाब देना होगा, समझाना होगा। देर रात तक हम चर्चा के लिए तैयार है, कल तक चर्चा के लिए तैयार है। तो कुल मिला के ये बात इस पर आके अड़ गई है कि गृह मंत्री विस्तार से चर्चा और जवाब देने के लिए तैयार हैं, और राहुल गांधी सिर्फ इसका जवाब चाहते हैं कि पैलेट गन्स किसने चलाई, उसका आदेश किसने दिया, और इसको लेके वो कह रहे हैं कि मैं हमारी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि गृह मंत्री क्या कहना चाहते हैं और कौन कौन सी बातों पर मुद्दों को छूना चाहते हैं।
1: लेकिन मौसमी, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए संसद से बेहतर और जगह कौन सी हो सकती है? शुरुआत में तो आप यही कह रहे थे ना कि गृह मंत्री आए जवाब दें, अब वो जवाब देने के लिए आ रहे हैं, तैयार हैं, और ऑपोजिशन अगर पीछे हट रहा है तो इससे ना कहीं छवि तो उनकी ही धूमिल होगी कि वही चर्चा से भाग रहे हैं फिर।
3: बिल्कुल, देखिए इसमें 2-3 हाईलाइट्स हैं जो कि हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि संसद के मानसून सत्र का आखिरी दो दिन रह गए। पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात होती है, आधा सत्र उसमें डुल जाता है, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें, बीच में इस्तीफा भी दें, फिर उसके बाद अमित शाह जवाब दें, और उसको लेके अमित शाह जवाब दे को लेके आधा सत्र धुलने को आ ही रहा है कि ये पहले भी हो सकता था कि गृह मंत्री तैयार हो जाते जवाब देने के लिए। अब आखिरी दो दिन में जब तैयार हुए हैं तो विपक्ष नहीं तैयार है जवाब सुनने के लिए। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो रही है, पूरी तरीके से सियासी तौर पे ये मामला जो है तूल पकड़ लिया है। और क्योंकि लंबा जवाब अमित शाह देंगे तो झारखंड से लेके पेपर लीक से लेके नीट से लेके तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, ये ऑपोजिशन नहीं चाहता। ऑपोजिशन दो टूक जवाब चाहता है, सिर्फ दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ, जो बर्बरता की गई या जो टियर गैस इस्तेमाल हुई और पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, इसको लेके राहुल गांधी बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इस चर्चा के लिए तैयार होगी, और अगर गृह मंत्री अमित शाह 3 बजे सदन में जवाब देने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो जबरदस्त हंगामा होने वाला है। अब अभी 3 बजने में कुछ समय है राजीव, बीच में मध्यस्थता भी की जाएगी, शायद आपस में बातचीत किया जाए, पर बीच का रास्ता इख्तियार होता मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें अमित शाह का सिर्फ स्टेटमेंट होगा और उसके बाद विपक्ष उसमें विघ्न डाल सकता है, अमित शाह को मैट पर टारगेट कर सकता है, और ये सरकार नहीं चाहती।
1: बिल्कुल मौसमी, एक बार राहुल गांधी का बयान भी सुनवा देते हैं, क्या राहुल गांधी की तरफ से गृहमंत्री के बयान के बाद कहा गया है।
4: मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। We're not interested in him giving us a lecture or a discussion. We're interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. राइट, दिस इज आपने मुझे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करते हैं? नहीं नहीं, जब वो बोलते हैं, सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं? नहीं, मेरा जवाब बोल दीजिए, आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप? उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए
5: सर उनका जो
4: एक सेकेंड द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines, we don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 din ke liye gayab ho gaye. Yahan baithe the. Gaadi aati thi, jaati thi. 30 gaadiyan unke. Student should know this. 30 cars around Amit Shah. Unke ghar ke saamne jaiye, wahan pe matlab 1000 police wale khade hue hain. Ki koi bachcha na aa jaye. Right? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं बट गुब्बारा फट गया है अमित शाह हैज नो करेज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज ही कैन नॉट कम टू द हाउस थैंक यू
1: तो ये राहुल गांधी के स्टेटमेंट हमने एक बार फिर सुना लेकिन मौसमी राहुल गांधी के पास बहुत सारे सवाल हैं वो तो मीडिया के सामने रख रहे हैं इतने सारे सवाल सदन के भीतर रखने में क्या दिक्कत है और वहीं पर जवाब सुनने में क्या दिक्कत है
3: माफ कीजिएगा राजीव कुछ कॉल आ गया था हाँ मैं ये कह रही थी कि देखिए आप राहुल गांधी जो अटैक करना चाहते हैं और जिस तरीके के आरोप अमित शाह पे लगा रहे हैं वो चाहते हैं कि अमित शाह सिर्फ इस बात का जवाब दें कि लाठीचार्ज हुआ या नहीं और उसका आदेश किसने दिया आरएएफ और दिल्ली पुलिस उनके अंडर आती है तो अमित शाह इस बात का जवाब दे कि उन्होंने ये ऑर्डर किसके कहने पर हुआ ये कार्रवाई जो हुई छात्रों पर ये किसके कहने पर हुई वही गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि इस पर पूरी विस्तार से चर्चा होनी चाहिए राहुल गांधी बेहद आक्रामक तेवर इख्तियार किए हुए वो भी जानते हैं
1: बिल्कुल वो हमने देख लिया लेकिन ये बताएं क्योंकि अगर आप पीछे हटेंगे तो फिर सवाल बहुत सारे उनसे पूछे जाएंगे तो क्या ऑपोजिशन के लीडर्स आपस में कुछ मिल रहे हैं 2 बजे से पहले कोई चिंतन मंथन कर रहे हैं या जो राहुल गांधी का स्टैंड है वही सभी पॉलिटिकल ऑपोजिशन के पार्टी का स्टैंड है अब
3: देखिए ये राहुल गांधी अभी इसमें देखा गया है कि सारा विपक्ष इसमें एकजुट है अगर राम मंदिर का मसला चला आता तो शायद समाजवादी पार्टी इस पूरे मसले पर थोड़ी ढिलाई बरतती और कहती कि चलिए लंबी चर्चा कर ली गई लेकिन अभी राजीव ऐसा लग रहा है कि इस पे लॉक जैम चल रहा है
1: आपके पास हम लौट रहे हैं इस बीच में बुलेट में आगे बढ़ने से पहले एक बार हेडलाइंस आपको दिखा देते हैं

संसद में चर्चा पर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले विपक्ष तैयार हो तो आज 3 बजे से कल 3 बजे तक चर्चा को तैयार। विपक्ष को दिया 24 घंटे चर्चा का प्रस्ताव, कहा विपक्ष चर्चा के लिए आए। संसद गतिरोध के बीच अमित शाह का विपक्ष को न्योता, हम सदन में चर्चा को तैयार हैं। अमित शाह ने खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया, बोले इस प्रकार की भाषा अशोभनीय है। अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, छात्रों पर पायलट गन चलाने का आदेश किसने दिया? अमित शाह ने दिया तो इस्तीफा दें।

0: संसद का ये मानसून सत्र अब खत्म ही होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है और ऑपोजिशन को एक प्रस्ताव दिया है कि आप आइए, आज दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू करते हैं और कल दोपहर 3 बजे तक चर्चा करते हैं और फिर मैं अपना बयान उसमें रख दूंगा। ऑपोजिशन के जितने सवाल हैं, जो सवाल हैं, सब सवाल आप रखिए, विपक्ष चर्चा करे, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। सदन में पूरा समय हम बैठे रहेंगे, रात भर अगर आप बैठने के लिए कहेंगे हम बैठेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑपोजिशन शुरुआत से हंगामा कर रहा है, उन्होंने ये भी कहा, जो सवाल पूछे जा रहे थे कि वो सदन में क्यों नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले दिन से आ रहा हूं, लेकिन ये तो चलने ही नहीं दे रहे हैं सदन। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आप जनता तय करें कि कौन जो है संसद की कार्यवाही से भाग रहा है।
1: देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है, शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे और कल दोपहर 3 बजे तक, हम तो क्वेश्चन अवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है,
0: तो तय विपक्ष को करना है, ये उन्होंने कहा। इस बीच में एक बड़ी खबर आपको ये भी देते हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और गृहमंत्री अमित शाह की इस समय मुलाकात चल रही है। गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए किरण रिजिजू पहुंचे हैं। संसद में जारी गतिरोध के बीच में एक ये अहम इस समय हलचल, इस समय एक अहम बैठक चल रही है। राहुल गांधी की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गई है, लेकिन इस बीच में मुलाकात। हमारे संवाददाता पीयूष इस खबर पर हमारे साथ है। पीयूष, अब दोनों के बीच में क्या बैठक इस समय चल रही है, क्या इसका एजेंडा है बैठक का?
2: ये देखिए, सरकार पूरी तरह से तैयार है राजीव, और यही प्रस्ताव गृहमंत्री अमित शाह ने भी रखा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष सदन में आए, चर्चा करने दें, सदन को चलने दें, तो हम हर चीज का जवाब देंगे। गृहमंत्री अमित शाह को आज खुद इसलिए भी आना पड़ा राजीव, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार सरकार की तरफ से प्रस्ताव विपक्ष को दिया गया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और ना सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जाएगा बल्कि पूरी पूर्ण चर्चा की जाएगी छात्रों के मुद्दे पर, चाहे वो जंतर मंतर की बात हो, झारखंड की बात हो, पंजाब की बात हो, देश भर में जो भी छात्रों के मुद्दे, उन सभी पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। और गृह मंत्री अमित शाह ने तो साफ ये भी कर दिया कि आज आप 2 बजे तक लिख कर दीजिए, हम 3 बजे से चर्चा शुरू करेंगे और कल 3 बजे गृहमंत्री अमित शाह जवाब भी देंगे। लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस पर मन नहीं बनाया है। राहुल गांधी ने इस बात को नकारते हुए अपनी बात रखी। अब कुछ समय कुछ और देर की बात है, 12:30 से ऊपर का समय हो चुका है। 1.5 घंटे के भीतर अगर विपक्ष अपनी चिट्ठी नहीं सौंपता है लोकसभा स्पीकर को तो फिर चर्चा नहीं हो पाएगी। सरकार ने सीधा प्रस्ताव, सीधा मैसेज, बड़ा आउटरीच जो है वो विपक्ष को किया और कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप सदन में आइए बात करिए। साथ साथ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल गृहमंत्री के लिए किया गया उसको लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की और कहा कि अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष को नहीं करना चाहिए, उनको सदन चलने देना चाहिए। और अगर सदन
0: पीयूष, एक सवाल यह भी है कि गृहमंत्री अमित शाह बिल्कुल इसी तरह के स्टेटमेंट मीडिया के सामने आकर अगर पहले ही दे देते तो प्रेशर विपक्ष जो है प्रेशर में रहता और तब चीजें और अलग होती जैसे आज है।
2: जी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन एक बात और समझनी होगी कि गृहमंत्री अमित शाह को आज इसलिए आना पड़ा क्योंकि इससे पहले किरण रिजिजू जो केंद्रीय संसदीय मंत्री हैं उन्होंने कई बार विपक्ष से कहा कि उनको सदन में आना चाहिए और सरकार जवाब देने के लिए तैयार है और गृहमंत्री अमित शाह खुद जवाब देंगे, वो स्टेटमेंट देंगे, ना सिर्फ स्टेटमेंट बल्कि पूरी चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लेकिन ये बात विपक्ष ने नहीं मानी और लगातार हंगामा करता रहा विपक्ष पिछले कुछ
0: पीयूष आपको रोक रहे। इस बीच में बड़ी खबर देते हैं, गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद से बैठकों का दौर देखने को मिला है। अमित शाह के बयान के बाद 3-3 बैठकें, किरण रिजिजू और गृहमंत्री अमित शाह तो बैठक कर ही रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल भी बताया जा रहा है कि बैठक कर रहे हैं। तो ये गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद अब बैठकों का दौर जारी है। एल मुरुगन, रिजिजू की, अर्जुन राम मेघवाल की बैठक चल रही है, लोकसभा स्पीकर के साथ भी रिजिजू की बैठक। पीयूष, इन बैठकों के बारे में भी अपडेट दें, आप क्या प्लानिंग है सत्ता पक्ष की?
2: ये लगातार आपको सरकार की तरफ से मैसेज आ ही रहा है जिसमें सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है और जैसे ही गृहमंत्री अमित शाह ने एक फ्रेश ऑफर विपक्ष के सामने रखा सरकार कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रही है। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू की मुलाकात एल मुरुगन और अर्जुन राम मेघवाल के साथ हुई, तीनों ही संसदीय कार्य मंत्री हैं, दोनों एल मुरुगन और अर्जुन राम मेघवाल वो MOS है। तीनों मंत्रियों के आपस में मुलाकात हुई, उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ किरण रिजिजू की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद उनकी गृह मंत्री के साथ भी मुलाकात हुई। दरअसल ये मुलाकातें इसलिए चल रही है क्योंकि सरकार पूरी तरह से जो है वो फ्रंट फुट पर बैटिंग करना चाहती है, गृहमंत्री अमित शाह अपना जवाब रखना चाहते हैं और जिस तरह की बातें अब तक विपक्ष के द्वारा की गई, जो सवाल उठाए गए, उन सभी का जवाब अगर चर्चा होती है तो सरकार देने के लिए तैयार है। ना सिर्फ जो मुद्दे विपक्ष उठाएगा उन पर गृहमंत्री अमित शाह इंटरव्यू करके जवाब देंगे, बल्कि कल 3 बजे
0: उन्होंने अपनी तरफ से क्लैरिटी रखी है सामने की वो हर विषय पर जवाब देने के लिए तैयार है। ऑपोजिशन आए वो चर्चा करे जितने सवाल है और मीडिया के सामने सवाल रखने से बेहतर सदन के भीतर उन सवालों को रखा जाए और वहीं पर जवाब भी सुना जाए। बहरहाल गृहमंत्री अमित शाह ने जब बयान दिया तो उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से भी प्रतिक्रिया तुरंत ही आई, तत्काल आई, उन्होंने पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमें अमित शाह के लेक्चर में कोई दिलचस्पी नहीं है, जब मैं हम कहता हूं तो मेरा मतलब इस देश की युवा पीढ़ी से। स्टूडेंट को गोली किसने मारी, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, स्टूडेंट को किलों वाली लाठियों से पीटने का ऑर्डर किसका था, क्या अमित शाह ने दिया? अगर दिया तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह ने हमारे बच्चों को गोली मारने का ऑर्डर क्या दिया था? तो अगर दिया था इस्तीफा दे दें। पिछले 20 दिनों से अमित शाह गायब हैं, भारत के गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है, वो सदन में नहीं आ सकती, तमाम बातें ऑपोजिशन ने कही है, राहुल गांधी ने कही।
3: बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। We are interested in one simple thing, and when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent.
4: राइट, दिस इज आपने मुझे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं? नहीं नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं? नहीं, मेरा जवाब बोल दीजिए, आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप? उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए
5: सर उनका जो।
4: एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines, we don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 din ke liye, 20 din ke liye gayab ho gaye. Yahan baithe the, gaadi aati thi jaati thi, 30 gaadiyan unke, student should know this, 30 cars around Amit Shah. Unke ghar ke samne jaiye, wahan pe matlab 1000 police wale khade hue hain ki koi bachcha na aa jaye. Right? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू।
0: हमारी संवाददाता मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। मौसमी, एक तरफ जो राहुल गांधी के सवाल है, ठीक है, वाजिब सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं, इनके जवाब मिलने चाहिए। जवाब अगर दिए जा रहे हैं तो ऑपोजिशन अब क्यों नहीं सुन रहा? राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो क्या कहते हैं, तो इससे ये भी दिख रहा है कि वो सुनना भी नहीं चाहते हैं कि वो क्या कहेंगे या क्या कह रहे हैं।
6: देखिए, इसमें जो बड़ी बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल की चर्चा को पूरे देश भर की शिक्षा प्रणाली पे या एजुकेशन पे भटकाया जाए। तो राहुल गांधी बार बार ये बात दोहरा रहे हैं। हकीकत यह है कि पूरा सत्र जो मानसून सत्र है वो इसी बात पर धुल गया है। लगातार दो हफ्ते से विपक्ष ये मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे। अब दो आखिरी के दो दिन बचते हैं तो एकदम से गृह मंत्री का बयान आता है कि मैं जवाब देने को तैयार हूँ, विस्तार से चर्चा करने को तैयार हूँ, कहीं ना कहीं। और विपक्ष जो है लगातार गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। राहुल गांधी पहले कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, फिर कहते हैं कि अमित शाह जवाब दे, फिर अमित शाह इस्तीफा दे। तो दोनों तरफ से राजीव यहाँ नोट करने की बात यह है कि दोनों तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही हैं, कहीं कोशिश ये की जा रही कहीं वो बात ना दोहरा दे जो विपक्ष कह रहा है, या सत्ता पक्ष वो बात ना दोहरा दे और विपक्ष वो बात ना कह दे जो सत्ता पक्ष कह रहा है।
0: यानी कि कोई कॉमन राजनीति का फुटबॉल खेला जा रहा है और फुटबॉल बनी है आम जनता, क्योंकि जो संसद आम जनता के मुद्दे उठाने के लिए है वहां चल ही नहीं रहा। गृहमंत्री अमित शाह ने बयान भी दिया, लेकिन क्या उन्होंने भी बहुत देरी से बयान नहीं दिया? पहले दे देते तो चीजें अलग होती।
6: एकदम देखिए, लगातार गृह मंत्री ये बात कह रहे हैं कि वो संसद के परिसर में आ रहे हैं, लगातार विपक्ष भी वही बात कह रहा है कि अमित शाह संसद के परिसर में आ रहे हैं पर हाउस में नहीं आ रहे हैं। गृह मंत्री के दो बिल भी आए, लगातार उन बिलों को कोई और मंत्री पेश कर रहा है जो गृह मंत्री के बिल आए। ऐसे कोई अक्सर आपने देखा है कि किस तरीके से अमित शाह लगातार हाउस में, फ्लोर ऑफ द हाउस में लीड करते हैं, उनका बिल रिलेटेड भी नहीं होता है तो भी वो लगातार जो है एक तरीके से कोशिश करते हैं कि जो भी विपक्ष आरोप उठा रहा है तो जो मंत्री है, जो पॉइंट पर्सन है, उसको बैकअप दे, सपोर्ट दे। लेकिन इस बार ये अप्रत्याशित है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो एक बार भी लोकसभा में नहीं आए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और संकेत है कि कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भयंकर प्रेशर था। वही विपक्ष भी अपना गोल पोस्ट पेश कर रहा। मैं ये नहीं कह रही कि विपक्ष दूध का दूल्हा है, विपक्ष ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। अगर विस्तार से चर्चा हो रही है तो आप विस्तार से चर्चा के लिए मांग
0: बिल्कुल, बिल्कुल, मौसमी, बिल्कुल बहुत गंभीर सवाल है, ऑपोजिशन के पास बहुत सारे सवाल हैं, तो आइए सदन में चर्चा करिए और सत्ता पक्ष को उस पर जवाब दे, वो दे हैं और उनको जवाब देना भी चाहिए। चर्चा तो कम से कम शुरू हो, आम आदमी का जो समय है वो तो जाया ना हो, उनका पैसा तो जाया ना हो, टैक्सपेयर का पैसा तो जाया ना हो। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: एयू करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with
1: Sera Sanitary Wear. It's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: सोने में निवेश करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले लोग ज्वेलरी शॉप या बैंक का रुख करते थे, लेकिन अब मोबाइल ऐप पर कुछ क्लिक करके 10 रुपए से भी गोल्ड खरीदा जा सकता है। डिजिटल गोल्ड की इसी बढ़ती लोकप्रियता ने सरकार का ध्यान खींचा है। ऐसे में निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए डिजिटल गोल्ड सेक्टर के लिए नए नियमों की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके तहत डिजिटल गोल्ड के लिए अगले साल नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ सकता है। इसमें निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने पर फोकस होगा। इसके लिए DPMACI ने वित्त मंत्रालय, RBI और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालयों के साथ चर्चा की है। दरअसल भारत में डिजिटल गोल्ड का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग छोटी रकम से भी सोने में निवेश कर रहे हैं और यही वजह है कि इस सेक्टर के लिए औपचारिक नियमों की मांग भी तेज हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 से 26 में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए करीब 10 टन सोना खरीदा गया। वही डिजिटल गोल्ड सेक्टर में भरोसा बढ़ाने के लिए ही DPMACI का गठन किया गया है, जिससे सेफ गोल्ड, MMTC, PAMP, ऑगमॉन्ट, फोन पे और गुल्लक जैसे प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं। डिजिटल गोल्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें बहुत छोटी रकम से भी निवेश शुरू किया जा सकता है। युवाओं और छोटे निवेशकों के बीच इसकी लोकप्रियता की बड़ी वजह यही है कि बिना ज्वेलरी खरीदे भी सोने में निवेश किया जा सकता है। निवेशक अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि 10 या 100 रुपए जैसी छोटी रकम से भी डिजिटल गोल्ड खरीदा जा सकता है। ये कंपनियाँ खरीदी गई मात्रा के बराबर सोना सुरक्षित वॉल्ट में रखने का दावा करती हैं और जरूरत पड़ने पर निवेशक इसे बेच सकते हैं या फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हैं। दुनिया के कई देशों में डिजिटल गोल्ड के लिए नियम और निगरानी व्यवस्था पहले से मौजूद है। इस पहल के बाद भारत भी इसी दिशा में कदम बढ़ाता दिख रहा है। साफ है कि डिजिटल गोल्ड निवेश का लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। ऐसे में अगर नया रेगुलेटरी ढांचा लागू होता है तो इस बाजार में ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हो सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

रसोई के बजट पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। खाने की थाली का स्वाद बढ़ाने वाला खाद्य तेल अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगा है। त्योहारों का सीजन करीब आते ही सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तेल के दामों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। घरों से लेकर होटल और स्ट्रीट फूड कारोबार तक हर जगह इस्तेमाल होने वाले इन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी चिंता बढ़ा रही है। आंकड़ों के मुताबिक खाने के तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी वजह त्योहारों की बढ़ती मांग और बरसात के मौसम में सरसों की खपत बढ़ाना है। इसके साथ ही रुपए की कमजोरी से आयातित खाद्य तेल महंगे हो गए हैं, जबकि पाम और पामोलिन पर बढ़ी ड्यूटी का असर भी बाजार में दिख रहा है। बाजार के जानकारों के मुताबिक इस तेजी की सबसे बड़ी वजह तिलहन की कम आवक है। किसानों को पहले बेहतर भाव मिल चुके हैं, इसलिए वो कम कीमत पर बिक्री से बच रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि मंडियों में सोयाबीन और सरसों की उपलब्धता घट गई है, जबकि मांग लगातार बनी हुई है। डेटा के मुताबिक सोयाबीन की रोजाना मांग करीब 2.5 से 3 लाख बोरी है, लेकिन मंडी में इसकी आवक घटकर करीब 10,000 बोरी रह गई है। किसानों को आकर्षित करने के लिए लातूर के बड़े प्लांट्स ने खरीद भाव बढ़ाकर 8,100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं बिनौला तेल की कमी की वजह से मूंगफली तेल की मांग भी बढ़ गई है। डिमांड और सप्लाई के इस असंतुलन का असर थोक बाजारों में भी साफ दिखाई दे रहा है। बीते हफ्ते सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तेल तिलहन के भाव में काफी तेजी दर्ज की गई है। कई उत्पादों में कीमतें एक ही हफ्ते में सैकड़ों रुपए तक बढ़ गई हैं, जिसमें सरसों दाना 8,075 से बढ़कर 8,100 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों तेल का भाव 16,550 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों कच्ची और पक्की घानी का 15 किलो टिन 2,705 से 2,855 रुपए और सोयाबीन दाना बढ़कर 7,550 से 7,600 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। अगर तिलहन की आवक में जल्द सुधार नहीं हुआ तो त्योहारी मांग इसी तरह बनी रही तो आने वाले दिनों में खाद्य तेल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। इसका सीधा असर घर की रसोई पर पड़ेगा और त्योहारों के दौरान खाने पीने का खर्च और बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।

पर अरुणाचल में चीन की घुसपैठ की खबरों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात, सरकार पहले ही कर चुकी है घुसपैठ की खबरों से इनकार। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों पर दबाव बनाने की कोशिश, रात में काटी बिजली, अब हटाया जनरेटर, गर्मी और उमस से भी जारी है धरना, पूछताछ मास्टरमाइंड ने खोली जेपीएससी नेटवर्क की पोल। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे के हादसे में मौत के बाद वायरल वीडियो आया सामने, एक्सीडेंट में ठीक पहले की फुटेज में कार की टक्कर कैद, पीछे की गाड़ी के डैश कैम में मिली तस्वीरें।

संसद में चर्चा पर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले विपक्ष तैयार हो तो आज 3 बजे से कल 3 बजे तक चर्चा को तैयार। विपक्ष को दिया 24 घंटे चर्चा का प्रस्ताव, कहा विपक्ष चर्चा के लिए आए। संसद गतिरोध के बीच अमित शाह का विपक्ष को न्योता, हम सदन में चर्चा को तैयार है लेकिन विपक्ष तय करे कि क्या वो सदन चलने दे रहा है। अमित शाह ने खुद पर लगे आरोपों के खंडन, बोले इस प्रकार की भाषा अशोभनीय है। अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, छात्र पर पेलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, अमित शाह ने दिया तो इस्तीफा दें। संसद में गृहमंत्री के बयान की मांग पर प्रियंका गांधी का हमला, बोली सरकार जनता के प्रति जिम्मेदारी महसूस नहीं करती। संसद भवन परिसर में एनडीए और विपक्ष का एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन, रांची लाठीचार्ज पर सत्ता पक्ष का विरोध तो जंतर मंतर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की नारेबाजी। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का किया विमोचन। कोविंद के संघर्ष और राष्ट्रपति पद तक के सफर पर आधारित है आत्मकथा। पीएम का नौजवानों को संदेश, मुश्किलों से ना हारे, रील और शॉर्टकट के जमाने में ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़े। अरुणाचल में चीनी घुसपैठी, खबरों के बीच जयशंकर राजनाथ सिंह की अहम मुलाकात, संसद में रक्षा मंत्री के दफ्तर में बैठक। चीन की धीरे धीरे घुसपैठ के दावों को सरकार ने नकारा, कहा सीमा पर सेना और आईटीबीपी पूरी तरह से मुस्तैद है। अरुणाचल को लेकर सोशल मीडिया के दावों पर सरकार का जवाब, चीनी गतिविधियों पर नजर, सीमा पर डोमिनेट करने को तैयार है सेना। संसद में संग्राम के बीच एनडीए का राष्ट्रवाद दांव, भारत मंडपम से निकली तिरंगा बाइक रैली, हर घर तिरंगा के संदेश के साथ एनडीए सांसदों का नेशनल स्टेडियम तक मार्च, तिरंगे के रंग में रंगा देश। दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिखाई हरी झंडी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने की हर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व, डीओ के माय भारत वॉलंटियर्स भी शामिल। श्रीनगर में सीआरपीएफ की हर घर तिरंगा रैली, जवानों ने तिरंगा लेकर दिया देशभक्ति का संदेश। बस्तर के नारायणपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शुरू की बस्तर तिरंगा यात्रा, नक्सल प्रभावित मुख गांवों तक पहुंचेगी बाइक रैली। रांची में छात्रों के आंदोलन का 19वां दिन, प्रदर्शनकारियों की संख्या आधे से भी कम, समर्थन में आई कमी। रांची मेंशन में बैठे छात्रों के पंडाल में काटी गई बिजली, स्टेडियम में देर रात पहुंचे अफसर, पूछताछ में आरोपी अभय तिवारी ने खोली पूरे नेटवर्क की पोल। रांची में अनशन में बैठे छात्रों का दबाव बनाने की कोशिश, हटाया जनरेटर, गर्मी और उमस के बीच जारी अनशन। रांची धरने के बीच बड़ा खुलासा, पूछताछ से मासूम आई ने खोली जेपीएससी नेटवर्क की पोल। देवेंद्र महतो ने अस्पताल से इंसाफ के नाम जारी किया खुला पत्र, अस्पताल में 10वें दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी। एफसीआरए बिल जेपीसी को भेजे जाने पर डिंपल यादव का केंद्र सरकार पर हमला, बोली ये कानून सरकार से असहमत रहने वाले गैर सरकारी संगठन एनजीओज और संस्थानों को डराने धमकाने उनकी संपत्तियों पर नियंत्रण करने का एक जरिया बन सकता है। एफसीआरए बिल पर एसपी नेता राम गोपाल यादव का बयान, बोले ये बिल कभी नहीं आना चाहिए, गरीबों की सुविधाएं हो जाएंगी बंद। बद्रीनाथ मंदिर दान चोरी मामले में बीकेटीसी का बड़ा एक्शन, जांच जारी, संवेदनशील जगहों पर लगेंगे हाईटेक कैमरे। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों में दहशत, आतंकी संगठन की धमकी के बाद बड़ी संख्या में जम्मू पहुंचे। तमिलनाडु विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण जल्द लागू करने की मांग, सरकार ने केंद्र से बिना देरी संवैधानिक कदम उठाने की अपील की। राम मंदिर में फुल टाइम सीईओ की रेस तेज, 5200 आवेदन में से 18 शॉर्टलिस्ट, इंटरव्यू में आस्था को लेकर नेतृत्व, क्षमता तक की परीक्षा, लिखित शिक्षा, जनेऊ से लेकर शाकाहार और शराब तक सवाल जवाब। 2 सितंबर तक ट्रस्ट को मिलेंगे 3 नाम, पूर्व आईएएस आईपीएस अधिकारियों समेत 18 उम्मीदवारों की दावेदारी, मंदिर प्रशासन वित्त सुरक्षा और श्रद्धालु व्यवस्था संभालेगा नया सीईओ। 2027 के चुनावी जंग से पहले सीएम योगी का जनसंवाद प्लान, 1 महीने में 100 से ज्यादा विधानसभा सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर सपा कांग्रेस पर साधा निशाना। यूपी में युवाओं की नाराजगी दूर करने मैदान में उतरेंगे यूपी के मंत्री, जेएनजी चौपाल में सुनेंगे समस्याएं और बताएंगे सरकार की योजनाएं, मनोज पांडे ने रायबरेली से शुरू किया अभियान। बीजेपी के जयंती कार्यक्रम पर एसपी प्रवक्ता पूजा शुक्ला का हमला, बोली जो काम अब बीजेपी कर रही है समाजवादी पार्टी बहुत पहले ही कर चुकी है।
नोएडा एयरपोर्ट में जल रहा पर अखिलेश यादव का तंज, बोले अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी। यूपी चुनाव को लेकर सपा का बड़ा सर्वे प्लान, 403 विधानसभा सीटों पर चल रहा है 3 स्तरीय आंतरिक सर्वे। टिकट बंटवारे से पहले बूथ बूथ का जातीय गणित खंगाल रही है सपा। अयोध्या चंदाचोरी मामले में सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा दावा, बोले बड़ी मछली को बचाने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। अवधेश प्रसाद का आरोप, पहले लाखों की भीड़ और सोने चांदी का चुनाव आता था, 10,000 भी नहीं आ रहा है, अयोध्या की मर्यादा को कलंकित करने का आरोप। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा का जिला अस्पताल में छापेमारी, बदइंतजामी देकर भड़के विधायक, औचक निरीक्षण का वीडियो वायरल। गोरखपुर में सीएम योगी ने सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों का किया उद्घाटन, गोरखपुर को विकास की नई सौगात। झांसी हादसे का लाइव वीडियो वायरल, अतीक के बेटे अबान की कार होने का दावा, वीडियो में डिवाइडर से टकराकर हवा में उछलती दिखाई दे रही कार, जांच जारी। अतीक के बेटे की मौत पर इमरान प्रतापगढ़ी का हालचाल न लेने का लेकर छिड़ा घमासान, सोशल मीडिया पर इमरान प्रतापगढ़ी पर जमकर हो रहे हैं ट्रोल। सुल्तानपुर में टोल नहीं देने को लेकर विवाद, 4-5 लोगों ने टोल कर्मी के बूथ में घुसकर की मारपीट, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सहारनपुर में नदी के तेज बहाव में फंसी स्कॉर्पियो, जान जोखिम में डालकर युवाओं ने 6 लोगों की बचाई जान। मऊ में दरोगा सिपाहियों पर युवक को चौकी में बेल से पीटने का आरोप, शरीर पर चोट के निशान, पीड़ित की शिकायत पर एसपी ने मेडिकल के दिए निर्देश। बरेली में भीषण सड़क हादसा, 23 कांवड़िए घायल, टेम्पो सवार अज्ञात व्यक्तियों की मौत, हादसे के बाद मौके पर मचा हड़कंप। जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होने पर बरेली के असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राहत नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का सरकार पर आरोप, दोहरा चरित्र अपना रही है बीजेपी सरकार। लखनऊ में प्रार्थना सभा में हंगामा, धर्मांतरण के लिए 2 बकरी, पानी की टंकी का लालच देने का आरोप। नोएडा में पीजी में 19 वर्षीय युवती का शव मिलने से सनसनी, धारदार हथियार से हत्या की आशंका, आरोपी की तलाश में पुलिस ने गठित की कई टीमें। राजस्थान के जैसलमेर में स्कूली बच्चों से भरी बस में लगी आग, हादसे के समय 17 छात्र थे सवार, ड्राइवर की सूझबूझ से बची जान। पटना में अज्ञात कारणों से बाइक पर आए अपराधियों ने युवक को मारी गोली, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र जालना में तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक को मारी टक्कर, बाद में नियंत्रण खोते कुएं में गिरी, हादसे में 2 महिलाओं की मौत। गोंडा में बेटी की हत्या मामले में पिता और सौतेली मां को उम्र कैद, 2 साल पहले गला रेत कर की थी हत्या। अंबिकापुर में हैरान करने वाला मामला, 42 दिन पहले सिपाही की मौत, कागजों में चलता रहा इलाज, फिर आया अस्वस्थ होकर घर जा रहे हो का मैसेज। भोपाल में पुलिस को अगवा कर ले गए बदमाश, हाथ पैर बांध कर पीटा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश के बीच पुराना मकान ढहा, मलबे में दबकर 71 वर्षीय महिला की मौत। गुजरात के जामनगर राजकोट हाईवे पर ट्रक की केबिन में लगी भीषण आग, वाहन पूरी तरह जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। गुजरात के जूनागढ़ में एम्बुलेंस ने ई रिक्शा को मारी जोरदार टक्कर, 70 साल के चालक की मौके पर मौत। गुजरात के नवसारी में पानी की पाइपलाइन में बड़ा लीकेज, 70 फीट ऊंचे पानी के बने तेज सवारे को देखने के लिए उमड़ी भीड़। राजस्थान के धौलपुर में कार और ट्रक के आमने सामने से भीषण टक्कर, 6 की मौत। बिहार के गोपालगंज में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 75 लाख की जब्त शराब को बुलडोजर से किया नष्ट। गुजरात के गांधीनगर में इंस्टाग्राम फर्जी कंपनी बनाकर 2,53,00,000 की ठगी, साइबर टीम ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिहार के बांका में आकाश में बिजली गिरने से 5 की मौत, 10 घायल। बिहार के लखीसराय, बांका और पटना में आकाशीय बिजली गिरने से कुल 9 की मौत, सीएम सम्राट ने मृतकों के परिजनों को 4,00,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। मुंबई के विलेपाले बहुमंजिला इमारत की 11वीं मंजिल पर भीषण आग, 2 की मौत, 2 का अस्पताल में इलाज जारी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग और धुएं से मची अफरा तफरी, ऊपरी मंजिलों पर फंसे थे कई लोग। धुएं के कारण ऊपरी मंजिल पर फंसे कई लोग, दमकल विभाग ने रेस्क्यू कर छत से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट की आशंका के बीच जांच जारी। मुजफ्फरनगर में दिखा भक्ति का अलग रंग, स्कूटी से गंगा जल लेकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचे ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर परशुराम शर्मा।
कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी के बागपत में कांवड़ियों के साथ बारिश में व्यवस्था संभालते दिखे पुलिस वाले, एसपी खुद बारिश में व्यवस्था बनाते दिखे। यूपी के सहारनपुर में महाभारतकालीन अनोखा शिव मंदिर, मान्यता कि इस मंदिर में दुर्योधन ने बनवाया था और भीम ने दिया दिशा बदली थी। चंदौली में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति के तरानों की गूंज, झांसी रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए गूंज रहे देशभक्ति के गीत। लद्दाख में पहली बार ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव का आयोजन, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया उद्घाटन। इस महोत्सव के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, महोत्सव में भारत और विदेश के संरक्षण विशेषज्ञ, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने लिया हिस्सा। लद्दाख में एनसीसी की 2 बटालियन का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, विभिन्न कॉलेज स्कूलों के छात्रों ने लिया हिस्सा, युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति को बढ़ावा देना उद्देश्य। प्रयागराज में मन रहा आजादी का जश्न, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक एकता को समर्पित रंग दे बसंती कार्यक्रम का आयोजन। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में बाबा केदार के दर्शन को पहुंच रहे भक्त। हिमाचल कुल्लू में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, पहाड़ी से गिरे भारी पत्थर मलबे की चपेट में आई कार, 2 लोग थे सवार। गंगापुर में झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न, शहर में जलभराव के चलते लोगों को आवागमन में दिक्कत। बिजनौर में तेज बारिश के चलते सड़कें जलमग्न, बिजली घर में घुसा पानी, जलभराव से लोगों की बड़ी मुश्किल। असम के गोलाघाट में धनसिरी नदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति, सामान्य जनजीवन बहाल। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में भारतीय सेना ने बचाया हिमालय भालू, मुंह में फंसा था टिन का डब्बा, रेस्क्यू कर वन विभाग ने जंगल में छोड़ा। कांगड़ा में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड, 4 लेन हाईवे और कांगड़ा शिमला एनएच पर यातायात प्रभावित। शिवपुरी में लगातार बारिश से आफत, सड़कें और अंडरपास जलमग्न, NH 46 में जलभराव से लगा जाम। भारी बारिश के चलते एक रेलवे अंडरपास से भरा बारिश का पानी, पानी भरने से गांव का टूटा संपर्क, लोगों को आवाजाही में करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। बूंदी में 2 दिन की लगातार बारिश से शहर जलमग्न, सड़कों ने लिया नदी का रूप। कठुआ में उफनती उज नदी में फंसे 7 लोगों का रेस्क्यू, जेएन के पुलिस और एसडीआरएफ ने 6 महिलाओं समेत एक बच्चे को सुरक्षित निकाला। मुंबई के घाटकोपर में लैंडस्लाइड, 7 घरों पर गिरा पहाड़ का मलबा, 5 की मौत, मलबे में कई के फंसे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने भारी बारिश के चलते फ्लैश फ्लड की जताई आशंका। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी में लापता 2 युवकों की तलाश, 3रे दिन भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी। जेएनके के कठुआ में फ्लैश फ्लड का कहर, उज नदी में फंसे 7 लोगों का पुलिस ने किया रेस्क्यू। हिमाचल के कांगड़ा में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, 4 लेन हाईवे की 1 लेन को किया गया बंद। छब्बीस साल बाद बॉलीवुड में वापसी करेगी 90 के दशक की एक्ट्रेस।

9 अक्टूबर का सिनेमा घर में होगी रिलीज। आयुष्मान खुराना सारा अली खान की ये जासूसी कॉमेडी फिल्म। श्रद्धा कपूर की ईथा हुई पोस्टपोन, अब 4 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म में रणदीप हुड्डा और जिशान अयूब आएंगे नजर। विजय देवरकोंडा और ऋषिका मंदाना की अगली फिल्म राणा बाली में रिलीज डेट में बदलाव, अब 30 अक्टूबर को होगी रिलीज। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड रोजीना रॉड्रिक्स से पुर्तगाल में की सिविल मैरिज, दोनों ने अंगूठी के साथ तस्वीर शेयर कर शादी की खुशखबरी दी।

0: छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर संसद में लगातार गतिरोध जारी है। इस बीच अमित शाह का पहला बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि विपक्ष संसद चलने दे, वो हर तरीके से चर्चा को तैयार है। अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर विपक्ष कहे तो वो आज ही दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू कर सकते हैं, खुद सदन में मौजूद रहेंगे, सबको सुनेंगे और कल 3 बजे जवाब देंगे।
1: देखिये, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे और कल दोपहर 3 बजे तक, हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है।
0: उधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमित शाह पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री बताएं कि छात्रों पर पेलेट गन किसने चलवाई, उन्हें पीटने का आदेश किसने दिया, क्योंकि ये काम गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर अमित शाह ने आदेश दिया तो वो इस्तीफा दे।
2: In listening to Mr. Amit Shah's imagination, we are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that?

0: That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign, because he's culpable. And if he did not, he should resign, because he's incompetent. Though the question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 din ke liye. 20 din ke liye gayab ho gaye. यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह. उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए. तो गुब्बारे में से गैस निकल गई. अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है. अमित शाह हैज नो करेज.
1: रुके आज छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक.
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसें. इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
4: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया. आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए. E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: टाटा
6: AIG है तो भरोसा है।

0: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: In association with
8: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
9: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
7: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से,
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा,
7: इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with
1: Sharda University. The world comes together at Sharda University. Where are you?
2: Punjab National Bank. Bharose ka prateek.
0: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
3: वेट लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना हेल्थ फिटनेस योगा मेंटल वेलनेस सब कुछ एक ही जगह फिट तक सिंपल टिप्स एक्सपर्ट इनसाइट्स रियल कॉन्वर्सेशंस लाइफ अपग्रेड करो इजी वे वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब
4: इतनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का
5: जब तक वो सीबीआई जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे
4: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है वाटर कैनन खत्म हो गए फायर टेंडर खत्म हो गए
6: प्रोटेस्टर हैं देखिए उनको कैसे चोट लगी है
7: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है
8: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
9: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है
4: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: कहा विपक्ष चाहे था 3 बजे से चर्चा के लिए तैयार हूं और कल दे सकता हूं जवाब, लेकिन सदन चलने दे, जनता तय करे बहस से कौन भाग रहा है। राहुल गांधी का जवाब, अब इससे यह जानना है कि किसने दिया पैलेट गन चलाने का आदेश, अगर गृह मंत्रालय से निकला ऑर्डर तो इस्तीफा दे अमित शाह। सोशल मीडिया में अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ की खबरों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात, सरकार पहले ही कर चुकी है घुसपैठ की खबरों से इनकार। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों पर दबाव बनाने की कोशिश, रात में काटी बिजली या हटाया जनरेटर, गर्मी और उमस के बीच जारी है धरना, पूछताछ में मास्टरमाइंड ने खोली जेपीएससी नेटवर्क की पोल। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे के हाथ से मौत के बाद वीडियो वायरल हुआ, एक्सीडेंट से ठीक पहले की फुटेज में कार की टक्कर कैद, पीछे की गाड़ी के डैश कैम से मिली तस्वीरें। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ मैं नेहा बातम। सबसे पहले बात अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ की, जो सोशल मीडिया में अफवाह उड़ रही है उसको लेकर सरकार ने एक बड़ी बैठक की है, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है। ये बैठक संसद भवन परिसर में हुई, जहां पर रक्षा मंत्री के कार्यालय में इसे आयोजित किया गया। वहीं सरकारी सूत्रों की माने तो अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ को खारिज कर दिया है सरकार ने और कहा है कि चीन द्वारा अरुणाचल में कोई धीमी घुसपैठ नहीं हो रही है। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी सीमा पर पूरी तरह से तैयार है, वो सीमा पर प्रभुत्व बनाए हुए हैं, चीनी गतिविधियों पर नजर रखने और इन्हें रोकने के लिए सतर्क हैं। जयशंकर और राजनाथ सिंह की ये अहम बैठक जो कि रक्षा मंत्रालय में हुई, जिसमें चीनी घुसपैठ को सिरे से नकार दिया गया है। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, क्या इस बारे में कोई औपचारिक स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा?
1: देखिए अभी नेहा उसका इंतजार है, हो सकता है सरकार इस बात की जानकारी आधिकारिक तौर पर भी दे, लेकिन पिछले लगभग एक हफ्ते से अरुणाचल के अलग अलग इलाकों में इस तरह की जानकारी सामने आ रही थी, इस तरह के वीडियोज आए थे जिसमें चीनी घुसपैठ को दिखाया जा रहा था और उसी को लेकर सरकार की तरफ से सूत्रों से जानकारी दी गई कि क्योंकि सरहद पर सीमा को लेकर एक तरह से कई जगहों पर सीमा का जो निर्धारण है वो सही तरीके से नहीं है, उसको लेकर इस तरह का कंफ्यूजन रहता है और इसीलिए इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन जहां तक चीनी लगातार हमारे इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं, इस बात को सरकार ने नकारा है।
0: इसके अलावा पहले भी सीमा के इलाकों को लेकर इस तरह की चर्चा होती रही है, कई किलोमीटर तक चीनी घुसपैठ हुई है, उसको लेकर पहले भी वीडियोज आए हैं, लेकिन इस बार के वीडियो और अफवाहों में उनसे क्या अंतर है?
1: देखिए इस बार लगातार अरुणाचल के कई इलाकों से जो वहां के खासतौर से नॉर्थ ईस्ट की जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर इस तरह के वीडियो पिछले हफ्ते में काफी बड़ी संख्या में आए और अलग अलग इलाकों से आए, उसी को लेकर पहले सरकार की तरफ से खासतौर से सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से पीआईबी की तरफ से इन वीडियो को एक तरह से कहा गया कि पुराने हैं या फिर ये ताजा हालात के वीडियो नहीं है। और कल भी सरकार ने देर रात इस बात को साफ किया कि ऐसी स्थिति नहीं है जो सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि चीन कई इलाकों में हमारे इलाकों में घुसपैठ कर रहा, धीरे धीरे चीन इन इलाकों पर कब्जे की फिराक में है, ऐसी बात नहीं है। और खासतौर से वहां पर जो सेना की टुकड़ियां हैं, आईटीबीपी की जो तैनाती है, वो पूरी तरह से उनकी नजर बनी हुई है और कुछ इलाके जरूर ऐसे हैं जहां पर दोनों सेनाओं के बीच में, दोनों देशों के बीच में सीमा के निर्धारण को लेकर स्थिति साफ नहीं है। ऐसे इलाकों में कुछ समय कुछ जगहों पर कई बार ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन जहां तक ये कहा जाए कि चीन धीरे धीरे अरुणाचल के कुछ इलाकों पर कब्जा कर रहा है, ये बात ठीक नहीं है, इसी को लेकर ये कहा गया। और थोड़ी देर पहले संसद भवन में जो विदेश मंत्री हैं, क्योंकि कल विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात को कहा गया, इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात राम मंदिर की, जहां पर चढ़ावा चोरी का मुद्दा संसद के मानसून सत्र में भी गूंज रहा है और हंगामा ऐसे लेकर थम नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दल ने राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। सपा सांसद आज भी पार्लियामेंट में दान पेटी लेकर पहुंचे, चंदा इकट्ठा किया और दौरान राम गोपाल यादव ने कहा कि सीएम ने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, लेकिन कब करेंगे? साथ ही कहा कि बीजेपी ने पूरे देश को लूटा है, वहीं प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश भर के लोगों ने चंदा दिया था वो गायब हो गया।
2: ऐसा है, उन्होंने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे हमारे सीएम ने, तो दूध और पानी अलग अलग हो ही नहीं रहा है। सब लूट लिया देश को, जांच पर कोई भरोसा करता है? जनता का विश्वास हो दिया, लोग तो कहते हैं कि भगवान राम अयोध्या से रूठ के चले गए। फिर
3: सबने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे, किसी ने गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था। प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं, और देश भर से लोग आए वहाँ। आप नाम लीजिए वो वहाँ पहुंचे हुए थे, और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे, चंदा सारी गायब हो गई है।
0: और इस बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए आज भी दूसरे दिन इंटरव्यू जारी है। सीईओ पद के लिए जारी इंटरव्यू के दूसरे दिन बाकी उम्मीदवारों से सवाल जवाब किए जाएंगे। कल पहले दिन 8 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के इंटरव्यू लिए गए, इसमें 3 पूर्व आईएएस, 1 सेवानिवृत्त आईपीएस और 4 पूर्व सैन्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारी शामिल रहे। अभ्यर्थियों से प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ राम मंदिर और भगवान श्री राम के प्रति उनकी आस्था से जुड़े सवाल पूछे गए। धार्मिक या सामाजिक संस्थानों के संचालन में उनके अनुभव और मंदिर के भविष्य को लेकर विजन को परखा गया।
4: राम मंदिर को जल्द मिलने वाला है सीईओ। 5300 से ज्यादा आवेदनों में से 18 लोग शॉर्टलिस्ट। सीईओ की रेस में पूर्व आईपीएस और पूर्व डीएम भी शामिल। अयोध्या राम मंदिर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद के लिए सिलेक्शन का आखिरी पड़ाव यानी इंटरव्यू जारी है। पहले दिन शॉर्टलिस्ट लोगों में से 8 लोगों से सवाल जवाब किए जा चुके हैं और बाकी बचे लोगों का आज इंटरव्यू है। पहले दिन 18 में से 8 उम्मीदवारों का आमने सामने इंटरव्यू हुआ, जिसमें 4 पूर्व आईएएस अधिकारी शामिल रहे। इंटरव्यू सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जो 2 सेशन में चला। हर कैंडिडेट से करीब 25 से 30 मिनट तक सवाल जवाब किए गए। पहले दिन शॉर्टलिस्ट लोगों से उनकी आस्था, प्रशासनिक पदों पर काम करने का अनुभव और विजन को लेकर सवाल किए गए। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों से ये पूछा गया कि क्या वो शिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं या मांसाहारी भोजन करते हैं। इसके अलावा शराब पीने और हिंदू धार्मिक परंपराओं के हिसाब से पोशाक पहनने में सहज होने से जुड़े सवाल भी पूछे गए। इसके अलावा प्रशासनिक पदों पर काम करने के अनुभव, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के संचालन से जुड़े सवाल के अलावा राम मंदिर और भगवान श्री राम के लिए आस्था की गहराई को भी परखा गया। इंटरव्यू का आयोजन राम मंदिर परिसर के ग्रीन हाउस में ही हुआ, जिसमें 3 पूर्व आईएएस अधिकारी, 1 रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और 4 पूर्व सैन्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी अधिकारी शामिल हुए। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे भी शामिल हैं। वो यूपी एसडीएफ के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और लखनऊ के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर के सचिव भी हैं। इसके अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी योगेश्वर मिश्रा का नाम भी चर्चा में है, जो फैजाबाद के जिलाधिकारी रह चुके हैं और ईमानदार छवि वाले अधिकारी रहे हैं। साथ ही साधु संतों से अच्छी जान पहचान है। 2 दिन तक चलने वाले इंटरव्यू में समिति के 3 सदस्य और राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन मौजूद रहेंगे और 2 सितंबर तक 3 नामों का पैनल राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपना है। इसके बाद ट्रस्ट की कार्यकारी समिति अंतिम 3 उम्मीदवारों में से सीईओ का चयन करेगी और राम मंदिर के सीईओ का ऐलान किया जाएगा। अयोध्या से कुमार अभिषेक और आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ये जिस तरह का इंटरव्यू चल रहा है, इसमें कई सवाल जुड़े हुए हैं, कुछ सवालों का पता चल रहा है क्योंकि आप जनेऊ पहनते हैं या नहीं, आप किस तरह का आहार लेते हैं, राम भक्त हैं या नहीं, आपको जानकारी है या नहीं, ये तमाम सवाल हैं। इसके अलावा भी कुछ जानकारी मिल रही है?
4: देखिए नेहा, आज दूसरा दिन है और आज लगभग जितने भी इंटरव्यूज हैं आज लगभग पूरे हो जाएंगे। ज्यादातर नौकरशाह या पुराने जो पीपीएस अधिकारी रहे हैं जिन्होंने ऐसे जगहों पर काम किया है, खासकर मंदिरों को लेकर के, कॉरिडोर्स को लेकर के, ऐसा लगता है उनको तवज्जो मिलेगी। लेकिन जो सवाल हैं, दरअसल गूगल ड्राइव में कुछ सवाल पूछे गए थे जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, तब ये तमाम बातें थी कि आप सनातन को कितना मानते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं या वेजिटेरियन खाते हैं, परिवार में कौन कौन लोग है, परिवार कितना सनातनी है। दरअसल ये जो सीईओ का पद है ये बेहद अहम होने वाला है, हालांकि उतना बड़ा नहीं जिस तरीके का अगर आप देखें तो काशी विश्वनाथ का सीईओ होता है, जिस तरीके से दूसरे कॉरिडोर के दूसरे ट्रस्ट के सीईओ हैं, कुछ उसी तरीके का पद है। लेकिन इन पे सवाल जरूर इस बात का ध्यान रख करके रखा गया है, सवाल गढ़े गए हैं कि राम मंदिर कॉन्ट्रोवर्सी में रहा है और आने वाले वक्त में और दूसरे कॉन्ट्रोवर्सी में ना फंस जाए, इसलिए कई तरह के सवाल इसमें गढ़े गए हैं। ये जरूर है कि परिवारों के बारे में जानकारी, आपने क्या किया है, आप में नेतृत्व क्षमता है कि नहीं, जो कठिन चीजें हैं उससे निपटने की क्षमता है कि नहीं, ये तमाम बातें इस बार रखी गई हैं और मुझे लगता है कि आज इस बात का लगभग फैसला हो जाएगा कि कौन होगा, लेकिन ऐलान 2 सितंबर को होगा।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जहां पर जेवर एयरपोर्ट पानी भरने को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि क्या आप एयरपोर्ट पर नाव चलेगी, जहां भाजपा सरकार है वहां महा भ्रष्टाचार है। वहीं अखिलेश यादव के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा, लिखा 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एयरपोर्ट की पहली बारिश में पोल खुल गई है। इसके बाद नोएडा एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बयान जारी करते कहा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 30 मिनट के अंदर पानी को निकालकर स्थिति नियंत्रित कर ली गई। संचालन या यात्रियों की आवाजाही पर पानी भरने से कोई असर नहीं पड़ा।

0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में भरा पानी। भारी बारिश के बाद पार्किंग एरिया में जमा पानी। वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने उठाए सरकार पर सवाल। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में पानी भरने का वायरल वीडियो जैसे ही सामने आया, विपक्ष ने सरकार को घेरने में वक्त नहीं लिया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी, जहां बीजेपी सरकार वहां महाभ्रष्टाचार। अखिलेश यादव के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के दावों पर सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बना और पहली बारिश में ही मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की पोल खोलता नजर आया। जहां एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट प्रशासन ने तत्काल मोर्चा संभालकर आधे घंटे में पार्किंग से पानी निकालकर स्थिति को सामान्य कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बयान जारी कर कहा कि ज्यादा बारिश होने की वजह से पार्किंग एरिया के रास्ते में पानी भर गया था, जिसे तुरंत कार्रवाई करते हुए 30 मिनट से कम वक्त में हटा दिया गया। इस दौरान ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से भेजा गया और किसी भी फ्लाइट में कोई रुकावट नहीं आई।
1: सवाल तो ये है कि इतने ज्यादा लागत से बना यह एयरपोर्ट, लगभग 11,000 करोड़ की लागत से बना यह एयरपोर्ट, अगर पहली बारिश, तेज बारिश में वहां पानी भर जाता है, तो ये कमी मॉनसून की है या झोल इंफ्रास्ट्रक्चर में है या उसके निर्माण में है, ये अपने आप में एक सवाल है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
0: सोशल मीडिया पर पार्किंग में भरे पानी का वीडियो वायरल होने के बाद अब एयरपोर्ट परिसर में जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: प्रभा, देश के शहर में मानसूनी आफत की नोएडा से लेकर झालावाड़ तक बारिश से त्राहिमाम है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कहां पर कितना हाल बेहाल।
0: हर साल मानसून मानो सिस्टम की पोल खोलने के लिए ही आता है। अब राजस्थान के झालावाड़ का हाल देखिए। चार घंटे के भीतर 300 मिलीमीटर बारिश हुई और इलाके में लोग त्राहिमाम कर उठे। ये स्कूल का वीडियो है, यहाँ पानी ऐसे बह रहा है मानो बांध खुल गया हो। पानी में फंसे बच्चों को निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया।
3: इस भारी वर्षा के कारण से नदी नालों का जो प्रवाह है उसने विकराल रूप धारण कर लिया और सभी जगह सड़कों पर, नालों पर जल प्रवाह बढ़ गया था। इसके चलते हमारे क्षेत्र के कई गांवों में, कई घरों में कल पानी भर गया था। दो जगह स्कूलों में बच्चे भी फंस गए थे, लेकिन प्रशासन की सक्रियता से और ग्रामवासियों के सहयोग से बच्चों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया।
0: अब राजस्थान के बूंदी का वीडियो देखिए। रेगिस्तानी सूबे के शहर में मूसलाधार बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। दो दिन की लगातार बारिश से बूंदी शहर के इस बाजार का ये हाल है। दोनों तरफ दुकानें और बीच की सड़क पानी से लबालब। बूंदी के छत्रपुरा इलाके का हाल देखिए। सड़कों से लेकर घरों की रसोई और दुकानों तक में पानी घुस गया। लोगों का आरोप है कि समय रहते प्रशासन ने बरसाती नालों की सफाई नहीं करवाई, जिसके कारण ये हालात बने। सड़क हो, मकान हो या दुकान, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। राजस्थान का गंगापुर भी करीब घंटे भर की बारिश में त्राहिमाम कर उठा। मंगलवार शाम करीब 4 बजे बारिश शुरू हुई और घंटे भर के बाद गंगापुर सिटी का ये हाल था। नया बाजार, फव्वारा चौक, उदई मोद्दा, सालोदा, ईदगाह, कचहरी रोड समेत कई इलाके जलमग्न हो गए। और अब एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ की, जहां अचानक आई बाढ़ में 7 जिंदगियां फंस गईं। ये तस्वीरें कठुआ के माहीचक इलाके की हैं। वहां उंझ नदी में उफान बढ़ा तो नदी के बीच एक टापू पर लोग पानी से घिर गए। उन सभी को बचाने के लिए पुलिस और SDRF के तेज बचाव अभियान के बाद कठुआ में अचानक आई बाढ़ के दौरान 7 लोगों की जान बच पाई। आज तक ब्यूरो।
2: और अब बात उत्तराखंड के चमोली की। यहां पर नीति घाटी में सोमवार की शाम बादल फटने की घटना सामने आई, भारी तबाही से मच गई है। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एक हवलदार के लापता होने की जानकारी मिल रही है। 5 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पहाड़ों से आया मलबा और इस तेज बहाव में JCB तक बह गई, कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। हर तरफ मलबा ही मलबा अब इस इलाके में दिखाई दे रहा है।
0: ये तूफानी सैलाब ऐसे आया कि सब कुछ तबाह हो गया। नीति घाटी में सोमवार को इसी फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई थी। चार पहिया गाड़ी और BRO का करीब 40 मीटर लंबा पुल भी तेज बहाव के सामने टिक नहीं पाया। देखते ही देखते ये धोली नदी में समा गया। सैलाब और मलबे की चपेट में आने से सड़क, पुल और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। उस तबाही के बीच 2 दिन बाद भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें मंगलवार की हैं। मंगलवार को प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया। दूसरी ओर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ITBP ने कमर कस ली है। कल जवान रस्सियों के सहारे लोगों को सुरक्षित निकालते दिखे। डॉग स्क्वाड टीम भी एक लापता BRO जवान की तलाश में जुटा रहा। इस मिशन में सेना, NDRF, SDRF, ITBP और प्रशासन की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इस आपदा की वजह से नीति घाटी के करीब 13 से 14 गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय जोशीमठ से कट गया है। सड़क पर आवाजाही अब भी बाधित है। प्रशासन और BRO इस मुहिम में जुटा हुआ है। अभी प्राथमिकता लापता जवान की तलाश और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है, साथ ही प्रभावित गांवों से संपर्क बहाल करना भी चुनौती है। अब आज प्रशासन इस इलाके का एरियल सर्वे भी करेगा। कमल नयन, सिलोरी, चमोली, आज तक।
2: रुकेंगे आज इस ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

ये तूफानी सैलाब ऐसे आया कि सब कुछ तबाह हो गया। नीति घाटी में सोमवार को इसी फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई थी। चार पहिया गाड़ी और बीआरओ का करीब 40 मीटर लंबा पुल भी तेज बहाव के सामने टिक नहीं पाया। देखते ही देखते ये धोली नदी में समा गया। सैलाब और मलबे की चपेट में आने से सड़क, पुल और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। उस तबाही के बीच दो दिन बाद भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें मंगलवार की हैं। मंगलवार को प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया। दूसरी ओर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए आईटीबीपी ने कमर कस ली है। कल जवान रस्सियों के सहारे लोगों को सुरक्षित निकालते दिखे। डॉग स्क्वाड टीम भी एक लापता बीआरओ जवान की तलाश में जुटा रहा। इस मिशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और प्रशासन की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इस आपदा की वजह से नीति घाटी के करीब 13 से 14 गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय जोशीमठ से कट गया है। सड़क पर आवाजाही अब भी बाधित है। प्रशासन और बीआरओ इस मुहिम में जुटा हुआ है। अभी प्राथमिकता लापता जवान की तलाश और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। साथ ही प्रभावित गांवों से संपर्क बहाल करना भी चुनौती है। अब आज प्रशासन इस इलाके का एरियल सर्वे भी करेगा। कमल नयन, सिलोरी, चमोली आज तक

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 पर बड़ा हादसा हुआ। अचानक पहाड़ से भारी भरकम पत्थर गिरने लगे। इस हादसे की चपेट में एक कार आ गई। किरण बाजार और बराड़ के बीच ये घटना घटी। पत्थरों की चपेट में आकर कार के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी पत्थरों के नीचे दब गई। हादसे के वक्त कार में दो लोग सवार थे। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। कांगड़ा में भी आफत की तस्वीर दिखी। वहां लगातार बारिश के बीच रानीताल बाथू पुल के पास जबरदस्त भूस्खलन की घटना हुई। इस घटना में फोर लेन हाईवे का एक हिस्सा और कांगड़ा शहर के बाहरी इलाके में कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे बाधित हो गया। कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। मौके पर दोनों तरफ गाड़ियां फंसी रही। बाद में ट्रैफिक चालू करने के लिए भारी मशीनों से मलबा हटाया गया, तब जाकर हालात संभले। हिमाचल के सोलन में भी तबाही की तस्वीर दिखी। शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर सोलन में एक चलती कार पर बड़ी चट्टान गिर गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को IGMC शिमला रेफर किया गया है। कुल्लू और हिमाचल के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इसका असर वहां की ब्यास और पार्वती नदियों में दिख रहा है। नदी के जलस्तर में उफान है और किनारों पर खतरा बढ़ा हुआ है। और अब एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ की, जहां अचानक आई बाढ़ में 7 जिंदगियां फंस गईं। ये तस्वीरें कठुआ के माहीचक इलाके की। वहां उन नदी में उफान बढ़ा तो नदी के बीच एक टापू पर लोग पानी से घिर गए। उन सभी को बचाने के लिए पुलिस और SDRF ने तेज बचाव अभियान चलाया। इस अभियान के बाद कठुआ में अचानक आई बाढ़ के दौरान 7 लोगों की जान बच पाई। सोलन से राजेश शर्मा, कांगड़ा से अशोक रैना और कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: गांधी जवाब दो,
1: जवाब दो, जवाब दो।
2: संसद में ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के सीधे टकराव की तस्वीरें हैं। एक और एनडीए सांसद झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमलावर है। दूसरी ओर विपक्ष चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आक्रामक। इन दोनों ही मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में तकरार है और उसका असर यूपी की सियासत में भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रयागराज में राहुल के कार्यक्रम के बाद छात्रों का मुद्दा भी यूपी के चुनाव से पहले अहम हो गया है। वहीं चढ़ावा चोरी का सवाल तो सीधे यूपी की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि एक ओर बीजेपी और एनडीए राहुल गांधी पर हमलावर है, तो अब सीएम योगी ने भी राहुल गांधी को सीधी चुनौती दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है तो उत्तर सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है। गृह मंत्री अमित शाह विद्यार्थियों से जुड़े विषय पर सदन में विस्तार पूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूर्णतः तैयार है। कांग्रेस और समूचे विपक्ष से अपेक्षा है कि तथ्यों का सामना करें, सदन की गरिमा बनाए रखें और उत्तर को पूरा सुने। लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद। समाजवादी पार्टी की रणनीति तैयार थी, कांग्रेस भी साथ था, इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन था, सरकार की घेराबंदी का पूरा खाका तैयार था। लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन, छात्रों पर पुलिस एक्शन पर सियासी टेंशन से विपक्ष का एजेंडा बदल गया। लेकिन अब छात्रों के मुद्दे की गूंज है और चढ़ावा चोरी पर भी संग्राम है। यूपी में इन दोनों ही मुद्दे पर सियासी रणनीति तैयार होनी शुरू हो गई है। आज तक पेरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: संसदीय गतिरोध पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब, कहा विपक्ष चाहे तो चर्चा के लिए हूं तैयार, कल दे सकता हूं जवाब, लेकिन स्पीकर को दे चिट्ठी और चलाए सदन, वरना जनता तय करे बहस से कौन भागा। गृह मंत्री के बयान पर राहुल का पलटवार, कहा हमें सिर्फ ये जानना है कि किसने दिया पैलेट गन चलाने का आदेश, अगर गृह मंत्रालय से निकला ऑर्डर तो इस्तीफा दे अमित शाह। सोशल मीडिया पर अरुणाचल में चीनी घुसपैठ की खबरों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात, सरकार पहले ही कर चुकी है घुसपैठ की खबरों से इनकार। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों पर दबाव बनाने की कोशिश, रात में काटी बिजली, अब हटाया जनरेटर, गर्मी और उमस के बीच जारी है धरना, पूछताछ में मास्टरमाइंड ने खोली जेपीएससी नेटवर्क की पोल। माफिया थी अहमद के छोटे बेटे की हादसे में मौत के बाद वायरल वीडियो आया सामने, एक्सीडेंट से ठीक पहले की फुटेज में कार की टक्कर कैद, पीछे की गाड़ी के डैश कैम से मिली तस्वीरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद भारत की।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ बांचो दीक्षित। 2 बजे हैं, न्यूज रूम लाइव का वक्त हो गया। तो सबसे पहले हम आपको बताते थे कि न्यूज रूम लाइव में आज क्या हम आपको बताने जा रहे हैं। संसद में एक बार फिर से जमकर संग्राम, एक तरफ अमित शाह तो दूसरी तरफ राहुल गांधी। अमित शाह कह रहे हैं कि जनता तय करे कि कौन चर्चा से भाग रहा है। हम तो तैयार है, हम तो जवाब देने को तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, विपक्ष को स्पीकर को पत्र देना होगा। तो दूसरी तरफ से राहुल का भी पलटवार आया। राहुल तो कह रहे हैं कि पहले ये बताइए कि पैलेट गन किसने चलाई। दूसरी बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आज हमारी जो रहेगी वो ये कि लुंगी वाला बयान राज्यसभा में किसने दिया, जिसको लेकर जमकर घमासान छिड़ा हुआ है। तीसरी खबर जो हम आपको बताएंगे कि एक वीडियो अब सामने आया है और उस वीडियो में अतीक के बेटे की मौत का सच सामने आया कि हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ ये बताया गया। और ठीक आधे घंटे बाद हम बात करने जा रहे हैं ब्रजभूषण चरण सिंह से, क्लीन चिट मिल गई है। क्लीन चिट मिलने के बाद अब वो क्या कह रहे हैं, आगे की क्या रणनीति है, ये वहां पर बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दो, बड़ी खबर यही है, संसद में संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ है राहुल गांधी यानी विपक्ष और एक तरफ है सत्ता पक्ष यानी अमित शाह। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह सबसे पहले तो ये बताएं कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसकी तरफ से दिया गया है। तो दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि हम तो बातचीत करने को तैयार हैं, और बहुत स्पष्ट अमित शाह की तरफ से कह दिया गया है। अब देखिए एक बार फिर आपको संसद की कार्रवाई हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप यहां समझिए कि दोनों सदन शुरू हो चुके हैं, हालांकि हंगामे की उम्मीद है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई।
2: ठीक, इसके अलावा भी काम नहीं। माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों के द्वारा अभी स्थगन प्रस्ताव आ जाने दीजिए, आप बैठ जाएं। निशिकांत जी आप बैठ जाएं, आप लोग भी बैठ जाएं। मैं निशिकांत दुबे जी को भी कह रहा हूँ बैठ जाएं। निशिकांत जी आप बैठ जाएं, सती जी बैठ जाएं, आप सब लोग, दर्शन जी बैठ जाएं, अब ये बैठ गए, आप भी बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए। मैं पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ ले रहा हूँ जिस
3: आपस में और गलतफहमी हुई है, या हम इसको साफ कर सकेंगे और अच्छे से कॉर्डियल रिलेशंस ठीक से एस्टैब्लिश हो, इसकी चिंता करें।
2: बहुत अच्छा, माननीय जॉन ब्रिटास जी और आप माननीय कई सदस्य गणों ने विभिन्न विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। आप बेल मत आइए, अब पहले सभी पेपर को, जो कम से कम सभा पटल पे पेपर रखे जाने हैं, आप सहयोग करें, सभा पटल पर रखे जाने वाले पेपर, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी आइटम नंबर 2 लेटेस्ट इशू डलाओ।
4: धन्यवाद सभापति जी,
2: मिनिस्टर,
4: मैं लोकसभा की संशोधित कार्रवाई के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज, जो मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के नाम से अंकित है, मैं आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद।
2: आइटम नंबर 3 श्री पंकज चौधरी जी।
5: क्यों
2: सभापति ने अभी पेपर रखे जाए।
5: आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 3 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं।
2: आप सभी विद्वान सदस्य हैं, आप जानते हैं कि
0: तो जब से ये सत्र शुरू हुआ तब जो देखने को मिल रहा था वही आज भी देखने को मिला, जमकर हंगामा। हंगामे के अलावा और कुछ नहीं, और हंगामा सदन के बाहर भी हो रहा है। अब जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि आज गृहमंत्री अमित शाह आते हैं। गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है, पूरे मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन आप स्पीकर को पत्र लिखिए और कल तो मैं जवाब भी दे दूंगा अगर आप कहें तो, लेकिन आप सदन चलने तो दें। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं जानना, हमें बस ये जानना है कि पैलेट गन चलवाई तो उसका आदेश किसकी तरफ से आया, और अगर गृहमंत्री की तरफ से आया है तो गृहमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। दोनों को सुनिए आप।
6: देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है।
7: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग, एंड व्हेन आई से वी आई मीन द यंगर जनरेशन ऑफ दिस कंट्री। हु शॉट दोज स्टूडेंट्स? हु गेव द ऑर्डर टू शूट दोज स्टूडेंट्स? हु ब्लाइंडेड वन ऑफ द स्टूडेंट्स? हु शॉट वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द ईयर? हु गेव द ऑर्डर टू बीट द स्टूडेंट्स विद लाठीज, विद नेल्स? हु गेव दैट ऑर्डर? दैट ऑर्डर वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द होम मिनिस्ट्री। दिल्ली पुलिस एंड आरएसी आर बोथ होम मिनिस्ट्री सिस्टम्स। डिड मिस्टर अमित शाह गिव दिस ऑर्डर टू शूट आवर चिल्ड्रन और डिड ही नॉट? इफ ही डिड, ही शुड रिजाइन बिकॉज ही इज कल्पेबल, एंड इफ ही डिड नॉट, ही शुड रिजाइन बिकॉज ही इज इनकॉम्पिटेंट।
0: अब देखिए बात यहां पर यही हो रही है कि अमित शाह कह रहे हैं कि हम बातचीत को तैयार हैं, हम बातचीत को तैयार हैं, लेकिन आप चर्चा शुरू होने दें। अब राहुल गांधी कह रहे हैं पहले तो ये बताइए कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसकी तरफ से दिया गया। और यही हो रहा है, जब बातचीत करने को सत्ता पक्ष विपक्ष तैयार है तो आम जनता से जुड़े मुद्दों की बातचीत क्यों नहीं हो रही है, ये आम जनता को समझ ही नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अपने अपने हट पर यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अड़ा हुआ है। हालांकि अमित शाह की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। अब अमित शाह कह रहे हैं कि जनता को तय करने दो कि चर्चा से भाग कौन रहा है। विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है, सत्ता पक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है। विपक्ष कहता है कि जब तक हमारे सवालों के जवाब हमको नहीं मिल जाते हैं तब तक हम नहीं सुनेंगे। लेकिन नीट के मुद्दे पर छात्र चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, लेकिन जब से संसद शुरू हुई है, मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, तब से सिर्फ एक काम हुआ है संसद में और वो हुआ है हंगामा। हमेशा ये रीति बन गई है कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, संसद शुरू होती है, हंगामा होता है और हंगामे के बाद स्थगित हो जाती है, और यही होता रहा है। मौसमी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। मौसमी, राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले तो ये बताइए कि पैलेट गन किसने चलाई, और अगर अमित शाह ने आदेश दिए तो वो इस्तीफा दे। अमित शाह बोल रहे हैं कि हम बातचीत को तैयार है, ये गतिरोध तो दूर हो नहीं रहा है, अब आगे क्या रणनीति है? मौसमी सुन पा रही हैं आप? जुड़ जाएंगे दोबारा मौसमी से, लेकिन वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रदर्शन किया गया, और प्रदर्शन की वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और मकर द्वार एक ऐसी जगह बन गई है जहां पर प्रदर्शन किया जाता है, सिर्फ विपक्षी तरफ से नहीं सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन करता है। सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष झारखंड के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलता है, जब छात्रों के मुद्दे पर बोला जा रहा है तो हर किसी को बोलना चाहिए। इस पूरे सत्र में, मानसून सत्र में सिर्फ हंगामा हुआ, और हंगामा सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी। और प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी यह मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा गया वो भी आपको सुनाते हैं।
8: कंट्री पूरे देश से चंदा आई थी राम मंदिर के लिए, सबने अपनी आस्था से अपने दिल से वो पैसे, किसी ने गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए, पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया? जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं, और देश भर से लोग आए वहां, आप नाम लीजिए वो वहां पहुंचे हुए थे, और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे, चंदा सारी गायब हो गई है, ये क्या तरीका है?
0: तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने सुन लिया, हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और मौसमी सिंह भी हमारे साथ में जुड़ी है। मौसमी भी, प्रियंका गांधी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे थे, राहुल गांधी की तरफ से भी। और अमित शाह कह रहे हैं कि वो बातचीत करने को तैयार हैं, छात्रों के मुद्दे पर पूरी डिटेल में बातचीत करते हैं। तो आखिर दिक्कत कहां आ रही है, क्यों ये गतिरोध खत्म नहीं हो पा रहा है, ये छात्र जानना चाहते हैं जिनका मुद्दा संसद में उठना चाहिए।
9: देखिए, अभी जबरदस्त बवाल लोकसभा में हो रहा है, ये वो वक्त है जब एफसीआरए को लेकर बिल लाया जा रहा है और जेपीसी में इसको भेजा जाएगा, इसको लेके सहमति बन गई है। लेकिन आप देखिए कि जो सबसे बड़ा गतिरोध है वो अमित शाह के बयान पे है, कि अमित शाह का बयान किस तरीके से होना चाहिए, क्या विस्तार से चर्चा के बाद होना चाहिए, या अमित शाह का बयान सीधे इस पर होना चाहिए कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ, छात्रों पर पैलेट गन क्यों चली, और इसी को लेके जबरदस्त फसाद मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि हम अमित शाह को सुनने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, अगर वो पूरा बखान करना चाहते हैं और घंटों तक चर्चा करना चाहते हैं, हम सीधा सुनना चाहते हैं कि छात्रों पर पैलेट गन्स किसने चलाई, इस पर वो दो टूक बयान दें। और इसको लेकर जो है जबरदस्त मतभेद हो गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कि 3 बजे से वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष कतई भी इस बात को लेकर राजी नहीं है, ना ही कोई संवाद लोकसभा स्पीकर को किया गया है कि वो गृह मंत्री अमित शाह के इस प्रस्ताव।
0: मौसमी, मैं आपको रोकता हूं कुछ देर के लिए, एक बार फिर से लोकसभा की कार्रवाई की ओर जाते हैं।
2: 20 डॉक्टर मन्ना लाल रावत जी, डॉक्टर मन्ना लाल रावत जी।
10: जी आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध कोयला खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 2025-26 का 29वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद सर।
2: आइटम नंबर 21 श्री पीसी मोहन।
0: अब इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं और ये बड़ी खबर एफसीआरए को लेकर है और ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो एफसीआरए बिल है उसको जेपीसी भेजने का प्रस्ताव नित्यानंद राय की तरफ से दिया जाएगा जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एफसीआरए बिल जेपीसी भेजने का प्रस्ताव नित्यानंद राय देंगे और क्या जानकारी इस पर आ पा रही है आपके पास?
11: देखिए बिल्कुल, एफसीआरए को जो है वो जेपीसी में रेफर करने के लिए जो है नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री है वो सदन में ये प्रस्ताव लेकर आएंगे क्योंकि एक बैचलर बातचीत के जरिए जो है कई विपक्षी दलों के साथ बातचीत हुई है और उसपे ये एक सहमति बनाने की कोशिश जो है सरकार की तरफ से की गई कि

0: इंप्लीमेंट किया जाए नए बिल में। और एक तरीके से देखा जाए तो सरकार की तरफ से एक कोशिश की गई थी, गृह मंत्री ने सभी स्टेक होल्डर से जो है वो बातचीत की थी और उनका जो भी इस बिल में जो उनके सुझाव थे और जो परेशानियां थी उन सबको सुना और उनको एड्रेस किया। अब क्योंकि एक आम सहमति बनी है कि FCRA बिल जो है वो जेपीसी में भेजा जाए, जिसका प्रस्ताव जो है गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो है लोकसभा में रखेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री बिजनेस के अंदर लोकसभा में इसको लाया गया है। सुबह जो बिजनेस था लोकसभा का उसमें इसको नहीं रखा गया था, सप्लीमेंट्री बिजनेस सरकार लाई है आम सहमति बनाने के बाद कि जेपीसी के अंदर जो है अब FCRA बिल को लेकर जाया जाए। अब देखना यह है कि क्योंकि विपक्ष की तरफ से कई ऐसे दल थे जो ये कह रहे थे इस बिल को सरकार को जो है वो विड्रॉ करना चाहिए, जिसमें कांग्रेस डीएमके कांग्रेस और टीएमसी मुख्य रूप से ही थे कि इस बिल को जो है वो विड्रॉ करना चाहिए। ये बिल जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से विपक्ष और कुछ लोगों पे जो है इसके खिलाफ यूज किए, इस बिल का खिलाफ किया जा सकता है कुछ संस्थानों के खिलाफ और इसीलिए, लेकिन जेपीसी में एक आम सहमति बनती जो है वो देखिए और इसी कारण ये बिल जो है जेपीसी को भेज दिया गया।
1: अच्छा हिमांशु, ये तो FCRA की बात हो गई, ये तो FCRA की बात हो गई, लेकिन एक मुद्दा जो बहुत लंबे वक्त से बना हुआ है, जिस पर राहुल गांधी की तरफ से कह दिया गया है कि वो जब तक ये नहीं बता देते गृहमंत्री की पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए तब तक वो कुछ नहीं सुनेंगे, तो इस पर अब आगे आपको क्या लग रहा है सत्ता पक्ष की आगे क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि गृहमंत्री की तरफ से कह दिया गया है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर विपक्ष नहीं मानता है तो अब आगे क्या?
0: देखिए, पहले विपक्ष की तरफ से जो है वो मांग थी कि जो है इस पूरे मामले पर जो है छात्र आंदोलन पर चर्चा हो जाए, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई है, पैलेट गन का यूज हुआ है या जो है आंसू गैस का यूज किया गया, उसको लेकर विपक्ष जो है पूरे संसद सत्र के दौरान इस मांग को करता रहा। जब सरकार की तरफ से कहा गया कि हम चर्चा के लिए तैयार है, तब विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है, खासकर राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम एक स्टेटमेंट चाहते हैं कि पैलेट गन, लाठी चार्ज और टीयर गैस, आंसू गैस को छोड़ने के आदेश किसकी तरफ से दिए गए, क्योंकि पहले सरकार की तरफ से ये तर्क जरूर दिया गया था विपक्षी दलों को कि इस तरीके के आदेश जो है वो गृह मंत्रालय की तरफ से नहीं दिए जाते हैं, वो एक स्थानीय लेवल पर जो है वो SDM के द्वारा दिए जाते हैं, पुलिस के द्वारा दिए जाते
1: मतलब
0: हैं।
1: मतलब यही जताई जा रही है, जो हमेशा से होता है हंगामा वही आगे भी हंगामा होता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे उस खबर की जिसको लेकर लोग पूछ रहे हैं कि आखिर विवाद हुआ क्यों, लुंगी को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ और राज्यसभा में आज जमकर घमासान देखने को मिला। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? सोमवार की कार्रवाई से हुई थी। CPIM सांसद जॉन ब्रिटास का आरोप है कि जब वो सदन में बोल रहे थे तब BJP सांसद सुष्मिता देव ने उन्हें बार बार लुंगी वाला कहकर संबोधित किया। ब्रिटास ने आज सदन में इस पर आपत्ति जताई और कहा कि वो धोती पहनते हैं और उन्हें मलयाली और दक्षिण भारतीय होने पर गर्व है। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि सांस्कृतिक विविधता से जोड़ते हुए विशेषाधिकार नोटिस भी दिया है इस टिप्पणी को।
2: While I was speaking in the house, she made a derogatory remark, lungi wala against me. I was wearing dhoti and I am proud to be a Malayali, proud to be a South Indian. And these are all part of our attire, culture. But such stereotype usages are made in a derogatory manner and to stereotype people. And such othering process using such a slur is not acceptable. And I feel that the House should take a view on this. That's why I have moved a privilege notice against her. I have nothing against her, of course.
3: If there is anything which is objectionable or which is unbecoming of the character of the nation or the dignity of the House, I would like to request Honorable Chairman to call the member to your chamber and listen what happened, because I am not witness to whatever Honorable Member John
4: nobody is witness, but
3: my request is you can call the concerned person, the Honorable Member, and hear them out. And whatever you decide,
4: yes.
3: Let me make my observation.
4: Whatever John Brittas has said, certainly we respect every attire of every state, and we respect. We don't call it lungi; it is dhoti, and we respect it. And we don't subscribe to such statements. But at the same time, what
5: सुष्मिता

0: to say. That should be also brought on record. And so please allow Sushmita Dev to speak.
1: और अब एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, और ये बड़ी खबर है राज्यसभा से। राज्यसभा में तीखी बहस देखने को मिली। अब एक तरफ जेपी नड्डा और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, और जोरदार बहस, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा किया गया। खड़गे कहते हैं कि जिनके नाम से बिल है उन्हें सदन में बुलाइए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा जाता है। लोकसभा लिए चलते हैं सीधे आपको, FCRA बिल लोकसभा में लाया जा रहा है,
2: और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक तिहाई होगी, कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें, और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उप संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।
3: श्री केसी वेणुगोपाल जी, व्हाट डू वांट टू से? इफ आई एम अलाउंग यू टू केसी वेणुगोपाल जी, ना इफ आई एम अलाउंग टू केसी वेणुगोपाल जी, तो आप मैं उनको अलाउ भी कर रहा हूं, आप सदन नहीं खाली कर रहे हैं।
4: सर, जस्ट नाउ वी गॉट एन इंफॉर्मेशन, द बिल इज सर्कुलेटेड फॉर मूविंग अ रेजोल्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन FCRA इन द नेम ऑफ ऑनरेबल अमित शाह जी। सर, दिस लेजिस्लेशन इज क्लियरली फॉर टारगेटिंग NGOs एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, दोस हु आर डूइंग गुड वर्क। वन साइड RSS getting complete donation from the foreign countries. On one side, RSS getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this. The government should withdraw this bill. We demand for the withdrawal bill.
3: Shri Kiran Riju ji. Shri Kiran Riju ji.
5: Kaise Bhenu Gopal ji, bilkul galat baat kar rahe.
3: Shri Kiran Riju ji.
5: Aur ye kai dino se Congress party aur baaki logon ne mang kiya hai. प्रमुख बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब आप महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहां बिंदु पे इसका विरोध है तो JPC में आप अपना मत रख सकते हैं। JPC में पर्याप्त समय मिलेगा होने का चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे। ये तो मैंने सोचा कि स्वागत करेंगे, जब JPC भेजते हैं, JPC में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है, ये तो स्वागत करने के जगह में विरोध कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है, कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है, ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है, किसी माइनॉरिटी किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है।
3: Every day you are demanding that this should refer to the JPC. Every day. And again, if government is now agreeing, and if Parliamentary Affairs Minister या अगर नित्यानंद जी अगर वो JPC को भेज रहे हैं तो और थ्रेड बेयर डिस्कशन होगा। गवर्नमेंट सीधे इस बिल को पास नहीं करा रही, नहीं अभी ये आज तो क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सरकार कोई बिल लेकर के आई है और उस बिल को सरकार ये कह रही कि इस पर और डिटेल डेलीब्रेशन और डिस्कशन हो जाए, इसलिए हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करना चाहते हैं। तो जब आपने हमने कह दिया तो फिर इससे साफ है कि कम से कम नहीं क्या है
6: वो प्रार्थना करिए।
3: एक मिनट अखिलेश को पूछिए। अखिलेश जी आप क्या कहना चाहते हैं?
6: सभापति जी, सभापति जी बहुत लड़ने के बाद मुझे मौका मिला बोलने के लिए।
3: तो समय आपको,
6: मुझे तो लग रहा था कि 3 बजे तो बहस शुरू हो जाएगी।
3: नहीं, मैंने समय दिया
6: 3 बजे, तो बाद 2 बजे भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है।
3: धन्यवाद दीजिए ना कि
6: सभापति महोदय, जो सरकार FCRA ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्षी लोग हैं। सभापति महोदय,
3: इसीलिए
6: सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप?
3: अब सुन लीजिए, इफ आई
5: मैं जिम्मेदारी,
3: अगर मैं सबको अलाउ कर रहा हूँ, आपको अलाउ किया टी आर बालू साहब को, अखिलेश यादव जी को, तो अब फिर किरण रिजिजू जी को सुनिए।
5: मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूँ, इस FCRA बिल का जो प्रावधान आया है, इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में, किसी माइनॉरिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। आप चाहते कि विदेश का धन बिना कानून के ऐसा ही देश में ला करके मर्जी खर्चा करने का क्या? दिस कंट्री इज नॉट अ बनाना रिपब्लिक, देयर शुड बी रूल्स एंड रेगुलेशन एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर इज नॉट अ सिंगल प्रोविजन इन द प्रपोज्ड FCRA टारगेटिंग एनी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। देयर इज अ कैंपेन टू मिसलीड सर्टेन कम्युनिटीज। आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉट अ सिंगल provision is against any minority community. This is for the well-being of the security of every community of India.
3: And if any confusion, so you can discuss detail deliberations in JPC. So already government is going to do. प्रश्न ये है कि श्री नित्यानंद राय जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आपसे अनुरोध है कि आप लोग सब लोग अपनी अपनी सीट पर चले जाएं। मैंने सभी को उस बिल पे जिस समय कर रहे थे, मैंने सबको मौका दिया, KC वेणुगोपाल जी को दिया, अखिलेश यादव जी को दिया, TR बालू साहब को दिया, किरण रिजिजू जी को दिया। तो कृपया अब सदन चलने दें, सदन को सुचारू रूप से आप चलने दें। नहीं, मैं चाहता हूँ कि सदन चले। अब देखिए, अगर मैंने मौका नहीं दिया होता तो मैं कहता, तो इसलिए मैं जो सभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं, मैं चाहता हूं कि सदन चले, सभा की कार्रवाई 3 बजे तक।
1: तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बताते हैं लोकसभा में FCRA बिल JPC भेजने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पास हो गया है। हालांकि विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा, और जब लगातार हंगामा जारी रहा उसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बिल JPC भेजने का प्रस्ताव नित्यानंद राय की तरफ से रखा गया, और उसके बाद भारी हंगामा हुआ। भारी हंगामे के बीच KC वेणुगोपाल और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के बीच तीखी नोकझोंक बहस देखी गई, और उसके बाद ये पास होता है और जमकर हंगामा विपक्ष की तरफ से इस दौरान किया जा रहा था, और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। लेकिन यह बड़ी खबर, जैसा कि आज कहा जा रहा था कि FCRA बिल JPC भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा, उसे रखा गया और उसके बाद उसे पास भी कर दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो जमकर हंगामा इस दौरान विपक्ष की तरफ से किया गया, और विपक्ष की तरफ से मंचा उठाए गए FCRA बिल पर, सवाल उठाए गए, और इसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की तरफ से दिया गया। और संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की तरफ से ये कहा गया कि अगर विदेश से फंडिंग आती है तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपको पता ना चले कि उसका इस्तेमाल कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है। और खबरें लगातार जारी रहेंगी, लेकिन अभी आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर यानी कि हेडलाइंस।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

संसद के गतिरोध पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब, कहा विपक्ष चाहे तो चर्चा के लिए हूं तैयार, कल दे सकता हूं जवाब, लेकिन स्पीकर को दे चिट्ठी और चलाएं सदन वरना जनता तय करे बहस से कौन भागा। गृह मंत्री के बयान पर राहुल का पलटवार, कहा हमें सिर्फ ये जानना है कि किसने दिया छात्रों पर पुलिस एक्शन का आदेश, अगर गृह मंत्रालय से आया ऑर्डर तो इस्तीफा दे अमित शाह। सोशल मीडिया पर अरुणाचल में चीनी घुसपैठ की खबरों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से विदेश मंत्री जयशंकर की मुलाकात, सरकार पहले ही कर चुकी है घुसपैठ की खबरों से इनकार। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों पर दबाव बनाने की कोशिश, रात में काटी बिजली या बटाया जनरेटर, गर्मी और उमस के बीच जारी है धरना, पूछताछ में मास्टरमाइंड ने खोली जेपीएससी नेटवर्क की पोल। और माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे की हादसे में मौत के बाद वायरल वीडियो आया सामने, एक्सीडेंट से ठीक पहले की फुटेज में कार की टक्कर कैद, पीछे की गाड़ी के डैश कैम से मिली तस्वीरें।

0: वो लाइन आपको याद होगी, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने वो लाइन तब कही थी जब इनके ऊपर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे। कई सालों की कानूनी लड़ाई के बाद अब अदालत ने इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। मुकदमों के साथ साथ सियासत, सब पर इनकी राय आज हम जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। तो दबदबा है
1: एक संदर्भ में निकला था, दबदबा का मतलब प्रभाव है, और एक संदर्भ में निकला था, आवाज भी वो तैर रहा
0: नारा बन गया,
1: एक नारा बन गया। नारा बन गया,
0: आपकी पहचान से जुड़ गया ये, क्योंकि आप भी वैसे ही दबदबे वाले आदमी के तौर पर आपकी पहचान रही है। तो जब आप मुश्किल दिनों में थे और ये आपने कहा, तो आपको लगता नहीं है कि ये आपके साथ चिपक गया?
1: नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चिपकना चाहिए, प्रभाव तो रहना ही चाहिए।
0: ये बताइए, अब जब आप अदालत ने आपको इस मामले में बरी कर दिया है, आप शुरू से कहते रहे कि मैं निर्दोष हूं, कहां आपको लगा कि इस पूरी लड़ाई में आप जीत रहे हैं? कब आपको लगा कि नहीं, ये लड़ाई आपके ही आपके पक्ष में जा रही है, क्योंकि आप पर आरोप सही नहीं है?
1: एक तो दिल्ली से फोन आता है किसी हमारे नेता का, मैं उस समय बाराबंकी में एक हनुमान जी के मंदिर में कार्यक्रम चल रहा था, और मुझसे कहा गया कि आप जाकर के पहलवानों से बात करें, और मैं पहलवानों से बात करने के लिए गया। जंतर मंतर पर धरना बैठ चुका था, लेकिन यौन उत्पीड़न का आरोप नहीं लगा था। ब्रजभूषण सिंह को हटाया जाए, ये उनकी डिमांड चल रही थी। लेकिन जैसे एयरपोर्ट पर मैं पहुंचा, उतरते ही मैंने फोन किया अपने ऑफिस को, और मेरे ऑफिस ने बताया कि आपके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप फलाने लगाया है, नाम नहीं ले रहा हूं, फलाने लगाया है। एक मिनट के लिए मैं थोड़ा चिंतन किया, मनन किया, और उसके बाद मैंने बोला कि मैं आ रहा हूं। जो बात मैं पहले दिन कहा था, वही बात आज तक कहता आया हूं, लेकिन तब वो मेरा बड़बोलापन समझा जा रहा था कि ये अहंकार बोल रहा है, ब्रजभूषण सिंह का अहंकार बोल रहा है। कि जब धरना प्रारंभ हुआ तो 4 बजे तक यौन उत्पीड़न का जिक्र नहीं था, तानाशाही का जिक्र था, डिक्टेटरशिप का जिक्र था, गलत व्यवहार का जिक्र था, इनको पद से हटाया जाए इसका जिक्र था, लेकिन यौन उत्पीड़न का जिक्र नहीं था। यह आया है 4 बजे के बाद। अब यौन उत्पीड़न लगने के बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया और एक कमेटी बनाई जांच के लिए, उसमें पहलवानों को मौका दिया गया कि आप आइए,
0: अपनी बात रखिए।
1: जब मेरा नंबर आया तो अपना पक्ष रहने के पहले मैंने एक कैसेट दिया
0: उस ओवरसाइट कमेटी को,
1: उस कैसेट में बजरंग पूनिया, जो कि पुरुष खिलाड़ी है, नाम लिया जा सकता है, किसी लड़की से बात कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर, किसी भी शर्त पर मुझे कुछ लड़कियां चाहिए,
0: उस कैसेट में है।
1: हाँ, वो कैसेट कोर्ट में भी चली है, तब एक भी लड़की का नाम नहीं आया था। जिस समय धरना यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया, उस समय भी मीडिया ने प्रश्न किया कि किसके साथ हुआ है, क्या आपके साथ हुआ? तो इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने बाद में आरोप लगाए, उन्होंने कहा मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है। तो क्या आपके साथ हुआ? नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ। तो क्या आपके साथ हुआ? हमारे साथ नहीं हुआ। वहां जो भी लड़कियां बैठी थी, कोई निकल करके नहीं आया, सबने कहा हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है।
0: जनरलाइज्ड।
1: हाँ, और नाम कोई सामने निकल करके नहीं आया। तो हमने कहा भाई, सवाल पूछने के पहले जरा ये कैसेट। तो कैसेट मैंने चलवाया, पूरा कैसेट, उसमें बजरंग पूनिया जो धरने के मुख्य किरदार हैं, वो कह रहे हैं किसी लड़की से, लड़की का नाम नहीं लूंगा, कि मुझे किसी भी शर्त पर लड़कियां चाहिए, हो सके तो आप आरोप लगा दो। तो उसने कहा मैं क्यों लगाऊं, तो कहा किसी को भी, और मैं ये लड़ाई आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, ये मेरी लड़ाई नहीं है। तो एक तो ओवरसाइट कमेटी में जो इन लोगों ने बयान दिया उसमें उसका बयान इनका कुछ अलग है, उसका बयान कुछ अलग है।
0: वो डॉक्यूमेंटेड होगा?
1: हाँ सब साफ सब डॉक्यूमेंटेड है, कैसेट है, वो कैसेट भी बनी हुई है, लिखित भी है, वो सब पूरी कमेटी थी, उसमें वकील भी थे, मेरी काम भी थी, वो से ओलंपिक के भी प्रतिनिधि थे, गवर्नमेंट के भी प्रतिनिधि थे, वकील भी थे, वो सारा रिकॉर्ड पर है। उसके बाद शुरू होता दूसरा फेज। तो जब पहले फेज में कुछ खास निकल करके नहीं आता है तो एक वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, यहीं से हुड्डा जी का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है, और छोटे हुड्डा का नहीं बड़े हुड्डा का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। तो एक मीटिंग होती है तो वरिष्ठ अधिवक्ता बताते हैं कि देखो ऐसे कहने से आपके कोई आरोप नहीं बनता है, आपको बताना पड़ेगा कि किसके साथ ब्रजभूषण सिंह ने क्या किया। तो एक स्क्रिप्ट तैयार की गई, पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई। अब लड़कियां नहीं मिल रही थी तो इन कथित पहलवानों ने सरेआम हरियाणा में एक मीटिंग की, और उस मीटिंग के दौरान ये कहा गया कि अगर कोई नहीं लगाएगा तो हम अपने परिवार से हम लगाएंगे, हम आगे जाएंगे, हम खुद लगाएंगे, क्योंकि लोगों ने सवाल किया कि भाई
0: बजरंग पुनिया की तरफ से कहा गया।
1: हाँ जो भी समझिए कि हम खुद आगे आएंगे और हम अपने तरफ से लगाएंगे, नाम भी लिया गया कि हम इनके तरफ से लगवाएंगे, हम इनके तरफ से लगाएंगे, हम लगाएंगे, सबने लगाया। तो इसको लेकर के फिर कोई तैयार नहीं हुआ तो एक अखाड़ा और एक फैमिली सामने आई, महादेव रेसलिंग अकेडमी। महादेव रेसलिंग अकेडमी का नाम इसलिए रह रहा हूं कि जजमेंट में वो नाम आ चुका है। तो उसी एकेडमी के सारे बच्चे तैयार किए गए और इस एकेडमी के कर्ता धर्ता सब कुछ है भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, यानी कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं के अखाड़े के सब बच्चे तैयार किए गए।
0: और ये सब अदालत
1: से पहले सुनिए, मैंने बताया पहले, अभी सेकंड पार्ट चल रहा है, तैयार किए गए। और इन सारे खिलाड़ियों का एक एड्रेस दिया गया, बजरंग पूनिया का मकान, जितने भी पीड़िता है सबके का एक एड्रेस दिया गया कि बजरंग पूनिया के मकान में रहते हैं। जबकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल भी उठाया कि भाई एक फ्लैट में आप ये कितने लोग कैसे रहते हैं, तो खैर उसका कोई इन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। एक इनकी पहली भूल थी, एक फ्लैट में ही सारे
0: आरोप लगाने वाले
1: पता देना। फिर अंतिम फेज आ जाता है गवाही। तो इनके पहले के ओवरसाइट कमेटी के बयान कुछ हैं, शपथ पत्र के बयान कुछ हैं, मजिस्ट्रेट के समान सामने बयान कुछ हैं, और गवाही के समान सामने जो साक्ष्य इन्होंने प्रस्तुत किया, मतलब जज के सामने इनके बयान कुछ हैं। अब जैसे शपथ पत्र में एक खिलाड़ी, प्रमुख खिलाड़ी आरोप लगाते हैं कि मैं 15 तारीख को, मुझे एग्जैक्ट महीना नहीं याद है, कि 15 तारीख को मैं फेडरेशन में गई और मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ। देखिए मैंने किसी का कपड़ा नहीं उतारा है, जितना आरोप है बातचीत में ही है, या कहीं पर आता है कि हमने इनका श्वास चेक कर लिया, कहीं पर आता है कि हमने इनको मेडल पहनाया और टच कर लिया, कहीं पर आता है कि ये मेडल जीते हमने इनको गले लगा लिया, इससे ऊपर का आरोप नहीं है। मैंने किसी का कपड़ा मैंने नहीं फाड़ा है, ये आरोप नहीं है। तो अब ये लगाते हैं कि 15 तारीख को मैं गई, बाद में इनको पता लगता है कि 15 तारीख को तो फेडरेशन की ऑफिस बंद थी, संडे पड़ रहा है, तो इन्होंने उसको 16 कर दिया। अब बाद में इनको भनक लगती है कि 16 तारीख को तो सांसद जी थे नहीं, तो उसको 17 कर दिया। मतलब 16 को भी घटना घटी, 17 को भी घटना घटी।
2: अब हम आदरणीय कोर्ट ने पूछा कि 16 साल के को जब आपके साथ घटना घट चुकी थी तो 17 को आप क्यों गई? खैर ये अपने बात पर कायम रही।
0: इन्होंने दोनों दिन के आरोप लगाए।
2: हाँ दोनों दिन के आरोप लगाए। 16 दिन को आए हमसे मिले, मिलने के बाद इतना खतरनाक स्थिति हो गई, इनको उल्टी उल्टी हुई, घर गए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, उल्टी हुई, बहुत डॉक्टर वॉक्टर बुलाना पड़ा। 17 को सुबह फिर आए। अब जब हमारे तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तो हमने बता दिया कि भाई 16 तारीख को तो हम जिस समय की घटना आप बता रहे हैं उस समय हम लखनऊ में ट्रायल करा रहे थे और उस ट्रायल में आपकी छोटी बहन खुद भाग ले रही है। अब इसको प्रमाणित कराने के लिए बुलाया गया साई वालों को, तो साई के अधिकारी जब गए तो पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी
0: लेकर गए,
2: लेकर के गए। और जज साहब ने सवाल भी पूछा कि ये बताइए आप इसी की वीडियोग्राफी करा करके लाए हैं कि सभी कार्यक्रम कराते हैं? उन्होंने कहा मेरे यहां कोई कार्यक्रम होता है, इवेंट होता है, ट्रायल होता है तो मैं उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराता हूं और लखनऊ की सारी मीडिया को सूचित करता हूं। तो मीडिया भी रहती है, हम वीडियोग्राफी भी कराते हैं। तो इसको लेकर के इनका यह मसला यहीं पर झूठा हो जाता है।
0: जब इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा, इतनी बड़ी साजिश, आप कह रहे हैं कि सब डॉक्यूमेंटेड है, सब अदालत में, अदालत ने अपने फैसले में लिखा है, तो आपको लगता नहीं कि फिर आप इस मामले को उनके खिलाफ लेकर के जाएंगे? क्योंकि उन लोगों ने तो कह दिया है कि हम हायर कोर्ट में लेकर के जाएंगे।
2: देखिए अभी उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है, वो हाई कोर्ट जाएं, अगर हाई कोर्ट से के जजमेंट से भी संतुष्ट हो जाती तो कोई बात नहीं, नहीं संतुष्ट तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। जब उनका दरवाजा बंद होगा तब मेरा दरवाजा ओपन होगा।
0: अच्छा,
2: हाँ पहले मेरा दरवाजा ओपन
0: नहीं
2: है, हमारे लिए अभी ओपन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो कलंक था, जो सनसनी फैल गई थी, क्योंकि आरोप लगाने वाले आम आदमी नहीं थे, ओलंपियन थे, पदक विजेता थे, वर्ल्ड चैंपियन थे और संख्या बहुत बड़ी थी, संख्या बहुत बड़ी थी, पहले दूसरे दिन तो संख्या बहुत बड़ी थी। और इसको लेकर के पूरी दुनिया में जो महिला खिलाड़ी है, पूरी दुनिया में जो महिला खिलाड़ी, क्योंकि खेल का विषय था, आरोप लगाने वाले बड़े लोग थे, तो पूरी दुनिया में जो महिला खिलाड़ी और महिला खिलाड़ी के फैमिली और खेल जगत की व्यवस्था संभालने वाले, चाहे वर्ल्ड रेसलिंग के लोग हों और चाहे ओलंपिक एसोसिएशन के लोग हों, सबके ऊपर कहीं ना कहीं इस बात का प्रभाव था कि खेल में ऐसा होता है। हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं बेटियां तो सहाय में ही गई थी, लेकिन पूरी दुनिया में इस बात का मैसेज था कि क्या ऐसा भी होता है। तो इनका हमला समझिए, इनके हमले से कोई बचा नहीं। आज स्थिति एकदम अस्पष्ट हो गई है, भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि तुरंत हाईकोर्ट जाए, वहां भी अपना पक्ष रखें, हम भी अपना पक्ष रखें, या और कोई कोर्ट हो वहां जाए जल्दी, ये मामला शांत हो।
0: आपको लगता है यहां दूध का दूध पानी का पानी हो गया है?
2: दूध का दूध पानी का पानी, जजमेंट सबके सामने है और कोर्ट ने बाकायदा खड़ियंत्र शब्द
0: इस्तेमाल किया
2: है। और पहली बार वैसे तो मुकदमा में बहुत लड़ा, लेकिन बाइज्जत बरी किया जा रहा है, इस शब्द का इस्तेमाल मेरे जीवन में पहली बार हुआ।
0: आप अदालत से तो बरी हो गए
2: जी,
0: आपको लगता है कि नैतिक रूप से भी आप पूरी तरीके से आप खुद को मानते हैं कि बरी हो गए? लेकिन ये मामला नैतिकता के आधार पर आज भी,
2: अरे मैं 15 सेकंड के लिए अपराध भाव मेरे अंदर आया ही नहीं भाई, 15 सेकंड के लिए नहीं आया, क्षण भर में पलट दिया, मैंने कहा मैं आ रहा हूं। अब आप देखे होंगे मेरी चाल ढाल बातचीत, अब जिसको समझना हो समझे, हम क्या करें, लेकिन मैंने अपने आप को अपराधी नहीं माना, अपराधी की तरह व्यवहार नहीं किया। आपसे कई बार मेरी बात हुई थी, मेरे वजन था, ठसक था, बल्कि इस समय थोड़ा नरम पड़ गया हूं।
0: तो क्या ये जीत के बाद की नरमी?
2: जीत
0: है?
2: के बाद तो नरम पड़ना चाहिए ना। मैं भी नरम पड़ गया हूं,
0: यहां तो नरम पड़ गए। सियासत में क्या है, आपने कहा था कि मैं एक बार जरूर संसद जाऊंगा जिस जगह से मुझे निकाला गया है।
2: मुझे लगता है मैं जाऊंगा।
0: कैसे जाएंगे?
2: अब ये क्यों बताऊं आपको, कोई इतना नहीं जानता है, बस मेरा टारगेट है
0: जाना।
2: अब टारगेट कैसे पूरा होगा ये ऊपर वाले बताएंगे। भेजेंगे,
3: तो यहीं से लड़के जाएंगे जहां से आप सांसद थे।
1: ये इतना अहंकार नहीं करना चाहिए, यहीं से लड़कर जाएंगे, कब जाएंगे, अभी जाएंगे, लेकिन इतना मैं जानता हूं मैं जाऊंगा।
3: विधानसभा नहीं जाएंगे?
1: नहीं, विधानसभा कोई सवाल नहीं उठता। जहां से मैं देखिए, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। 6 बार मैं स्वयं सांसद रह चुका, पत्नी सांसद रह चुकी, 7 बार बेटा सांसद है, बहुत होता है। लेकिन यहां एक किंतु परंतु यह है कि मैं उस हाउस से बेइज्जत होकर के आया था, तो एक बार जाऊं चाहे तीसरे दिन इस्तीफा दे दूं, मेरे पास बहुत काम है, मैं जनता जनार्दन की सेवा करता रहूंगा, लेकिन एक बार जाना चाहूंगा।
3: नहीं तो जनता भी जानना चाहेगी ना, कैसे जाएंगे, बेटे आपके सांसद हैं, बेटे विधायक हैं,
1: जनता ही भेजेगी ना, जनता ही भेजेगी, चिंता मत करिए आप, देखिए आगे आगे क्या होता है।
3: ये बताइए, आप हमेशा कहते हैं कि आपकी अपनी पार्टी अपने सत्ता से उतनी नहीं बनी जितनी आप उम्मीद करते थे, ऐसा है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को लेकर के भी आपके बयान हमेशा आते रहे, सवाल है मेरा।
1: जैसे कहा जाता है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अब ये बात किसी किसी को अच्छी नहीं लगती है, तो उसके लिए हम क्या करें? और रहा सवाल पार्टी में हमारी बनती है कि नहीं बनती है, हमको तो नहीं लगता कि हमारी पार्टी में नहीं बनती है। हो सकता है पार्टी में कोई हो जो मुझे ना पसंद करता हो, अगर पार्टी से मेरी ना बनती होती तो मेरे बेटे को टिकट कैसे मिलता? हमने टिकट भी नहीं मांगा था, बेटे ने भी टिकट नहीं मांगा था, तो पार्टी ने विचार किया और हमारे बेटे को टिकट दिया और हमको फोन किया, हमने हाँ किया, तो ये कैसे मान लिया जाए कि पार्टी से दूरी है? पार्टी से दूरी नहीं,
3: मुख्यमंत्री जी से
1: सामान्य है। मुख्यमंत्री जी, अब देखिए, जब से मेरे ऊपर आरोप लगा तब से तमाम लोगों ने मुझसे दूरी बना ली। एक बार उन्होंने बुलाया था, मैं गया था, उन्होंने क्यों, तमाम लोगों ने मुझसे दूरी बना ली।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: in association with
1: Cera Sanitaryware. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

सरकार के सामने विरोध के तीन मोर्चे हैं। पहला है चढ़ावा चोरी का, दूसरा है छात्रों का मुद्दा और तीसरा मोर्चा है FCRA का। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2026 पर भी विपक्ष ने विरोध की आवाज बुलंद की है। संसद के मॉनसून सत्र में सिर्फ दो दिन बचे हैं, 13 अगस्त आखिरी दिन है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि FCRA बिल कब पेश किया जाएगा। वैसे माना जा रहा है कि आज सरकार FCRA बिल को पेश करने की कोशिश करेगी। इस बिल को लेकर सरकार को घेरने में विपक्षी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस और TMC चाहती है कि सरकार FCRA बिल को वापस ले, वही BJD चाहती है इसे JPC के पास भेजा जाए। DM के दुविधा में है, जो चाहती है कि या तो बिल वापस लिया जाए या उसे JPC के पास भेजा जाए। हालांकि सूत्र बताते हैं कि सरकार FCRA बिल को JPC के पास भेजने पर भी विचार कर रही है। FCRA बिल को विपक्ष पूरी तरह असंवैधानिक बताता रहा है। तमिलनाडु विधानसभा में तो इसके खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कर चुका है। केरल और पूर्वोत्तर के कुछ संगठनों ने भी आपत्ति जताई है। ऐसे में सभी की निगाहें सरकार के भावी कदम की ओर है। दुनिया का सबसे बड़ा आज तक ब्यूरो।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, आंदोलन करते अपने राज्य के युवाओं को खारिज कर देने वाली राजनीतिक फैशन के शिकार,
5: अलग अलग
4: जो सदन में खड़े होकर भर्तियों में धांधली के खिलाफ 18 दिन से प्रदर्शन करते और 17वें दिन पुलिस की लाठी आंसू गैस का गोला खाए छात्रों को सियासी मोहरा बताने में जुट चुके हैं। इसीलिए तो रो पड़ती हैं ये बेटियां। गुमला से झारखंड की राजधानी रांची आकर दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने रहने खाने और पढ़ने का खर्च उठाकर एक आदिवासी बेटी को झारखंड में इतना भरोसा भी सरकार नहीं दे पाती है कि उसकी मेहनत से पास हुई परीक्षा में सब कुछ ईमानदारी से हुआ है। एक आदिवासी बेटी रोती है तो भविष्य की भर्तियों के लिए तैयारी करती दूसरी बेटी रांची में प्रदर्शन करते हुए आंसू नहीं रोक पाती। इन बेटियों से आंख मिलाकर झारखंड सरकार क्या कह पाएगी कि अब एक भी भर्ती भ्रष्टाचार के अधीन नहीं होगी? लेकिन वो तो पुलिस की लाठियों को वाजिब ठहराने में जुटी है, जहां मुख्यमंत्री कहते हैं प्रशासन ने बहुत धैर्य सोमवार को दिखाया है। देखें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना धैर्य प्रशासन ने सोमवार शाम को विधानसभा के गेट के पास दिखाया। इतना धैर्य कि लाठियों के बेरोजगारों के हाथ सिर पर चटकने की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन आंख खुले तो मुख्यमंत्री और पूरी सरकार देखें किस तरह बहुत दूर नहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रांची पुलिस के धैर्य वाले लाठीचार्ज का गवाह बने बेटे और बेटियां बैठे। आंख खोल कर देखें सरकार, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का कंधा, किसी की कोहनी, किसी का चेहरा, किसी का सिर, लाठियों के निशान मौजूद है। लेकिन जो सरकार लाठीचार्ज को लाठीचार्ज न माने उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? मिलिए सत्ता की अंधेरगर्दी के दूसरे किरदार, नाम है इरफान अंसारी, पावरफुल मंत्री, स्वास्थ्य विभाग झारखंड में संभालते हैं। लेकिन इनको लगता है कि रांची में पुलिस ने सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कहीं कुछ नहीं किया। कोई कार्रवाई न कहते हुए मंत्री जी की जुबान रत्ती भर लड़खड़ाई नहीं। जहां न आंसू गैस का गोला इनको दिखा, न दिखते हैं सरकार के कटीले तार, न मार खाते बेरोजगार, न आंसू, न तड़प, न चीख, न पीठ पर लाठी के निशान। सोचिए ये हाल है जहां मुख्यमंत्री पुलिस की कार्रवाई को अभूतपूर्व धैर्य वाला बताते, स्वास्थ्य मंत्री मानते नहीं कि लाठीचार्ज हो, और महुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद कहती है सरकार ने संयम बरता। तो क्या बिना कार्रवाई के खून विक्रम कुमार जैसे छात्रों का बहा? यही वजह है कि जब सरकार कहती है कि वो छात्रों की बहुत सी मांगों को मान चुकी है तो भी सोनी कुमारी जैसी छात्राओं को रत्ती भर भरोसा नहीं होता, वो रोने लगती है। क्योंकि जो सरकार यही ना माने कि लाठीचार्ज हुआ, वो कैसे ये भरोसा दे देगी कि आगे परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी?

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: संसद गतिरोध पर गृह मंत्री का जवाब, विपक्ष चाहे तो चर्चा के लिए तैयार हूं, दे सकता हूं जवाब, लिखी स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी, परीक्षा पर बहस कराई जाए, मैं सदन में मौजूद रहूंगा। गृह मंत्री के बयान पर राहुल का पलटवार, कहा हमें सिर्फ ये जानना है कि किसने दिया छात्रों पर पुलिस से एक्शन का आदेश, अगर गृह मंत्रालय से आया ऑर्डर तो शाह इस्तीफा दें।
1: के लिए उनके नेताओं के लिए कि उसमें और थ्रेड एंड वेयर डिस्कशन हो जाए, कायदे से उस बिल को जो एविडेंस बुलाना हो, कंप्रेहेंसिव हो, उनका हो जाए, तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, आपको भी धन्यवाद देना चाहिए। आखिर अगर एक बिल कोई पारित हो गया, आप रुक जाए। नहीं, देखिए ये तो आपकी भावनाएं रखी गई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में औजला साहब। नहीं, व्हाट डू मीन, इफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हैज इटसेल्फ मूव या रेफर टू एनी बिल टू द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये आपके लिए स्कोर है, आपके लिए स्कोर है, और आप कह रहे हैं इसके लिए नहीं है। आइटम नंबर थर्टी खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के लिए माननीय मंत्री जी,
2: ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, आई रेज टू मूव दैट दी माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 टू फर्दर अमेंड दी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 बी टेकन इनटू कंसीडरेशन।
1: प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अब विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। आप सबसे मेरा अनुरोध है, एक मिनट सुन ले जयप्रकाश जी सुन ले, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने इस पर संशोधन मूव किया है और आप लोगों ने अगर इस पर अमेंडमेंट मूव किया है, तो मैं आग्रह करूंगा, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, दोज हु हैव मूव अमेंडमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर बिल, काइंडली यू टेक योर सीट, आई विल अलाउ यू। जिन्होंने संशोधन मूव किया है उनके सभी सदस्य अगर अपने अपने स्थान पर चले जाएं, तो मैं अन्यथा फिर मैं सभी खंडों को सभा के लिए निर्णय के लिए एक साथ लूंगा। माननीय सदस्य इनके प्रेमचंद्रन जी, माननीय सदस्य इनके प्रेमचंद्रन जी क्या कहना चाहते हैं?
3: सर आई एम ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, सर आई एम ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर,
1: आर यू मूविंग
3: योर अमेंडमेंट?
1: नो, आर यू मूविंग?
3: नो, आई विल नॉट अलाउ, दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, इट इज अगेंस्ट द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
1: यू आर मूविंग, नथिंग विल बी एंड। अरुण नेहरू जी, विशाल पाटिल जी, प्रोफेसर सौगत राय जी, श्री अभय कुमार सिन्हा जी, श्री आज आर सच्चिदानंदम जी, श्री बेनी बहनन जी, श्री मनोज कुमार जी, दुरई वाइको जी, इतने माननीय सदस्यों के द्वारा आया है, और तो मैं सभी खंडों को।
0: लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, इस बीच में बड़ी खबर आपको देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है और छात्र आंदोलन पर चर्चा कराने का आग्रह किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज बयान भी दिया था और उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी गई है, इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बीएसी की बैठक में सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा की सहमति दी जा चुकी है और लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें विपक्ष के किसी भी माननीय सांसद ने नीट परीक्षा के संबंध में सदन में कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया, इसके बावजूद सरकार पुनः इस मुद्दे पर चर्चा हेतु तैयार है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने आज बयान देकर विपक्ष से कहा था कि आप 2 बजे चिट्ठी लिख दीजिए, 3 बजे से चर्चा करते हैं, लेकिन इस ओर कोई भी कदम बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन इस बीच में लोग हंगामे के बीच में जो काम काज है वो चल रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करेंगे 100 शहर 100 खबर के।

राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव किया पेश, विपक्ष के हंगामे के बीच में ध्वनिमत से पास। लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सदस्यों वाली जेपीसी करेगी एफसीआरए संशोधन बिल की जांच। अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, बिना अल्पसंख्यकों के कौन सा बिल लेकर आया। राज्यसभा में अमित शाह की मौजूदगी की मांग, खड़गे बोले कि जिनके नाम से बिल है वो सदन से गैर हाजिर है। नड्डा का खड़गे पर भी पलटवार, विपक्ष सदन को गुमराह कर रहा है, सरकार तो चर्चा के लिए तैयार। एफसीआरए बिल जेपीसी को भेजे जाने पर डिंपल यादव का केंद्र सरकार पर हमला, बोले कि यह कानून सरकार से असहमत रहने वाले गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ और संस्थानों को डराने, धमकाने, उनकी संपत्तियों पर नियंत्रण करने का एक जरिया है। एफसीआरए बिल पर रामगोपाल यादव का भी बड़ा बयान, बोले कि यह बिल कभी भी आना नहीं चाहिए था, गरीबों की सुविधाएं इससे बंद हो जाएंगे। एफसीआरए संशोधन बिल जेपीसी को भेजे जाने का ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल ने स्वागत किया है और आर्क बिशप जोसेफ डिसूजा बोले कि जेपीसी में अपना पक्ष रखेंगे। अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा, आंदोलन पर चर्चा करने का आग्रह करा। संसद में चर्चा पर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले विपक्ष तैयार हो तो आज 3 बजे से कल 3 बजे तक चर्चा के लिए तैयार। विपक्ष को 24 घंटे चर्चा का प्रस्ताव दिया, कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए आगे आया। संसद के गतिरोध के बीच में अमित शाह को विपक्ष को एक बड़ा निमंत्रण, हम सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष तय करे कि क्या वो सदन चलने दे रहे हैं या फिर नहीं। अमित शाह ने खुद पर लगे आरोपों का भी खंडन किया। अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, अमित शाह ने अगर दिया तो वो इस्तीफा दें। सदन में गृहमंत्री के बयान की मांग पर प्रियंका गांधी का हमला, बोले कि सरकार जनता के प्रति जिम्मेदारी महसूस नहीं करती। संसद भवन परिसर में एनडीए और विपक्ष का एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन, रांची लाठीचार्ज पर सत्ता पक्ष का विरोध तो जंतर मंतर के मुद्दे पर विपक्ष का। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रियम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संघर्ष और राष्ट्रपति पद तक के सफर पर आधारित है आत्मकथा, पीएम का नौजवानों को संदेश, मुश्किलों से हारे ना, रील और शॉर्टकट के जमाने में ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़े। अरुणाचल में चीनी घुसपैठ की खबरों के बीच में एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम मुलाकात, संसद में रक्षा मंत्री के दफ्तर में बैठक। चीन की धीरे धीरे घुसपैठ के तमाम दावों को सरकार ने नकारा, कहा कि सीमा पर सेना और आईटीबीपी पूरी तरह मुस्तैद है। अरुणाचल को लेकर सोशल मीडिया पर जो तमाम तरह के दावे आए, सरकार का जवाब है कि चीनी गतिविधियों पर नजर है, सीमा पर डोमिनेट करने के लिए तैयार है सेना। रांची में छात्रों के आंदोलन का 19वां दिन, प्रदर्शनकारियों की संख्या अब आधे से भी कम, समर्थन में आई कई अब कमी आई है, चाय नाश्ता और खाने से लेकर तमाम जो देने वाले समर्थक क्या दिख नहीं रहे। रांची मैंशन पर बैठे छात्रों के पंडाल में काटे गए पिछले, स्टेडियम में देर रात पहुंचे अधिकारी, पूछताछ में आरोपी अभय तिवारी ने पूरे नेटवर्क की खोली पोल। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों पर दबाव बनाने की कोशिश, हटाया जनरेटर गर्मी और उमस के बीच में, लेकिन आंदोलन जारी है। रांची धरने के बीच में बड़ा खुलासा, पूछताछ में मास्टरमाइंड ने खोली जेपीएससी नेटवर्क की पूरी पोल। देवेंद्र महतो ने अस्पताल से इंसाफ के लिए एक जारी किया पत्र, अस्पताल के 10वें दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है, लिखा न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। संसद में संग्राम के बीच में एनडीए का राष्ट्रवाद वाला दांव, भारत मंडपम से निकाले गए तिरंगा बाइक रैली, हर घर तिरंगा संदेश के साथ एनडीए सांसद नेशनल स्टेडियम तक मार्च करते पहुंचे। दिल्ली में हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दिखाई हरी झंडी, उपराष्ट्रपति ने हर घर तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ किया। दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडवीय ने किया हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व, डीयू के माय भारत वॉलंटियर्स भी शामिल हुए। श्रीनगर में सीआरपीएफ की हर घर तिरंगा रैली, जवानों ने तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। बस्तर के नारायणपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शुरू की बस्तर तिरंगा यात्रा, नक्सल प्रभाव से मुक्त गांव तक ये बाइक रैली पहुंचेगी। राम मंदिर में फुल टाइम सीईओ की रेस तेज, अब 5200 आवेदनों में से 18 शॉर्टलिस्ट, इंटरव्यू में आस्था से लेकर नेतृत्व क्षमता तक की परीक्षा। 2 सितंबर को ट्रस्ट को मिलेंगे 3 नाम, पूर्व आईएएस आईपीएस अधिकारियों समेत 18 उम्मीदवारों की दावेदारी। मंदिर प्रशासन, वित्त, सुरक्षा, श्रद्धालुओं की व्यवस्था संभालेगा नया सीईओ। 2027 की चुनावी जंग से पहले सीएम योगी का जनसंवाद प्लान, 1 महीने में 100 से ज्यादा विधानसभाओं का सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर सपा कांग्रेस पर निशाना साधा। यूपी में युवाओं की नाराजगी दूर करने के लिए 2027 की चुनावी जंग से पहले सीएम योगी का जनसंवाद प्लान, 1 महीने में 100 से ज्यादा विधानसभाओं का सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश कर सपा कांग्रेस पर निशाना साधा।
यूपी में युवाओं की नाराजगी दूर करने के लिए मैदान में उतरेंगे यूपी के मंत्री। जेन जी चौपाल में सुनेंगे समस्याएं, सरकार की योजनाएं भी बताएंगे। बीजेपी के जेन जी कार्यक्रम पर एसपी प्रवक्ता पूजा शुक्ला का हमला, बोले कि जो काम आप अब बीजेपी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी तो बहुत पहले से करती आई। नोएडा एयरपोर्ट में जल भराव पर अखिलेश यादव का तंज, अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी? अखिलेश का बीजेपी सरकार पर हमला कि जहां बीजेपी सरकार वहां महाभ्रष्टाचार। यूपी चुनाव को लेकर सपा का बड़ा सर्वे प्लान, 403 विधानसभा सीटों पर चल रहा है 3 स्तरीय आंतरिक सर्वे। टिकट बंटवारे से पहले बूथ का जातीय गणित खंगाल रही सपा। अयोध्या चंदा चोरी मामले में सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा दावा कि बड़ी मछली को बचाने के लिए कुछ छोटे लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जाए। अवधेश प्रसाद का आरोप कि पहले लाखों की भीड़ और सोने चांदी का चढ़ावा आता था, अब 10,000 भी नहीं। अयोध्या की मर्यादा को कलंकित किया इन्होंने। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा का जिला अस्पताल में छापा, बद इंतजामी देखकर भड़क गए, विधायक औचक निरीक्षण का वीडियो वायरल। गोरखपुर में सीएम योगी ने सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन किया, गोरखपुर को विकास की नई सौगात। झांसी हादसे का लाइव वीडियो वायरल, अतीक के बेटे अबान के कार होने का दावा, वीडियो में डिवाइडर से टकराकर हवा में उछलती नजर आई गाड़ी। अतीक के बेटे की मौत पर इमरान प्रतापगढ़ी का हालचाल न लेने को लेकर छिड़ा घमासान, सोशल मीडिया पर इमरान प्रतापगढ़ी पर जमकर हो रही ट्रोलिंग। सुल्तानपुर में टोल नहीं देने को लेकर विवाद, 4 से 5 लोगों ने टोल कर्मी से बूथ में घुसकर की मारपीट, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। सहारनपुर में नदी के तेज बहाव में फंसे स्कॉर्पियो कार जान जोखिम में डालकर युवाओं ने 6 लोगों की जान बचा ली। मऊ में दरोगा सिपाहियों पर युवक को चौकी में ही बेल्ट से पीटने के आरोप है, शरीर पर चोटों के निशान, पीड़ित की शिकायत पर एसपी ने मेडिकल के निर्देश दिए। बरेली में भीषण सड़क हादसा, 30 कांवड़िए घायल, टेम्पो सवार अज्ञात व्यक्ति की मौत, हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होने पर बरेली के असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राहत नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर का सरकार पर आरोप, दोहरा चरित्र अपनाई रही बीजेपी सरकार। लखनऊ में प्रार्थना सभा में हंगामा, धर्मांतरण के लिए 2 बकरी, पानी की टंकी का लालच देने का आरोप है, पादरी हिरासत में हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग। नोएडा के बीजे में 19 वर्षीय युवती का शव मिलने से सनसनी, धारदार हथियार से हत्या की आशंका, आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। राजस्थान के जैसलमेर में स्कूली बच्चों से भरी बस में लग गई आग, हादसे में 17 बच्चे उस समय सवार थे और ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। पटना में अज्ञात कारणों से बाइक पर आए अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के जालना में तेज रफ्तार कार ने पहले बाइक को मारी टक्कर, बाद में नियंत्रण खोते ही कुएं में गिरी, हादसे में 2 महिलाओं की मौत। गोंडा में बेटी की हत्या के मामले में पिता और सौतेली मां को उम्र कैद, 2 साल पहले गला रेत कर मारा था। अंबिकापुर में हैरान कर देने वाला मामला, 42 दिन पहले सिपाही की मौत, कागजों में चलता रहा इलाज, फिर स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं का मैसेज आया। भोपाल में पुलिस को ही अगवा करके ले गए बदमाश, हाथ पैर बांधकर पीटा गया, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश के बीच में पुराना मकान ढह गया, मलबे में दबकर 71 वर्षीय महिला की मौत। गुजरात के जामनगर राजकोट हाईवे पर ट्रक की कैबिन में लगी भीषण आग, वाहन पूरी तरह से जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। गुजरात के जूनागढ़ में एम्बुलेंस ने ई रिक्शा को मारी जबरदस्त टक्कर, 70 साल के चालक की मौत। गुजरात के नवसारी में पानी की पाइपलाइन में बड़ा लीकेज है, 70 फीट ऊंचे पानी के बने हुए तेज फव्वारे को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। राजस्थान के धौलपुर में कार और ट्रक की जबरदस्त टक्कर, 6 लोगों की इसमें मौत। बिहार के गोपालगंज में विभाग की बड़ी कार्रवाई, 75 लाख की जब्त शराब को बुलडोजर से नष्ट किया गया। गुजरात के गांधीनगर में इंस्टाग्राम पर फर्जी कंपनी बनाकर

0: के 11वीं मंजिल पर भीषण आग, दो की मौत, दो का अस्पताल में इलाज। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर, आग और धुएं से अफरा तफरी, ऊपरी मंजिलों पर फैली। धुएं के कारण ऊपरी मंजिलों पर लोग फंस गए थे, दमकल विभाग ने रेस्क्यू कर छत से 15 लोगों को सुरक्षित निकाला। लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। लद्दाख में पहली बार ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव का आयोजन, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने उद्घाटन किया। इस महोत्सव के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महोत्सव में भारत और विदेश के संरक्षण विशेषज्ञों, शोधार्थियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। लद्दाख में एनसीसी के 2 बटालियन का संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर संपन्न, विभिन्न कॉलेजों स्कूलों के छात्रों ने लिया भाग, युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति का बढ़ावा देने का उद्देश्य। प्रयागराज में मन जो है भर रहा है लोगों की आजादी का जश्न, राष्ट्र प्रेम और सामाजिक एकता को समर्पित रंग दे बसंती कार्यक्रम। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, बड़ी संख्या में केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे भक्त। मुंबई के घाटकोपर में लैंडस्लाइड, लगभग 7 घरों पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा, 6 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लाहौल स्पीति में मुंशी नाला में फ्लैश फ्लड आ गया और खेतों में बाढ़ का पानी घुसने से भूमि को भी नुकसान। जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, लापता 2 युवकों की तलाश में तीसरे दिन भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फ्लैश फ्लड का कहर, उजह नदी में फंसे 7 लोगों को पुलिस ने किया रेस्क्यू और माहीचक इलाके में अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। जम्मू कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट जारी है, मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ साथ फ्लैश फ्लड की आशंका जाहिर की है। कांगड़ा में भारी बारिश के बीच में लैंडस्लाइड, 4-लेन हाईवे और कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित। शिवपुरी में लगातार बारिश से आफत, सड़कें और अंडरपास जलमग्न, नेशनल हाईवे 46 पर जल भराव। भारी बारिश के चलते एक और अंडरपास में भरा बारिश का पानी, पानी भरने से गांव का टूटा संपर्क। बूंदी में 2 दिन की लगातार बारिश से शहर जलमग्न, सड़कों ने नदी का रूप धारण कर लिया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बारिश के बाद से नदी का जलस्तर बढ़ा, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। हिमाचल के कुल्लू में नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा, पहाड़ी से गिरे भारी भरकम पत्थर और मलबे की चपेट में कार आ गई, 2 लोग इसमें घायल। गंगापुर में झमाझम बारिश, सड़कें जलमग्न, जलभराव के चलते आवागमन में परेशानी। बिजनौर में तेज बारिश के चलते सड़कें हुई जलमग्न, बिजली घर में भी पानी घुस गया है, जलभराव के चलते परेशानी। असम के गोलाघाट में धनसिरी नदी का जलस्तर घटने के बाद अब बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है, सामान्य जनजीवन बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी में भारतीय सेना ने बचाया हिमालयी भालू, मुंह में फंसा हुआ था इसका टीन का डब्बा। भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी सूरज कुमार चंद्रा का इतिहास, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वाश चैंपियनशिप में देश को पहला गोल्ड मेडल मिला। भारत और अफगानिस्तान के बीच में 3 T20 मैचों की सीरीज का ऐलान हुआ, BCCI ने इसकी जानकारी दी। 13 से 17 सितंबर तक खेले जाएंगे 3 मैच और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 3 ही मुकाबले होंगे। IPL टीम गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को वापस लेने से किया इनकार, हार्दिक ने वापसी के लिए कप्तानी पाने की रखी थी शर्त। रोहित शर्मा होस्ट के तौर पर टीवी पर करेंगे डेब्यू, द रोहित शर्मा शो नाम से जल्द आएगा एक गेम शो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।

0: 봐봐.
1: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
3: चार्ज हुआ यार।
4: बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
10: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
9: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
11: 19 years ki thi tab maine gym join kiya tha, to maine gym mein crush banaya tha.
12: Usi se relationship tha kya?
11: Yahi motivation tha mera gym jaane ka ke.
12: जब जिम जाओ आशी तो वहाँ वर्कआउट करो, वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं कर रहा है।
11: मैं 19 साल की थी ना, फिर जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने जिम भी छोड़ दिया था। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं सिर्फ जॉब ही करूँ, मेडिकल स्टूडेंट थी तो डॉक्टर, ये तो टीचर, ऐसा। तो शी वाज लाइक कैमरा के आगे क्या कर रही हो, क्या है ये, टाइम पास ही रहना चाहिए, इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है वो। फिर जब मॉम ने देखा कि अच्छा पैसे भी मिलते हैं इसमें तो।
12: यू लॉस्ट योर मॉम आल्सो?
11: आई लॉस्ट माय डैड when I was in second standard and then I lost her, तो मेरी शादी नहीं देख पाएंगे।
13: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
14: जब तक वो CBI जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
13: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
15: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
16: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
17: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को। और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
18: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है।
13: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: In association with
3: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
4: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
2: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
5: Har saal monsoon mano system ki pole kholne ke liye hi aata hai. अब राजस्थान के झालावाड़ का हाल देखिए। चार घंटे के भीतर 300 मिलीमीटर बारिश हुई और इलाके में लोग त्राहिमाम कर उठे। ये स्कूल का वीडियो है, यहाँ पानी ऐसे बह रहा है मानो बांध खुल गया हो। पानी में फंसे बच्चों को निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया।
6: इस भारी वर्षा के कारण से नदी नालों का जो प्रवाह है उसने विकराल रूप धारण कर लिया और सभी जगह सड़कों पर नालों पर जल प्रवाह बढ़ गया था। इसके चलते हमारे क्षेत्र के कई गांवों में कई घरों में कल पानी भर गया था। दो जगह स्कूलों में बच्चे भी फंस गए थे, लेकिन प्रशासन की सक्रियता से और ग्रामवासियों के सहयोग से बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया।
5: अब राजस्थान के बूंदी का वीडियो देखिए। रेगिस्तानी सूबे के शहर में मूसलाधार बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। दो दिन की लगातार बारिश से बूंदी शहर के इस बाजार का ये हाल है। दोनों तरफ दुकानें और बीच की सड़क पानी से लबालब। बूंदी के छत्रपुरा इलाके का हाल देखिए। सड़कों से लेकर घरों की रसोई और दुकानों तक में पानी घुस गया। लोगों का आरोप है कि समय रहते प्रशासन ने बरसाती नालों की सफाई नहीं करवाई, जिसके कारण ये हालात बने। सड़क हो, मकान हो या दुकान, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। राजस्थान का गंगापुर भी करीब घंटे भर की बारिश में त्राहिमाम कर उठा। मंगलवार शाम करीब 4 बजे बारिश शुरू हुई और घंटे भर के बाद गंगापुर सिटी का ये हाल था। नया बाजार, फव्वारा चौक, उदय मोद्दा, सालोदा, ईदगाह, कचहरी रोड समेत कई इलाके जलमग्न हो गए। और अब एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ की, जहां अचानक आई बाढ़ में 7 जिंदगियां फंस गईं। ये तस्वीरें कठुआ के माहीचक इलाके की हैं। वहां उंझ नदी में उफान बढ़ा तो नदी के बीच एक टापू पर लोग पानी से घिर गए। उन सभी को बचाने के लिए पुलिस और SDRF के तेज बचाव अभियान के बाद कठुआ में अचानक आई बाढ़ के दौरान 7 लोगों की जान बच पाई। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल 12 बजे तक के लिए स्थगित। संसद के गतिरोध पर गृह मंत्री का जवाब, विपक्ष चाहे तो मैं चर्चा के लिए तैयार, ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। गृहमंत्री के बयान पर राहुल का पलटवार, कहा हमें सिर्फ ये जानना है किसने दिया छात्रों पर पुलिस एक्शन का आदेश, अगर गृह मंत्रालय से आया ऑर्डर तो इस्तीफा दें शाह। हंगामे के बीच एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पास, राज्यसभा में खड़गे और नड्डा के बीच तीखी बहस, नड्डा बोले सदन को गुमराह कर रहा है विपक्ष। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों पर दबाव बनाने की कोशिश, रात में काटी बिजली अब हटाया जनरेटर, गर्मी और उमस के बीच जारी है धरना, पूछताछ में मास्टरमाइंड ने खोली जेपीएससी नेटवर्क की पोल। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे की हादसे में मौत के बाद वायरल वीडियो आया सामने, एक्सीडेंट से ठीक पहले की फुटेज में कार की टक्कर कैद, पीछे की गाड़ी के डैश कैम से मिली तस्वीरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत की।
0: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरें असरदार। संसद में आज सियासी टकराव अपने चरम पर नजर आया। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को खुली चुनौती देते हुए कहा अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। अमित शाह ने दावा किया कि सरकार नीट छात्रों के मुद्दे पर हर तरह की चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष अगर चर्चा चाहता है तो स्पीकर को पत्र दे, यहां तक कि जरूरत पड़ने पर क्वेश्चन आवर सस्पेंड करने की पेशकश भी की। लेकिन विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने अमित शाह के इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए छात्रों पर कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री से जवाब और इस्तीफे की मांग की।
2: पिछले कई दिनों से संसद का यही हाल है, सत्ता पक्ष और विपक्ष का आमना सामना होना, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, विपक्ष का सवाल कि गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं, सत्ता पक्ष का सवाल कि राहुल गांधी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं।
3: इस 20 दिन के लिए गायब हो गए।
2: पूरे मॉनसून सत्र में अमित शाह राहुल गांधी के निशाने पर रहे, राहुल गांधी को जब भी मौका मिला यही पूछा कि अमित शाह कहाँ हैं, तो वार और पलटवार के बीच आज गृह मंत्री का जवाब आया। पहले तो उन्होंने विपक्ष की भाषा पर सवाल उठाए,
4: लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूँ।
2: अमित शाह ने पहले तो विपक्ष को भाषा की मर्यादा बताई और फिर विपक्ष को चुनौती दी कि वो बहस के लिए तैयार हैं, उन्हें चर्चा से कोई परेशानी नहीं, विपक्ष को एक एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा, शर्त बस इतनी है कि वो संसदीय प्रक्रिया का पालन करें।
4: अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा, सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं।
2: अमित शाह जो कुछ बोले उसका निचोड़ ये है कि सरकार चर्चा से कतई नहीं भाग रही, सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। विपक्ष के विरोध के बीच अमित शाह का पहला बयान आया तो राहुल गांधी की ओर से जवाब देने में भी देरी नहीं हुई, थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और एक बार फिर अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठा दिया।
3: इस 20 दिन के लिए गायब हो गए, यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह, उनके घर के सामने जाइए वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए।
2: राहुल गांधी ने एक बार फिर अमित शाह पर हमलों की बौछार जारी रखी। एक बार फिर उन्होंने अमित शाह का इस्तीफा मांगा।
5: Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent.
2: अमित शाह बनाम राहुल गांधी की इसी तनातनी में मानसून सत्र पूरी तरह हंगामे की भेंट चढ़ गया। जो सवाल जवाब सदन के अंदर होना चाहिए वो बाहर ही होकर रह गया। आज तक ब्यूरो।
0: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी और छात्र आंदोलन पर चर्चा कराने के लिए आग्रह किया। अमित शाह ने लिखा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार की ओर से संसद में नीट परीक्षा पर छात्र आंदोलन पर चर्चा की सहमति दी जा चुकी है और लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 पर चर्चा हो चुकी है, जिसमें विपक्ष के किसी भी माननीय सांसद ने नीट परीक्षा के संबंध में सदन में कोई भी विचार व्यक्त नहीं किया। इसके बावजूद सरकार फिर से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने लिखा कि उनका अनुरोध है कि स्पीकर विपक्ष से चर्चा कर आपसी सहमति से आज से जितने समय जितने घंटे उचित समझे उतना समय आवंटित करें। निर्धारित समय के दौरान सदन में गृहमंत्री उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेंगे और विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देंगे। लोकतंत्र में चर्चा और संवाद से ही समाधान निकलता है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अटूट विश्वास की बात करते हुए अमित शाह लिखते हैं कि उनका यह मानना है कि सदन चर्चा और संवाद के लिए ही है। उधर रांची में छात्र आंदोलन का आज 19वां दिन है और अब इस आंदोलन की रफ्तार और धार धीमी होती नजर आ रही है। धरना स्थल पर गहमागहमी कम होती जा रही है। मौका देखकर सरकार ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। खबर है कि धरना स्थल को सप्लाई होने वाली बिजली काट दी गई। इस मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने अहम खुलासे किए हैं। सीआईडी को यह बताया है कि आखिर कैसे सालों से पैसा फेंको नौकरी पाओ वाला खेल चलता रहा। झारखंड की परीक्षाओं में कई सालों से धांधली होती रही है। लाखों रुपए लेकर पदों और नौकरियों की बंदरबांट होती रही है। सीआईडी की गिरफ्त में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने खुद खुलासा किया कि उन्होंने लाखों रुपए लेकर नौकरियां दिलवाई। अभय तिवारी की माने तो हर परीक्षा के लिए रेट लिस्ट तय थी। पैसा फेंको मलाईदार नौकरी पाओ ये सिलसिला सालों से चला आ रहा था। भ्रष्टाचार की इस लूट में तमाम बड़े अधिकारी शामिल थे।
6: आपने मूसलाधार बारिश के बीच छात्रों के आंदोलन की आग देखी। आपने विधानसभा घेराव के दौरान इन छात्रों का हौसला देखा। आपने छात्रों पर रांची पुलिस की ज्यादती देखी। छात्रों पर लाठियां बरसते देखा और उन्हें एक एक कर घायल होते देखा।
7: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो,
8: पूरे देश के युवाओं पे लाठी चले।
7: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, लाठी चार्ज कर रही है पुलिस। हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है। हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
6: रांची में दो दिन पहले क्या क्या हुआ इसे पूरे देश में देखा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सहानुभूति के बजाय पुलिस का बचाव करते दिखे।
9: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है। अध्यक्ष महोदय, जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आ सकता।
6: सोरेन यहीं ठहर जाते तब भी गनीमत होती, लेकिन अब वो जुल्म पर उतर आए हैं, बदले पर उतर आए हैं। खबर है कि रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
10: घड़ी में छात्रों की संख्या बढ़ने लगती थी, वो आज अब आधे से भी कम होने लगी है। ज्यादातर छात्र या तो जा चुके हैं या इस समय धरना स्थल पर मौजूद नहीं है। बीती रात प्रशासन यहां पर आया। छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई, और अब इस उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है, तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोग?
11: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी, अब सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी। अब इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था। जो हम लोग का लाइट वो जल रहा था, जो जनरेटर से हम लोग का चल रहा था।
6: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। सरकार ये बात समझती है, इसलिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये दबाव उस सच को नहीं दबा सकता जो एक एक कर सामने आ रहा। सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली।
12: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही राज्य की सीआईडी के सामने अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने सीआईडी से पूछताछ में बताया है कि कैसे अलग अलग परीक्षाओं में लाखों रुपए में नौकरी की डील हुई। अभय तिवारी ने ये बताया है कि उसने किन परीक्षाओं में करोड़ों की राशि की वसूली की, कैसे एजेंट्स के जरिए जो नियोक्ता एजेंसियां थी उनको लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में सीआईडी अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि सीआईडी की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनका यह कहना है कि सीबीआई जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशिभूषण, आज तक रांची।
0: झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच सियासत की एंट्री है। कल विधानसभा में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने छात्रों के चोले में बीजेपी के घुसपैठ का आरोप लगा दिया। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। सीएम हेमंत सोरेन ने कल क्या कहा और आज बीजेपी से बाबूलाल मरांडी ने सोरेन पर क्या सवाल खड़े किए, देखिए।
9: ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे।
13: नहीं देना चाहते, वही तो कह रहे हैं ना, कि इसलिए उनको भय है कि भाई जांच की आंच वहां तक पहुंच जाएगी। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्यों डर रहा है सरकार? अगर सरकार को लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है तो फिर सीबीआई जांच करेगी तो सब कुछ ठीक है, तो सबको क्लीन चिट मिल जाएगी, फिर उसको भय किस बात की? गड़बड़ी है तभी तो हेमंत सोरेन जी को भय है, तभी सरकार को भय है कि हमारे जांच होगी तो हमारे यहां तक पहुंचेगी। नहीं तो डर किस बात की है भाई? आपने कोई गलत नहीं किया, आपने कोई चोरी नहीं किया है, कहीं कोई गलत हुआ ही नहीं है, तो फिर आप डर क्यों रहे हैं?
0: अब बात अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की सीईओ पद के लिए जारी इंटरव्यू की। आज सीईओ पद के जारी इंटरव्यू का दूसरा दिन था और बाकी उम्मीदवारों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कल पहले दिन 8 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के इंटरव्यू लिए गए। इनमें 3 पूर्व आईएएस, 1 सेवानिवृत्त आईपीएस और 4 पूर्व सैन्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारी शामिल रहे। अभ्यर्थियों से प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ राम मंदिर और भगवान राम के प्रति उनकी आस्था से जुड़े सवाल पूछे गए। धार्मिक या सामाजिक संस्थानों के संचालन में उनके अनुभव और मंदिर के भविष्य को लेकर विजन भी परखा गया।
14: राम मंदिर को जल्द मिलने वाला है सीईओ। 5300 से ज्यादा आवेदनों में से 18 लोग शॉर्टलिस्ट। सीईओ की रेस में पूर्व आईपीएस और पूर्व डीएम भी शामिल। अयोध्या राम मंदिर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद के लिए सिलेक्शन का आखिरी पड़ाव यानी इंटरव्यू जारी है। पहले दिन शॉर्टलिस्ट लोगों में से 8 लोगों से सवाल जवाब किए जा चुके हैं और बाकी बचे लोगों का आज इंटरव्यू है। पहले दिन 18 में से 8 उम्मीदवारों का आमने सामने इंटरव्यू हुआ, जिसमें 4 पूर्व आईएएस अधिकारी शामिल रहे। इंटरव्यू सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जो 2 सेशन में चला। हर कैंडिडेट से करीब 25 से 30 मिनट तक सवाल जवाब किए गए। पहले दिन शॉर्टलिस्ट लोगों से उनकी आस्था, प्रशासनिक पदों पर काम करने का अनुभव और विजन को लेकर सवाल किए गए। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों से ये पूछा गया कि क्या वो शिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं या मांसाहारी भोजन करते हैं। इसके अलावा शराब पीने और हिंदू धार्मिक परंपराओं के हिसाब से पोशाक पहनने में सहज होने से जुड़े सवाल भी पूछे गए। इसके अलावा प्रशासनिक पदों पर काम करने के अनुभव, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के संचालन से जुड़े सवाल के अलावा राम मंदिर और भगवान श्री राम के लिए आस्था की गहराई को भी परखा गया। इंटरव्यू का आयोजन राम मंदिर परिसर के ग्रीन हाउस में ही हुआ, जिसमें 3 पूर्व आईएएस अधिकारी, 1 रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और 4 पूर्व सैन्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभव शामिल हैं, जो फैजाबाद के जिलाधिकारी रह चुके हैं और ईमानदार छवि वाले अधिकारी रहे हैं। साथ ही साधु संतों से अच्छी जान पहचान है। 2 दिन तक चलने वाले इंटरव्यू में समिति के 3 सदस्य और राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन मौजूद रहेंगे और 2 सितंबर तक 3 नामों का पैनल राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपना है। इसके बाद ट्रस्ट की कार्यकारी समिति अंतिम 3 उम्मीदवारों में से सीईओ का चयन करेगी और राम मंदिर के सीईओ का ऐलान किया जाएगा। अयोध्या से कुमार अभिषेक और आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

राम मंदिर को जल्द मिलने वाला है सीईओ। 5300 से ज्यादा आवेदनों में से 18 लोग शॉर्टलिस्ट। सीईओ की रेस में पूर्व आईपीएस और पूर्व डीएम भी शामिल। अयोध्या राम मंदिर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद के लिए सिलेक्शन का आखिरी पड़ाव यानी इंटरव्यू जारी है। पहले दिन शॉर्टलिस्ट लोगों में से 8 लोगों से सवाल जवाब किए जा चुके हैं और बाकी बचे लोगों का आज इंटरव्यू है। पहले दिन 18 में से 8 उम्मीदवारों का आमने सामने इंटरव्यू हुआ, जिसमें 4 पूर्व आईएएस अधिकारी शामिल रहे। इंटरव्यू सुबह 9 बजे शुरू हुआ, जो 2 सेशन में चला। हर कैंडिडेट से करीब 25 से 30 मिनट तक सवाल जवाब किए गए। पहले दिन शॉर्टलिस्ट लोगों से उनकी आस्था, प्रशासनिक पदों पर काम करने का अनुभव और विजन को लेकर सवाल किए गए। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवारों से ये पूछा गया कि क्या वो शिखा रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं या मांसाहारी भोजन करते हैं। इसके अलावा शराब पीने और हिंदू धार्मिक परंपराओं के हिसाब से पोशाक पहनने में सहज होने से जुड़े सवाल भी पूछे गए। इसके अलावा प्रशासनिक पदों पर काम करने के अनुभव, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के संचालन से जुड़े सवाल के अलावा राम मंदिर और भगवान श्री राम के लिए आस्था की गहराई को भी परखा गया। इंटरव्यू का आयोजन राम मंदिर परिसर के ग्रीन हाउस में ही हुआ, जिसमें 3 पूर्व आईएएस अधिकारी, 1 रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर और 4 पूर्व सैन्य और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अनुभवी अधिकारी शामिल हुए। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए जिन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया, उसमें पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश पांडे भी शामिल हैं। वो यूपी एसडीएफ के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं और लखनऊ के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर के सचिव भी हैं। इसके अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी योगेश्वर मिश्रा का नाम भी चर्चा में है, जो फैजाबाद के जिलाधिकारी रह चुके हैं और ईमानदार छवि वाले अधिकारी रहे हैं। साथ ही साधु संतों से अच्छी जान पहचान है। 2 दिन तक चलने वाले इंटरव्यू में समिति के 3 सदस्य और राम मंदिर ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव डॉक्टर कृष्ण मोहन मौजूद रहेंगे और 2 सितंबर तक 3 नामों का पैनल राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपना है। इसके बाद ट्रस्ट की कार्यकारी समिति अंतिम 3 उम्मीदवारों में से सीईओ का चयन करेगी और राम मंदिर के सीईओ का ऐलान किया जाएगा। अयोध्या से कुमार अभिषेक और आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ओह सॉरी।

0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में भरा पानी। भारी बारिश के बाद पार्किंग एरिया में जमा पानी। वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष ने उठाए सरकार पर सवाल। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में पानी भरने का वायरल वीडियो जैसे ही सामने आया, विपक्ष ने सरकार को घेरने में वक्त नहीं लिया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी, जहां बीजेपी सरकार वहां महाभ्रष्टाचार। अखिलेश यादव के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के दावों पर सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बना और पहली बारिश में ही मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की पोल खोलता नजर आया। जहां एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट प्रशासन ने तत्काल मोर्चा संभालकर आधे घंटे में पार्किंग से पानी निकालकर स्थिति को सामान्य कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बयान जारी कर कहा कि ज्यादा बारिश होने की वजह से पार्किंग एरिया के रास्ते में पानी भर गया था, जिसे तुरंत कार्रवाई करते हुए 30 मिनट से कम वक्त में हटा दिया गया। इस दौरान ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से भेजा गया और किसी भी फ्लाइट में कोई रुकावट नहीं आई।
1: सवाल तो ये है कि इतने ज्यादा लागत से बना यह एयरपोर्ट, लगभग 11,000 करोड़ की लागत से बना यह एयरपोर्ट, अगर पहली बारिश, तेज बारिश में वहां पानी भर जाता है, तो ये कमी मॉनसून की है या झोल इंफ्रास्ट्रक्चर में है या उसके निर्माण में है, ये अपने आप में एक सवाल है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
0: सोशल मीडिया पर पार्किंग में भरे पानी का वीडियो वायरल होने के बाद अब एयरपोर्ट परिसर में जल निकासी व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: राहुल गांधी जवाब दो,
3: जवाब दो।
4: संसद में यह सत्ता पक्ष और विपक्ष के सीधे टकराव की तस्वीरें हैं। एक और एनडीए सांसद झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमलावर है। दूसरी ओर विपक्ष चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आक्रामक है। इन दोनों ही मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में तकरार है और उसका असर यूपी की सियासत में भी साफ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रयागराज में राहुल के कार्यक्रम के बाद छात्रों का मुद्दा भी यूपी के चुनाव से पहले अहम हो गया है। वहीं चढ़ावा चोरी का सवाल तो सीधे यूपी की पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि एक ओर बीजेपी और एनडीए राहुल गांधी पर हमलावर है, तो अब सीएम योगी ने भी राहुल गांधी को सीधी चुनौती दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर लिखा, लोकतंत्र प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है तो उत्तर सुनने का दायित्व भी निर्धारित करता है। गृहमंत्री अमित शाह विद्यार्थियों से जुड़े विषय पर सदन में विस्तार पूर्वक अपना पक्ष रखने के लिए पूर्णतः तैयार है। कांग्रेस और समूचे विपक्ष से अपेक्षा है कि तथ्यों का सामना करें, सदन की गरिमा बनाए रखें और उत्तर को पूरा सुने। लोकतंत्र में बहस से प्रतिष्ठा बढ़ती है, भागने से नहीं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सबसे ज्यादा उबाल की उम्मीद। समाजवादी पार्टी की रणनीति तैयार थी, कांग्रेस भी साथ था, इंडिया गठबंधन के सभी दलों का समर्थन था, सरकार की घेराबंदी का पूरा खाका तैयार था। लेकिन नीट परीक्षा लीक पर छात्र आंदोलन, छात्रों पर पुलिस एक्शन पर सियासी टेंशन से विपक्ष का एजेंडा बदल गया। लेकिन अब छात्रों के मुद्दे की गूंज है और चढ़ावा चोरी पर भी संग्राम है। यूपी में इन दोनों ही मुद्दे पर सियासी रणनीति तैयार होनी शुरू हो गई है। आज तक पेरो।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

11 बजे तक के लिए स्थगित, संसद के गतिरोध पर गृह मंत्री का जवाब, विपक्ष चाहे तो मैं चर्चा के लिए तैयार, ओम बिरला को लिखो चिट्ठी। गृह मंत्री के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा हमें सिर्फ यह जानना है कि किसने दिया छात्रों पर पुलिस एक्शन का आदेश, अगर गृह मंत्रालय से आया ऑर्डर तो इस्तीफा दे अमित शाह। हंगामे के बीच एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पास, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस, नड्डा बोले सदन को गुमराह कर रहा है विपक्ष। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों पर दबाव बनाने की कोशिश, रात में काटी गई बिजली, अब हटाया गया जनरेटर, गर्मी और उमस के बीच जारी है धरना, पूछताछ में मास्टरमाइंड ने खोली जेपीएससी नेटवर्क की पोल।

0: प्रमाणित पाया। सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने के पीछे किसी साजिश के कोई संकेत नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: क्या अदियाला जेल की चार दीवारी के पीछे घट चुका है कोई बहुत बड़ा राजनीतिक हादसा? अमेरिका में बैठे पाकिस्तान

0: पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत खान के एक दावे ने पूरे मुल्क में अचानक खड़ा किया भारी सस्पेंस। क्या इमरान खान अब सुरक्षित नहीं? अमेरिका से आई एक पोस्ट ने मचा दिया पाकिस्तान में हाहाकार। सरकार और जेल प्रशासन ने अफवाहों को खारिज किया, लेकिन मुल्क का भरोसा क्यों डगमगाया? बहन अलीमा और उज्मा खान की गंभीर आशंका, आखिर क्यों लागू है जेल में पूरी तरह से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट? मशाल यूसुफ जई पर उठते गंभीर सवाल, क्या पीटीआई के अंदर चल रही है अपनों के ही खिलाफ गहरी साजिश? आईएसआई से मिली भगत या अपनों की गद्दारी? इमरान की सेहत पर चल रहे बयानों के खेल ने बहाया शक। सुप्रीम कोर्ट के बाहर उग्र प्रदर्शन और अब सरकार को पीटीआई का सीधा अल्टीमेटम। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। अगर कल रात 10 बजे तक नहीं हुई मुलाकात तो डी चौक होगा जाम। क्या कल रात 10 बजे खुलेगा अद्याला जेल का सबसे बड़ा राज? क्या पाकिस्तान में भड़केगी बगावत की नई आग?
1: आप देख रहे हैं रणभूमि, मैं हूं गौरव सावंत। पाकिस्तान की राजनीति में इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री और वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इमरान खान को लेकर एक बहुत बड़ा सस्पेंस हाहाकार इस समय मचा हुआ है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं इमरान खान किस हालत में है, जेल में किस तरह वो जी रहे हैं, जीवित भी हैं या नहीं। दरअसल अमेरिका में बैठे एक पाकिस्तानी पत्रकार ने दावा किया है कि अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में पाकिस्तान के जीएचक्यू से कई तरह की अफवाहें उठ रही हैं। अफवाहें ये कि अदियाला जेल में इमरान खान जीवित नहीं रहे, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि इस पत्रकार ने इस खबर के लिए जीएचक्यू के 3 जनरलों का हवाला दिया। कहा यह अभी कंफर्म नहीं है, जीएचक्यू में यानी पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में इस तरह की बातें चल रही हैं कि क्या इमरान खान जीवित हैं या अब इमरान खान जेल में मारे जा चुके हैं। हालांकि हम आपको यह बता दें कि इस तरह की अफवाहें पिछले साल भी आई थी। ये जो सनसनीखेज दावे इस समय सामने आ रहे हैं, जेल प्रशासन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनका प्रशासन इसे पूरी तरह से खारिज कर रहा है, कह रहा है कि ये केवल अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? हम आपको ये भी बताते हैं। इमरान खान की बहनें, इमरान खान का परिवार और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिल रही है। जेल में लागू एक तरह से पूरी तरह का कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है और यह पाकिस्तान में अडियाला जेल है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीचों बीच। अब आशंकाएं, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका यह कहना है कि अगर अगले 24 घंटों में उन्हें इमरान खान से नहीं मिलने दिया गया तो देश भर में यानी पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा मोर्चा निकाला जाएगा। अल्टीमेटम दे दिया है, कल रात यानी गुरुवार की रात 10 बजे तक अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई तो पूरे पाकिस्तान को ठप कर दिया जाएगा। केवल इस्लामाबाद या रावलपिंडी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान और सिंध से लेकर पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आंदोलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छेड़ देगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही, क्या पाकिस्तान की अडियाला जेल और ये हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल है अडियाला में, उसमें कोई अनहोनी हो गई है या एक बार फिर एक साल बाद ये एक और अफवाह है? इन अफवाहों के बाद इमरान खान की बहनें उनसे मिलने के लिए रावलपिंडी के अडियाला जेल पहुंच तो गई, जहां पर इमरान खान 26 सितंबर 2023 से बंद है, लेकिन बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है और इससे संदेह और ज्यादा बढ़ गया है। कल ही इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकीलों ने इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया और फिर यह अल्टीमेटम दिया गया कि अगर गुरुवार यानी कल रात 10 बजे तक इमरान खान की बहनों को, इमरान खान के डॉक्टर को और खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि अगर पार्टी के अधिकारियों को उनसे नहीं मिलने दिया गया तो शुक्रवार को इस्लामाबाद का डी चौक जाम कर दिया जाएगा। हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले जब पाकिस्तान

0: तरीके इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने डी चौक को जाम करने की कोशिश की गई थी तो आसिम मुनीर की सेना ने उन पर गोलियां चलवा दी थी और बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पाकिस्तान की फौज के डर से अमरीका में बैठे पाकिस्तान का ये जो पत्रकार है वजाहत खान, उसने इमरान खान को लेकर GHQ के हवाले से क्या दावा किया, सुनिए।
1: ये हमारी रिपोर्टिंग है, GHQ से ये रिपोर्टिंग हमने की है। सीनियर अफसरान जो GHQ में हैं, कम से कम 3 अफसरान का ये पर्सपेक्टिव है, जाती पर्सपेक्टिव है। 3 ऑफिसर्स ने अलग अलग तरीकों से ये इजहार किया है दैट इमरान खान इज नो लॉन्गर विद अस एंड दैट इज द रीजन व्हाई द पाकिस्तान आर्मी and the army chief are keeping him from the rest of the country.
0: तो आपने पाकिस्तान के इस पत्रकार की बात सुनी, हालांकि हम आपको यह भी बता दें कि यह पत्रकार इमरान खान के बेहद करीबी माना जाता है और जैसे ही आसिम मुनीर की सत्ता आई पाकिस्तान में तो कई पत्रकारों को देश छोड़ना पड़ा, उनमें से वजाहत खान भी है। आपने वजाहत खान की बात सुनी, वजाहत खान ने यह दावा रावलपिंडी के जेल हेडक्वार्टर्स में बैठे 3 अधिकारियों के हवाले से किया। रावलपिंडी में ही वो अदियाला जेल भी है जहां इमरान खान को 2023 से अलग अलग जगह कैद करके रखा गया है। कल जैसे ये खबर फैली वैसे ही इमरान खान की बहनें, आप इन तस्वीरों में देखिए, वो अडियाला जेल की तरफ बढ़ी और बार बार ये नारे लगाए जा रहे थे कि इमरान खान को रिहा करो, वो इमरान खान से मिलना चाहती थी। लेकिन आप ये सोचिए कि बहनें पूरे दिन इंतजार करती रही लेकिन शाम तक उन्हें मिलने नहीं दिया गया। सुनिए कैसे खुद अलीमा खान कह रही है कि उन्होंने भी वजाहत खान के बयान के बारे में सुना और इमरान खान की लगातार बिगड़ती सेहत को लेकर वो बेहद चिंतित है।
2: हमारा SOP है कि सिवाय फैमिली के और पर्सनल डॉक्टर की उनकी हेल्थ पे इमरान खान का ये SOP है कि कोई और बात नहीं करेगा। हर एक ने मुंह खोल लिया, हर एक ने तमाशा बना दिया उनका और अब जवाब दें सारे जिन्होंने ये शुरू किया है, ये जो एजेंसियों की बातें शुरू की हैं जिन्होंने, अब जवाब दें। जबकि वजाहत साहब ने बचा दिया है कि जी वो उनको तो जेल में खत्म कर दिया, ये कहा है ना कुछ इस किस्म की बात की, मुझे नहीं पता, मैंने सुना नहीं है, मुझे यहाँ के कई लोगों ने बताया।
0: अच्छा, कल पूरे दिन इमरान खान की बहनें अदियाला जेल के बाहर इंतजार करती रहीं। इससे पहले भी उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा था और आखिरी मुलाकात 9 महीने पहले हुई थी। पाकिस्तान में जो शाबाज शरीफ की सरकार है या यूं कहें जो आसिम मुनीर की सरकार है, वो कह रही है कि इमरान खान से मिलने के बाद उनकी बहनें बाहर आकर राजनीतिक बयान देती हैं, इससे पाकिस्तान में जो माहौल है वो बिगड़ने लगता है और इसीलिए उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। कल इमरान खान की बहनों ने बकायदा ये वादा किया और लिखित में वादा किया कि वो कोई बयान नहीं देंगी, कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगी, बस वो अपने भाई को देखना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मिलने नहीं दिया गया। सुनिए अलीमा खान अब इस बात को लेकर क्या कह रही हैं।
2: उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई सियासी बात बाहर ना आके करें तो हम उनको कह रहे हैं कि बहनों की मुलाकात करवा दें। हमने पूरी तरीके से इत्तेफाक किया है बहनों ने कि कोई सियासी बात बिल्कुल नहीं आगे करेंगे बाहर आके।
0: तो इमरान खान की बहनों का कहना है कि उनका जो शक है अब वो बेबुनियाद नहीं है। उज्मा खान ने कल भी कहा कि आखिरी बार जब उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई थी तब उन्होंने दो टूक कहा था कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर वो उन्हें मरवा देगा, यानी ये शक नहीं है कि वो मरवा सकता है। लेकिन इमरान खान को भी इस बात का न केवल डर था बल्कि उनको इस बात का विश्वास था कि आसिम मुनीर उन्हें जेल में खत्म करवा देगा, मरवा देगा। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत में बैठा कोई नहीं कह रहा है, ये इमरान खान की बहन उज्मा खान का बयान है, सुनिए।
3: उनकी जिंदगी खतरे में है, अलीमा जिंदगी से खतरे की जो आखिरी बात में मुलाकात थी, पहली चीज उन्होंने कहा था कि ये नहीं कहा कि मैं मुझे शक है मार देंगे, मुझे पहली कहा कि आसिम मुनीर मुझे मार देगा। देखिए ये तो कोई कोई डाउट ही नहीं है कि

0: तबीयतें खराब है।
1: इसीलिए पाकिस्तान में समय माहौल और खासतौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आसिम मुनीर इस कदर नफरत करता है इमरान खान से, और पाकिस्तान में यह कहा भी जाता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या इमरान खान जेल से बाहर जीवित निकलेंगे या फिर आसिम मुनीर की सत्ता चली जाएगी। ये बेहद सनसनीखेज दावों के बीच इमरान खान की पार्टी के भीतर भी गद्दारी को लेकर एक बड़ा सवाल अब उठने लगा है, यानी इमरान खान के साथ गद्दारी। यह बवाल भी इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर झूठी बातें फैलाने को लेकर मचा है। बड़ी खबर इस समय यह आ रही है कि इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हीं की पार्टी की सांसद मशाल यूसुफजई आईएसआई के इशारे पर इस तरह की अफवाहें फैला रही हैं कि जेल में इमरान खान की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। मशाल यूसुफजई दरअसल पेशे से वकील भी हैं, इमरान खान की पार्टी की सेनेटर भी हैं, और अब उन्हें पार्टी से निकलवाने की बात हो रही है। दूसरी तरफ मशाल यूसुफजई ने भी चुनौती दी है कि अगर पार्टी उन्हें निकालना चाहती है तो निकाल दे, वो पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर और अब पत्रकार आदिल राजा, जब उन्होंने मशाल यूसुफजई और आईएसआई के साथ उनके कनेक्शन को लेकर एक बड़ा दावा किया तो उन्होंने कहा कि मशाल यूसुफजई ने यह कहा कि अगर इमरान खान मान ले कि आसिम मुनीर को राष्ट्रपति बना दिया जाए और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी संसद में वोट दे उनके पक्ष में तो इमरान खान को जेल से निकाला जा सकता है। इस पर पार्टी में किस तरह का बवाल मचा, क्या तूफान मचा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान आर्मी के पूर्व मेजर जो इस समय वो भी अब पाकिस्तान में नहीं रह पा रहे, इस समय लंदन में रह रहे हैं, आदिल राजा का क्या कहना है हम आपको वो भी सुनवाते हैं।
2: सलमान अकरम राजा साहब से किसी ने मिशाल यूसुफजई या मिशालो बी जमालो का जिक्र किया। मिशालो बी जमालो जो है वो बड़े अरसे से ऑफर कर रही है, उसी ने बताया जो आईएसआई ने खबर चलाई, जो पीटीआई की लीडरशिप को बताई कि इमरान खान की तबीयत बहुत खराब है, और साथ ही उसी ने कोर कमेटी को आके कहा, मुसलसल कहा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हमायत करें, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत करें और उसके नतीजे के अंदर इमरान खान छूट जाएंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लें इमरान खान को तो बाद में ये छोड़ेंगे, लेकिन पहले आसिम मुनीर को आइनी तौर के ऊपर अपना बाप बना के बैठा दें और उसके बाद ये इमरान खान को छोड़ देंगे। उसके बारे में सलमान अकरम राजा से जो बातचीत की गई, पहले ये एक वीडियो मैं फेयर कमेंट के लिए चाहता हूं कि आप सुन लें, फिर मैं इसके ऊपर बात करूंगा। कुछ सेकंड का वीडियो है।
3: साहब से जो मुलाकात हुई थी, इस वक्त एक खबरें गिरदिश की थी कि आपको खान साहब ने कहा था कि मिशाल यूसुफजई साहब को फारिग कर दिया जाए, और ये जब आपके पास बात
4: बिल्कुल ये आई थी, देखें सुन लीजिए फारिग करने का क्या मतलब है। देखिए सेनेट से तो मैं फारिग नहीं कर सकता ना, सेनेट में वो मौजूद है, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं उनको सेनेट से फारिग करूं, पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है।
1: तो जैसे ही सलमान अकरम राजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नेता है उन्होंने ये बयान दिया, वैसे ही पत्रकारों ने मशाल यूसुफजई पर ही सवालों की बौछार कर दी। मशाल यूसुफजई कल इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओर से दिए जा रहे धरने का भाग थी। लेकिन सुनिए इन सब सवालों से घिरी मशाल यूसुफजई ने किस तरह की सफाई दी और अपने जवाब में क्या कहा, और इससे आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अंदर ही एक भीतर घात की खबर आ रही है।
5: अच्छा मेन ये चीज है कि सलमान सफदर के थ्रू ये पैगाम भेजाया दिया गया था कि आपको पार्टी से फारिग किया जाए, इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन की खबर आई, उस खबर की तस्दीक की है राजा साहब ने। अब जब आपको इमरान खान साहब ने फारिग कर दिया, मेरे ख्याल से आपको ग्रेस दिखानी चाहिए या आपको शेर अफजल मरवत की तरह ही चिमट के रखना चाहिए। प्लीज सवाल मेरा कम्प्लीट नहीं हुआ था ना।
6: अच्छा आप खो गया सवाल, करें ना राजा साहब नोटिफिकेशन।
7: आप कह रही है वो नहीं कर सकते, वो कह रही है आपके पीछे बड़े हाथ हैं, वो कह रही है आपके पीछे बड़े
3: बहुत बड़े हाथ हैं, उन पर हाथ नहीं डाल सकते
7: आपके पीछे पूरा।
3: आप तो ये धमकी दे रही है ना कि जी करें करके दिखाएं।
6: मेरे पीछे इतने बड़े हाथ नहीं है सर कि मैं खान साहब के अकाउंट से अपने लिए ट्वीट कराऊं।
7: अच्छा वो कह रहे हैं आपके।
1: चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यह खबर सूर्योदय के प्रांत अरुणाचल प्रदेश से, और ऐसी खबर जिसे लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हलचल है। सोशल मीडिया में अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की कथित धीमी घुसपैठ की अफवाहों को लेकर सरकार ने एक बड़ी बैठक की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच एक

महत्वपूर्ण बैठक हुई है। यह बैठक संसद भवन में रक्षा मंत्री के कार्यालय में हुई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में चीन की घुसपैठ को सिरे से खारिज कर दिया गया है। कहा यह गया है, चीन की ओर से अरुणाचल प्रदेश में कोई धीमी घुसपैठ नहीं हो रही है। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस सीमा पर पूरी तरह से

0: की ओर से अरुणाचल प्रदेश में कोई धीमी घुसपैठ नहीं हो रही है। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस सीमा पर पूरी तरह से तैनात है। ये सीमा पर प्रभुत्व बनाए रखने, चीनी गतिविधियों पर नजर रखने और उन्हें रोकने के लिए पूरी तरह से सतर्क है। तो अपर सुबानसरी क्षेत्र में इस तरह की अफवाहें उठी थी कि चीन की सेना की तरफ से घुसपैठ हुई है। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि जब भी चीन से कोई बड़ा नेता भारत आता है या भारत से कोई बड़ा नेता चीन जाता है, तब चीन की जो सेना है वो बॉर्डर एरियाज में घुसपैठ की कोशिश करती है ताकि बॉर्डर पर तनाव बना रहे। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर अमन पर एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक नजर लगी हुई है। इसी से जुड़ी जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है, कश्मीरी पंडितों को मिली आतंकी धमकी के बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है, खासतौर पर 15 अगस्त से पहले। दरअसल लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल नाम के एक आतंकवादी संगठन की ओर से एक धमकी भरी चिट्ठी जारी की गई। इस चिट्ठी में कश्मीरी पंडित समुदाय के 6 सरकारी कर्मचारियों को बाकायदा नाम और उनके निजी मोबाइल नंबर सार्वजनिक किए जाने के बाद एक धमकी दी गई। आतंकवादियों ने दावा किया कि उनके पास इन सभी अधिकारियों के घर के पते, उनके दफ्तर के लोकेशन और उनके परिवार के सदस्यों की पूरी जानकारी उपलब्ध है। चिट्ठी में खासतौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को निशाना बनाया गया, जो आतंकवादियों की संपत्ति को जब्त करने या कुर्क करने की कार्रवाई में शामिल है। तो 7 अगस्त 2026 की तारीख वाले इस पत्र में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी LG मनोज सिन्हा, पुलिस महानिदेशक यानी DGP और दिल्ली में बैठे शीर्ष अधिकारियों को भी संबोधित किया गया। आतंकवादियों की तरफ से गीदड़ भभकी दी जा रही है कि सरकार घाटी में आतंकवादियों के समर्थकों और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति को सील करने या उन्हें परेशान करने की कार्रवाई को तुरंत रोक दे ताकि जवाबी कार्रवाई न हो।
1: 100% सर पाकिस्तान का है, क्योंकि जिस हिसाब से चेंजेस हो रही है, हर मंदिर नए से कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कश्मीरी पंडित ज्यादा तादाद में वैली में आ रहे हैं, अपनी पुरानी जमीनों पे जा रहे हैं, नए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर लैंड देख रहे हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर लैंड देख रहे हैं, वो पाकिस्तान हाँ वापस जो आ रहे हैं, लेकिन वो चीज पाकिस्तान को पसंद नहीं है। वो चाहता है कि किस तरीके से हम इनको डराएं धमकाएं जिससे ये प्रोसेस फिर से पीछे चला जाए।
0: और आप विडंबना देखिए कि जम्मू और कश्मीर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को गैरकानूनी तरीके से जम्मू के क्षेत्रों में और खासतौर पर सेना के ठिकानों के आसपास बसाया जा रहा था, उस पर कुछ कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर हिंदू कश्मीरी पंडित अपने ही घरों में लौटे तो इस तरह की धमकी आ रही है, ये है एक असलियत। खैर, इस खबर पर रहेगी नजर, फिलहाल एक ब्रेक। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आगे आगे,
5: अरे उधर
4: उधर
5: उधर,
4: करेक्ट करेक्ट,
6: मिल गया।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर. ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक.
3: मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन. वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग, एंड व्हेन आई से वी आई मीन द यंगर जनरेशन ऑफ दिस कंट्री. हु शॉट दोज स्टूडेंट्स? हु गेव द ऑर्डर to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign, because he is culpable. And if he did not, he should resign, because he is incompetent. So the question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 din ke liye, 20 din ke liye gayab ho gaye. Yahan baithe the, gaadi aati thi, jaati thi, 30 gaadiyan unke. Student should know this. 30 cars around Amit Shah. उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब हजार पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए. तो गुब्बारे में से गैस निकल गई. अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है. अमित शाह हैज नो करेज. द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज. ही कैनॉट कम टू द हाउस.

0: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: सब ने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे, किसी ने गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए, पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था। प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं, और देश भर से लोग आए वहाँ। आप नाम लीजिए वो वहाँ पहुंचे हुए थे, और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे। चंदा सारी गायब हो गई है। आया कंट्री, पूरे देश से चंदा आई थी राम मंदिर के लिए। सब ने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे, किसी ने गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए, पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं, और देश भर से लोग आए वहाँ। आप नाम लीजिए वो वहाँ पहुंचे हुए थे, और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे। चंदा सारी गायब हो गई है, ये क्या तरीका है?
3: ब्रिज जाएगा। पहाड़ों पर मॉनसून ने कैसा हाहाकार मचाया है, उसे इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। शोर करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इसकी मार से लोहे का बड़ा पुल बहता चला जाता है। दिल दहला देने वाला ये मंजर उत्तराखंड के जोशीमठ का है, जहां एक दिन पहले तमक नाले के पास आए फ्लैश फ्लड ने जमकर तबाही मचाई। चमोली की नीति घाटी में सोमवार को भारी बारिश के बीच बादल फटने से तमक नाले में ऐसा सैलाब आया कि जो भी चपेट में आया सब बह गया। तस्वीरें देखिए, तबाही किस तरह आई, देखिए किस तरह पानी तेज रफ्तार से आ रहा है। सामने एक छोटा ट्रक और जेसीबी है। पानी को देखकर जेसीबी चालक जेसीबी को पीछे की तरफ लेने की कोशिश करता है, लेकिन सैलाब की रफ्तार को वो मात नहीं दे पाया और जेसीबी पानी की धार में बहने लगा। पानी की मार को लोहे का पुल भी नहीं सह पाया और सैलाब में बह गया। उत्तराखंड के कई जिलों में मॉनसून तेवर दिखा रहा है। नैनीताल से चमोली तक भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो 13 अगस्त तक राहत के आसार नहीं है। आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। संसद में गतिरोध पर गृह मंत्री का जवाब, विपक्ष चाहे तो मैं चर्चा के लिए तैयार, ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। गृह मंत्री के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा हमें सिर्फ यह जानना है कि किसने दिया छात्रों पर पुलिस एक्शन का आदेश, अगर गृह मंत्रालय से आया ऑर्डर तो इस्तीफा दे अमित शाह। हंगामे के बीच एफसीआरए बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में पास, राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा के बीच तीखी बहस, नड्डा बोले सदन को गुमराह कर रहा है विपक्ष। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों पर दबाव बनाने की कोशिश, रात में काटी गई बिजली, अब हटाया गया जनरेटर, गर्मी और उमस के बीच जारी है धरना। पूछताछ में मास्टरमाइंड ने खोली जेपीएससी नेटवर्क की पोल। पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा, तीनों आरोपों में दोषी, जांच समिति ने आरोपों को सही और प्रमाणित पाया। सरकारी आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के पीछे किसी साजिश के कोई संकेत नहीं।

0: आप देख रहे हैं रणभूमि, मैं हूं गौरव सावंत। एशिया कप में भारत की ट्रॉफी चुराने की ओछी हरकत से दुनिया भर में अपनी थू करा चुके पाकिस्तान के जो आंतरिक सुरक्षा के मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं मोहसिन नकवी, उन्हें तेहरान से भी एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल ट्रॉफी चोर का मिशन तेहरान पूरी तरह से फेल हो गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के एक हुक्म पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपने चहेते रिश्तेदार को तेहरान तो दौड़ा दिया, लेकिन बदले में पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर फजीहत ही हासिल हुई है। पाकिस्तान शायद यह भूल गया कि ईरान उसके जैसा मुल्क नहीं है जो डॉलर के टुकड़े देखते हैं और उसी डॉलर के टुकड़ों पर पलता है और दुम हिलाता है, या चीन का गुलाम बन के रहता है, जिस ईरान ने अपनी सख्त शर्तों और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को और IRGC के तेवर से खुद अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हेकड़ी निकाल दी, वो पाकिस्तान की गीदड़ भपकी या भाड़े के बिचौलिए को क्या उससे डरेगा या उसकी बातें समझेगा? अब हम आपको ये विस्तार से बताते हैं दरअसल हुआ क्या। वॉशिंगटन और बीजिंग अपने दोनों आकाओं का पाकिस्तान हुक्म बजाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब मोहसिन नकवी जब तेहरान पहुंचे अमेरिका का प्रस्ताव लेकर अमेरिका के आदेश पर, तो ईरान ने उनकी शर्तें खारिज कर दी और उल्टे पांव लौटा दिया और एक अपना 10 सूत्री एजेंडा उनकी मेज पर पटक दिया। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की इस नई कूटनीतिक बेइज्जती पर आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
1: एशिया कप की ट्रॉफी चुराने की हरकत के बाद दुनिया भर में फजीहत करा चुके पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, जिन्हें पूरी दुनिया ट्रॉफी चोर के नाम से जानती है। वो अचानक तेहरान पहुंच चुके हैं। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से लेकर राजनीति तक अपना मजाक बनवाने वाले नकवी इस बार महाशक्तियों के बीच बिचौलिया बनने का नाटक रच रहे हैं, लेकिन तेहरान में पाकिस्तान का ये कूटनीतिक मिशन बुरी तरह फंस गया है। दरअसल मध्य पूर्व में जारी इस भीषण जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन किसी भी तरह एक डील करके युद्ध से बाहर निकलना चाहता है। इसी छटपटाहट में वॉशिंगटन से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को सीधा फोन मिलाया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने जनरल मुनीर से बात की, जिसके बाद मुनीर ने अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद मोहरे यानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी को 15 सूत्रीय अमेरिकी शांति प्रस्ताव थमाकर तुरंत तेहरान रवाना कर दिया। इस पूरे खेल में पाकिस्तान किसी स्वतंत्र देश की तरह नहीं, बल्कि अमेरिका और चीन अपने दोनों आकाओं के हुक्म पर दौड़ने वाले एक संदेश वाहक की तरह काम कर रहा है। अमेरिका का दबाव है कि तेल की आपूर्ति बहाल हो, तो वहीं चीन का सख्त निर्देश है कि हुर्मुज जलडब्ल्यू मध्य को हर हाल में खुलवाया जाए। अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव में हुर्मुज को तुरंत खुलवाने और बदले में ईरान के फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के फंड्स को रिलीज कराने का लॉलीपॉप दिया गया था। तेहरान पहुंचते ही मोहसिन नकवी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान और विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से बंद कमरों में उच्च स्तरीय मुलाकातें की, लेकिन तेहरान में बातचीत का पासा पूरी तरह पलट गया। हाल ही में कमान संभालने वाली IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नई और बेहद सख्त लीडरशिप के सामने पाकिस्तान की एक न चली। IRGC के इस आक्रामक रुख की वजह से तेहरान ने अमेरिकी प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया। ईरान ने मोहसिन नकवी के सामने अपना 10 सूत्रीय जवाबी प्रस्ताव पटक दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि हुर्मुज जलडब्ल्यू मध्य को स्थायी रूप से तभी खोला जाएगा जब अमेरिका और इजराइल अपने हमले पूरी तरह बंद करेगा। ईरान केवल 14 दिनों के लिए जहाजों को गुजरने का रास्ता देने पर राजी हुआ है, लेकिन वो भी किसी अमेरिकी शर्त पर नहीं, बल्कि पूरी तरह ईरानी सेना की सख्त पहरेदारी में। IRGC की नई लीडरशिप के इस अड़ियल और सख्त रुख ने वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक के होश उड़ा दिए हैं। जो मोहसिन नकवी खुद को मास्टर डील मेकर समझकर तेहरान गए थे, वो ईरानी शर्तों के आगे पूरी तरह बेबस नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि दो दो आकाओं का हुक्म बजाने वाला पाकिस्तान इस गतिरोध को तोड़ पाता है या फिर ट्रॉफी चोर के विवाद की तरह उसकी ये कूटनीतिक मध्यस्थता भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नए मजाक में तब्दील होकर रह जाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: अच्छा, इस ईरान युद्ध में अमेरिका की हालत कितनी पतली है, ये खुद अमेरिका के एक सेनेटर क्रिस मर्फी ने बताया। क्रिस मर्फी ने दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध हार चुके हैं। क्रिस मर्फी विपक्ष की डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं, सांसद हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ ये जंग हार चुके हैं। अमेरिका दिन ब दिन और कमजोर होता जा रहा है और ईरान हर दिन और ताकतवर हो रहा है। जिस जंग की शुरुआत ईरान के परमाणु मुद्दे पर हुई थी वो अब हॉर्मूज को खुलवाने पर आके अटक गई है। और ये याद रखिए 28 फरवरी को जब ये जंग शुरू हुई तो हॉर्मूज खुला हुआ था। हॉर्मूज को खुलवाने के लिए जो डील हो रही है उसके मुताबिक ईरान को हर साल $100 बिलियन मिलेंगे, जो ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था का एक तिहाई है। ये पैसा वो हॉर्मूज से टोल वसूल कर कमा सकता है, जबकि युद्ध से पहले हॉर्मूज दुनिया के सभी जहाजों के लिए टोल फ्री था। सेनेटर क्रिस मर्फी ने यह भी कहा कि इस समय मेज पर जो डील है वो अमेरिका के लिए भयंकर घाटे की डील है, लेकिन ये डील अब करनी ही पड़ेगी क्योंकि हॉर्मूज अगर नहीं खुला तो अमेरिका और कमजोर हो जाएगा और अमेरिका के लोगों पर महंगाई की मार लगातार बढ़ती रहेगी। सुनिए डेमोक्रेट पार्टी के जो सेनेटर हैं क्रिस मर्फी, उन्होंने विस्तार से क्या कहा।
2: So Donald Trump has lost this war. America is weaker. Iran is stronger. The price to reopen the strait increases by the day. The supposed deal that's on the table right now would pay Iran $100 billion a year in order to reopen the strait. That is one third of Iran's entire economy. What a victory for Iran that at the end of this war, they get paid to reopen the strait. They get paid to rebuild their military. They get paid to rebuild their support for proxies in the region. The answer to your question is yes, I will support a deal to end this war and to reopen the strait. I am prepared to support a bad deal to end this war and reopen the strait, because the only deal that is available at this point of in time is a terrible bad deal. But the war needs to end, because every day that the war continues, America gets weaker, Iran gets stronger, and people here in the United States get screwed as prices go up and up and up.
3: Let me ask you.
0: अच्छा, ईरान से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कितना डर लगता है, इस बात का खुलासा कल हो ही चुका है, जिससे साबित हो गया कि अंकारा से इंग्लैंड की उड़ान के दौरान उन्होंने अचानक अपना विमान बदल लिया। और इस सीक्रेट ऑपरेशन पर डोनाल्ड ट्रंप का अब तक का सबसे बड़ा बयान सामने आया है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर कबूला है कि उस वक्त उनकी जान को गंभीर खतरा था और इसी वजह से यह अंतिम समय में निर्णय लिया गया, असाधारण कदम उठाने की नौबत आई। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि उन्हें सीक्रेट सर्विस और अमेरिका की सेना की तरफ से सुरक्षा खतरे की जानकारी दी गई। उन्होंने साफ किया कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर खुद कोई फैसला नहीं लेते, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में, सीक्रेट सर्विस और सेना चाहती थी कि मैं एक अलग विमान में जाऊं, अलग उड़ान भरूं, और मैंने वैसा ही किया। बिना किसी सवाल के जैसा जैसा वो कहते रहे वैसा मैं करता हूं।
4: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
5: Why did they want me to do that?
4: I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
0: इस तरह की बात 1999 में सामने आई थी, जब उस समय के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को पाकिस्तान जैसे एक आतंकी देश जाना था, तब वो एक अलग विमान में गए थे। अब ये सोचिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अंकारा से जब उड़ान भरते हैं तो उनको लगता है कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें एक अलग विमान में छिप कर जाना पड़ता है और यूके में उतरने से पहले। लेकिन अब एक और चौंका देने वाली खबर, रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध में तानाशाही का एक नया और बेहद खौफनाक चेहरा सामने आया है। सैनिक हथियार और घातक मिसाइल देने के बाद अब उत्तर कोरिया की, जिस तरह से उन्होंने रूस को अपनी शक्ति दी है, यानी किम जोंग उन रूस के लिए अपनी महिला ब्रिगेड मैदान में उतार रहे हैं। खेतों में, फैक्ट्रियों में, किचन तक में, हर जगह काम करने के लिए अब रूस में ये नई सप्लाई लाइन रूस की ताकत को बढ़ा रही है। महिला शक्ति नॉर्थ कोरिया की रूस में, देखते हैं इस खतरनाक गठजोड़ और महिलाओं की रहस्यमयी तैनाती पर यह स्पेशल रिपोर्ट।

0: रूस मस्त है और यूक्रेन पस्त है। 4.5 साल के युद्ध के बाद एक तरफ जहां यूक्रेन अपने शहरों में तबाही का मंजर देख रहा है, वहीं मिसाइलों की कमी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका और यूरोप से लेकर खाड़ी देशों के अपने हर उस दोस्त से मदद की गुहार लगा रहे हैं जहां से उन्हें मिसाइलों की मदद मिल सकती है। उधर रूस अगर इतने लंबे युद्ध के बाद भी मस्ती के मूड में है तो नॉर्थ कोरिया की दोस्ती की वजह से। किंग जोंग उन हर मोर्चे पर रूस की मदद कर रहे हैं, फिर वो चाहे सैन्य मोर्चा हो या फिर रोजमर्रा की कारोबार की जरूरतें। अब खेतों से लेकर किचन और फैक्ट्रियों तक में काम करने के लिए लेबर की कमी हुई तो नॉर्थ कोरिया ने पूरी की पूरी ब्रिगेड ही रूस के लिए रवाना कर दी। ये ताजा तस्वीरें देखिए, महिलाओं को फ्लाइट से रूस भेजा जा रहा है, फिर वहां पहुंचने के बाद उन्हें अलग अलग कामों में लगा दिया जाता है। मानवाधिकार से जुड़े संगठन लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें बाहरी लोगों से दूर रखा जाता है और उन पर नॉर्थ कोरियाई अधिकारी पूरी निगरानी रखते हैं। अब इस मिसाइल को देखिए, यूक्रेन का आरोप है कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें लगातार उसकी जमीन पर मौत का खेल खेल रही हैं। नॉर्थ कोरिया रूस को सैनिक और हथियार सप्लाई कर रहा है और बदले में उसे मिलता है तेल, करेंसी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी। यूक्रेन की खुफिया जानकारी के मुताबिक 2024 में नॉर्थ कोरिया ने करीब 15,000 सैनिक रूस के कुर्स्क में उतारे थे ताकि आगे बढ़ती यूक्रेनी सेनाओं को रोका जा सके। इनमें से हजारों सैनिक रिजर्व बटालियन के तौर पर वहीं रुक गए थे। पिछले साल भी नॉर्थ कोरिया ने 148 KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइलें रूस को दी थी। पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन अकेले दम पर रूस से लड़ नहीं सकता। ऊपर से नॉर्थ कोरिया की रूस से दोस्ती ने उसकी नाक में दम कर रखा है। अब ज़ेलेंस्की न सिर्फ इस खतरे से आगाह कर रहे हैं बल्कि दक्षिण कोरिया से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। ओडेसा, सुमी, खार्किव और कीव में रूसी मिसाइलें बर्बादी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। कई बेकसूर लोगों की जान जा रही है, लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, इमारतें जल रही हैं, वाहन नष्ट हो रहे हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में ही रूस ने 56 बैलिस्टिक मिसाइलों समेत कुल 61 मिसाइलें दागी हैं। जाहिर है नॉर्थ कोरिया के हथियारों से जल्दी ही तबाही की आग में तब्दील हो सकती है। आज तक फिर
1: और नॉर्थ कोरिया की ये जो महिला ब्रिगेड है जिसको तैनात किया गया है रूस में, इनकी एक और भूमिका है। ये साइबर अटैक्स में भी माहिर हैं और यूक्रेन में एक के बाद एक कई साइबर अटैक्स भी इस समय हो रहे हैं। इन खबरों पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: ये तूफानी सैलाब ऐसे आया कि सब कुछ तबाह हो गया। नीति घाटी में सोमवार को इसी फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई थी। चार पहिया गाड़ी और बीआरओ का करीब 40 मीटर लंबा पुल भी तेज बहाव के सामने टिक नहीं पाया। देखते ही देखते ये धोली नदी में समा गया। सैलाब और मलबे की चपेट में आने से सड़क, पुल और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। उस तबाही के बीच दो दिन बाद भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें मंगलवार की हैं। मंगलवार को प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया। दूसरी ओर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए ITBP ने कमर कस ली है। कल जवान रस्सियों के सहारे लोगों को सुरक्षित निकालते दिखे। डॉग स्क्वाड टीम भी एक लापता बीआरओ जवान की तलाश में जुटा रहा। इस मिशन में सेना, NDRF, SDRF, ITBP और प्रशासन की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इस आपदा की वजह से नीति घाटी के करीब 13 से 14 गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय जोशीमठ से कट गया है। सड़क पर आवाजाही अब भी बाधित है। प्रशासन और बीआरओ इस मुहिम में जुटा हुआ है। अभी प्राथमिकता लापता जवान की तलाश और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। साथ ही प्रभावित गांवों से संपर्क बहाल करना भी चुनौती है। अब आज प्रशासन इस इलाके का एरियल सर्वे भी करेगा। कमल नयन सिलोरी चमोली आज तक। कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 पर बड़ा हादसा हुआ। अचानक पहाड़ से भारी भरकम पत्थर गिरने लगे। इस हादसे की चपेट में एक कार आ गई। किरण बाजार और बराड़ के बीच ये घटना घटी। पत्थरों की चपेट में आकर कार के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी पत्थरों के नीचे दब गई। हादसे के वक्त कार में दो लोग सवार थे। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। कांगड़ा में भी आफत की तस्वीर दिखी। वहां लगातार बारिश के बीच रानीताल बाथू पुल के पास जबरदस्त भूस्खलन की घटना हुई। इस घटना में 4-लेन हाईवे का एक हिस्सा और कांगड़ा शहर के बाहरी इलाके में कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे बाधित हो गया। कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। मौके पर दोनों तरफ गाड़ियां फंसी रही। बाद में ट्रैफिक चालू करने के लिए भारी मशीनों से मलबा हटाया गया, तब जाकर हालात संभले। हिमाचल के सोलन में भी तबाही की तस्वीर दिखी। शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर सोलन में एक चलती कार पर बड़ी चट्टान गिर गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को IGMC शिमला रेफर किया गया है। कुल्लू और हिमाचल के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इसका असर वहां की ब्यास और पार्वती नदियों में दिख रहा है। नदी के जलस्तर में उफान है और किनारों पर खतरा बढ़ा हुआ है। और अब एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ की, जहां अचानक आई बाढ़ में 7 जिंदगियां फंस गईं। ये तस्वीरें कठुआ के माहीचक इलाके की। वहां उन नदी में उफान बढ़ा तो नदी के बीच एक टापू पर लोग पानी से घिर गए। उन सभी को बचाने के लिए पुलिस और SDRF ने तेज बचाव अभियान चलाया। इस अभियान के बाद कठुआ में अचानक आई बाढ़ के दौरान 7 लोगों की जान बच पाई। सोलन से राजेश शर्मा, कांगड़ा से अशोक रैना और कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: सो सॉरी।

0: संत कबीर नगर पहुंचे योगी ने कल कहा कि अब मूर्ति, दुर्गा पूजा, पंडाल सुरक्षित है, कोई भय नहीं। उन्होंने पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
1: बच्चा लेता एडमिशन कहां लेता?
0: कहा कि समाजवादी पार्टी को 4 बार सरकार बनाने का अवसर मिला था, लेकिन वो इंसेफ्लाइटिस को खत्म करने में नाकाम रहे। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो जाएगा। लगे हाथ राजभर ने अब्बू आजमी को चुनौती दे डाली कि अगर हिम्मत है तो अखिलेश से मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करवा कर दिखाएं। मंत्री का दावा है कि अब्बू आजमी ने ऐसा किया तो उन्हें ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जमाना जैन जी का है तो हर दल उन्हें लुभाने में जुटे। अब यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी ऐसी ही कवायद करती दिखी है। उन्होंने कहा है कि देश का जैन जी रोजगार, भर्ती और अन्य समस्याओं को लेकर परेशान है। एक दिन पहले मायावती ने मीडिया को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने छात्रों और जैन जी से कहा कि वे राजनीतिक षड्यंत्र से दूर रहे। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह जारी है। अब पार्टी के 15 विधायकों ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है और उनसे मिलने का समय मांगा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधायक राहुल से मिलकर 2027 के चुनाव पर और पार्टी में जारी खटपट पर भी बात कर सकते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने जॉम्बी ड्रग से जुड़ा ये वीडियो पोस्ट किया तो पंजाब में सियासत में घमासान शुरू हो गया है। आप उनके खिलाफ हमलावर हैं। पार्टी का कहना है कि बीजेपी एमपी पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उनसे माफी की मांग की है। हालांकि भज्जी ने कह दिया है कि मुझे ट्रोल करने की बजाय सरकार इस गंभीर समस्या को कंट्रोल करने का उपाय करे।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। यहां विपक्ष एक सुर में मोदी सरकार के खिलाफ हमला, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी पर जिन्ना वाला वार कर रही है।
1: उनको जो है माफी भी मांगनी चाहिए, सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए और उनको ये दिखाना चाहिए कि वो छात्र हितों के साथ हैं, अन्यथा ये लगेगा कि वो सोरोस के एजेंडे पर काम करते हैं। जहां जहां मोदी विरोध है, जहां जहां देश का विरोध है, जहां जहां कम्युनल टेंशन है, वहां वहां राहुल गांधी जी नजर आएंगे और उनकी पार्टी नजर आएगी। ये जिन्ना से भी बदतर पार्टी के नेता है।
0: झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच सियासत तेज होती जा रही है। कल विधानसभा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के चोले में बीजेपी के घुसपैठ का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया।
2: ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे।
3: नहीं देना चाहते, वही तो कह रहे हैं ना, कि इसलिए उनको भय है कि भाई जांच की आंच वहां तक पहुंच जाएगी। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्यों डर रहा है सरकार? अगर सरकार को लग रहा है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है,
2: जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे।
3: नहीं देना चाहते, वही तो कह रहे हैं ना, कि इसलिए उनको भय है कि भाई जांच
0: में। पुलिस के लाठीचार्ज के बाद घायल छात्रों ने अपना दर्द साझा किया।
4: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो,
5: पूरे देश के युवाओं पे लाठी चले,
4: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, लाठीचार्ज कर रही है पुलिस। हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर
2: जहां बारह हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आ सकता।
0: इस बीच झारखंड सरकार आंदोलन को खत्म कराने पर उतर आई। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
6: बीती रात प्रशासन यहां पर आया। छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई, और अब इस उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है, तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोग?
7: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी, अब सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी, अब इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था।
0: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। अब तक सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20-25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30-35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली है। सवाल है कि क्या रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को जंतर मंतर जैसी सफलता मिलेगी और क्या सोरेन सरकार छात्रों की मांगों के आगे सरेंडर करेगी?
8: इस मामले में सीआईडी अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि सीआईडी की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनका यह कहना है कि सीबीआई जांच जरूर हो।

0: सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण आज तक रांची।
1: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। तो आपने देखा कि रांची में जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर तेरा आंदोलन मेरा आंदोलन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे आंदोलन को लेकर विपक्ष को घेरे में लेने की कोशिश कर रही है, तो चाहे जंतर बंतर पर।
0: इस मामले में सीआईडी अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि सीआईडी की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनका यह कहना है कि सीबीआई जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण आज तक रांची।
1: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत है। तो आपने देखा कि रांची में जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर तेरा आंदोलन मेरा आंदोलन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे आंदोलन को लेकर विपक्ष को घेरे में लेने की कोशिश कर रही है, तो चाहे जंतर बंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा हो या रांची में चल रहा छात्रों का आंदोलन, दोनों आंदोलनों का आधार पेपर लीक के खिलाफ आक्रोश है और सरकारी नौकरियों को लेकर। जसपाल स्टेडियम में यह आंदोलन चल रहा है। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हमारे साथ संजय सेठ केंद्रीय मंत्री, वो भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद दंगल में इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन तीन सवाल इस पैनल के सामने मैं पहले रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या रांची आंदोलन की वजह से बीजेपी को विपक्ष पर हमला करने का एक मौका मिल गया है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर बीजेपी विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है। दूसरा सवाल, क्या मेरा आंदोलन तेरा आंदोलन से छात्रों को समाधान मिल पाएगा, क्योंकि आखिरकार इसमें राजनीति भरपूर होगी, लेकिन छात्रों की जो असली समस्या है परीक्षाएं ठीक लेने की, क्या उसका समाधान मिल पाएगा। और तीसरा सवाल, क्या छात्रों की जायज मांगे सियासत की भेंट चढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी भी एनटीए को लेकर जो मांगे जंतर बंतर के आंदोलन के बाद रखी गई थी उस पर चर्चा होना बाकी है और वहां पर रांची के भीतर अभी भी छात्र आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं, हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से सवाल जवाब के साथ शुरुआत करेंगे। संजय जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कुछ सवाल मेरे तरफ से, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिरकार छात्रों की किस मांग को लेकर आपको शिकायत है झारखंड की सरकार से, हेमंत सोरेन की सरकार से, जो पूरी नहीं हो रही है ऐसा आपको लगता है?
2: देखो, पिछले 19 दिन से लगातार हजारों छात्र धरने पे हैं, अनशन पे हैं, प्रोटेस्ट मार्च निकाला। क्या है डिमांड? डिमांड यही है कि हमारा भविष्य आपने बेच दिया, कोई पेपर लीक नहीं, पूरी की पूरी नौकरी बेच दी। और छात्र चाह रहे हैं कि भाई आप हमारा भविष्य आपने बेच दिया, हमारे बूढ़े माँ बाप पसीने से, कमाई से, पेट को पीठ से सटाकर इस आश्रय के साथ ही बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा और मैं चार चार पांच पांच परीक्षा पास की उसके बाद नौकरी नहीं मिली, पैसा 1.5 करोड़ रुपया दो डीएसपी बन जाओ, 80 लाख रुपया दो इंजीनियर बन जाओ, 25 लाख रुपया दो सहायक आचार्य बन जाओ, फॉरेस्ट रेंजर बनना है 40 लाख रुपया दे दो। ये पूरा घोटाला पिछले 2 साल से 3 साल से लगभग 400 करोड़ रुपए का यह घोटाला है और इस घोटाले के लिए छात्र मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच कराओ ना। सीबीआई जांच कराने में क्या आपत्ति है, क्योंकि इसमें लैंड फॉर जॉब स्कैम भी है, ईडी जांच करा दो, उसके बाद जो जैसे सीबीआई जांच कराओ ना। सीबीआई जांच कराने में क्या आपत्ति है, क्योंकि इसमें लैंड फॉर जॉब स्कैम भी है, ईडी जांच करा दो, उसके बाद जो जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाएं ली है वो रद्द कर दो। चौथा, जो 19 हमारे युवा मारे गए उत्पात सिपाही दौड़ में, उनको 1 करोड़ रुपए दो। क्या आपत्ति है? आपत्ति है क्यों में है, पूरे नेट में है पैसा। मुख्य सचिव जेपीएससी के चेयरमैन थे, किसने बनाया? हेमंत सोरेन ने। 3 सदस्य जेपीएससी कौन थे? जेएमएम के कार्यकर्ता थे। पैसा किसने लिया, किसके थ्रू गया? टीडीपीएल कौन था? टीडीपीएल को उत्तर प्रदेश सरकार ने डिबार किया और यहां तक कि जेपीएससी ने 20 मई 2025 को डिबार किया और जेएसएससी ने उसको तुरंत ले लिया 15 दिन बाद रेड कार्पेट बिछाकर। क्या तमाशा है भाई, ये क्या हो रहा है? छात्र तो
1: मतलब आपका ये कहना है संजय सेठ जी कि जो जांच वहां पर चल रही है उससे छात्र संतुष्ट

0: नहीं है और इसीलिए सीबीआई की जांच करनी चाहिए। सवाल मेरा यही है कि सीआईडी की जांच हो चुकी है क्योंकि पांच मांगे मेरे सामने नजर आ रही है कि चौदहवीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द हो, ये मांग रखी गई थी वो मांग पूरी की गई है। टीडीपीएल एजेंसी से हुई परीक्षा रद्द हो वो कैंसिल कर दी गई है, ये मांग पूरी कर दी गई है। परीक्षा घोटाले की 90 दिनों में जांच हो, सीआईडी जांच कर रही है, जेपी और उसके साथ अभी ईआईडी ने भी ईडी ने भी ईसीआईआर दर्ज किया हुआ है। ऐसी कौन सी बात है जो ईडी खंगाल नहीं पाएगी जो आपको लगता है कि सीबीआई निकाल पाएगी?
1: और जहां तक
0: मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए संजय सेठ जी, मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। सीबीआई को लेकर भी सवाल यह उठाया गया था कि 2024 में जो नीट की परीक्षा लीक हुआ था उसमें सीबीआई जांच कर रही थी, उसमें जो मुख्य आरोपी है आपको याद है कि उसके खिलाफ सीबीआई ने जाकर कोर्ट में कह दिया कि हम इसके खिलाफ 2 साल के बाद भी कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए, सीबीआई जांच पर भी सवाल खड़े हुए थे। कुल मिलाकर ऐसी परीक्षाओं में जांच एजेंसी किसी की भी हो अभी तक किसी को भी सजा नहीं मिल पाई है और इसी बात को लेकर तो सवाल उठता है। तो ऐसी क्या बात है जो ईडी नहीं ढूंढ पाएगी लेकिन सीबीआई ढूंढ पाएगी, ऐसा आपको लगता है
2: साहिल भाई? छात्रों का यह डिमांड है, युवाओं की डिमांड है, क्यों सीआईडी की जांच नहीं? क्योंकि सीआईडी झारखंड के अंदर संस्थाओं के तहत हम अपनी बातों को कैसे पहुंचा सकते हैं संस्कारी तरीके से, पूरे अनुशासन से। किसी प्रकार का अभद्र नारा नहीं लगा, किसी का मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा, कोई भूंडा प्रदर्शन नहीं हुआ, हमारी वहां बेटियां बैठी हैं, किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, किसी के खिलाफ आईडी के माध्यम से को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब जब हम डिमांड कर रहे हैं कि हमको सीबीआई जांच चाहिए तो हम सीबीआई जांच से बच क्यों रहे हैं, डर क्यों रहे हैं? क्या आपत्ति है? अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है तो सीबीआई जांच करा दो। अब जब हमारे 18-19 दिन से लगातार कोई पॉलिटिकल एजिटेशन नहीं है, ये किसी सुविधा के अनुसार एजिटेशन, तंत्र भारत उसके लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत हम अपनी बातों को कैसे पहुंचा सकते हैं संस्कारी तरीके से, पूरे अनुशासन से। किसी प्रकार का अभद्र नारा नहीं लगा, किसी का मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा, कोई भूंडा प्रदर्शन नहीं हुआ, हमारी वहां बेटियां बैठी हैं, किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, किसी के खिलाफ

0: पॉलिटिकल एजिटेशन नहीं है, ये किसी सुविधा के अनुसार एजिटेशन। तंत्र भारत उसके लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के तहत हम अपनी बातों को कैसे पहुंचा सकते हैं संस्कारी तरीके से, पूरे अनुशासन से। किसी प्रकार का अभद्र नारा नहीं लगा, किसी का मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा, कोई भूंडा प्रदर्शन नहीं हुआ, हमारी वहां बेटियां बैठी हैं, किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, किसी के खिलाफ, यहां तक कि पुलिस के खिलाफ नारे नहीं लगे, पुलिस से पत्थर नहीं फेंके गए, कोई भी जो वहां भोजन आ रहा है, कोई जोमेटो से पिज्जा बर्गर विदेश से नहीं आ रहा है, वहीं बैठ के दिया। एक धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति पकड़ा, कहां से पकड़ा गया? एक बड़े अधिकारी का नाम आया है, सीआईडी खोल रही है, आम लोग पूरे झारखंड के लोग जान रहे हैं वो बड़ा अधिकारी कौन है। सीआईडी की हिम्मत है? नहीं करेगी सीआईडी। क्यों? दुनिया की सर्वोत्तम न्यायपालिका भारत की है, क्या आपत्ति है? क्या ऐसा एक बड़ा स्कैम है साहिल भाई? यहां छोटा कोई पेपर लीक का मामला नहीं है। यहां
1: आखिर में सवाल है, क्योंकि आप सरकार हेमंत सोरेन ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल आंदोलन हो चुका है, जो आरोप संजय सेठ जी अब देखिए कैसे कैसे सिमिलर आरोप लगते हैं। जंतर मंतर पे आरोप हुआ, आंदोलन हुआ तो उस पर आरोप लगा कि ये पॉलिटिकल आंदोलन है, विपक्ष उसका फायदा उठा रहा है। यहां पर हेमंत सोरेन एग्जैक्टली यही आरोप इस आंदोलन के बारे में लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी ने बाहर से लोग लेकर आए हुए हैं, यानी जो झारखंड के है ही नहीं, बाहरी राज्यों से लोग लेकर आकर वहां पर आंदोलन किया जा रहा है। इसका आप कैसे जवाब देंगे?
0: आप युवाओं पर शंका प्रकट कर रहे हो? मुख्यमंत्री जी आपके बच्चे हैं, आप इनको बाहरी बता रहे हो? शर्म आती है, ये आपके बच्चे हैं, आपकी बेटियां हैं, और आप इसको बोल लो बाहरी? अरे ये हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग वॉइस हैं, क्या हम चुप बैठ जाएं? हां, एक भी भाजपा का एक भी कार्यकर्ता धरने पे नहीं बैठा, छात्र बैठे हैं। हम उनकी बातों को सदन से लेकर सड़क तक, आज से 10 दिन पहले मकर गेट संसद के सामने प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर अनशन किया, फिर हम भी रांची गए, वहां मिल के आए, अस्पताल में जो क्रांति बच्चा आईसीयू में एडमिट उसको मिल के आए। क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है? और जो लोग उछल उछल कर गए थे राहुल गांधी से पूछो, क्या उनके पास समय नहीं है? गूंज उनको सुना दे दी, प्रयागराज का गूंज सुना दे गई, झारखंड के बच्चों का लहू की गूंज नहीं सुनाई दी। शर्म आती है राहुल गांधी जी, आप तो इतने दोहरे चरित्र के आदमी हो, और क्योंकि आप तो देश जानता है, झूठ बोलने वाली कोई सबसे बड़ी मशीन इस देश के अंदर है, उसका नाम राहुल गांधी है। आप प्रयागराज चले गए,
1: यानी आपको दर्द इस बात का है कि जंतर मंतर आंदोलन के समर्थन में जो विपक्ष खड़ा हो रहा था वो झारखंड के आंदोलन को हेल्प नहीं कर रहा है या उनके साथ में खड़ा नहीं दिख रहा है। लेकिन आरोप दूसरी तरफ से यह भी लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने तो बयान दे दिया है कि जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ उसको लेकर तो कहा गया कि भाई ये तो वायरस है। आपकी पार्टी की एक सांसद, आपकी पार्टी की एक सांसद जो है हिमाचल प्रदेश की, वो तो कह रही थी तो गटर जनरेशन है, आंदोलन को हेल्प नहीं कर रहा है या उनके साथ में खड़ा नहीं दिख रहा है। लेकिन आरोप
0: साहिल भाई, बच्चों का परसों लहू बहा है, 8:30 बजे रात में बच्चों को लाठी से पीटा गया है, क्या लहू राहुल गांधी को नहीं दिखता? क्या सपा को, अखिलेश यादव को नहीं दिखता? बड़े बड़े वो लोग उछल के गए थे, सबाना आजमी जी दीदी गई थी, और नसीरुद्दीन शाह गए थे, सब मम हो गए, कहां चले गए? क्या झारखंड के बच्चे भारत के बच्चे नहीं है? क्या उनका लहू ऐसा ही
1: है?
0: क्यों नहीं कि एक
1: बिल्कुल है।
0: क्या? और राहुल गांधी देश चाहता है दूध का दूध, देश चाहता है दूध का दूध, पानी पानी हो। अब देखो कल रात में क्या हुआ,
1: ठीक है,
0: 1 बजे रात में डिप्टी कमिश्नर

0: सपा को अखिलेश यादव को नहीं दिखता, बड़े बड़े वो लोग उछल के गए थे, सबाना आजमी जी दीदी गई थी और नसीरुद्दीन से आ गए थे, सब मम हो गए, कहां चले गए? क्या झारखंड के बच्चे भारत के बच्चे नहीं है? क्या उनका लहू ऐसा ही
1: बिल्कुल है?
0: क्यों नहीं कि एक
1: बिल्कुल है
0: क्या? और राहुल गांधी देश चाहता है दूध का दूध, पानी पानी हो। अब देखो कल रात में क्या हुआ,
1: ठीक है,
0: 1 बजे रात में डिप्टी कमिश्नर रांची, SSP रांची बच्चों के पास जाते हैं, धमकाते हैं कि धरना।
1: बात साफ नजर आ रही है कि छात्र, बहुत शुक्रिया आपका, ये बात साफ नजर आ रही है कि छात्र इस बात को लेकर अड़े हुए हैं। और इसीलिए धीरज दुबे, आपके सरकार को इस बात को मानना पड़ेगा क्या कि CBI को जांच देने में आपको दिक्कत क्या है? लेकिन इस बीच और एक ये बड़ी खबर है कि केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ये कह रहे हैं कि CBI को जांच देनी होगी, झारखंड के छात्रों को CID पर भरोसा नहीं है। धीरज दुबे, इस बात पर आपकी प्रतिक्रिया, CBI जांच को जांच देने में
2: जारी रखना चाहते हैं? सरकार जब 98% बात मान ली है तो ये बोलते हैं कि CBI जांच क्यों नहीं हो रहा है? भाई CBI जांच करके हम अपने छात्रों को न्याय से फिर से 20 साल के लिए इंतजार नहीं करा सकते हैं, जैसा कि JPSC 1 और 2 में हुआ है। हम नहीं चाहते हैं कि छात्र अगले 20 साल तक इंतजार करें तब जाके उनको न्याय मिले। CID के माध्यम से जांच हो रही है, लीड लिया जा चुका है, 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, JPSC अध्यक्ष की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज को पूरी करके और छात्रों के बीच इसे सार्वजनिक करना चाहते हैं, जो गुनहगार 90% बात मान ली है तो ये बोलते हैं कि CBI जांच क्यों नहीं हो रहा है? भाई CBI जांच करके हम अपने छात्रों को न्याय से फिर से 20 साल के लिए इंतजार नहीं करा सकते हैं, जैसा कि JPSC 1 और 2 में हुआ है। हम नहीं चाहते हैं कि छात्र अगले 20 साल तक इंतजार करें तब जाके उनको न्याय मिले। CID के माध्यम से जांच हो रही है, लीड लिया जा चुका है, 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, JPSC अध्यक्ष की गिरफ्तारी हो चुकी है। हम 90 दिनों में इस जांच को पूरी करके और छात्र हुआ सिस्टम आप बोल रहे हैं कि हमको विरासत में मिला है। हमने कहा कि TDPL जितनी परीक्षा ली है उसको रद्द किया जाएगा, जो भी बैकलॉग की परीक्षा है 2023 और 25 की रद्द की जाएगी, परीक्षा घोटालों की 90 दिनों में जांच होगी। हमने कहा कि जो CGL है उस पर रिटायर्ड जस्टिस की कमेटी में निगरानी हो, जांच हो और जो भी फैसला आएगा उसके आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। हमने 98%
1: CGL रद्द क्यों नहीं कर रहे फिर आप? CGL रद्द क्यों नहीं कर रहे?
2: कोर्ट का मामला है साहिल जी, बार बार यही बोलना, कोर्ट का मामला है, कोर्ट ही डिसीजन इस पर लेगी। हम कोर्ट से अपील करेंगे, जांच रिपोर्ट देकर ही अपील कर पाएंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। सरकार नहीं,
1: हमारे साथ चंदन कुमार है, JPSC JSSC न्याय मंच के प्रवक्ता है, मैं आता हूं आपके पास। जरा चंदन कुमार जी से पूछ लेते हैं, आपने सुना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता यहां पर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए CID जांच कर रही है, दूसरी बात CGL, आपको भी पता होगा चंदन जी कि CGL के मामले में हाईकोर्ट में मामला गया था और वहां पर उन्होंने कहा कि जो 2250 नियुक्तियां की गई है 2014-15 से विलंबित थी वो रद्द नहीं हो सकती क्योंकि उसमें CID कुछ ढूंढ नहीं पाया। तो ऐसी स्थिति में CGL के रद्द की मांग आपकी क्या पूरी होगी आपको लगता है, और कौन सी ऐसी मांग है जो अभी तक सरकार पूरी नहीं कर पाई है?
3: CID जो होती है सरकार की एजेंसी होती है, सरकार के लिए काम करती है और CID ने मई महीने 2025 तक अच्छे तरीके से काम कर रही थी, लेकिन अचानक जो था सारी टीम को बदल दिया क्योंकि सरकार की बहुत सारी चीजें जो थी वो पकड़े जा रहे थे। तो सोचा कि क्यों ना जितने भी CID के टीम में थे पूरे सदस्य को ही बदल दिया गया और साच को कोर्ट में छुपाया गया। और वहां पर जब 135 प्रश्न में 120 प्रश्न मिले थे तो वहां पर CID ने उसका जवाब में ये दिया कि कुछ ही प्रश्न जो थे वो मिले थे। तो इस प्रकार से साक्षियों को छुपाया गया और CID सरकार की एजेंसी होती है, सरकार की तोता होती है, SIT सरकार की तोता होती है, वो सरकार के लिए काम करती है। सरकार जितने ही उसको वर्क देता है, जितने ही उसको सिखाता है उतने ही वो काम कर सकता है। अभी देखिए कि
2: चंदन भाई
3: के द्वारा जो भी जांच पड़ताल अभी देखने को मिल रहे हैं,
2: टिप्पणी था अभी तो वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का CBI
3: और 11वीं से 14वीं JPSC का चल ही रहा था आपका, 11वीं से 13वीं JPSC का देखिए, 11वीं 13वीं से हम साथ
2: सरकार इस बात को मान ली है।
3: JPSC JSSC के द्वारा जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया गया है, चाहे PGT हो, लैब असिस्टेंट हो, JSSC CGL हो, नगर निगम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल हो, आपका IT इंस्ट्रक्टर हो, चाहे आपका उत्पाद सिपाही हो, चाहे आपका फील्ड वर्कर हो, सभी परीक्षा में अनियमितताएं पाई गई है। CID के जांच के दौरान हर चीज खुल्लम खुल्ला देखने को मिला कि जो TDPL एजेंसी के जो मार्केटिंग मैनेजर थे वो आप देखे होंगे कि PGT 2023 की जो बहाली थी उसमें फर्स्ट रैंकर इंग्लिश में था और उसी का भाई जो है JSSC CGL में फर्स्ट रैंकर है और खुद अपने आप में वो सेकंड रैंकर है और BSO के पद पर पुड़ैया हाट में पोस्टेड है। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति

0: एक ट्रिपल एजेंसी कितने बड़ा
1: नीरज दुबे
0: मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका में निभा रहा हो,
1: वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के पीछे मत छुपिएगा।
0: परीक्षा को भी
1: अगर ये सारी चीजें दिख रही है, क्योंकि जांच में भी पता चल रहा है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए 20 प्रतिज्ञियों से 5,80,00,000 रुपए की वसूली की गई थी। एफआरओ के पद के लिए 20 से 25 लाख रुपए की बोली लगाई गई थी। एससीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगाई गई थी। इतनी सारी चीजें हुई और वो अगर नियुक्त है सरकार के भीतर तो उनकी नियुक्तियां रद्द होनी चाहिए। उसमें गलत क्या है? सरकार अभी भी इसके बारे में फैसला ले सकता है, क्योंकि अभी इसकी
2: बातें खुल रही है। हम कोर्ट में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके बाद कोर्ट से आग्रह करेंगे कि ये धांधली हुई थी या ये समस्या था।
0: जो बच्चे आज के समय में यूजीसी नेट सीएसआर नेट क्वालिफाइड नहीं हो सकते हैं, 40-50% नंबर नहीं ला सकते हैं, वो बच्चे पीजीटी में 90-95% मार्क्स लाए हैं, तो कहां से न्याय हो सकती है?
1: नीरज दुबे जवाब दीजिएगा जल्दी से,
0: बच्चे का कटअप
1: क्यों नहीं नियुक्तियां रद्द होगी? आप चंदन कुमार जी, आपकी आवाज सुन ली है। नीरज दुबे,
0: झारखंड जो है साक्षरता झारखंड साक्षरता दर में
2: ठीक है। सारी
0: उत्पाद सिपाही का कटअप दिया
2: चंदन,
0: गया
2: चंदन जी,
0: में 644
2: जी, आप सरकार जो है
0: यहाँ पेपर लीक नहीं होते हैं, खुल्लम खुल्लम
2: आप जो बोल रहे हैं वो पहले दिन से ये सरकार समझ रही है। हम कह रहे हैं गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन गड़बड़ियां हुई हैं तो वो
1: धीरज दुबे
0: सुधारने के लिए आपके पास तो
1: धीरज दुबे फ्रीज हो गए।
0: आप आइए हमारे
1: लिए इतनी मांगे रखी चंदन कुमार जी ने,
2: धीरज दुबे आज फ्रीज नहीं हुए।
1: जल्दी से जवाब दीजिए चंदन जी, बात सुन लीजिएगा प्लीज।
2: आवाज आ रही है?
1: नहीं, मेरे ख्याल से नेटवर्क ठीक नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना क्या? अभी भी बीजेपी चाहती है कि सीबीआई के पास जांच जाए इस पूरे मामले में, जो आपके मंत्री भी वहां पर मांग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अब सवाल बीजेपी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष पर उठा रही है। तो इस आंदोलन का एक राजनीतिक फायदा आपको दूसरे तरीके से भी, कि आप अब जो आप पर मामला चल रहा था अब वो आप विपक्ष पर पलटा सकते हैं, यह भी एक मौका आपको मिल गया।
3: नहीं साहिल जी, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचता देख रहे हैं तो सारी मांगे छात्रों की मांग ले, छात्रों की मांग जैसे ही मांगे मान लेंगे भारतीय जनता पार्टी लाभ से वंचित रह जाएगी। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने पर आमादा है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार से? ये सीधा प्रश्न है। क्यों भाई, आपको जब पता लग रहा है कि इस आंदोलन के विस्तार से भारतीय जनता पार्टी लाभ में आ रही है तो आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए बीच में ना बुलवाइए, देखिए इनको कहिए शांत रहे, मैं इनको शांति से सुन रहा था। साहिल जी ये शांति,
1: अरे चंदन कुमार बोल रहे हैं, जरा चंदन कुमार का मेरे ख्याल से फोन कनेक्शन कट गया। चंदन जी जरा सुन लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, जरा सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं वो। प्रेम शुक्ला जी,
3: अभी देखिए चंदन कुमार जी ने ही आप ही के इसी डिबेट में स्पष्टता से कहा कि किस तरह से जब सीआईडी की जांच इनके महत्वपूर्ण अधिकारियों तक और राजनेताओं की तरफ पहुंचने लगी तो सीआईडी की पूरी टीम को बदल दिया गया। यह चंदन कुमार जी का ही दावा आप ही के चैनल पर अभी किया गया और इस दावे का खंडन धीरज दुबे जी नहीं कर रहे हैं। तो जब आप सीआईडी की जांच करने वाली निष्कर्ष पर पहुंचते समय आप उसकी पूरी टीम को बदल दे रहे हैं तो आपका इरादा साफ है, राज्य सरकार का इरादा साफ है कि उसको जांच के निष्कर्ष तक जांच को नहीं पहुंचने देना है। ऐसे में सीबीआई जांच ही विकल्प बचता है और छात्रों को जो विक्टिम है, विक्टिम को न्याय होते हुए नहीं दिखना चाहिए क्या? न्याय का तो मौलिक सिद्धांत यही है कि न्याय होते हुए दिखाई देना चाहिए, तो न्याय के मौलिक सिद्धांत का उल्लंघन क्यों करने पर आमादा है? ये फिर देखिए बीच में बोलने लगे, इनको बीमारी है बीच में बोलने की, फिर बीच में बोलने लगे, इनकी बीमारी देखिए, इनकी बीमारी देखिए किस तरह से है, इनकी बीमारी देखिए ना, धीरज दुबे की बीमारी बता रही है कि ये जानते हैं अगर सीबीआई की जांच हुई तो हेमंत सोरेन के करीबी जेल पहुंच जाएंगे, असली अभियुक्त जो है जेल पहुंच जाएंगे, असली अभियुक्तों को बचाना ही असली। अब साहिल जी का कैसी बहस करा रहे हैं आप, साहिल जी कैसी बहस करा रहे हैं आप, मैं इनको सुन रहा हूं, ये मेरे भी, ये चंदन कुमार के बीच में भी बोले, मेरे बीच में भी बोल रहे हैं, आप क्या क्या इस तरह की बहस करा रहे हैं कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग दूसरों के बीच बोलकर बहस को निष्कर्ष तक ना पहुंचने दे? ये अगर आपका उद्देश्य है तो ठीक है साहिल जी, अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से भयभीत हैं तो गजब है फिर तो। अगर आप इतने भय खा रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, अगर आज तक के जो है एंकर को भी भयभीत कर रखा है,
2: तब तो गजब
3: है भाई। झूठ तो आप बोल रहे हैं भाई,
2: यही डिबेट का मतलब आप बोल रहे हैं,
3: और इस डिबेट में लगातार बीच में बोलकर आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि आप उस झूठ को स्थापित करने पर आमादा है।
2: वो बीच में बोलने से कुछ साबित होता है क्या?
3: जिस तरह से आपको अवसर दिया जा रहा है,
2: तब तो आपके
3: आश्चर्यजनक है।
2: डिबेट
3: क्योंकि हम लोग किसी के बीच बोले तो साहिल जी आपत्ति ले लेते हैं, लेकिन
1: बीजेपी बीजेपी यहाँ पर विपक्ष को भी उकसा रही है और हमें भी उकसाने की कोशिश कर रही है
3: कि झारखंड,
1: यानी पूरा मंच आप ही को दे देना चाहिए।
3: लगातार जो है बचाने का प्रयास ये आज तक की तरफ नहीं, मेरे को क्या कर आप तो धीरज दुबे को दिए पड़े, मंच आपने धीरज दुबे को दे रखा है, मुझे मंच कहाँ दे रहे हैं? मुझे तो मेरी बात नहीं करने दे रहे, मुझसे जो प्रश्न।
1: अरे चंदन कुमार आपके बीच में बोल रहे हैं, ये चंदन कुमार बीच में बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं।
3: आप कांग्रेस,
1: चंदन कुमार बीच में बोल रहे थे,
3: ये तो अभी शुरू किया।
1: चंदन कुमार आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? क्या जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं उसका आप समर्थन करते हैं? जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं उसका आप समर्थन करते हैं क्या चंदन जी?
0: ये दोनों सांप, पहले ही दोनों को लड़ाई लड़ने दीजिए, सांप नेवला के जैसे लड़ाई लड़ रहे हैं। हम छात्र जो है अपने न्याय की मांग के लिए संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं, तो ये दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी शासित का प्रदेशों में भी पेपर लिख हुए, वहां पर तो हर चीजें नहीं होती है, झारखंड में भी पेपर लिख हुआ। तो हम जो है ये न्यूट्रल में बात किया जाए, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। पहली चीज है कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया है उसको अविलंब रद्द किया जाए। टीडीपीएल एजेंसी का जो मार्केटिंग मैनेजर है, जो भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा जिससे कम है बैठा है, उसको अविलंब रद्द किया जाए। सीआरडी जांच
1: के दौरान प्रेम शुक्ला जी क्या बोला उन्होंने? चंदन कुमार जी ठीक है, आपकी आवाज समझ में आ गई। प्रेम शुक्ला जी आपने सुना, सांप नेवले की लड़ाई मत करिए, यहाँ पर लड़ाई उस बात को लेकर चल रही है, मेरा आंदोलन तेरा आंदोलन, छात्रों की असली मांगों को लेकर कोई यहाँ पर आंसू नहीं बहा रहा है, यहाँ पर राजनीति ढूंढी जा रही है। वो यहाँ पर झारखण्ड झारखण्ड के जो आंदोलनकारी है वो भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या उन पर भी आप आरोप लगाएंगे कि वो भी आप पर सवाल उठा रहे हैं इसके लिए? तो लगा लीजिएगा अभी।
3: नहीं बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल उन पर आरोप लगा
0: सकते हैं, दिला सकते हैं, उस पर बात करिए
3: एकदम जो
0: आप आरोप और प्रत्यारोप लगाते रहिए। आप लोग सांप
3: हम तो वही कह रहे हैं,
0: छात्रों को नौकरी से मतलब है, आपको अपनी कुर्सियां पसंद है, आपको कुर्सियां सलामत आपको मिले, लेकिन हम
2: छात्र चंदन जी और प्रेम शुक्ला दोनों
0: सरकारी नौकरी में दिखता है।
2: सीआईडी का जांच रिपोर्ट आने दीजिए,
1: जरा सबको शांत करिएगा।
2: जांच रिपोर्ट से आप
1: सीआईडी पर किसी को भरोसा नहीं है धीरज दुबे। सीजीएल की परीक्षा इसलिए रद्द नहीं हो रही है, हाईकोर्ट ने इसलिए रद्द नहीं की क्योंकि सीआईडी की जांच में कुछ निकाल ही नहीं पाए, और आज जो लोग पकड़े गए हैं वो कह रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर परीक्षा होने के पहले ही बोलियां लगती थी अलग अलग पोजीशंस के लिए, ये बातें निकलकर सामने आ रही है। वहां पर 2024 में
2: मार्केट में कई बातें साहिल जी,
1: इसीलिए धीरज दुबे जी सीबीआई की मांग हो रही है,
2: ट्रायल प्रोसीजर
1: इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सीआईडी ने इतने लोगों की गिरफ्तारी करने के बाद भी
2: वो अपोजिशन के
1: क्यों ये बात है कि झारखंड के छात्र आज की स्थिति में कह रहे हैं कि सीबीआई के पास आप जांच दीजिएगा,
2: ये ज्यादा जरूरी है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए साहिल जी, सीआईडी का जांच आने दीजिए, 90 दिनों के बीच हम लोग सीआईडी का जांच कराएंगे, संतुष्ट अगर नहीं होते हैं छात्र फिर से वही जयपाल सिंह स्टेडियम है, फिर आंदोलन का रास्ता है, ये कहेंगे सीबीआई को सौंपने के लिए, हम सीबीआई को सौंपेंगे,
1: 90 दिन इंतजार करें और उसके बाद फिर आंदोलन करें, क्या बात है?
2: हम
1: न्याय कमेटी
2: कहेंगे
1: 90 दिन इंतजार करें और उसके बाद आप सिस्टम सुधारने की तो बात नहीं कर रहे हैं, हर कोई यहाँ पर कानून लेकर आता है और कहता है कि सात सजा देंगे,
0: आपको सैलरी मिल रही है, मोटी सैलरी मिल रही है, सरकारी सुविधाएं मिल रही है, और हम
2: उसका वेट नहीं कर सकते हैं।
0: हमें
2: अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी, हमें भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना
1: होगा। दोनों को शांत करिएगा प्रोफेसर अजय उपाध्याय, एक मिनट प्लीज, जरा दोनों को शांत करेगा प्रोफेसर अजय उपाध्याय। आप लोग तो कॉर्नर हो गए, सिर्फ ट्वीट करने से नहीं होगा कि जो लाठीचार्ज हुआ वो गलत हुआ, आपकी मौजूदगी भी देखी जाएगी, और यहां पर बीजेपी स्कोर कर रही है। बीजेपी ये कह रही है कि देखिए जंतर मंतर पे तो आपके लोग पहुंच गए फटाफट, लेकिन रांची में नहीं पहुंचे, तो वहां पर छात्रों को गटर जनरेशन कहने वाले भी आंदोलन पे उतर आए कि भाई देखिए कांग्रेस के लोग वहां पर नहीं जा रहे हैं। ये मौका आप लोगों ने दिया है बीजेपी।
4: साहिल जी पहली बात
1: आप लोगों ने दिया
4: जी, साहिल जी बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात की कांग्रेस का कोई भी नेता सच पूछिए तो जंतर मंतर पर भी नहीं था और रांची में भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस का नेता सड़क से संसद तक छात्रों के लिए लगातार हमारे नेता शुरू से लेकर, चाहे वो नीट परीक्षा की बात आई, बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज हुआ या झारखंड में भी जो बच्चों के साथ लाठीचार्ज हुआ, आज भी हमारे शीर्ष नेता ने लगातार वो आवाज उठाई है

0: और जो गलत है वो गलत है, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। मैं कहता हूं सीआईडी और सीबीआई से क्यों? हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के इंडिपेंडेंट जज के नेतृत्व में सारी चीजों की जांच होनी चाहिए। मैं तो छात्रों के साथ खड़ा हूं।
1: नहीं तो लेकिन सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
0: मैं कह रहा हूं कि सीबीआई
1: सीबीआई सीजीएल की परीक्षा रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
0: साहिल भाई,
1: सीजीएल की तरफ से जो नियुक्तियां की गई है वो रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
0: तो साहिल भाई, अब मुझे सुन लीजिएगा, थोड़ा पूरा कर लेने दीजिए सेंटेंस। सीबीआई से जांच का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, आपने खुद ही बताया कि 2014 छोड़िए, 2004 से लेकर के और आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सीबीआई का क्या हाल है सभी ने देख लिया है, कितनी सजाएं हुई है, कितने पेंडिंग केस है, हाई कोर्ट के निर्देशन में या सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में डायरेक्ट जो है इसकी जांच कराई जाए, और एक ही राज्य में क्यों, सभी राज्यों में जहां जहां इस तरह की गड़बड़ियां पाई गई है। लेकिन आपदा में अवसर तलाशने की जो रणनीति है भाजपा की, वो सफल कहीं नहीं होगा, और इस पर जो मेरा छात्र और तेरा छात्र की जो राजनीति है, ये भी सफल नहीं होने दिया जाएगा।
1: बदल जाती है मुझे इस बात से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है प्रोफेसर संगीत रागी, आप इस चर्चा में पहले भी आ चुके हैं, तब जंतर मंतर पे हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, मतलब यहां पर विंडोज बदल जाती है और भाषा भी उस तरीके से बदल जाती है। आपदा में अवसर, जो बीजेपी के प्रवक्ता जंतर मंतर को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाते थे और यही भाषा का इस्तेमाल करते थे, आपदा का अवसर, आपदा में अवसर, आज कांग्रेस के नेता यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कहते थे कि भाई देखिए, वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि संसद के गेट पर पहुंच गए थे, आज वही नेता यहां पर कह रहे हैं कि भाई आंदोलन किया तो लाठीचार्ज क्यों किया। ये बड़ी दिलचस्प बात है, आज आप प्रोफेसर के तौर पर बोलिए संगीत
2: साहिल,
1: बाकी विचारधारा भूल जाइए।
2: साहिल इंपॉर्टेंट बात जरा देखिए, दोनों आंदोलनों के बीच एक फर्क देखिए। जो जंतर मंतर का आंदोलन था वो वैचारिक और राजनैतिक आंदोलन ज्यादा मैं उसे कहूंगा, क्योंकि वो सीधे सीधे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का वो इस्तीफा मांग रहे थे। दूसरी बात, उस आंदोलन में एक जिसे हम कहते हैं गाली गलौज की भी भाषा थी, उसमें थोड़ा सा उत्पात की भी भाषा थी। उसके अतिरिक्त यदि आप देखेंगे कि उसको पॉलिटिकल सपोर्ट भी कई जगहों से आ रहा था, वो एक और बात है। इस आंदोलन में यदि आप देखेंगे साहिल, तो कोई भी राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है, वो सीधे सिर्फ इतनी बात तक सीमित करें, वो न तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, न मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि भाई आपके यहाँ पैसे देकर के होता था, चोरी होती है, ये बात सबको कोई जानता है। कई बार तो मैंने भी खुद अपना झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से मेरा रिक्वेस्ट आया था, मैंने अभी अजय उपाध्याय जी को कहा, मैंने रिफ्यूज किया, अच्छा हुआ कि भाई रिफ्यूज किया कि मैं वहां गया नहीं, नहीं तो पता लगता कि आज आप साहिल हमसे भी क्वेश्चन पूछ रहे होते और हम भी कटघरे में कहीं खड़ा रहे होते। तो वहां पर ये बहुत, ये जिसे कहते हैं ना परसेप्शन, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, एनटीए के बारे में भी मैं कभी भी एनटीए को छूट नहीं दिया, मैंने बार बार कहा कि एनटीए में गड़बड़ियां थी। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक बदनाम पब्लिक सर्विस कमीशन है आज के दिन में, और इसलिए यहां पर राहुल गांधी को यदि वाकई इसके बारे में कंसर्न थे, तो इनके विधायक जाकर के तख्तियां लटका करके विधानसभा के आगे क्यों नहीं आए, मैं सवाल जानना चाहता हूं। चार दिन पहले मुख्यमंत्री सोरेन से जो है एनएसयूआई के लोग अंदर गुपचुप जाकर के क्यों बैठक कर करके आए थे, तो सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां नरेंद्र मोदी सरकार को घेरनी थी,
1: तो इसलिए आप ज्यादा मुखर से बात का क्लैरिफिकेशन दीजिएगा मुझे। संगीत जी, संगीत रागी जी, जरा इस बात का क्लैरिफिकेशन दीजिएगा, जंतर मंतर पे जो आंदोलन हो रहा था वो छात्रों का आंदोलन नहीं मानते आप?
2: नहीं, मैंने दो चीजें, साहिल मैं बार बार कहता हूं, छात्रों ने आंदोलन किया लेकिन वो एक वैचारिक पृष्ठभूमि से, आप मुझे बताइए 370 कहां से आ जाता है, कश्मीर मुद्दा कहां से आ जाता है, उमर खालिद कहां से आ जाता है, शर्जिल इमाम कहां से आ जाता है,
1: आपको कुछ जवाब दे
2: देखा है कोई?
1: चंदन कुमार,
2: झारखंड के छात्रों के साथ मेरी पूरी संवेदना है, मेरा पूरा समर्थन है, कभी उन्होंने राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर कोई भी बात नहीं की, और मैं उनकी बहुत शाबाशी दूंगा।
3: और किस प्रकार से
1: कहा था, चंदन कुछ कहना चाह रहे हैं, चंदन आपकी आवाज आ रही है, जरा संगीत रागी को बताइए आप क्या कह रहे हैं।
3: कॉकरोच बोला गया, हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ नीट का पेपर लिखवा, पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बना और सीजीआई के द्वारा छात्रों को कॉकरोच बोला गया, तो उसको लेकर प्रमुखता के साथ जो थे अभिजीत

0: के अगुवाई में लड़ाई को लड़ा गया, अपनी मांग को लेकर अड़िग रहे और जो थे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिए, लेकिन ये आरोप लगा रहे कि वो छात्र नहीं थे। तो छात्र कौन होते हैं आप? छात्र का देने वाला डिग्री कौन होते हैं आप? आप क्या हैं आप? अरे भाई, आप विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, तो 5 साल के लिए हैं, जीवन भर के लिए थोड़ी हैं। लोकतंत्र है, आपको बैठा भी सकता है, उतार भी सकता है।
1: इसलिए आप यही आके रुक जाते हैं,
0: लगाते मत रहिए, छात्रों का भविष्य को बर्बाद मत होने दीजिए।
1: जब छात्र सड़क पर उतरता है तब क्या राजनीतिक पार्टियां उसे छात्र के तौर पर देखती है या एक राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको देखा जाता है? लेकिन इस बीच एक खबर भी आ रही है, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके का नया बयान आया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर का सीजन 2 जल्द ही शुरू होने वाला है, बहुत ही जल्दी। कई सवाल लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जंतर मंतर का सीजन 2 कब शुरू होगा। तो उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत जल्दी शुरू होने वाला है।
2: इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। लोगों को मैं कहना चाहता हूं जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है।
1: तो सीजन 2 जंतर मंतर का वहां शुरू होगा, उसके बाद एक बार फिर बयानबाजियां देखने मिलेगी। लेकिन वहां झारखंड में छात्र 19 दिन के बाद भी वहां पर जसपाल स्टेडियम में बैठे हुए हैं। 2 मांगे आखिर उनकी बची हुई है, सरकार पूरी करती है कि नहीं करती, उस पर नजर बनाए रखें। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए। आज

0: 봐.
1: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
1: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया
1: है ला भाई मेरा बैट वो अभी तो ठीक हुआ तू
3: चार्ज हुआ यार
4: बैट किसका है
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: In association with
4: Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
5: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
3: विमल बोलो जुबां केसरी हिंट बड़े आराम से
6: जहां जुर्म वहीं कहानी जहां कहानी वहीं साजिश जहां साजिश वहां क्राइम था जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो उसकी परतें हम सुलझाते हैं देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से
7: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का
8: जब तक वो CBI जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे
7: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है वाटर कैनन खत्म हो गए फायर टेंडर खत्म हो गए
9: प्रोटेस्टर हैं देखिए उनको कैसे चोट लगी है
10: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है
11: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
12: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है
7: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक

0: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री आंदोलन करते अपने राज्य के युवाओं को खारिज कर देने वाली राजनीतिक फैशन के शिकार है।
1: अलग अलग कोर्ट पे
0: जो सदन में खड़े होकर भर्तियों में धांधली के खिलाफ 18 दिन से प्रदर्शन करते और 17वें दिन पुलिस की लाठी आंसू गैस का गोला खाए छात्रों को सियासी मोहरा बताने में जुट चुके हैं। इसीलिए तो रो पड़ती हैं ये बेटियां। गुमला से झारखंड की राजधानी रांची आकर दूसरों के घरों में खाना बनाकर अपने रहने खाने और पढ़ने का खर्च उठाकर एक आदिवासी बेटी को झारखंड में इतना भरोसा भी सरकार नहीं दे पाती है कि उसकी मेहनत से पास हुई परीक्षा में सब कुछ ईमानदारी से हुआ है। एक आदिवासी बेटी रोती है तो भविष्य की भर्तियों के लिए तैयारी करती दूसरी बेटी रांची में प्रदर्शन करते हुए आंसू नहीं रोक पाती। इन बेटियों से आंख मिलाकर झारखंड सरकार क्या कह पाएगी कि अब एक भी भर्ती भ्रष्टाचार के अधीन नहीं होगी। लेकिन वो तो पुलिस की लाठियों को वाजिब ठहराने में जुटी है, जहां मुख्यमंत्री कहते हैं प्रशासन ने बहुत धैर्य सोमवार को दिखाया है। देखें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितना धैर्य प्रशासन ने सोमवार शाम को विधानसभा के गेट के पास दिखाया। इतना धैर्य की लाठियों के बेरोजगारों के हाथ सिर पर चटकने की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन आंख खुले तो मुख्यमंत्री और पूरी सरकार देखें किस तरह बहुत दूर नहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रांची पुलिस के धैर्य वाले लाठीचार्ज का गवाह बने बेटे और बेटियां बैठे। आंख खोल कर देखें सरकार किसी का हाथ किसी का पैर किसी का कंधा किसी की कोहनी किसी का चेहरा किसी का सिर लाठियों के निशान मौजूद है। लेकिन जो सरकार लाठीचार्ज को लाठीचार्ज न माने उसकी बात पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। मिलिए सत्ता की अंधेरगर्दी के दूसरे किरदार, नाम है इरफान अंसारी, पावरफुल मंत्री, स्वास्थ्य विभाग झारखंड में संभालते हैं। लेकिन इनको लगता है कि रांची में पुलिस ने सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन को रोकने के लिए कहीं कुछ नहीं किया। कोई कार्रवाई न कहते हुए मंत्री जी की जुबान रत्ती भर लड़खड़ाई नहीं। जहां न आंसू गैस का गोला इनको दिखा, न दिखते हैं सरकार के कटीले तार, न मार खाते बेरोजगार, न आंसू, न तड़प, न चीख, न पीठ पर लाठी के निशान। सोचिए ये हाल है जहां मुख्यमंत्री पुलिस की कार्रवाई को अभूतपूर्व धैर्य वाला बताते, स्वास्थ्य मंत्री मानते नहीं कि लाठीचार्ज हो, और बहुआ मांझी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद कहती है सरकार ने संयम बरता। तो क्या बिना कार्रवाई के खून विक्रम कुमार जैसे छात्रों का बहा? यही वजह है कि जब सरकार कहती है कि वो छात्रों की बहुत सी मांगों को मान चुकी तो भी सोनी कुमारी जैसी छात्राओं को रत्ती भर भरोसा नहीं होता, वो रोने लगती। क्योंकि जो सरकार यही ना माने कि लाठीचार्ज हुआ, वो कैसे ये भरोसा दे देगी कि आगे परीक्षाएं ईमानदारी से होंगी।

0: पहले पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। यहां विपक्ष एक सुर में मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर दिखा। उसके बाद रांची में छात्र आंदोलन में पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद बीजेपी पूछती है कि राहुल गांधी आखिर रांची क्यों नहीं जा रहे। कुल मिलाकर दोनों आंदोलन में सहूलियत वाला सियासी समर्थन देखने को मिलता है। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि रांची में पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए और वो छात्रों के साथ है, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी पर जिन्ना वाला वार कर रही है। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच सियासत तेज होती जा रही है। कल विधानसभा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के चोले में बीजेपी के घुसपैठ का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। वहीं रांची आंदोलन में पुलिस के लाठीचार्ज के बाद घायल छात्रों ने अपना दर्द साझा किया। रांची में 10 अगस्त को लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री छात्रों से सहानुभूति की जगह पुलिस का बचाव करते दिखे। इस बीच झारखंड सरकार आंदोलन को खत्म कराने पर उतर आई। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई। आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। अब तक सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली है। सवाल है कि क्या रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को जंतर मंतर जैसी सफलता मिलेगी और क्या सोरेन सरकार छात्रों की मांगों के आगे सरेंडर करेगी।
1: आपने मूसलाधार बारिश के बीच छात्रों के आंदोलन की आग देखी। आपने विधानसभा घेराव के दौरान इन छात्रों का हौसला देखा। आपने छात्रों पर रांची पुलिस की ज्यादती देखी। छात्रों पर लाठियां बरसते देखा और उन्हें एक एक कर घायल होते देखा।
2: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो,
3: पूरे देश के युवाओं पे लाठी चले।
2: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, लाठी चार्ज कर रही है पुलिस। हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है। हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
1: रांची में 2 दिन पहले क्या क्या हुआ इसे पूरे देश ने देखा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सहानुभूति के बजाय पुलिस का बचाव करते दिखे।
4: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है। दक्षिण जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आता।
1: सोरेन यहीं ठहर जाते तब भी गनीमत होती, लेकिन अब वो जुल्म पर उतर आए हैं, बदले पर उतर आए हैं। खबर है कि रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
5: घड़ी में छात्रों की संख्या बढ़ने लगती थी, वो आज अब आधे से भी कम होने लगी है। ज्यादातर छात्र या तो जा चुके हैं या इस समय धरना स्थल पर मौजूद नहीं है। बीती रात प्रशासन यहां पर आया। छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई, और अब इस उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोग?
6: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी और सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी। अभी इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था। जो हम लोग का लाइट वो जल रहा था जो जनरेटर से हम लोग का चल रहा था।
1: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। सरकार ये बात समझती है, इसलिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये दबाव उस सच को नहीं दबा सकता जो एक एक कर सामने आ रहा। सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली।
7: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही राज्य की सीआईडी के सामने अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने सीआईडी से पूछताछ में बताया है कि कैसे अलग अलग परीक्षाओं में लाखों रुपए में नौकरी की डील हुई। अभय तिवारी ने यह बताया है कि उसने किन परीक्षाओं में करोड़ों की राशि की वसूली की, कैसे एजेंट्स के जरिए जो नियोक्ता एजेंसियां थी उनको लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में सीआईडी अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि सीआईडी की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनका यह कहना है कि सीबीआई जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक रांची।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। In association with
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: तो दंगल में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। अब लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के उस पार हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।
8: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। In association with
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सदन में हो जाए चर्चा, मैं पूरे समय बैठूंगा, सुनूंगा, दूंगा जवाब। राहुल गांधी बोले, बहस नहीं सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर। आखिरकार मानसून सत्र में नहीं पेश हो सका एफसीआरए बिल, विपक्ष की मांग के बाद जेपीसी में भेजा गया, राज्यसभा में खड़गे, नड्डा के बीच तीखी नोकझोंक। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की शिरकत, एनडीए सांसदों ने निकाली बाइक रैली। झारखंड छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा, रांची में जारी है धरना। और बारिश से देश के कई शहर बेहाल, मुंबई के घाटकोपर में लैंडस्लाइड के चलते 7 की मौत, कश्मीर के किश्तवाड़ में फ्लैश फ्लड का कहर, हिमाचल में बाढ़ से 313 रास्ते बंद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: मैं किसी भी सवाल का जवाब लेने के देने के लिए संसद में तैयार हूँ।
1: We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination.
0: मैं सदन में ही बैठूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा।
1: We are not interested in him giving us a lecture or a discussion.
2: राहुल गांधी तेरी गोरी नीति नहीं चलेगी,
3: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
4: मंत्री सदन में आओ,
5: सदन में आओ, सदन में आओ।
6: इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपके साथ आज हल्ला बोल में हम चर्चा करेंगे मुद्दा गरम चर्चा हजम। संसद का मॉनसून सत्र में अगर आप पक्ष विपक्ष की बहस देखना चाहते थे और ये सोच रहे थे कि जवाबदेही तय होगी तो आपको ज्यादा निराशा नहीं हुई होगी।

0: तक तो हम सबको आदत हो चुकी है, सत्र आएगा सत्र जाएगा मगर काम नहीं हो पाएगा। 19 दिन के संसद सत्र में से 18 दिन हंगामे की भेंट चढ़ गए। पूरे सत्र में मुद्दा गर्म रहा लेकिन चर्चा हजम हो गई। सत्र के समापन में एक दिन बाकी है लेकिन हंगामा आखिर तक थमा नहीं। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह 24 घंटे की मैराथन चर्चा की खुली चुनौती देकर गेंद सीधे राहुल गांधी के पाले में डाल चुके हैं। आज चर्चा इस बात पर है कि क्या इस आर पार की लड़ाई में संसद के मानसून सत्र में मुद्दा गर्म रहेगा, चर्चा हजम। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे।
1: संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले
2: गोपाल जी, व्हाट डू वांट टू से टू टू केसी बेन गोपाल जी,
3: ये जेपीसी में भेजा जाए।
4: इसके बाद मुझे मौका मिला,
2: मैंने दिया तो समय आपको।
0: न संसद का हंगामा थमा न चर्चा हुई लेकिन अमित शाह का जवाबी पलटवार ऐसा आया कि अब राहुल गांधी पर गोल पोस्ट बदलने का बीजेपी का आरोप और गहरा गया।
5: सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है।
0: जंतर मंतर प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह के बयान की मांग कर रहे राहुल गांधी को ये एक तरह से सीधी चुनौती थी। अमित शाह ने बुधवार दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू कर गुरुवार दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए राजी होने की न सिर्फ बात कही बल्कि स्पीकर ओम बिरला को अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर कहा, आप विपक्ष से चर्चा कर आपसी सहमति से आज से जितने समय जितने घंटे आप उचित समझें उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। जंतर मंतर पर संसद में खुद के बयान को लेकर पहली बार आए अमित शाह के इतने स्पष्ट बयान के बाद राहुल गांधी का जवाब आया कि हमें उनकी कल्पनाओं में दिलचस्पी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री ये बताएं कि गोली किसने चलवाई।
6: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह'स इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग एंड व्हेन आई से वी आई मीन द यंगर जनरेशन ऑफ दिस कंट्री हु शॉट दोज स्टूडेंट्स, हु गेव द ऑर्डर टू शूट दोज स्टूडेंट्स, हु ब्लाइंडेड वन ऑफ द स्टूडेंट्स।
0: जंतर मंतर पर संसद में अमित शाह के बयान की मांग को लेकर ही लगातार कार्यवाही बाधित हुई है। संसद के अंदर हंगामे से लेकर परिसर में मकर द्वार के बाहर एक साथ जवाबी नारेबाजी हो रही है।
7: राहुल गांधी तेरी गोली बिल्कुल नहीं चलेगी,
8: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
0: इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने जेएनजी से संवाद की कोशिशें शुरू कर दी है और उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता और मंत्री जेएनजी चौपाल करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जेएनजी से सीधा संवाद किया।
9: रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं, इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट।
0: जेन जी और पेपर लीक से शुरू हुआ मुद्दा आज संसद ठप्प पर फंसा हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी की सीधी टक्कर में अब बवाल इस बात पर है कि इस टकराव में संसद का मानसून सत्र ही धुल गया।
5: सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं,

0: We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion.
1: Bureau report. आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अजय आलोक प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। महुआ माझी सांसद जेएमएम के, धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी के। कुछ ही देर में सांसद महुआ माझी हमारे साथ जुड़ेंगी। अजय आलोक जी, राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि वो गृहमंत्री अमित शाह की काल्पनिक बातों में कोई रुचि नहीं रखते हैं। वो ये बताएं कि पैलेट गन, गोली हालांकि वो कह रहे हैं, चलाने का आदेश किसका था?
2: देखिए, कैच पॉइंट सबसे बड़ा है अंजना जी कि लीडर ऑफ अपोजिशन कहता है संसद के परिसर में खड़ा होकर, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ऑफ कोर्स वी नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू वर नेवर इंटरेस्टेड। आप कभी, आपकी रुचि ही नहीं थी राजनीति में आने की। भाई साहब, पूरा देश जानता है। 2009 का समय याद कीजिए अंजना जी, आप रिपोर्टिंग करती थी, अंधा आंदोलन शुरू हुआ था, कांग्रेस सत्ता में लौटी थी, अंधा आंदोलन, उसके बाद बाबा राम आंदोलन, बहुत जोर से चर्चा पहली कि मनमोहन सिंह को छोड़ के राहुल गांधी को नेतृत्व संभालना चाहिए। कांग्रेस के अंदर भी चर्चा उठी कि राहुल गांधी को नेतृत्व संभालना चाहिए। इवन कि एनडीए के अंदर खाने में चर्चा होने लगी कि ज़्यादा हम लोग इसको नैतिक समर्थन नहीं दें, राहुल आ जाएंगे, नया नेतृत्व आ जाएगा, युवा नेतृत्व आ जाएगा। क्या हुआ? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये आदमी पीछे हट गया। जब अपनी पार्टी मुश्किल में थी, अपनी पार्टी पे पूरा भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा था, सामने का आके खड़ा होना था, नेतृत्व संभालना था, ये आदमी भाग गया। रणछोड़, इसको कहते हैं रणछोड़। उसके बाद लगातार कांग्रेस के हर टाइम में आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 14 का चुनाव हारे, विदेश चले गए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। 17 यूपी हारे, नॉट इंटरेस्टेड। 19 हारे, नॉट इंटरेस्टेड। बस संसद के पहले आके कुछ ना कुछ बवाल खड़ा करना है, कभी रफेल का, कभी पेगासस का। एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की बीमारी हो चुकी है जो 2018 से चली आ रही है। मैं 18 से बोल रहा हूँ और आज ये प्रूव हो रहा है कि अगेन ये कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लीडरशिप क्या होती है पता है? इसीलिए कांग्रेस का विक्टन हो रहा है। जो 1952 में 44.8% 45% वाली पार्टी आज 21.2% पे आके रुक गई है, मोर देन हाफ द वोट। व्हाई? We are not interested. गजब कमाल की चीज है। अब देखिए, इंटरेस्ट क्या होता है राजनीति में। 2013 में डिसरे में थी बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी का विरोध हो रहा था, नीतीश जी छोड़ के चले गए गठबंधन, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व दिया। नेतृत्व ही नहीं दिया, एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी की पहली बार 40 साल के बाद एक सरकार बनाई और उसके बाद लगातार हर विधानसभा चुनाव में जहां जहां हम नहीं थे वहां फुटप्रिंट एस्टैब्लिश करते चले गए, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो।
1: ये भी पहली बार हुआ है कि आपको एक आंदोलन के दबाव में एक मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, ये भी पहली बार हुआ है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी, इसका अर्थ ये नहीं,
2: बिल्कुल नहीं, कोई नहीं नहीं नहीं। अब मैं बताता हूं क्यों।
1: तो किसके, राहुल जी के दबाव में लिया?
2: आपको विपक्षी का एग्जांपल देके समझाता हूं। आपने धर्मेंद्र प्रधान का, तो आपने धर्मेंद्र प्रधान का की चिट्ठी पढ़ी इस्तीफा के लिए, उनका एक पोस्ट पढ़ा, उसमें साफ लिखा था इस आंदोलन का फायदा उठा के देश विरोधी शक्तियां और जो राष्ट्र विरोधी हैं वो हावी होने की कोशिश कर रही थी, आंदोलन को कहीं ना कहीं रोकना था, इसलिए मैंने इस्तीफा देना जरूरी समझा। और ये साबित कब हुआ? जब पंजाब में 9 टेररिस्ट पकड़े गए, पंजाब पुलिस ने पकड़ा, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की सूचना पर इन 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है जो स्टूडेंट का भेष धर के जंतर मंतर गए थे ब्लास्ट करने, और दिल्ली पुलिस की सजगता के कारण इनको वापस लौटना पड़ा और हमने अरेस्ट किया। नतीजा क्या हुआ? आम आदमी की पार्टी की सरकार ने 2 दिन में अमृतसर पुलिस कमिश्नर का तबादला कर दिया। ये अब हम नहीं कह रहे, यह आम आदमी पार्टी द्वारा शासित अमृतसर पुलिस कमिश्नर का बयान है ऑन रिकॉर्ड।
1: जो मैं लौट रही हूं आपके पास, लौट रही हूं।
2: सवाल सबसे बड़ा ये नहीं आता, पैलेट गन बस 10 सेकंड में खत्म करता हूं। पैलेट गन कर रहे थे पूरे आज तक के रिपोर्टर वहां पे खड़े थे, पूरे मीडिया, हर तरह की नेशनल इंटरनेशनल मीडिया खड़ी थी। वो पैलेट गन जिसको लगा था वो सिर्फ राहुल गांधी के पास पहुंचा। मैं भी जानता हूं, आप भी जानती हैं, पैलेट गन चलती है तो वाइडर ट्रैजेक्टरी में चलती है, एक आदमी को नहीं लगेगी, कम से कम एक पैलेट गन हिट करती है 30 आदमियों को,
1: ठीक,
2: बाकी कहां गए? एक ही पहुंचा राहुल गांधी जी के पास।
1: तो आपकी सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि पैलेट गन नहीं चला है?
2: गलती क्यों होता है?
1: वी आर नॉट इंटरेस्टेड। सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है कि
2: कोई गोली नहीं चली है, कोई गोली नहीं चली है।
1: चलिए ठीक है,
2: कोई गोली नहीं चली है।
1: सुप्रिया जी
2: झूठ बोलते हैं कि जनता
1: में चली है, इसको काउंटर करने का। हालांकि आरएमएल की रिपोर्ट हमने भी दिखाई थी, लेकिन उसमें जो शख्स जो अस्पताल में एडमिट हुए थे उनके अनुसार ये जानकारी दी गई थी, लेकिन पेलेट गन का जिक्र था। मेडिकल रिपोर्ट मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में भी दिखाई थी, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी आपके पास आ रहे हैं और पहला सवाल यही कि गोल पोस्ट आप लोग क्यों चेंज कर रहे हैं? पहले कहते थे नीट पर चर्चा करो, उसके बाद हुआ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो तब चर्चा करेंगे, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो नहीं, अब अमित शाह ये बताएं कि और कहां बताएं वो, मतलब कहां पे उनको ये बयान देना है? सदन में नहीं देना है कि गोली चली नहीं चली किसका आदेश था?
3: आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सर्वप्रथम तो मेरा नमस्कार। मैं हतप्रभ हूं कुछ बातें सुनकर और उनका जवाब अभी मैं दूंगी। पौने चार मिनट बीजेपी के प्रवक्ता बोले, लेकिन सर्वप्रथम क्योंकि आपने अमित शाह जी पर डायरेक्ट सवाल पूछा है, देश के गृह मंत्री हैं, मैं पूछना चाहती हूं 20 दिन से सदन चल रहा है, आज शुरू हुआ है क्या सदन? पैलेट गन चली इसका हवाला रिपोर्ट्स दे रही हैं। पहले जितेंद्र सिंह ने सदन में डिनाई किया, फिर इस सरकार ने माना चली और अब ये फिर से डिनाइल करेंगे टीवी पर बैठकर और झूठ बोलेंगे। जिसका आंख गया, जिस लड़की का कान गया, जो एक लड़की वेंटिलेटर पे पहुंची वो किसके चलते पहुंची? अमित शाह जी से कोई राष्ट्र के नाम संदेश नहीं मांग रहा है। उन्होंने चिट्ठी लिख के कहा आज दिन में 3 बजे से कल दिन में 3 बजे तक बहस हो। क्यों हो भाई? नीट की बहस हो चुकी है, आप कानून लाए थे, उस पर दोनों तरफ के सांसद बोले, दोनों सदनों में बोले, वो बहस हो चुकी है। आपसे सिंपल सवाल है और सदन की प्रक्रिया होती है, स्टेटमेंट देने का मतलब होता है, स्टेटमेंट देने से पहले सर्कुलेट होता है। आपसे एक स्टेटमेंट की गुजारिश है, सारा देश आपसे पूछ रहा है और 30 सेकंड में उसका जवाब मिल सकता है। क्या पैलेट गन आपके आदेश से चली? इसके दो ही जवाब हो सकते हैं अंजना जी। हाँ, अमित शाह कहें हाँ मेरे आदेश से चली, अगर ऐसा है
1: तो कहां बोलना है?
3: तुरंत देना चाहिए क्योंकि देश के युवाओं पर पैलेट गन चलाने का दुस्साहस। एक मिनट रुक जाइए, मैं बोल रही हूँ, दो ही सवाल है उनके सामने, दो ही जवाब है। क्या पैलेट गन आपके आदेश से चली? अगर वो हाँ कहते हैं तो वो दोषी है, उन्होंने बर्बरता की युवाओं के साथ, उनको रिजाइन करना चाहिए। अगर वो कहते हैं नहीं मेरे आदेश से नहीं चली, तो पैलेट गन किसके आदेश से चली? अगर इस देश का गृह मंत्री जानता ही नहीं है तो वो बिल्कुल विफल है, ही इज इनकॉम्पिटेंट टू बी द होम मिनिस्टर। दोनों सूरतों में वो उस पोजिशन पर बने रहने लायक ही नहीं है जो सरदार पटेल जहां पर बैठते थे। अमित शाह को स्टेटमेंट देना है, राष्ट्र के नाम संदेश में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। सिंपल सवाल है,
1: कहां पे देना? यही तो मैं पूछ रही हूँ,
3: चली या नहीं चली,
1: कहां पे देना ये जवाब?
3: पूछना चाहती हूँ
1: ये जवाब कहां पे देना है?
3: संसद की जो संसद की प्रक्रिया होती है अंजना जी, यहाँ पे मासूमियत ना बीजेपी दिखाए ना कोई और दिखाए, संसद की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत स्टेटमेंट देने की प्रक्रिया में स्टेटमेंट सर्कुलेट होता है। 24 घंटे का डिस्कशन क्यों मांग रहे हैं अमित शाह? नीट पर तो डिस्कशन हो चुका है, क्या नीट पर आप डिस्कस करिएगा? आप एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर उस सवाल का जवाब देने के बजाय आप राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहते हैं, कोई इंटरेस्टेड नहीं। और पहली बार सदन चलते हुए अमित शाह ने एजेंसीज को, ANI, PTI और INS को बुलाकर बाइट दिए, क्योंकि वो ये समझ गए। और ये छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात का अंत करूंगी, उनको लगा विपक्ष बोल रहा है, बोलता रहेगा, 20 दिन से नादारत थे अपने, कह रहे मैं चेंबर में बैठता था, चेंबर से सदन चल रहा है, इस देश के चुने हुए सांसद सदन में बैठे, आप चेंबर में बैठकर क्या कर रहे थे? आइए सदन में जवाब दीजिए। आप रणछोड़ बने भाग रहे थे, आप रणबांकुर तो है नहीं, आप तो दुम दबा के भाग गए। अरे क्यों आप भागे भागे फिर रहे? आप मकर द्वार से आने के बजाय शार्दुल द्वार से निकले जा रहे हैं कि भैया कोई पकड़ ना ले। मैं सिंपल सी एक बात कहती हूं और वो बात यह है कि जब इनको फीडबैक आने लगा कि हाथ से सिचुएशन निकल चुकी है, जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा खड़ा हो गया सवाल पूछ रहा है, तो बेचारे क्या करते, आकर बोल रहे हैं मैं तैयार हूं। आप तैयार डिस्कशन के लिए? देयर इज नो डिस्कशन रिक्वायर्ड। एक स्टेटमेंट देना आपको, स्टेटमेंट सर्कुलेट करिए, सदन के पटल पर आकर वो स्टेटमेंट दीजिए। दोनों प्रक्रियाएं अलग है, जो सदन की कार्रवाई समझते हैं, जानते हैं, वो ये जानते हैं। और एक मैं छोटी सी और भी बात अंजना जी आपके माध्यम से कहना चाहती हूं। आपने अपने शुरुआती स्टोरी में दिखाया कि बीजेपी के लीडर्स आउटरीच कर रहे हैं जेनजी को, ऐसी ही एक आउटरीच पुष्कर धारमी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कर रहे थे, लाइव चल रहा था हर प्लेटफॉर्म पर बीजेपी के। उसमें एक बच्ची खड़ी हुई, उसने कहा उसने ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड जीता और उसके बाद वो आगे खेलने ही नहीं जा पाई क्योंकि उससे 1.5 लाख की घूस मांगी गई। सारा लाइव डिलीट कर दिया गया, मुख्यमंत्री ने कहा बैठ जाओ कोई बात नहीं, बैठ जाओ, उसको बिठा दिया गया, सारे वीडियो डिलीट कर दिए गए। क्यों ऐसा किया गया? आप बच्चों के भविष्य की बात करिएगा, बच्चे खड़े होकर आपसे पुस्तक और पोषण की बात कर रहे हैं। आज का वीडियो है अंजना जी, इधर उधर का नहीं, आज का वीडियो है, मैहर, मध्य प्रदेश के मैहर, जहां पर ये 22 साल से सत्ता में है, वहां पर बच्चे को नमक रोटी मिल रही है और उत्तर प्रदेश से दो बार से सत्ता में है वहां पर सूखा चावल हरदोई में खाने को मिल रहा है, ये इनकी असलियत है। इन बातों का जवाब देंगे, इधर उधर की बात ना करें। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन एड्रेस टू द नेशन, ये असलियत है।
1: अब अजय आलोक जी जवाब दीजिए, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं, कैसे महुआ जी भी आ गए हैं।
2: अब यहां पे भी गोल पोस्ट चेंज होने लगा है ना। बात हो रही थी नीट, बात हो रही थी संसद पे चर्चा, गई मैयर, गई पुष्कर सिंह धामी और पता नहीं कहां कहां घूमेंगी। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है अंजना जी, सिंपल समझिए, क्यों नहीं चर्चा चाहते हैं। आज अमित भाई ने ये भी कहा अपने स्टेटमेंट में माननीय गृहमंत्री जी ने कि मैं बताऊंगा कि ये चर्चा क्यों नहीं चाहते हैं। ये इसी से डर है, क्योंकि चर्चा शुरू हुई थी राम मंदिर चढ़ावा चोरी, चर्चा शुरू हुई नीट 20 तारीख एजिटेशन, चर्चा शुरू हुई जंतर मंतर एजिटेशन। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अगर चर्चे में आ गया तो युवराज कहां से बोलेंगे, ग्रे मैटर की कमी जो थ्योरी नहीं ना, जितना जवाब दिया जाएगा उतना ही ना बोल पाएंगे, क्योंकि इतिहास अगड़े मुर्दे निकलेंगे, वर्तमान की चीजें भी निकलेंगी, कैसे कैसे अमेरिकन आ गए उस प्रोटेस्ट में वो भी निकलेगा, आम आदमी पार्टी के कैसे 9 टेररिस्ट पकड़े गए वो भी निकलेगा, राष्ट्रविरोधी नसरुद्दीन शाह से लेकर शमाना आदमी से लेकर सबको अपना मॉरल सपोर्ट देने आ गए, सब कुछ बातें होंगी। कोई एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया तब बताओ क्या करेंगे, फंस जाएंगे भैया, छोड़ दो चर्चा ही मत करो। कितने प्यार से बोल रही है सुप्रिया जी, कोई चर्चा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, स्टेटमेंट दीजिए। प्रक्रिया होती है तो प्रक्रिया यही ना होती है कि विपक्ष अपने सवाल भेजता है, उस सवाल पे स्पीकर डिस्कशन तय करता है,
1: और जिस मंत्री का सवाल होता है वो मंत्री उसका जवाब देता है।
2: प्रक्रिया यही स्टैंडर्ड है, नई प्रक्रिया कहां से होगी, माई वे और हाईवे नहीं ना चलेगा।
1: ठीक है, जब जवाब सुन लीजिए सुप्रिया जी।
3: अंजना जी मैं तो इंटरवेंशन करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, देश की जनता तय करेगी। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बैठा है, लाइव वीडियो में लड़की ने बताया नेशनल के बाद मैं खेल नहीं पाई क्योंकि मुझसे 1.5 लाख की घूस मांगी गई। ये गोलपोस्ट बदलना है, एक बच्चे को सूखी रोटी और नमक मिल रहा है ये गोलपोस्ट बदलना है, सूखा चावल बच्चों को खाने को हरदोई में दिया जा रहा है ये गोलपोस्ट बदलना है। असल में तो दिक्कत क्या है, सिलेबस में इनके जेंजी था, सिलेबस के बाहर से जैन अल्फा आ गया, जैन अल्फा हमीरपुर पहुंच गया उत्तर प्रदेश में डीएम के कार्यालय पर, सड़क नहीं बनेगी हम जाएंगे नहीं। जयपुर में छात्रों ने आके बाहर कहा जब तक पंखा नहीं लगेगा तब तक हम हटेंगे नहीं। जो मूक बधिर छात्र हैं वो तक अपने पीने के पानी की डिमांड की करने लगे। ये हुआ, युवाओं ने क्या किया, युवाओं ने रास्ता दिखाया, युवाओं ने निर्भीकता से सरकार से सवाल पूछा, और आज जैन अल्फा भी इनसे सवाल पूछ रही है। और यहां पर बैठे हुए लोग बच्चों के साथ हुई इस बर्बरता, बच्चों के कुपोषण, बच्चों के अन्याय पर कह रहे हैं गोल पोस्ट चेंज करना। अगर ये गोल पोस्ट चेंज करना है तो यही गोल पोस्ट रहेगा जहां पर आपकी अकर्मण्यता, आपकी विफलता दिखाई जाएगी। और अंजना जी मैं एक छोटी सी बात यहां पर फिर से कहना चाहती हूं, ये तथ्य आपके दर्शकों तक पहुंचे, ये सरकार कितनी सीरियस है। गृहमंत्री जी इस्तीफा देना या बयान देना तो बाद में करेंगे। विनीत जोशी इस देश के शिक्षा मंत्री थे, जब धर्मेंद्र प्रधान को बचाने की कवायद की जा रही थी तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया था, उनकी जगह नरेश गंगवार को लाया गया, उन पर सब्सिडी का मामला आ गया, उनको हटाया गया, उनकी जगह दीप्ति गौर मुखर्जी को शिक्षा सचिव बनाया गया, लेकिन कहा गया ये विनीत जोशी से टेक ओवर कर रही हैं। तो इस दौरान देश का शिक्षा मंत्री कौन था ये कौन बताएगा। और अंजना जी एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूं, और ये भी बात कहनी जरूरी है, इन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कि गलत तत्व घुस गए इसलिए इस्तीफा दिया। तो इनके मंत्री गलत तत्वों से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री गलत तत्वों के लिए रील बना रहे हैं, अराजक तत्वों से प्रधानमंत्री
1: विनीत जोशी मंत्री कब रहे
3: हैं, मैं जानना चाहती हूँ। ये देश के विनीत जोशी तत्व कह रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ,
1: विनीत जोशी आप सचिव कह रही हैं मंत्री कह रही हैं आप बार बार।

0: खिला रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ ये देश के युवाओं को जोशी गलत तत्व कह रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ।
1: विनीत जोशी आप सचिव कह रही हैं, मंत्री कह रही हैं आप बार बार?
0: सचिव सचिव
1: गलती से निकल गया होगा, गलती से निकल गया होगा। सुप्रिया जी
0: की जगह दीप्ति गौर मुखर्जी आई हैं।
1: ठीक है हाँ वो गलती से निकल गया होगा, लेकिन मैं बस एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, जितना पैशनेटली आप बात कर रही हैं, एक बार उस बच्चे के लिए भी बोल दीजिए जो वहां पर दो बच्चों की तबीयत बहुत बिगड़ गई रांची में, उतना ही पैशनेटली बोल दीजिए उनको भी अस्पताल ले जाने की नौबत आई रांची में। वैसे ही देवेंद्रनाथ महतो भी आईसीयू में है इस वक्त, तो वो गुस्सा जो है जेंजी के लिए वो वहां पर क्यों गायब हो जाता है? सुप्रिया जी
0: बिल्कुल गायब नहीं हो जाता। जब मेरे लीडर ने, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने बोल दिया मुझे किसी भी कीमत पर कोई भी तरह का बल बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो झारखंड में हो या हमारी किसी और सरकार में, तो मैं उसी पैशन से बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी मैं? युवा चाहे झारखंड में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे बीजेपी शासित किसी राज्य में हो, युवा के ऊपर बल पूर्वक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।
1: अगर पुष्कर सिंह धामी, ठीक है अगर पुष्कर सिंह धामी के लाइव शो में एक बच्ची बता रही, और जल्दी जल्दी पूरा कीजिए
0: बात। अंजना जी दो चार पेपर लीक नहीं हुए हैं, 152 पेपर लीक हुए हैं बीजेपी की नाक के नीचे, उसका ब्यौरा कब दिया जाएगा, उसका जवाब कब आएगा? उतने ही पैशन से मैं पूछना चाहती हूँ, 7.5 करोड़ छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ा है, 152 पेपर लीक करके यहाँ बैठकर ज्ञान बांचा जाएगा? ये आएंगे हमें
1: अजय आलोक जी जवाब दीजिए। अजय आलोक जी
0: थोड़ी शर्म करो,
1: आपको इसमें क्या कोरिलेशन नहीं दिख रहा है? ठीक है अजय आलोक जी, आपको इसमें क्या कोरिलेशन नहीं दिख रहा है? एक सेकंड अगर बच्चों को मिड डे मील में ढंग का खाना नहीं मिल रहा है, दाल की जगह पानी मिल रहा है, चावल के साथ नमक, रोटी के साथ नमक, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सब लिंक्ड है? जैन अल्फा अगर कह रहा है पंखा नहीं है, स्कूल के लिए रास्ता नहीं है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये लिंक्ड है? अगर एक बच्ची लाइव टेलीकास्ट में पूछ रही है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मिस्टर धामी से कि भाई ऐसे पैसों की कमी की वजह से मैं टैक्वांडो में आगे नहीं जा पाई, तो ये लिंक्ड नहीं है? ये जैन अल्फा, जैन जी, उसके एस्पिरेशंस, महत्वाकांक्षाएं, आपको लिंक्ड नहीं लग रहा है?
2: मैं इस चर्चा के विषय में ये बात बोल रहा था, लिंक सब कुछ है अंजना जी, बिल्कुल मेरा ये मतलब नहीं है। दूसरी बात, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अगर लाइव शो में ये पूछ रहा है, तो ये दिखाता है ना कि हमने सवाल पहले से नहीं दिए हुए हैं, स्टेज पे बुला के पहले से नहीं रखा हुआ है कि हाँ बताओ तुम्हें क्या कहना है, आई वॉन्ट टू लिसन टू यू, बताओ जरा जनता को बताओ। इस तरह की गूंज हम नहीं करते हमारे शो में, हमारे में अगर मुख्यमंत्री या मंत्री कोई बात करता है तो सीधे सीधी जनता उससे पूछ सकती है क्या दिक्कत है। दूसरी बात बीच में क्यों बोल रही है, फिर उछलने लगी, रुकिए आराम से। दूसरी बात, कहां पे अगर एक जगह जैन अल्फा ने कहा कि हमारे कक्षाओं में पंखे नहीं लगे हुए हैं तो कार्रवाई की गई, डीओ सस्पेंड हो गया और पूरे स्कूल का रेनोवेशन हुआ है। अगर हम करेक्शन नहीं करेंगे, अगर हमारी गलतियों को कोई बताएगा तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ये नहीं कि हम उससे भागते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कोई 100% परफेक्ट होता है, 100% परफेक्ट रहने का गुमान सिर्फ एक ही परिवार को था इस देश में, गांधी परिवार को, क्योंकि वो कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं, और उनके प्रवक्ता लोग जो हैं और उनके नेता, उनके चमचे जो हैं, हमेशा उनको सही करने में लगे रहते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूँ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, इसलिए संसद से भाग चले छोड़दास,
1: यहाँ पे मुद्दा गरम, चर्चा हजम
2: कबूल है, ऐसे ऐसे करके बाँ चढ़ाते,
0: भाषा कबूल है जो ये भाषा लगा,
1: मैंने आपने भी रणछोड़ से शुरुआत की थी, नहीं मैं चाहती हूँ कोई ना बोले ऐसी भाषा, रणछोड़ और उसके बाद से ग्रे मैटर कम है क्या है, आप लोग दोनों से मेरा निवेदन है कि आप बोलिए, अच्छा बोलिए, लेकिन कभी जरूरत नहीं पड़ता है अपनी बात को दमदार करने के लिए, दूसरे का अपमान करने की, आप फैक्ट्स पर बात कीजिए, उतनी ही बात होगी। और इस पर महुआ जी, मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ क्योंकि आप हमेशा उसी अंदाज में बात करती है। महुआ जी आपके पास आ रही हूँ, देखिए अभी भी चाहे यहाँ पर बहस हो नहीं हो, लेकिन आज भी झारखंड के बच्चे वैसे बैठे हुए हैं, और आप पर हम तो जानते हैं रांची में कैसा मौसम रहता है, कैसी उमस, कैसी बारिश, बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, महेंद्रनाथ महतो अभी इस वक्त भी आईसीयू में है, वहां का लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा है, क्यों नहीं सरकार बच्चों की बात मान रही है?
3: देखिए ऐसा है कि सरकार की संवेदना पूरी तरह से छात्रों के साथ है और हम सभी दुखी हैं इसको लेकर, लेकिन छात्रों के साथ वार्ता पहले हो चुकी थी, 98% उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है, 2% पे वो अटके हुए हैं जो सरकार के हाथ में है ही नहीं। जैसे वो सीजीएल के एग्जाम को रद्द करने की बात कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि वो हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था, वो सरकार के हाथ में नहीं है। तो छात्र अगर हरधर्मिता छोड़कर अगर सरकार के साथ वार्ता करे और उनके, देखिए आपको बता दूं कि दिल्ली और रांची में ये फर्क है कि दिल्ली में 25-30 दिन के बाद भी सरकार उनसे बात नहीं करना चाह रही थी, वहां डे वन से उनकी बात को देखते

0: इस समस्या को देखते हुए सीआईडी जांच चल रही है। 20 लोगों की गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है इतने दिनों में, और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ईडी खुद वित्तीय अनियमितताओं की जांच करे, उन्होंने अपील की है ईडी से। और कह रहे हैं
1: कि तो बच्चों की आवाज हमेशा उठाती रही, आप जंतर मंतर भी गई थी महुआ जी, आप तो जंतर मंतर भी गई थी, एक बार तो उन बच्चों के लिए बोलिए जो रात में वहां पर बैठे हुए थे और विधानसभा के बाहर लाइट बंद करके पुलिस ने उनको पीट पीट के वहां से भगाया है। ये अलग बात है कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम उनकी बातों को फेवर नहीं कर रहा है, उनकी बातें वायरल नहीं हो रही हैं, इसका अर्थ नहीं है कि उनकी आवाज नहीं आ रही है। वो रात में लगातार बैठे रहे और वो चिल्लाते रहे कि उनको मारा है जी।
0: कल देखिए प्रशासन ने कल भी बच्चियों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, वो संवेदनशील है। और दूसरी बात की जो कहा जा रहा है कि उन पर लाठीचार्ज हुआ है, दरअसल मैं तो वहां थी नहीं, मैं तो पार्लियामेंट सेशन में हूं, पर मुझे जब पता चला और कहा गया कि ऐसा हुआ है तो मैं पता करने की कोशिश की कि आखिर इस तरह का इल्जाम क्यों लग रहा है। तो ये पता चला, वहां के पत्रकारों ने ही बताया कि वहां पे जब 8 बैरिकेड तोड़कर बच्चे चले गए, पुलिस ने संयम बरता और वहां पे चूंकि विधानसभा के गेट पे चढ़ रहे थे और रात में उनकी सुरक्षा का मामला था। आप जानते हैं कि झारखंड में बहुत ज्यादा बिजली गिरती है, खुला मैदान है, चारों तरफ मैदान है, खेत है, और वहां पर विधानसभा चूंकि सत्र चल रहा है तो विधायकों के आवास भी उसी वहीं पर है। तो इनको लगा कि जो बातें आ रही थी, वायरल हो रहा था वीडियो की बंगाल से और कहां कहां से कुछ भाजपा के लोग वहां उस रैली में घुस गए थे और कुछ ऐसे चेहरे दिख रहे थे जो नहीं नहीं लाठियां नहीं चलाया गया, वो मैं बता रही हूं ऐसा कहा गया मुझे,
1: जो मैं विजुअल दिखा रही हूं ना आपके सामने, स्क्रीन है तो देख लीजिए मैम, आज तक
0: मैं उसी पर बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों ने बताया कि हम चाहते थे कि छात्रों की सुरक्षा हो, रात में अगर वो रहते तो हो सकता है कोई अनहोनी हो सकती थी, कुछ शरारती तत्व आकर उन पर हमला कर सकते थे, इसलिए उन्हें वहां से हटने के लिए बोला गया। जब वो नहीं हट रहे थे तब उन्हें खदेड़ा गया, ये बात मुझे मीडिया वालों ने ही बताया वहां के। मैं किसी अधिकारी से नहीं पूछी हूं क्योंकि हम लोग इस समय पार्लियामेंट सेशन में हैं। और दूसरी बात की उसमें आपने देखा होगा कि कई भाजपा के नेताओं के चेहरे दिखे हैं, जो हिमंता बिश्व शर्मा जी के साथ उनकी तस्वीरें हैं, भाजपा के बड़े लीडर्स के साथ हैं, कई ऐसे शरारती तत्व जो झोले लेके गए थे और झोले में पत्थर डाल के वो पुलिस की तरफ मार रहे थे, उनको रोका गया, और कई ऐसे थे पता चला कि ब्लेड चला रहे थे पुलिस के ऊपर, फिर भी पुलिस ने सरकार के आदेश के अनुरूप संयम बरता। और ये बहुत बड़ी
1: धीरेन जी जल्दी से इस पर एक रिस्पांस,
0: क्योंकि निर्देश था सरकार का कि छात्रों पर बल प्रयोग ना हो, इसलिए उन्होंने भी संयम बरता, पुलिस को धन्यवाद भी दिया है कि आपने छात्रों पर बेरहमी नहीं दिखाई, और जो भी हुआ उसके लिए हमें खेद है, अगर कोई भी छात्रों को चोट लगी या जो कुछ भी हुआ हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारी सरकार भी नहीं करती है, और हम चाहते हैं कि छात्रों के साथ भविष्य में ऐसा कभी ना हो।
1: धीरेन जी जल्दी से,
2: महुआ जी बोल रही हैं कि दो मांगे हमने नहीं मांगी, 98 मांगे मान ली है, दो ही मांग तो अंजना जी वो लोग कर रहे हैं, सीबीआई से जांच करवा दो और परीक्षा रद्द कर दो, जिसके लिए आंदोलन जिस दो मुद्दों के लिए हुआ उसको छेड़के कौन सी बातें इन्होंने मानी, ये इनकी सरकार ने मानी, लाठियां वहीं भी मुझे बोलने दीजिए, लाठियां वहां भी चलाई गई, फोड़े गए, सर फोड़ने के बाद एक रिपोर्टर और दो रिपोर्टर जाते हैं जब उनको अस्पताल देखने के लिए, तब उनके ऊपर में FIR भी होता है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी चैनल के थे, निजी चैनल के, लेकिन उनके ऊपर में FIR भी होता है रिपोर्टिंग करने पर। ये कौन सा लोकतंत्र का परिदृश्य वहां पे दिखने को मिल रहा है? और जिस तरह से सदन में चर्चा इस पर होनी चाहिए, विधानसभा के अंदर में चर्चा होनी चाहिए और उसी तरह से लोकसभा के अंदर में चर्चा होनी चाहिए। अब राहुल गांधी जी कहते हैं कि 20 सेकंड में इसका उत्तर देना चाहिए, जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है, हाँ या ना में सदन चलता है क्या? सदन चलने का मतलब देश को बताना होता है, आप वहां पे 2 मिनट में गृह मंत्री जी का आदेश था या नहीं था, सिर्फ इतना नहीं चाहता, देश जानना चाहता है कि अगर वहां पर पत्थर चले तो उसमें कोई साजिश तो नहीं थी, क्या ये देश को जानना नहीं है? अगर वहां पे कोई असामाजिक 10-20 लोग घुस भी गए थे तो वो कैसे घुसे, कोई साजिश तो नहीं थी, यह भी देश जानना चाहता है। कोई ना कोई बहाने लगाकर सदन नहीं चलने देना।
1: लेकिन धीरेन जी अभी तो पूछा जाएगा ना कि 12 साल से आप भी सरकार में है, साजिश ही चल रही है आप लोगों के खिलाफ, अगर चल रही है तो फिर आपका IB आपकी जो एजेंसीज है वो क्या कर रही है? एक महुआ जी बोल रहे, उसके बाद से सुप्रिया जी आ रही हूँ, महुआ जी जल्दी से एक रिस्पॉन्स, महुआ जी बच्चे कह रहे हैं CBI जांच करो, पता नहीं क्यों आपकी सरकार CBI जांच से इतना डर रही है।
0: जी मैं मैं बता रही हूँ आपको, मैं कारण बता रही हूँ। देखिए जेपीएससी 1 और 2 में भी बहुत गड़बड़ियां हुई थी, जिसमें भाजपा की सरकार थी 17-18 साल तक।
1: बच्चे नहीं मान रहे ना,
0: हुई थी कि बड़े
1: बच्चे नहीं मान रहे मैम, बच्चा नहीं मान रहा
0: ना, मैं बता रही हूँ, सुन लीजिए। उस समय जेपीएससी, सुनिए, जेपीएससी 1 2 में हुई गड़बड़ी भाजपा के कार्यकाल की जांच अभी तक चल रही है, उसका कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। और भाजपा के सहयोगी दलों के नेताओं के रिलेटिव अभी भी नौकरी कर रहे हैं, उन पे केस चल रहा है सीबीआई का। इतना लंबा वक्त गुजर गया, कई कई साल गुजर गए, सीबीआई का कोई रिपोर्ट नहीं आया, और जो अपराधी हैं या जो इस पे शामिल है उनके खिलाफ चल रहा है। और 152 जो अभी तक पेंडिंग पेपर लीक हुआ है पूरे देश में, उसमें कई केसेस सीबीआई के पास हैं जिनका अभी तक जीरो कन्विक्शन है।
1: महुआ जी पॉइंट टेकन
0: कर सकते हैं।
1: महुआ जी, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में रिपोर्ट दिखाई थी कि सीबीआई ने जब जब जांच की है पेपर लीक की, तो कंक्लूजन पर नहीं आया है। उनका कन्विक्शन रेट जीरो के बराबर है पेपर लीक के केसेस में। लेकिन बच्चे अगर जिद कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं ना कि आपकी सरकार, आपकी सीआईडी, आपकी सरकार पर आरोप होगा तो सीआईडी क्या करेगी? क्या ये सच नहीं है कि खिंगियाते जिनको आप, जिनके खिलाफ आखिरकार 2 करोड़ के करप्शन के मामले में जिनको पद से हटाया गया है, वो बहुत करीबी थे आप लोगों के, उनको स्पेशली अपॉइंट किया गया था जेपीएससी का हेड। तो सुनिए ना, बच्चों को समझा दीजिए ना, आप ही पर तो है कि आंदोलन खत्म कराइए, आप बच्चों को समझा दीजिए, उनको क्यों नहीं भरोसा हो रहा आप पर, ये इशू है ना, इशू ये नहीं है। धीरेन जी, सिर्फ 2 लाइन का रिमार्क प्लीज, मैं जा रही हूँ उसके बाद से सुप्रिया जी और आलोक जी के पास।
2: ठीक है, ये बात माने ना माने, वहां पे बिजली काट दी गई, और आपके माध्यम से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जंतर मंतर पर किसी पत्रकार के ऊपर में एफआईआर हुआ था क्या? लेकिन झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह छुपाना चाहते हैं? क्यों पत्रकारों को दिखाने से रोकना चाहते हैं? लोकतंत्र में बच्चे अगर शांतिपूर्ण रूप से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी बातें मीडिया में आनी चाहिए। ठीक है, आप उस पर सफाई दे सकती हैं, आप पार्टी के सांसद हैं, प्रवक्ता हैं, लेकिन कम से कम लोकतंत्र में ये तो है ना, चौथा स्तंभ को आप उसको एफआईआर के डर से डराएंगे।
1: ठीक है, चलिए सुप्रिया जी, जल्दी से सुप्रिया जी इशू पर वापस आते हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि पूरा देश इंतजार कर रहा था ना, इतना बड़ा यह आंदोलन हुआ, झारखंड में भी बच्चे कह रहे हैं, जगह जगह पर बच्चे खुद ही अपनी तस्वीर अपने कॉलेजेस की, स्कूल्स की दिखा रहे हैं, देश की संसद में एक चर्चा तो हो, 24 घंटे की चर्चा नहीं हो, क्यों क्यों ना हो, क्यों ना उसमें हर कोई बोले? अखिलेश जी भी पूछ रहे हैं कि ये क्या हो गया, क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है?
3: तो यही तो हम कह रहे हैं, 20 दिन से नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं? इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर क्या इतना नैतिक साहस नहीं है कि वो देश के सदन में आ सके? ये अनप्रीसीडेंटेड है। पूरा सेशन बीत गया और प्रधानमंत्री जी ना एक बार राज्यसभा में, ना एक बार लोकसभा में आए, और वही हाल गृह मंत्री अमित शाह जी का है। प्रधानमंत्री ने तो पहले भी ऐसा किया है, अमित शाह जी तो फिर भी आके सामना कर लेते थे, इस बार वो भी घबराए हुए थे क्योंकि उन्होंने बर्बरता देश के युवाओं पर कर दी थी। और मैं यहां पर एक बात बोलना चाहती हूं अंजना जी, बड़ी सिंपल बात है, और जेन जी ना बड़ी सिंपल बातें समझती है। पैलेट गन चली, आंख गई, कान गया, बच्ची एक वेंटिलेटर पे पहुंची, सवाल इस बात का, लोगों ने अपने हाथों पे निशान दिखाए, कमर पे दिखाए, पैरों पे दिखाए, लड़कियों के साथ बर्बरता हुई, जो दिल्ली पुलिस ने डंडे के साथ एक महिला के प्राइवेट पार्ट्स में किया वो सब ने देखा, और निराशाजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। इसी पर तो हम सवाल पूछ रहे हैं, ये सब किसके आदेश पर हुआ, हाँ या ना? आपके आदेश पर पैलेट गन चली या नहीं चली? या तो आंसर हाँ है या आंसर ना है, दोनों सूरतों में आप इस देश के गृहमंत्री बनने लायक नहीं है। लेकिन मैं यहां पर एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है बिल्कुल ये झारखंड की हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को विश्वास मिले और इस आंदोलन को खत्म करें, उनको सैटिस्फाई करें। लेकिन उसी के तहत ये बात भी बोलनी जरूरी है, और मैं तो आज तक देखती हूं, और आज तो मैं 2 दिन से ट्रैवल कर रही थी तो सिर्फ आज तक देखती हूं, मैंने तो आज तक पर ही तमामों रिपोर्ट देखी, जहां पर वहां पर कुणाल प्रताप और जो रविंदर पासवान है, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, आज तक में मैंने उनको कहते हुए देखा, वो कह रहे हैं अराजक तत्व घुस आए हैं। मैंने वीडियोस आज तक पे देखे जहां पर कुछ दिखाया जा रहा है कि बीजेपी के लोग बंगाल से आ गए, क्यों आए हैं ये सब लोग? ये तो झारखंड का प्रदर्शन था, शांतिपूर्वक हो रहा था, क्यों नहीं होने दिया गया?
1: ये वीडियो कहां पे दिखाया गया
3: जी? वो बड़ा निराशाजनक है। मैं इधर उधर
1: बंगाल वाला वीडियो कहां पे,
3: मैंने वीडियो फीड पे देखा है, मैंने देखा है रविंदर ये जो बंगाल वाला वीडियो है, मैंने पूरे सोशल मीडिया पर देखा है, मैंने आज तक पर कुणाल प्रताप का इंटरव्यू 4 दिन पहले देखा है, वो कह रहे हैं अराजक तत्व आ रहे हैं। और एक चीज मैं जानना चाहती हूँ अंजना जी, ये बड़ी सिंपल सी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, सीबीआई ने तो 17 फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन किया है पिछले कुछ सालों में, एक भी कन्विक्ट नहीं हुआ है। अरे 2024 में संजय मुखिया जो मुख्य आरोपी था नीट पेपर लीक का, वो चला गया क्योंकि सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट ही नहीं दे पाई, उसके खिलाफ सबूत नहीं जुटा पाई। उस सीबीआई पे कोई कैसे भरोसा करे? मैं चाहती हूं कि बच्चों की मांग मानी जाए, बच्चों को शांत करना, उनको विश्वास में लेना हमारा दायित्व है और हमारी सरकार ये कर रही है। हम बात कर रहे हैं बच्चों से, हम इनकी तरह बच्चों को भेड़िया, ढोंगी, दहशतगर्द ये सब नहीं बुला रहे और बुला सकते नहीं है, क्योंकि वो देश के युवा है, देश का भविष्य है, देश का वर्तमान है। अगर हमसे भूल हुई है, हम कान पकड़ के उनसे माफी मांगने को तैयार है। इनकी तरह नहीं उनको भेड़िया और दहशतगर्द और जनरेशन गटर बुलाए। इनके यहां तो वो लोग बैठे हैं जो हाथ में तख्ती लेके चल रहे हैं और कहते हैं जनरेशन गटर है जेंजी को, ये तो इनकी असलियत है, ये इनके लोग है। भेड़िया बुलाया, दहशतगर्द बुलाया, क्या नहीं बुलाया। और प्रधानमंत्री रात को 12 बजे रील बनाने लगे, जेंजी की लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगे, फ्रंट कैमरे से टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने लगे, मित्रों से फ्रेंड्स पर आ गए, ये तो असलियत है, ये इनका कच्चा चिट्ठा है।
1: ठीक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमने दिखाई, और शायद वही बार बार मैं कह रही हूं कि कई बार सोशल मीडिया का एल्गोरिदम इन बच्चों की आवाज को नहीं पहुंचाने देता, इसीलिए थोड़ा सुना देते हैं आपको, क्योंकि हमारे रिपोर्टर रात में पहुंचे जब, और इनको कोई बंगाल या दूसरे राज्य का आया हुआ नहीं, क्योंकि सीधा देख के ये लोग, ये बच्चे बहुत दिन से उस आंदोलन बैठे हुए हैं और ये कल क्या बता रहे हैं वो देखिए।
4: महिला पुलिस, घर में माँ बहन नहीं है, यही लोग तुम लोग पढ़ के नौकरी लिया है, घर में माँ बहन नहीं जाएंगे, ये झारखंड सरकार का जमीन नहीं है, क्योंकि लोग पुलिस वाला लोग हम लोग को इतना मार रहा, दौड़ा रहा, शर्म जैसा इसका बाल बच्चा नहीं होगा, आप कुत्तों जैसा दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, इसको कौन वोट दे के सीएम बनाया हेमंत सोरेन को। हम लोग में है, हम लोग शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन किए थे, लेकिन ये पुलिस लोग आके भागो, यहाँ नहीं रहना है, क्यों नहीं रहना है भाई, हम लोग शांति से धरना दिए, क्यों मारना अंदाजे बिना मतलब का इधर उधर मारना।
5: जिन छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उन्हें चोट आई है, वो घायल हुए हैं, किसी के पैरों में तगड़ी चोट लगी है, किसी के हाथों में सूजन आ गई है,
6: दौड़ा दौड़ा के मारा गया, निर्दय जैसे हम लोग को खेत में दौड़ा दौड़ा के गिर के कीचड़ में हमको मारा गया, सिर्फ सीधे हम लोग रोज शांति पूर्वक बैठे हुए थे, एसपी द्वारा बैठाया गया था, हम लोग बैठे हुए थे सर, लेकिन लाइट बंद करके ना बहनों के और मेरे जो भाई लोग ना उसको सुता सुता कर मारा है सर, इतना मारा ना, और साथ में हम लोग भी मारा, दौड़ा दौड़ा कर तीन मिनट दौड़ाया है सर,
7: एकदम संवैधानिक रूप से कोई हल्ला नहीं, कोई शोरगुल नहीं, तो आप ही बताइए ना सर कि हम लोग ऐसा क्या कर रहे थे।
5: पूरा पैर में सूजन आ गई है, ये तमाम जो छात्राएं थी इनके कपड़े बता रहे हैं कि आखिर इनके साथ वहां पर क्या कुछ हुआ शाम के अंधेरे में। ये देखिए, ये लाठी डंडो, ये लाल दिखाई दे रहा है, ये लाठी डंडों के निशान है, पैरों पर ये निशान है, और इसी के बाद आप समझ सकते हैं कि पुलिस ने जब शाम को लाठीचार्ज किया है तो किस तरह कार्यवाही की है।
6: लड़की देखा सर, ना टीचर देखा, ना स्टूडेंट देखा, रात का अंधेरा में मौका मिला और ना कोई इशारा दिया सर, एकदम इतना दौड़ा दौड़ा के मारने लगा, लगा कि हम लोग आतंकवादी हैं, एकदम
8: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है इस लड़की सबको।
9: लोग सर खेत में घुस जा रहे थे, लोग पुलिस खेत में घुस घुस के मारी है लड़की लोग को, लड़की लोग को गाली दे के मारा गया है सर।
10: इसी दिन देखने के लिए बनाए थे हम लोग, इसलिए उनको सत्ता दिए थे, इसलिए उनको कुर्सी दिए थे, ताकि झारखंड का जो भविष्य है उनको अच्छा से देख रेख कर सके। और
1: ये लोग तो वहां के छात्र थे ना सुप्रिया जी, इनकी आवाज कहीं दब कर रह गई है इनके साथ जो हुआ है रात में। छोटा सा रिस्पॉन्स, उसके बाद से अजय आलोक जी आ रही हूं।
3: तो मैं तो कह रही हूं गलत हुआ है, मुझे मत बोलिएगा, मैं तो कह रही हूं गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, किसी भी छात्र के खिलाफ, किसी भी युवा के खिलाफ कोई भी बल का यूज बिल्कुल गलत है, इसकी बिल्कुल निंदा होती है, हम बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करते। आप सर मेरे लीडर ने कह दिया, फिर मैं कौन सी नुक्ताचीनी कर रही हूं, यहां पे बैठी हूं, बिल्कुल गलत है, मेरा भी इनके लिए पसीजता है, लेकिन बीजेपी का
11: देखिए अंजना जी, दो तीन बातों पे प्रकाश डालना बहुत जरूरी
1: है। सबसे पहली बात,
11: सिद्धांत को अपॉइंट किसने किया?
1: हम तो माफी मांगने को तैयार हैं, वो कह रही हैं।
11: किससे माफी मांगेंगी? ये तो 1975 के बाद से लगातार माफी मांग रही हैं, उसके बाद भी गलती कर रही हैं। 75 में इमरजेंसी किया, 84 में सिख दंगा किया, उसके बाद लगातार कुछ ना कुछ करते जा रही, कितना माफी मांगेंगी? माफी मांग के थक जाएंगी, 7 जन्म माफी मांगते रहेंगे, कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। अब मैं दो तीन बातें बस कह रहा हूँ झारखंड के बारे में। ख्यांते को किसने अपॉइंट किया, किसके कहने पर? ये शोध का विषय है। मैडम के कहने पर अपॉइंटमेंट हुई थी ख्यांते साहब की, ठीक है ना? ख्यांगते साहब ने क्या किया? एक एजेंसी जिसको यूपी सरकार ने बैन किया, झारखंड सरकार ने बैन किया।
1: कौन मैडम?
11: सोनिया गांधी, ऑब्वियसली, इसमें कौन सी नई बात है? सोनिया गांधी,
1: इसका क्या प्रूफ है?
11: डाउट नहीं, इसलिए राहुल गांधी जी को गुस्सा चढ़ा, इसलिए झारखंड नहीं गए, इसलिए इसलिए नहीं गए झारखंड छात्रों के पास, क्योंकि ज्ञानते जी को क्यों अरेस्ट किया गया, ज्ञानते जी को क्यों अरेस्ट किया गया, सीबीआई प्रोब क्यों नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि सीबीआई प्रोब जैसे ही होगी, आपको मैं बता रहा हूँ, ये चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है, जहाँ हर छात्रों से नौकरी के लिए 75 लाख से 1.5 करोड़ रुपए लिए गए, ये घोटाला जाएगा कम से कम 10,000 करोड़ से ऊपर, और इसकी आंच जाएगी हर जगह, इसलिए सीबीआई नहीं चाहिए। मुझे बताइए झारखंड आंदोलन में 5.5% की आबादी है ईसाइयों, एक भी पादरी दिखा आपको झारखंड के आंदोलन में, एक भी पादरी दिखा, एक भी फिल्म स्टार दिखा आपको झारखंड के आंदोलन में, एक भी राजनीतिक दल दिखा? हम गए थे, हमें मना कर दिया कि राजनीतिक दल हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, छात्रों ने हमें मना कर दिया, नहीं घुसने दिया किसी राजनीतिक दल को। आपको उमर खालिद को रिहा करो ये नारे आपने सुने, 370 बहाल करो ये झारखंड में आपने सुना, उमर खालिद FCRA नहीं होगा ये आपने सुना झारखंड में, ये सारे नारे हमने सुने जंतर मंतर में। अभी आप खुद कह रही हैं एल्गोरिथम नहीं था मेटा का, मेटा का एल्गोरिथम कहां से मिलेगा, टेररिस्ट कहां से मिलेंगे झारखंड के आंदोलन में?
1: अंजना जी आ रही हूं पूरा करने दीजिए।
11: आंदोलन में मेटा नहीं आता है, इंस्टाग्राम नहीं आता है, एल्गोरिथम नहीं आता है, बाकी पार्टियां नहीं आती हैं, ठीक है ना, इन लोग को एक रत्ती सेंसिटिविटी नहीं है। महुआ जी गई वहां पर जंतर मंतर में, महुआ जी 18 दिन से छात्र बैठे हुए थे, पहले बात नहीं हो सकती थी, मारा छात्रों को, उस छात्रों ने मार खाने के बाद भी एक पत्थर नहीं चलाया पुलिस पे, क्या इसकी तारीफ नहीं होनी चाहिए?
1: ठीक है, लेकिन आपके पास अगर प्रूफ है अजय आलोक जी तो आप प्रूफ दे दीजिए। अजय आलोक जी ठीक है, आपने अपनी बात कह ली, आपने सोनिया गांधी पर सीधा आरोप लगाया है,
11: सीबीआई
1: और कह रहे हैं कि उनकी वजह से खेंगियाते को अपॉइंट किया गया जेपीएससी का है।
11: ईडी आपको मैं बता रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, ईडी बाय डिफैक्टो आ चुकी है इसमें, ईडी को सीएम ने ऑर्डर नहीं किया था, क्योंकि 2 करोड़ की घूस पकड़ी गई है कि उन्होंने 2 करोड़ का घूस लिया, तो ईडी बाय पीएमएलए कानून अपने आप आ गई।
1: सुप्रिया जी
11: ये मामला कोर्ट में जाएगा, राज्य सरकार नहीं करेगी तो कभी कोर्ट सीबीआई ऑर्डर करेगा, और मैं बता रहा हूं ये घोटाला चारा घोटाले से बड़ा है, तत्कालीन चारा घोटाले से, जहां ये सब इन्वॉल्व है, इसलिए सीबीआई से भाग रहे हैं। आज संजय सेठ ने आपके चैनल पर बैठ के केंद्रीय मंत्री ने साफ बोला है कि सीबीआई इंक्वायरी छात्रों की बिल्कुल जायज मांग है, क्योंकि छात्रों को
3: बोला नहीं। सुप्रिया मेरा नाम
11: यहाँ एक साल से नहीं चल रहा भाई, 3 साल से चल रहा है।
1: अजय जी जवाब,
11: 2024 से चल रहा है।
1: क्या सुप्रिया जी इसलिए भी राहुल गांधी नहीं अमित शाह को संसद में बोलना देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि अब जंतर मंतर का काट रांची में मिल गया है बीजेपी को, क्योंकि वो बार बार रांची को कोट करेंगे कि रांची में ये हुआ रांची में वो हुआ, क्या वजह है?
3: नहीं बिल्कुल नहीं, ये फिजूल की बात है, और फिजूल की बात इसलिए है क्योंकि यहां पर इन्होंने एक बड़ी रोचक बात कह दी। ये कहते कहते आवेश में बह गए और कहने लगे कि देश विरोधी नारे लग रहे थे जंतर मंतर पर, तो नरेंद्र मोदी किसके लिए रील बना रहे हैं, वो रील बनाकर किसको माफ कर रहे हैं जंतर मंतर वालों को, अपने ही है वो तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं देश विरोधी ताकतें वहां पर थी, नरेंद्र मोदी अपने को कह रहे हैं, कौन इसमें से सच बोल रहा है? बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, धैर्य रखिए सुनने का, अगर आप चाहते हैं जांच हो
1: सेंशिएट
3: करिए यहाँ पर, इनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं बोलूंगी नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, बोल लीजिए पहले, ये बोल ले फिर मैं बोलती हूँ। यहां पर आकर इन्होंने सोनिया जी का नाम ले लिया, क्या प्रूफ है इनके पास? जबानी जमा खर्च करना है, कोई प्रूफ नहीं, आके कोरी बकवास करनी है। चार चार मंत्री झारखंड सरकार के एक समिति बनकर छात्रों से बात कर रहे हैं, छात्रों को इनवाइट किया, छात्रों ने कहा अपने मुंह से अराजक तत्व घुसाए हैं, छात्रों ने कहा पुलिस ने बहुत संयम से काम लिया, मुझे फिर भी
1: वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, आप सभी का बहुत धन्यवाद। ये चर्चा ऐसी जारी रहेगी क्योंकि लगता नहीं है ना तो संसद में कोई रास्ता दिख रहा है, और वहां छात्रों का आंदोलन भी इसी तरह से चल रहा है, बारिश में भीगते हुए भी वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ, ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएंगे आखिर क्यों पति पत्नी के रिश्तों में सब्र टूट रहा है और एक दूसरे की कब्र खोदने पर उतारी। इसके बाद आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और देश के दूसरे राज्यों के मजदूरों से तो बैर है लेकिन हजारों घुसपैठिए गैर नहीं, और आखिर में इंटरनेशनल यूथ डे पर आपको बताएंगे कि जिस देश में विधायकों के फर्नीचर पर करोड़ों खर्च हो जाते हैं वहां युवाओं को हॉस्टल में बेड तक नहीं मिलता, जमीन पर सोने को मजबूर, वहां भी सांप डस लेता है, 3 छात्राओं की मौत हो गई है, देखते रहिए आज तक।

0: बिजली का बिल पेड।
1: तो वह मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
2: कैसे?
1: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
2: इतना माही वे।
3: बहुत टाइर्ड हो गई।
4: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट्स नट बाइट्स।

0: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
1: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: पापा
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया
4: है। हां ओ ला भाई मेरा बैट,
6: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
7: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
8: ओ बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: आगे आगे।
15: अरे उधर
14: उधर किधर?
15: करेक्ट करेक्ट।
16: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: इन एसोसिएशन विद
18: सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
6: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

रूस मस्त है और यूक्रेन पस्त है। 4.5 साल के युद्ध के बाद एक तरफ जहां यूक्रेन अपने शहरों में तबाही का मंजर देख रहा है, वहीं मिसाइलों की कमी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका और यूरोप से लेकर खाड़ी देशों के अपने हर उस दोस्त से मदद की गुहार लगा रहे हैं जहां से उन्हें मिसाइलों की मदद मिल सकती है। उधर रूस अगर इतने लंबे युद्ध के बाद भी मस्ती के मूड में है तो नॉर्थ कोरिया की दोस्ती की वजह से। किंग जोंग उन हर मोर्चे पर रूस की मदद कर रहे हैं, फिर वो चाहे सैन्य मोर्चा हो या फिर रोजमर्रा की कारोबार की जरूरतें। अब खेतों से लेकर किचन और फैक्ट्रियों तक में काम करने के लिए लेबर की कमी हुई तो नॉर्थ कोरिया ने पूरी की पूरी ब्रिगेड ही रूस के लिए रवाना कर दी। ये ताजा तस्वीरें देखिए, महिलाओं को फ्लाइट से रूस भेजा जा रहा है, फिर वहां पहुंचने के बाद उन्हें अलग अलग कामों में लगा दिया जाता है। मानवाधिकार से जुड़े संगठन लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें बाहरी लोगों से दूर रखा जाता है और उन पर नॉर्थ कोरियाई अधिकारी पूरी निगरानी रखते हैं। अब इस मिसाइल को देखिए, यूक्रेन का आरोप है कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइलें लगातार उसकी जमीन पर मौत का खेल खेल रही हैं। नॉर्थ कोरिया रूस को सैनिक और हथियार सप्लाई कर रहा है और बदले में उसे मिलता है तेल, करेंसी और मिलिट्री टेक्नोलॉजी। यूक्रेन की खुफिया जानकारी के मुताबिक 2024 में नॉर्थ कोरिया ने करीब 15,000 सैनिक रूस के कुर्स्क में उतारे थे ताकि आगे बढ़ती यूक्रेनी सेनाओं को रोका जा सके। इनमें से हजारों सैनिक रिजर्व बटालियन के तौर पर वहीं रुक गए थे। पिछले साल भी नॉर्थ कोरिया ने 148 KN-23 और KN-24 बैलिस्टिक मिसाइलें रूस को दी थी। पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन अकेले दम पर रूस से लड़ नहीं सकता। ऊपर से नॉर्थ कोरिया की रूस से दोस्ती ने उसकी नाक में दम कर रखा है। अब जेलेंस्की न सिर्फ इस खतरे से आगाह कर रहे हैं बल्कि दक्षिण कोरिया से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। ओडेसा, सुमी, खार्कीव और कीव में रूसी मिसाइलें बर्बादी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। कई बेकसूर लोगों की जान जा रही है, लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, इमारतें जल रही हैं, वाहन नष्ट हो रहे हैं और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में ही रूस ने 56 बैलिस्टिक मिसाइलों समेत कुल 61 मिसाइलें दागी हैं। जाहिर है नॉर्थ कोरिया के हथियारों से जल्दी ही तबाही की आग में तब्दील हो सकती है। आज तक के रूप में।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपने मूसलाधार बारिश के बीच छात्रों के आंदोलन की आग देखी। आपने विधानसभा घेराव के दौरान इन छात्रों का हौसला देखा। आपने छात्रों पर रांची पुलिस की ज्यादती देखी। छात्रों पर लाठियां बरसते देखा और उन्हें एक एक कर घायल होते देखा।
2: झारखंड के युवा को रुला रहे हो,
3: पूरे देश के युवाओं पे लाठी चले,
2: झारखंड के युवा को रुला रहे हो, लाठी चार्ज कर रही है पुलिस। हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
1: रांची में दो दिन पहले क्या क्या हुआ इसे पूरे देश ने देखा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सहानुभूति के बजाय पुलिस का बचाव करते दिखे।
4: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है। अध्यक्ष महोदय, जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आता।
1: सोरेन यहीं ठहर जाते तब भी गनीमत होती, लेकिन अब वो जुल्म पर उतर आए हैं, बदले पर उतर आए हैं। खबर है कि रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
5: घड़ी में छात्रों की संख्या बढ़ने लगती थी, वो आज अब आधे से भी कम होने लगी है। ज्यादातर छात्र या तो जा चुके हैं या इस समय धरनास्थल पर मौजूद नहीं हैं। बीती रात प्रशासन यहां पर आया। छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई, और अब इस उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोग की?
6: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी और सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी। अब इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था। जो हम लोग का लाइट वो जल रहा था जो जनरेटर से हम लोग का चल रहा था।
1: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। सरकार ये बात समझती है, इसलिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये दबाव उस सच को नहीं दबा सकता जो एक एक कर सामने आ रहा। सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली।
7: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही राज्य की सीआईडी के सामने अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने सीआईडी से पूछताछ में बताया है कि कैसे अलग अलग परीक्षाओं में लाखों रुपए में नौकरी की डील हुई। अभय तिवारी ने यह बताया है कि उसने किन परीक्षाओं में करोड़ों की राशि की वसूली की, कैसे एजेंट्स के जरिए जो नियोक्ता एजेंसियां थी उनको लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में सीआईडी अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि सीआईडी की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनका यह कहना है कि सीबीआई जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक रांची।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: मुद्दा गरम, चर्चा हजम। सदन की कार्यवाही पर आप देख रहे थे आज हल्ला बोल में बहस, हम ब्रेक नहीं ले रहे, अब देखिए सात तक मारिया।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हंगामे के बीच होम मिनिस्टर का ऑफर, कहा सदन में हो जाए चर्चा, मैं दूंगा जवाब। राहुल गांधी बोले बहस नहीं, सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर। मॉनसून सत्र में नहीं पारित हो सका एफसीआरए बिल, विपक्ष की मांग के बाद जेपीसी में भेजा गया। राज्यसभा में खड़गे नड्डा के बीच नोकझोंक। राहुल गांधी पर बरसे नितिन नवीन, कहा राहुल की सोच लोकतंत्र विरोधी, विपक्ष ने मुद्दे को भटकाया, तिरंगा रैली में भी की शिरकत। झारखंड छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में एबीवीपी। कर्नाटक में विभागों का बंटवारा, चीफ मिनिस्टर शिव कुमार ने अपने पास रखा फाइनेंस, केएच मुनियप्पा को मिला समाज कल्याण मंत्रालय। शो की शुरुआत संसद में जारी डेडलॉक से करते हैं। आज भी संसद में जमकर हंगामा हुआ, विपक्ष ने आज भी अमित शाह जवाब दो के नारे लगाए, लेकिन इसके साथ ही आज अमित शाह खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं। बावजूद इसके विपक्ष का विरोध जारी है और संसद ठप है।
1: रोज की तरह आज भी संसद के दरवाजे तो खुले मगर हालात नहीं बदले, वैसा ही हंगामा, वैसे ही नारेबाजी। हाँ, आज एक बात ये हुई कि गृह मंत्री ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार है। राहुल गांधी गोल पोस्ट कर रहे हैं।
2: सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है।
1: जंतर मंतर प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह के बयान की मांग कर रहे राहुल गांधी को ये एक तरह से सीधी चुनौती थी। अमित शाह के इतने स्पष्ट बयान के बाद राहुल गांधी का जवाब आया कि हमें उनकी कल्पनाओं में दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि गृह मंत्री ये बताएं कि गोली किसने चलवाई।
3: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students?
1: यानी विपक्ष और सरकार का ये टकराव फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के सांसद अब राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं।
4: जहाँ जहाँ मोदी विरोध है, जहाँ जहाँ देश का विरोध है, जहाँ जहाँ कम्युनल टेंशन है, वहाँ वहाँ राहुल गांधी जी नजर आएंगे और उनकी पार्टी नजर आएगी। ये जिन्ना से भी बदतर पार्टी के नेता है।
5: राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होने लायक नहीं। देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी है जो इस लोकसभा में गृह मंत्री जी के वक्तव्य को या गृह मंत्री जी के जवाब को लेक्चर कह रहा हो, तो उसको इससे साफ है कि इस लोकतंत्र के या इस पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई आस्था नहीं।
1: इस वार पलटवार के बीच आज संसद के भीतर और संसद के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। मॉनसून सत्र में बस एक दिन का समय बचा है और जो हालात हैं उससे लग नहीं रहा कि कल भी चर्चा हो पाएगी। आज तक ब्यूरो।
0: उधर संसद में आज सीपीआईएम के सांसद ने बीजेपी सांसद पर गंभीर आरोप लगाया। केरल से आने वाले जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया कि सुष्मिता देव ने उन पर कमेंट किया। अब बात जब बहुत आगे बढ़ी तब सुष्मिता देव ने सफाई दी है।
6: शी रिपीटेडली कॉल्ड मी लुंगी वाला
1: सांसद जॉन ब्रिटास के बीजेपी सांसद सुष्मिता देव पर लगाए गए इन आरोपों ने राज्यसभा का माहौल गर्म कर दिया। ब्रिटास का कहना है कि उनके भाषण के दौरान सुष्मिता देव ने बार बार लुंगी वाला कमेंट पास किया।
7: बिकॉज शी हैड नो बिजनेस टू कम फ्रॉम हर सीट एंड सिट बिहाइंड माय सीट टू डिस्टर्ब मी व्हाइल आई वाज प्रेजेंटिंग द स्टैट्यूट रेजोल्यूशन। ही रिपीटेडली कॉल्ड मी लुंगी वाला इट्स अ डेरोगेटरी स्लर व्हिच इज बीइंग यूज्ड टू स्टीरियोटाइप द साउथ इंडियंस।
1: जॉन ब्रिटास ने सुष्मिता देव के बयान के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नोटिस दिया है। वहीं मामले पर सुष्मिता देव की सफाई भी आई है।
8: एंड आई एम वेरी क्लियर दैट व्हाट वाज सेड ऑन द माइक ऑफ विच आई हैव अ वीडियो वाज डिवाइसिव डेरोगेटरी एंड आफ्टर दैट व्हाट वाज फर्दर सेड टू मी डिवाइड्स द नेशन एंड लेट अ मैसेज नॉट गो from the house that we divided on the basis of culture, religion, language.
1: उधर बयान पर हंगामा मचा तो किरेन रिजिजू भी बचाव में आए। वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि सदन को सुष्मिता देव का पक्ष भी सुनना चाहिए।
9: If there is anything which is objectionable or which is unbecoming of the character of the nation or the dignity of the house, I would like to request honorable chairman to call the member to your chamber and listen what happened. We don't call it lungi, it is dhoti, and we respect it, and we don't subscribe to such statements. But at the same time, what Sushmita Dev has to say, that should be also brought on record. And so please allow Sushmita Dev to speak.
1: अब मामले में सियासत तेज है, जहां विपक्ष बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है
10: और किसी की वेशभूषा को लेके सवाल उठाना, उसको अपमानित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एक रिवाज बन गया है। आप उसको लेके अपमानजनक शब्द सदन के अंदर बोलेंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
11: ये लोग अटर के नाम पर और मतलब कलर के नाम पर और रंग के नाम पर और खाना के नाम पर डिविजन होना चाहिए, इसलिए हमने ये समस्या उठाया, बुट्टासी ने ये समस्या उठाया सदन के अंदर।
1: बहरहाल इन आरोपों ने संसद में नॉर्थ और साउथ को लेकर सियासत को गर्म कर दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: रांची में चल रहा छात्र आंदोलन अब धीमा पड़ रहा है। सोरेन सरकार अब हर कीमत पर छात्रों के आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि छात्र जहां आंदोलन कर रहे हैं वहां बिजली काट दी गई। इस मामले पर भी अब जबरदस्त सियासत हो रही है।
12: परीक्षाओं में धांधली को लेकर 19 दिन से धरने पर बैठे छात्रों का आंदोलन अब कमजोर पड़ने लगा है। बेहिसाब उमस उनके शरीर को तोड़ रही है, छात्रों की संख्या कम हो रही है और इसी बीच झारखंड सरकार आंदोलन को खत्म कराने पर उतर आई है। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई भी काट दी गई है।
13: बीती रात को जब पुलिस और प्रशासन इस मैदान में पहुंचा तो सबसे पहले बिजली काट दी गई। आसपास के पूरे इलाके में जो स्ट्रीट लाइट है उन सब में अंधेरा हो गया और उसके बाद छात्रों के लिए मुश्किल बड़ी ये कि आखिर ऐसे में कैसे हो। हालांकि जैसे सुबह हुई छात्रों का जो मंच है और इसी के साथ यहाँ पर जो बिजली पंखे हैं उसके लिए उन्होंने जनरेटर का सहारा लिया। यहाँ जनरेटर लगाए गए हैं, उसको उन्होंने कनेक्ट किया है ताकि उस उमस भरी गर्मी में वो मौसम को मात दे सकें।
12: इधर सोरेन सरकार नहीं चाहती कि आंदोलन आगे बढ़े, उधर अब तक की सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली है। उधर झारखंड में आंदोलन चल रहा है, इधर दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। राहुल गांधी ने आज रांची के छात्रों का पक्ष लिया।
14: झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ, झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ।
12: सवाल ये है कि क्या रांची का छात्र आंदोलन सफल होगा, क्या हेमंत सोरेन की सरकार आंदोलन को बीच में ही खत्म करा देगी। रांची से सत्यजीत कुमार, आशुतोष और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अब बात नोएडा के जेवर एयरपोर्ट की, जहां एक ही बरसात में एयरपोर्ट परिसर में पानी भर गया। एयरपोर्ट के भीतर जल जमाव की तस्वीरें सामने आई तो विपक्ष ने सरकार पर तंज कसा और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
1: ₹11,200 करोड़ की लागत से बने हुए जेवर एयरपोर्ट का हाल देख लीजिए। वैसे तो यहाँ से जहाज उड़ते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति ऐसी है कि नाव भी चल जाए तो अचंभा। नोएडा के नए एयरपोर्ट पर इतराने वाले इस ताल तलैया को देख लें कि बना तो था हवाई अड्डा, मगर एक बरसात नहीं से झील बना दिया है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में पानी भरने का वायरल वीडियो जैसे ही सामने आया, विपक्ष ने सरकार को घेरने में वक्त नहीं लिया। अखिलेश ने लिखा, अब क्या एयरपोर्ट पर नाव चलेगी, जहां बीजेपी सरकार वहां महाभ्रष्टाचार।
15: एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेस बना रहे हो, गड्ढिया हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है क्या सुनने को मिली? और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है।
1: अखिलेश यादव के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के दावों पर सवाल उठा दिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से बना है और पहली बारिश में ही मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण की पोल खोलता नजर आया। हालांकि थोड़ी देर में स्थिति सामान्य हो गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बयान जारी कर कहा कि ज्यादा बारिश होने की वजह से पार्किंग एरिया के रास्ते में पानी भर गया था, जिसे तुरंत कार्रवाई करते हुए 30 मिनट से कम वक्त में हटा दिया गया। इस दौरान ट्रैफिक को दूसरे रास्ते से भेजा गया और किसी भी फ्लाइट में कोई रुकावट नहीं आई। सवाल ये है कि इतनी लागत से बने एयरपोर्ट में जलभराव हुआ ही, क्या एयरपोर्ट परिसर में जल निकासी के पुख्ता इंतजाम नहीं है? आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात तिरंगा यात्रा की, जहां देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। एनडीए सांसदों ने दिल्ली में तिरंगा रैली निकाला। सभी सांसद भारत मंडपम से मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक बाइक से तिरंगा लेकर निकले। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई।
1: यह दिल्ली में एनडीए के सांसदों और मंत्रियों की तिरंगा यात्रा है। एनडीए के सांसदों ने भारत मंडपम से तिरंगा रैली की शुरुआत की और मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम तक बाइक से तिरंगा लेकर निकले।
16: तिरंगा जो है ये हमारा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के आकांक्षा और महत्वाकांक्षाओं का भी प्रतीक है। ये रैली सेलिब्रेशन है, नमन है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी कर्तव्य पथ पर आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर उनके साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी रही।
17: 2011 में जब कश्मीर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा लहराने में सवाल उठते थे तो भारत के करोड़ों युवाओं के दिल में दर्द होता था, पर मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर को उस पूरे 370 धारा से समाप्त कर आज कश्मीर में तिरंगा आन बान और शान के साथ लहराता हुआ नजर आ रहा है।
1: पानी के ऊपर चलते शिकारे और शिकारा पर तिरंगा। तिरंगा यात्रा की ये खूबसूरत तस्वीर कश्मीर से आई है, दूसरी तस्वीर शोपिया से आई है। लोग शान से तिरंगा लेकर निकले यहाँ। एलओसी पर गुरेज इलाके में भी बच्चियों ने तिरंगा लहराया। गांदरमल में भी देशभक्ति गीतों की धुनों पर झूमते हुए लोगों ने तिरंगा लहराया। घाटी में तिरंगा रैली की ये तस्वीरें कश्मीर में आए बदलाव की गवाही देती हैं। अब बिहार के दरभंगा की तस्वीरें देखिए। यहाँ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुजफ्फरपुर में भी भारत माता का जयकारा गूंजा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई यहाँ भी भव्य यात्रा। वैसे तो हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त को ही शुरू हो चुका है, लेकिन शहर शहर से लगातार तिरंगा यात्रा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस साल तिरंगा यात्रा का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: अब बात बाजार की, आपको बताते हैं कि क्या रहा बाजार का हाल और सोने चांदी की कीमतों पर क्या असर पड़ा।
12: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 188 अंक टूटकर 77,966 और निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,436 पर बंद हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितता और टाटा ग्रुप के शेयरों में बिकवाली के चलते घरेलू शेयर बाजार पर दबाव रहा। TCS में सबसे ज्यादा 3.7% की गिरावट देखने को मिली। वहीं शेयर बाजार में गिरावट के बीच रुपए में मामूली मजबूती देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे मजबूत होकर 95.33 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और ग्लोबल मार्केट में जोखिम को लेकर चिंता के चलते रुपए पर दबाव रहा। हालांकि विदेशी निवेशकों की खरीदारी से रुपये को कुछ सहारा मिला। उधर सराफा बाजार में आज तेजी का रुख रहा और सोना 158 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर 1,52,961 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 46 रुपए बढ़कर 2,35,398 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितता और बाजार में बढ़ी चिंता के बीच सुरक्षित निवेश की मांग से सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली।
0: और अब बात टाटा सन्स से आई बड़ी चौंकाने वाली खबर के साथ। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने आज इस्तीफा दे दिया। ये खबर इसलिए अहम है क्योंकि 18 अगस्त को टाटा सन्स की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है। उससे पहले चंद्रशेखरन के इस इस्तीफा की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है।
1: टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने आज 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 18 अगस्त को होने वाली टाटा सन्स की एजीएम से ठीक पहले आया है। हालांकि वे फरवरी 2027 तक पद पर बने रहेंगे। मैंने टाटा ग्रुप में अपने प्रोफेशनल करियर के 40 साल पूरे कर लिए हैं। इस प्रतिष्ठित संस्थान में योगदान देने का मौका मिलना मेरे लिए बेहद संतोषजनक रहा और इसके लिए मैं आभारी हूँ। एन चंद्रशेखरन साल 2017 से टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। इससे पहले वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के CEO रह चुके हैं। 63 साल के चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल को लेकर टाटा ट्रस्ट के साथ सहमति नहीं बन पाई थी। नए कारोबारों में भारी निवेश, उनके प्रदर्शन और टाटा सन्स के भविष्य को लेकर मतभेद इस फैसले की बड़ी वजह बने। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में किसान परिवार में जन्मे चंद्रशेखरन अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही एक तमिल माध्यम वाले सरकारी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अप्लाइड साइंस में ग्रेजुएशन किया, फिर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूदा NIT त्रिची से MCA की डिग्री हासिल की। 1987 में एक इंटर्न के तौर पर टाटा समूह से जुड़े और फिर चेयरमैन तक का सफर तय किया। एन चंद्रशेखरन वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले कॉरपोरेट अधिकारियों में शामिल हैं। टाटा सन्स की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उनका कुल वेतन 158,66,00,000 रुपए सालाना था। फरवरी 2026 में टाटा सन्स बोर्ड ने चंद्रशेखरन के अगले 5 साल के कार्यकाल की सिफारिश की थी। बाद में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने इसका विरोध किया और 2 साल का कार्यकाल देने की वकालत की। अब ये देखना है कि एन चंद्रशेखरन के जाने के बाद टाटा सन्स में ये जिम्मेदारी किसे मिलती है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात पाकिस्तान की, जहां एक बार फिर इमरान खान की मौत की अफवाहों ने सियासत गर्म कर दी है।
12: क्या इमरान खान जिंदा हैं या फिर पाकिस्तान की सेना ने उनकी जान ले ली? अमेरिका में बैठे पाकिस्तानी पत्रकार ने दावा कर दिया कि अडियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अब नहीं रहे।
18: तीन ऑफिसर्स ने अलग अलग तरीकों से ये इजहार किया है that Imran Khan is no longer with us and that is the reason why the Pakistan Army and the Army Chief are keeping him from the rest of the country.
12: जैसे ही ये खबर फैली वैसे ही इमरान खान की बहनें अडियाला जेल की ओर बढ़ गईं। वो इमरान खान से मिलना चाहती थीं, लेकिन पूरे दिन इंतजार करवाने के बाद भी उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया।
19: उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई सियासी बात बाहर ना आके करें तो हम उनको कह रहे हैं कि बहनों की मुलाकात करवा दें। हमने पूरी तरीके से इत्तेफाक किया है बहनों ने, कोई बात
12: बहनों की इमरान से आखिरी मुलाकात करीब 9 महीने पहले हुई थी और इस मुलाकात में इमरान ने कहा था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर

0: आसिम मुनीर उन्हें मरवा देगा।
1: उनकी जिंदगी खतरे में है, ठहरो। जिंदगी इसलिए खतरे में, जो आखिरी बात में मुलाकात थी, पहली चीज उन्होंने कहा था कि ये नहीं कहा कि मैं मुझे शक है मार देंगे, मुझे पहले कहा कि आसिम मुनीर मुझे मार देगा। लेकिन ये क्लियर थी, तो ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि नीयतें खराब है।
0: अब इमरान की सेहत को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। अब इमरान खान को लेकर फैली इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है, वो पाकिस्तानी सेना को साफ करना होगा। आज तक ब्यूरो,
2: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
3: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
4: In association with
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: आगे आगे,
7: अरे उधर उधर
6: गया। करेक्ट करेक्ट,
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
2: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
3: लायन डेट नट बाइट्स।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
9: बिजली का बिल पेड
10: मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
11: कैसे?
10: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
11: इतना माही वे।
12: पापा।
13: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
14: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
13: छक्का?
14: सब कैशलेस हो गया।
15: टाटा AIG है तो भरोसा है।
16: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
17: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
18: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
19: In association with Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
20: Punjab National Bank, Bharose ka Prateek.
19: Vimal, bolo zubaan kesri. Hint, bade aaram se.
21: Jitni gaadiyan hain, ye pura rela Vidhan Sabha ja raha chhatron ka.
22: Jab tak wo CBI jaanch nahi karayenge, tab tak hum log is pe date rahenge.
21: Chhatron ko piche hatane ki koshish ki ja rahi hai. Water cannon khatam ho gaye, fire tender khatam ho gaye.
23: Protester hain, dekhiye unko kaise chot lagi hai.
24: Vidhan Sabha ke kareeb ye pahunch chuka hai.
25: Police kaafi der tak rok nahi saki chhatron ko aur chhatra dekhiye.

0: विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
1: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है इस लड़की सर को।
2: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।

0: कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 पर बड़ा हादसा हुआ। अचानक पहाड़ से भारी भरकम पत्थर गिरने लगे। इस हादसे की चपेट में एक कार आ गई। किरण बाजार और बराड़ के बीच ये घटना घटी। पत्थरों की चपेट में आकर कार के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी पत्थरों के नीचे दब गई। हादसे के वक्त कार में दो लोग सवार थे। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। कांगड़ा में भी आफत की तस्वीर दिखी। वहां लगातार बारिश के बीच रानीताल बाथू पुल के पास जबरदस्त भूस्खलन की घटना हुई। इस घटना में फोर लेन हाईवे का एक हिस्सा और कांगड़ा शहर के बाहरी इलाके में कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे बाधित हो गया। कांगड़ा शिमला नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। मौके पर दोनों तरफ गाड़ियां फंसी रही। बाद में ट्रैफिक चालू करने के लिए भारी मशीनों से मलबा हटाया गया, तब जाकर हालात संभले। हिमाचल के सोलन में भी तबाही की तस्वीर दिखी। शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग 205 पर सोलन में एक चलती कार पर बड़ी चट्टान गिर गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को IGMC शिमला रेफर किया गया है। कुल्लू और हिमाचल के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इसका असर वहां की ब्यास और पार्वती नदियों में दिख रहा है। नदी के जलस्तर में उफान है और किनारों पर खतरा बढ़ा हुआ है। और अब एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ की, जहां अचानक आई बाढ़ में 7 जिंदगियां फंस गईं। ये तस्वीरें कठुआ के माहीचक इलाके की। वहां उन नदी में उफान बढ़ा तो नदी के बीच एक टापू पर लोग पानी से घिर गए। उन सभी को बचाने के लिए पुलिस और SDRF ने तेज बचाव अभियान चलाया। इस अभियान के बाद कठुआ में अचानक आई बाढ़ के दौरान 7 लोगों की जान बच पाई। सोलन से राजेश शर्मा, कांगड़ा से अशोक रैना और कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: जनवरी 2025 मंच पर लिखी तारीख नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री का मुस्कुराता चेहरा, हाथ से रिमोट दबाया, एनिमेटेड पर्दा हटा। 1.5 साल पहले कुछ इस तरह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। लेकिन महज 18 महीने पहले जनता का 121 करोड़ रुपए लगाकर जनता के लिए जो फ्लाईओवर बना, जनता को जिसकी सौगात दी गई, जनता के पैसे से बने, जनता के उसी फ्लाईओवर पर विकास के दावे गड्ढों में बदलते दिखने लगे हैं। इसीलिए रवीश पाल सिंह आज तक संवाददाता भोपाल से इस सच से आपको खबरदार कर रहे हैं। 3 किलोमीटर के फ्लाईओवर पर जहां 121 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहां ये हाल कैसे हो गया? क्या ये चूक है, लापरवाही है या फिर भ्रष्टाचार? जहां बारिश को जिम्मेदार ठहराकर बचा जाता है। और कहानी सिर्फ फ्लाईओवर की नहीं, फ्लाईओवर के नीचे MP नगर की सड़क का हाल भी देखिए। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे हैं, हिचकोले खाती गाड़ियां, गड्ढों से बचने के लिए कलाबाजी करते ड्राइवर और हादसे का डर। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सड़क टूट क्यों गई, गड्ढे क्यों हो गए, सवाल है कि नई सड़क इतनी जल्दी कैसे टूटने लगी है। अगर सड़क निर्माण की गुणवत्ता सही थी तो 1.5 साल में फ्लाईओवर पर गड्ढे क्यों हो गए? और अगर जिम्मेदारों को इसकी जानकारी है तो फिर मरम्मत के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या सरकारें मानती हैं कि जनता का क्या है, वो तो गड्ढों पर भी चल लेंगे और चूं तक नहीं करेंगे? रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हंगामे के बीच होम मिनिस्टर का ऑफर, कहा सदन में हो जाए चर्चा, मैं दूंगा जवाब। राहुल गांधी बोले बहस नहीं, सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर। राहुल गांधी पर बरसे नितिन नवीन, कहा राहुल की सोच लोकतंत्र विरोधी, विपक्ष ने मुद्दे को भटकाया, तिरंगा रैली में भी की शिरकत। झारखंड छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बदलाव, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले छात्रों और शिक्षा संस्थाओं के साथ होगी चर्चा। भू माफिया के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम लाई रंग, अवैध कब्जे से 84,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन मुक्त।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं मारिया शकील। एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली आने वाली फ्लाइट के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आज तक के पास एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI2379 की मेंटेनेंस रिपोर्ट लगी है। इससे पता चलता है कि इस फ्लाइट में एक मिनट में 3 हाइड्रोलिक फेलियर के अलर्ट आए थे। ये अनुमान है कि इसी वजह से ऑटो पायलट डिसकनेक्शन हुआ होगा। सिस्टम ने इमरजेंसी डोर्स के लिए अलर्ट वार्निंग देनी शुरू कर दी थी। बड़ी बात यह है कि 3 हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट के बाद इसके बाद भी 1 घंटे 20 मिनट तक फ्लाइट हवा में थी। ये पूरी मेंटेनेंस रिपोर्ट DGCA को दे दी गई है और AIB की इसकी जांच चल रही है।

0: ये जो रिपोर्ट है जो आज तक के पास है उसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि AI-2379 जो फ्लाइट है उसकी मेंटेनेंस रिपोर्ट ये है, इससे पता चलता है कि इस फ्लाइट में एक मिनट में 3 हाइड्रोलिक फेलियर के अलर्ट आए थे। तो ये अनुमान है कि इसी वजह से ऑटो पायलट डिसकनेक्शन हुआ होगा, लेकिन सवाल ये है कि 1 घंटा 20 मिनट तक फ्लाइट ऑन एयर क्यों थी। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, डिटेल्स बताइए।
1: अरे देखिए, अगर आप ये मेंटेनेंस रिपोर्ट देखेंगे जिसको हमने क्रॉस चेक भी कराया है उन लोगों से जो खासतौर पे एयरबस का ये मॉडल उड़ाते हैं A320neo, उनके हिसाब से भी ये जो रिपोर्ट दिख रही है ये सही रिपोर्ट है, क्योंकि सारे मेट्रिक्स इसमें आपको क्रॉस चेक होते हुए दिख रहे हैं। जो डेटा जिस तरह का इसमें है कि जो फ्लाइट नंबर है, जो टाइमिंग है और इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट डिटेल्स है। अहम बात क्या है कि 3 मिनट के अंदर 11 टेक्निकल ग्लिचेस के अलर्ट, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि 1 मिनट के अंदर 3 हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट्स इस मेंटेनेंस रिपोर्ट में, पोस्ट फ्लाइट मेंटेनेंस रिपोर्ट जो है उसमें इंडिकेट कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से एक बहुत चिंताजनक स्थिति कॉकपिट के अंदर बनी होगी निश्चित रूप से। एक्सपर्ट्स हमें भी समझा रहे हैं, जिनके साथ वो लोग जो इस तरह ये जहाज उड़ाते रहे उनका भी कहना है कि आमतौर पर इस मॉडल के साथ हाइड्रोलिक फेलियर का अलर्ट आना, 2 अलर्ट का ये मतलब होता है कि आपको क्राफ्ट नियरेस्ट एयरपोर्ट में ले जाके लैंड करा देना और वहां पे पूरा एनालिसिस कराना है कि आखिरकार हुआ क्यों, क्योंकि ये रीअकरेंस का खतरा है, डर बना रहता है। तो ऐसे में 3 अलर्ट आना और 1 मिनट के अंदर ही आ जाना, बेहद ही चिंताजनक स्थिति कॉकपिट के अंदर रही होगी, जिसकी वजह से संभवतः नोज डाइव हुआ होगा, यानी कि क्राफ्ट नीचे की तरफ झुका होगा। और वो फिर आप वीडियो से जब उसको क्रॉस चेक करते हैं, जिस तरह के पैनिक का मोड ऑन बोर्ड था, फ्लाइट नीचे जाने की बात कई सारे पैसेंजर्स कर रहे थे, तो आप इसको जब आप मैच करते हैं दोनों चीजों से तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि जब 300 फीट डिप कर रहा था फ्लाइट, प्लंज किया था, तो उस वक्त ये सारी स्थिति बनी होगी। इसके साथ साथ अहम बात ये है कि जो आपके इमरजेंसी डोज हैं वो ट्रिगर हुए थे और ऑटो पायलट ऑफ हो गया था 3 हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट के इमीडिएटली बाद। ऑटो पायलट मोड जो था वो फेल हो गया था। फर्स्ट ऑफिसर को लेके भी अब बात हो रही है।
0: तो अमित, क्या सवाल ये है कि एक तरफ पायलट नशे में था और दूसरी तरफ ये एक टेक्निकल फेलियर हुआ, हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट 3 बार होना।
1: जी हमारे 2 अलग अलग चीजें निश्चित रूप से हैं, जिसके बारे में हम आज तक पे कम से कम यही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि कंक्लूजन पे अभी पहुंचना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि मैरिजुआना सब्सटेंस का मिलना डोप टेस्ट में बहुत ही चिंताजनक बात थी ये पहले से ही, और इसके साथ साथ टेक्निकल ग्लिच था, क्या कोई एयर टर्बुलेंस था, क्योंकि टर्बुलेंस शब्द का इस्तेमाल पहले किया गया था जो मिनिस्ट्री द्वारा प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया था, और अब उस शब्द से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि ये शब्द गायब हो जाएगा, क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेस की बात हमको मेंटेनेंस रिपोर्ट में दिख रही है जिस तरह से हम देख पा रहे हैं। तो इसके बाद क्या टेक्निकल ग्लिचेस एक तरफ और उसी समय पे जो PIC है, पायलट इन कमांड है, उनका मैरिजुआना में होना, उसकी वजह से डबल एजेड सूट बना ये, और आप देखेंगे उसके बाद कि 2 से 3 मिनट के बाद जिस तरह से सारी चीजों को कंट्रोल कर लिया, हाइट अचीव मेंटेन कर लिया गया, तो ये भी जो व्यक्ति उस वक्त कमांड और कंट्रोल जिनके हाथ में था, संभवतः पायलट जो फर्स्ट ऑफिसर रहे होंगे उस क्राफ्ट के, उनके हाथ में, जिनके टेस्ट में मैरिजुआना ट्रेसेस नहीं है, PIC के टेस्ट में, डोप टेस्ट में मैरिजुआना ट्रेसेस हैं, तो संभवतः उन्होंने कंट्रोल किया। अब सवाल ये उठता है हमारे यहाँ लेकिन इसमें कि उस दिन पायलट फ्लाइंग कौन था उस क्राफ्ट का, और पायलट मॉनिटरिंग कौन था, कि क्या PIC ही पायलट फ्लाइंग थे, तब तो और चिंताजनक स्थिति है, और PIC पायलट फ्लाइंग नहीं थे तो फिर ऐसी स्थिति में वो पायलट मॉनिटरिंग रहे होंगे, आम भाषा में जो हमारे दर्शक हैं उनके समझाने के लिए, जो सारा जो आप क्राफ्ट में देखते हैं कॉकपिट में सारे मेट्रिक्स को मॉनिटर करना, सारे मॉनिटर्स को पे नजर बना के रखना, ये पायलट मॉनिटरिंग का काम होता है, और पायलट फ्लाइंग जो है जहाज उड़ा रहे होते हैं, तो क्या फर्स्ट ऑफिसर जहाज उड़ा रहे थे, ये फिलहाल सवाल बना। और एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ ये कह रहे हैं कि 1 घंटे 20 मिनट तक आखिरकार ये जहाज लगातार उड़ता क्यों रहा, नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंडिंग क्यों नहीं हुई। जी
0: राइट, ये मेंटेनेंस रिपोर्ट अब DGCA को दे दी गई है और इसकी जांच भी चल रही है। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सोचिए कि आप पूरी फैमिली के साथ एक फ्लाइट में जा रहे हो और अचानक से हवा में विमान जोर जोर से हिलने लगे, आप सीट से गिर जाएं, आपके आसपास के लोग घायल हो जाएं, ऊपर कैबिन में रखा सामान नीचे गिरने लगे, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ऊपर वाले को याद करेंगे। और जब आपको पता लगे कि इस फ्लाइट को जो पायलट उड़ा रहा है वो गांजे के नशे में था, तो सोचिए क्या होगा। यही हुआ है एयर इंडिया की एक फ्लाइट के साथ, पूरी रिपोर्ट देखिए।
2: क्या एयर इंडिया के पायलट ने गांजा फूंककर 137 सवारियों की जिंदगी खतरे में डाली? गांजा फूंकने वाले पायलट पर क्या एक्शन होगा? आगे ऐसा ना हो, इसकी क्या गारंटी है? ये तस्वीरें डराने वाली हैं। 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें देखिए क्या हाल है। लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, सीटें उखड़ी पड़ी है, लोग घायल है। और ये तब का वीडियो है जब सब कुछ हो चुका था। क्या हुआ था फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में, आगे आपको बताएंगे। उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंडिंग की बात की तस्वीरें हैं। पैसेंजर घायल है, केबिन क्रू के सदस्य घायल है, किसी की आंख पर चोट है, किसी के हाथ पर, किसी के गले पर। ये सब लोग इसी फ्लाइट में सवार थे। चार अगस्त को फुकेट से दिल्ली के लिए ये फ्लाइट चली थी AI-2379। फ्लाइट जब हवा में थी तो पैसेंजर्स को अचानक से टर्बुलेंस का एहसास हुआ। फ्लाइट के केबिन में रखा सामान लोगों के ऊपर गिरने लगा, लोग अपनी सीटों से गिर गए और चोटिल हो गए। अचानक से जहाज हवा में ही 300 फीट नीचे चला गया। फ्लाइट के अंदर चीख पुकार मच गई। इस घटना में 20 यात्रियों और 4 केबिन क्रू मेंबर्स को चोटें आईं। फ्लाइट में 137 यात्री सवार थे, जिनमें 3 छोटे बच्चे भी थे और इनके अलावा 2 पायलट और 6 केबिन क्रू के सदस्य थे। अब खबर आ रही है कि इस फ्लाइट को उड़ाने वाला मेन पायलट गांजे के नशे में था। इस पायलट का दूसरा ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले पायलट का जब मेडिकल टेस्ट किया गया तो उसके शरीर में गांजे का सब्सटेंस पाया गया। DGCA ने फिलहाल प्लेन उड़ा रहे दोनों पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AIB ने कहा है कि जांच पूरी होने तक कोई नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए।
3: देखिए, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, मैंने उसको संज्ञान में नहीं लिया। अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो ये बड़ी गंभीर बात है और DGCA को इसको बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए। एयर इंडिया का जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई अभी तक, तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये बहुत ही अत्यंत संवेदनशील है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है।
4: दिस क्रिमिनल बिहेवियर, एयर इंडिया इज लायबल, दे आर क्रिमिनली, दे मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड द गवर्नमेंट मस्ट टेक एग्जेम्पलरी एक्शन अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ एयर इंडिया एंड द प्रोसेसेस ऑब्वियसली व्हिच दे फॉलो आर नॉट रोबस्ट इनफ एंड दे हैव एंडेंजर्ड लाइव्स। दिस इज क्रिमिनल बिहेवियर एंड इन फैक्ट दे मस्ट बी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट लेवीड ऑन एयर इंडिया एंड ऑल दोस कंसर्न।
2: बताया जा रहा है कि जब ये टर्बुलेंस हुआ तो ये फ्लाइट 3 मिनट तक पलटी खाती रही। फ्लाइट टर्बुलेंस का मतलब ये है कि हवाई जहाज तेज हवा के झटकों में फंस गया था और फिर अचानक से 300 फीट नीचे आ गया। यात्रियों ने दावा किया कि उड़ान भरने के 1.5 घंटे के बाद फ्लाइट में झटके लगे। सुबह का वक्त था तो यात्री सो रहे थे। अब पता चला है कि फ्लाइट का पायलट गांजा पिए हुए था। पायलट दोनों बार डोप टेस्ट में फेल हो गया है। पायलट की डोप टेस्ट में मारिजुआना यानी गांजा की पुष्टि हुई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AIB ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि विमान की ऊंचाई अचानक क्यों बदली, उस समय विमान के सिस्टम किस स्थिति में थे, मौसम और टर्बुलेंस की क्या भूमिका थी, पायलट्स ने क्या एक्शन लिया, विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड में क्या जानकारी है, यात्रियों और क्रू को किस तरह की चोटें आईं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या दर्ज है।
5: In fact, we wanted to get a direct update from Air India also on the incident, and we wanted to see how they are taking this issue from their side. And I have told time and again that from the ministry, safety in aviation is the topmost priority. There shouldn't be any compromise from any side, even the regulator or even the airlines or anyone. So this issue we have taken very, very seriously from the ministry side also. So we have just spoken to him as a preliminary task just to get an update. But I have to tell you that AIB has been given the task to continue on the investigation, and we have good confidence on AIB. So I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what action, definitive action needs to be taken on this.
2: Jis viman A320 mein kharabi aayi, वो एयरबस है और वो फ्रांस में बनता है, इसीलिए एआईबी की जांच में फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी और फ्रांस स्थित एयरबस के तकनीकी विशेषज्ञ भी मदद कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब जांच चल रही है, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन ये सवाल तो उठता ही है कि जिन फ्लाइट से हम और आप रोजाना चलते हैं उन्हें किस तरह के पायलट्स उड़ा रहे हैं और पायलट के नशे को चेक करने का क्या कोई सिस्टम है। अगर कोई पायलट नशे में पाया जाता है तो क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन होता है या नहीं। अगली रिपोर्ट देखिए।

0: अब जांच हो रही है और देखना होगा कि इस जांच का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मुख्य पायलट का ड्रग्स के नशे में पाया जाना एक बहुत बड़ी लापरवाही है। सोचिए उन 137 यात्रियों पर क्या बीती होगी जब 3 मिनट तक उन्होंने हवा में ये झटके महसूस किए होंगे। पता नहीं मन में क्या क्या ख्याल आए हैं। कई बार ऐसा लगा होगा कि आज तो बचेंगे नहीं, और ये खुद इस फ्लाइट के यात्री बता रहे हैं।
1: ये दिखता है नेग्लिजेंस ऑफ द स्टाफ जो एयरलाइंस में पायलट हैं, और नेग्लिजेंस ऑफ जो सिस्टम है, क्योंकि उनको पता है कि ये करके हम बच सकते हैं, उसीलिए उन्होंने ये किया है। उनको पूरा का पूरा ये कॉन्फिडेंस है कि हम तो निकल जाएंगे।
2: जब फ्लाइट नीचे जा रही थी तो मेरे को सबसे ज्यादा चिंता हुई बच्चों की। ये हमारे पास में जो बैठा हुआ था, मेरा दोहेता बैठा हुआ था, मैंने जोर से उसको पकड़ के बेल्ट लगाई, उसमें वो हैंडल मेरे यहाँ पे घुस के रिब्स में दो में थोड़ी चोट आई है। पर ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इतना मतलब फैमिलीज, इतने लोग बैठे हुए, 3 साल की बच्ची उछल के इतना पीछे तक चली गई, ये कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं यार। छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो जिंदगी भर के लिए हमारे बच्चे अब कह रहे हैं कि हमको बैठना ही नहीं कभी फ्लाइट में।
0: अब यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि हिंदुस्तान में पायलट्स के लिए नियम कायदे क्या है, ये कैसे जांचा जाता है कि पायलट नशे में है या नहीं। हर पायलट की प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट जांच होती है। पायलट के लिए नियम ये है कि वो उड़ान के 12 घंटे पहले तक शराब का नशा नहीं कर सकता, यानी उड़ान के दौरान शरीर में अल्कोहल की मात्रा 0 होनी चाहिए। इसके लिए प्री फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य किया गया है। इसी तरह से भारत के बाहर से आने वाली फ्लाइट के पायलट्स का पोस्ट फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट लिया जाता है।
3: विशेष में वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: बिजली का बिल पेड,
4: तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
5: कैसे?
4: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
5: पे। इत्ता माही वे।
6: एशिया कप की ट्रॉफी चुराने की हरकत के बाद दुनिया भर में फजीहत करा चुके पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी एक बार फिर सुर्खियों में हैं, जिन्हें पूरी दुनिया ट्रॉफी चोर के नाम से जानती है। वो अचानक तेहरान पहुंच चुके हैं। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से लेकर राजनीति तक अपना मजाक बनवाने वाले नकवी इस बार महाशक्तियों के बीच बिचौलिया बनने का नाटक रच रहे हैं, लेकिन तेहरान में पाकिस्तान का ये कूटनीतिक मिशन बुरी तरह फंस गया है। दरअसल मध्य पूर्व में जारी इस भीषण जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन किसी भी तरह एक डील करके युद्ध से बाहर निकलना चाहता है। इसी छटपटाहट में वॉशिंगटन से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को सीधा फोन मिलाया गया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने जनरल मुनीर से बात की, जिसके बाद मुनीर ने अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद मोहरे यानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी को 15 सूत्रीय अमेरिकी शांति प्रस्ताव थमाकर तुरंत तेहरान रवाना कर दिया। इस पूरे खेल में पाकिस्तान किसी स्वतंत्र देश की तरह नहीं, बल्कि अमेरिका और चीन अपने दोनों आकाओं के हुक्म पर दौड़ने वाले एक संदेश वाहक की तरह काम कर रहा है। अमेरिका का दबाव है कि तेल की आपूर्ति बहाल हो, तो वहीं चीन का सख्त निर्देश है कि हुर्मुज जलडब्रू मध्य को हर हाल में खुलवाया जाए। अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव में हुर्मुज को तुरंत खुलवाने और बदले में ईरान के फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के फंड्स को रिलीज कराने का लॉलीपॉप दिया गया था। तेहरान पहुंचते ही मोहसिन नकवी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची से बंद कमरों में उच्च स्तरीय मुलाकातें की, लेकिन तेहरान में बातचीत का पासा पूरी तरह पलट गया। हाल ही में कमान संभालने वाली IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नई और बेहद सख्त लीडरशिप के सामने पाकिस्तान की एक न चली। IRGC के इस आक्रामक रुख की वजह से तेहरान ने अमेरिकी प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया। ईरान ने मोहसिन नकवी के सामने अपना 10 सूत्रीय जवाबी प्रस्ताव पटक दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि हुर्मुज जलडब्रू मध्य को स्थायी रूप से तभी खोला जाएगा जब अमेरिका और इसराइल अपने हमले पूरी तरह बंद करेगा। ईरान केवल 14 दिनों के लिए जहाजों को गुजरने का रास्ता देने पर राजी हुआ है, लेकिन वो भी किसी अमेरिकी शर्त पर नहीं, बल्कि पूरी तरह ईरानी सेना की सख्त पहरेदारी में। IRGC की नई लीडरशिप के इस अड़ियल और सख्त रुख ने वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक के होश उड़ा दिए हैं। जो मोहसिन नकवी खुद को मास्टर डील मेकर समझकर तेहरान गए थे, वो ईरानी शर्तों के आगे पूरी तरह बेबस नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि दो दो आकाओं का हुक्म बजाने वाला पाकिस्तान इस गतिरोध को तोड़ पाता है, या फिर ट्रॉफी चोर के विवाद की तरह उसकी ये कूटनीतिक मध्यस्थता भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नए मजाक में तब्दील होकर रह जाएगी। आज तक ब्यूरो।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
2: Money, money, money, money, every month.
3: सोच बदलो और बैंक भी.
4: मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन. वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग एंड व्हेन आई से वी आई मीन द यंगर जनरेशन ऑफ दिस कंट्री हु शॉट दोज स्टूडेंट्स हु गेव द ऑर्डर to shoot those students, who blinded one of the students, who shot one of the students in the ear, who gave the order to beat the students with lathis, with nails, who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign. Because he is culpable. And if he did not, he should resign. Because he is incompetent. So the question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 din ke liye. 20 din ke liye gayab ho gaye. Yahan baithe the. Gaadi aati thi, jaati thi. 30 gaadiyan unke. Students should know this. 30 cars around Amit Shah. उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए. तो गुब्बारे में से गैस निकल गई. अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है. अमित शाह हैज नो करेज. द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज. ही कैन नॉट कम टू द हाउस.
5: सब ने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे, किसी ने, गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए, पूरे देश भर से. और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है. जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था. प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं. और देश भर से लोग आए वहां. आप नाम लीजिए, वो वहां पहुंचे हुए थे. और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे. चंदा सारी गायब हो गई है. एंटायर कंट्री, पूरे देश से चंदा आई थी राम मंदिर के लिए. सब ने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे, किसी ने, गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए, पूरे देश भर से. और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है. मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में. आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया. जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था. अब प्रदेश का विषय बन गया है. मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री है, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं. और देश भर से लोग आए वहां. आप नाम लीजिए, वो वहां पहुंचे हुए थे. और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे. चंदा सारी गायब हो गई है. ये क्या तरीका है?

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: विशेष में मेरे साथ आज इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब वेक्टर्स।
1: प्रेजेंटेड बाय
3: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: का दूंगा जवाब। राहुल बोले बहस नहीं, सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की शिरकत, एनडीए सांसदों ने निकाली बाइक रैली। झारखंड छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में एबीवीपी। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बदलाव, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले छात्रों शिक्षण संस्थाओं के साथ होगी चर्चा, उच्च स्तरीय कमेटी का होगा गठन। एयर इंडिया मामले में आज तक के पास मेंटेनेंस रिपोर्ट, एक मिनट में आए तीन बार हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट, 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: खबरदार करने का। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन के बीच संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था, जो अब हंगामे के बीच ही खत्म होने वाला है। लेकिन इस बीच देश में जेन जी और जेन अल्फा के मुद्दों पर खबरदार करती खबरों की रफ्तार तेज होती गई। अब हर दल एक दूसरे के शासन में बेरोजगारों, भर्तियों में भ्रष्टाचार, स्कूल व्यवस्था की हालत पर बात करने लगा है। इस बीच आज की पहली बड़ी खबर आपको हम बताएं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज फार्मेसी ऑफिसर की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 17 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। आपको याद दिला दें कि पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर परीक्षा विवादों में घिर गई थी, जहां विपक्षी पार्टियों का आरोप था कि पेपर लीक हो गया था, जबकि पंजाब सरकार का कहना था कि यह नकल का मामला था। इस परीक्षा के लिए 454 पद थे। पुलिस ने परीक्षा में हाईटेक तरीके से नकल के आरोप में 30 से ज्यादा लोगों को पकड़ा था। अब जबकि हाईकोर्ट ने फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, तो बीजेपी ने कहा है कि पंजाब में पेपर लीक पर यह कोर्ट की मुहर है।
1: पंजाब की सरकार जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी और झूठ परोस रही थी, जबकि पेपर लीक हुआ था। पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, फार्मेसी के एग्जाम में ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है, तो जनता के सामने, छात्रों के सामने जो दिन रात परिश्रम कर रहे थे, उनके सामने सच्चाई आई है। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रही है। यह दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: बहुत दिनों बाद बेरोजगारों, नौकरियों का मुद्दा राजनीति के केंद्र बिंदु में आ चुका है। जहां अपने राज्य की परीक्षा सुरक्षित हो, दूसरे के शासन में कहीं चूक हो तो मुद्दा उठे, छात्रों को न्याय मिले, इसकी तेजी राजनीतिक मैदान में दिख रही है। इन सब के बीच आज एक सवाल आपके सामने हम रखते हैं। सवाल है, क्या जनगण का मन सरकारें सुनना शुरू करेंगी? जहां जेन जी के बाद जेन अल्फा अपने हक अधिकार को मांगने के लिए सीएम, डिप्टी सीएम, डीएम, विधायक किसी के सामने बोलने से डर नहीं रहे।
2: क्या जनगण का मन समझेंगी सरकारें? जहां मुख्यमंत्री के सामने बेधड़क होकर बात जेन अल्फा रख देते।
3: मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी।
4: कौन से स्कूल की है? सीएमआई की। अच्छा, ठीक है, नोट कर ले नाम, है ना, एक बार देख ले।
2: क्या जनगण का मन समझकर अब फैसला लेंगी सरकारें? जहाँ डिप्टी सीएम के सामने बिना डरे हक की सड़क जेन अल्फा मांगते।
5: चलो बताओ, बताओ
6: क्या नाम है?
7: हमारी सड़क से बना
6: की
7: जलंगिया
6: और ढाबला के बीच की सड़क, बस पक्की बात है।
7: सड़क के साथ पुल भी होना चाहिए,
6: सड़क दोनों बने, बस दोनों बने।
2: क्या जनगण का मन समझकर अब सरकारों को अपनी रीत बदलनी होगी? जहां स्कूली बच्चे विधायक से ही सीधे अपनी मांग रखते हैं। क्या जनगण का मन समझकर अब सुधरेगी व्यवस्था? जहां बच्चा बच्चा डीएम के दफ्तर में घुसकर अपने अधिकार की बात करने लगा है। क्या जनगण का मन सुनकर बदलेगा सरकारी रंग और ढंग? जहां जेन अल्फा को पता है कि वीडियो बनाकर वायरल होकर कैसे अधिकार लेना है। क्या जनगण के मन को जो अनसुना करेगा बुरा फंसेगा? जहां जेन अल्फा हॉस्टल के खाने पीने को लेकर धरना दे देता है।
8: खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, और एक्सपायर डेट अभी बताया सर ने कि एक्सपायर डेट है और हमें पता ही नहीं है कि एक्सपायर डेट है और यहाँ की और यहाँ पे गंदगी इतनी है, जनरेटर चलता नहीं है, लाइट आती नहीं।
0: जुलाई के महीने में जंतर मंतर से उठा जेन जी का ज्वार अब जेन अल्फा तक पहुंच चुका है। ट्रेलर हमने आपको दिखाया है, पूरी पिक्चर भी आगे आपके सामने रखेंगे, खासकर उन सरकारों के सामने जो चाहे किसी भी दल की हो, जिनके नारों वादों और दावों में तो बिजली, सड़क, स्कूल, पानी, स्कूल में शौचालय की बातें होती थी, हकीकत में नहीं। लेकिन अब जेन जी अगर बेरोजगारी, भर्ती में भ्रष्टाचार पर घेरता है तो जेन अल्फा स्कूलों की हालत, सड़क की बदहाली पर भी सीधा सवाल करने लगा है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, डीएम, एसडीएम ये अब बात करने से नहीं डर रहे। जिन दफ्तरों के भीतर तक जाने में जनता के पांव लंबे वक्त तक थरथराते रहे हैं, जहां जनता दरबार जैसे मौकों पर आम आदमी पहुंच पाता रहा है, उन्हीं दफ्तरों के भीतर तक अब जेन अल्फा के नारे गूंज रहे हैं। और खबरदार करता सवाल यही है कि क्या यही जनगण का वो मन है जिसे सबको सुनना होगा और नहीं सुना, तो इस सवाल के जवाब में ताकत जान लीजिए। जेन जी की बात करें तो अभी जनसांख्यिकी अनुमानों के अनुसार भारत में 2029 तक जेन जी की आबादी करीब 38 करोड़ होगी। अनुमान है कि 2029 तक जेन जी मिलेनियल से कहीं ज्यादा हो सकते हैं, या कहें कि अलग अलग उम्र वर्ग में सबसे बड़ी तादाद जेन जी की ही 2029 में हो सकती है, जबकि अभी वोटर वर्ग में इनकी संख्या 18-29 साल के वोटर के तौर पर 21,59,18,770 यानी 22.29% हिस्सेदारी है। भारत में जनरेशन अल्फा का हिस्सा समझें तो देश में इस पीढ़ी के बच्चों की अनुमानित संख्या 32.7 करोड़ से लेकर 41.7 करोड़ के बीच है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत की पूरी आबादी का लगभग 27% हिस्सा केवल इसी उम्र वर्ग का है। भारत में वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 साल तय है। इस नियम के हिसाब से जेन अल्फा के बच्चे साल 2028 से 2042 के बीच वोटर बनने के योग्य होंगे। इस पीढ़ी के सबसे बड़े बच्चे जिनका जन्म 2010-11 में हुआ था, वो साल 2028-29 तक 18 साल के हो जाएंगे, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में इनका एक हिस्सा पहली बार मतदान करेगा। वहीं 2024 में पैदा हुए सबसे छोटे बच्चे साल 2042 में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। मतलब ये वो वर्ग है जो देश के विकास से लेकर चुनावी हार जीत तय करने में बड़ा रोल निभाने वाले हैं। जेन जी हो या जेन अल्फा, इनकी याददाश्त में बहुत पुरानी सरकारें नहीं है। राज्य हो या केंद्र हो, इनकी याददाश्त में अभी की सरकारों का रोल है, इसीलिए हर दल की सरकार इनकी तुरंत सुन रही है। लेकिन सवाल है कि क्या बिना प्रदर्शन के सरकारें सुन नहीं पाती? क्या जेन अल्फा के प्रदर्शन को देखकर यह समझना होगा कि छोटी छोटी बुनियादी चीजों को नजरअंदाज ये बच्चे नहीं करने वाले, इसीलिए सरकारी व्यवस्था को खुद ही पहले सजग होकर सब कुछ दुरुस्त करना होगा।
2: हाथ में पानी की बोतल को माइक्रोफोन की तरह इस्तेमाल करके स्कूली ड्रेस पहने ये बच्चे वो इंटरव्यू आपस में खुद करते हैं, जिसकी गूंज स्थानीय प्रतिनिधियों के कानों तक बहुत तेज पहुंची है। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में तेगलवाड़ी गोहिरेवाड़ी रोड पर खड़े आदित्य और स्मिता को अंदाजा नहीं होगा कि उनकी आवाज इस वक्त पूरा देश आज तक के साथ सुन रहा है। जिन्होंने कुछ बड़ा नहीं मांगा, बस इतना मांगा जितना इनको सरकार ने वादा किया है, संविधान ने अधिकार दिया है, वादा सड़क का, अधिकार सुरक्षित जीवन का। ये वीडियो ये बच्चे क्यों नासिक में बना रहे हैं? क्योंकि पहले इनके माता पिता ने कहा होगा प्रशासन से कि सड़क बना दीजिए, वो बात सुनी ही नहीं गई, क्योंकि कस्बों की सड़कों पर सुनने के लिए तो प्रशासन गांधी जी का बंदर बन जाता है, लिहाजा बच्चे अब खुद सड़क मांगने लगे हैं।
9: अब तो ये चीज इच्छा है कि आमचे रस्ते थोड़ा चांगला है पाहिजे, सगळा चांगला है पाहिजे, एवढी आमची इच्छा है।
2: जिस तरह अभी नासिक में हाथ में खाली बोतल को माइक बनाकर बच्चे इंटरव्यू करते हुए सड़क का हक मांगते हैं, इसी तरह आपको पहले आज तक ने मंगलवार को दिखाया है छाते को माइक की तरह लेकर कैसे रायगढ़ के करजत में नेहा घरे, ज्योत्सना मुकाने और मानसी पवार नाम की तीन बच्चियों ने सरकारी व्यवस्था को सड़क के नाम पर जगाया है।
10: खड्ड्यात रस्ता आहे की रस्त्यात खड्डा आहे काहीच कळत नाही.
2: स्कूल के रास्ते की सड़क बन जाए, इसी मांग को लेकर मध्य प्रदेश के देवास में बच्चे प्रदर्शन करते हैं, वीडियो बनाते हैं और साफ साफ बोलते हैं कि हमको धमकाना मत, वरना हम बच्चे हैं, डरते किसी से नहीं.
11: अगर हमें कुछ भी हुआ, किसी भी चीज की अगर दिक्कत हुई तो 112 पे फोन लगाएंगे.
12: अगर हमने शिकायत की और हमें किसी ने धमकाया तो हम 181 पे कॉल करेंगे.
2: देवास के ये बच्चे जालोदिया और ढाबला के बीच करीब 1.5 किलोमीटर की वो सड़क बनवाना चाहते हैं, जहां पर बारिश के वक्त चलना दूभर हो जाता है. लेकिन जब इन्होंने शिकायत की तो पहले स्थानीय स्तर पर आरोप है कि धमकाया जाने लगा.
13: हमारी हमने 181 पे कंप्लेंट करी है तो वो हमको धमकी दे रहे हैं, डरा रहे
12: हैं, नहीं देंगे तुम्हारे घर वाले.
2: इसके बाद तो देवास के ये बच्चे गजब के साहसी निकले, अपने घर वालों के साथ सीधे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के सामने पहुंचकर बोलने लगे कि सड़क तो सड़क, पुलिया भी बना कर दीजिए.
6: बस पक्की बात है,
7: सड़क के साथ पुल भी होना चाहिए.
6: वो सड़क दोनों बने, बस सड़क को डिमांड करती है. पुलिया और सड़क दोनों गंभीरता से पर सड़क बनाने का काम करें.
12: हमें जाने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत आती है और सरपंच को मंत्री को बोलते हैं तो बोलते हैं कि रिश्वत देंगे, मना कर देते हैं, कोई नहीं मानता हमारी बात.
14: विधायक जी से मिले कभी?
2: मतलब देश के बच्चे अब वाकई जो नागरिक शास्त्र पढ़ते थे, जो इतिहास में आंदोलन पढ़ते थे, जो क्रांतियां पढ़ते थे, उनका प्रैक्टिकल उन समस्याओं पर करने लगे हैं जो दूर होनी चाहिए, वो समस्या जिनका सामना रोज ये बच्चे करते आए. विदिशा के सिनोज कस्बे में बसों का किराया बढ़ जाने से बच्चे नाराज हो गए. कहते हैं कि जहां पहले केवल 10 से 15 रुपए में ये बस से बैठकर स्कूल पहुंच जाते थे, वहां 25 रुपए किराया लिया जाने लगा. ऐसी नारेबाजी और प्रदर्शन छात्र छात्राओं ने की, जिसके बाद प्रशासन को सामने शिकायत सुनने आना पड़ा. बच्चे देखिए SDM और पुलिस अधिकारी के सामने किस मजबूती से अपनी बात रखते हैं. SDM को यहाँ भरोसा देना पड़ा कि जल्द ही बस वालों से बात करके समाधान निकालेंगे. स्कूली बच्चों की अक्रांति उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में भी दिखी है, जहाँ हाथ में तिरंगा लेकर मंगलवार को ये वीडियो उन बच्चों का सामने आया जो 5 किलोमीटर पैदल चलकर सीधे जिलाधिकारी के दफ्तर तक पहुँचते हैं. लेकिन इन्हीं बच्चों को जब एक इंस्पेक्टर ने हल्के में लेना चाहा, बाकी पुलिस वालों के साथ मिलकर भगाना चाहा.
15: चलिए बहुत काफी हो गया, चलिए आप लोग एकदम हद हो गया. आप हम लोग घर बच्चे भी हैं,
2: असल में प्रशासन यही चूक जेनजी और जेन अल्फा को लेकर करता आ रहा है. उसको लगता है कि इन बच्चों को डांट देंगे तो ये भाग जाएंगे, लेकिन ये बच्चे धरने पर वहीं बैठ जाते हैं. फिर हमीरपुर में बच्चे दौड़कर DM दफ्तर में दाखिल होते हैं, जिसके बाद प्रशासन को सड़क बनाने का फैसला लेना पड़ा है.
16: राजस्व ग्राम चंदूपुर के मजरा ब्रह्मा डेरा और गंगवा डेरा के ग्रामवासियों ने अपने उबड़ खाबड़ और कच्ची मार्ग को पक्का रास्ता बनाने के लिए प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया. इस वर्ष फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो वन विभाग की NOC मिलने के पश्चात PWD ने इसकी कार्ययोजना बनाकर जो करीब 1,81,00,000 की है उसको शासन को प्रसिद्ध कर दिया है और उसका अनुमोदन मिलते ही जो है टेंडर करके आगे कार्य कराया जाए.
2: महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उतरते इन जैन अल्फा की सोच को समझना होगा. ये किसी का कोई इस्तीफा नहीं मांगते, कोई हर जाना नहीं मांग रहे, केवल अपने हक की सड़क, अपने हक की पुलिया मांग रहे हैं।
0: आज ही उत्तराखंड का वीडियो चर्चा में आया, जहां सायरा नाम की बच्ची मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखती है और कहती है कि वो इंटरनेशनल स्तर पर खेलने नहीं जा पाई। इसके बाद छात्रा का दूसरा वीडियो पूरी घटना बताते सामने आया, उससे पहले राजनीति शुरू हो गई। लेकिन राजनीति से जरूरी यह बात है कि इस बात को समझा जाए कि बच्चे अब अपनी जरूरत को, अपनी दिक्कत को सीधे सरकार के सामने उठा रहे हैं।
2: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने बैठे बच्चे, इसी बीच सीएनआई गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली सायरा खड़ी होती है, कहती है
14: आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी टाइकोंडो का नेशनल खेलने, सर वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था, वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे, इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी।
2: इतना सुनते ही वहाँ सब सन्न रह जाते हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। तब मुख्यमंत्री बोलते हैं,
4: चलो चलो बेटा अभी है, बैठ जाओ कोई बात। कौन सी स्कूल की है? CMI की। अच्छा ठीक है, नोट कर ले नाम, है ना, एक बार देख।
2: ये वीडियो सामने आने के बाद कुछ देर बाद एक दूसरा वीडियो आता है, जिसमें छात्रा सायरा बताती हैं कि वो 1.5 लाख रुपए की कमी की वजह से इंटरनेशनल स्तर पर खेलने रोमानिया नहीं जा सकी। ये बात बताते हुए वो मुख्यमंत्री के सामने भावुक हो गई थी। पूरी बात बताने का दावा नए वीडियो में किया गया।
14: मैं 10 तारीख को सीएम सर के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पे अपने में पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ। मैं मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में कॉन्किडो का, जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपए दे रही थी, बाकी का खर्चा मुझे करना था और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं या किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकती।
2: अब दो बयानों को लेकर तीन तरह की चर्चा चलती है। पहली चर्चा, क्या बाद में छात्रा से बयान में गोलमटोल बात कराई गई, क्या इसके पीछे प्रशासन का दबाव? दूसरी चर्चा, क्या सरकारी स्तर पर खेल विभाग, महिला बाल विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग ये खुद नहीं देखते कि ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे स्पॉन्सर किया जा सके? और तीसरी चर्चा इस बात की है कि कम से कम छात्र छात्राएं मुख्यमंत्री तक के सामने अपनी बात कहकर सच्चाई सामने लाने लगे हैं। अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।
0: जेन अल्फा से पहले जेन जी को लेकर इस वक्त देश में सरकारों से लेकर सियासत, संघ, संगठन सब सक्रिय हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा पर बनी किताब के विमोचन के मौके पर जेन जी को सलाह दी है।
17: रील का जमाना है,

0: सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें।
1: लेकिन सवाल ये आता है कि जेन अल्फा प्रदर्शन करते क्यों हैं? क्योंकि स्कूल है तो टीचर नहीं, टीचर है तो स्कूल की अपनी इमारत नहीं, इमारत है तो बेंच या स्टूल नहीं, फर्नीचर है तो पंखा नहीं, पंखा है तो बिजली नहीं, बिजली है तो पानी की व्यवस्था नहीं, सड़क है तो गड्ढा है, मिड डे मील है तो खाने की गुणवत्ता बेकार है। ऐसी तमाम समस्याओं से रोज देश के कई राज्यों के लाखों करोड़ों बच्चे जूझते हैं, जिसके बाद अब वो आवाज उठाने लगे हैं। ये आवाज उठाने की नौबत क्यों आ रही है, इसे बार बार मिड डे मील योजना में सामने आती भयानक लापरवाही की खबर से समझते हैं।
2: 31 जुलाई चंदौली उत्तर प्रदेश, मिड डे मील में मरा हुआ कीड़ा मिला। 5 अगस्त सीतापुर उत्तर प्रदेश, मिड डे मील में पानी वाली सब्जी मिली। 6 अगस्त बलिया उत्तर प्रदेश, मिड डे मील हाथ में लेकर खाते बच्चे मिले। 10 अगस्त साबरकांठा गुजरात, मिड डे मील में मरी छिपकली मिलने के दावे के बाद 37 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। और अब 11 अगस्त हरदोई उत्तर प्रदेश, जला हुआ चावल, पानी वाली दाल, मिड डे मील में बच्चों को परोसी जाती मिली। जो खाना खिलाकर सरकारें कहती हैं कि बड़ा पौष्टिक, सरकारी स्कूलों में बच्चों को खिलाया जा रहा

0: खबरदार किया है। वीडियो में टणियावा विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय कोटरा में बच्चों को मिड डे मील के नाम पर जला हुआ चावल और दाल के नाम पर दिखता है कि दाल कम और पानी ज्यादा वाली दाल खाने में परोसी जा रही है। बाल्टी में कई बार दाल को मिलाकर फिर कलछुल को बाहर निकाला जाता है, लेकिन दाल की इस दाल में कमी बहुत नजर आती है।
1: ये देखो जले हुए चावल है भैया, बच्चे बताओ कैसे खाएंगे ये। दिखाओ बेटा तुम्हारा, दिखाओ। तुम्हें दाल नहीं मिली, तुम्हें दाल नहीं मिली।
0: बात सिर्फ जले चावल और कम दाल वाली दाल की ही नहीं है। नियम मुताबिक जिस खिचड़ी में सोयाबीन की बड़ी और हरी सब्जी दिखनी चाहिए, उसकी जगह केवल थोड़ा टमाटर और चावल नजर आता है। उत्तर प्रदेश में हरदोई के इस स्कूल में जहां पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते दिखते हैं, वहां मिड डे मील की इस हालत पर रत्ती भर आशंका फिर बचती नहीं। जहां बीएसए कहते हैं टीचर की आपसी लड़ाई में खाना बच्चों को खराब दिया जाता रहा, एक्शन ले लिया गया है।
2: वीडियो की सत्यता साथ ही जो है वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए जो भी इस पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी उस पे कार्रवाई करेंगे, जांच करके एमडीएम की भी जांच करेंगे और जो हमारे यहाँ माँ समूह हैं उनके साथ हम लोग बैठेंगे, किस तरीके से हुआ, क्या समस्याएं हैं उसको हम लोग देखते हुए एक विस्तृत इस पे जांच करते हुए कार्रवाई की जाएगी।
0: तो क्या मिड डे मील के नाम पर केवल टीचर की गलती है? इससे पहले याद करिए इसी महीने सीतापुर में क्या हुआ था। कुकर में दो गिलास पानी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया, स्वाद अनुसार नमक डालकर आलू के चंद टुकड़े और परवल के छींटे मारकर सीटी लगा दी गई। जानवरों को भी जैसे रोटी नहीं फेंकी जाती, उस तरह से फेंक कर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सरकारी स्कूल का मिड डे मील बच्चों को परोसा जा रहा है। ऐसा मिड डे मील खाकर पढ़ेंगे बच्चे तो सोचिए कैसे बढ़ेंगे बच्चे। सीतापुर के छंगापुर का सरकारी प्राइमरी स्कूल इस बात की गवाही देता है कि मिड डे मील के नाम पर जो दावे सरकार करती है, हकीकत में उसमें बहुत पानी मिला हुआ है। सीतापुर में बच्चों के खाने से खिलवाड़ के बाद एक्शन लिया जा चुका है। प्रशासन सीतापुर में कह चुका है कि ऐसा आगे होने नहीं देंगे। प्रिंसिपल और रसोईया पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन ये भी कोई पहली घटना नहीं। लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसे वीडियो आते रहे। इससे पहले इसी साल फरवरी महीने में चौंकाने वाला मिड डे मील बट्टा महोबा में दिखा था। यहाँ बुजुर्ग महिला बैठी है, ये यहाँ स्कूल की रसोईया है। बाल्टी रखी है, इसमें 4 लीटर पानी भरा, तभी ये सरकारी प्राइमरी स्कूल की रसोईया आधा लीटर दूध का पैकेट फाड़कर दूध इस पानी में मिला देती हैं। फिर दूसरा पैकेट दूध का निकाला, उसे फाड़ा, इसे भी पानी ज्यादा दूध नाम का वाली बाल्टी में मिला दिया गया। फिर एक चमचा उठाकर बाकायदा उसे एक साफ पानी से खंगाल कर 4 लीटर पानी 1 लीटर दूध वाली बाल्टी में डालकर मिलाया जाता है। दूध में पानी की जगह पानी में दूध की मिलावट को इसके बाद सरकारी प्राइमरी स्कूल के भीतर पूरी शिद्दत के साथ मिक्स किया जाता है ताकि दूध और पानी अलग ना रहे। इसके बाद स्कूल प्रिंसिपल टीचर की मौजूदगी में सरकारी प्राइमरी विद्यालय की रसोईया दूध नापने वाले बर्तन के साथ बाल्टी को लेकर बच्चों की तरफ आती है। इसके बाद बच्चे ग्लास को पानी से धोकर लाइन लगाकर खड़े होते हैं। इसके बाद 4 लीटर पानी में घोले गए 1 लीटर दूध का वो घोल बच्चों को पोषण के नाम पर 100-100 मिलीलीटर दिया जाने लगता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा स्कूल उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं, लेकिन इनको मिड डे मील देने के नाम पर खिलवाड़ होता है। यूपी एमडीएम के दस्तावेज कहते हैं कि बच्चे किस तरह का खाना स्कूल में मिड डे मील के तौर पर पा रहे हैं और खा रहे हैं, इसकी निगरानी के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक DRDA, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी और ब्लॉक स्तर पर उप जिलाधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, पूर्ति निरीक्षक, यानी कुल 20 लोग हैं। लेकिन एक आदमी ये नहीं देख पा रहा था कि कैसी पानी वाली सब्जी बच्चों को स्कूल में परोसी और खिलाई जा रही है, क्योंकि बेसिक शिक्षा वाली व्यवस्था में कहा जाता है सबसे बड़ा करप्शन अधिकारी मिड डे मील के नाम पर ही तो करते हैं। जहां मिड डे मील ना बने तो बचने का सबसे ज्यादा रेट लगता है।

0: बाकी खराब बने तो कौन देखने वाला है। सोचिए ये मासूम बच्चे इस खाने को कैसे खाते रहे होंगे, कभी उफ नहीं किया होगा। इन्हें क्या पता कि इनके हक का खाना खा खा कर कौन कौन कितना कितना मोटा हो गया होगा।
1: केवल मिड डे मील ही मुद्दा नहीं है, छात्रों के सरकारी स्कूलों की हालत पर आज तक लगातार खबरदार कर रहा है। आज आपको राजस्थान के 12 में आदिवासी इलाके के सरकारी स्कूल की हालत दिखाते हैं। सनगवा गांव के सरकारी स्कूलों की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। यहां सरकारी विद्यालय आज भी बिना पक्के भवन के संचालित हो रहे हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बारिश, सर्दी और भीषण गर्मी में खुले आसमान के नीचे घास फूस की झोपड़ी में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यहां 53 बच्चे पढ़ते हैं। ये मत सोचिए कि अरे 53 ही तो हैं। ये सोचना जरूरी है कि एक भी बच्चा देश का ऐसी हालत में क्यों पढ़ेगा, जहां न पानी की सुविधा, न शौचालय की, न बिजली, न सुरक्षित पढ़ने का माहौल। यही हाल बिहार में भी है, जहां पिछले हफ्ते हमने 6 जिलों से खबरदार किया, दिखाया कैसे सैकड़ों स्कूल बिना बिल्डिंग के पेड़ के नीचे चल रहे हैं। 2 जगह सरकार ने फैसला लिया, नए स्कूल में शिफ्ट किया। लेकिन मधेपुरा की तस्वीर आज देखिए, यहां पर एक कमरे में 18 साल से एक स्कूल चल रहा है, जहां बाहर बांस और तिरपाल की छत है, न टॉयलेट है, न फर्नीचर है, न पक्का कमरा है। मजबूर है, स्कूल के नाम का बैनर भी फटा पुराना है, उस पर लिखा है नव सृजित प्राथमिक विद्यालय हीरा पट्टी टोला जिला मधेपुरा। स्कूल की छत तिरपाल और प्लास्टिक से बनी है, बरसात में यहां पढ़ाई बाधित होती है। 2007 से स्कूल चल रहा है, स्कूल में कुल 105 बच्चे हैं, 1 से 5 तक क्लास चलती है। सोचिए क्या ऐसी हालत में किसी का बेटा या बेटी पढ़ना चाहिए, क्यों नहीं सरकार यहां स्कूल बनाकर देती।
2: स्कूल देख लीजिए क्या स्थिति है, स्कूल का ना शौचालय है, ना रहने के लिए घर है, और यहाँ पर देख रहे हैं नीचे में जो है बच्चे बैठ कर के पढ़ रहे हैं।
3: फूस का घर है, हम लोग किसी तरह अपना समय काट रहे हैं, क्या बोले।
2: क्या शौचालय है क्या?
3: शौचालय नहीं है, यहाँ जो है सो रूम है, न कमरा है, न कुछ नहीं है सर।
2: स्कूल के लिए कहीं बोले हैं?
3: हम बोले हैं सर, हम स्कूल के लिए एप्लीकेशन हम वार्ड मेंबर से लेकर और आपको विधायक जी के पास तक हम पहुंचा दिए हैं।
4: स्कूल की स्थिति तो बहुत बुरी स्थिति है, यहाँ पर जो है भवन नहीं है, झोपड़ी में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, शौचालय भी नहीं है, न शौचालय है और न ट्यूबवेल है।
2: पेयजल
4: शौच करने के लिए जंगल में जाना पड़ता है सर, खेत में, जंगल में, बच्चे भी जंगल ही में जाते हैं। इधर नदी बहती है पूरब, तो उसमें भी डर लगा रहता है बच्चों को कि कहीं उसका पैर न फिसल जाए।
2: बच्चे 12 में पढ़ा रहे हैं
5: जी,
2: पूरा एकदम गर्मी से, एकदम
5: पूरा सर गर्मी है।
2: क्या धूप में बैठे हैं? काहे धूप में बैठे हैं?
5: क्या करेंगे, न रूम है न कुछ है, क्या करेंगे हम लोग सर। जब बच्चा ज्यादा है तो बाहर में बैठाना पड़ता है।
2: काफी धूप है
5: जी, काफी धूप है,
2: बच्चा को भी धूप में बैठाते हैं,
5: क्या करेंगे, मजबूरी है ना सर।
2: ये है रसोई भवन, यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं खाना बन रहा है।
6: चाहते हैं सर जल्द से जल्द भवन बन जाए, सब चीज का व्यवस्था ठीक हो जाए, अच्छा होगा हम सब के लिए और बच्चा सब के लिए सर। पढ़ाने में बच्चा सब को रखने में बहुत दिक्कत है, खाना भी बनाने में देखते हैं धुइयां में बना रहे हैं, रसोईया रूम देखिए सर के।
2: वो जिला अररिया और मधेपुरा दोनों का बच्चा यहाँ पढ़ते हैं, बॉर्डर इलाका है, इन लोग का कोई परेशान, इन लोग का कहना भी है जो कोई यहाँ देखने के लिए भी प्रशासन अभी तक नहीं आए हुए हैं। मधेपुरा से मुरारी कुमार सिंह आज तक।
1: इन्हीं बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात जिस संसद में की जाती है, अब उस संसद की खबर से आपको खबरदार कर देते हैं, जहां मॉनसून सत्र खत्म होने वाला है लेकिन राजनीति में हंगामा जारी है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष सदन को चलने दे। जवाब में राहुल गांधी बोले, इस्तीफा दें तो बात होगी।
7: संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले
8: गोपाल जी, व्हाट डू वांट टू से बेन गोपाल जी,
9: ये जेपीसी में भेजा जाए।
10: के बाद मुझे मौका मिल रहा है,
8: दिया तो समय आपको।
1: गुरुवार को संसद का मानसून सत्र खत्म होने से पहले बुधवार को भी न संसद का हंगामा थमा, न चर्चा हुई, न संसद नियम से चल पाई। लेकिन अमित शाह का जवाबी पलटवार ऐसा आया कि अब राहुल गांधी पर गोल पोस्ट बदलने का बीजेपी का आरोप और गहरा हो गया।
11: सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है।
0: जंतर मंतर प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह के बयान की मांग करते राहुल गांधी को एक तरह से सीधी चुनौती। अमित शाह ने बुधवार दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू कर गुरुवार दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए राजी होने की न सिर्फ बात कही बल्कि स्पीकर ओम बिरला को अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आप विपक्ष से चर्चा करके आपसी सहमति से आज से जितने समय जितने घंटे आप उचित समझे उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। जंतर मंतर पर संसद में खुद के बयान को लेकर पहली बार आए अमित शाह के इतने स्पष्ट बयान के बाद राहुल गांधी का जवाब आता है। राहुल कहते हैं कि हमें उनकी कल्पनाओं में दिलचस्पी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री ये बताएं कि पैलेट गन से गोली किसने चलवाई।
12: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग एंड व्हेन आई से वी I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students?
0: जंतर मंतर पर संसद में अमित शाह के बयान की मांग को लेकर लगातार हंगामा चलता है। संसद के अंदर हंगामे से लेकर परिसर में मकर द्वार के बाहर तक जवाबी नारेबाजी होती रही।
13: मैं बहुत निराश हूँ। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी होते हैं।
0: अमित शाह ने जब ये साफ कहा कि सरकार चर्चा से कतई भाग नहीं रही, सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ।
11: लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा।
14: इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए।
0: इस बीच सरकार ने FCRA संशोधन बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है, जिसे मंजूरी मिल गई। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, लेकिन लड़ाई मेरा जवाब बनाम तेरा जवाब पर चलती रही।
14: आपको पता है कि जब जब गृह मंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं इनकी खाट खड़ी हो जाती है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कौन सा समझौता कर लिया चीन के साथ, FCRA में जो है किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रहा है, तो सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। इसीलिए गृहमंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते, तो गृहमंत्री जी को कैसे नहीं सुनेंगे, तो हंगामा करो।
15: रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? सरकार,
16: आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उनपे लाठी बरसाते हो, आप उनपे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उनपे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाब दे नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस।
0: राज्यसभा में गृह मंत्री को लेकर खड़गे ने वार किया, कहा कि वो रोज नहीं आते। नड्डा बोले, आप चर्चा से भाग रहे हैं।
17: मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा, ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको।
18: माननीय नड्डा जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।
19: सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आप चर्चा से भागो मत।
0: 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चलते आंदोलन के बीच हंगामे के साथ शुरू हुई संसद में हंगामे के साथ मानसून सत्र पूरा होने जा रहा है।
1: संसद का मानसून सत्र राजनीति में धुल रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, उन नागरिकों के लिए अच्छा नहीं जो संसद से ही उम्मीद लगाते हैं। आप कहेंगे क्यों, इसका एक पूरा हिस्सा आप देखकर खबरदार हो जाइए। हंगामे की वजह से इस मानसून सत्र में 11 अगस्त तक लोकसभा 50 बार स्थगित हुई, राज्यसभा 54 बार स्थगित हुई, यानी संसद ने स्थगित होने का शतक लगा दिया है। लोकसभा 11 अगस्त यानी मंगलवार तक केवल 16 घंटे 42 मिनट और राज्यसभा 31 घंटे 12 मिनट चल पाई। अनुमान है कि लोकसभा में 11 अगस्त तक करीब 85 घंटे 3 मिनट का वक्त बर्बाद कर दिया गया, वो वक्त जिसका पैसा जनता की जेब से जाता है। इसी तरह राज्यसभा में 70 घंटे 8 मिनट की कार्यवाही हंगामे में बर्बाद हो गई। संसद की कार्यवाही पर प्रति घंटे 75 लाख रुपए खर्च होते हैं, ये आपने कई बार सुना होगा। इस हिसाब से अगर आपको हम खर्चा जोड़कर बताएं तो लोकसभा में 63 करोड़ 79 लाख रुपए और राज्यसभा में हंगामे की वजह से 11 अगस्त तक के आंकड़े के अनुसार 52 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यानी 20 जुलाई से 11 अगस्त तक के आंकड़े के अनुसार संसद में हंगामे से सदन जो नहीं चल पाया इससे 116 करोड़ 39 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अगर संसद रोज वक्त से चली होती, रोज सियासी हंगामे की जगह काम हुआ होता तो ये 116 करोड़ 39 लाख रुपया जो जनता का है वो स्वाहा नहीं होता। और इस पैसे की कीमत समझनी है तो हमारी रिसर्च टीम ने एक तुलनात्मक रिसर्च की है जिसे समझिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अनुसार एक परिवार का सरकारी स्कूल में प्रति बच्चा खर्च सालाना 2,863 रुपए होता है। इस हिसाब से संसद में बर्बाद हुए पैसे से 4,06,532 बच्चों की सालाना पढ़ाई का खर्च उठाया जा सकता था। हमारी संसद में बैठने वाले हर दल के माननीय सांसद क्या इस बात को समझेंगे कि उनके सियासी हंगामे की वजह से भले उनके राजनीतिक हित सिद्ध हो रहे होंगे लेकिन इतना पैसा जनता का बर्बाद हुआ है जिससे 4 लाख से ज्यादा बच्चों को सालाना पढ़ाया जा सकता था। संसद में 20 जुलाई से 11 अगस्त तक हंगामे में बर्बाद हुए वक्त से जो 116 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है इससे ग्रामीण क्षेत्र में 96,952 शौचालय बनाए जा सकते थे। ये तुलना करके हम बताना चाहते हैं कि कितना नुकसान किया गया है। मैदानी क्षेत्र में 9,699 आवास पीएम आवास योजना के तहत बनाया जा सकता था। एनएसओ का सर्वे बताता है कि सरकारी अस्पताल में प्रति व्यक्ति औसत खर्च 6,631 रुपए होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि संसद में जितना पैसा मानसून सत्र में हंगामे में बर्बाद हुआ इससे 1,75,524 नागरिकों का इलाज किया जा सकता था। और सबसे बड़ी चीज, इस हंगामे में जो बिल चंद मिनट की चर्चा में आनन फानन में पास हो गए उन पर चर्चा तक नहीं हो पाई क्योंकि राजनीति साधी जाती रही। और अब झारखंड के युवाओं के हक की खबर से खबरदार, जिन्हें धरना और आंदोलन करते 19 दिन हो चुके हैं। झारखंड की परीक्षाओं में धांधली की रोज नई किश्त सामने आती है। आज पता चला है कि प्रति भर्ती 10 लाख से 50 लाख तक रेट लगता रहा और अभय तिवारी सब कुछ सेट करता रहा जिसमें आयोगों के बड़े बड़े अधिकारी तक दावा है कि शामिल रहते थे।
20: आपने मूसलाधार बारिश के बीच छात्रों के आंदोलन की आग देखी। आपने विधानसभा घेराव के दौरान इन छात्रों का हौसला देखा। आपने छात्रों पर रांची पुलिस की ज्यादती देखी। छात्रों पर लाठियां बरसते देखा और उन्हें एक एक कर घायल होते देखा।
3: झारखंड के युवा को रुला रहे हो,
21: पूरे देश के युवाओं पे लाठी चले,
3: झारखंड के युवा को रुला रहे हो, लाठी चार्ज कर रही है पुलिस, हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
20: रांची में दो दिन पहले क्या क्या हुआ इसे पूरे देश ने देखा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सहानुभूति के बजाय पुलिस का बचाव करते दिखे।
22: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है अध्यक्ष महोदय। जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आता।
20: सोरेन यहीं ठहर जाते तब भी गनीमत होती, लेकिन अब वो जुल्म पर उतर आए हैं, बदले पर उतर आए हैं। खबर है कि रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
23: घड़ी में छात्रों की संख्या बढ़ने लगती थी, वो आज अब आधे से भी कम होने लगी है। ज्यादातर छात्र या तो जा चुके हैं या इस समय धरना स्थल पर मौजूद नहीं है। बीती रात प्रशासन यहां पर आया, छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई, और अभी उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोग?
24: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी, अब सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी, अब इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था। जो हम लोग का लाइट वो चल रहा था जो जनरेटर से हम लोग का चल रहा था।
20: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है, छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। सरकार ये बात समझती है, इसलिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये दबाव उस सच को नहीं दबा सकता जो एक एक कर सामने आ रहा। सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20-25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30-35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली।
25: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही राज्य की सीआईडी के सामने अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने सीआईडी से पूछताछ में बताया है कि कैसे अलग अलग परीक्षाओं में लाखों रुपए में नौकरी की डील हुई। अभय तिवारी ने यह बताया है कि उसने किन परीक्षाओं में करोड़ों की राशि की वसूली की, कैसे एजेंट्स के जरिए जो नियोक्ता एजेंसियां थी उनको लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में सीआईडी अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि सीआईडी की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनका यह कहना है कि सीबीआई जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशिभूषण, आज तक रांची।
1: मध्य प्रदेश के दर्शक हों या फिर देश के किसी हिस्से के दर्शक, वो रोज सड़क पर गड्ढे से इस वक्त परेशान होंगे, सोचते होंगे कि कब ये गड्ढा भरेगा, लेकिन सिस्टम कितना आंखें बंद करके रहता है इसका नायाब नमूना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिखाते हैं। जहां कल 121 करोड़ के फ्लाईओवर पर शुरू होने के 18 महीने में गड्ढे को आज तक ने दिखाया, तो प्रशासन गड्ढा तो भर गया लेकिन केवल खाना पूर्ति के लिए, इसीलिए आज फिर खबरदार करना जरूरी है।
26: आज तक पर खबर चलने के बाद एक बार फिर से उस खबर का असर हुआ है। भोपाल के जिस फ्लाईओवर की खबर आज तक ने अपने प्राइम टाइम शो खबरदार में दिखाई थी और बताया था कि कैसे इस 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने पुल पर महज 1.5 साल के भीतर ही गड्ढे बन गए हैं। आनन फानन में उस गड्ढे को भरा जरूर गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, इस गड्ढे पे अब सीमेंट डाल के भर दिया गया है। यानी जैसे ही खबर चली आज तक पर, उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग जागा और उसने यहाँ पे सीमेंट की एक परत बिछा दी है उन गड्ढों पे जो फिलहाल इस फ्लाईओवर पर बने हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि ये जो गड्ढा भरा गया है अब सीमेंट से इस बरसात के महीने में, क्या वो काफी है, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, खबर का असर तो हुआ, विभाग यहाँ पहुंचा, उसने सीमेंट डाला है इस गड्ढे पे, लेकिन अभी देखिए आप जो किस तरीके से काम हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये अगर हम पत्थर से इस हिस्से को दबा के दिखाएं तो आप देखिए ये पूरा सीमेंट गीला है, मतलब बस खाना पूर्ति की गई है इस गड्ढे को भर करके। बारिश का मौसम है तो जाहिर सी बात है ये सीमेंट अभी सूखेगा भी नहीं, और कुछ ही दिनों की बारिश में एक बार फिर से ये देखिए ये इस तरीके का काम यहाँ पे किया गया है। यानी पैचवर्क जो किया गया है वो भी महज दिखावे के लिए, खाना पूर्ति, अभी भी पूरा का पूरा सीमेंट जो है यहाँ से निकल रहा है और यही पूरे इस पे बिछाया गया है, मुरम और सीमेंट डाल करके इस गड्ढे को भरा गया, लेकिन खाना पूर्ति की गई है एक तरीके से।
1: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Oh no, बहुत बोर लग रहा है।
1: Take a date, not bites.
2: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
1: लायन डेट नट बाइट्स।
3: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
4: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
3: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
4: सुपर स्ट्रॉन्ग
3: और मॉइस्चर प्रूफ।
5: वारंटी
3: 15 साल की।
4: कदम
3: सर प्लीज
4: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
6: क्रॉसबॉन्ड HDMR Max फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: AU
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: बिजली का बिल पेड
12: तो है, मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
13: कैसे?
12: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो पे।
13: इत्ता माही वे।
14: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
15: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
16: पापा
17: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
18: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
17: छक्का?
18: सब कैशलेस हो गया है।
17: हाँ
18: उल्ला ला भाई मेरा बैट।
17: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
18: अभी तो डिस्चार्ज हुआ यार।
17: उल्ला बैट किसका है?
19: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: खरीदा था।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: पहले पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। यहां विपक्ष एक सुर में मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर दिखा। उसके बाद रांची में छात्र आंदोलन में पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद बीजेपी पूछती है कि राहुल गांधी आखिर रांची क्यों नहीं जा रहे। कुल मिलाकर दोनों आंदोलन में सहूलियत वाला सियासी समर्थन देखने को मिलता है। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि रांची में पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए और वो छात्रों के साथ है, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी पर जिन्ना वाला वार कर रही है। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच सियासत तेज होती जा रही है। कल विधानसभा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के चोले में बीजेपी के घुसपैठ का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। वहीं रांची आंदोलन में पुलिस के लाठीचार्ज के बाद घायल छात्रों ने अपना दर्द साझा किया। रांची में 10 अगस्त को लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री छात्रों से सहानुभूति की जगह पुलिस का बचाव करते दिखे। इस बीच झारखंड सरकार आंदोलन को खत्म कराने पर उतर आई। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई। आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। अब तक सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली है। सवाल है कि क्या रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को जंतर मंतर जैसी सफलता मिलेगी और क्या सोरेन सरकार छात्रों की मांगों के आगे सरेंडर करेगी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम बिखरते समाज, टूटते रिश्ते, संबंधों के साथ दम तोड़ती इंसानियत का विश्लेषण करेंगे। खून के रिश्ते से अलग जिस रिश्ते को सबसे सम्मानित माना जाता है, आज उसमें सब्र का बांध टूट रहा है, भरोसे का पुल डूब रहा है और अब एक के बाद एक घटनाओं में पति और पत्नी एक दूसरे की जान लेने पर उतारू नजर आ रहे हैं। क्या कोई पत्नी अपने ही पति की कब्र अपने ही घर की बालकनी में बनवा सकती है, खुदवा सकती है? महाराष्ट्र के बारामती से ऐसा मामला सामने आया जहां पत्नी ने अपने पति को पहले नींद की गोलियां दी, सिर पर वार किया और फिर अपने हिसाब से सोचा कि वो तो मर चुका है, लाश को ठिकाने लगाने के लिए बालकनी में ही एक कब्र नुमा ये ढांचा जो आपको दिख रहा है ना फोटो में, वो तैयार करवा लिया। प्लानिंग ऐसी थी कि किसी को शक ना हो, लेकिन हवा के एक झोंके ने इस खौफनाक राज से पर्दा उठा दिया, हवा के एक झोंके ने, और पीड़ित पति की जान बच गई। सवाल यह है कि क्या पति पत्नी के पवित्र रिश्ता इस हद तक जहरीला हो चुका है और आखिर देश में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? पति पत्नियों को मार रहे हैं और पत्नियां पतियों को मार रही हैं, ये क्या इशारा कर रहा है, डेटा क्या कहता है, ये सब आपको दिखाएंगे। और इसके बाद आपको कश्मीर घाटी में तिरंगा और इससे बौखलाते हुए आतंकी दिखाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच कश्मीर घाटी से एक बार फिर आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों की हिट लिस्ट जारी कर दी है, उन्हें निशाना बनाने की धमकी दी है। हैरानी की बात यह है कि दशकों से अपने ही देश में शरणार्थी बने कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों को तो धमकियां मिल रही हैं, पर जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी बदल रहे हजारों अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चुप्पी है। आखिर क्यों? कश्मीरी पंडितों से तो बैर है, लेकिन घुसपैठिए अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और आखिर में इंटरनेशनल यूथ डे पर आपको बताएंगे कि जब देश में विधायकों के लिए करोड़ों का फर्नीचर मंगाया जाता है, करोड़ों का फर्नीचर, क्योंकि विधायक साहब हैं, माननीय विधायक हैं, तब उसी देश में हॉस्टल में रहने वाले बच्चे बिना फर्नीचर जमीन पर सोने को मजबूर हुए और सांप काटने से 3 लड़कियों की मौत हो गई। आखिर देश के युवाओं को हम दे क्या रहे हैं? लेकिन आज हम अपने शो की शुरुआत महाराष्ट्र के बारामती से आई इस खबर से करेंगे। यह खबर एक पति की दुविधा से जुड़ी है। दुविधा यह थी कि जिस पत्नी के साथ वो पिछले कई वर्षों से रह रहा था, उसने उसे जान से मारने की कोशिश की। आज वो फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो पत्नी को अपनी हत्या की कोशिश के अपराध में जेल भिजवाए या उसे माफ कर दे। आज उसकी आंखों में आंसू है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आंसू पत्नी के धोखे का दर्द है या फिर खुद को जिंदा बच जाने की खुशी। हम आपको इस पूरी अजीबोगरीब वारदात के बारे में एक एक चीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पहले सुनिए इस पति को क्या कह रहे।
1: माझा मुलगा है,

0: माझी दोन्ही मुलं गायब आहेत, माझा मुलगा आणि माझी मुलगी ते कुठं आहेत, आणि त्यांना तिच्यापासून धोका आहे आणि माझ्या साचरकडपासून लोकांपासून धोका आहे, तर त्यांनी माझी मुलं माझ्या स्वाधीन करावी ही माझी विनंती आहे.
1: प्रवीण जगताप, कभी नहीं सोचा था इन्होंने कि उनकी पत्नी शर्मिला उसकी हत्या की कोशिश करेगी. प्रवीण तो इस बात से हैरान है कि उसकी बालकनी में जो कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, दरअसल वो उसकी संभावित कब्र थी. ये कंस्ट्रक्शन उसकी पत्नी अपनी खास निगरानी में बनवा रही थी और प्रवीण को इस बात की भनक तक नहीं थी कि शर्मिला की प्लानिंग उसकी हत्या करके उसकी लाश को इसी जगह पर दफनाने की थी. टेरेस का वीडियो दिखाइए, टेरेस में जो बालकनी है वहां की तस्वीर दिखाइए. ये जो आप देख रहे हैं ये वो पत्नी बनवा रही थी और उसको पता ही नहीं था कि ये दरअसल प्रवीण के लिए ही उसकी पत्नी शर्मिला बनवा रही है. शर्मिला ने एक फुल प्रूफ प्लानिंग से काम किया. उसने पति को मारने का मन बना लिया था, लेकिन समस्या पति के शव को दफनाने और खुद को बचाने की थी. तो शर्मिला चाहती थी कि प्रवीण की हत्या के बाद उसके गुमशुदा होने की खबर फैलाई जाए ताकि उस पर शक ना. बारामती के इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के जिस फ्लैट में प्रवीण और शर्मिला रहते थे उसमें उनके दो बच्चे, माँ बाप और छोटा भाई भी रहता था. परिवार को भी पता नहीं था कि प्रवीण और शर्मिला के संबंधों में खटास आ चुकी है, वो भी इस हद तक कि शर्मिला अपने पति की हत्या की कोशिश करे. शर्मिला ने सबसे पहले शव को ठिकाने लगाने के प्लान पर काम किया. उसने परिवार की रजामंदी लेकर घर की बालकनी में एक अलग तरह का ये कंस्ट्रक्शन करवाया. इस कंस्ट्रक्शन में मजदूरों को निर्देश दिए गए थे कि बालकनी में एक बॉक्स टाइप की चीज बनानी है जिसकी दीवारें करीब 2 से 2.5 फीट ऊंची हों. आरोप यही है. अब मजदूर को लगा कि शायद इसमें पौधे लगाने होंगे. कई लोग अपने बालकनी में इस तरह का बड़ा सा बना लेते हैं जिसमें वो मिट्टी भर के फिर पौधे उगाते हैं. मजदूरों ने उसी हिसाब से ईंट की मजबूत दीवार खड़ी कर दी. शर्मिला ने ये पूरा काम होने के बाद अपने प्लान का दूसरा चरण शुरू किया. दूसरा चरण था प्रवीण को बेहोश करना. तो आरोपों के मुताबिक प्रवीण को बेहोश कैसे करना है ये शर्मिला बेहतर जानती थी. उसके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री थी. बी फार्मा में दवाइयों से जुड़ी जानकारी दी जाती है. इसमें दवाइयों के फॉर्मूले, इंसानी शरीर पर उसका असर, सब कुछ बताया जाता है. तो शर्मिला को पता था कि प्रवीण को कौन सी दवा देनी है जिससे वो कई घंटे तक बेहोश हो जाए. उसने 31 जुलाई की रात को मौका देखकर प्रवीण को धोखे से कुछ खास दवाइयां खिला दी जिसे पुलिस नींद की दवा बता रही है. प्रवीण को बेहोश करने के बाद शर्मिला ने जब वो नींद की दवा खाए और वो पूरी तरह से, जिसको आप कह सकते हैं, बेहोश थे, तब शर्मिला ने बैट से उसके सिर पर कई बार वार किए. उसे लगा कि बेहोशी की हालत में वो पड़ा रहेगा. एक बार ये तस्वीर फुल स्क्रीन काट दीजिए.

पड़ा रहेगा और सिर पर लगी चोटों की वजह से मारा जाएगा। और उसको यही लगा कि बैट से उसने जो मारा है तो मौत हो गई है। अब उसके लिए लाश को बालकनी वाली कब्र में दफनाना आसान होगा। सिर पर कई बार वार करने के बाद शर्मिला को लगा कि प्रवीण मर चुका है। अगले दिन सुबह शर्मिला ने प्रवीण को मरा हुआ समझकर बालकनी वाली कब्र में डाल दिया। लेकिन यहाँ एक नई चुनौती खड़ी हो गई। चुनौती थी प्रवीण के शरीर को छिपाना। उसे छिपाने के लिए शर्मिला ने बालकनी में जो कब्र बनाई थी उसके ऊपर चादर डाल दी, लेकिन असली प्लानिंग चादर डालना नहीं थी। बालकनी वाली कब्र की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें पास में ही मार्बल का एक स्लैब है। ये देखिए मार्बल का स्लैब जो आप नीचे में देख रहे हैं रखा हुआ है। अब उसकी प्लानिंग ये थी कि प्रवीण को कब्र में डाल दिया जाएगा और उसके बाद कब्र के ऊपर मार्बल का यही स्लैब डाला जाना था ताकि शव हमेशा के लिए उसमें सील हो जाए और प्रवीण का शरीर कभी किसी को मिले ही ना। लेकिन शर्मिला की प्लानिंग में एक चूक हो गई। मार्बल का ये स्लैब इतना भारी था कि वो अकेले इसे उठाकर रख ही नहीं पाई। इसके लिए शर्मिला ने कुछ मजदूर बुलवाए। मजदूरों को कब्र सील करना था। जैसे ही मजदूरों ने, उनको तो लग रहा था कि गमले के ऊपर ये रख रहे हैं, मार्बल रखने का काम शुरू किया, उसी वक्त नीचे जो बताया जा रहा है उसने जो पूरा शरीर है अपने पति का प्रवीण का उसको सफेद चादर से ढक दिया था, तकिए वगैरह लगा दिए थे। उसी वक्त हवा का झोंका आया जिसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। अब हम वो AI वीडियो दिखा सकते हैं जिसमें हवा के झोंके से ये प्रवीण के शरीर पर डाली गई जो चादर का एक हिस्सा है वो हटा और जो मजदूर थे उनको लगा कि इसकी तो उंगलियां हिल रही हैं और यहां तो आदमी है और प्रवीण का पैर दिखने लगा। मजदूरों ने देखा कि प्रवीण के पैर की उंगलियां हिल रही थी। ये देखकर मजदूर घबरा गए। उन्होंने लगा कि घर में किसी व्यक्ति को जिंदा समाधि दी जा रही है। मजदूरों ने तुरंत पुलिस को भी यही फोन किया और पुलिस को कहा कि यहां तो इस घर में एक आदमी जिंदा समाधि ले रहा है। अब जब तक पुलिस पहुंचती तब तक शर्मिला ने प्रवीण के शरीर को बालकनी से हटाकर बेडरूम में छिपा दिया। पुलिस ने जब घर की जांच की तो उन्हें प्रवीण जख्मी हालत में जमीन पर गिरा हुआ मिला। पुलिस ने पूछताछ की तो शर्मिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए

0: मला कोणीतरी भरपूर मारतंय. मी म्हणत होतो की मला मारू नका मारू नका, तरी पण ते मारत होते. ह्याच्यामध्ये माझी मिसेस होती आणि अजून कोण आहे हे मला माहिती नाही आहे. आणि त्यानंतर त्यांनी मला उचलून त्या जो गॅलरीमध्ये डक्ट बांधला होता त्या डक्टमध्ये त्यांनी मला टाकलेलं होतं. पण जो गवंडी आलता त्याच्या त्यांनी जे बघितलं कडपा टाकताना की माझा हात किंवा पाय हललेला असेल, त्याच्यामुळे त्याला डाऊट आला आणि तो खाली पळत सुटला बिल्डिंगच्या. आणि त्याने 112 फोन केला आणि त्यामुळं तत्काळ पोलिसांची मदत मिळाली. त्याच्यामुळं माझा जीव वाचलेला आहे.
1: उसको लगा कि उसको मारने के बाद करेंगे क्या, मर जाए. उसको लगा कि वो बेहोश बेहोश की हालत में अगर उसको अंदर डाल के रख भी दिए तो मर जाएंगे. उसका इशारा तो यही था. इसी वजह से तो केस हो गई है. तो हमने उनको रिश्तेदारों को उसी दिन बताया कि आप अगर गुना दाखिल करते हो तो तुरंत हम रजिस्टर करेंगे. लेकिन उन्होंने बोला घर का मामला है, हमको सर गुना दाखिल करने का नहीं. और 3-4 दिन के बाद उनको फिर एहसास होगा कि वो जो भी घटा है वो गलत है. तो 4 तारीख को वो खुद आए और उन्होंने कहा केस रजिस्टर की और हमने गुना दाखिल करके जो आगे का जो इन्वेस्टिगेशन हम चालू है.
0: काळ तपासावा याचे सर्व अँगल. म्हणजे कॅलेंडरवरती 13 आणि 14 जुलै म्हणजे ज्या दिवशी अमावस्या होती त्या दिवशी त्यांनी नो रिझल्ट असं लिहिलेलं आहे. तर त्याचा अर्थ काय? एक दुसरा असा आहे की घरामध्ये जी कुऱ्हाड आणली ती कुऱ्हाड कुठून आणली, ऑनलाईन मागवली, ऑफलाईन घेतली, कुठून घेतली, कशासाठी घेतली, त्याची चौकशी व्हावी.
2: तो प्रवीण को जो आप रोते हुए देख रहे हैं उसके पीछे की पूरी कहानी संक्षिप्त में अगर आपको समझाएं तो बारामती में एक महिला थी जिसने बी फार्मा किया हुआ था. वो अपने पति, देवर, सास ससुर और 2 बच्चों के साथ रहती थी. पति से बन नहीं रही थी और उसने पहले तो घर में सबकी रजामंदी से इस तरह का एक कहा कि गमला बनाना है बड़ा सा जिसमें हम पौधे लगा सके. और ये दरअसल इस फिराक में थी कि यहां पर एक दिन वो अपने पति को डालना चाहती थी. आरोपों के मुताबिक इसने मजदूरों को बुलाकर यह घर में बनवा लिया. फिर एक दिन उसने अपने पति को ऐसे नींद की दवाएं दी क्योंकि इसको जानकारी थी जिससे वो बेहोश हो जाए. और जब पति बेहोश हो गया उसके बाद इसने बैट से, जो बैट भी घर में आपको दिख रहा है, उस बैट से उसने मारा. उसके बाद से चादर में लपेट कर कुछ तकिया वकिया डालकर वहां पर इसने डाल दिया. ये स्लैब जो सामने में है, स्लैब से वो कवर करना चाहती थी लेकिन वो स्लैब इतना भारी था जैसा वो खुद पुलिस को बता रही है, जिसकी वजह से उठा नहीं पाई. उसने मजदूरों को घर पर बुलाया कि तुम इसको ढक दो. वही हवा का झोंका चला, कुछ हिला डुला और इन मजदूरों को दिखा कि वहां तो पैर किसी का है और उंगलियां हिल रही हैं. तब उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और बताया कि हमसे ऐसा ऐसा काम करा रहे हैं, यहां पर तो कोई जिंदा आदमी समाधि ले रहा है. उनको समझ ही नहीं आया. तो ये पूरी कहानी है जिसके बाद जब वो बेहोश हुआ उसके बाद मारने के बाद उसको इसमें डाला गया है. तो कुल मिलाकर जब मजदूरों ने भाई पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, फिर पूरी कहानी समझी गई. फिर वो खुद ही आकर बताती है कि उसने ऐसा किया है और उसकी स्ट्रैटेजी यही थी कि वहां पर वो बैट से मारा ही था, उसको लगा मर गया और नीचे दबकर मर जाएगा. पिछले कुछ समय में बारामती जैसी कई वारदातें सामने आई हैं जिसमें पत्नी द्वारा पति की हत्याएं की गई हैं. ये घटनाएं पति पत्नी के उलझे हुए संबंधों की कहानी बताती हैं जिसमें पति शिकार बनता है. कई बार ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें पत्नियां शिकार बनती हैं. और ऐसा नहीं है, आपने अनेकों ऐसे मामले देखे होंगे. नीले ड्रम की कहानी सुनी होगी आपने, देखा होगा किस तरह से नशे में चूर किसी और व्यक्ति से दोस्ती की वजह से कोई किसी को मार देता है. अलग अलग कहानियां अलग अलग जगहों से आती हैं. पत्नियों की हत्या हो रही है, पतियों की हो रही है. और यही सवाल है कि सब्र ऐसे टूट रहा है कि कब्र खुदे जा रहे हैं. एकम न्याय फाउंडेशन, ये एक एनजीओ का नाम है. इस एनजीओ ने भारत में पतियों की हत्या और वैवाहिक जीवन से जुड़े विवादों पर पतियों की आत्महत्या से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की. रिपोर्ट जनवरी से जून के बीच मीडिया में छपी अखबार जो खबरें हैं उसके आधार पर बनाई गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 के पहले 6 महीने के अंदर देश में इस तरह के 544 मामले आए हैं जिनमें से 554 मामले हैं जिनमें से 322 मामलों में पत्नियों ने पतियों की हत्या की है और पतियों ने आत्महत्या की है 232 केसेस में. पत्नियों ने वैवाहिक जीवन में इतनी परेशानियां अलग अलग जगहों पर हुई कि कई जो पति थे उन्होंने आत्महत्याएं भी की हैं. लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पतियों की हत्या और वैवाहिक संबंधों से परेशान पतियों की आत्महत्या के केस ज्यादा सामने आए. और ये बात हैरान करती है कि ज्यादातर मामलों में हत्या की वजह अवैध संबंध रहे हैं. हालांकि इसमें यह भी कहना जरूरी है कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें पत्नियों की भी हत्या की जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा पत्नियां ही पतियों को मार रही हैं, ऐसे बहुत मामले हैं जिसमें पति पत्नियों को मारकर दफना दे रहे हैं। कहीं पर अगर आप जाइएगा तो बहुत सारे गांव ऐसे मिलेंगे जहां पर अलग अलग नाम देकर लड़कियों को बदनाम किया जाता है, औरतों को, और उसके बाद उनको सामूहिक रूप से मार दिया जाता है, या कहीं पर दहेज के नाम पर जिंदा औरतों को जला दिया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि एकम न्याय फाउंडेशन के मुताबिक पति की हत्या से जुड़े 322 मामलों में से 194 यानी करीब 60% केस में एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध भी एक वजह रहा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक साल 2024 में हत्या के करीब 27,000 मामले सामने आए, जिनमें करीब 1,411 केस में अवैध संबंध कारण रहा है। पति का अवैध संबंध जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी की हत्या करता है, या पत्नी का ऐसा कोई संबंध जिसकी वजह से वो पति की हत्या कर देती है। हालांकि बारामती के मामले में फिलहाल ऐसा नहीं है, जांच में किसी तरह के अवैध संबंध की बात नहीं आई है। पुलिस ने आरोपी शर्मिला से पूछताछ की तो पता चला कि उसने प्रवीण की हत्या की कोशिश इसलिए की क्योंकि वो उसे नौकरी नहीं करने दे रहा था और उससे मारपीट करता था। ये भी गलत है, अगर कोई पति अपनी पत्नी को जानबूझकर घर में कैद करके रखता है, नौकरी नहीं करने देता है, लेकिन क्या इसकी वजह से किसी की हत्या की जा सकती है? कतई नहीं। इसी वजह से पति पत्नी के संबंधों में जहर घुल गया था कि वो नौकरी करना चाहती थी, शर्मिला डिप्रेशन में आकर ऐसा करने को, जो अपनी तरफ से वो बता रही है कि मैं डिप्रेशन में आ गई और मैंने इसी वजह से ये किया। ये भी सच है कि हमारे देश में डिप्रेशन एक बड़ी महामारी की तरह बढ़ रहा है। सामान्य तौर पर ये दिखाई तो नहीं देता लेकिन लोगों को अंदर ही अंदर खा रहा है। महिलाओं में डिप्रेशन की स्थिति ज्यादा बुरी है। हमारे देश की महिलाओं में डिप्रेशन यानी अवसाद पुरुषों की तुलना में लगभग दोगुना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस की एक स्टडी के मुताबिक देश की हर 10 में से 2 महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, जबकि हर 10 में से 1 पुरुष को यह समस्या है। इस स्टडी के मुताबिक, ये अपने आप में ये स्टडी ही बताने के लिए काफी है कि महिलाओं का किस तरह का उत्पीड़न होता है। ये अपने आप में इस बात को बताने के लिए काफी है कि महिलाएं जिस तरह के तनाव का सामना अपने जीवन में करती हैं। कई स्तर होते हैं, देखिए किसी भी अपराध में कुछ भी, हालांकि शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखा जा सकता है। बहुत सारी सतहें होती हैं जिसकी वजह से इस तरह के गुनाह आज समाज में हो रहे हैं। महिलाओं के अंदर अगर आप देखें तो पुरुषों की तुलना में डिप्रेशन एंग्जाइटी की समस्याएं ज्यादा है क्योंकि उनको कई बार घर, दफ्तर, बाहर, परिवार, तमाम समस्याओं का अकेले सामना करना पड़ता है और उनके पास कोई वेंट नहीं होता। कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपनी चार दीवारी में ही रह जाती हैं और कई बार उनको ऐसा कोई साथी, कोई दोस्त, कोई परिवार में प्यार करने वाला नहीं मिलता है जिसके साथ वो अपनी बातें बता सकें और फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन एंग्जाइटी की शिकार होती हैं। बारामती वाले केस में शर्मिला इस बात से अवसाद में चली गई कि उसे नौकरी नहीं करने दिया जा रहा था। शर्मिला को ये लगने लगा था कि उसकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो गई है और आज जब हम ये खबर बता रहे हैं तो देश की कई महिलाएं इस खबर से, इस बात से किसी न किसी तरीके से रिलेट कर रही होंगी। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इसकी वजह से किसी की हत्या नहीं की जा सकती। अब देखिए, पुलिस के मुताबिक इसी वजह से उसने पति की हत्या करने की योजना बनाई क्योंकि वो सबसे बड़ी बाधा था, नौकरी नहीं करने दे रहा था।
1: इसके पीछे कि उनका बार बार हमने उनको जो इंटरव्यू किया उसमें एक ही बताना कि उसको जो उसका एजुकेशन हुआ था, उसका बीटेक बी फार्मेसी का, तो बी फार्मेसी में उनको उसको जॉब करने नहीं दे रहे थे या उसको घर में जैसे नौकरानी का जैसे सलूक कर रहे, माँ जो गाली गलौज, रोज की मारपीट, बच्चों को मारपीट, ये इसकी वजह से वो डिप्रेशन में गई थी। उसी डिप्रेशन के द्वारा उसमें डिप्रेशन में उन्होंने वैसा हादसा क्या हादसा हुआ है, ऐसा उनका कहना है।
2: लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए कि कानून की किताबों हत्या की वजह कोई भी हो, हत्या जायज नहीं ठहराई जाती। ये भी एक सच है कि पतियों की हत्या के मामले में बहुत सारा आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से केसेस आ रहे हैं। कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं और ऐसी भी खबरें आई जहां पर किसी न किसी दोस्त के साथ मिलकर पतियों की हत्या पत्नियों ने की। कई सारे मामले ऐसे चर्चित रहे हैं, जल्दी से अगर आपको बता दें तो सबसे पहले आप मेरठ के नीले ड्रम वाली वारदात को याद कीजिए। पिछले साल मार्च में मेरठ की मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। मुस्कान ने पति की हत्या करने के बाद उसे शव को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से चुनवा दिया था और यही वो दोस्त था। ये कुछ वैसी ही प्लानिंग थी जैसी बारामती वाली वारदात में शर्मिला ने बनाई। मुस्कान ने नीले ड्रम में डाल दिया था, शर्मिला ने बालकनी में कब्र ही बनवा दी। पिछले साल 23 मई को राजा रघुवंशी हत्याकांड याद कीजिए। उस मामले में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने अपनी प्रेमी जो उनके दोस्त थे राज कुशवाहा, उनके साथ मिलकर हत्या कर दी थी, जबकि राजा रघुवंशी की शादी उसी महीने की 11 तारीख को हुई थी और वो सोनम के कहने पर हनीमून मनाने के लिए मेघालय के चेरापूंजी गया था और वहीं पर उसे मार दिया गया। 2 महीने पहले लोहागढ़ मर्डर केस, 20 साल की सिया गोयल ने अपने दोस्त चेतन के साथ मिलकर मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी थी। 18 जून को महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले के केतन को चट्टान से धक्का देकर मार दिया गया था। इसी साल मई महीने में आगरा में एक वारदात हुई थी जिसमें एक महिला ने अपने पति की हत्या करके उसके शव को बाथरूम में दफना दिया था। यही नहीं, उसने मजदूरों की मदद से उस पर प्लास्टर भी करवा दिया, पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। करीब 1.5 महीने बाद पुलिस ने इस वारदात का खुलासा किया था। इसी तरह मार्च में कर्नाटक के बेलगावी का एक मामला आया जिसमें भारतीय सेना से रिटायर हो चुके संदीप मंजरगी की हत्या कर दी गई थी। उनका एक्सीडेंट हुआ था, जांच में पता चला कि एक्सीडेंट के बाद जिस अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था वहां उन्हें जहर दिया जा रहा था और ये काम संदीप की पत्नी और उनके दोस्त के इशारे पर किया जा रहा था। पुरुष दोष के इस इशारे पर यह साजिश 2 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए रचा गया था और जून को महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले के केतन को चट्टान से धक्का देकर मार दिया गया था। तो एक नहीं अनेकों ऐसे मामले, अपने बुजुर्गों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि संबंधों में सब्र सम्मान और संयम सब होना जरूरी है। कई सारे मामले ऐसे होते हैं। अब देखिए ना, दहेज की हमने आपसे चर्चा की, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि साल 2022, 23 और 24 में 18,000 से ज्यादा महिलाओं की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। यह हत्याएं भी पति पत्नी के संबंधों में घुले दहेज नाम के जहर का परिणाम है। हम आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दें कि जब भी इस तरह की घटनाएं आती हैं जिसमें अवैध संबंधों या किसी अन्य कारण से पति पत्नी की या पत्नियां पतियों की हत्या करती हैं तो उसका असर विवाह जैसी सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है, युवाओं पर पड़ता है, उन परिवारों की सोचिए, बच्चों की सोचिए। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा बताता है कि साल 2011 में 17.2% युवा अविवाहित थे जबकि साल 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 23% हो गया। सिर्फ यही नहीं, जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला करने वाले पुरुषों का आंकड़ा लगभग 20.8% से बढ़कर 26.1% हो गया है और यही हाल महिलाओं का भी है। महिलाओं का आंकड़ा 13.5% से बढ़कर 19.9% हो चुका है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैवाहिक जीवन की परेशानियों, खुशहाल जीवन को लेकर युवाओं की सोच बदल रही है और इसकी वजह अपराध की ऐसी घटनाएं हैं जिसमें प्रेम, धोखा, टूट रही शादियां। हालात ये है कि युवा तो शादी नहीं करना चाहते या फिर बहुत सोच समझ कर इस फैसले को लेना चाहते हैं। राष्ट्रीय जो युवा नीति है 2014, उसके मुताबिक देश में 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों को युवा के तौर पर माना जाता है। देश में शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18, लड़कों के लिए 21 है, लेकिन पिछले कुछ समय में जीवन साथी की तलाश शुरू करने की औसत उम्र जो है वो 27 वर्ष से बढ़कर 29 वर्ष हो गई है। लोग पहले शादी करते थे कम उम्र में, अब 29 वर्ष पहुंच गई है एवरेज एज। यानी युवा शादी में देर से करना चाहते हैं, सोच समझ कर करना चाहते हैं। डेटिंग प्लेटफॉर्म क्वैक क्वैक के एक रिपोर्ट में सर्वे में 28 वर्ष से अधिक उम्र के 39% यूजर्स ने माना है कि शादी करना कोई मजबूरी नहीं है। इससे एक बात साफ है कि देश के युवा शादी बहुत सोच समझ कर करना चाहते हैं और उसमें देरी भी हो तो उनके लिए कोई बड़ा स्ट्रेस पॉइंट नहीं है। आज इंटरनेशनल यूथ डे है और इसीलिए हम देश के सबसे चर्चित मुद्दे की बात करेंगे जो है जेन जी और जेन अल्फा। आजकल हर मंत्री, हर सांसद, हर विधायक युवाओं की बात कर रहा है। सबकी जुबान पर जेन जी ने ये कहा, जेन जी ने वो कहा, जेन अल्फा की बात सुनो, तुम जेन अल्फा की बात सुनो, उनके हक की बात वो कर रहे हैं। लेकिन बातें करना अलग बात है और धरातल पर एक्शन लेना अलग है। महाराष्ट्र के नेता भी युवाओं के मुद्दे पर उनके साथ दिखते हैं, उनके हित में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इन बड़ी बातों के बीच गढ़चिरौली के एक बड़ी

तेजी, तरक्की और बहुत तेजी से चल रहे विकास की चर्चा होती है तो एक नजर गढ़चिरौली जैसी जगह पर भी पड़नी ही चाहिए। गढ़चिरौली, एक स्कूल में 6 छात्रों को सांप ने काट लिया है, जिनमें से 8 से 14 वर्ष की 3 छात्राओं की मौत हो चुकी है। 3 जिंदगी और मौत के बीच में इस वक्त भी जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं झूल रही हैं। ये छात्राएं स्कूल के हॉस्टल में रहती थी। बताया जा रहा है कि इन छात्रों की मौत भले ही सांप के काटने से हुई हो, लेकिन ये नौबत इसलिए आई क्योंकि इन बच्चियों के पास सोने के लिए एक बेड तक नहीं था। बेड ना होने की वजह से वो जमीन पर सोने के लिए मजबूर थी। अब इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस उच्च स्तरीय जांच के बाद होगा क्या? क्या इससे इन बच्चियों की जिंदगी वापस आ पाएगी? आप सोचिए, हमारे देश में ऐसे बोर्डिंग स्कूल भी हैं जिनमें बच्चों को सोने के लिए बेड तक नहीं दिए जाते, और वो भी गढ़चिरौली जैसी जगह में। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान मैं भी गढ़चिरौली गई थी। आप समझ सकते हैं, एक ऐसा इलाका है जहां पर काफी जंगल का इलाका है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं और इस वजह से सांपों का डर बहुत रहता है इन जगहों पर। युवाओं को शिक्षा देने के दावे करना और मौजूदा स्थिति में कई बार जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। जंतर मंतर और रांची में हो रहे युवाओं के आंदोलन में एक मुद्दा बेहतर शिक्षा का भी है, और इसके लिए सरकार को अपने बजट से खर्च कर बढ़ाना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के खजाने से स्कूली बच्चों को बेड उपलब्ध करवाना मुश्किल है, लेकिन सरकारी बजट से मंत्रियों और अधिकारियों के लिए लाखों करोड़ों रुपए का फर्नीचर खरीदना आसान बात है। साल 2025 में सरकार ने मंत्रियों और विधायकों से सरकारी खर्च कम करने के लिए कहा था, लेकिन उसी साल नागपुर के रवि भवन परिसर में बनी मंत्रियों की कोठियों में जानते कितना खर्च हुआ? 40 करोड़ रुपए का नया फर्नीचर लगाया गया था। जबकि साल 2024 में ही नेताओं की इन कोठियों का फर्नीचर बदला जा चुका था। मतलब एक साल के अंदर फर्नीचर बदला जा चुका था, अच्छी कंडीशन में था, लेकिन बदलना था। सरकारी पैसा पानी की तरह यहां पर बहाया गया और 40 करोड़ रुपए का रवि भवन परिसर नागपुर में मंत्री विधायकों के फर्नीचर पर खर्च हुआ। इसी साल अप्रैल में देश के सबसे अमीर बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसने अपने शिक्षा विभाग के लिए 91 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा था। सोचिए, बीएमसी द्वारा चलाए जा रहे मुंबई में कई स्कूल्स में बच्चों के लिए फर्नीचर नहीं है, उसने अपने शिक्षा विभाग के लिए 91 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। इस खर्च को लेकर काफी बवाल भी हुआ था, लेकिन आज हम बस याद दिलाना चाहते हैं फडणवीस सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, कि जितने भी आलिशान फर्नीचर आपको अपने लिए खरीदने हैं वो तो आप खरीदेंगे ही, कौन रोकेगा, लेकिन इन बच्चों की इन हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जेन अल्फा, जेन जी कोई प्रोटेस्ट करेंगे तब आनन फानन में कुछ कदम उठाया जाएगा, या फिर इन स्कूलों की सुध लेने वाला भी कोई होगा? होना तो यह चाहिए था कि अपने सांसदों, अपने विधायकों को कहिए कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर स्कूलों की हालत देखें। इस देश की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक यानी जो स्कूल्स है वो सबसे बड़ी समस्या है। न बैठने को ढंग के वहां पर कुर्सियां हैं बच्चे के लिए, न पढ़ाने के लिए ढंग से टीचर हैं। अगर हॉस्टल है तो हालत देखिए, सांप घुसता है, जमीन पर सो रही हैं बच्चियां और काट देता है, 3 की मौत हो जाती है, 3 आईसीयू में है। क्या व्यथा है इन माननीय सांसदों और विधायकों को, क्या अपने अपने इलाके में स्कूल अस्पताल की सुध लेने तक की नहीं सूझती है? महाराष्ट्र का कुल बजट 7,69,000 करोड़ रुपए है, जिसमें शिक्षा के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए अलॉट किए जाते हैं। गढ़चिरौली की घटना बताती है कि शिक्षा के नाम पर जो पैसा दिया जा रहा है वो न जाने कहां खर्च हो रहा है। आज आपको ये जरूर पता चल गया है कि सरकारी पैसे का असली इस्तेमाल कहां होता है। सवाल यही है कि कहीं पर मिड डे मील में दाल जो पानी की तरह बह रहा हो, कहीं पर चावल के साथ नमक, कहीं पर रोटी के साथ नमक, कहीं पर खाने में खिचड़ी में छिपकली, ये तो हालत है जब बात बच्चों की सेहत की आती है। बच्चों के लिए सोने को जगह नहीं है और वहां पर हॉस्टल है, जमीन पर सोने को मजबूर है। देखिए,

0: बच्ची को इधर कान में काटा, इसको एक लड़की के पैर में काटा है। बोलते हैं कि एक लड़के मर गए बच्चे, लेकिन पता नहीं।
1: तीन लड़कियां यहाँ भर्ती है, एडमिटेड है, और एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, एक क्रिटिकल है और एक मॉडरेट स्टेज में है। ऐसे टोटल तीन पेशेंट एडमिट है।
2: हालात तो ये है कि महाराष्ट्र में सरकारी बजट का इस्तेमाल ना शिक्षा पर हो रहा है ना सड़कों पर। जेंजी की बात करने वाले जो मंत्री हैं उनको जेन अल्फा सच का आईना दिखा रहा है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के स्कूली बच्चों ने राज्य सरकार को आईना दिखाया है। बच्चों ने इस बार अपने गांव की सड़क से रिपोर्टिंग की, एक खाली बॉटल को अपना माइक बनाया। हमने कल ही आपको दिखाया था कि बच्चियों ने छाते को अपना माइक बनाया था, अब उन्होंने बॉटल को माइक बनाया। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बच्चे भी जिस सड़क से स्कूल जाते थे उस सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे, बारिश के मौसम में स्थिति खराब, और उसकी वजह से ये बच्चे सड़क के गड्ढे दिखाकर सरकार प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं। वो बीच बीच में मजाकिया अंदाज में पूछ रहे हैं कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क।
3: खड्ड्यात रस्ता खड्डा किती खड्डे झाले, इकडे कोणी लक्ष पण देत नाही, काय नाही, इकडे थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे, आम्हाला शाळेत जाय त्रास होतो।
2: हमने आपको कल ही दिखाया था ना, महाराष्ट्र के रायगढ़ में बच्चियों की रिपोर्टिंग दिखाई थी जो ये दिखा रही थी। देवेंद्र फडणवीस सरकार को याद दिला रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। इन बच्चियों ने बारिश में खराब हो चुकी सड़क से रिपोर्टिंग की, बड़े बड़े गड्ढे दिखाए गए, छाते को माइक बनाया था, और आज बच्चों ने दोनों ही तस्वीरें दिखा दीजिए। आज बच्चों ने जो जेन अल्फा है उसने अब कुछ नहीं, एक बॉटल उठाया पानी का और उसी को माइक बना के उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी। तो कुल मिलाकर ये सारी तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि जिस जेन जी को आपने आंदोलन करते हुए देखा है, जंतर मंतर हो या रांची, वो परीक्षा पेपर लीक, नौकरियों की बोली, रेट लिस्ट देखकर वो परेशान है, तो ये बच्चे अब पूछ रहे हैं कि वो स्कूल कैसे जाएं इस मिट्टी से घोते हुए। ये बच्चे पूछ रहे हैं कि उनके लिए सोने की जगह क्यों नहीं है। ये बच्चे पूछ रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो स्थिति खराब हो रही है उसकी तरफ प्रशासन सरकार क्या देखेगी। सच ये है कि ये शिकायत ना किसी एक बच्चे की है, ना किसी एक सड़क की, ना किसी एक क्षेत्र की। इस तरह के कई इलाके हैं जहां यही हालात हैं और जेन अल्फा सवाल पूछ रहा है। सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं से केवल जेन अल्फा ही परेशान नहीं है। झारखंड के रांची में एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, जहां पर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। 19 दिनों से धरने पर जेन जी बैठा है, वो जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। इन छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा तक शांतिपूर्ण मार्च भी किया था, लेकिन जो नेता और मंत्री युवाओं के हितों की बात करते दिखे, उन्होंने मार्च को रुकवाने के लिए लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे, और यकीन मानिए अब तो हद हो गई है, छात्रों का धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए धरना स्थल की बिजली काट दी गई है ताकि छात्र परेशान हो जाएं और परेशान होकर यहां से चले जाएं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि झारखंड सरकार ने धरना स्थल के पंडाल की बिजली काट दी और काम कल देर रात किया जब प्रदर्शनकारी स्टेडियम में आराम कर रहे थे। सोचिए, सोते हुए बच्चों के साथ ऐसा करना। आरोप है कि राज्य सरकार का निर्देश था, पर कल देर रात कुछ पुलिस अधिकारी धरना स्थल पर आए। सबसे पहले उन्होंने प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाने का प्रयास किया। यह भी कहा गया कि भाई कुछ बातें तो जेपीएससी वालों की मान ली गई है, तो जेपीएससी वाले चले जाएं, जेएसएससी वाले रुक जाएं। जब प्रदर्शनकारियों ने कहीं जाने से इनकार कर दिया तो इन पुलिस अधिकारियों ने जाते जाते धरनास्थल के पंडालों की बिजली कटवा दी ताकि जो बच्चे इस गर्मी में परेशानी में, और ये भी इलाका आप समझिए रांची में भी, ये जो पूरा स्टेडियम है यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, मिट्टी है, बारिश है, पानी लगातार हो रहा है, इन सब के बीच बच्चे बैठे हैं ताकि ये पंखे भी ना चले और उनको मुसीबत का सामना करना पड़े। झारखंड सरकार के लिए ये धरना प्रदर्शन एक बड़ी मुसीबत बन गया है। इस धरना प्रदर्शन का चेहरा बन गए देवेंद्रनाथ महतो, अब भी आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका अनशन वहां भी जारी है। वो पिछले करीब 11 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं।
4: हमने अभी 4 से 5 बिना यूनिफॉर्म में पुलिस वालों को हमने अभी देखा है, और वो उन लोग की प्लानिंग चल रही है कि कहाँ से कौन भागेंगे, कैसे पकड़ा जाए, ये सब चल रही है।
5: स्टूडेंट के आसपास में घूम घूम के ऐसे, मतलब पूरा अपना उसमें कि डराने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ से डर के भागे।
6: बच्चों से मिलने के लिए आए थे उनसे कि किसी तरह का कोई समस्या है तो नहीं है, तो बच्चे से मिले।
7: ये जनरेटर किसने दिया था?
8: जनरेटर लेके जा रहा है,
7: काट दिया कनेक्शन। तारों ने दिया किसने था? ये किसका है ये जनरेटर?
8: सरकार के सोचे समझे चाल है, देख लीजिए यहाँ दिखाइए।
9: जो लगवाए थे,
10: कौन लगवाया था?
9: लगवाए थे कहाँ किया हो?
7: कौन है बंटी? कौन है ये
10: बंटी? कौन
9: काम करता है लाइट वाला?
8: जब तक हम लोग का जनरेटर नहीं आएगा तब हम लोग जाने नहीं देंगे सर।
7: दरअसल ये एक बड़ा जनरेटर यहाँ पर लगा था और इससे जो है कनेक्शन जोड़ा गया हुआ था, छात्रों ने हालांकि ये रखा था, उसके बाद ये जनरेटर भी आया हुआ था। अब ये नहीं बता रहे हैं कौन, लेकिन अचानक से वो कह रहे हैं जिसका जवाब है, छात्र कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन ने दबाव बनवाया है। उनके पास जो बचा है वो एक छोटा सा जनरेटर है यहाँ पर, ये इसी में जो है फ्यूल डाल के इसी के सहारे जो है अब ये काम चल रहा है, ताकि इसे मंच पे उन्होंने स्पीकर चला रखे हैं और जो बिजली की व्यवस्था है वो कर रखी है।
11: आज राष्ट्रीय युवा शक्ति है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग युवा लोग सब मार्च निकाल रहे हैं, इसलिए कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को होश में आओ, हम लोग का जो मांग है उसकी उसका पूरा करो।
8: जिस और जवानी चलती है उस और जवाना चलता है, इसलिए सरकार से विनम्र निवेदन है कि हम सभी युवाओं का हक दे दीजिए, हम लोग घर चले जाएंगे।
2: आज इस धरना प्रदर्शन में एक और घटना हुई है। धरना स्थल के पास एक व्यक्ति एयर गन लेकर पहुंच गया था। प्रदर्शनकारियों ने जब उस व्यक्ति के पास एयर गन देखी तो हड़कंप मच गया, वहां मौजूद लोग घबरा गए, लेकिन पुलिस को जैसी ही इसकी जानकारी मिली उन्होंने तुरंत उसे दबोच लिया। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि कुछ लोग साजिशन अव्यवस्था और डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आंदोलन खत्म हो जाए और बच्चे वहां से, जो युवा हैं, वहां से निकल जाएं। देश में स्वतंत्रता दिवस के जोश और लहराते तिरंगों के बीच कश्मीर घाटी से एक बार फिर सनसनीखेज और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत घाटी में तैनात कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों और पंडितों को आतंकवादियों ने खुलेआम निशाना बनाने की धमकी दी है। इस बार सिर्फ जुबानी या लिखित धमकी भर नहीं है, बल्कि एक नए आतंकी संगठन के नाम से बाकायदा एक हिटलिस्ट जारी की गई है, जिसमें कई सरकारी कर्मचारियों के नाम, उनके फोन नंबर्स सार्वजनिक किए गए। इस बड़े खतरे के बाद प्रशासन ने फिलहाल हिंदू कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने के निर्देश दे दिए हैं। इस बार धमकियों के पीछे लश्करे तैयबा से जुड़े एक नए आतंकी फ्रंट यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल यानी यूएलसी का हाथ सामने आया है। यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का ही एक मुखौटा है, जो घाटी में आतंक फैलाने के इरादे से शदमर नाम से काम करता है। लश्कर के इस आतंकी मुखौटे ने एक दस्तावेज जारी किया है, जिसमें खास तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों समेत कई सरकारी हिंदू कर्मचारियों के नाम और उनके फोन नंबर तक सार्वजनिक कर दिए गए हैं। प्रशासन के कान इसलिए भी खड़े हो गए हैं क्योंकि पिछले ही महीने दक्षिण कश्मीर में दो बड़े आतंकी हमले हुए थे। 22 जुलाई 2026 को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी पर गोलीबारी की गई। 31 जुलाई 2026 को कुलगांव में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया, जिसमें दोनों ने अपनी जान गंवा दी। एक के बाद एक आतंकी घटनाओं और ताजा धमकी के बाद शेखपुरा समेत तमाम कश्मीरी पंडित ट्रांजिट कॉलोनीज, हिंदू बहुल रिहायशी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा समीक्षा होने तक कर्मचारी अपने घरों से ही काम करें। सुरक्षा बलों की यह तैयारी और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश यूं ही नहीं है। कई बार आतंकी खासतौर पर हिंदू कर्मचारी हों, प्रवासी मजदूर हों, उनको निशाना बना चुके हैं। अक्टूबर 2021 श्रीनगर में एक हिंदू टीचर और एक सिख प्रिंसिपल की स्कूल में घुसकर हत्या कर दी गई थी, अगर आपको याद हो। और फिर मई 2022 को बटगांव में आतंकियों ने तहसीलदार का जो कार्यालय था, ऑफिस, उसमें घुसे, कश्मीरी पंडित कर्मचारी को चुनकर गोली मारकर हत्या कर दी। मई 2022 में ही कुलगांव में स्कूल के बाहर एक हिंदू शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी। फरवरी 2023 को पुलवामा में बैंक में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से ये नया आतंकी फ्रंट क्यों सक्रिय हुआ? इसके पीछे वजह क्या है? हूफेयर रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव है। घाटी में पिछले कुछ समय से कई कश्मीरी पंडित अपनी उन संपत्तियों, उन जमीनों को कानूनी रूप से वापस पाने में सफल हो रहे हैं जिन पर स्थानीय स्तर पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बांदीपुरा के एक कश्मीरी पंडित का मामला है, जहां इन व्यक्ति ने प्रशासन की मदद से अपनी जमीन का कब्जा वापस हासिल किया। उनकी 17 कनाल कृषि भूमि उन्हें वापस सौंप दी गई। ये व्यक्ति 1990 के दशक में पलायन कर गए थे, लेकिन अब जब उन्हें कानूनी रूप से उनकी जमीन वापस मिली तो स्थानीय स्तर पर भारी विरोध भी देखने को मिला था। स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्होंने ये जमीन खरीदी थी, यानी ये लोग नहीं चाहते थे कि ये व्यक्ति वापस लौटे और अपनी जमीन पर फिर से दावा करें। अब आतंकियों ने इन्हें धमकी दी है और विशेष तौर पर इनके खिलाफ धमकी भरा एक पत्र अलग से जारी किया है। इनका नाम है इनका जो नाम है और चेहरा है वो कई प्रिंट ऑनलाइन खबरों में सार्वजनिक कर दिया गया है, लेकिन हम ये मानते हैं कि इनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इनकी पहचान हम सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, ना हम आपको उनका चेहरा दिखा रहे हैं, ना हम उनका नाम बता रहे हैं, क्योंकि आतंकियों ने सीधा नाम लेकर इनको धमकी दी है और इनको खतरा है, इनकी जान को खतरा है। देखिए
12: थ्री से मैं इस पे अपना जो भी है कागज वागज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो भी थे वो सारा कुछ देख के मुझे एक पीस ऑफ लैंड आज मिला है। आज मैंने दूसरी बार ये पोजीशन ली है, फर्स्ट टाइम एनक्रोच हुई थी और मेरी लड़ाई भी बाकी है, क्योंकि 186 कनाल लैंड मुझे एक दिन तो मिलेगी नहीं। अभी मुझे पीस ऑफ लैंड मिला है, वेरी थैंकफुल टू एडमिनिस्ट्रेशन, थैंकफुल टू गवर्नमेंट, थैंकफुल टू LG साहब एंड डीव काउंसिल एस्पेशली हु टुक द वेरी गुड स्टेप्स।
2: आतंकियों की बौखलाहट यही है कि घाटी में हालात सुधर क्यों रहे हैं और वो भी ऐसे लोगों को उनकी जमीन वापस क्यों मिल रही है। वही कश्मीरी पंडित जो अपने ही देश में अलग अलग जगहों पर शरणार्थी बन के रह रहे थे, अगर उनको अपनी जमीन मिल रही है। घाटी में फिर से मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, कश्मीरी पंडित अपने जमीनें वापस ले रहे हैं, सामान्य जीवन की तरफ लौटने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचिए कितना खड़ रहा होगा उन आंखों को जिन्होंने हमेशा कश्मीर को बुरी नजर से देखा। कश्मीर के बच्चों युवाओं के हाथों में तिरंगा है, स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा लहरा रहे हैं, हर घर तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, लाल चौक पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का जश्न मन रहा है। घाटी की ये तस्वीरें आतंकवादियों उनके समर्थकों के सीने में कटार की तरह चुभ रही हैं। आप भी घाटी की ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिए।

0: पाकिस्तान समर्थित इन तत्वों को ये बात कहां से रास आएगी? और यही वजह है कि आतंकियों ने स्थानीय लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। वो कश्मीरी पंडितों के घरों और फसलों को निशाना बनाए। साफ है कि ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ कुछ धमकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कश्मीर में शांति बहाली की प्रक्रिया को बाधित करने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन इस तमाम खौफ और अनिश्चितता के बीच घाटी में रह रहे कश्मीरी हिंदुओं ने जिस साहस का परिचय दिया है, वो वाकई एक मिसाल है। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि वो नासमझ नहीं है। पाकिस्तान और उसके पाले हुए इन संगठनों के हर नापाक इरादे और प्रोपेगेंडा को वो अच्छे से समझते हैं। वो इस बार डरेंगे नहीं। आतंकी धमकियों के बीच घाटी में राजनीति भी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को इस धमकी में भी साजिश नजर आ रही है।
1: हैरान हूं मैं, इतनी सिक्योरिटी होके अगर ये हाल है, फिर तो इनको रिजाइन करना चाहिए, इनको जाना चाहिए दिल्ली, वापस जाना चाहिए।
2: किनको?
1: गवर्नर साहब को।
3: हमारे उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान कि उन्हें रिजाइन करना चाहिए, ये तर्कहीन बयान उन्होंने दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बड़े राजनेता हैं, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं।
0: अब आपको ये दूसरी तस्वीर भी देखनी चाहिए, जिस वक्त घाटी में कश्मीरी पंडितों को धमकी दी जा रही है जो वहां के मूल निवासी हैं। इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को धमकी और आतंकी हमले किए जा रहे हैं। तब इसी जम्मू कश्मीर में बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं को उनका कोई विरोध नहीं कर रहा। जो लोग कश्मीरी पंडितों की वापसी पर दुखी हैं, उन्हें शायद घुसपैठियों से कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर में चल रहे डेमोग्राफिक शिफ्ट का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि दशकों से अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे कश्मीरी पंडित न्याय और वापसी की आस लगाए बैठे हैं, जबकि दूसरी तरफ म्यांमार और बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए जम्मू की जमीनों पर आबाद हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू संभाग में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों समेत 13,700 से अधिक विदेशी नागरिक रूप से दर्ज हैं। विधानसभा में सरकार का जो जवाब है वही हमारा सोर्स है और उसी हवाले से हम बता रहे हैं। सबसे ज्यादा घुसपैठिए जम्मू और सांबा जिले में हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 2008 से 2016 के बीच इनकी संख्या में 6,000 से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई थी। सरकारी आंकड़ों से इतर जम्मू कश्मीर में इन घुसपैठियों की संख्या काफी ज्यादा बताई जाती है, जो जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में फैल चुके हैं। इसी महीने रामबन जिले के बनिहाल में सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान 21 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। कठुआ जिले की हीरानगर जेल को 5 मार्च 2021 को अवैध प्रवासियों को रखने के लिए होल्डिंग सेंटर बनाया गया था। तब से लेकर अब तक लगभग यहां पर समझ लीजिए 275 रोहिंग्या रह रहे हैं, लेकिन इन्हें म्यांमार वापस भेजने को लेकर अभी तक कोई ठोस काम हुआ ही नहीं। तो सवाल ये भी है, ये भी एक आईना ही समझिए। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 17.5 रुपए हम आपको जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट है। सामाजिक योजनाओं को चलाने का खर्च सरकारें टैक्स और सेस लगाकर पूरा करती है, लेकिन टैक्स और सेस किन वस्तुओं पर लगे, किस तरह का टैक्स किस तरह का सेस लगे, कितना टैक्स लगे कितना सेस लगे, इसका एक नैतिक एक आर्थिक आधार होना चाहिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश में लगाए गए एक सेस की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ और विधवा सेस लागू हो गया है। आपको याद होगा 2023 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन बहाल करने जैसे वादों के साथ सरकार बनाई थी और फिर काफी मुश्किलों का अर्थव्यवस्था को वहां सामना करना पड़ा। कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर पात्र महिला को 1500 रुपए प्रति महीने, युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देने, ग्रामीण सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा देने के अलावा हर पशुपालक से रोजाना 10 किलो दूध खरीदने, 2 रुपए प्रति किलो के रेट से गोबर खरीदने, हर घर में 4 गाय तक की खरीद पर सब्सिडी देने का वादा किया गया। अब ऐसे वादों पर चुनकर आई सुक्खू सरकार पिछले 3 सालों में पहले भी सरकारी कर्मचारियों को लेट सैलरी देने और सारे वादे पूरा न करने या आधा अधूरा वादा पूरा करने को लेकर सवालों के घेरे में आई। हालांकि 10 बड़े वादों में से ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे 7 वादों को पूरा करने का दावा है, लेकिन इन वादों की कीमत समझिए। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार के खर्च का 29% जो पैसा है वो अकेले पेंशन पर जाने का अनुमान है। 2026-27 में हिमाचल प्रदेश के खर्च का 88% हिस्सा सिर्फ सैलरी पेंशन कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च होने वाला है। हिमाचल प्रदेश का मौजूदा जो कर्ज है वो 1,04,000 करोड़ है। 2026-27 में हिमाचल प्रदेश को 13,000 करोड़ का रीपेमेंट करना है, जिसके लिए सरकार इस साल 10,000 करोड़ का कर्ज लेने की योजना बना रही है। राज्य के आर्थिक घाटे की भरपाई के लिए सुख सरकार की माता पच्चियां पहले भी विवादों में आई है। अक्टूबर 2024 में हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग ने प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपए महीने सीवरेज टैक्स लेने की घोषणा की थी। इस टॉयलेट टैक्स पर मचे हंगामे के बाद पहले यह दलील दी गई कि यह सामान्य सीवरेज टैक्स है, लेकिन बाद में इसे वापस लिया गया। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
2: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। पीएनबी, मेरा अपना बैंक।
3: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सुंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
3: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
4: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
3: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
4: सुपर स्ट्रॉन्ग
3: और मॉइस्चर प्रूफ।
5: वारंटी
3: 15 साल की।
4: कदम
3: सर प्लीज
4: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
6: क्रॉसबॉन्ड HDMR मैक्स, फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
7: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
8: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
9: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
8: मतलब
9: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
8: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
9: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।
10: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
11: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
12: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन, संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग एंड व्हेन आई से वी आई मीन द यंगर जनरेशन ऑफ दिस कंट्री हु शॉट दोज स्टूडेंट्स, हु गेव द ऑर्डर to shoot those students, who blinded one of the students, who shot one of the students in the ear, who gave the order to beat the students with lathis, with nails, who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. So the question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 din ke liye. 20 din ke liye gayab ho gaye. Yahan baithe the. Gaadi aati thi, jaati thi. 30 gaadiyan unke. Student should know this. 30 cars around Amit Shah. उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए, right? तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस।
3: सब ने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे, किसी ने, गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए, पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था। प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं। और देश भर से लोग आए वहां, आप नाम लीजिए, वो वहां पहुंचे हुए थे। और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे। चंदा सारी गायब हो गई है। आया कंट्री, पूरे देश से चंदा आई थी राम मंदिर के लिए। सब ने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे, किसी ने, गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए, पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री है, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं। और देश भर से लोग आए वहां, आप नाम लीजिए, वो वहां पहुंचे हुए थे। और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे। चंदा सारी गायब हो गई है, ये क्या तरीका है?

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही, आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और पहले लोग सफल होना चाहते थे, आजकल लोग वायरल होना चाहते हैं। नमस्कार।
4: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: विपक्षी हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह का ऑफर, कहा सदन में हो जाए चर्चा, मैं पूरे समय बैठूंगा, सुनूंगा और दूंगा जवाब। राहुल बोले, बहस नहीं, सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान, कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की शिरकत, एनडीए सांसदों ने निकाली बाइक रैली। झारखंड छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में एबीवीपी। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बदलाव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले छात्रों शिक्षण संस्थाओं के साथ होगी चर्चा, उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। और एयर इंडिया के मामले में आज तक की बात, मेंटेनेंस रिपोर्ट, एक मिनट में आए 3 बार हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट, 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक, क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टीज जेन जी पर डोरे डाल रही हैं? तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि 2027 में उत्तर प्रदेश से लेकर हमारे देश के 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन चुनावी राज्यों में जेन जी वोटर्स एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर रहे हैं। अपने अधिकारों, अपने भविष्य को लेकर नई पीढ़ी जिस तरह से सजग और मुखर नजर आ रही है, राजनीतिक दलों को मैसेज बहुत क्लियर है। जहां जेन जी वहां पलड़ा भारी। फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, संघ प्रमुख मोहन भागवत हो या फिर विपक्ष, हर कोई जेन जी को अपने पाले में खींचने की भरपूर कोशिश कर रहा है। तो आइए हम आपको दिखाएं, जेन जी साथ आएगा तो चुनाव जितवाएगा।
1: जेन जी के सहारे देश के चुनाव सारे। कैसे जेन जी को लुभाने में जुटा देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जेन जी वोटर की प्लानिंग शुरू। जंतर मंतर से ताकत दिखाई, सबको जेन जी की याद आई। जेन जी साथ आएगा तो चुनाव जिताएगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ जेन जी ने दम दिखाया तो सिस्टम को हिला डाला। इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, लेकिन जेन जी की ताकत का एहसास हर सियासी पार्टी को हो गया।
2: लाखों युवाओं से मैं मिला,
3: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि
1: पीएम मोदी इंस्टा पर आ गए और जेन जी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की। और आज भी पीएम मोदी देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी को मैसेज दे रहे हैं। जी हाँ, मौका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी के विमोचन का था, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा मैसेज जेन जी को दिया।
4: रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते। तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की, इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है।
1: जेन जी की ताकत हर कोई समझ रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जेन जी आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर संघर्ष के लिए आगे आ रहा है। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है, इसलिए ये अपनी समस्याओं को केवल निजी चर्चा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें सार्वजनिक बहस का विषय बना देती है। भारत में जेन जी ने विरोध का एक नया मॉडल विकसित किया है। छात्र केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड, हैशटैग कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है।
5: सारे जेन जी की जगह ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, आप लोगों का स्वागत है। इस भारत को आप ही लोगों को संभालना है, क्योंकि आप लोगों की आबादी 65% है। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे आके सुनते हैं, आप लोगों की बातों पर इतना गौर किया जा रहा है इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो मैं सारे जेन जी को प्रणाम नमन करता हूँ।
1: राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम के कैंपेन से खुद को जेन जी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं।
6: क्या है, जेन जी में सेल्फीज बड़ी कॉमन है।
7: चलिए
8: हम सब तैयार है सर के साथ सेल्फी के लिए।
2: मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो।
1: तो जेन जी की ताकत को आरएसएस ने भी समझा है और जाना है, तभी तो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी के साथ संवाद किया।
9: जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
10: बिल्कुल
9: उसको ठीक करना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है।
1: आज जेन जी की आवाज को सियासी पार्टियां अनसुना नहीं करना चाहती तो उसके पीछे बड़ी वजह है। 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावी राज्यों में युवा मतदाता सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की संख्या 22.78% है, जबकि यूपी में 18 से 29 साल के उम्र के लोग 21.19%, गुजरात में 23.32%, पंजाब में 21.44%, उत्तराखंड में 22.18%, हिमाचल प्रदेश में 21.91%, मणिपुर में 23.74% और गोवा में 19.60% आबादी 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की है।
11: सिर्फ जेन जी ही नहीं बल्कि जेन अल्फा भी देश में अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। जुलाई के महीने में जंतर मंतर से उठा जेन जी का ज्वार अब जेन अल्फा तक पहुंच चुका है। जेन जी अगर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भर्ती पर घेरता है सरकार को, तो जेन अल्फा स्कूलों की स्थिति, सड़क की बदहाली पर सीधा सवाल करने लगा है। और इसीलिए अब बीजेपी हो या विपक्ष, हर कोई जेन जी और जेन अल्फा के साथ सीधा कनेक्शन साधने में जुट गया है।
1: जंतर मंतर के आंदोलन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माइलेज लेने की कोशिश की और अखिलेश यादव ने यूपी के मुद्दों को जंतर मंतर से लेकर संसद तक सामने रखा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा।
12: ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
1: तो अब यूपी में सीएम योगी और बीजेपी की पूरी मशीनरी जेन जी को लुभाने में जुट गई है। यूपी सरकार के मंत्री मनोज पांडे रायबरेली में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करते हैं और जेन जी को साधने की कोशिश करते हैं।
13: संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया, कई हजार यूथ आज इस युवा संवाद में शामिल हुए और ये उनसे सीधे संवाद हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है।
14: समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे। समाजवादी पार्टी ने सबसे कम उम्र के लोगों को चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा। अगर मुझे अपना मैं अगर बात करूं तो मैं जब 25 साल 4 दिन की थी तब मैंने नॉमिनेशन किया था, तो मैं भी एक जेन जी हूं।
1: यूपी में योगी सरकार और बीजेपी ने जेन जी संवाद के लिए कैंपेन शुरू किया है, जिसमें योगी सरकार के मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेन जी चौपाल करेंगे। विधानसभा बार टीमें तैयार करने की तैयारी की जा रही है।
15: चुनावी साल नजदीक है, ऐसे में
10: अब राजनीतिक दलों को यह समझ आ चुका है कि केवल परंपरागत नारों से ही काम नहीं चलने वाला है। उन्हें मालूम पड़ गया है जेंजी का जो उबाल पूरे देश में इस वक्त देखने को मिला है अपने मुद्दों को लेकर वो मामूली तो नहीं, और इसलिए बीजेपी अब अपनी यूथ विंग के जरिए स्कूल कॉलेजों में युवाओं से युवाओं के संपर्क कराकर संपर्क साधने जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार के मंत्री भी अब इसमें आ गए हैं।
1: बड़ी बात यह है कि सिर्फ जेन जी ही नहीं बल्कि जेन अल्फा ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। अब यूपी के हमीरपुर में ही देख लीजिए, स्कूल के रास्ते में आने वाले गड्ढों के खिलाफ जेन अल्फा तिरंगा लेकर निकल पड़ता है। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। ये बच्चे डीएम ऑफिस तक पहुंचते हैं और जेन अल्फा के आक्रोश के बाद प्रशासन भरोसा देता है कि अब जल्द ही यहां 1,81,00,000 रुपए खर्च कर सड़क बनवाई जाएगी।
15: हमें सड़क के बारे में कोई सोचना करनी है।
16: कितनी बार यहां आ चुकी हैं?
15: यहां कम से कम 2-4 बार तो आ ही चुके हैं, लेकिन यहां कोई सुनाई ही नहीं करता। बस बता देते हैं जाओ जाओ जाओ, एक हफ्ते में काम चालू हो जाए, 2 दिन में काम चालू हो जाए, लेकिन कोई काम हम चालू नहीं होता। आश्वासन देने भगा दिया था, हम लोग चले जाते हैं वापस। बता देते हैं एक हफ्ते में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, लेकिन काम ही चालू ही नहीं।
1: जेन अल्फा के आगे झुकना भी सियासी पार्टियों की मजबूरी क्यों है वो भी आपको समझाते हैं। भारत के कानूनी नियमों के अनुसार वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 साल है। इस नियम के हिसाब से जेन अल्फा के बच्चे साल 2028 से 2042 के बीच वोटर बनने के योग्य होंगे। इस पीढ़ी के सबसे बड़े बच्चे जिनका जन्म 2010 से 2011 के बीच हुआ था वो साल 2028 से 2029 तक 18 साल के हो जाएंगे, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में इनका एक छोटा हिस्सा पहली बार मतदान करेगा। और इसीलिए सियासी पार्टियां ना जेन जी को नजरअंदाज कर सकती हैं और ना ही जेन अल्फा को। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
11: आपने देखा जेन जी के सहारे अब राजनीतिक दल अपनी चुनावी नैया पार करवाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। अब सवाल यही है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जेन जी क्या करता है? क्या उत्तर प्रदेश में परिवर्तन जेन जी चाहता है या फिर योगी के तीसरे टर्म पर जेन जी मुहर लगाता है?

0: दिल्ली के जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। रांची में सरकारी नौकरियों की भर्ती में हुई धांधली के खिलाफ जारी प्रदर्शन ने झारखंड सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। मतलब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए देश का युवा अब समझौता नहीं बल्कि ऑन द स्पॉट समाधान चाहता है। युवाओं की नई रीति और नीति ने 2029 से पहले सत्ता के सेमीफाइनल यानी अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष की चुनौती बढ़ा दी है तो विपक्ष की नजर युवा वोटरों पर टिक गई है। राहुल गांधी युवाओं से सीधा संवाद करने प्रयागराज पहुंचे और 2027 के साथ साथ 2029 का एजेंडा एकदम साफ कर दिया। अखिलेश यादव के चुनावी मुद्दों में सबसे ऊपर युवाओं की बुनियादी मांगे हैं तो जंतर मंतर और रांची आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री योगी युवाओं की नाराजगी को दूर करने में जुटे नजर आ रहे हैं।
1: हिंदुस्तान के पास यूथ है और सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है।
2: जिस तरह छात्र नौजवानों के साथ हुआ, लाठी चली, पहले गन चली।
3: 56 से 60% युवा जनशक्ति है।
0: यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सबसे बड़ा मुद्दा युवा वोटर बनकर उभरे हैं। ऐसा क्यों? इसे आप उत्तर प्रदेश में युवा वोटरों के आंकड़ों से समझिए। यूपी में कुल वोटर्स करीब 13 करोड़ हैं। इनमें जेन जी यानी 18 से 27 साल के वोटर्स 2.07 करोड़ हैं, यानी लगभग 15%। यूपी में जिन सीटों पर जेन जी वोटर्स का असर है वो यूपी विधानसभा की 403 में से लगभग 80 से 120 सीटें हैं। मतलब 2027 में सत्ता की चाबी युवा वोटरों के हाथ में है। सत्ता के सिंहासन पर लगा बहुमत का ताला युवा वोटरों की चाबी से खुलेगा। सवाल यही है कि युवा वोटर किसे चुनते हैं, क्योंकि जंतर मंतर आंदोलन के बाद हुए दो विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों को बीजेपी के लिए खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा रहा है। 2023 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने 2/3 से ज्यादा बहुमत दिया। 230 में से बीजेपी 163 सीटें जीती, लेकिन 2026 में हुए दतिया का उपचुनाव बीजेपी नहीं जीत पाई। ठीक ऐसे ही बिहार की बाकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी अपनी परंपरागत सीट जीतने में नाकाम रही, जिस सीट पर 35 सालों से बीजेपी का कब्जा था और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। तो क्या युवा वोटरों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ी?
4: जेन जी आंदोलन के बाद बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है और उसके आगे सबसे बड़ी चुनौती 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। योगी आदित्यनाथ की चुनावी डगर आसान नहीं है क्योंकि राह में फूल से अधिक पत्थर है। 10 वर्षों की सत्ता विरोधी लहर से योगी आदित्यनाथ को निपटना है तो रोजगार और शिक्षा के मुद्दों पर युवाओं की नाराजगी को दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ के पास बहुत कम वक्त बचा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में अपना ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड युवाओं यानी कि जेन जी के सामने रख रहे हैं।
5: हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए, ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए, जनता की सुनवाई करेंगे।
0: योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस उनके मिशन जेन जी पर है। मकसद है जंतर मंतर आंदोलन के दौरान नजर आई युवाओं की नाराजगी को वक्त रहते जल्द से जल्द दूर करना।
6: हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके।
0: चुनाव में वक्त कम है, लिहाजा योगी का मिशन जेन जी फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। कई मोर्चों पर युवाओं को साधने की कोशिशें जारी हैं। मुख्यमंत्री योगी तिरंगा यात्रा और दूसरे कार्यक्रम के जरिए युवाओं से सीधे संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक नई युवा नीति का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। योगी के मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में जेन जी के साथ चौपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन की तरफ से स्कूल कॉलेजों में छात्रों के साथ सीधे संवाद किया जाएगा। हर विधानसभा सीट पर ज्यादा से ज्यादा युवाओं से संवाद करेगी स्पेशल टीम। आला अफसरों को छात्रों से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान निकालने का आदेश।
5: यूपी के अंदर बहुत शीघ्र युवा नीति लेकर के आ रहे हैं। हर जिले के अंदर, हर महाविद्यालय के अंदर
7: हर विश्वविद्यालय के अंदर युवा के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था, आपको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी हो, आपको आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय में हम वर्चुअल भी और फिजिकल भी वहां क्लास की व्यवस्था रहेगी। और पढ़ाने वाले कौन होंगे? पढ़ाने वाला होगा वहां का डीएम भी एक घंटा देगा, एसपी एक घंटा देगा, क्योंकि उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है।
0: योगी का प्लान यही है कि 2027 में प्रदेश की युवा शक्ति का आशीर्वाद उन्हें मिले, लिहाजा योगी का फोकस जेन जी की पढ़ाई पर है। सरकारी कोचिंग में आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने वालों की कलेक्टर और कप्तान की क्लास होगी। नीट एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए मुफ्त में डॉक्टरों की क्लास होगी। आईआईटी की तैयारी करने वाले छात्रों को सरकारी महकमे में तैनात आईआईटीएन अफसर पढ़ाएंगे। बैंक पीओ की तैयारी करने वाले छात्रों के क्लासरूम में सरकारी बैंकों के मैनेजरों की ड्यूटी लगेगी। योगी का दावा यही है कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है।
7: आज आप राजनीति कर रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं, उस नौजवान के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपके समय में उस नौजवान की नौकरी में डकैती पड़ती थी, उस नौजवान के साथ अन्याय होता था। आज बहनों और भाइयों, हम लोगों ने तय कर रखा है, अगर नौजवान के भविष्य के साथ किसी व्यक्ति या संस्था ने खिलवाड़ किया तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लेंगे और खिलवाड़ करने वाले को आजीवन कारावास की सजा भी करवा देंगे।
8: प्रधानमंत्री मोदी से मार्गदर्शन लेकर लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो अपना फोकस ही युवाओं पर शिफ्ट कर दिया है। सिर्फ सरकार नहीं बल्कि पार्टी भी इसमें एक साथ जुड़ी हुई है। एक तरफ मुख्यमंत्री और उनके मंत्री जगह जगह युवाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बीजेपी का जो यूथ विंग है उसे भी हर जिले जिले यूथ कनेक्ट का कार्यक्रम दिया जा रहा है।
0: 2027 के लिए योगी के प्लान जेन जी को काउंटर करने के लिए अखिलेश यादव की तैयारी पूरी है। जंतर मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन का खुलकर समर्थन किया। डिंपल यादव खुद जंतर मंतर गए और देश की संसद में अखिलेश यादव जंतर मंतर पर हुए पुलिस एक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर आक्रामक है।
9: झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की और सरकार बातचीत कर रही है, हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड के लोगों को नौकरी देने के लिए? भाई भारत सरकार अगर कुछ काम अच्छा करती तो स्टेट गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती। असली जिम्मेदार अगर कोई है बेरोजगारी के लिए और नौजवानों को उनका भविष्य अंधकार में डालने के लिए, वो भारत सरकार।
0: अखिलेश को पता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। 2027 में उनकी वापसी से 2029 आम चुनाव के चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं, लिहाजा रोजगार और शिक्षा के बदहाल सिस्टम पर सीधी चोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। 2 अगस्त को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने यही दावा किया कि समाजवादी पार्टी में जेन जी और जेन अल्फा के काफी मेंबर हैं, नई पीढ़ी का समर्थन उनके साथ है। वैसे छात्रों के आंदोलन के बाद युवाओं में सरकार के खिलाफ नाराजगी और बदलाव की चाह दिखी, जिसका फायदा अब अखिलेश यादव 2027 में उठाना चाहते हैं।
8: अखिलेश यादव लगातार अपने युवाओं के जरिए सर्वे भी करा रहे हैं कि आखिर युवाओं का मिजाज क्या है, किस तरीके से 2027 के चुनाव में जाना चाहिए और मुद्दे क्या क्या होने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सारा फोकस जेन जी यानी युवाओं और महिलाओं पर आ रहा है, ये लगता है कि चुनाव के मुद्दे इस बार उनके ही इर्द गिर्द होंगे।
0: विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जेन जी को लुभाने में जुटे हैं, लेकिन सियासत से दूर लखनऊ यूनिवर्सिटी के जेन जी छात्र अपनी पेंटिंग से एक अलग संदेश दे रहे हैं।
10: ये जो पेंटिंग है इसमें भी यूथ को दिखाया गया है, जेन जी जो है वो आगे का एक मैसेज दे रहा है।

0: साथ रहना है। और यही वजह है कि जैन जी आज के समय में जो कहना चाहते हैं पेंटिंग के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ही सड़कों पर पेंटिंग की जाएगी जिनमें माफिया राज का कंपैरिजन किया जाएगा कि अभी का कैसे और पहले कैसे। हालांकि ये दावा करते हैं स्टूडेंट कि हम किसी भी दल से नहीं है, लेकिन उनका मानना है वो किसी भी समाजवादी पार्टी से हो, बसपा से हो, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, युवा इसको देखे और समझे कि आखिर उनको किस दिशा में जाना है।
1: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो आपको दिखाएंगे ईरान में फूले हाथ पांव तो ट्रंप ने चला नया दांव। आप देखते रहिए
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?

0: आगे आगे
1: अरे उधर
0: उधर गया
1: करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
10: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
12: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: बिजली का बिल पेड,
17: तो है मोबाइल रिचार्ज भी करा दिया।
18: कैसे?
17: भीम पेमेंट्स ऐप से करो हर तरीके के पेमेंट और पाओ 300 रुपए तक का कैशबैक हर महीने। भीम ऐप से करो
18: पे।
19: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
20: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
21: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
22: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar, ekdam solid.

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: In association with
2: Sarah Sanitaryware, it's your moment of Sarah. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर,

0: ये तूफानी सैलाब ऐसे आया कि सब कुछ तबाह हो गया। नीति घाटी में सोमवार को इसी फ्लैश फ्लड ने तबाही मचाई थी। चार पहिया गाड़ी और बीआरओ का करीब 40 मीटर लंबा पुल भी तेज बहाव के सामने टिक नहीं पाया। देखते ही देखते ये धोली नदी में समा गया। सैलाब और मलबे की चपेट में आने से सड़क, पुल और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। उस तबाही के बीच दो दिन बाद भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें मंगलवार की हैं। मंगलवार को प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया। दूसरी ओर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए आईटीबीपी ने कमर कस ली है। कल जवान रस्सियों के सहारे लोगों को सुरक्षित निकालते दिखे। डॉग स्क्वाड टीम भी एक लापता बीआरओ जवान की तलाश में जुटा रहा। इस मिशन में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और प्रशासन की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। इस आपदा की वजह से नीति घाटी के करीब 13 से 14 गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय जोशीमठ से कट गया है। सड़क पर आवाजाही अब भी बाधित है। प्रशासन और बीआरओ इस मुहिम में जुटा हुआ है। अभी प्राथमिकता लापता जवान की तलाश और फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। साथ ही प्रभावित गांवों से संपर्क बहाल करना भी चुनौती है। अब आज प्रशासन इस इलाके का एरियल सर्वे भी करेगा। कमल नयन, सिलोरी, चमोली आज तक। हर साल मानसून मानो सिस्टम की पोल खोलने के लिए ही आता है। अब राजस्थान के झालावाड़ का हाल देखिए। चार घंटे के भीतर 300 मिलीमीटर बारिश हुई और इलाके में लोग त्राहिमाम कर उठे। ये स्कूल का वीडियो है। यहाँ पानी ऐसे बह रहा है मानो बांध खुल गया हो। पानी में फंसे बच्चों को निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया।
1: इस भारी वर्षा के कारण से नदी नालों का जो प्रवाह है उसने विकराल रूप धारण कर लिया और सभी जगह सड़कों पर, नालों पर जल प्रवाह बढ़ गया था। इसके चलते हमारे क्षेत्र के कई गांवों में, कई घरों में कल पानी भर गया था। दो जगह स्कूलों में बच्चे भी फंस गए थे, लेकिन प्रशासन की सक्रियता से और ग्रामवासियों के सहयोग से बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया।
0: अब राजस्थान के बूंदी का वीडियो देखिए। रेगिस्तानी सूबे के शहर में मूसलाधार बारिश से सड़कें दरिया में तब्दील हो गईं। दो दिन की लगातार बारिश से बूंदी शहर के इस बाजार का ये हाल है। दोनों तरफ दुकानें और बीच की सड़क पानी से लबालब। बूंदी के छत्रपुरा इलाके का हाल देखिए। सड़कों से लेकर घरों की रसोई और दुकानों तक में पानी घुस गया। लोगों का आरोप है कि समय रहते प्रशासन ने बरसाती नालों की सफाई नहीं करवाई, जिसके कारण ये हालात बने। सड़क हो, मकान हो या दुकान, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। राजस्थान का गंगापुर भी करीब घंटे भर की बारिश में त्राहिमाम कर उठा। मंगलवार शाम करीब 4 बजे बारिश शुरू हुई और घंटे भर के बाद गंगापुर सिटी का ये हाल था। नया बाजार, फव्वारा चौक, उदय मोद्दा, सालोदा, ईदगाह, कचहरी रोड समेत कई इलाके जलमग्न हो गए। और अब एक तस्वीर जम्मू कश्मीर के कठुआ की, जहां अचानक आई बाढ़ में 7 जिंदगियां फंस गईं। ये तस्वीरें कठुआ के माहीचक इलाके की हैं। वहां उंझ नदी में उफान बढ़ा तो नदी के बीच एक टापू पर लोग पानी से घिर गए। उन सभी को बचाने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ के तेज बचाव अभियान के बाद कठुआ में अचानक आई बाढ़ के दौरान 7 लोगों की जान बच पाई। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब खबर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की। पूरे पाकिस्तान में इमरान को लेकर एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, इमरान खान जिंदा हैं या जेल के अंदर उन्हें मार दिया गया। हम आपको ये बता दें कि अमेरिका में बैठे एक पाकिस्तानी पत्रकार ने दावा किया कि रावलपिंडी की जेल में इमरान खान नहीं रहे। पत्रकार वजाहत खान ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर्स PHQ के 3 अफसरों के हवाले से उन्हें खबर मिली है। तो आइए हम आपको दिखाएं कि आखिर इस खबर की सच्चाई क्या है, इमरान खान के जिंदा या मर जाने की मिस्ट्री क्या है।
4: इमरान खान जिंदा है या मर गए, सच क्या है? इमरान खान की मौत की खबर खुद फैली या फैलाई गई? इमरान की खबर में सच्चाई है या मुनीर का कोई गेम प्लान है? इमरान की बहनें क्या बोल रही हैं? पाकिस्तानी सेना क्या बोल रही है?
5: मैं मर जाऊंगा जेल में, लेकिन मैं इस फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा।
4: रावलपिंडी की अदियाला जेल के अंदर क्या हुआ? इनसाइड स्टोरी क्या है? कहा तो 3 साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान की रिहाई के लिए बड़े आंदोलन का ऐलान होता है, और कहा अचानक से खबर आती है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं रहे। इमरान खान की मौत की खबर पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है। पहले आपको बता दें कि अमेरिका में बैठे एक पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत सईद खान दावा करते हैं कि अदियाला जेल में बंद इमरान खान की मौत हो गई है। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें ये खबर पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर के 3 अफसरों के हवाले से आई है।
6: अफसरान जो GHQ में हैं, कम से कम 3 अफसरान का ये पर्सपेक्टिव है, जाती पर्सपेक्टिव है। 3 अफसर्स ने अलग अलग तरीकों से ये इजहार किया है दैट इमरान खान इज नो लॉन्गर विद अस एंड दैट इज द रीजन व्हाई द पाकिस्तान आर्मी एंड द आर्मी चीफ आर कीपिंग हिम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री।
4: वजाहत सईद खान पाकिस्तानी सेना के करीबी पत्रकारों में गिने जाते हैं। उन्हें इमरान खान समर्थक पत्रकार भी माना जाता है। वो एमी पुरस्कार के लिए नामांकित हो चुके हैं और वर्तमान में पाकिस्तान में जेल की सजा से बचने के लिए अमेरिका में रहते हैं। इसीलिए इमरान खान की बहनें रावलपिंडी की जेल पहुंच जाती हैं और जेल में लागू कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और बढ़ती आशंकाओं के बीच PTI ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कल रात 10 बजे तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई, तो पूरा पाकिस्तान ठप कर दिया जाएगा।
5: हमारा SOP है कि सिवाय फैमिली के और पर्सनल डॉक्टर की उनकी हेल्प पे इमरान खान का ये SOP है कि कोई और बात नहीं करेगा। हर एक ने मुंह खोल लिया, हर एक ने तमाशा बना दिया उनका, और अब जवाब दें सारे जिन्होंने शुरू किया है, ये जो एजेंसियों की बातें शुरू की हैं जिन्होंने, अब जवाब दें। जबकि वजाहत साहब ने बचा दिया है कि जी वो उनको तो जेल में खत्म कर दिया है, ये कहा है ना कुछ इस किस्म की बात की, मुझे नहीं पता, मैंने सुना नहीं है, मुझे यहाँ के कई लोगों ने बताया।
4: हालांकि इमरान खान की मौत के दावों पर पाकिस्तानी सेना ने भी अपना बयान जारी किया है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने कहा है कि इमरान खान जिंदा है और अदियाला जेल में ही बंद है। लेकिन इमरान खान की मौत की खबर फैलने के बाद इमरान खान की बहनें अदियाला जेल के बाहर इंतजार करती रहीं, लेकिन उन्हें जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। आपको बता दें कि इमरान खान की बहनों की अपने भाई से मुलाकात करीब 9 महीने पहले हुई थी। इमरान की बहनों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार कहती है कि इमरान खान से मिलने के बाद उनकी बहनें बाहर आकर राजनीतिक बयान देती हैं। जिससे पाकिस्तान का माहौल बिगड़ जाता है। लेकिन अब इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि वो लिखित में ये बयान देने को तैयार हैं कि वो इमरान से मिलकर कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगी। इसके बावजूद उन्हें मिलने की इजाजत नहीं मिल रही।
5: उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई सियासी बात बाहर ना आके करें तो हम उनको कह रहे हैं कि बहनों की मुलाकात करवा दें। हमने पूरी तरीके से इत्तेफाक किया है बहनों ने, जब कोई सियासी बात बिल्कुल नहीं आके करेंगे बाहर आके।
4: इमरान खान की बहनों का कहना है कि उनका शक बेबुनियाद नहीं है। उस्मा खान ने कल भी कहा कि आखिरी बार जब उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई थी तब उन्होंने दो टूक कहा था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिफ मुनीर उन्हें मरवा देगा। यानी ये उनकी बहनों का शक नहीं बल्कि खुद इमरान खान का दावा था।
1: उनकी जिंदगी खतरे में है, जिंदगी से खतरे की। जो आखिरी बात में मुलाकात थी, पहली चीज उन्होंने कहा था कि ये नहीं कहा कि मैं मुझे शक है मार देंगे, मुझे पहले कहा कि आसिफ मुनीर मुझे मार देगा। देखिए ये तय थी, तो ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि नीयतें खराब है।
4: पाकिस्तान के लोगों का ये भी कहना है कि आसिफ मुनीर के दिमाग में इमरान खान को ठिकाना लगाने का प्लान काफी पहले से चल रहा है।
7: कि अगर आसिफ मुनीर का इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल है जो कि है, ये फैक्ट है, हकीकत है, इमरान खान की जिंदगी और कैद व बंद से मुतल्लिक 100% कंट्रोल उसका है। क्यों ये बात बाहर बताएगा कि आने देगा कि भाई इमरान खान नहीं रहे? लेकिन मेरा सवाल है क्यों बताएगा खुद? की खबर है 100% कि ये अवाम की जहन साजी कर रहे हैं, क्योंकि आसिफ मुनीर ने वादा किया हुआ है इमरान खान को रास्ते से हटाने का, और उस वादे को अगर वो पूरा कर देता है तो वो खुद सदर भी बन सकता है, और सदर बनने की ख्वाहिश उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी इस वक्त ख्वाहिश है। सीसी की तरह वो यूनिफॉर्म के अंदर प्रेसिडेंट बन के बैठना चाहता है ताकि वो स्टेट प्रोटोकॉल के साथ जाके ट्रंप को भी मिले और सऊदी बादशाहों से भी मिले और तीसरे चौथे नंबर के ऊपर जाके ना खड़ा हो। एक तो ये मामला है, दूसरा फौज अगले 10 साल तक इसका राज चले, फौज का राज तो हमेशा से रहा है लेकिन इसका राज अगले 10 साल तक चले, वो ये चाहते।
4: इमरान खान की मौत की सनसनीखेज अफवाह के बीच इमरान खान की पार्टी के भीतर भी गद्दारी को लेकर बड़ा बवाल मच गया है। ये बवाल भी इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर झूठी बातें फैलाने को लेकर मचा है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनकी ही पार्टी की सांसद मशाल यूसुफ जई ISI के इशारे पर ये अफवाह फैला रही है कि जेल में इमरान खान की तबीयत बिगड़ रही है। मशाल यूसुफ जई वकील भी हैं और इमरान खान की पार्टी से सेनेटर भी हैं। अब उन्हें पार्टी से निकालने की बात हो रही है। दूसरी तरफ मशाल ने भी चुनौती दी है कि अगर पार्टी उन्हें निकालना चाहती है तो निकाल दे। वहीं पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर और अब पत्रकार आदिल राजा ने मशाल यूसुफ जई और ISI से उनके कनेक्शन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मशाल यूसुफ जई ने ही कहा है कि अगर इमरान खान मान दे कि आसिफ मुनीर को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं।
8: राजा साहब से किसी ने मशाल यूसुफ जई या मिशालो बी जमालो का जिक्र किया। मिशालो बी जमालो जो है वो बड़े अरसे से ऑफर कर रही है, उसी ने बताया, जो ISI ने खबर चलाई, जो PTI की लीडरशिप को बताई कि इमरान खान की तबीयत बहुत खराब है, और साथ ही उसी ने कोर कमेटी को आके कहा, मुसलसल कहा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हमायत करें, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत करें और उसके नतीजे के अंदर इमरान खान छूट जाएंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ले इमरान खान को तो बाद में ये छोड़ेंगे, लेकिन पहले आसिफ मुनीर को आईनी तौर के ऊपर अपना बाप बना के बैठा दें और उसके बाद ये इमरान खान को छोड़ देंगे। उसके बारे में सलमान अकरम राजा से जो बातचीत की गई, पहले ये एक वीडियो मैं फेयर कमेंट के लिए चाहता हूँ कि आप सुन लें, फिर मैं इसके ऊपर बात करूंगा। कुछ सेकंड का वीडियो है।
9: साहब से जो मुलाकात हुई थी, इस वक्त एक खबरें गिरदिश की थी कि आपको खान साहब ने कहा था कि मिसाल यूसुफ़ज़ई साहब को फारिग कर दिया जाए, और ये जब आपके पास बात थी आपने किया क्यों नहीं?
10: देखें सुन, बिल्कुल ये आई थी, देखें सुन लीजिए, फारिग करने का क्या मतलब है? देखिए सेनेट से तो मैं फारिग नहीं कर सकता ना, सेनेट में वो मौजूद है, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं उनको सेनेट से फारिग करूँ, पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है।
4: अब पाकिस्तान में मशाल यूसुफ़ज़ई से भी सवाल जवाब हो रहे हैं।
11: करें ना राजा साहब नोटिफिकेशन,
12: आप तो ये धमकी दे रही है ना कि जी करें करके दिखाएं।
11: मैंने मेरे पीछे इतने बड़े हाथ नहीं है सर कि मैं खान साहब के अकाउंट से अपने लिए ट्वीट करूं।
4: इमरान खान की मौत की अफवाह के बीच खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और पीटीआई नेता सुहेल अफरीदी ने दावा किया है कि लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान के युवाओं का गुस्सा पाकिस्तान की हाइब्रिड सरकार के लिए काबू से बाहर हो सकता है। हाइब्रिड सरकार से मतलब असली ताकत पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के हाथ में है, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया हुआ है। इससे पहले सोहेल अफरीदी ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी इमरान खान के लिए 27 सितंबर को इस्लामाबाद मार्च करेगी।
13: आज नौजवानों, उसको आपकी जरूरत है तो इंशाल्लाह ताला 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे।
4: इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ ने यह भी धमकी दी है कि अगर इमरान खान के परिवार और डॉक्टरों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई, तो इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। आज तक ब्यूरो।
3: और अब खबर ट्रंप के नए दांव की। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करके एक नई बहस को छेड़ दिया। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी संविधान उन्हें थर्ड टर्म की अनुमति नहीं देता, लेकिन वो अमेरिका की तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। सवाल यही है कि क्या ईरान युद्ध पर मिली नाकामी पर उठ रहे सवालों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप ने थर्ड टर्म वाला दांव चला है।

0: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो बयानों ने अमेरिका से लेकर ईरान तक नई बहस छेड़ दी है। बहस की वजह है ट्रंप का दावा। हुर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यही दावा किया है कि हुर्मुज पर अब ईरान का नहीं बल्कि अमेरिकी सेना का नियंत्रण है। हुर्मुज को अमेरिकी सेना ने ईरान से मुक्त करवा लिया है, लेकिन ईरान ने हुर्मुज पर ट्रंप के दावे को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। सवाल यही है कि हुर्मुज पर ट्रंप झूठा नैरेटिव गढ़ने में क्यों जुटे हैं। वहीं ट्रंप ने तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर की है, ये जानते हुए भी कि संविधान के प्रावधानों के मुताबिक वो तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। संविधान और कानून सिर्फ दो बार राष्ट्रपति बनने की इजाजत देता है। तो क्या ईरान युद्ध में फंसे हुए ट्रंप घरेलू फ्रंट पर मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए थर्ड टर्म वाला दांव चल रहे हैं? क्या ट्रंप ने ईरान युद्ध के चलते मिड टर्म चुनाव में हार के डर की वजह से 2028 में फिर चुनाव लड़ने का शगुफा छोड़ा है? ईरान में फूले हाथ पांव तो चला नया दांव। क्यों ईरान से लड़ाई थर्ड टर्म तक आई? ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में क्या है? ना युद्ध विराम हुआ ना ईरान युद्ध में हारा। वॉर गेम में फेल तो ट्रंप का माइंड गेम शुरू। अभी ईरान युद्ध में बुरी तरह फंसे ट्रंप बाहर निकलते उससे पहले ही 2028 में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर करके नई बहस को जन्म दे दिया। सबसे पहले सुनिए ट्रंप ने थर्ड टर्म को लेकर क्या कहा है।
1: But the law is very strong. I get asked by every... Well, even tonight, they're screaming at the event. 2028. Now, everybody wants me to do it, but the law is very strong.
0: ट्रंप ने दुनिया को यही बताया कि अमेरिकी नागरिक यही चाहते हैं कि वो 2028 में तीसरी बार राष्ट्रपति बने, लेकिन थर्ड टर्म को लेकर संवैधानिक कानून बहुत सख्त है। बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने कानून का हवाला तो दे दिया, लेकिन 2028 में वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं साफ साफ नहीं बताया। बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी कई मौकों पर ट्रंप 2028 में राष्ट्रपति चुनाव में ताल ठोकने के संदेश दे चुके हैं। यहां तक कि ट्रंप का 2028 कैंपेन भी अभी से शुरू हो चुका है। साल 2025 में ट्रंप ने यही कहा था कि वो तीसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं तो उन्हें अच्छा लगेगा। मुझे तीसरी बार राष्ट्रपति बनना बहुत अच्छा लगेगा, मेरे आंकड़े अब तक के सबसे अच्छे हैं, मैं इसे पूरी तरह से खारिज नहीं कर रहा हूं। सवाल यही है कि 2028 को लेकर ट्रंप का प्लान क्या है, क्योंकि अमेरिकी संविधान स्पष्ट रूप से किसी भी उम्मीदवार को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से रोकता है। संविधान के 22वें संशोधन में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं होगा, मतलब संविधान संशोधन के बिना ट्रंप 2028 में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। ये संविधान संशोधन 1947 में अमेरिकी संसद में पास हुआ था और 1951 से लागू है। इसके लिए ट्रंप को संविधान में दोबारा संशोधन करना होगा। संशोधन के प्रस्ताव को कांग्रेस के दो तिहाई सदस्यों की मंजूरी और 3/4 राज्यों यानी 50 में से 38 राज्यों में पास करवाना होगा, जो बहुत मुश्किल है। विपक्ष आरोप है कि थर्ड टर्म का शगुफा छोड़कर ट्रंप अपनी नाकाम नीतियों से अमेरिकी नागरिकों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि ईरान युद्ध का असर अमेरिकी नागरिक झेल रहे हैं।
2: So Donald Trump has lost this war. America is weaker. Iran is stronger. The price to reopen the strait increases by the day. The supposed deal that's on the table right now would pay Iran $100 billion a year in order to reopen the strait. That is 1/3 of Iran's entire economy. What a victory for Iran that at the end of this war, they get paid to reopen the strait. They get paid to rebuild their military. They get paid to rebuild their support for proxies in the region. The answer to your question is, yes, I will support a deal to end this war and to reopen the strait. I am prepared to support a bad deal to end this war and reopen the strait, because the only deal that is available at this point of in time is a terrible bad deal. But the war needs to end, because every day that the war continues, America gets weaker, Iran gets stronger, and people here in the United States get screwed as prices go up and up and up.
0: इसमें कोई शक नहीं कि ईरान युद्ध आज ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। भले ही ट्रंप होर्मुज को लेकर बड़े बड़े दावे करें, लेकिन आज होर्मुज से तेल टैंकरों की आवाजाही पर ईरान का नियंत्रण है।
1: I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But we right now, we're in a very good position.
0: ट्रंप के दावे की पोल खुद उनका बयान खोल रहा है। ट्रंप ने ये कबूल कर लिया है कि ईरानी मिसाइल के हमले के डर से उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा था।
3: President, can you tell us about your ride on the airport catering truck in Turkey? Why did you need to do that?
1: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
3: Why did they want me to do that?
1: I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
0: दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता था कि नाटो समिट के दौरान अंकारा में ट्रंप की मूवमेंट को ईरान ट्रैक और ट्रेस कर रहा था। ईरान का प्लान मिसाइल से अमेरिकी राष्ट्रपति प्लेन को निशाना बनाने का था। इसी खुफिया इनपुट की वजह से ट्रंप को एन वक्त पर अपना प्लेन बदलना पड़ा था, लेकिन तब ट्रंप ने दुनिया से ये बात छिपाई थी।
4: दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: In association with
4: Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: पहले पेपर लीक के विरोध में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर आंदोलन किया। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। यहां विपक्ष एक सुर में मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर दिखा। उसके बाद रांची में छात्र आंदोलन में पुलिस ने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसके बाद बीजेपी पूछती है कि राहुल गांधी आखिर रांची क्यों नहीं जा रहे। कुल मिलाकर दोनों आंदोलन में सहूलियत वाला सियासी समर्थन देखने को मिलता है। हालांकि राहुल गांधी कहते हैं कि रांची में पुलिस को छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए और वो छात्रों के साथ है, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी पर जिन्ना वाला वार कर रही है। झारखंड में छात्रों के आंदोलन के बीच सियासत तेज होती जा रही है। कल विधानसभा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के चोले में बीजेपी के घुसपैठ का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। वही रांची आंदोलन में पुलिस के लाठीचार्ज के बाद घायल छात्रों ने अपना दर्द साझा किया। रांची में 10 अगस्त को लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री छात्रों से सहानुभूति की जगह पुलिस का बचाव करते दिखे। इस बीच झारखंड सरकार आंदोलन को खत्म कराने पर उतर आई। रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई। आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। अब तक सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली है। सवाल है कि क्या रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को जंतर मंतर जैसी सफलता मिलेगी और क्या सोरेन सरकार छात्रों की मांगों के आगे सरेंडर करेगी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
1: आपने मूसलाधार बारिश के बीच छात्रों के आंदोलन की आग देखी। आपने विधानसभा घेराव के दौरान इन छात्रों का हौसला देखा। आपने छात्रों पर रांची पुलिस की ज्यादती देखी। छात्रों पर लाठियां बरसते देखा और उन्हें एक एक कर घायल होते देखा।
2: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो,
3: पूरे देश के युवाओं पे लाठी चले,
2: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, लाठी चार्ज कर रही है पुलिस। हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
1: रांची में दो दिन पहले क्या क्या हुआ इसे पूरे देश ने देखा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सहानुभूति के बजाय पुलिस का बचाव करते दिखे।
4: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है अध्यक्ष महोदय। जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद, उसके सीमित दायरे तक कोई नहीं आता।
1: सोरेन यहीं ठहर जाते तब भी गनीमत होती, लेकिन अब वो जुल्म पर उतर आए हैं, बदले पर उतर आए हैं। खबर है कि रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
5: घड़ी में छात्रों की संख्या बढ़ने लगती थी, वो आज अब आधे से भी कम होने लगी है। ज्यादातर छात्र या तो जा चुके हैं या इस समय धरना स्थल पर मौजूद नहीं है। बीती रात प्रशासन यहां पर आया। छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई, और अब इस उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोग?
6: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी, अब सारी स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी। अब इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था। जो हम लोग का लाइट वो जल रहा था जो जनरेटर से हम लोग का चल रहा था।
1: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। सरकार ये बात समझती है, इसलिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये दबाव उस सच को नहीं दबा सकता जो एक एक कर सामने आ रहा। सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली।
7: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही राज्य की सीआईडी के सामने अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने सीआईडी से पूछताछ में बताया है कि कैसे अलग अलग परीक्षाओं में लाखों रुपए में नौकरी की डील हुई। अभय तिवारी ने यह बताया है कि उसने किन परीक्षाओं में करोड़ों की राशि की वसूली की, कैसे एजेंट्स के जरिए जो नियोक्ता एजेंसियां थी उनको लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में सीआईडी अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि सीआईडी की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनका यह कहना है कि सीबीआई जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक रांची।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ऑफर का सदन में हो जाए चर्चा, मैं पूरे समय बैठूंगा, सुनूंगा और दूंगा जवाब। राहुल गांधी बोले बहस नहीं, सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान, कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की शिरकत, एनडीए सांसदों ने निकाली बाइक रैली। झारखंड छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारियों में एबीवीपी। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बदलाव, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले छात्रों शिक्षण संस्थाओं के साथ होगी चर्चा, उच्च स्तरीय कमेटी का होगा गठन। मामले में आज तक के पास मेंटेनेंस रिपोर्ट, एक मिनट में आए 3 बार हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट, 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रहा था एयर इंडिया का विमान।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। छह दिन पहले 6 अगस्त को अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान की झांसी के करीब एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। अब 6 दिन बाद सड़क हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उसी वक्त का है, हालांकि यूपी पुलिस ने अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। कुल 60 सेकंड का वीडियो है ये। सड़क लगभग खाली है, बाईं तरफ एक बाइक नजर आ रही है, सामने एक सफेद कार जिसकी रफ्तार बेहद तेज है, थोड़ा आगे एक टेम्पो दिखाई देता है। सफेद कार उस टेम्पो को भी पीछे छोड़ देती है। आगे अब भी दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आ रही, यानी सड़क एकदम खाली है। पर तभी वही सफेद कार अचानक खाली सड़क पर बाईं तरफ तेजी से पहले सड़क से नीचे उतर जाती है और फिर जरा सा आगे सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराती है। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि डिवाइडर से टकराते ही कार हवा में कई फीट ऊपर उछल पड़ती है और हवा में पूरी तरह घूमकर वापस सड़क पर आ गिरती है। कार का बायां और अगला हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। कार के सारे एयरबैग खुल चुके थे। ये सारी तस्वीरें दरअसल सफेद कार के पीछे चल रही एक दूसरी कार की डैशबोर्ड कैम से रिकॉर्ड हो रहा था। हादसे के बाद डैशबोर्ड कैम वाली कार के ड्राइवर की आवाज भी सुनाई देती है। वो कहता है कि अगर ब्रेक मारता तो गड़बड़ हो जाता।
1: अगर हम बाबा ब्रेक मारी तो गड़बड़ा जाता हूँ,
2: गाड़ी ऊपर गिरता है बने।
1: अगर ब्रेक मारता तो गड़बड़ हो जाता।
0: असल में ये वही सफेद क्रेटा कार है जिसमें अतीक अहमद के 5 बेटों में से सबसे छोटा बेटा अबान अहमद अपने 2 दोस्तों और 2 रिश्तेदारों के साथ प्रयागराज से झांसी जा रहा था। इस हादसे में अबान के साथ साथ उसके एक दोस्त सोनू की भी मौत हो गई। अतीक के बेटे की कार के एक्सीडेंट को लेकर तब सवाल भी उठे थे। वजह ये थी कि जिस जगह अबान का एक्सीडेंट हुआ वहां से मुश्किल से 45 किलोमीटर दूर इसी झांसी में 3.25 साल पहले 13 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद के तीसरे नंबर के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर में मौत हो गई थी। पर अबान की मौत के 6 दिन बाद अब इस वीडियो के सामने आते ही ये साफ हो गया कि ये एक सड़क हादसा था, जो कि तस्वीर में आगे पीछे न कोई दूसरी गाड़ी है, न ही कोई ओवरटेक करने की कोशिश करता कहीं नजर आया। सड़क बिल्कुल खाली है। अब खाली सड़क पर अचानक कार का पहले सड़क से नीचे उतर जाना और फिर डिवाइडर से टकराने की वजह या तो ड्राइवर का कार पर से अचानक कंट्रोल खो देना हो सकता है, या फिर नींद के झोंके की वजह से भी यह हादसा हो सकता है। दरअसल 6 अगस्त की देर रात को अबान इसी क्रेटा कार से प्रयागराज से झांसी के लिए निकला था। कार जैद चला रहा था, जबकि ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर आगे अबान बैठा था और अबान के ठीक पीछे बाईं तरफ उसका दोस्त सोन। चूंकि कार बाईं तरफ से ही डिवाइडर से टकराई, इसलिए बाईं तरफ बैठे अबान और उसके पीछे बैठे सोनू को ही सबसे ज्यादा चोटें आई और इन्हीं 2 की मौत हुई। प्रयागराज से झांसी की दूरी लगभग 410 किलोमीटर है। यह हादसा झांसी से 70 किलोमीटर पहले हुआ और जिस वक्त यह हादसा हुआ तब सुबह के करीब 5 बजे थे, यानी कार चलाने वाला पूरी रात का जागा हुआ था। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि उसे अचानक नींद का झोंका आया और स्टीयरिंग से उसका कंट्रोल खो गया। दरअसल अबान 6 अगस्त की सुबह अपने बड़े भाई यानी अतीक अहमद के दूसरे नंबर के बेटे अली अहमद से झांसी जेल में मिलने जा रहा था। अली अहमद रंगदारी वसूलने और कुछ दूसरे मामलों में पिछले काफी वक्त से झांसी जेल में बंद है। अतीक अहमद के कुल 5 बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा मोहम्मद उमर एक बिजनेसमैन पर हमला करने के इल्जाम में इस वक्त लखनऊ जेल में बंद है। अली अहमद दूसरे नंबर का बेटा है जो रंगदारी के मामले में झांसी जेल में बंद है। असद अहमद अतीक का तीसरे नंबर का बेटा था जो 3.25 साल पहले झांसी में ही हुए एनकाउंटर में मारा गया। मोहम्मद हमजा अतीक का 4 नंबर का बेटा है और वो इस वक्त आजाद है, जबकि अबान अहमद अतीक का सबसे छोटा बेटा था जिसकी झांसी में सड़क हादसे में मौत हुई। यानी अतीत के 5 बेटों में से 2 की मौत हो चुकी है, 2 जेल में है और 1 बेटा आजाद। इससे पहले इसी झांसी में 13 अप्रैल 2023 को अतीक के बेटे असद के इनकाउंटर में हुई मौत के ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की उस वक्त 3 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब दोनों मेडिकल चेकअप के बाद अस्पताल से बाहर आ रहे थे। इत्तेफाक से तब वारदात की टीम भी वहीं मौके पर मौजूद थी और ये सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया। अतीक की पत्नी शाइस्ता फिलहाल फरार है, उस पर 50,000 का इनाम भी है। फरारी के चलते ही शाइस्ता अपने पति अतीक देवर अशरफ और अपने 2 बेटों असद और अबान की मौत के बाद भी कभी सामने नहीं आए।
2: झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान की कार का एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ दिन बाद एक वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो में साफ तौर से देखा जाता है कि किस तरीके से क्रेटा कार हवा में उछलती नजर आती है और उसके बाद चकनाचूर हो जाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। जब इसके लिए हम बातचीत करते हैं तो पुलिस के मुताबिक कहीं ना कहीं वो इस वीडियो की जांच कर रही है कि किस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, लेकिन पुलिस का ये भी मानना है कि जो हेडलाइट टूटती है और आगे गिरती है इसमें, वो हूबहू उसी घटना की तरह है जो कि घटना एक्सीडेंट के समय घटी है। दूसरा, पुलिस वहां की जो लोकेशन है और जो पेड़ पौधे हैं उसको देखकर भी ये बताती है कि कहीं ना कहीं ये घटना और एटमॉस्फियर वहीं का लग रहा है। हालांकि पुलिस इसके बावजूद इस वीडियो की जांच कर रही है कि किस तरीके से ये वीडियो जो एक डैश कैम पर लगा हुआ है, यानी कि कार की जो पीछे चल रही थी उससे ये रिकॉर्ड होता है और उसमें ये दिखाया जाता है कि कैसे आगे चलने वाली एक क्रेटा कार अचानक से डिसबैलेंस होती है और उसके बाद हवा में उछल जाती है डिवाइडर से लड़ने के बाद। यानी कि इस पूरे मामले पर पुलिस तो अपनी तफ्तीश जरूर कर रही है, लेकिन ये तो साफ है कि घटना से जुड़े हुए बहुत सारे अहम के बिंदु हैं जो ये दर्शाते हैं कि ये वीडियो उसी घटना से जुड़ा हुआ है जो सोशल मीडिया पर वायरल है।
0: समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। और अब बात वारदात के असर की। हमने इसी वारदात में आपको सोनीपत के एक वृद्धाश्रम की कहानी सुनाई थी। उस वृद्धाश्रम में रहने वाले 74 साल के राम रतन गुप्ता की मौत हो गई थी। उनकी 3 बेटियां हैं, लेकिन कोई भी बेटी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। वारदात में खबर दिखाए जाने के बाद अब उनमें से एक बेटी ने इस बात पर शर्मिंदगी जताई है।
3: सारे वायरल हो गए हैं, सारे आज तक में सारे मेरे रिश्तेदार सब सब बोल रहे हैं, सारे हमारे आप समझ नहीं रहे हो।
4: मेरी तबियत ठीक होती ना अभी तो मैं खुद आती, अभी मैं मम्मी के उसमें गई थी सारिका मैडम को पता है, पूजा हवन बकायदा सब कुछ कायदे से करवा के आई थी मैडम, तो इसीलिए मैं काफी आ नहीं पाई हूँ, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत मतलब शर्मिंदा हूँ।
0: ये जिन 2 बहनों की अभी अभी आपने आवाज सुनी, ये उन्हीं शिवचरण राम रतन गुप्ता की 3 में से 2 बेटियां हैं, जिनके पास अपने पिता के अंतिम संस्कार में आने के लिए टाइम नहीं था। मंगलवार को उन्हीं शिवचरण राम रतन गुप्ता की अस्थियां जब हरिद्वार में प्रवाहित की गई, तब भी 3 बेटियों में से वहाँ कोई नहीं थी। हमने इसी वारदात में 6 अगस्त को 3 बेटियों और दामाद के होते हुए राम रतन गुप्ता की एक लावारिस की तरह हुए अंतिम संस्कार की कहानी आपको दिखाई थी। आज तक पर इसे राम रतन गुप्ता की बेटियों और उनके रिश्तेदारों ने भी देखा। उसी के बाद इनमें से एक बेटी ये कह रही है कि सारा वीडियो वायरल हो गया है, आज तक पर सारे रिश्तेदारों ने इसे देख लिया। वहीं राम रतन की बड़ी बेटी अब ये कह रही है कि अंतिम संस्कार में शामिल न होने की वजह से वो शर्मिंदा है। लीजिए वारदात में खबर दिखाए जाने के बाद दोनों बेटियों ने जो कुछ कहा उसे अब बारी बारी से पूरा सुनिए। सबसे पहले छोटी बेटी की बात। छोटी बेटी का कहना है कि मीडिया वाले एक तरफा दिखा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि पापा खुद बेटियों के साथ रहना नहीं चाहते थे।
5: अब बहन जी मैं बताऊ उनको मैं क्यों क्यों भाई तुम जाओ कहूंगा तो मतलब नहीं मानेंगे भाई कुछ खोट कर रहा है।
3: सारे वायरल हो गए हैं, सारे आज तक में सारे मेरे रिश्तेदार सब सब बोल रहे हैं, सारे हमारे आप समझ नहीं रहे हो बस।
5: नहीं मैं बिल्कुल समझ रहा बहन जी, मतलब मैं खुद नहीं चाहता था इतना हो गया। सुनो आप मेरी स्टेटमेंट सुनोगे ना, मैंने यही कहा था कि तीनों बेटियां रखने को तैयार है।
0: राम रतन गुप्ता की बड़ी बेटी का ये कहना था कि वो बीमार थी, तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए अंतिम संस्कार में नहीं आ सकी, जिसकी वजह से वो अब शर्मिंदा है। हालांकि यही बड़ी बेटी अस्थियां प्रवाहित के लिए हरिद्वार भी नहीं आई, बल्कि फोन पर वृद्धाश्रम के संचालक से ये कहा कि आप ही अस्थियां प्रवाहित कर दीजिए, हम अपने हिसाब से 13वीं कर लेंगे। बड़ी बेटी की पूरी बातचीत भी अब सुन लीजिए।
4: मैं बड़ी लड़की हूँ उनकी, तो बस मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, हरिद्वार में जाके गंगा जी में विसर्जित कर दीजिएगा।
5: ठीक है।
4: और अगर कभी भी मेरा उस तरफ कभी भी आना होगा तो हम आपसे जरूर मिलकर जाएंगे। कभी भी आना होगा।
5: बिल्कुल बहन जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारी छोटी बहन जी हैं, कोई दिक्कत नहीं, जब चाहो जब आओ।
4: अभी भी जिंदगी इतनी बड़ी है, मुझे भी काम कर सकता है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी करूँ।
5: ये तो है बहन जी।
4: हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने उनका छोटा भाई समझ के
5: बिल्कुल
4: पिताजी उनकी अस्थियां जरूर बहा दीजिएगा गंगा जी।
5: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, नहीं मैं आज भी हमने उठाई थी तो आज उठा के फिर मेरे दयानामा बहन जी को बता दूं, जो बहन जी कहेंगी वही उसी हिसाब से करेंगे।
4: हरिद्वार में गंगा जी में विसर्जित कर दीजिएगा, उनको आत्मा को शांति मिल जाएगी।
5: ठीक है बहन जी, ठीक है, ठीक है बहन जी,
4: वो कर दीजिएगा। और तिथि और अगर 13वीं वाले दिन हो सके तो आप लोग भी पंडित जी हम लोग तो करेंगे इधर।
5: हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे बहन जी, बिल्कुल करेंगे।
4: हाँ, पापा को जो सामान पसंद था वो सारी चीजें करके मैं मतलब अपने हिसाब से करूंगी, जैसे मैंने मम्मी का किया
5: था
4: वैसे ही करूंगी।
5: एक बार बहन जी उनकी चॉइस देखो, मतलब ठीक है मेरे पास 5-6 भी नहीं रहे हैं, इतना मेरे को नहीं पता, एक बार आप बता दिए उसी हिसाब से हम
4: का करेंगे। हाँ ठीक है, नहीं बस यही मैंने बताया ना, आप खाली विसर्जित कर दीजिएगा और तो बस कुछ नहीं है, और आप पंडित जी जिमा दीजिएगा, हो सके तो थोड़ा सा खीर पूरी बना के हम लोग।
5: हाँ हाँ नहीं ऐसा ही करते हैं बहन जी, हम भी ऐसा ही करते हैं।
4: 13वीं में हम लोग ने मैंने मम्मी का करके आई थी, पंडित जी बुलाए थे, पूजा हवन हो सकता तो छोटा सा पूजा हवन करा लीजिएगा तो आपका आश्रम भी मतलब वो शुद्ध हो जाएगा।
5: ये कराएंगे बहन जी, ये कराते हैं, हर किसी का कराते हैं जो हमारे यहाँ गुजरता है। आपको
4: और हाँ। अगर मेरे से फाइनेंस के लिए कुछ हेल्प की जरूरत हो तो मैं जितना बन पड़ेगा मैं आपको होगा, मैं तुरंत अपने नंबर आपको।
5: बहन जी देखो आप लोगों के सारे या मेरे साथ मेरे भाई बंद जो सोशल वर्कर है उनका इतना सारा है कि मैं 37 साल से इसको खींचे आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही
4: जी। नहीं मैम, सारी का मैडम को भी बोला, आनंद जी ने ही संभाला सब कुछ, वो एक्चुअली आनंद जी ने ही सब कुछ संभाला उनको, वो पापा बोलते भी थे आनंद जी बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए फ्रूट लेके आए, वो लेके आए, वो सीम फेंकेंगे जरा से, हम लोग ना सीम अलाउड नहीं करेंगे वो यूज करना, वो सीम हम फोन दे देंगे उनको पर वो सीम आप
5: ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं बहन जी, सिम को नष्ट कर दूंगा मैं।
4: 200 का सिम आता है।
5: नहीं ठीक है बहन जी, इसको भी बहन जी पूरे समाज जो है ना सोनीपत का हमारा पूरा समाज मिलके साथ करेगा ये काम, बहुत बहुत अच्छा करेगा।
4: हो सके मेरी तबीयत ठीक होती ना अभी तो मैं खुद आती, अभी मैं मम्मी के उसमें गई थी, सारी का मैडम को पता पूछा हवन बकायदा सब कुछ कायदे से करवा के आई थी मैडम, तो इसीलिए मैं काफी
5: देख लो बहन जी, अगर टाइम मैं तो कहता हूँ कि टाइम लगे तो देख लो 16 तारीख का आज, कोई दिक्कत नहीं।
4: ठीक है, तो बस वही है कि थोड़ा सा पूजा हवन हो सके तो आप देख लेना, नहीं तो वो अस्थियां जरूर बहा दीजिएगा।
5: ना ना ठीक है बहन जी, अस्थियां बहाएंगे उसकी भी फोटो वीडियो आप दोनों भेज देंगे, हवन की भी भेज देंगे, दोनों आपके पास भेज देंगे।
4: हाँ बस ठीक है आनंद जी, मैं आपकी
5: तरह
4: का मैं भी आपकी बेटी की समानी हूँ, बस आपसे मैं और यही बोलूंगी बस मैं।
5: ठीक है
0: नमस्ते। दरअसल मंगलवार को सोनीपत के वृद्धाश्रम के कुछ लोग और कुछ समाज सेवी राम रतन गुप्ता की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे थे, लगा था कि अस्थियां भी बिना किसी परिवार के सदस्य के गंगा में प्रवाहित कर दी जाएंगी, लेकिन हुआ ये कि राम रतन गुप्ता की खबर आज तक और सोशल मीडिया पर देखकर अहमदाबाद में रहने वाले उनके बड़े भाई महेंद्र गुप्ता तक पहुंची। महेंद्र गुप्ता की अपने छोटे भाई राम रतन गुप्ता या उनकी बेटियों से पिछले 10 सालों से कोई संपर्क नहीं था। बिना बेटियों के अंतिम संस्कार की खबर सुनते ही उन्होंने सोनीपत में वृद्धाश्रम के संचालक से संपर्क किया और फिर बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए हरिद्वार पहुंच गए।
6: कपड़ा व्यापारी शिवचरण की मौत के बाद आज उनकी अस्थियां लेकर हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंचे हैं कुछ सामाजिक संस्था के लोग हैं आश्रम के संचालक और उनके भाई भी यहां पर मौजूद हैं क्या कहना चाहोगे आज अस्थियां लेकर आप हर की पौड़ी पहुंचे हो आपको कैसे पता लगा कि आपके भाई का देहांत हो गया
7: साहब हमको तो ये कोई वीडियो वायरल हुई थी यूट्यूब पे तब मालूम पड़ा कि हमारे भाई का देहांत हो गया है और वृद्धाश्रम में वो कैसे पहुंचा कि वो तो बम्बई रहता था तीन बेटियां हैं उनकी तो कोई नुकसान लगा क्या हुआ क्योंकि 10 साल पहले भूकंप जो आए थे नेपाल में उस टाइम हमको ये रिपोर्ट थी कि वो उनकी फैमिली वहाँ डेथ हो गई उसके बाद हमको हमारे को कॉन्टैक्ट था नहीं तो अब ये मालूम पड़ा है तो हम भागे भागे हरिद्वार आए हैं
6: किस तरह से तलाश की कि कहाँ पे रहता था मेरा भाई कॉन्टैक्ट कैसे हुआ
7: वायरल जो वीडियो था उस पर नंबर फ्लैश हो रहा था तो मैंने अगले दिन ये संचालक जी को फ़ोन किया आनंद कुमार जी को तो उन्होंने हमारी आईडी मांगी आईडी मैंने भेजी तो फिर उन्होंने बोला कि आप आ जाओ सीधा हरिद्वार ही आ जाओ तो आज कल रात को हम राजधानी से अहमदाबाद से आए हैं और आज सुबह ये भतीजे हैं मेरा
6: क्या क्या नाम है आपका
7: मेरा महेंद्र रामरतन गुप्ता
6: नाम आप शिवचरण से बड़े या छोटे हो
7: मैं बड़ा हूँ 4 साल बड़ा हूं।
6: भाई की बात को सुनकर कहीं ना कहीं भावुक तो हुए होंगे
7: भावुक क्या मतलब आंसू नहीं लुक रहे थे और तो क्या बोलूं
6: क्योंकि भाई भाई का से एक हाथ होता है सहारा होता है
7: हाँ बिल्कुल और क्या भाई तो भाई रहेगा ना
6: बेटियों से बात हुई कुछ
7: बेटियों से बात हुई बोले कि हम असमर्थ हैं आने में अब एक्चुअली क्या पोजीशन है वो आर्थिक स्थिति में तंग हैं क्या हैं वो तो मैं उनको वहाँ मिलूँ जा करके वो 16-17 तारीख को 13वीं करेंगे अपने घर पे तब जाके ये मालूम पड़े उसके पहले मैं नहीं बता सकता
6: कभी पहले भाई से बात हुई थी शिवचरण से
7: नहीं 10 साल से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है मेरा
6: ना परिवार से ना शिवचरण
7: परिवार से ना कॉन्टेक्ट
6: बेटियों से कैसे बात हुई
7: बेटियों से उन्होंने नंबर कहाँ से मिला मेरे का क्या है मेरे पास फोन आया था प्रिया अग्रवाल का कि साहू जी ऐसी ऐसी बात है हम नहीं जा वहाँ जा सके और अब आप कैसे भी करके मतलब बेटा मैं अस्थियां विसर्जन करने जाऊँगा आपकी परमिशन हो तो बोले कि हाँ परमिशन है हमारी आप जाओ ये काम करा दो
6: कहीं ना कहीं देखो बड़ी बात है तीन तीन बेटियां होने के बावजूद भी कोई बेटी नहीं पहुंची अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची
7: उनकी कोई मजबूरी होगी या क्या है तो रियल फैक्ट मालूम पड़े तो मालूम पड़े ना अभी तो इतनी दूर से कोई नहीं आया या उनकी आर्थिक तंगी है उनके हस्बैंड ने मना कर दिया अब वो तो बेटियां हैं क्या कर सकते
0: हरिद्वार पहुंचे सोनीपत के एक समाज सेवी ने बताया कि अस्थियां प्रवाहित करने के लिए उन्होंने मुंबई में रामरतन की एक बेटी से फोन पर बात की थी वो सोनीपत आने के लिए तैयार भी हो गई टिकट भी बुक करा लिया लेकिन फिर टिकट कैंसिल करा दी वजह ये बताई कि खबर वायरल होने की वजह से कहीं गुस्से में लोग उसे पीट न दे इसीलिए नहीं आई
8: देखिए मेरी भी बात हुई थी मैंने आपको बताया मैं बड़ी शर्म की बात है कि एक वृद्ध आदमी जो कि 75 साल उम्र है जिनकी वो अहमदाबाद से सूचना मिलने के बाद हरिद्वार पहुंच सकते हैं तो वो बच्चियां तो मेरे ख्याल से 34-35 साल की रही होंगी तो उन बच्चियों को तो आने पिता के दाह संस्कार में पहुंचने की बार बार वो मजबूरियां बता रही हैं लेकिन हरिद्वार की इस पावन धरती पे तो अपने बाप को की अस्थियों को तो विसर्जन करने के लिए आना बनता था क्योंकि आप देखिए इनको चलने में असमर्थ हैं और बिल्कुल ही शरीर से लाचार है वो 75 साल की उम्र होने के बावजूद यहाँ पहुंच गए
6: अगर पैसे की आर्थिक तंगी थी तो आप लोगों ने भी कहा कि पैसे हम दे देंगे कोई दिक्कत नहीं आप आने के लिए तैयार हो
8: बिल्कुल मेरी बात हुई थी मैंने इन बच्चियों से यही बात बोली थी कि आपका रहना आपका आना आपका सब कुछ हम अपनी तरफ से करने लग रहे हैं हमने कर भी दिया था बच्चियों ने अपनी उस बच्ची ने जो बॉम्बे रहती है उसने अपनी टिकट भी करा दी थी टिकट मुझे उन्होंने व्हाट्सएप पे भी डाली थी सब कुछ हो गया था लेकिन किसी ने कहते हैं ना कि मीडिया के अंदर जिस तरीके से फैला तो उनके दिमाग में एक डर ऐसा बैठ गया जो उनसे मेरे से दोबारा बात हुई तो उन्होंने बोला कि जी अब हमारा आना बड़ा मुश्किल

0: सकती है। तो मैंने उनको बहुत हद तक काउंसलिंग करने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी सोच गलत है, पहले भी सोच गलत थी और आज भी सोच गलत है। वो हमने कोशिश बहुत करके देखी लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन बाई चांस की बात है कि वीडियो वायरल हुई उनके भाई को, जो कि उनके दिमाग में ये था कि नेपाल में मेरा भाई आज से 10 साल पहले मर चुका है, उनको ये वायरल वीडियो से पता लगा कि मेरा भाई जिंदा है और उसकी डेथ इस तरीके से हुई है। तो उनको जब पता लगा, उन्होंने फोन नंबर ट्रेस किए तो हमारे तक वो पहुंच पाए और आज हरिद्वार पहुंचे भी हैं।
1: तो अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां भी प्रवाहित हो गई। अब सोनीपत के वृद्ध आश्रम में राम रतन गुप्ता की 13वीं भी होगी बिना बेटियों के। पवन राठी, सोनीपत, आज तक। और अब बात वारदात के दूसरे खबर के असर की। 2 दिन पहले हमने इसी वारदात में आपको बिहार के एक थाने से 18 पहियों वाला एक भारी भरकम ट्रक जो चोरी हो गया उसकी खबर दिखाई थी। खबर का असर ये हुआ कि अब थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। दो दिन पहले हमने इसी वारदात में आपको बिहार के एक थाने से पूरा का पूरा ट्रक चुरा ले जाने की खबर दिखाई थी। 18 पहियों वाला ये ट्रक मुंगेर के मुफस्सिल थाना परिसर में जब्ती के बाद खड़ा हुआ था। इतना बड़ा ट्रक बिना पुलिस वालों की मिलीभगत के थाने से कोई कैसे चुरा सकता है, हमने यही सवाल उठाया था। वारदात में इस खबर को दिखाए जाने के बाद अब थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है।
2: 3 जुलाई को एक ट्रक जो कि सीज हुई थी मुफस्सिल थाना अंतर्गत, जो कि माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा सीज की गई थी, वो थाना परिसर से गायब मिली और इसका रिपोर्ट हम लोगों को खान निरीक्षक के द्वारा भी दिया गया था माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। उस क्रम में हम लोगों ने डीएसपी हेडक्वार्टर से इसकी जांच कराई। जांच के क्रम में ये मालूम पड़ा कि वो ट्रक 3 जुलाई को उस समय के खान निरीक्षक ला करके थाना में रिसीव कराए थे। इस क्रम में जांच में पाया गया कि इन सभी लोगों की नेग्लिजेंस पाई गई है और तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी मुफस्सिल को, उसके अतिरिक्त जो वहां का मुंशी है मुफस्सिल थाना का, और उसके अतिरिक्त APTC जो धनंजय है जिन्होंने ट्रक को रिसीव किया था, उन तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो उस समय के खान निरीक्षक थे, जो कि जिन्होंने ला करके थाना परिसर में गाड़ी लगाई थी लेकिन थाना प्रभारी को कोई सूचना उस समय नहीं दी थी, उनके विरुद्ध भी जो है हम लोगों ने DM साहब को चिट्ठी दी है कि अनुशासनिक कार्रवाई उनके विरुद्ध भी की करें।
1: अब आइए आपको हैरत अंगेज तौर पर थाने के अंदर से ट्रक चोरी की वही रिपोर्ट दिखाता हूँ। क्या ट्रेन, क्या इंजन, क्या पुल, क्या सड़क, क्या टावर, कुछ भी तो नहीं बचा जो चोरों को चुनौती दे कि इसे चुरा कर दिखाओ। ले देकर 18 चक्कों वाला एक लंबा चौड़ा ट्रक बचा था, वो भी जब्त करने के बाद केस प्रॉपर्टी के तौर पर थाने के अंदर खड़ा था। चोरों ने इस चुनौती को भी मंजूर किया और थाने के अंदर से पूरा का पूरा ट्रक ही चुरा ले गए। यानी सचमुच गजब है, बिहार में कुछ भी हो सकता है, चोर कुछ भी चुरा सकते हैं। याद होगा आपको, अभी कुछ वक्त पहले ही इसी बिहार से एक पूरा का पूरा मोबाइल टावर ही चोर चुरा ले गए थे। हालांकि उस चोरी की कहानी खुल चुकी है, वो कहानी आगे बताऊंगा। पहले बिहार में हुए इस सबसे ताजा ताजा चोरी की कहानी जान लीजिए। ये बिहार के मुंगेर जिले का मुफस्सिल थाना है और इसी थाने के बाहर जब्त गाड़ियों वाहनों को रखने के लिए हर थाने की तरह ये खुला माल खाना है। बात 3 जुलाई की है। एक चेकिंग के दौरान 18 चक्कों वाला एक ट्रक BR10GD5005 को नियम तोड़ने के जुर्म में खनन विभाग ने पकड़ा और ट्रक मालिक पर 11,18,600 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। बाद में जब्त ट्रक को इसी मुफस्सिल थाने में लाकर पार्क कर दिया गया। करीब महीना बीत गया, इस बीच खनन विभाग ने एक और ट्रक को जब्त किया। जब्ती के बाद उसे भी लेकर इसी थाने में पहुंचे। यही वो दूसरा ट्रक है जिसे जब्त किया गया था। लेकिन खनन विभाग के अधिकारी थाने पहुंचने के बाद अचानक पाते हैं कि जिस 18 पहियों वाले ट्रक को 3 जुलाई को यहां लाकर उन्होंने लोकल पुलिस को सौंपा, वो है ही नहीं। पहले तो खनन विभाग के अधिकारियों के होश उड़े, फिर थाने के अफसरों। अब कोई ये बताने को तैयार ही नहीं था कि इतना भारी भरकम ट्रक थाने से कोई कैसे चुरा सकता है।
3: उन्होंने गाड़ी को जब्त किया था 3 जुलाई

0: और मुफस्सिल थाना को सुपुर्द किया था। उसके बाद अभी पता चली है कि वाहन वहां पे नहीं है, तो इसके आलोक में FIR दर्ज की गई है और इसकी जांच की जा रही है। उस पे 11,18,600 फाइन किया गया था।
1: मुफस्सिल थाने के पुलिस वालों के पास ट्रक चोरी को लेकर कोई जवाब नहीं था, लिहाजा मामला अब मुंगेर के SP तक पहुंचा। पहले तो SP भी हैरान हुए, फिर उसी हैरानी में कहा कि ट्रक चोरों का पता लगा रहे, जांच हो रही है।
2: इस महीने में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी पकड़ाई है जो माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा जुलाई के महीने में पकड़ करके थाना मुफस्सिल को सौंपी गई थी। अभी हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि वो गाड़ी थाना से गायब हो गई है। इस संबंध में कल माइनिंग ऑफिसर और थाना प्रभारी को बुलाया गया था ऑफिस में, और उनसे जब पूछताछ करने पर मालूम पड़ा कि थाना में एक ASI के माध्यम से उस गाड़ी को रिसीव किया गया था और रिसीविंग माइनिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर को दी गई थी। थाना प्रभारी के द्वारा इस चीज़ में बताया गया कि उनको नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, तो ये गंभीर मामला है कि थाना से अगर कोई वाहन गायब होता है तो उसमें हम लोग सीरियस होकर के इसमें कार्रवाई करेंगे। इसमें जांच के लिए हमने टीम गठित की है DSP हेडक्वार्टर के नेतृत्व में, 3 दिन के अंदर वो जांच कंप्लीट करके हमको देंगे। इसमें जिसकी भी सहभागिता संलिप्तता होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी।
1: अब जाहिर है पूरा का पूरा ट्रक थाने के अंदर से चुरा ले जाना न बच्चों का खेल है और न ट्रक चला पाना बच्चों के बस की बात। ट्रक छोड़िए, खाली ट्रक के 18 पहियों को ही निकाल कर ले जाना मामूली बात नहीं। अब जाहिर है ट्रक चोर न कंधों पर उठा कर ले गए होंगे, नकल पुर्जे खोल कर किश्तों में ले गए होंगे। ट्रक को स्टार्ट किया होगा, इंजन की आवाज आई होगी, ट्रक को आगे पीछे किया होगा, फिर थाने से बाहर निकला होगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि ये सब कुछ हो और थाने में मौजूद एक भी पुलिस वाले को इसकी भनक तक न लगे, यानी मामला कहीं न कहीं थाने से ही जुड़ा है। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे के साथ गोविंद कुमार, मुंगेर आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: जितनी गाड़ियां हैं ये पूरा रेला विधानसभा जा रहा छात्रों का।
7: जब तक वो CBI जांच नहीं कराएंगे तब तक हम लोग इस पे डटे रहेंगे।
6: छात्रों को पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन खत्म हो गए, फायर टेंडर खत्म हो गए।
8: प्रोटेस्टर हैं, देखिए उनको कैसे चोट लगी है।
9: विधानसभा के करीब ये पहुंच चुका है।
10: पुलिस काफी देर तक रोक नहीं सकी छात्रों को, और छात्र देखिए विधानसभा के अंदर प्रवेश करते हुए
11: विधानसभा का लाइट ऑफ करके मारा है लड़के सब।
6: पूरे प्रदर्शन मार्च के बाद भी छात्रों ने ऐलान किया है वो अभी भी डटे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम में लोकेंद्र के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: भर्ती परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए महाराष्ट्र में बनेगी हाई लेवल कमेटी। 25,000 सुरक्षित परीक्षा कक्ष बनाने के भी निर्देश। नासिक कुंभ के नाम पर 500-600 करोड़ के फर्जी वर्क ऑर्डर का दावा। मंत्री गिरीश महाजन बोले रिश्तेदार तने महाजन भी जांच के घेरे में। मुंबई में सीएम फडणवीस से मिले राज ठाकरे। शिवाजी पार्क और मुंबई गोवा हाईवे समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जानकारी। राज ठाकरे फडणवीस मुलाकात पर संजय राउत का तंज। बोले शायद मुंबई गोवा हाईवे और नासिक के गड्ढों की शिकायत करने गए होंगे। एनसीपी में आंतरिक कलह को लेकर संजय शिराट ने कहा कोई अंदरूनी खींचतान है ही नहीं। बाकी सुनील तटकरे को प्रदेश मुखिया पद पर नियुक्ति अवैध है या नहीं ये फैसला चुनाव आयोग करेगा। मुंबई में विस्तारित विधायक निवास के कमरे की छत का हिस्सा गिरा। एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल को आवंटित था कमरा। हादसे में कोई घायल नहीं। मुंबई के साइन में स्ट्रक्चर गिरने से हड़कंप। मलबे में फंसे सभी मजदूरों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश के बीच पुराना मकान ढहा। मलबे में दबकर 71 वर्षीय महिला की मौत हो गई। मुंबई के नाला सोपारा में बिजली का तार गिरने की वजह से बाइक जली। सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मुंबई के भयंदर रेलवे खाड़ी पुल पर जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल। आरपीएफ ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। नागपुर में 16 अगस्त को होने वाली कावड़ यात्रा को पुलिस की अनुमति नहीं। मस्जिद दरगाह वाले रूट का दिया हवाला। आयोजकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर किया याचिका। मुंबई में डोमिनोज के 3 और कराड में 1 आउटलेट लाइसेंस सस्पेंड किया गया। हाइजीन पेस्ट कंट्रोल समेत कई खामियां मिली। 95 सुधार नोटिस जारी। बस्तर घूमने निकले मुंबई के बाइक राइडर्स के दल पर टूटा कहर। धमतरी में ट्रेलर की टक्कर से 24 साल के रिद्धि ठक्कर की मौत। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का ऐलान। बीसीसीआई ने जानकारी दी। आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या को वापस लेने से इनकार किया। हार्दिक ने वापसी के लिए कप्तानी पाने के लिए शर्त रखी थी। 26 साल के बाद बॉलीवुड में वापसी करेगी 90 के दशक की एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर। कॉमेडी फिल्म मालामाल वीकली 2 में नजर आएंगी। फिल्म उड़ता तीर की नई रिलीज डेट का ऐलान किया गया। 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान नजर आएंगे। श्रद्धा कपूर की इथा हुई पोस्टपोन। अब 4 दिसंबर को रिलीज होगी। फिल्म में रणदीप हुड्डा और जीशा नायक भी नजर आएंगे। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की अगली फिल्म राणाबाली की रिलीज डेट में भी बदलाव। अब 30 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड जॉर्जिना के साथ पुर्तगाल में सिविल मैरिज की। दोनों ने अंगूठियों के साथ तस्वीरों को शेयर किया। शादी की खुशखबरी दी। देश के टॉप 300 फैमिली बिजनेस की वैल्यू 2 साल में 27.5% के उछाल के साथ 338 लाख करोड़ रुपए पर पहुंची है। हर उन इंडिया की रिपोर्ट में देखा पारंपरिक कारोबारी परिवारों का दम। रेस्टोरेंट पर पड़े हुए हालिया छापों के बाद खुलासों से बाहर के खाने से डर गए हैं लोग। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक खराब हाइजीन और फूड क्वालिटी पर उठे सवालों ने चिंता बढ़ाई। टोल प्लाजा पर जैम को खत्म करने के लिए सरकार मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम को बढ़ावा देगी। टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को भी मासिक की जगह बनवाना होगा सालाना पास। लोकल सर्कल्स के सर्वे में 68% लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर ज्यादा पैसा वसूलने का दावा किया है। संसदीय समिति ने भी रूम चार्ज पर लगाम लगाने की मांग उठाई। वित्त मंत्री ने 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोटों के ट्रायल को मंजूरी मिलने की जानकारी दी। दोनों ही नोटों के 30 साल तक चलने वाले 100-100 करोड़ पॉलीमर नोटों का शुरू होगा ट्रायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। मुंबई में मॉनसून एक बार फिर से आफत लेकर आया है। भारी बारिश के बीच शहर के पहाड़ी और ढलान वाले इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। कुर्ला इलाके में हुए लैंडस्लाइड में 7 लोगों की जान चली गई, जबकि रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे हुए 7 लोगों को बचाया है। तुरंत ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पहुंची मेयर रितु तावड़े ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन विपक्ष ने कहा है कि लापरवाह बीएमसी क्या 7 लोगों की जान को वापस ला सकती है।
1: हर साल बारिश के बाद मुंबई और आसपास के इलाकों में बिल्डिंग गिरने के हादसे हो रहे हैं, लेकिन बीएमसी प्रशासन जर्जर इमारतों को नोटिस थमाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेती है। आज मुंबई के कुर्ला इलाके में लैंडस्लाइड ने 7 लोगों की जान ले ली, जबकि मलबे से 7 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। हादसे के बाद आनंद फानंद ने एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे में 1-2 साल के बच्चे की भी दर्दनाक मौत हो गई।
2: मुंबई के साकिना के इलाके में रात 3:30 बजे के करीब लैंडस्लाइड की घटना घटी, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। जहां पर ये पहाड़ है वहां पर कुछ घर हैं और 3 से 4 घरों के ऊपर लैंडस्लाइड का जो मलबा है वो गिरा, और अभी भी 4 से 5 लोग अंदर दबे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। मुंबई की महापौर रितु तावड़े घटनास्थल पर पहुंची और उन्होंने इस घटना का जायजा लिया, जिसके बाद मुंबई महानगर पालिका द्वारा मृतकों को 3 लाख रुपए की मदद और जो आसपास लोग रहते हैं उनको सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करने के आदेश मेयर रितु तावड़े ने दिए। फिलहाल एनडीआरएफ, मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड द्वारा बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू है, लेकिन संकरी गलियां होने की वजह से बचाव कार्य में जो है बड़ी दिक्कतें आ रही हैं।
1: हादसे के बाद इस रोते हुए बच्चे को देखिए, अचानक उसके सिर से घर वालों का साया उठ गया। बच्चे को पुलिस वालों के साथ स्थानीय लोग समझाते दिखे, लेकिन इतने छोटे बच्चे की निगाहें सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता को तलाश रही थी।
3: 3 बजे हुआ है और करीब 7 घर गया है, 2 जन की मतलब मिट्टी हो गई, 2 जन घायल है, 7 घरों पे गिरा है।
4: लोगों को निकाला गया था या ये लोग?
3: हम लोग निकाल चुके थे जब वो लोग पहुंचे।
5: सामने जो रूम है उसमें 8 जन दबे थे और 4 उस तरफ दबे थे, 4 इस तरफ दबे थे और 4 उस तरफ पूर्व दक्षिण साइड मतलब दबे थे, 4 जन थे। तो 4 जन, 2 जन की मैयत हो गई, 2 जन बचे।
1: कुरला इलाके में सुबह सुबह यह हादसा पहाड़ खिसकने से हुआ। मलबे की चपेट में आसपास के घर और झोपड़ियां आ गई। लगातार बारिश के बाद पहाड़ का कमजोर होना इस हादसे की वजह माना जा रहा है। स्थानीय कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक नसीम खान भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हादसे के पीछे बीएमसी की लापरवाही है।
6: सरकार, महानगर पालिका दोनों ही लोग जिम्मेदार हैं। जिस तरह से इतनी बड़ी ये दर्दनाक घटना घटी है, 7 लोग अभी तक मृत्यु पाए गए हैं, 2 साल का छोटा बच्चा उसमें मृत्यु हुआ है, और ये सब लापरवाही महानगर पालिका और प्रशासन की तरफ से हुई है। नियम ऐसा है कि हर बरसात के पहले जितने भी मुंबई में डोंगरी भाग हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं अगर धोखादायक परिस्थिति में है तो उनको वहां से हटाया जाता है, उनका पुनर्वास किया जाता है। माहड़ा की तरफ से 1000 करोड़ का प्रोविजन करके रखा जाता है हर साल की ऐसी परिस्थितियों में, जहां जहां पे डोंगरी भाग है वहां पर रहवासियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दीवार बनाई जाती है। यहां पर तो आज 40-30 साल से रहने वाले लोग हैं और हम विधायक थे जब जितना काम हुआ था उसके बाद आगे कोई काम ही नहीं हुआ, यहां पर संरक्षण भीति नहीं बनाई गई है।
1: हालांकि मुंबई की मेयर रितु तावड़े भी घटनास्थल का मुआयना करने पहुंची। उन्होंने हादसे को दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ नोटिस देने की खानापूर्ति की गई, लेकिन लोगों को शिफ्ट करने का कोई इंतजाम नहीं किया गया।
7: नोटिस देने के बाद आप उसके ऊपर क्या ध्यान दे रहे हो कि वो घर खाली हुए वो नहीं हुए या आपने उनको कहीं शिफ्टिंग दिया? क्योंकि हजारों लोग रह रहे, आप एक नोटिस दे देंगे उनको, बोलेंगे आप डोंगर खाली करके चले जाओ, वो रहेंगे कहाँ पे 4 महीना? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि वो रहेंगे कहाँ 4 महीना? आपकी जवाबदारी है, महाराष्ट्र सरकार की जवाबदारी है कि उनको यहाँ से शिफ्ट करके हमारे यहाँ पर HDL में, हजारों घर बंद पड़े 15-20 सालों से बंद रहे कि क्या फायदा है? लेकिन अगर आपने उनको वहां पर रहने दे दिया तो कहीं ना कहीं आज उन लोगों की जान बच जाती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई शासन या प्रशासन ऐसे डिसीजन नहीं लेता है। हर साल नोटिस देना है, लोग मरेंगे, आएंगे 5 लाख 10 लाख, अब बड़ा हादसा हुआ है तो महापौर हो सकता है 15 लाख भी दे सकते हैं क्योंकि हमारी सरकार के पास बहुत पैसे, लेकिन आपके 15 लाख देने से इस परिवार को कोई फायदा नहीं होगा, उससे उसका परिवार का कोई इतना बड़ा काम नहीं हो जाएगा। लेकिन पल्लू झड़कना है कि हमने जो मरे उनको हमने हेल्प किया, बड़ी बड़ी बातें करेंगे और निकल जाएंगे।
1: लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुंबई में हर मॉनसून लैंडस्लाइड का खतरा आखिर क्यों बढ़ जाता है? दरअसल मुंबई का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी और ढलान इलाके से घिरा है। इन ढलानों पर कई जगह घनी बस्तियां बसी हुई हैं और लगातार बारिश, मिट्टी के कटाव, पानी की निकासी की समस्या और कमजोर रिटेनिंग वॉल जैसी वजहें खतरे को बढ़ाती हैं। साल 2017-18 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे किया, जिसमें बताया कि मुंबई में 45 बेहद संवेदनशील लैंडस्लाइड साइट्स हैं, जो घाटकों पर विक्रोली, भांडुप और मुलुंड में हैं। एक RTI से मिली जानकारी के मुताबिक 1992 से 2021 तक 290 लोगों की मौत हो चुकी है तो 300 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इस साल भी खतरा कम नहीं हुआ है। अप्रैल 2026 में सामने आई जानकारी के मुताबिक BMC ने मुंबई में 249 ऐसे स्थान चिन्हित किए थे जहां लैंडस्लाइड का खतरा है।
8: मुंबई में लैंडस्लाइड ये कोई नई बात नहीं है। 1992 से लेकर 2026 इन 34 इयर्स में कुल 340 लोगों की मौत लैंडस्लाइड की वजह से हुई, वही करीब 300 से अधिक लोग जख्मी भी हुए। ये कोई नई बात इसलिए नहीं, मैं इसलिए क्यों कहा, क्योंकि सरकार ने मुंबई झोपड़पट्टी सुधार मंडल जो उनका एक स्लम बोर्ड है उसको आदेश दिया था कि पूरे के पूरे जो लैंडस्लाइड के जो क्षेत्र है उसका जायजा लिया जाए। उन्होंने जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि मुंबई में कुल 36 असेंबली है, उसमें से 25 असेंबली में 22,483 ये झोपड़े खतरनाक है।
1: वहीं मुंबई में विधायक निवास इमारत के एक कमरे की छत का हिस्सा गिरने से हादसा हो गया। रूम नंबर 101 में एनसीपी के वरिष्ठ नेता दिलीप वलसे पाटिल को आवंटित है। आज सुबह अचानक से छत का हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। हैरानी की बात है कि दिलीप वलसे पाटिल ने मॉनसून सत्र से पहले ही इस जर्जर हिस्से की मरम्मत करने की मांग पीडब्ल्यूडी विभाग से की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
2: मुंबई में मॉनसून हर साल आता है और हर साल मॉनसून की वजह से होने वाला लैंडस्लाइड त्रासदी बन जाती है। ये त्रासदी क्यों बन जाती है, ये सवाल त्रासदी के बाद नहीं बल्कि मॉनसून आने से पहले पूछा जाना जरूरी है, क्योंकि पहाड़ की मिट्टी खिसकने से पहले अगर खतरे को पहचान लिया जाए तो मलबे के नीचे दबने वाली जिंदगियों को शायद बचाया जा सके। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ एजाज खान और दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: अजीत पवार के निधन के बाद से एनसीपी में अंदरूनी कलह खुलकर अब सामने आने लगी है। एक तरफ सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार का खेमा है तो दूसरी तरफ है सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल का गुट। सवाल अब यह कि क्या ये टकराव सिर्फ संगठन और पद की लड़ाई है या फिर इसका कनेक्शन शरद पवार के साथ चल रही विलय की चर्चाओं के साथ भी है। ताजा मामला है एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील तटकरे की नियुक्ति को गैरकानूनी बताते हुए चुनाव आयोग में की गई शिकायत है।

0: उमेदवारी वापस घेण्याची तारीख नाही, मतदानाची तारीख नाही, निवडणूक निर्वाचन अधिकाऱ्याची नियुक्ती नाही आणि निवडणूक जाहीर करण्याची तारीख नाही, ह्या सगळ्या प्रक्रिया न करता त्यांनी स्वतःची निवड करून घेतली, ही बेकायदेशीर आहे आणि महाराष्ट्रातल्या दादावर प्रेम करणाऱ्या आणि राष्ट्रवादीवर प्रेम करणाऱ्या कुठल्याही कार्यकर्त्याला, निष्ठावंत कार्यकर्त्याला हे अजिबात प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मान्य नाही.
1: ये विवाद ऐसे वक्त में सामने आया है.
0: त्यांनी स्वतःची निवड करून घेतली, ही बेकायदेशीर आहे आणि महाराष्ट्रातल्या दादावर प्रेम करणाऱ्या आणि राष्ट्रवादीवर प्रेम करणाऱ्या कुठल्याही कार्यकर्त्याला, निष्ठावंत कार्यकर्त्याला हे अजिबात प्रदेशाध्यक्ष म्हणून मान्य नाही.
1: ये विवाद ऐसे वक्त में सामने आया है जब सुनीत्रा पवार और शरद पवार गुट के बीच विलय की अटकलों ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है. हाल के दिनों में शरद
0: निष्ठावंत कार्यकर्त्याला
2: के काम के लिए 591 करोड़ रुपए के फर्जी टेंडर देकर 3.5 करोड़ रुपए भी हड़प लिए गए और इसका खुलासा हो गया है. मंत्री गिरीश महाजन के कथित रिश्तेदारों समेत 2 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं. तनय महाजन खुद को मंत्री गिरीश महाजन का रिश्तेदार बताकर ठगी कर रहा था, जबकि नरेंद्र महाजन पेशे से फोटोग्राफर है और जामनेर का रहने वाला है. दोनों के खिलाफ नासिक रोड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया. नासिक कुंभ मेले के लिए 32,000 करोड़ के काम होने हैं.
3: कोण जणांना कुंभमेळ्याच्या या खोट्या वर्कआउट देण्याच्या संदर्भामध्ये मीच माझ्याकडे लोक आले होते की अशी ऑर्डर मला मिळालेली आहे आणि त्या संदर्भामध्ये मीच सिपिंदाय सांगितलेलं आहे मुख्यमंत्री मोदींच्या कारणावर मी सर्वात मीटिंगच्या दिवशीच कुंभमेळ्याची बैठक होती त्याच्या विषय घातलेला आहे. आमचे आयुक्त आहेत, महसूल आयुक्त ते कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत गेडाम साहेब, त्यांच्या सहीने म्हणजे डिजिटल सहीने हे सगळे प्रसिद्ध झालेले होते आणि मी त्यांनाही ती कॉपी पाठवली. ते पण म्हणजे की अशी आपली कुठलीही कॉपी या ठिकाणी आपण अशी दिलेली नाही, असं कुठलं टेंडर निघालेलं नाही आणि म्हणून आपण पोलिसांमध्ये तक्रार केली. त्याच्यामध्ये 2 जणांना ताब्यात घेतलं आहे, अजून 1 जण त्यातला जो मुख्य अजून आरोपी आहे शकील नावाचा तो सुद्धा फरार आहे. अजून 5-6 आरोपी याच्यामध्ये आहेत, त्यांचाही शोध त्या ठिकाणी सुरू आहे. त्यांची नावं साहेबांकडे त्या ठिकाणी गेलेली आहेत. ज्यांना
4: माननीय मंत्री महोदय श्री गिरीश महाजन जी इन्होंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्फॉर्मेशन दी थी कि कुछ लोगों ने डुप्लीकेट कुंभ मेला के काम के वर्क ऑर्डर देकर चीट किया है. अकॉर्डिंगली माननीय मंत्री महोदय जी ने ये इन्फॉर्मेशन सीपी नासिक सर को दी थी. इसके बाद इस प्रकरण में जो जिनको ठगा गया था, जिनके साथ चीटिंग हुई थी, उनसे कॉन्टैक्ट किया गया, उनसे संपर्क करके उन्होंने एक इस मामले में शिकायत दर्ज की. शिकायत के अनुसार 2 लोगों ने जो इस मामले में फिरियादी है उनको बताया कि हम आपको कुंभ मेला के संदर्भ में टेंडर कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं. उन्होंने उनको फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाए और फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाकर उनको काम देने का आश्वासन देकर उनको फर्जी डॉक्यूमेंट दिए और उनको 591 करोड़ का काम दिया ऐसा दिखाया गया और उसके फर्जी डॉक्यूमेंट उन्होंने उनको दिए. इसके बदले में उन्होंने जो इस कंप्लेंट में फिरियादी है उनसे 305 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में लिए और उनको फेक डॉक्यूमेंट देकर उनको कुंभ मेला के संदर्भ में काम दिया.
5: नासिक में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ में फर्जी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का झांसा देकर और उसी के लिए फर्जी वर्क ऑर्डर देकर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. इस ठगी के बारे में जानकारी मंत्री गिरीश महाजन को मिली थी. मंत्री गिरीश महाजन ने नासिक पुलिस को इस मामले में जांच करने के लिए कहा था. नासिक पुलिस ने जांच कर मंत्री गिरीश महाजन ने नासिक पुलिस को इस मामले में जांच करने के लिए कहा था. नासिक पुलिस ने जांच कर नासिक रोड पुलिस स्टेशन में 3 FIR दर्ज किए और 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया है. आपको बताएं कि 5 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर अब तक सामने आ चुके हैं जिन्हें 591 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का झांसा देकर, यहां तक कि वर्क ऑर्डर भी, फर्जी वर्क ऑर्डर भी उनके नाम का निकालकर उन्हें दे दिया गया था और उनसे 305 करोड़ रुपए की ठगी की गई. आपको बता दें कि इस मामले में जो 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं उनमें से एक का नाम है तनय महाजन, जो कि मंत्री गिरीश महाजन का दूर का रिश्तेदार है. वो कॉन्ट्रैक्टर्स को झांसा देता था कि वो मंत्री गिरीश महाजन का करीबी है और वो उन्हें महाकुंभ के कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता है. वो वर्क ऑर्डर भी, फर्जी वर्क ऑर्डर्स भी निकालकर उन्हें दे दिया करता था और जिसमें वरिष्ठ सरकारी अफसरों के फर्जी हस्ताक्षर भी होते थे. आपको बता दें कि तनय महाजन सहित अन्य एक व्यक्ति नरेंद्र महाजन भी अरेस्ट हुआ है.

0: और पुलिस इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान और नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
1: छत्तीसगढ़ के धमतरी में मुंबई से बस्तर घूमने निकले बाइक राइडर्स के ग्रुप के साथ दर्दनाक हादसा हुआ है। NH-30 पर मरकोटला घाट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 24 साल की बाइक सवार रिद्धि ठक्कर को पीछे से टक्कर मारी थी। गंभीर रूप से घायल रिद्धि को चरामा स्वास्थ्य केंद्र में धमतरी के श्रीराम अस्पताल में तुरंत रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रिद्धि मुंबई के कांदिवली वेस्ट की रहने वाली थी और करीब 23 बाइक राइडर्स के ग्रुप के साथ बस्तर जा रही थी। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भयानक यह हादसा हुआ है धमतरी में, और आपको ये भी बता दें कि जबरदस्त टक्कर थी ये जो पीछे से मारी थी ट्रक ने, और मौके पर बुरी तरह से रिद्धि घायल हो गई थी। तुरंत ही उन्हें दूसरे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस और जल्द से जल्द इस ड्राइवर की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: और अब खबर टाटा सन्स से आई बड़ी चौंकाने वाली खबर के बारे में, क्योंकि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने आज इस्तीफा दे दिया है। यह खबर इसलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि 18 अगस्त को टाटा सन्स की एनुअल जनरल मीटिंग होनी है, उसमें पहले चंद्रशेखरन के इस्तीफे की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया।
2: टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने आज 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 18 अगस्त को होने वाली टाटा सन्स की एजीएम से ठीक पहले आया है। हालांकि वे फरवरी 2027 तक पद पर बने रहेंगे। मैंने टाटा ग्रुप में अपने प्रोफेशनल करियर के 40 साल पूरे कर लिए हैं। इस प्रतिष्ठित संस्थान में योगदान देने का मौका मिलना मेरे लिए बेहद संतोषजनक रहा और इसके लिए मैं आभारी हूँ। एन चंद्रशेखरन साल 2017 से टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। इससे पहले वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS के CEO रह चुके हैं। 63 साल के चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल को लेकर टाटा ट्रस्ट के साथ सहमति नहीं बन पाई थी। नए कारोबारों में भारी निवेश, उनके प्रदर्शन और टाटा सन्स के भविष्य को लेकर मतभेद इस फैसले की बड़ी वजह बने। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में किसान परिवार में जन्मे चंद्रशेखरन अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही एक तमिल माध्यम वाले सरकारी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अप्लाइड साइंस में ग्रेजुएशन किया, फिर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूदा NIT त्रिची से MCA की डिग्री हासिल की। 1987 में एक इंटर्न के तौर पर टाटा समूह से जुड़े और फिर चेयरमैन तक का सफर तय किया। एन चंद्रशेखरन वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के सबसे अधिक वेतन पाने वाले कॉरपोरेट अधिकारियों में शामिल हैं। टाटा सन्स की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उनका कुल वेतन 158.66 करोड़ रुपए सालाना था। फरवरी 2026 में टाटा सन्स बोर्ड ने चंद्रशेखरन के अगले 5 साल के कार्यकाल की सिफारिश की थी। बाद में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने इसका विरोध किया और 2 साल का कार्यकाल देने की वकालत की। अब ये देखना है कि एन चंद्रशेखरन के जाने के बाद टाटा सन्स में ये जिम्मेदारी किसे मिलती है। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

विपक्षी हंगामे के बीच गृह मंत्री का ऑफर, सदन में हो जाए चर्चा, मैं पूरे समय बैठूंगा दूंगा जवाब। राहुल गांधी बोले सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर। आज सत्र का आखिरी दिन, 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की शिरकत, एनडीए सांसदों ने निकाली बाइक रैली। रांची आंदोलन पर दिल्ली तक राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में एबीवीपी। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बदलाव, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले छात्रों शिक्षण संस्थाओं के साथ होगी चर्चा, उच्च स्तरीय कमेटी का होगा गठन। और एयर इंडिया मामले में आज तक के पास मेंटेनेंस रिपोर्ट, एक मिनट में आए 3 बार हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट, 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली जा रहा था विमान। Presented.

विपक्षी हंगामे के बीच गृहमंत्री शाह का ऑफर, कहा सदन में हो जाए चर्चा, मैं पूरे समय बैठूंगा, सुनूंगा और जवाब दूंगा। अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी बोले, बहस नहीं सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर। राहुल गांधी पर कंगना रनौत का हमला, बोली संसद का मजाक बना रहे हैं, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर भी निशाना साधा। ओम बिरला ने कहा, चाहे कितने भी मतभेद हो, विचारों में कितनी भी भिन्नता हो, सदन चलना चाहिए। कांग्रेस ने 19 अगस्त को दोपहर 3 बजे CWC की बैठक बुलाई है, बैठक में देश के छात्रों और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा। छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक हो रही है राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, CID पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा। झारखंड छात्र मुद्दे पर ABVP का बड़ा ऐलान, देश भर में 1200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और हर जिले में प्रदर्शन की तैयारियां। पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, अगर राज्य सरकार ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की सिफारिश एक हफ्ता के भीतर नहीं की तो वो भूख हड़ताल करेंगे। एयर इंडिया मामले में आज तक के पास मेंटेनेंस रिपोर्ट, एक रिपोर्ट में आए 3 बार हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट, 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान। पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा तीनों ही आरोपों में दोषी, जांच समिति ने आरोपों को सही और प्रमाणित पाया, सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने के पीछे किसी साजिश के संकेत नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने अहमदाबाद में मेगा निवेश रोड शो की शिरकत की, सीएम ने गुजरात के उद्योगपतियों से भी मंथन किया। सीएम मोहन यादव ने गुजरात के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया, GIS 2027 का न्योता दिया गया। NIA का बड़ा एक्शन, तमिलनाडु मिजोरम में 13 ठिकानों पर छापे, ड्रग तस्करी नेटवर्क की तलाश। बिहार में स्टेट 2026 का होगा आयोजन, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारियां शुरू, 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन। मोहसिन रजा ने सीएम योगी से वक्फ घोटाले की SIT जांच और विशेष ऑडिट की मांग किया, का 70,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियां गायब हैं, अब पारदर्शिता और जवाबदेही का समय आ गया है। भर्ती परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए महाराष्ट्र में बनेगी हाई लेवल कमेटी, 25,000 सुरक्षित परीक्षा कक्ष बनाने का भी निर्देश। नासिक कुंभ के नाम पर 500-600 करोड़ के फर्जी वर्कआउट का वर्क ऑर्डर का दावा किया गया, मंत्री गिरीश महाजन बोले, रिश्तेदार तने महाजन भी जांच के घेरे में। मुंबई में सीएम फडणवीस से मिले राज ठाकरे, शिवाजी पार्क और मुंबई गोवा हाईवे समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। राज ठाकरे फडणवीस मुलाकात पर संजय राउत का तंज, बोले शायद मुंबई गोवा हाईवे और नासिक के गड्ढों की शिकायत लेकर गए होंगे। NCP में आंतरिक कलह को लेकर संजय शिराट ने कहा, कोई अंदरूनी खींचता नहीं, बल्कि सुनील तटकरे की प्रदेश मुखिया पद पर नियुक्ति अवैध है या नहीं ये फैसला चुनाव आयोग करेगा। मुंबई में डोमिनोज के 3 और कराड में एक आउटलेट का लाइसेंस सस्पेंड किया गया, हाइजीन पेस्ट कंट्रोल समेत कई खामियां मिली, 95 सुधार नोटिसेस जारी। लखनऊ में नकली दवाओं के नेटवर्क पर FSDA का बड़ा एक्शन, 4 आरोपियों पर FIR दर्ज, 39 लाख टैबलेट्स का हिसाब मिला ही नहीं, फर्जी बिलिंग और कागजी लेन देन से दवाओं का खेल जारी था। लखनऊ में 8.5 करोड़ से ज्यादा की खरीद पर जांच, बंद फर्म के जरिए भी ट्रांजेक्शन के आरोप। गुरुग्राम में बढ़ती हुई ट्रैफिक संबंधी समस्याओं को लेकर अवैध कब्जों पर चला नगर निगम का बुलडोजर, न्यू कॉलोनीज में अब तक 31 से ज्यादा अवैध ढांचों को निस्तनाबूद किया गया। पुणे के चाकड़ MIDC में खराब सड़कों और जाम से कारोबार प्रभावित हुआ, 20 कंपनियों पर पलायन का दबाव, करीब 1,000 करोड़ के कारोबार पर असर। नागपुर में 16 अगस्त को होने वाली कांवड़ यात्रा को पुलिस की अनुमति नहीं है, मस्जिद दरगाह वाले रूट को दिया गया है हवाला, आयोजकों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर किया याचिका। गुजरात में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए शिक्षकों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। भावनगर के समरस हॉस्टल में छात्राओं का हंगामा, खाने में सिगरेट, कीड़े और गंदगी मिलने के आरोप, गंदे पानी और अव्यवस्थाओं पर शिकायत पर SDM ने जांच शुरू की। विदिशा के सिरोंज में किराया बढ़ाने से नाराज स्कूल की छात्राएं सड़कों पर उतर आई, बस स्टैंड पर करीब आधे घंटे तक जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भोपाल में BSc नर्सिंग के छात्रों का बड़ा प्रदर्शन, रिजल्ट जारी करने समय 7 मांगे, नर्सिंग काउंसिल के सामने प्रदर्शन किया गया। 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज हुई, राजधानी दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है, छावनी में तब्दील लाल किले के आसपास का इलाका। जमीन के साथ साथ आसमान और पानी के रास्ते पर भी सुरक्षा चाक चौबंद है, सुरक्षाकर्मी यमुना नदी में नाव के जरिए कर रहे हैं पेट्रोलिंग। जामनगर में समुद्री तट पर मरीन कमांडो की पेट्रोलिंग, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। देशभक्ति के रंग में डूबा भारतीय रेलवे, रेलवे स्टेशन पर बज रहे हैं देशभक्ति के गीत, तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं रेल कर्मचारी, स्काउट गाइड। दिल्ली के केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व, DU में माय भारत वॉलंटियर्स भी शामिल। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, बोले 370 हटने के बाद कश्मीर में शान से लहराता है तिरंगा।
नितिन नवीन ने कर्तव्य पर से दिया संदेश, बोले 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से गूंजेगा वंदे मातरम का जय घोष, कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद। शोपिया में देशभक्ति के रंग में रंगा माहौल, तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए लोग और छात्र, राष्ट्रभक्ति के नारों से गूंजा शहर। स्वतंत्रता दिवस के जश्न और राष्ट्रीय एकता के संदेश के तहत श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में दिखाई दिया सुंदर नजारा, भव्य शिकारा तिरंगा रैली आयोजित की गई। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा, हटवाल गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से मुख्य बाजार तक निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले भोपाल रेलवे स्टेशन पर देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन, रेलवे सुरक्षा बल के बैंड ने दी शानदार म्यूजिकल परफॉर्मेंस। नू में निकली एक हाथ में कुरान एक हाथ में तिरंगा यात्रा, मदरसों के बच्चों ने दिया देशभक्ति का संदेश। लाल किले के पास अनोखा बलिदानी मंदिर, जहां 100 से ज्यादा क्रांतिकारियों की तस्वीरें करीब 56 साल से संजोई जा रही हैं शहीदों की यादें। विश्व हाथी दिवस के मौके पर जयपुर के कार्यक्रम में आयोजन, हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम। जयपुर के कुंडा स्थित हाथी गांव में किए गए आयोजन के लिए हाथियों का किया गया श्रृंगार, प्राचीन और पारंपरिक आभूषणों से हाथियों को सजाया गया। किश्तवाड़ के हाकोनाला में भारी बारिश के बाद बन गई बाढ़ जैसी स्थिति, कई रास्ते जाम है, आवाजाही बाधित। लाहौल स्पीति में मुंशी नाला में फ्लैश फ्लड, खेतों में बाढ़ का पानी भरने से कृषि भूमि पूरी तरह से तबाह। असम के गोलाघाट में धनसिरी नदी का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में सुधार है, सामान्य जनजीवन बहाल करने की कोशिश जारी। असम बाढ़ में 71 मृतकों के परिवारों को मुआवजा मिला, राहत के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में जानकारी दी। हिमाचल में भारी बारिश से 313 सड़कें बंद, 65 पेयजल योजना और 112 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए, 18 अगस्त तक अलर्ट। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी में भारतीय सेना ने बचाया हिमालयी भालू, मुंह में फंस गया था टिन का डिब्बा, रेस्क्यू करके वन विभाग को सौंपा। देहरादून में पहाड़ कटाई के दौरान सड़क पर आ गया था मलबा, मसूरी देहरादून मार्ग पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम, घंटों फंसे रहे वाहन। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बारिश में नदी का जलस्तर बढ़ गया, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे ग्रामीण, नदी के तेज बहाव में फंस गया था युवक। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा, वार्निंग लेवल के ऊपर बह रहा है पानी, नवनेरा बैराज से 4.15 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मुंबई के साइन में स्ट्रक्चर गिरने से हड़कंप, मलबे में फंसे सभी मजदूरों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया। मुंबई के नालासोपारा में बिजली के तार गिरने की वजह से बाइक जली, सीसीटीवी वीडियो सामने आया। मुंबई में विस्तारित विधायक निवास के कमरे की छत का हिस्सा गिरा, एनसीपी नेता दिलीप बल से पार्टी को आवंटित था कमरा, हादसे में कोई घायल नहीं। मुंबई के भाईंदर रेलवे खाड़ी पुल पर जानलेवा स्टंट का वीडियो वायरल हुआ, आरपीएफ ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया मामला। सीतापुर में बेटे बहू की लाठी डंडों से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, पारिवारिक विवाद में मारपीट का आरोप, पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके शुरू की कार्रवाई। सूरत में शराब के नशे में चूर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, पानी की टंकी पर चढ़कर मचाया हंगामा, फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू करके नीचे उतारा। बस्तर घूमने निकले मुंबई के बाइक राइडर्स ने बाइक राइडर्स के दल पर टूटा कहर, धमतरी में ट्रेलर की टक्कर में 24 साल के वृद्ध ठक्कर की मौत हुई। बलरामपुर में युवक की पेट से बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई, मौत हुई, पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। रोहतास में यात्रियों से भरी हुई बस बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मारी, टक्कर के बाद बस यात्री शेड से टकराई। गुजरात के नर्मदा में महिला डॉक्टर ने सीपीआर देकर बचाई मरीज की जान, वीडियो अब सामने आया। ओडिशा के क्योंझर में पत्नी और पति की हत्या का आरोप, लकड़ी के डंडे से सिर पर वार करके आरोपी गिरफ्तार हुआ। भोपाल में पुलिस को अगवा कर ले गए बदमाश, हाथ पैर बांध कर पीटा, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के जामनगर राजकोट हाईवे पर ट्रक की कैबिन में आग लग गई थी, वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हुआ, कोई हताहत नहीं। गुजरात के जूनागढ़ में एम्बुलेंस में ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मारी, 70 साल के चालक की मौके पर ही मौत। गाजीपुर में रील बनाने के शौकीन 3 पुलिसकर्मी निलंबित हुए, हाईवे पर अवैध वसूली के आरोप में एसपी गाजीपुर ने सख्त कार्रवाई की। गुजरात के नवसारी में पानी की पाइपलाइन में बड़ा लीकेज हुआ, 70 फीट ऊंचे पानी के बने तेज फव्वारे को देखने के लिए उमड़ी भीड़। ग्वालियर के बड़ी हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड की छत से गिर गया था प्लास्टर, 16 बच्चे इसमें शिफ्ट किए गए, 2.5 महीने की बच्ची के पैर में मामूली चोटें। बेतिया में पेड़ से लटकता महिला का संदिग्ध हालत में शव बरामद किया गया, परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए। महाराष्ट्र के पालघर में बारिश के बीच पुराना मकान ढहा, मलबे में दबकर 71 वर्षीय महिला की मौत हुई। चरखी दादरी सिटी थाना फायरिंग केस में सीआईए की बड़ी कार्रवाई, गोपालवास के पास मुठभेड़ में कथित मुख्य साजिशकर्ता उमरदीप उर्फ पंकज घायल। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सूरज कुमार चंदा ने रचाया इतिहास, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप में देश को दिलाया पहला गोल्ड मेडल।
भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का ऐलान बीसीसीआई ने जानकारी दी। 13 से 17 सितंबर तक खेले जाएंगे तीनों ही मैच। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में होंगे तीनों मुकाबले। आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को वापस लेने से इनकार किया। हार्दिक ने वापसी के लिए कप्तानी पाने की शर्त रखी थी। रोहित शर्मा होस्ट के तौर पर टीवी पर करेंगे डेब्यू। द रोहित शर्मा शो नाम से जल्द आएगा एक गेम शो। सोलह साल के बाद बॉलीवुड में वापसी करेंगी 90 के दशक की एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर। कॉमेडी फिल्म मालामाल वीकली 2 में नजर आएंगी। फिल्म उड़ता तीर की नई रिलीज डेट का ऐलान किया गया। 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की जासूसी कॉमेडी फिल्म है। श्रद्धा कपूर की इथा हुई पोस्टपोन, अब 4 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। फिल्म में रणदीप हुड्डा और जीशान नजर आएंगे। विजय देवकोंडा और रश्मिका मंदाना की अगली फिल्म राणा बाली की रिलीज डेट में भी बदलाव है, 30 अक्टूबर को रिलीज होगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गर्लफ्रेंड जॉर्जिना से पुर्तगाल में सिविल मैरिज की। दोनों ने अंगूठियों के साथ तस्वीरों को शेयर किया, शादी की खुशखबरी दी। देश के टॉप 300 फैमिली बिजनेस की वैल्यू 2 साल में 27.5% के उछाल के साथ 138 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। हरुण इंडिया की रिपोर्ट में दिखाई दिया पारंपरिक कारोबारी परिवारों का दम। रेस्टोरेंट में पड़े हुए हालिया छापों के बाद खुलासों से बाहर खाने से डर गए लोग। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक खराब हाइजीन और फूड क्वालिटी पर उठे हैं सवाल। टोल प्लाजा पर जाम खत्म करने के लिए सरकार मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम को बढ़ावा देगी। टोल के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को भी मासिक की जगह बनवाना होगा सालाना पास। लोकल सर्कल्स के सर्वे में 68% लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के नाम पर ज्यादा पैसा वसूलने का दावा किया है। संसदीय समिति ने भी रूम चार्ज पर लगाम लगाने की मांग उठाई। वित्त मंत्री ने 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोटों के ट्रायल को मंजूरी मिलने की जानकारी दी है। दोनों ही नोटों के 30 साल तक चलने वाले 100 करोड़ पॉलीमर नोटों का शुरू होगा ट्रायल। कोलंबिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 254 के पार पहुंची। भूकंप में 36 घंटे के बाद मलबे में दबी 32 साल की महिला को निकाला गया। परेरा में 40 लापता लोगों का तलाश जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पनामा के झंडे वाले जहाज पर हेल फायर मिसाइल हमले की जानकारी दी। ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी की उल्लंघन करने वाले जहाज को बनाया गया था निशाना। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से मुलाकात की। समझौता कोशिशों में कतर के साथ पाकिस्तान है मध्यस्थ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की दौरे से लौटने में विमान बदले जाने की बात को माना। कहा बड़े खतरे को देखते हुए सीक्रेट सर्विस और सेना की सलाह पर यह फैसला लिया गया। ट्रंप ने अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति के 2 कार्यकाल वाले नियम को बताया बहुत सख्त। 2028 राष्ट्रपति चुनाव लड़े जाने के बारे में गंभीर होने पर पूछे सवाल का जवाब दिया। अमेरिका में भीषण तूफान से इंडियाना में एक शख्स की मौत की खबर। दक्षिणी शिकागो और इंडियाना के कई इलाकों में जारी है बवंडर की चेतावनी। जेलेंस्की ने रूस पर संसदीय चुनाव के बाद नए दौर की सैन्य लामबंदी की तैयारियों पर लगाए आरोप। रात्रि संदेश में जेलेंस्की ने अमेरिका से हवाई सुरक्षा सिस्टम मजबूत किए जाने की भी मांग की। उत्तर कोरिया ने एक हफ्ते में कम वक्त में किया आज अपना दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। 17 से 27 अगस्त तक होना है दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने बुधवार को जीता है विश्वासमत। आम चुनाव से पहले नेतृत्व पर सवाल के मद्देनजर पेश किया विश्वासमत। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना से शादी का किया ऐलान। मशहूर फुटबॉलर रोनाल्डो ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर तस्वीरों को

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम बिखरते समाज, टूटते रिश्ते, संबंधों के साथ दम तोड़ती इंसानियत का विश्लेषण करेंगे। खून के रिश्ते से अलग जिस रिश्ते को सबसे सम्मानित माना जाता है, आज उसमें सब्र का बांध टूट रहा है, भरोसे का पुल डूब रहा है और अब एक के बाद एक घटनाओं में पति और पत्नी एक दूसरे की जान लेने पर उतारू नजर आ रहे हैं। क्या कोई पत्नी अपने ही पति की कब्र अपने ही घर की बालकनी में बनवा सकती है, खुदवा सकती है? महाराष्ट्र के बारामती से ऐसा मामला सामने आया जहां पत्नी ने अपने पति को पहले नींद की गोलियां दी, सिर पर वार किया और फिर अपने हिसाब से सोचा कि वो तो मर चुका है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए बालकनी में ही एक कब्रनुमा ये ढांचा जो आपको दिख रहा है ना फोटो में, वो तैयार करवा लिया। प्लानिंग ऐसी थी कि किसी को शक ना हो, लेकिन हवा के एक झोंके ने इस खौफनाक राज से पर्दा उठा दिया, हवा के एक झोंके ने, और पीड़ित पति की जान बच गई। सवाल यह है कि क्या पति पत्नी के पवित्र रिश्ता इस हद तक जहरीला हो चुका है? और आखिर देश में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? पति पत्नियों को मार रहे हैं और पत्नियां पतियों को मार रही हैं, ये क्या इशारा कर रहा है? डेटा क्या कहता है, ये सब आपको दिखाएंगे। और इसके बाद आपको कश्मीर घाटी में तिरंगा और इससे बौखलाते हुए आतंकी दिखाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच कश्मीर घाटी से एक बार फिर आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों की हिट लिस्ट जारी कर दी है, उन्हें निशाना बनाने की धमकी दी है। हैरानी की बात यह है कि दशकों से अपने ही देश में शरणार्थी बने कश्मीरी पंडितों और प्रवासी मजदूरों को तो धमकियां मिल रही हैं, पर जम्मू कश्मीर में डेमोग्राफी बदल रहे हजारों अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर चुप्पी है। आखिर क्यों? कश्मीरी पंडितों से तो बैर है, लेकिन घुसपैठी है अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। और आखिर में इंटरनेशनल यूथ डे पर आपको बताएंगे कि जब देश में विधायकों के लिए करोड़ों का फर्नीचर मंगाया जाता है, करोड़ों का फर्नीचर, क्योंकि विधायक साहब हैं, माननीय विधायक हैं, तब उसी देश में हॉस्टल में रहने वाले बच्चे बिना फर्नीचर जमीन पर सोने को मजबूर हुए और सांप काटने से 3 लड़कियों की मौत हो गई। आखिर देश के युवाओं को हम दे क्या रहे हैं? लेकिन आज हम अपने शो की शुरुआत महाराष्ट्र के बारामती से आई इस खबर से करेंगे। यह खबर एक पति की दुविधा से जुड़ी है। दुविधा यह थी कि जिस पत्नी के साथ वो पिछले कई वर्षों से रह रहा था, उसने उसे जान से मारने की कोशिश की। आज वो फैसला नहीं कर पा रहा है कि वो पत्नी को अपनी हत्या की कोशिश के अपराध में जेल भिजवाए या उसे माफ कर दे। आज उसकी आंखों में आंसू है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आंसू पत्नी के धोखे का दर्द है या फिर खुद को जिंदा बच जाने की खुशी। हम आपको इस पूरी अजीबोगरीब वारदात के बारे में एक एक चीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पहले सुनिए इस पति को क्या कह रहे हैं।
1: माझा मुलगा है,
2: माझी दोन्ही मुलं गायब आहेत, माझा मुलगा आणि माझी मुलगी ती कुठं आहेत आणि त्यांना तिच्यापासून धोका आहे आणि माझ्या साचरकडपासून लोकांपासून धोका आहे, तर त्यांनी माझी मुलं माझ्या स्वाधीन करावी ही माझी विनंती आहे।
0: प्रवीण जगताप, कभी नहीं सोचा था इन्होंने कि उनकी पत्नी शर्मिला उसकी हत्या की कोशिश करेगी। प्रवीण तो इस बात से हैरान है कि उसकी बालकनी में जो कंस्ट्रक्शन करवाया गया था, दरअसल वो उसकी संभावित कब्र थी। ये कंस्ट्रक्शन उसकी पत्नी अपनी खास निगरानी में बनवा रही थी और प्रवीण को इस बात की भनक तक नहीं थी कि शर्मिला की प्लानिंग उसकी हत्या करके उसकी लाश को इसी जगह पर दफनाने की थी। टेरेस का वीडियो दिखाइए, टेरेस में जो बालकनी है वहां की तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं ये वो पत्नी बनवा रही थी और उसको पता ही नहीं था कि ये दरअसल प्रवीण के लिए ही उसकी पत्नी शर्मिला बनवा रही है। शर्मिला ने एक फुल प्रूफ प्लानिंग से काम किया, उसने पति को मारने का मन बना लिया था, लेकिन समस्या पति के शव को दफनाने और खुद को बचाने की थी। तो शर्मिला चाहती थी कि प्रवीण की हत्या के बाद उसके गुमशुदा होने की खबर फैलाई जाए ताकि उस पर शक ना। बारामती के इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के जिस फ्लैट में प्रवीण और शर्मिला रहते थे, उसमें उनके 2 बच्चे, माँ बाप और छोटा भाई भी रहता था। परिवार को भी पता नहीं था कि प्रवीण और शर्मिला के संबंधों में खटास आ चुकी है, वो भी इस हद तक कि शर्मिला अपने पति की हत्या की कोशिश करे। शर्मिला ने सबसे पहले शव को ठिकाने लगाने के प्लान पर काम किया। उसने परिवार की रजामंदी लेकर घर की बालकनी में एक अलग तरह का ये कंस्ट्रक्शन करवाया। इस कंस्ट्रक्शन में मजदूरों को निर्देश दिए गए थे कि बालकनी में एक बॉक्स टाइप की चीज बनानी है जिसकी दीवारें करीब 2 से 2.5 फीट ऊंची होंगी। आरोप यही है अब मजदूर को लगा कि शायद इसमें पौधे लगाने होंगे। कई लोग अपने बालकनी में इस तरह का बड़ा सा बना लेते हैं जिसमें वो मिट्टी भर के फिर पौधे उगाते हैं। मजदूरों ने उसी हिसाब से ईंट की मजबूत दीवार खड़ी कर दी। शर्मिला ने ये पूरा काम होने के बाद अपने प्लान का दूसरा चरण शुरू किया। दूसरा चरण था प्रवीण को बेहोश करना। तो आरोपों के मुताबिक प्रवीण को बेहोश कैसे करना है ये शर्मिला बेहतर जानती थी। उसके पास बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री थी। बी फार्मा में दवाइयों से जुड़ी जानकारी दी जाती है। इसमें दवाइयों के फॉर्मूले, इंसानी शरीर पर उसका

कई घंटे तक बेहोश हो जाए। उसने 31 जुलाई की रात को मौका देखकर प्रवीण को धोखे से कुछ खास दवाइयां खिला दी, जिसे पुलिस नींद की दवा बता रही है। प्रवीण को बेहोश करने के बाद शर्मिला ने, जब वो नींद की दवा खाए और वो पूरी तरह से, जिसको आप कह सकते हैं, बेहोश थे, तब शर्मिला ने बैट से उसके सिर पर कई बार वार किए। उसे लगा कि बेहोशी की हालत में वो पड़ा रहेगा और सिर पर लगी चोटों की वजह से मारा जाएगा, और उसको यही लगा कि बैट से उसने जो मारा है तो मौत हो गई है। अब उसके लिए लाश को बालकनी वाली कब्र में दफनाना आसान होगा। सिर पर कई बार वार करने के बाद शर्मिला को लगा कि प्रवीण मर चुका है। अगले दिन सुबह शर्मिला ने प्रवीण को मरा हुआ समझकर बालकनी वाली कब्र में डाल दिया। लेकिन यहां एक नई चुनौती खड़ी हो गई। चुनौती थी प्रवीण के शरीर को छिपाना। उसे छिपाने के लिए शर्मिला ने बालकनी में जो कब्र बनाई थी उसके ऊपर चादर डाल दी, लेकिन असली प्लानिंग चादर डालना नहीं थी। बालकनी वाली कब्र की जो तस्वीरें सामने आई है उसमें पास में ही मार्बल का एक स्लैब है। ये देखिए, मार्बल का स्लैब जो आप नीचे में देख रहे हैं रखा हुआ है। अब उसकी प्लानिंग ये थी कि प्रवीण को कब्र में डाल दिया जाएगा और उसके बाद कब्र के ऊपर मार्बल का यही स्लैब डाला जाना था, ताकि शव हमेशा के लिए उसमें सील हो जाए और प्रवीण का शरीर कभी किसी को मिले ही ना। लेकिन शर्मिला की प्लानिंग में एक चूक हो गई। मार्बल का ये स्लैब इतना भारी था कि वो अकेले इसे उठाकर रख ही नहीं पाए। इसके लिए शर्मिला ने कुछ मजदूर बुलवाए। मजदूरों को कब्र सील करना था। जैसे ही मजदूरों ने, उनको तो लग रहा था कि गमले के ऊपर ये रख रहे हैं, मार्बल रखने का काम शुरू किया, उसी वक्त नीचे जो बताया जा रहा है, उसने जो पूरा शरीर है अपने पति का, प्रवीण का, उसको सफेद चादर से ढक दिया था, तकिए वगैरह लगा दिए थे। उसी वक्त हवा का झोंका आया जिसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। अब हम वो AI वीडियो दिखा सकते हैं जिसमें हवा के झोंके से ये प्रवीण के शरीर पर डाली गई जो चादर का एक हिस्सा है वो हटा, और जो मजदूर थे उनको लगा कि इसकी तो उंगलियां हिल रही हैं और यहां तो आदमी है, और प्रवीण का पैर दिखने लगा। मजदूरों ने देखा कि प्रवीण के पैर की उंगलियां हिल रही थी। ये देखकर मजदूर घबरा गए। उन्होंने लगा कि घर में किसी व्यक्ति को जिंदा समाधि दी जा रही है। मजदूरों ने तुरंत पुलिस को भी यही फोन किया और पुलिस को कहा कि यहां तो इस घर में एक आदमी जिंदा समाधि ले रहा है। अब जब तक पुलिस पहुंचती तब तक शर्मिला ने प्रवीण के शरीर को बालकनी से हटाकर बेडरूम में छिपा दिया। पुलिस ने जब घर की जांच की तो उन्हें प्रवीण जख्मी हालत में जमीन पर गिरा हुआ मिला। पुलिस ने पूछताछ की तो शर्मिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए,

0: था जिसमें हम पौधे लगा सके। और ये दरअसल इस फिराक में थी कि यहां पर एक दिन वो अपने पति को डालना चाहती थी। आरोपों के मुताबिक इसने मजदूरों को बुलाकर ये घर में बनवा लिया। फिर एक दिन उसने अपने पति को ऐसे नींद की दवाएं दी, क्योंकि इसको जानकारी थी, जिससे वो बेहोश हो जाए। और जब पति बेहोश हो गया, उसके बाद इसने बैट से, जो बैट भी घर में आपको दिख रहा है, उस बैट से उसने मारा। उसके बाद से चादर में लपेट कर कुछ तकिया वकिया डालकर वहां पर इसने डाल दिया। ये स्लैब जो सामने में है, स्लैब से वो कवर करना चाहती थी, लेकिन वो स्लैब इतना भारी था, जैसा वो खुद पुलिस को बता रही है, जिसकी वजह से उठा नहीं पाई। उसने मजदूरों को घर पर बुलाया कि तुम इसको ढक दो। वही हवा का झोंका चला, कुछ हिला डुला, और इन मजदूरों को दिखा कि वहां तो पैर किसी का है और उंगलियां हिल रही हैं। तब उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और बताया कि हमसे ऐसा ऐसा काम करा रहे हैं, यहां पर तो कोई जिंदा आदमी समाधि ले रहा है। उनको समझ ही नहीं आया। तो ये पूरी कहानी है, जिसके बाद जब वो बेहोश हुआ, उसके बाद मारने के बाद उसको इसमें डाला गया है। तो कुल मिलाकर जब मजदूरों ने भाई पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, फिर पूरी कहानी समझी गई। फिर वो खुद ही आकर बताती है कि उसने ऐसा किया है, और उसकी स्ट्रैटेजी यही थी कि वहां पर वो बैट से मारा ही था, उसको लगा मर गया और नीचे दबकर मर जाएगा। पिछले कुछ समय में बारामती जैसी कई वारदातें सामने आई हैं, जिसमें पत्नी द्वारा पति की हत्याएं की गई हैं। ये घटनाएं पति पत्नी के उलझे हुए संबंधों की कहानी बताती हैं, जिसमें पति शिकार बनता है। कई बार ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें पत्नियां शिकार बनती हैं। और ऐसा नहीं है, आपने अनेकों ऐसे मामले देखे होंगे। नीले ड्रम की कहानी सुनी होगी आपने, देखा होगा किस तरह से नशे में चूर किसी और व्यक्ति से दोस्ती की वजह से कोई किसी को मार देता है। अलग अलग कहानियां अलग अलग जगहों से आती हैं, पत्नियों की हत्या हो रही है, पतियों की हो रही है। और यही सवाल है कि सब्र ऐसे टूट रहा है कि कब्र खुदे जा रहे हैं। एकम न्याय फाउंडेशन, ये एक एनजीओ का नाम है। इस एनजीओ ने भारत में पतियों की हत्या और वैवाहिक जीवन से जुड़े विवादों पर पतियों की आत्महत्या से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट जनवरी से जून के बीच मीडिया में छपी अखबार जो खबरें हैं उसके आधार पर बनाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2026 के पहले 6 महीने के अंदर देश में इस तरह के 544 मामले आए हैं, जिनमें से 554 मामले हैं, जिनमें से 322 मामलों में पत्नियों ने पतियों की हत्या की है और पतियों ने आत्महत्या की है 232 केसेस में। पत्नियों ने वैवाहिक जीवन में इतनी परेशानियां अलग अलग जगहों पर हुई कि कई जो पति थे उन्होंने आत्महत्याएं भी की हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल पतियों की हत्या और वैवाहिक संबंधों से परेशान पतियों की आत्महत्या के केस ज्यादा सामने आए। और ये बात हैरान करती है कि ज्यादातर मामलों में हत्या की वजह अवैध संबंध रहे हैं। हालांकि इसमें यह भी कहना जरूरी है कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें पत्नियों की भी हत्या की जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा पत्नियां ही पतियों को मार रही हैं, ऐसे बहुत मामले हैं जिसमें पति पत्नियों को मारकर दफना दे रहे हैं। कहीं पर अगर आप जाइएगा तो बहुत सारे गांव ऐसे मिलेंगे जहां पर अलग अलग नाम देकर लड़कियों को बदनाम किया जाता है, औरतों को, और उसके बाद उनको सामूहिक रूप से मार दिया जाता है, या कहीं पर दहेज के नाम पर जिंदा औरतों को जला दिया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि एकम न्याय फाउंडेशन के मुताबिक पति की हत्या से जुड़े 322 मामलों में से 194 यानी करीब 60% केस में एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध भी एक वजह रहा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक साल 2024 में हत्या के करीब 27,000 मामले सामने आए, जिनमें करीब 1,411 केस में अवैध संबंध कारण रहा है। पति का अवैध संबंध जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी की हत्या करता है, या पत्नी का ऐसा कोई संबंध जिसकी वजह से वो पति की हत्या कर देती है। हालांकि बारामती के मामले में फिलहाल ऐसा नहीं है, जांच में किसी तरह के अवैध संबंध की बात नहीं आई है। पुलिस ने आरोपी शर्मिला से पूछताछ की तो पता चला कि उसने प्रवीण की हत्या की कोशिश इसलिए की क्योंकि वो उसे नौकरी नहीं करने दे रहा था और उससे मारपीट करता था। ये भी गलत है, अगर कोई पति अपनी पत्नी को जानबूझकर घर में कैद करके रखता है, नौकरी नहीं करने देता है, लेकिन क्या इसकी वजह से किसी की हत्या की जा सकती है? कतई नहीं। इसी वजह से पति पत्नी के संबंधों में जहर घुल गया था कि वो नौकरी करना चाहती थी, शर्मिला डिप्रेशन में आकर ऐसा करने को, जो अपनी तरफ से वो बता रही है कि मैं डिप्रेशन में आ गई और मैंने इसी वजह से ये किया। ये भी सच है कि हमारे देश में डिप्रेशन एक बड़ी महामारी की तरह बढ़ रहा है। सामान्य तौर पर ये दिखाई तो नहीं देता, लेकिन लोगों को अंदर ही अंदर खा रहा है। महिलाओं में डिप्रेशन की स्थिति ज्यादा बुरी है। हमारे देश की महिलाओं में डिप्रेशन यानी अवसाद पुरुषों की तुलना में लगभग 2 गुना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस की एक स्टडी के मुताबिक देश की हर 10 में से 2 महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं, जबकि हर 10 में से 1 पुरुष को यह समस्या है। इस स्टडी के मुताबिक, ये अपने आप में ये स्टडी ही बताने के लिए काफी है कि महिलाओं का किस तरह का उत्पीड़न होता है। ये अपने आप में इस बात को बताने के लिए काफी है कि महिलाएं जिस तरह के तनाव का सामना अपने जीवन में करती हैं, कई स्तर होते हैं। देखिए किसी भी अपराध में कुछ भी, हालांकि शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखा जा सकता है। बहुत सारी सतहें होती हैं जिसकी वजह से इस तरह के गुनाह आज समाज में हो रहे हैं। महिलाओं के अंदर अगर आप देखें तो पुरुषों की तुलना में डिप्रेशन, एंग्जाइटी की समस्याएं ज्यादा है, क्योंकि उनको कई बार घर, दफ्तर, बाहर, परिवार, तमाम समस्याओं का अकेले सामना करना पड़ता है और उनके पास कोई वेंट नहीं होता। कई ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपनी चार दीवारी में ही रह जाती हैं और कई बार उनको ऐसा कोई साथी, कोई दोस्त, कोई परिवार में प्यार करने वाला नहीं मिलता है जिसके साथ वो अपनी बातें बता सकें, और फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन, एंग्जाइटी की शिकार होती हैं। बारामती वाले केस में शर्मिला इस बात से अवसाद में चली गई कि उसे नौकरी नहीं करने दिया जा रहा था। शर्मिला को ये लगने लगा था कि उसकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ हो गई है, और आज जब हम ये खबर बता रहे हैं तो देश की कई महिलाएं इस खबर से, इस बात से किसी न किसी तरीके से रिलेट कर रही होंगी। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इसकी वजह से किसी की हत्या नहीं की जा सकती। अब देखिए, पुलिस के मुताबिक इसी वजह से उसने पति की हत्या करने की योजना बनाई, क्योंकि वो सबसे बड़ी बाधा था, नौकरी नहीं करने दे रहा था।
1: इसके पीछे कि उनका बार बार हमने उनको जो इंटरव्यू किया उसमें एक ही बताना है कि उसको जो उसका एजुकेशन हुआ था, उसका बीटेक बी फार्मेसी का, तो बी फार्मेसी में उनको उसको जॉब करने नहीं दे रहे थे, या उसको घर में जैसे नौकरी जैसे सलूक कर रहे, माँ जो गाली गलौज, रोज की मारपीट, बच्चों को मारपीट, ये इसकी वजह से वो डिप्रेशन में गई थी। उसी डिप्रेशन के द्वारा उसमें डिप्रेशन में उन्होंने वैसा हादसा, उनके हादसे हुआ है, ऐसा उनका कहना है।
0: लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए कि कानून की किताबों हत्या की वजह कोई भी हो, हत्या जायज नहीं ठहराई जाती। ये भी एक सच है कि पतियों की हत्या के मामले में बहुत सारा आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों से केसेस आ रहे हैं। कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, और ऐसी भी खबरें आई जहां पर किसी ना किसी दोस्त के साथ मिलकर पतियों की हत्या पत्नियों ने की। कई सारे मामले ऐसे चर्चित रहे हैं। जल्दी से अगर आपको बता दें तो सबसे पहले आप मेरठ के नीले ड्रम वाली वारदात को याद कीजिए। पिछले साल मार्च में मेरठ की मुस्कान नाम की एक लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। मुस्कान ने पति की हत्या करने के बाद उसे शव को नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से चुनवा दिया था, और यही वो दोस्त था। ये कुछ वैसी ही प्लानिंग थी जैसी बारामती वाली वारदात में शर्मिला ने बनाई। मुस्कान ने नीले ड्रम में डाल दिया था, शर्मिला ने बालकनी में कब्र ही बनवा दी। पिछले साल 23 मई को राजा रघुवंशी हत्याकांड याद कीजिए। उस मामले में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने अपनी प्रेमी, जो उनके दोस्त थे राज कुशवाहा, उनके साथ मिलकर हत्या कर दी थी। जबकि राजा रघुवंशी की शादी उसी महीने की 11 तारीख को हुई थी, और वो सोनम के कहने पर हनीमून मनाने के लिए मेघालय के चेरापूंजी गया था, और वहीं पर उसे मार दिया गया। 2 महीने पहले लोहागढ़ मर्डर केस, 20 साल की सिया गोयल ने अपने दोस्त चेतन के साथ मिलकर मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी थी। 18 जून को महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले के केतन को चट्टान से धक्का देकर मार दिया गया था। इसी साल मई महीने में आगरा में एक वारदात हुई थी जिसमें एक महिला ने अपने पति की हत्या करके उसके शव को बाथरूम में दफना दिया था। यही नहीं, उसने मजदूरों की मदद से उस पर प्लास्टर भी करवा दिया, पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। करीब 1.5 महीने बाद पुलिस ने इस वारदात का खुलासा किया था। इसी तरह मार्च में कर्नाटक के बेलगावी का एक मामला आया जिसमें भारतीय सेना से रिटायर हो चुके संदीप मंजरगी की हत्या कर दी गई थी। उनका एक्सीडेंट हुआ था, जांच में पता चला कि एक्सीडेंट के बाद जिस अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था वहां उन्हें जहर दिया जा रहा था, और ये काम संदीप की पत्नी और उनके दोस्त के इशारे पर किया जा रहा था। पुरुष दोष के इस इशारे पर यह साजिश 2 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए रचा गया था, और जून को महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले के केतन को चट्टान से धक्का देकर मार दिया गया था। तो एक नहीं अनेकों ऐसे मामले, अपने बुजुर्गों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि संबंधों में सम्मान और संयम सब होना जरूरी है। कई सारे मामले ऐसे होते हैं। अब देखिए ना, दहेज की हमने आपसे चर्चा की, एनसीआरबी का डेटा बताता है कि साल 2022, 23 और 24 में 18,000 से ज्यादा महिलाओं की दहेज के लिए हत्या कर दी गई। यह हत्याएं भी पति पत्नी के संबंधों में घुले दहेज नाम के जहर का परिणाम है। हम आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दें कि जब भी इस तरह की घटनाएं आती हैं जिसमें अवैध संबंधों या किसी अन्य कारण से पति पत्नी की या पत्नियां पतियों की हत्या करती हैं तो उसका असर विवाह जैसी सामाजिक व्यवस्था पर पड़ता है, युवाओं पर पड़ता है, उन परिवारों की सोचिए, बच्चों की सोचिए। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा बताता है कि साल 2011 में 17.2% युवा अविवाहित थे, जबकि साल 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 23% हो गया। सिर्फ यही नहीं, जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला करने वाले पुरुषों का आंकड़ा लगभग 20.8% से बढ़कर 26.1% हो गया है, और यही हाल महिलाओं का भी है। महिलाओं का आंकड़ा 13.5% से बढ़कर 19.9% हो चुका है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैवाहिक जीवन की परेशानियों, खुशहाल जीवन को लेकर युवाओं की सोच बदल रही है, और इसकी वजह अपराध की ऐसी घटनाएं हैं जिसमें प्रेम, धोखा, टूट रही शादियां। हालात ये है कि युवा तो शादी नहीं करना चाहते या फिर बहुत सोच समझ कर इस फैसले को लेना चाहते हैं। राष्ट्रीय जो युवा नीति है 2014, उसके मुताबिक देश में 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों को युवा के तौर पर माना जाता है। देश में शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18, लड़कों के लिए 21 है, लेकिन पिछले कुछ समय में जीवन साथी की तलाश शुरू करने की औसत उम्र जो है वो 27 वर्ष से बढ़कर 29 वर्ष हो गई है। लोग पहले शादी करते थे कम उम्र में, अब 29 वर्ष पहुंच गई है एवरेज एज। यानी युवा शादी में देर से करना चाहते हैं, सोच समझ कर करना चाहते हैं। डेटिंग प्लेटफॉर्म क्वैक क्वैक के एक रिपोर्ट में सर्वे में 28 वर्ष से अधिक उम्र के 39% यूजर्स ने माना है कि शादी करना कोई मजबूरी नहीं है। इससे एक बात साफ है कि देश के युवा शादी बहुत सोच समझ कर करना चाहते हैं, और उसमें देरी भी हो तो उनके लिए कोई बड़ा स्ट्रेस पॉइंट नहीं है। आज इंटरनेशनल यूथ डे है, और इसीलिए हम देश के सबसे चर्चित मुद्दे की बात करेंगे जो है जेन जी और जेन अल्फा। आजकल हर मंत्री, हर सांसद, हर विधायक युवाओं की बात कर रहा है। सबकी जुबान पर जेन जी ने ये कहा, जेन जी ने वो कहा, जेन अल्फा की बात सुनो, तुम जेन अल्फा की बात सुनो, उनके हक की बात वो कर रहे हैं। लेकिन बातें करना अलग बात है और धरातल पर एक्शन लेना अलग है। महाराष्ट्र के नेता भी युवाओं के मुद्दे पर उनके साथ दिखते हैं, उनके हित में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इन बड़ी बातों के बीच गढ़चिरौली के एक बड़ी खबर आ रही है, और यह खबर खास तौर पर देवेंद्र फडणवीस के लिए है, फडणवीस सरकार के लिए है, क्योंकि महाराष्ट्र में जहां पर तेजी, तरक्की और बहुत तेजी से चल रहे विकास की चर्चा होती है, तो एक नजर गढ़चिरौली जैसी जगह पर भी पड़नी ही चाहिए। गढ़चिरौली, एक स्कूल में 6 छात्रों को सांप ने काट लिया है, जिनमें से 8 से 14 वर्ष की 3 छात्राओं की मौत हो चुकी है। 3 जिंदगी और मौत के बीच में इस वक्त भी जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं झूल रही हैं। ये छात्राएं स्कूल के हॉस्टल में रहती थी। बताया जा रहा है कि इन छात्रों की मौत भले ही सांप के काटने से हुई हो, लेकिन ये नौबत इसलिए आई क्योंकि इन बच्चियों के पास सोने के लिए एक बेड तक नहीं था। बेड ना होने की वजह से वो जमीन पर सोने के लिए मजबूर थी। अब इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इस उच्च स्तरीय जांच के बाद होगा क्या? क्या इससे इन बच्चियों की जिंदगी वापस आ पाएगी? आप सोचिए, हमारे देश में ऐसे बोर्डिंग स्कूल भी हैं जिनमें बच्चों को सोने के लिए बेड तक नहीं दिए जाते, और वो भी गढ़चिरौली जैसी जगह में। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान मैं भी गढ़चिरौली गई थी। आप समझ सकते हैं, एक ऐसा इलाका है जहां पर काफी जंगल का इलाका है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, और इस वजह से सांपों का डर बहुत रहता है इन जगहों पर। युवाओं को शिक्षा देने के दावे करना और मौजूदा स्थिति में कई बार जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। जंतर मंतर और रांची में हो रहे युवाओं के आंदोलन में एक मुद्दा बेहतर शिक्षा का भी है, और इसके लिए सरकार को अपने बजट से खर्च कर बढ़ाना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के खजाने से स्कूली बच्चों को बेड उपलब्ध करवाना मुश्किल है, लेकिन सरकारी बजट से मंत्रियों और अधिकारियों के लिए लाखों करोड़ों रुपए का फर्नीचर खरीदना आसान बात है। साल 2025 में सरकार ने मंत्रियों और विधायकों से सरकारी खर्च कम करने के लिए कहा था, लेकिन उसी साल नागपुर के रवि भवन परिसर में बनी मंत्रियों की कोठियों में जानते कितना खर्च हुआ? 40 करोड़ रुपए का नया फर्नीचर लगाया गया था, जबकि साल 2024 में ही नेताओं की इन कोठियों का फर्नीचर बदला जा चुका था। मतलब एक साल के अंदर फर्नीचर बदला जा चुका था, अच्छी कंडीशन में था, लेकिन बदलना था, सरकारी पैसा पानी की तरह यहां पर बहाया गया और 40 करोड़ रुपए का रवि भवन परिसर नागपुर में मंत्री विधायकों के फर्नीचर पर खर्च हुआ। इसी साल अप्रैल में देश के सबसे अमीर बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसने अपने शिक्षा विभाग के लिए 91 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा था। सोचिए, बीएमसी द्वारा चलाए जा रहे मुंबई में कई स्कूल्स में बच्चों के लिए फर्नीचर नहीं है, उसने अपने शिक्षा विभाग के लिए 91 लाख रुपए का फर्नीचर खरीद लिया। इस खर्च को लेकर काफी बवाल भी हुआ था, लेकिन आज हम बस याद दिलाना चाहते हैं फडणवीस सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, कि जितने भी आलिशान फर्नीचर आपको अपने लिए खरीदने हैं वो तो आप खरीदेंगे ही, कौन रोकेगा, लेकिन इन बच्चों की इन हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जेन अल्फा, जेन जी कोई प्रोटेस्ट करेंगे तब आनन फानन में कुछ कदम उठाया जाएगा, या फिर इन स्कूलों की सुध लेने वाला भी कोई होगा? होना तो यह चाहिए था कि अपने सांसदों, अपने विधायकों को कहिए कि अपने अपने क्षेत्र में जाकर स्कूलों की हालत देखें। इस देश की अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक यानी जो स्कूल्स हैं वो सबसे बड़ी समस्या है। न बैठने को ढंग के वहां पर कुर्सियां हैं बच्चे के लिए, न पढ़ाने के लिए ढंग से टीचर हैं। अगर हॉस्टल है तो हालत देखिए, सांप घुसता है जमीन पर सो रही है बच्चियां और काट देता है, 3 की मौत हो जाती है, 3 आईसीयू में है। क्या व्यथा है इन माननीय सांसदों और विधायकों को, क्या अपने अपने इलाके में स्कूल अस्पताल की सुध लेने तक की नहीं सूझती है? महाराष्ट्र का कुल बजट 7,69,000 करोड़ रुपए है, जिसमें शिक्षा के लिए 1,08,000 करोड़ रुपए अलॉट किए जाते हैं। गढ़चिरौली की घटना बताती है कि शिक्षा के नाम पर जो पैसा दिया जा रहा है वो न जाने कहां खर्च हो रहा है। आज आपको ये जरूर पता चल गया है कि सरकारी पैसे का असली इस्तेमाल कहां होता है। सवाल यही है कि कहीं पर मिड डे मील में दाल जो पानी की तरह बह रहा हो, कहीं पर चावल के साथ नमक, कहीं पर रोटी के साथ नमक, कहीं पर खाने में खिचड़ी में छिपकली, ये तो हालत है जब बात बच्चों की सेहत की आती है। बच्चों के लिए सोने को जगह नहीं है और वहां पर हॉस्टल है, जमीन पर सोने को मजबूर है। देखिए,

0: बच्ची को इधर कान में काटा, इसको एक लड़की के पैर में काटा है। बोलते हैं कि एक लड़की मर गए बच्चे, लेकिन पता नहीं।
1: तीन लड़कियां यहाँ भर्ती है, एडमिटेड है, और एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, एक क्रिटिकल है और एक मॉडरेट केस में है। ऐसे टोटल तीन पेशेंट एडमिट है।
2: हालात तो ये है कि महाराष्ट्र में सरकारी बजट का इस्तेमाल ना शिक्षा पर हो रहा है ना सड़कों पर। जेनजी की बात करने वाले जो मंत्री हैं उनको जेन अल्फा सच का आईना दिखा रहा है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के स्कूली बच्चों ने राज्य सरकार को आईना दिखाया है। बच्चों ने इस बार अपने गांव की सड़क से रिपोर्टिंग की, एक खाली बॉटल को अपना माइक बनाया। हमने कल ही आपको दिखाया था कि बच्चियों ने छाते को अपना माइक बनाया था, अब उन्होंने बॉटल को माइक बनाया। उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये बच्चे भी जिस सड़क से स्कूल जाते थे उस सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे, बारिश के मौसम में स्थिति खराब, और उसकी वजह से ये बच्चे सड़क के गड्ढे दिखाकर सरकार प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं। वो बीच बीच में मजाकिया अंदाज में पूछ रहे हैं कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों पर सड़क।
3: खड्ड्यात रस्ता करस्ता खड्डा किती खड्डे झाले, इकडे कोणी लक्ष पण देत नाही, इकडे थोडं लक्ष द्यायला पाहिजे, आम्हाला शाळेत जायला त्रास होतो।
2: हमने आपको कल ही दिखाया था ना, महाराष्ट्र के रायगढ़ में बच्चियों की रिपोर्टिंग दिखाई थी जो ये दिखा रही थी। देवेंद्र फडणवीस सरकार को याद दिला रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। इन बच्चियों ने बारिश में खराब हो चुकी सड़क से रिपोर्टिंग की, बड़े बड़े गड्ढे दिखाए गए, छाते को माइक बनाया था, और आज बच्चों ने दोनों ही तस्वीरें दिखा दीजिए। आज बच्चों ने जो जेन अल्फा है उसने अब कुछ नहीं, एक बॉटल उठाया पानी का और उसी को माइक बना के उन्होंने रिपोर्टिंग कर दी। तो कुल मिलाकर ये सारी तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि जिस जेन जी को आपने आंदोलन करते हुए देखा है, जंतर मंतर हो या रांची, वो परीक्षा पेपर लीक, नौकरियों की बोली रेट लिस्ट देखकर वो परेशान है, तो ये बच्चे अब पूछ रहे हैं कि वो स्कूल कैसे जाएं इस मिट्टी से घोते हुए। ये बच्चे पूछ रहे हैं कि उनके लिए सोने की जगह क्यों नहीं है। ये बच्चे पूछ रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो स्थिति खराब हो रही है उसकी तरफ प्रशासन सरकार क्या देखेगी। सच ये है कि ये शिकायत ना किसी एक बच्चे की है, ना किसी एक सड़क की, ना किसी एक क्षेत्र की। इस तरह के कई इलाके हैं जहां यही हालात हैं और जेन अल्फा सवाल पूछ रहा है। सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं से केवल जेन अल्फा ही परेशान नहीं है। झारखंड के रांची में एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, जहां पर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। 19 दिनों से धरने पर जेन जी बैठा है, वो जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। इन छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा तक शांतिपूर्ण मार्च भी किया था, लेकिन जो नेता और मंत्री युवाओं के हितों की बात करते दिखे, उन्होंने मार्च को रुकवाने के लिए लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे, और यकीन मानिए अब तो हद हो गई है, छात्रों का धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए धरना स्थल की बिजली काट दी गई है ताकि छात्र परेशान हो जाएं और परेशान होकर यहां से चले जाएं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि झारखंड सरकार ने धरना स्थल के पंडाल की बिजली काट दी और काम कल देर रात किया जब प्रदर्शनकारी स्टेडियम में आराम कर रहे थे। सोचिए, सोते हुए बच्चों के साथ ऐसा करना। आरोप है कि राज्य सरकार का निर्देश था, पर कल देर रात कुछ पुलिस अधिकारी धरना स्थल पर आए। सबसे पहले उन्होंने प्रदर्शनकारियों को वहां से भगाने का प्रयास किया। यह भी कहा गया कि भाई कुछ बातें तो जेपीएससी वालों की मान ली गई है, तो जेपीएससी वाले चले जाएं, जेएसएससी वाले रुक जाएं। जब प्रदर्शनकारियों ने कहीं जाने से इनकार कर दिया तो इन पुलिस अधिकारियों ने जाते जाते धरनास्थल के पंडालों की बिजली कटवा दी, ताकि जो बच्चे इस गर्मी में परेशानी में, और ये भी इलाका आप समझिए रांची में भी, ये जो पूरा स्टेडियम है यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, मिट्टी है, बारिश है, पानी लगातार हो रहा है, इन सब के बीच बच्चे बैठे हैं ताकि ये पंखे भी ना चले और उनको मुसीबत का सामना करना पड़े। झारखंड सरकार के लिए ये धरना प्रदर्शन एक बड़ी मुसीबत बन गया है। इस धरना प्रदर्शन का चेहरा बन गए देवेंद्र नाथ महतो, अब भी आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका अनशन वहां भी जारी है। वो पिछले करीब 11 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं।
4: हमने अभी 4 से 5 बिना यूनिफॉर्म में पुलिस वालों को हमने अभी देखा है, और वो उन लोग की प्लानिंग चल रही है कि कहाँ से कौन भागेंगे, कैसे पकड़ा जाए, ये सब चल रही है।
5: स्टूडेंट के आसपास में घूम घूम के ऐसे, मतलब पूरा अपना उसमें कि डराने का कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यहाँ से डर के भाग जाओ।
6: बच्चों से मिलने के लिए आए थे उनसे कि किसी तरह का कोई समस्या है तो नहीं है, तो बच्चे से मिले। ठीक,
7: ये जनरेटर किसने दिया था?
8: जनरेटर लेके जा रहा है,
7: काट दिया कनेक्शन, तारों का दिया किसने था? ये किसका है ये जनरेटर?
8: सरकार के सोचे समझे चाल है, देख लीजिए यहाँ दिखाइए।
9: जो लगवाए थे,
10: कौन लगवाया था?
9: लगवाए थे कहाँ किया?
7: कौन है बंटी? कौन है ये
10: बंटी? कौन
9: काम करता है लाइट वाला?
8: जब तक हम लोग का जनरेटर नहीं आएगा तब हम लोग जाने नहीं देंगे सर।
7: दरअसल ये एक बड़ा जनरेटर यहाँ पर लगा था और इससे जो है कनेक्शन जोड़ा गया हुआ था, छात्रों ने हालांकि ये रखा था, उसके बाद ये जनरेटर भी आया हुआ था। अब ये नहीं बता रहे हैं कौन, लेकिन अचानक से वो कह रहे हैं, जिसका जवाब है छात्र कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन ने दबाव बनवाया है। उनके पास जो बचा है वो एक छोटा सा जनरेटर है यहाँ पर, ये इसी में जो है फ्यूल डाल के इसी के सहारे जो है अब ये काम चल रहा है, ताकि इसे मंच पे उन्होंने स्पीकर चला रखे हैं और जो बिजली की व्यवस्था है वो कर रखी है।
11: भारत माता की जय।
12: आज राष्ट्रीय युवा शक्ति है, उसके उपलक्ष में हम लोग युवा लोग सब मार्च निकाल रहे हैं, इसलिए कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन को होश में आओ, हम लोग का जो मांग है उसकी उसका पूरा करो।
8: जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, इसलिए सरकार से विनम्र निवेदन है कि हम सभी युवाओं का हक दे दीजिए, हम लोग घर चले जाएंगे।
2: आज इस धरना प्रदर्शन में एक और घटना हुई है। धरना स्थल के पास एक व्यक्ति एयरगन लेकर पहुंच गया था, प्रदर्शनकारियों ने जब उस व्यक्ति के पास एयरगन देखी तो हड़कंप मच गया, वहां मौजूद लोग घबरा गए, लेकिन पुलिस को जैसी ही इसकी जानकारी मिली उन्होंने तुरंत उसे दबोच लिया। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि कुछ लोग साजिशन अव्यवस्था और डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आंदोलन खत्म हो जाए और बच्चे वहां से, जो युवा हैं वहां से निकल जाएं। देश में स्वतंत्रता दिवस के जोश और लहराते तिरंगों के बीच कश्मीर घाटी से एक बार फिर सनसनीखेज और चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत घाटी में तैनात कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों और पंडितों को आतंकवादियों ने खुलेआम निशाना बनाने की धमकी दी है। इस बार सिर्फ जुबानी या लिखित धमकी भर नहीं है, बल्कि एक नए आतंकी संगठन के नाम से बाकायदा एक हिटलिस्ट जारी की गई है, जिसमें कई सरकारी कर्मचारियों के नाम, उनके फोन नंबर्स सार्वजनिक किए गए हैं। इस बड़े खतरे के बाद प्रशासन ने फिलहाल हिंदू कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने के निर्देश दे दिए हैं। इस बार धमकियों के पीछे लश्करे तैयबा से जुड़े एक नए आतंकी फ्रंट यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल यानी यूएलसी का हाथ सामने आया है। यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का ही एक मुखौटा है, जो घाटी में आतंक फैलाने के इरादे से शदमर नाम से काम करता है। लश्कर के इस आतंकी मुखौटे ने एक दस्तावेज जारी किया है, जिसमें खास तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारियों समेत कई सरकारी हिंदू कर्मचारियों के नाम और उनके फोन नंबर तक सार्वजनिक कर दिए गए हैं। प्रशासन के कान इसलिए भी खड़े हो गए हैं क्योंकि पिछले ही महीने दक्षिण कश्मीर में दो बड़े आतंकी हमले हुए थे। 22 जुलाई 2026 को अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी आशिक हुसैन कुरैशी पर गोलीबारी की गई। 31 जुलाई 2026 को कुलगांव में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया, जिसमें दोनों ने अपनी जान गंवा दी। एक के बाद एक आतंकी घटनाओं और ताजा धमकी के बाद शेखपुरा समेत तमाम कश्मीरी पंडित ट्रांजिट कॉलोनीज, हिंदू बहुल रिहायशी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा समीक्षा होने तक कर्मचारी अपने घरों से ही काम करें। सुरक्षा बलों की यह तैयारी और कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश यूं ही नहीं है। कई बार आतंकी खासतौर पर हिंदू कर्मचारी हों, प्रवासी मजदूर हों, उनको निशाना बना चुके हैं। अक्टूबर 2021 श्रीनगर में एक हिंदू टीचर और एक सिख प्रिंसिपल की स्कूल में घुसकर हत्या कर दी गई थी, अगर आपको याद हो। और फिर मई 2022 को बडगांव में आतंकियों ने तहसीलदार का जो कार्यालय था, ऑफिस, उसमें घुसे, कश्मीरी पंडित कर्मचारी को चुनकर गोली मारकर हत्या कर दी। मई 2022 में ही कुलगांव में स्कूल के बाहर एक हिंदू शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी। फरवरी 2023 को पुलवामा में बैंक में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक से ये नया आतंकी फ्रंट क्यों सक्रिय हुआ? इसके पीछे वजह क्या है? हूफे रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक बदलाव है। घाटी में पिछले कुछ समय से कई कश्मीरी पंडित अपनी उन संपत्तियों, उन जमीनों को कानूनी रूप से वापस पाने में सफल हो रहे हैं जिन पर स्थानीय स्तर पर अवैध कब्जा कर लिया गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बांदीपुरा के एक कश्मीरी पंडित का मामला है, जहां इन व्यक्ति ने प्रशासन की मदद से अपनी जमीन का कब्जा वापस हासिल किया। उनकी 17 कनाल कृषि भूमि उन्हें वापस सौंप दी गई। ये व्यक्ति 1990 के दशक में पलायन कर गए थे, लेकिन अब जब उन्हें कानूनी रूप से उनकी जमीन वापस मिली तो स्थानीय स्तर पर भारी विरोध भी देखने को मिला था। स्थानीय लोगों का कहना था कि उन्होंने ये जमीन खरीदी थी, यानी ये लोग नहीं चाहते थे कि ये व्यक्ति वापस लौटे और अपनी जमीन पर फिर से दावा करे। अब आतंकियों ने इन्हें धमकी दी है और विशेष तौर पर इनके खिलाफ धमकी भरा एक पत्र अलग से जारी किया है। इनका जो नाम है और चेहरा है वो कई प्रिंट ऑनलाइन खबरों में सार्वजनिक कर दिया गया है, लेकिन हम ये मानते हैं कि इनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इनकी पहचान हम सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, ना हम आपको उनका चेहरा दिखा रहे हैं, ना हम उनका नाम बता रहे हैं, क्योंकि आतंकियों ने सीधा नाम लेकर इनको धमकी दी है और इनको खतरा है, इनकी जान को खतरा है। देखिए
10: थ्री से मैं इस पे अपना जो भी है कागज वागज रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो भी थे वो सारा कुछ देख के मुझे एक पीस ऑफ लैंड आज मिला है। आज मैंने दूसरी बार ये पोजीशन ली है, फर्स्ट टाइम एनक्रोच हुई थी और मेरी लड़ाई भी बाकी है, क्योंकि 186 कनाल लैंड मुझे एक दिन तो मिलेगी नहीं। अभी मुझे पीस ऑफ लैंड मिला है, वेरी थैंकफुल टू एडमिनिस्ट्रेशन, थैंकफुल टू गवर्नमेंट, थैंकफुल टू एलजी साहब एंड ड्यू काउंसिल स्पेशली हु टेक वेरी गुड स्टेप्स।
2: आतंकियों की बौखलाहट यही है कि घाटी में हालात सुधर क्यों रहे हैं और वो भी ऐसे लोगों को उनकी जमीन वापस क्यों मिल रही है। वही कश्मीरी पंडित जो अपने ही देश में अलग अलग जगहों पर शरणार्थी बन के रह रहे थे, अगर उनको अपनी जमीन मिल रही है। घाटी में फिर से मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, कश्मीरी पंडित अपने जमीनें वापस ले रहे हैं, सामान्य जीवन की तरफ लौटने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोचिए कितना खड़ रहा होगा उन आंखों को जिन्होंने हमेशा कश्मीर को बुरी नजर से देखा। कश्मीर के बच्चों युवाओं के हाथों में तिरंगा है, स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा लहरा रहे हैं, हर घर तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, लाल चौक पर स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का जश्न मन रहा है। घाटी की ये तस्वीरें आतंकवादियों उनके समर्थकों के सीने में कटार की तरह चुभ रही हैं। आप भी घाटी की ये खूबसूरत तस्वीरें जरा देखिए।

0: पाकिस्तान समर्थित इन तत्वों को ये बात कहां से रास आएगी, और यही वजह है कि आतंकियों ने स्थानीय लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। वो कश्मीरी पंडितों के घरों और फसलों को निशाना बनाए। साफ है कि ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ कुछ धमकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कश्मीर में शांति बहाली की प्रक्रिया को बाधित करने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन इस तमाम खौफ और अनिश्चितता के बीच घाटी में रह रहे कश्मीरी हिंदुओं ने जिस साहस का परिचय दिया है वो वाकई एक मिसाल है। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि वो नासमझ नहीं है। पाकिस्तान और उसके पाले हुए इन संगठनों के हर नापाक इरादे और प्रोपेगेंडा को वो अच्छे से समझते हैं। वो इस बार डरेंगे नहीं। आतंकी धमकियों के बीच घाटी में राजनीति भी शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को इस धमकी में भी साजिश नजर आ रही है।
1: हैरान हूं मैं, इतनी सिक्योरिटी होके अगर ये हाल है फिर तो इनको रिजाइन करना चाहिए, इनको जाना चाहिए दिल्ली, वापस जाना चाहिए।
2: किनको?
1: गवर्नर साहब को।
3: हमारे उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कार्य किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये बयान कि उन्हें रिजाइन करना चाहिए, ये तर्कहीन बयान उन्होंने दिया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब एक बड़े राजनेता हैं, वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं।
0: अब आपको ये दूसरी तस्वीर भी देखनी चाहिए जिस वक्त घाटी में कश्मीरी पंडितों को धमकी दी जा रही है जो वहां के मूल निवासी हैं। इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को धमकी और आतंकी हमले किए जा रहे हैं। तब इसी जम्मू कश्मीर में बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध रूप से बसे रोहिंग्याओं को उनका कोई विरोध नहीं कर रहा। जो लोग कश्मीरी पंडितों की वापसी पर दुखी हैं उन्हें शायद घुसपैठियों से कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू कश्मीर में चल रहे डेमोग्राफिक शिफ्ट का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि दशकों से अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन जी रहे कश्मीरी पंडित न्याय और वापसी की आस लगाए बैठे हैं, जबकि दूसरी तरफ म्यांमार और बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठिए जम्मू की जमीनों पर आबाद हो रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जम्मू संभाग में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों समेत 13,700 से अधिक विदेशी नागरिक रूप से दर्ज हैं। विधानसभा में सरकार का जो जवाब है वही हमारा सोर्स है और उसी हवाले से हम बता रहे हैं। सबसे ज्यादा घुसपैठिए जम्मू और सांबा जिले में हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 2008 से 2016 के बीच इनकी संख्या में 6,000 से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई थी। सरकारी आंकड़ों से इतर जम्मू कश्मीर में इन घुसपैठियों की संख्या काफी ज्यादा बताई जाती है जो जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में फैल चुके हैं। इसी महीने रामबन जिले के बनिहाल में सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान 21 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। कठुआ जिले की हीरानगर जेल को 5 मार्च 2021 को अवैध प्रवासियों को रखने के लिए होल्डिंग सेंटर बनाया गया था। तब से लेकर अब तक लगभग यहां पर समझ लीजिए 275 रोहिंग्या रह रहे हैं, लेकिन इन्हें म्यांमार वापस भेजने को लेकर अभी तक कोई ठोस काम हुआ ही नहीं। तो सवाल यह भी है, ये भी एक आईना ही समझिए। अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 17.5 रुपए हम आपको जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने अपनी स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट है। सामाजिक योजनाओं को चलाने का खर्च सरकारें टैक्स और सेस लगाकर पूरा करती है, लेकिन टैक्स और सेस किन वस्तुओं पर लगे, किस तरह का टैक्स किस तरह का सेस लगे, कितना टैक्स लगे कितना सेस लगे, इसका एक नैतिक एक आर्थिक आधार होना चाहिए। इसलिए हिमाचल प्रदेश में लगाए गए एक सेस की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ और विधवा सेस लागू हो गया है। आपको याद होगा 2023 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन बहाल करने जैसे वादों के साथ सरकार बनाई थी और फिर काफी मुश्किलों का अर्थव्यवस्था को वहां सामना करना पड़ा। कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर पात्र महिला को 1500 रुपए प्रति महीने, युवाओं को 5,00,000 सरकारी नौकरी देने, ग्रामीण सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा देने के अलावा हर पशुपालक से रोजाना 10 किलो दूध खरीदने, 2 रुपए प्रति किलो के रेट से गोबर खरीदने, हर घर में 4 गाय तक की खरीद पर सब्सिडी देने का वादा किया गया था। अब ऐसे वादों पर चुनकर आई सुक्खू सरकार पिछले 3 सालों में पहले भी सरकारी कर्मचारियों को लेट सैलरी देने और सारे वादे पूरा न करने या आधा अधूरा वादा पूरा करने को लेकर सवालों के घेरे में आई। हालांकि 10 बड़े वादों में से ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे 7 वादों को पूरा करने का दावा है, लेकिन इन वादों की कीमत समझिए। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार के खर्च का 29% जो पैसा है वो अकेले पेंशन पर जाने का अनुमान है। 2026-27 में हिमाचल प्रदेश के खर्च का 88% हिस्सा सिर्फ सैलरी, पेंशन, कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च होने वाला है। हिमाचल प्रदेश का मौजूदा जो कर्ज है वो 1,04,000 करोड़ है। 2026-27 में हिमाचल प्रदेश को 13,000 करोड़ का रीपेमेंट करना है, जिसके लिए सरकार इस साल 10,000 करोड़ का कर्ज लेने की योजना बना रही है। राज्य के आर्थिक घाटे की भरपाई के लिए सुक्खू सरकार की माता पच्चियां पहले भी विवादों में आई है। अक्टूबर 2024 में हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग ने प्रति टॉयलेट सीट 25 रुपए महीने सीवरेज टैक्स लेने की घोषणा की थी। इस टॉयलेट टैक्स पर मचे हंगामे के बाद पहले यह दलील दी गई कि यह सामान्य सीवरेज टैक्स है, लेकिन बाद में इसे वापस लिया गया। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और पहले लोग सफल होना चाहते थे, आजकल लोग वायरल होना चाहते हैं। नमस्कार।

0: संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने वाला है, लेकिन राजनीति में हंगामा लगातार जारी है। बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष सदन को चलने दे। जवाब में राहुल गांधी बोले, इस्तीफा दें तो बात होगी।
1: संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले
2: गोपाल जी, व्हाट डू वांट टू से यू टू कैसी बेन गोपाल जी,
3: ये जेपीसी में भेजा जाए।
4: के बाद मुझे मौका मिला,
2: मैंने दिया तो समय आपको।
5: गुरुवार को संसद का मानसून सत्र खत्म होने से पहले बुधवार को भी न संसद का हंगामा थमा, न चर्चा हुई, न संसद नियम से चल पाई। लेकिन अमित शाह का जवाबी पलटवार ऐसा आया कि अब राहुल गांधी पर गोल पोस्ट बदलने का बीजेपी का आरोप और गहरा हो गया।
6: सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है।
5: जंतर मंतर प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह के बयान की मांग करते राहुल गांधी को एक तरह से सीधी चुनौती थी। अमित शाह ने बुधवार दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू कर गुरुवार दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए राजी होने की न सिर्फ बात कही, बल्कि स्पीकर ओम बिरला को अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आप विपक्ष से चर्चा करके आपसी सहमति से आज से जितने समय, जितने घंटे आप उचित समझे, उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। जंतर मंतर पर संसद में खुद के बयान को लेकर पहली बार आए अमित शाह के इतने स्पष्ट बयान के बाद राहुल गांधी का जवाब आता है। राहुल कहते हैं कि हमें उनकी कल्पनाओं में दिलचस्पी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री ये बताएं कि पैलेट गन से गोली किसने चलवाई।
7: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह'स इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग, एंड व्हेन आई से वी, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students?
5: जंतर मंतर पर संसद में अमित शाह के बयान की मांग को लेकर लगातार हंगामा चलता रहा। संसद के अंदर हंगामे से लेकर परिसर में मकर द्वार के बाहर तक जवाबी नारेबाजी होती रही।
8: मैं बहुत निराश हूँ। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में, और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी होते हैं।
5: अमित शाह ने जब ये साफ कहा कि सरकार चर्चा से कतई भाग नहीं रही, सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ।
6: लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा।
9: इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए।
5: इस बीच सरकार ने FCRA संशोधन बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है, जिसे मंजूरी मिल गई। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, लेकिन लड़ाई मेरा जवाब बनाम तेरा जवाब पर चलती रही।
10: आपको पता है कि जब जब गृहमंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं, इनकी खाट खड़ी हो जाती है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कौन सा समझौता कर लिया चीन के साथ, एफसीआरए में जो है किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रहा है, तो सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। इसीलिए गृहमंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते, तो गृहमंत्री जी को कैसे नहीं सुनेंगे? तो हंगामा करो, हंगामा करो, हंगामा करो।
4: रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? सरकार।
11: आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस।
5: राज्यसभा में गृह मंत्री को लेकर खड़गे ने वार किया, कहा कि वो रोज नहीं आते। नड्डा बोले, आप चर्चा से भाग रहे हैं।
12: मैं यही चाहता हूँ कि जिनके नाम से बिल है, किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा, ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको।
13: माननीय नड्डा जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और आप चर्चा से भागो मत।
5: 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चलते आंदोलन के बीच हंगामे के साथ शुरू हुई संसद में हंगामे के साथ मानसून सत्र पूरा होने जा रहा है।
0: क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टियां जेनजीज पर डोरे डाल रही हैं? सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2027 में यूपी से लेकर देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, और इन चुनावी राज्यों में जेनजी वोटर्स एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। सियासी पार्टियों को मैसेज बहुत ही क्लियर है, साफ है, जहां जेनजीज वहां पड़ला भारी। फिर चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या संघ प्रमुख मोहन भागवत या फिर विपक्ष, हर कोई जेनजीज को अपने पाले में खींचने के लिए भरपूर कोशिश में जुटा है।
14: जेन जी के सहारे देश के चुनाव सारे। कैसे जेन जी को लुभाने में जुटा देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जेन जी वोटर की प्लानिंग शुरू। जंतर मंतर से ताकत दिखाई, सबको जेन जी की याद आई। जेन जी साथ आएगा तो चुनाव जिताएगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ जेन जी ने दम दिखाया तो सिस्टम को हिला डाला। इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, लेकिन जेन जी की ताकत का एहसास हर सियासी पार्टी को हो गया।
15: लाखों युवाओं से मैं मिला,
16: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि
14: पीएम मोदी इंस्टा पर आ गए और जेन जी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की, और आज भी पीएम मोदी देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी को मैसेज दे रहे हैं। जी हां, मौका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी के विमोचन का था, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा मैसेज जेन जी को दिया।
17: रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़े। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है।
14: जेन जी की ताकत हर कोई समझ रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जेन जी आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर संघर्ष के लिए आगे आ रहा है। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है, इसलिए ये अपनी समस्याओं को केवल निजी चर्चा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें सार्वजनिक बहस का विषय बना देती है। भारत में जेन जी ने विरोध का एक नया मॉडल विकसित किया है। छात्र केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड, हैशटैग कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है।
18: सारे जेन जी की जगह ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, आप लोगों का स्वागत है। इस भारत को आप ही लोगों को संभालना है, क्योंकि आप लोगों की आबादी 65% है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे आके सुनते हैं, आप लोगों की बातों पर इतना गौर किया जा रहा है इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो मैं सारे जेन जी को प्रणाम नमन करता हूँ।
14: राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम के कैंपेन से खुद को जेन जी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं।
19: क्या है, जेन जी में सेल्फीज बड़ी कॉमन है,
20: तो चलिए
21: आप सब तैयार हैं 100 की जान सेल्फी के लिए।
22: मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो।
14: तो जेन जी की ताकत को आरएसएस ने भी समझा है और जाना है, तभी तो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी के साथ संवाद किया।
23: जो हुआ ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
24: बिल्कुल
23: उसको ठीक करना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है।
14: आज जेन जी की आवाज को सियासी पार्टियां अनसुना नहीं करना चाहती तो उसके पीछे बड़ी वजह है। 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावी राज्यों में युवा मतदाता सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की संख्या 22.78% है, जबकि यूपी में 18 से 29 साल के उम्र के लोग 21.19%, गुजरात में 23.32%, पंजाब में 21.44%, उत्तराखंड में 22.18%, हिमाचल प्रदेश में 21.91%, मणिपुर में 23.74% और गोवा में 19.60% आबादी 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की है।
0: सोचिए कि आप पूरी फैमिली के साथ एक फ्लाइट से जा रहे हो और अचानक से हवा में विमान जोर जोर से हिलने लगे, आप सीट से नीचे गिर जाएं, आपके आसपास के लोग घायल हो चुके हों, ऊपर से कैबिन में रखे हुए सामान नीचे आने लगे और आप समझ ही नहीं पाए कि करना क्या है। आप कुछ नहीं कर सकते, अगर करना चाहें भी तो सिर्फ ऊपर वाले को याद करेंगे। और जब आपको पता ये चल जाए कि इस फ्लाइट को जो पायलट उड़ा रहा था वो गांजे के नशे में था, तो सोचिए होगा क्या। यही हुआ है एयर इंडिया की एक फ्लाइट के साथ।
14: क्या एयर इंडिया के पायलट ने गांजा फूंककर 137 सवारियों की जिंदगी खतरे में डाली? गांजा फूंकने वाले पायलट पर क्या एक्शन होगा? आगे ऐसा ना हो, इसकी क्या गारंटी है? ये तस्वीरें डराने वाली हैं। 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें देखिए क्या हाल है। लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, सीटें उखड़ी पड़ी हैं, लोग घायल हैं और ये तब का वीडियो है जब सब कुछ हो चुका था। क्या हुआ था फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में, आगे आपको बताएंगे। उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए।
1: ये दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंडिंग की बाद की तस्वीरें हैं। पैसेंजर घायल है, केबिन क्रू के सदस्य घायल है, किसी की आंख पर चोट है, किसी के हाथ पर, किसी के गले पर। ये सब लोग इसी फ्लाइट में सवार थे। चार अगस्त को फुकेट से दिल्ली के लिए ये फ्लाइट चली थी AI-2379। फ्लाइट जब हवा में थी तो पैसेंजर्स को अचानक से टर्बुलेंस का एहसास हुआ। फ्लाइट के केबिन में रखा सामान लोगों के ऊपर गिरने लगा। लोग अपनी सीटों से गिर गए और चोटिल हो गए। अचानक से जहाज हवा में ही 300 फीट नीचे चला गया। फ्लाइट के अंदर चीख पुकार मच गई। इस घटना में 20 यात्रियों और 4 केबिन क्रू मेंबर्स को चोटें आईं। फ्लाइट में 137 यात्री सवार थे, जिनमें 3 छोटे बच्चे भी थे और इनके अलावा 2 पायलट और 6 केबिन क्रू के सदस्य थे। अब खबर आ रही है कि इस फ्लाइट को उड़ाने वाला मेन पायलट गांजे के नशे में था। इस पायलट का दूसरा ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले पायलट का जब मेडिकल टेस्ट किया गया तो उसके शरीर में गांजे का सब्सटेंस पाया गया। डीजीसीए ने फिलहाल प्लेन उड़ा रहे दोनों पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AIB ने कहा है कि जांच पूरी होने तक कोई नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए।
2: देखिए, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, मैंने उसको संज्ञान में नहीं लिया। अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो ये बड़ी गंभीर बात है और DGCA को इसको बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए। एयर इंडिया का जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई अभी तक, तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये बहुत ही अत्यंत संवेदनशील है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है।
3: दिस क्रिमिनल बिहेवियर, एयर इंडिया इज लायबल, दे क्रिमिनली दे मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड द गवर्नमेंट मस्ट टेक एग्जेम्पलरी एक्शन अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ एयर इंडिया एंड द प्रोसेसेस ऑब्वियसली व्हिच दे फॉलो आर नॉट रोबस्ट इनफ एंड दे हैव एंडेंजर्ड लाइव्स। दिस इज क्रिमिनल बिहेवियर एंड इनफैक्ट दे मस्ट बी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट लेवीड ऑन एयर इंडिया एंड ऑल दोस कंसर्न।
1: बताया जा रहा है कि जब ये टर्बुलेंस हुआ तो ये फ्लाइट 3 मिनट तक पलटी खाती रही। फ्लाइट टर्बुलेंस का मतलब ये है कि हवाई जहाज तेज हवा के झटकों में फंस गया था और फिर अचानक से 300 फीट नीचे आ गया। यात्रियों ने दावा किया कि उड़ान भरने के 1.5 घंटे के बाद फ्लाइट में झटके लगे। सुबह का वक्त था तो यात्री सो रहे थे। अब पता चला है कि फ्लाइट का पायलट गांजा पिए हुए था। पायलट दोनों बार डोप टेस्ट में फेल हो गया है। पायलट की डोप टेस्ट में मारिजुआना यानी गांजा की पुष्टि हुई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AIB ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि विमान की ऊंचाई अचानक क्यों बदली, उस समय विमान के सिस्टम किस स्थिति में थे,

0: रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या दर्ज है?
1: इनफैक्ट वी वॉन्टेड टू गेट अ डायरेक्ट अपडेट फ्रॉम एयर इंडिया ऑल्सो ऑन द इंसिडेंट एंड वी वॉन्टेड टू सी हाउ दे आर टेकिंग दिस इशू फ्रॉम देयर साइड एंड आई हैव टोल्ड टाइम एंड अगेन दैट फ्रॉम द मिनिस्ट्री सेफ्टी इन एविएशन इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देर शुडंट बी एनी कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम एनी साइड इवन द रेगुलेटर और इवन द एयरलाइंस और एनी वन. So this issue we have taken very, very seriously from the ministry side also. So we have just spoken to him as a preliminary task just to get an update. But I have to tell you that AIB has been given the task to continue on the investigation and we have good confidence on AIB. So I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what action, definitive action needs to be taken on this.
0: जिस विमान A320 में खराबी आई वो एयरबस है और वो फ्रांस में बनता है. इसीलिए AIB की जांच में फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी और फ्रांस स्थित एयरबस के तकनीकी विशेषज्ञ भी मदद कर रहे हैं. आज तक ब्यूरो.
2: अब जांच चल रही है, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन सवाल अभी ये है कि जिन फ्लाइट से हम और आप रोजाना चलते हैं उन्हें किस तरह के पायलट्स उड़ा रहे हैं और पायलट के नशे को चेक करने के लिए सिस्टम क्या है. अगर कोई पायलट नशे में पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है.

0: अब जांच हो रही है और देखना होगा कि इस जांच का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मुख्य पायलट का ड्रग्स के नशे में पाया जाना एक बहुत बड़ी लापरवाही है। सोचिए उन 137 यात्रियों पर क्या बीती होगी जब 3 मिनट तक उन्होंने हवा में ये झटके महसूस किए होंगे। पता नहीं मन में क्या क्या ख्याल आए होंगे। कई बार ऐसा लगा होगा कि आज तो बचेंगे नहीं, और ये खुद इस फ्लाइट के यात्री बता रहे हैं।
1: ये दिखता है नेग्लिजेंस ऑफ द स्टाफ जो एयरलाइंस में पायलट हैं, और नेग्लिजेंस ऑफ जो सिस्टम है, क्योंकि उनको पता है कि ये करके हम बच सकते हैं, उसीलिए उन्होंने ये किया है। उनको पूरा का पूरा ये कॉन्फिडेंस है कि हम तो निकल जाएंगे।
2: जब फ्लाइट नीचे जा रही थी तो मेरे को सबसे ज्यादा चिंता हुई बच्चों की। ये हमारे पास में जो बैठा हुआ था, मेरा दोहेता बैठा हुआ था, मैंने जोर से उसको पकड़ के बेल्ट लगाई, उसमें वो हैंडल मेरे यहाँ पे घुस के रिब्स में दो में थोड़ी चोट आई है। पर ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इतना मतलब फैमिलीज, इतने लोग बैठे हुए, 3 साल की बच्ची उछल के इतना पीछे तक चली गई, ये कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं यार। छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो जिंदगी भर के लिए हमारे बच्चे अब कह रहे हैं कि हमको बैठना ही नहीं कभी फ्लाइट में।
0: अब यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि हिंदुस्तान में पायलट्स के लिए नियम कायदे क्या है, ये कैसे जांचा जाता है कि पायलट नशे में है या नहीं। हर पायलट की प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट जांच होती है। पायलट के लिए नियम ये है कि वो उड़ान के 12 घंटे पहले तक शराब का नशा नहीं कर सकता, यानी उड़ान के दौरान शरीर में अल्कोहल की मात्रा 0 होनी चाहिए। इसके लिए प्री फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य किया गया है। इसी तरह से भारत के बाहर से आने वाली फ्लाइट के पायलट्स का पोस्ट फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट लिया जाता है। लेकिन प्री फ्लाइट या पोस्ट फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में केवल शराब का नशा ही चेक हो सकता है, ये ड्रग्स के नशे के लिए नहीं बना। जहां तक ड्रग्स के नशे की बात है तो आमतौर पर यह जांच नौकरी शुरू करने से पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती होने के समय, किसी दुर्घटना के बाद या फिर अचानक किसी दिन औचक आधार पर की जाती है। एयरलाइन कंपनियां हर साल अपने यहां करीब 10% फ्लाइट क्रू मेंबर्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स का औचक ड्रग टेस्ट लेते हैं, और सैंपल की जांच NABL सर्टिफाइड लैब में ही की जाती है। तो क्या भारत में ऐसे मामलों के लिए नियम कायदे कुछ ढीले हैं, और क्या सरकार को नियम बदलने होंगे?
3: That issue we are continuously studying it, and DGCA also we have asked updates on that. But I am telling you that we are taking it very, very seriously. And if we feel that it is not up to the mark, the present regulation, then we will respond in it very seriously and improve whatever.
0: Flight operations में नशा करना यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है, इसीलिए इसे बड़े अपराध की तरह देखा जाता है। यही वजह है कि नशे के आरोप सही पाए जाने पर DGCA सख्त एक्शन लेता है। प्री फ्लाइट टेस्ट में अगर पायलट को शराब के नशे में पाया जाता है तो पहली गलती पर लाइसेंस 3 महीने के लिए, दूसरी गलती पर 3 साल के लिए, और तीसरी गलती होने पर स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है। पोस्ट फ्लाइट टेस्ट में पहली गलती पर लाइसेंस 1 साल के लिए और दूसरी गलती पर स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है। पायलट के लिए ड्रग्स के नशे को लेकर नियम अलग है। पहली बार

0: रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो पहली गलती मानकर उड़ान भरने से रोक दिया जाता है और नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाता है। पायलट अपनी ड्यूटी पर तभी लौट सकते हैं जब नशा पूरी तरह से छूट चुका हो। दूसरी बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई यानी दूसरी गलती हुई तो लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड होता है और तीसरी बार अगर ऐसा हुआ तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर पायलट ने ड्रग टेस्ट देने से इनकार किया तो भी लाइसेंस 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और नशा मुक्ति प्रोग्राम से जुड़ना होता है। दूसरी बार अगर टेस्ट देने से मना किया तो लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड होता है और तीसरी बार भी अगर ऐसा किया तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाता है। यानी पायलट के लिए नशा करके फ्लाइट उड़ाना एयर ऑपरेशंस में एक बड़ा अपराध है, इसीलिए पायलट को माफी नहीं मिलती बल्कि एक्शन होता है। हालांकि एयर इंडिया कह रहा है कि अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें।

0: विपक्षी हंगामे के बीच गृह मंत्री का ऑफर, सदन में हो जाए चर्चा, मैं पूरे समय बैठूंगा, दूंगा जवाब, राहुल गांधी बोले सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर, आज सदन का आखिरी दिन। 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की शिरकत, एनडीए सांसदों ने निकाली बाइक रैली। रांची छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में एबीवीपी। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बदलाव, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले छात्रों शिक्षण संस्थाओं के साथ होगी चर्चा, उच्च स्तरीय कमेटी का होगा गठन। और एयर इंडिया मामले में आज तक के पास मेंटेनेंस रिपोर्ट, एक मिनट में आए 3 बार हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट, 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान। संसद का मानसून सत्र खत्म होने वाला है लेकिन राजनीति में हंगामा लगातार जारी है। बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष सदन को चलने दे। जवाब में राहुल गांधी बोले इस्तीफा दें तो बात होगी।
1: संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले
2: गोपाल जी, व्हाट डू यू वांट टू से टू केसी वेणुगोपाल जी,
3: ये जेपीसी में भेजा जाए।
4: इसके बाद मुझे मौका मिला,
2: मैंने दिया तो समय आपको।
5: गुरुवार को संसद का मानसून सत्र खत्म होने से पहले बुधवार को भी न संसद का हंगामा थमा, न चर्चा हुई, न संसद नियम से चल पाई, लेकिन अमित शाह का जवाबी पलटवार ऐसा आया कि अब राहुल गांधी पर गोल पोस्ट बदलने का बीजेपी का आरोप और गहरा हो गया।
6: सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है।
5: जंतर मंतर प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह के बयान की मांग करते राहुल गांधी को एक तरह से सीधी चुनौती थी। अमित शाह ने बुधवार दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू कर गुरुवार दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए राजी होने की न सिर्फ बात कही बल्कि स्पीकर ओम बिरला को अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आप विपक्ष से चर्चा करके आपसी सहमति से आज से जितने समय जितने घंटे आप उचित समझे उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। जंतर मंतर पर संसद में खुद के बयान को लेकर पहली बार आए अमित शाह के इतने स्पष्ट बयान के बाद राहुल गांधी का जवाब आता है। राहुल कहते हैं कि हमें उनकी कल्पनाओं में दिलचस्पी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री ये बताएं कि पैलेट गन से गोली किसने चलवाई।
7: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग एंड व्हेन आई से वी I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students?
5: जंतर मंतर पर संसद में अमित शाह के बयान की मांग को लेकर लगातार हंगामा चलता रहा। संसद के अंदर हंगामे से लेकर परिसर में मकर द्वार के बाहर तक जवाबी नारेबाजी होती रही।
8: मैं बहुत निराश हूँ। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी होते हैं।
5: अमित शाह ने जब ये साफ कहा है कि सरकार चर्चा से कतई भाग नहीं रही, सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ।
6: लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा?
4: इस 20 दिन के लिए गायब हो गए, यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह, उनके घर के सामने जाइए वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए।
5: इस बीच सरकार ने एफसीआरएस संशोधन बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है, जिसे मंजूरी मिल गई। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, लेकिन लड़ाई मेरा जवाब बनाम तेरा जवाब पर चलती रही।
9: आपको पता है कि जब जब गृह मंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं इनकी खाट खड़ी हो जाती है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कौन सा समझौता कर लिया चीन के साथ, एफसीआरए में जो है किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रहा है, तो सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। इसीलिए गृहमंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते, तो गृहमंत्री जी को कैसे नहीं सुनेंगे? तो हंगामा करो।
10: रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? सरकार,
11: आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उनपे लाठी बरसाते हो, आप उनपे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उनपे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस।
5: राज्यसभा में गृह मंत्री को लेकर खड़गे ने वार किया, कहा कि वो रोज नहीं आते। नड्डा बोले, आप चर्चा से भाग रहे हैं।
12: मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा, ये रोज का यही धंधा हो गया, आप बुलाइए उनको।
13: माननीय नड्डा जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और आप चर्चा से भागो मत।
5: 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चलते आंदोलन के बीच हंगामे के साथ शुरू हुई संसद में हंगामे के साथ मानसून सत्र पूरा होने जा रहा है।
0: झारखंड में छात्रों के धरना और आंदोलन करते 19 दिन हो चुके हैं। झारखंड की परीक्षाओं में धांधली की रोज नई किश्त सामने आ रही है। पता ये चला कि भर्ती प्रक्रिया में 10 लाख से 50 लाख तक के रेट लगाए गए और अभय तिवारी सब कुछ सेट करता रहा, जिसमें आयोगों के बड़े बड़े अधिकारी तक दावा करते हैं कि वो शामिल थे।
14: आपने मूसलाधार बारिश के बीच छात्रों के आंदोलन की आग देखी। आपने विधानसभा घेराव के दौरान इन छात्रों का हौसला देखा। आपने छात्रों पर रांची पुलिस की ज्यादती देखी। छात्रों पर लाठियां बरसते देखा और उन्हें एक एक कर घायल होते देखा।
15: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो,
16: पूरे देश के युवाओं पे लाठी चले,
15: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
14: रांची में दो दिन पहले क्या क्या हुआ इसे पूरे देश ने देखा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सहानुभूति के बजाय पुलिस का बचाव करते दिखे।
17: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है। अध्यक्ष महोदय, जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आता।
14: सोरेन यहीं ठहर जाते तब भी गनीमत होती, लेकिन अब वो जुल्म पर उतर आए हैं, बदले पर उतर आए हैं। खबर है कि रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
18: घड़ी में छात्रों की संख्या बढ़ने लगती थी वो आज अब आधे से भी कम होने लगी है। ज्यादातर छात्र या तो जा चुके हैं या इस समय धरनास्थल पर मौजूद नहीं है। बीती रात प्रशासन यहां पर आया। छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई और अब इस उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोगों की?
19: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी, अब सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी। अब इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था। जो हम लोग का लाइट वो जल रहा था जो जनरेटर से हम लोग का चल रहा था।
14: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। सरकार ये बात समझती है इसलिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये दबाव उस सच को नहीं दबा सकता जो एक एक कर सामने आ रहा। सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20-25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30-35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली।
20: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही राज्य की सीआईडी के सामने अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने सीआईडी से पूछताछ में बताया है कि कैसे अलग अलग परीक्षाओं में लाखों रुपए में नौकरी की डील हुई। अभय तिवारी ने यह बताया है कि उसने किन परीक्षाओं में करोड़ों की राशि की वसूली की, कैसे एजेंट्स के जरिए जो नियोक्ता एजेंसियां थी उनको लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में सीआईडी अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि सीआईडी की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं उनका यह कहना है कि सीबीआई जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदी मालम के साथ शशि भूषण, आज तक रांची।
0: क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टियां जेनजीज पर डोरे डाल रही हैं? सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2027 में यूपी से लेकर देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इन चुनावी राज्यों में जेनजी वोटर्स एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। सियासी पार्टियों को मैसेज बहुत ही क्लियर है, साफ है, जहां जेनजीज वहां पड़ला भारी। फिर चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या संघ प्रमुख मोहन भागवत या फिर विपक्ष, हर कोई जेनजीज को अपने पाले में खींचने के लिए भरपूर कोशिश में जुटा है।
21: जेन जी के सहारे देश के चुनाव सारे। कैसे जेन जी को लुभाने में जुटा देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जेन जी वोटर की प्लानिंग शुरू। जंतर मंतर से ताकत दिखाई, सबको जेन जी की याद आई। जेन जी साथ आएगा तो चुनाव जिताएगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ जेन जी ने दम दिखाया तो सिस्टम को हिला डाला। इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, लेकिन जेन जी की ताकत का एहसास हर सियासी पार्टी को हो गया।
22: लाखों युवाओं से मैं मिला,
23: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि
21: पीएम मोदी इंस्टा पर आ गए और जेन जी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की और आज भी पीएम मोदी देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी को मैसेज दे रहे हैं। जी हां, मौका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी के विमोचन का था, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा मैसेज जेन जी को दिया।
1: रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की, इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है।
21: जेन जी की ताकत हर कोई समझ रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जेन जी आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर संघर्ष के लिए आगे आ रहा है। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है, इसलिए ये अपनी समस्याओं को केवल निजी चर्चा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें सार्वजनिक बहस का विषय बना देती है। भारत में जेन जी ने विरोध का एक नया मॉडल विकसित किया है। छात्र केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड, हैशटैग कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है।
2: सारे जेन जी की जगह ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, आप लोगों का स्वागत है। इस भारत को आप ही लोगों को संभालना है, क्योंकि आप लोगों की आबादी 65% है। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे आके सुनते हैं, आप लोगों की बातों पर इतना गौर किया जा रहा है इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो मैं सारे जेन जी को प्रणाम नमन करता हूँ।
21: राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम के कैंपेन से खुद को जेन जी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं।
3: क्या है, जेन जी में सेल्फीज बड़ी कॉमन है,
7: तो चलिए
24: हम सब तैयार है सर के साथ सेल्फी के लिए।
25: मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो।
21: तो जेन जी की ताकत को आरएसएस ने भी समझा है और जाना है, तभी तो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी के साथ संवाद किया।
26: अभी जो हुआ है, ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
27: बिल्कुल
26: उसको ठीक करना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है।
21: आज जेन जी की आवाज को सियासी पार्टियां अनसुना नहीं करना चाहती, तो उसके पीछे बड़ी वजह है। 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावी राज्यों में युवा मतदाता सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की संख्या 22.78% है, जबकि यूपी में 18 से 29 साल के उम्र के लोग 21.19%, गुजरात में 23.32%, पंजाब में 21.44%, उत्तराखंड में 22.18%, हिमाचल प्रदेश में 21.91%, मणिपुर में 23.74% और गोवा में 19.60% आबादी 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की है।
0: और सिर्फ जेन जीज ही नहीं बल्कि जेन अल्फा भी देश में अब अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। जुलाई में महीने में जंतर मंतर से उठा जेन जी का ज्वार अब जेन अल्फा तक पहुंच चुका है। जेन जी अगर बेरोजगारी, भर्ती में भ्रष्टाचार पर घेरता है तो जेन अल्फा स्कूलों की हालत, सड़क की बदहाली पर सीधा सीधा सवाल करने लगा है। और इसीलिए अब बीजेपी हो या विपक्ष, हर कोई जेन जी और जेन अल्फा के साथ सीधा कनेक्शन साधने में जुट चुका है।
21: जंतर मंतर के आंदोलन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माइलेज लेने की कोशिश की और अखिलेश यादव ने यूपी के मुद्दों को जंतर मंतर से लेकर संसद तक सामने रखा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा।
4: सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
21: तो अब यूपी में सीएम योगी और बीजेपी की पूरी मशीनरी जेन जी को लुभाने में जुट गई है। यूपी सरकार के मंत्री मनोज पांडे रायबरेली में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करते हैं और जेन जी को साधने की कोशिश करते हैं।
6: उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है।
8: समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे।
21: यूपी में योगी सरकार और बीजेपी ने जेन जी संवाद के लिए कैंपेन शुरू किया है जिसमें योगी सरकार के मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेन जी चौपाल करेंगे। विधानसभा वार टीमें तैयार करने की तैयारी की जा रही है।
9: चुनावी साल नजदीक है, ऐसे में अब राजनीतिक दलों को यह समझ आ चुका है कि केवल परंपरागत नारों से ही काम नहीं चलने वाला है। उन्हें मालूम पड़ गया है जेन जी का जो उबाल पूरे देश में इस वक्त देखने को मिला है अपने मुद्दों को लेकर वो मामूली तो नहीं, और इसलिए बीजेपी अब अपनी यूथ विंग के जरिए स्कूल कॉलेजों में युवाओं से युवाओं के संपर्क कराकर संपर्क साधने जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार के मंत्री भी अब इसमें आ गए हैं।
21: बड़ी बात यह है कि सिर्फ जेन जी ही नहीं बल्कि जेन अल्फा ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। अब यूपी के हमीरपुर में ही देख लीजिए, स्कूल के रास्ते में आने वाले गड्ढों के खिलाफ जेन अल्फा तिरंगा लेकर निकल पड़ता है। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। ये बच्चे डीएम ऑफिस तक पहुंचते हैं और जेन अल्फा के आक्रोश के बाद प्रशासन भरोसा देता है कि अब जल्द ही यहां 1,81,00,000 रुपए खर्च कर सड़क बनवाई जाएगी। जेन अल्फा के आगे झुकना भी सियासी पार्टियों की मजबूरी क्यों है वो भी आपको समझाते हैं। भारत के कानूनी नियमों के अनुसार वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 साल है। इस नियम के हिसाब से जेन अल्फा के बच्चे साल 2028 से 2042 के बीच वोटर बनने के योग्य होंगे। इस पीढ़ी के सबसे बड़े बच्चे जिनका जन्म 2010 से 2011 के बीच हुआ था वो साल 2028 से 2029 तक 18 साल के हो जाएंगे, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में इनका एक छोटा हिस्सा पहली बार मतदान करेगा और इसीलिए सियासी पार्टियां ना जेन जी को नजरअंदाज कर सकती हैं और ना ही जेन अल्फा को। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सोचिए कि आप पूरी फैमिली के साथ एक फ्लाइट से जा रहे हो और अचानक से हवा में विमान जोर जोर से हिलने लगे, आप सीट से नीचे गिर जाएं, आपके आसपास के लोग घायल हो चुके हों, ऊपर से कैबिन में रखे हुए सामान नीचे आने लगे और आप समझ ही नहीं पाए कि करना क्या है। आप कुछ नहीं कर सकते, अगर करना चाहें भी तो सिर्फ ऊपर वाले को याद करेंगे। और जब आपको पता यह चल जाए कि इस फ्लाइट को जो पायलट उड़ा रहा था वो गांजे के नशे में था तो सोचिए होगा क्या। यही हुआ है एयर इंडिया की एक फ्लाइट के साथ।
10: क्या एयर इंडिया के पायलट ने गांजा फूंककर 137 सवारियों की जिंदगी खतरे में डाली? गांजा फूंकने वाले पायलट पर क्या एक्शन होगा? आगे ऐसा ना हो इसकी क्या गारंटी है? ये तस्वीरें डराने वाली हैं। 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें देखिए क्या हाल है। लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, सीटें उखड़ी पड़ी हैं, लोग घायल हैं और ये तब का वीडियो है जब सब कुछ हो चुका था। क्या हुआ था फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में, आगे आपको बताएंगे। उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंडिंग की बात की तस्वीरें हैं। पैसेंजर घायल है, केबिन क्रू के सदस्य घायल है, किसी की आंख पर चोट है, किसी के हाथ पर, किसी के गले पर। ये सब लोग इसी फ्लाइट में सवार थे। चार अगस्त को फुकेट से दिल्ली के लिए ये फ्लाइट चली थी AI-2379। फ्लाइट जब हवा में थी तो पैसेंजर्स को अचानक से टर्बुलेंस का एहसास हुआ। फ्लाइट के केबिन में रखा सामान लोगों के ऊपर गिरने लगा। लोग अपनी सीटों से गिर गए और चोटिल हो गए। अचानक से जहाज हवा में ही 300 फीट नीचे चला गया। फ्लाइट के अंदर चीख पुकार मच गई। इस घटना में 20 यात्रियों और 4 केबिन क्रू मेंबर्स को चोटें आईं। फ्लाइट में 137 यात्री सवार थे, जिनमें 3 छोटे बच्चे भी थे और इनके अलावा 2 पायलट और 6 केबिन क्रू के सदस्य थे। अब खबर आ रही है कि इस फ्लाइट को उड़ाने वाला मेन पायलट गांजे के नशे में था। इस पायलट का दूसरा ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले पायलट का जब मेडिकल टेस्ट किया गया तो उसके शरीर में गांजे का सब्सटेंस पाया गया। DGCA ने फिलहाल प्लेन उड़ा रहे दोनों पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AIB ने कहा है कि जांच पूरी होने तक कोई नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए।
5: देखिए, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, मैंने उसको संज्ञान में नहीं लिया। अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो ये बड़ी गंभीर बात है और DGCA को इसको बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए। एयर इंडिया का जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई अभी तक, तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये बहुत ही अत्यंत संवेदनशील है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है।
11: दिस क्रिमिनल बिहेवियर, एयर इंडिया इज लायबल, दे क्रिमिनली दे मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड द गवर्नमेंट मस्ट टेक एग्जेम्पलरी एक्शन अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ एयर इंडिया एंड द प्रोसेसेस ऑब्वियसली व्हिच दे फॉलो आर नॉट रोबस्ट इनफ एंड दे हैव एंडेंजर्ड लाइव्स। This is criminal behavior and in fact there must be exemplary punishment levied on Air India and all those concerned.
10: बताया जा रहा है कि जब ये टर्बुलेंस हुआ तो ये फ्लाइट 3 मिनट तक पलटी खाती रही। फ्लाइट टर्बुलेंस का मतलब ये है कि हवाई जहाज तेज हवा के झटकों में फंस गया था और फिर अचानक से 300 फीट नीचे आ गया। यात्रियों ने दावा किया कि उड़ान भरने के 1.5 घंटे के बाद फ्लाइट में झटके लगे। सुबह का वक्त था तो यात्री सो रहे थे। अब पता चला है कि फ्लाइट का पायलट गांजा पिए हुए था। पायलट दोनों बार डोप टेस्ट में फेल हो गया है। पायलट की डोप टेस्ट में मारिजुआना यानी गांजा की पुष्टि हुई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AIB ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि विमान की ऊंचाई अचानक क्यों बदली, उस समय विमान के सिस्टम किस स्थिति में थे, मौसम और टर्बुलेंस की क्या भूमिका थी, पायलट्स ने क्या एक्शन लिया, विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड में क्या जानकारी है, यात्रियों और क्रू को किस तरह की चोटें आईं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या दर्ज है।
12: In fact, we wanted to get a direct update from Air India also on the incident, and we wanted to see how they are taking this issue from their side. And I have told time and again that from the ministry, safety in aviation is the topmost priority. There shouldn't be any compromise from any side, even the regulator or even the airlines or anyone. So this issue we have taken very, very seriously from the ministry side also. So we have just spoken to him as a preliminary task just to get an update. But I have to tell you that AIB has been given the task to continue on the investigation, and we have good confidence on AIB. So I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what action, definitive action needs to be taken on this.
10: जिस विमान A320 में खराबी आई वो एयरबस है और वो फ्रांस में बनता है। इसीलिए AIB की जांच में फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी और फ्रांस स्थित एयरबस के तकनीकी विशेषज्ञ भी मदद कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यार रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: विपक्षी हंगामे के बीच गृह मंत्री का ऑफर, सदन में हो जाए चर्चा, मैं पूरे समय बैठूंगा, दूंगा जवाब, राहुल गांधी बोले सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर, आज सदन का आखिरी दिन। 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की शिरकत, एनडीए सांसदों ने निकाली बाइक रैली। रांची छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में एबीवीपी। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बदलाव, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले छात्रों शिक्षण संस्थाओं के साथ होगी चर्चा, उच्च स्तरीय कमेटी का होगा गठन। और एयर इंडिया मामले में आज तक के पास मेंटेनेंस रिपोर्ट, एक मिनट में आए 3 बार हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट, 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान। संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने वाला है लेकिन राजनीति में हंगामा लगातार जारी है। बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष सदन को चलने दे। जवाब में राहुल गांधी बोले इस्तीफा दें तो बात होगी।
1: संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले
2: गोपाल जी, व्हाट डू वांट टू से टू टू केसी बेन गोपाल जी,
3: ये जेपीसी में भेजा जाए।
4: के बाद मुझे मौका मिला,
2: मैंने दिया तो समय आपको।
5: गुरुवार को संसद का मानसून सत्र खत्म होने से पहले बुधवार को भी न संसद का हंगामा थमा, न चर्चा हुई, न संसद नियम से चल पाई। लेकिन अमित शाह का जवाबी पलटवार ऐसा आया कि अब राहुल गांधी पर गोल पोस्ट बदलने का बीजेपी का आरोप और गहरा हो गया।
6: सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है।
5: जंतर मंतर प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह के बयान की मांग करते राहुल गांधी को एक तरह से सीधी चुनौती थी। अमित शाह ने बुधवार दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू कर गुरुवार दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए राजी होने की न सिर्फ बात कही बल्कि स्पीकर ओम बिरला को अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आप विपक्ष से चर्चा करके आपसी सहमति से आज से जितने समय जितने घंटे आप उचित समझे उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। जंतर मंतर पर संसद में खुद के बयान को लेकर पहली बार आए अमित शाह के इतने स्पष्ट बयान के बाद राहुल गांधी का जवाब आता है। राहुल कहते हैं कि हमें उनकी कल्पनाओं में दिलचस्पी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री ये बताएं कि पैलेट गन से गोली किसने चलवाई।
7: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग एंड व्हेन आई से वी I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students?
5: जंतर मंतर पर संसद में अमित शाह के बयान की मांग को लेकर लगातार हंगामा चलता है। संसद के अंदर हंगामे से लेकर परिसर में मकर द्वार के बाहर तक जवाबी नारेबाजी होती रही।
8: मैं बहुत निराश हूँ। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी होते हैं।
5: अमित शाह ने जब ये साफ कहा है कि सरकार चर्चा से कतई भाग नहीं रही, सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ।
6: लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा?
7: इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए।
4: इस बीच सरकार ने एफसीआरएस संशोधन बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है, जिसे मंजूरी मिल गई। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, लेकिन लड़ाई मेरा जवाब बनाम तेरा जवाब पर चलती रही।
9: आपको पता है कि जब जब गृह मंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं, इनकी खाट खड़ी हो जाती है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कौन सा समझौता कर लिया चीन के साथ, एफसीआरए में जो है किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रहा है, तो सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। इसीलिए गृहमंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते, तो गृहमंत्री जी को कैसे नहीं सुनेंगे? तो हंगामा करो।
10: रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? सरकार,
11: आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस।
4: राज्यसभा में गृह मंत्री को लेकर खड़गे ने वार किया, कहा कि वो रोज नहीं आते। नड्डा बोले, आप चर्चा से भाग रहे हैं।
12: मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है, किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा, ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको।
13: माननीय नड्डा जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं जी। सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और आप चर्चा से भागो मत।
4: 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चलते आंदोलन के बीच हंगामे के साथ शुरू हुई संसद में, हंगामे के साथ मानसून सत्र पूरा होने जा रहा है।
0: झारखंड में छात्रों के धरना और आंदोलन करते 19 दिन हो चुके हैं। झारखंड की परीक्षाओं में धांधली की रोज नई किश्त सामने आ रही है। पता ये चला कि भर्ती प्रक्रिया में 10 लाख से 50 लाख तक के रेट लगाए गए और अभय तिवारी सब कुछ सेट करता रहा, जिसमें आयोगों के बड़े बड़े अधिकारी तक दावा करते हैं कि वो शामिल थे।
14: आपने मूसलाधार बारिश के बीच छात्रों के आंदोलन की आग देखी। आपने विधानसभा घेराव के दौरान इन छात्रों का हौसला देखा। आपने छात्रों पर रांची पुलिस की ज्यादती देखी। छात्रों पर लाठियां बरसते देखा और उन्हें एक एक कर घायल होते देखा।
15: झारखंड के युवा को रुला रहे हो,
16: पूरे देश के युवाओं पर लाठी चले,
15: झारखंड के युवा को रुला रहे हो, लाठी चार्ज कर रही है पुलिस, हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
14: रांची में दो दिन पहले क्या क्या हुआ, इसे पूरे देश ने देखा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सहानुभूति के बजाय पुलिस का बचाव करते दिखे।
17: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया, वो भी अभूतपूर्व है। अध्यक्ष महोदय, जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आता।
14: सोरेन यहीं ठहर जाते तब भी गनीमत होती, लेकिन अब वो जुल्म पर उतर आए हैं, बदले पर उतर आए हैं। खबर है कि रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
18: घड़ी में छात्रों की संख्या बढ़ने लगती थी वो आज अब आधे से भी कम होने लगी है। ज्यादातर छात्र या तो जा चुके हैं या इस समय धरनास्थल पर मौजूद नहीं है। बीती रात प्रशासन यहां पर आया। छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई और अब इस उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोग?
19: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी, अब सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी। अब इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था। जो हम लोग का लाइट वो चल रहा था जो जनरेटर से हम लोग का चल रहा था।
14: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। सरकार ये बात समझती है इसलिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये दबाव उस सच को नहीं दबा सकता जो एक एक कर सामने आ रहा। सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली।
20: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही राज्य की सीआईडी के सामने अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने सीआईडी से पूछताछ में बताया है कि कैसे अलग अलग परीक्षाओं में लाखों रुपए में नौकरी की डील हुई। अभय तिवारी ने यह बताया है कि उसने किन परीक्षाओं में करोड़ों की राशि की वसूली की, कैसे एजेंट्स के जरिए जो नियोक्ता एजेंसियां थी उनको लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में सीआईडी अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि सीआईडी की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं उनका यह कहना है कि सीबीआई जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशिभूषण, आज तक रांची।
0: क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टियां जेंजीज पर डोरे डाल रही हैं? सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2027 में यूपी से लेकर देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इन चुनावी राज्यों में जेंजी वोटर्स एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। सियासी पार्टियों को मैसेज बहुत ही क्लियर है, साफ है, जहां जेंजीज वहां पड़ला भारी। फिर चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या संघ प्रमुख मोहन भागवत या फिर विपक्ष, हर कोई जेंजीज को अपने पाले में खींचने के लिए भरपूर कोशिश में जुटा है।
21: जेन जी के सहारे देश के चुनाव सारे। कैसे जेन जी को लुभाने में जुटा देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जेन जी वोटर की प्लानिंग शुरू। जंतर मंतर से ताकत दिखाई, सबको जेन जी की याद आई। जेन जी साथ आएगा तो चुनाव जिताएगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ जेन जी ने दम दिखाया तो सिस्टम को हिला डाला। इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, लेकिन जेन जी की ताकत का एहसास हर सियासी पार्टी को हो गया।
22: लाखों युवाओं से मैं मिला,
23: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि
21: पीएम मोदी इंस्टा पर आ गए और जेन जी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की और आज भी पीएम मोदी देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी को मैसेज दे रहे हैं। जी हां, मौका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी के विमोचन का था, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा मैसेज जेन जी को दिया।
1: रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़े। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है।
21: जेन जी की ताकत हर कोई समझ रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जेन जी आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर संघर्ष के लिए आगे आ रहा है। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है, इसलिए ये अपनी समस्याओं को केवल निजी चर्चा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें सार्वजनिक बहस का विषय बना देती है। भारत में जेन जी ने विरोध का एक नया मॉडल विकसित किया है। छात्र केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड, हैशटैग कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है।
2: सारे जेन जीज की जगह ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, आप लोगों का स्वागत है। इस भारत को आप ही लोगों को संभालना है, क्योंकि आप लोगों की आबादी 65% है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे आके सुनते हैं, आप लोगों की बातों पर इतना गौर किया जा रहा है इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो मैं सारे जेन जीज को प्रणाम नमन करता हूँ।
21: राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम के कैंपेन से खुद को जेन जी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं।
3: क्या है, जेन जी में सेल्फीज बड़ी कॉमन है,
8: तो चलिए
24: हम सब तैयार हैं सौ के साथ सेल्फी के लिए।
8: मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो।
21: तो जेन जी की ताकत को आरएसएस ने भी समझा है और जाना है, तभी तो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी के साथ संवाद किया।
25: जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
26: बिल्कुल
25: उसको ठीक करना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है।
21: आज जेन जी की आवाज को सियासी पार्टियां अनसुना नहीं करना चाहती, तो उसके पीछे बड़ी वजह है। 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावी राज्यों में युवा मतदाता सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की संख्या 22.78% है, जबकि यूपी में 18 से 29 साल के उम्र के लोग 21.19%, गुजरात में 23.32%, पंजाब में 21.44%, उत्तराखंड में 22.18%, हिमाचल प्रदेश में 21.91%, मणिपुर में 23.74% और गोवा में 19.60% आबादी 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की है।
0: सोचिए कि आप पूरी फैमिली के साथ एक फ्लाइट से जा रहे हो और अचानक से हवा में विमान जोर जोर से हिलने लगे, आप सीट से नीचे गिर जाएं, आपके आसपास के लोग घायल हो चुके हों, ऊपर से कैबिन में रखे हुए सामान नीचे आने लगे और आप समझ ही नहीं पाए कि करना क्या है। आप कुछ नहीं कर सकते, अगर करना चाहें भी तो सिर्फ ऊपर वाले को याद करेंगे। और जब आपको पता ये चल जाए कि इस फ्लाइट को जो पायलट उड़ा रहा था वो गांजे के नशे में था, तो सोचिए होगा क्या। यही हुआ है एयर इंडिया की एक फ्लाइट के साथ।
27: ये
5: किया एयर इंडिया के पायलट ने गांजा फूंक कर 137 सवारियों की जिंदगी खतरे में डाली। गांजा फूंकने वाले पायलट पर क्या एक्शन होगा, आगे ऐसा ना हो, इसकी क्या गारंटी है? ये तस्वीरें डराने वाली हैं। 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें देखिए क्या हाल है। लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, सीटें उखड़ी पड़ी हैं, लोग घायल हैं, और ये तब का वीडियो है जब सब कुछ हो चुका था। क्या हुआ था फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में, आगे आपको बताएंगे। उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंडिंग की बाद की तस्वीरें हैं। पैसेंजर घायल है, केबिन क्रू के सदस्य घायल है, किसी की आंख पर चोट है, किसी के हाथ पर, किसी के गले पर। ये सब लोग इसी फ्लाइट में सवार थे। चार अगस्त को फुकेट से दिल्ली के लिए ये फ्लाइट चली थी AI-2379। फ्लाइट जब हवा में थी तो पैसेंजर्स को अचानक से टर्बुलेंस का एहसास हुआ। फ्लाइट के केबिन में रखा सामान लोगों के ऊपर गिरने लगा, लोग अपनी सीटों से गिर गए और चोटिल हो गए। अचानक से जहाज हवा में ही 300 फीट नीचे चला गया। फ्लाइट के अंदर चीख पुकार मच गई। इस घटना में 20 यात्रियों और 4 केबिन क्रू मेंबर्स को चोटें आई। फ्लाइट में 137 यात्री सवार थे, जिनमें 3 छोटे बच्चे भी थे, और इनके अलावा 2 पायलट और 6 केबिन क्रू के सदस्य थे। अब खबर आ रही है कि इस फ्लाइट को उड़ाने वाला मेन पायलट गांजे के नशे में था। इस पायलट का दूसरा ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले पायलट का जब मेडिकल टेस्ट किया गया तो उसके शरीर में गांजे का सब्सटेंस पाया गया। DGCA ने फिलहाल प्लेन उड़ा रहे दोनों पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AIB ने कहा है कि जांच पूरी होने तक कोई नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए।
6: देखिए, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, मैंने उसको संज्ञान में नहीं लिया। अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो ये बड़ी गंभीर बात है और DGCA को इसको बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए। एयर इंडिया का जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई अभी तक, तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये बहुत ही अत्यंत संवेदनशील है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है।
7: दिस क्रिमिनल बिहेवियर, एयर इंडिया इज लायबल, दे क्रिमिनली दे मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड द गवर्नमेंट मस्ट टेक एग्जेम्पलरी एक्शन अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ एयर इंडिया एंड द प्रोसेसेस ऑब्वियसली व्हिच दे फॉलो आर नॉट रोबस्ट इनफ एंड दे हैव एंडेंजर्ड लाइव्स। दिस इज क्रिमिनल बिहेवियर एंड इन फैक्ट दे मस्ट बी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट लेवीड ऑन एयर इंडिया एंड ऑल दोस कंसर्न।
5: बताया जा रहा है कि जब ये टर्बुलेंस हुआ तो ये फ्लाइट 3 मिनट तक पलटी खाती रही। फ्लाइट टर्बुलेंस का मतलब ये है कि हवाई जहाज तेज हवा के झटकों में फंस गया था और फिर अचानक से 300 फीट नीचे आ गया। यात्रियों ने दावा किया कि उड़ान भरने के 1.5 घंटे के बाद फ्लाइट में झटके लगे। सुबह का वक्त था तो यात्री सो रहे थे। अब पता चला है कि फ्लाइट का पायलट गांजा पिए हुए था। पायलट दोनों बार डोप टेस्ट में फेल हो गया है। पायलट की डोप टेस्ट में मारिजुआना यानी गांजा की पुष्टि

0: फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या दर्ज है?
1: इनफैक्ट वी वॉन्टेड टू गेट अ डायरेक्ट अपडेट फ्रॉम एयर इंडिया ऑल्सो ऑन द इंसिडेंट एंड वी वॉन्टेड टू सी हाउ दे आर टेकिंग दिस इश्यू फ्रॉम देयर साइड एंड आई हैव टोल्ड टाइम एंड अगेन दैट फ्रॉम द मिनिस्ट्री सेफ्टी इन एविएशन इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देर शुडंट बी एनी कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम एनी साइड इवन द रेगुलेटर और इवन द एयरलाइंस और एनी वन. So this issue we have taken very, very seriously from the ministry side also. So we have just spoken to him as a preliminary task just to get an update. But I have to tell you that AIB has been given the task to continue on the investigation and we have good confidence on AIB. So I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what action, definitive action needs to be taken on this.
0: Jis viman A320 mein kharabi aayi वो एयरबस है और वो फ्रांस में बनता है. इसीलिए एआईबी की जांच में फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी और फ्रांस स्थित एयरबस के तकनीकी विशेषज्ञ भी मदद कर रहे हैं. आज तक ब्यूरो.
2: अब जांच चल रही है, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन सवाल अभी यह है कि जिन फ्लाइट से हम और आप रोजाना चलते हैं उन्हें किस तरह के पायलट्स उड़ा रहे हैं और पायलट के नशे को चेक करने के लिए सिस्टम क्या है. अगर कोई पायलट नशे में पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है.

0: अब जांच हो रही है और देखना होगा कि इस जांच का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मुख्य पायलट का ड्रग्स के नशे में पाया जाना एक बहुत बड़ी लापरवाही है। सोचिए उन 137 यात्रियों पर क्या बीती होगी जब 3 मिनट तक उन्होंने हवा में ये झटके महसूस किए होंगे। पता नहीं मन में क्या क्या ख्याल आए होंगे। कई बार ऐसा लगा होगा कि आज तो बचेंगे नहीं, और ये खुद इस फ्लाइट के यात्री बता रहे हैं।
1: ये दिखता है नेग्लिजेंस ऑफ द स्टाफ जो एयरलाइंस में पायलट हैं, और नेग्लिजेंस ऑफ जो सिस्टम है, क्योंकि उनको पता है कि ये करके हम बच सकते हैं, उसीलिए उन्होंने ये किया है। उनको पूरा का पूरा ये कॉन्फिडेंस है कि हम तो निकल जाएंगे।
2: जब फ्लाइट नीचे जा रही थी तो मेरे को सबसे ज्यादा चिंता हुई बच्चों की। ये हमारे पास में जो बैठा हुआ था, मेरा दोहेता बैठा हुआ था, मैंने जोर से उसको पकड़ के बेल्ट लगाई, उसमें वो हैंडल मेरे यहाँ पे घुस के रिब्स में दो में थोड़ी चोट आई है। पर ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इतना मतलब फैमिलीज, इतने लोग बैठे हुए, 3 साल की बच्ची उछल के इतना पीछे तक चली गई, ये कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं यार। छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो जिंदगी भर के लिए हमारे बच्चे अब कह रहे हैं कि हमको बैठना ही नहीं कभी फ्लाइट में।
0: अब यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि हिंदुस्तान में पायलट्स के लिए नियम कायदे क्या हैं, ये कैसे जांचा जाता है कि पायलट नशे में है या नहीं। हर पायलट की प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट जांच होती है। पायलट के लिए नियम ये है कि वो उड़ान के 12 घंटे पहले तक शराब का नशा नहीं कर सकता, यानी उड़ान के दौरान शरीर में अल्कोहल की मात्रा 0 होनी चाहिए। इसके लिए प्री फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य किया गया है। इसी तरह से भारत के बाहर से आने वाली फ्लाइट के पायलट्स का पोस्ट फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट लिया जाता है। लेकिन प्री फ्लाइट या पोस्ट फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में केवल शराब का नशा ही चेक हो सकता है, ये ड्रग्स के नशे के लिए नहीं बना। जहां तक ड्रग्स के नशे की बात है तो आमतौर पर यह जांच नौकरी शुरू करने से पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती होने के समय, किसी दुर्घटना के बाद या फिर अचानक किसी दिन औचक आधार पर की जाती है। एयरलाइन कंपनियां हर साल अपने यहां करीब 10% फ्लाइट क्रू मेंबर्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स का औचक ड्रग टेस्ट लेते हैं, और सैंपल की जांच NABL सर्टिफाइड लैब में ही की जाती है। तो क्या भारत में ऐसे मामलों के लिए नियम कायदे कुछ ढीले हैं, और क्या सरकार को नियम बदलने होंगे?
3: That issue we are continuously studying it, and DGCA also we have asked updates on that. But I am telling you that we are taking it very, very seriously. And if we feel that it is not up to the mark, the present regulation, then we will respond in it very seriously and improve whatever.
0: Flight operations में नशा करना यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है, इसीलिए इसे बड़े अपराध की तरह देखा जाता है। यही वजह है कि नशे के आरोप सही पाए जाने पर DGCA सख्त एक्शन लेता है। प्री फ्लाइट टेस्ट में अगर पायलट को शराब के नशे में पाया जाता है तो पहली गलती पर लाइसेंस 3 महीने के लिए, दूसरी गलती पर 3 साल के लिए, और तीसरी गलती होने पर स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है। पोस्ट फ्लाइट टेस्ट में पहली गलती पर लाइसेंस 1 साल के लिए और दूसरी गलती पर स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है। पायलट के लिए ड्रग्स के नशे को लेकर नियम अलग है।

0: पहली बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो पहली गलती मानकर उड़ान भरने से रोक दिया जाता है और नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाता है। पायलट अपनी ड्यूटी पर तभी लौट सकते हैं जब नशा पूरी तरह से छूट चुका हो। दूसरी बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई यानी दूसरी गलती हुई तो लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड होता है और तीसरी बार अगर ऐसा हुआ तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर पायलट ने ड्रग टेस्ट देने से इनकार किया तो भी लाइसेंस 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और नशा मुक्ति प्रोग्राम से जुड़ना होता है। दूसरी बार अगर टेस्ट देने से मना किया तो लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड होता है और तीसरी बार भी अगर ऐसा किया तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाता है। यानी पायलट के लिए नशा करके फ्लाइट उड़ाना एयर ऑपरेशंस में एक बड़ा अपराध है, इसीलिए पायलट को माफी नहीं मिलती बल्कि एक्शन होता है। हालांकि एयर इंडिया कह रहा है कि अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकना है एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: विपक्षी हंगामे के बीच गृह मंत्री का ऑफर, सदन में हो जाए चर्चा, मैं पूरे समय बैठूंगा, दूंगा जवाब, राहुल गांधी बोले, सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर, आज सदन का आखिरी दिन। 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की शिरकत, एनडीए सांसदों ने निकाली बाइक रैली। रांची छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में एबीवीपी। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बदलाव, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले छात्रों शिक्षण संस्थाओं के साथ होगी चर्चा, उच्च स्तरीय कमेटी का होगा गठन। और एयर इंडिया मामले में आज तक के पास मेंटेनेंस रिपोर्ट, एक मिनट में आए 3 बार हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट, 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान। संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने वाला है लेकिन राजनीति में हंगामा लगातार जारी है। बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष सदन को चलने दे। जवाब में राहुल गांधी बोले इस्तीफा दें तो बात होगी।
1: संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले
2: गोपाल जी, व्हाट डू वांट टू से टू टू केसी बेन गोपाल जी,
3: ये जेपीसी में भेजा जाए।
4: इसके बाद मुझे मौका मिला,
2: मैंने दिया तो समय आपको।
5: गुरुवार को संसद का मानसून सत्र खत्म होने से पहले बुधवार को भी न संसद का हंगामा थमा, न चर्चा हुई, न संसद नियम से चल पाई, लेकिन अमित शाह का जवाबी पलटवार ऐसा आया कि अब राहुल गांधी पर गोल पोस्ट बदलने का बीजेपी का आरोप और गहरा हो गया।
6: सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है।
5: जंतर मंतर प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह के बयान की मांग करते राहुल गांधी को एक तरह से सीधी चुनौती थी। अमित शाह ने बुधवार दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू कर गुरुवार दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए राजी होने की न सिर्फ बात कही बल्कि स्पीकर ओम बिरला को अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आप विपक्ष से चर्चा करके आपसी सहमति से आज से जितने समय जितने घंटे आप उचित समझे उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। जंतर मंतर पर संसद में खुद के बयान को लेकर पहली बार आए अमित शाह के इतने स्पष्ट बयान के बाद राहुल गांधी का जवाब आता है। राहुल कहते हैं कि हमें उनकी कल्पनाओं में दिलचस्पी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री ये बताएं कि पैलेट गन से गोली किसने चलवाई।
7: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग एंड व्हेन आई से वी I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students?
5: जंतर मंतर पर संसद में अमित शाह के बयान की मांग को लेकर लगातार हंगामा चलता है। संसद के अंदर हंगामे से लेकर परिसर में मकर द्वार के बाहर तक जवाबी नारेबाजी होती रही।
8: मैं बहुत निराश हूँ। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी होते हैं।
5: अमित शाह ने जब ये साफ कहा है कि सरकार चर्चा से कतई भाग नहीं रही, सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ।
6: लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा?
7: इस 20 दिन के लिए गायब हो गए, यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह, उनके घर के सामने जाइए वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए।
4: इस बीच सरकार ने एफसीआरएस संशोधन बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है, जिसे मंजूरी मिल गई। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, लेकिन लड़ाई मेरा जवाब बनाम तेरा जवाब पर चलती रही।
9: आपको पता है कि जब जब गृह मंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं इनकी खाट खड़ी हो जाती है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कौन सा समझौता कर लिया चीन के साथ, एफसीआरए में जो है किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रहा है, तो सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। इसीलिए गृहमंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते, तो गृहमंत्री जी को कैसे नहीं सुनेंगे? तो हंगामा करो।
10: रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? सरकार,
11: आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उनपे लाठी बरसाते हो, आप उनपे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उनपे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस।
4: राज्यसभा में गृह मंत्री को लेकर खड़गे ने वार किया, कहा कि वो रोज नहीं आते। नड्डा बोले, आप चर्चा से भाग रहे हैं।
12: मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा, ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको।
13: माननीय नड्डा जी,
14: ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और आप चर्चा से भागो मत।
4: 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चलते आंदोलन के बीच हंगामे के साथ शुरू हुई संसद में हंगामे के साथ मानसून सत्र पूरा होने जा रहा है।
0: झारखंड में छात्रों के धरना और आंदोलन करते 19 दिन हो चुके हैं। झारखंड की परीक्षाओं में धांधली की रोज नई किश्त सामने आ रही है। पता ये चला कि भर्ती प्रक्रिया में 10 लाख से 50 लाख तक के रेट लगाए गए और अभय तिवारी सब कुछ सेट करता रहा, जिसमें आयोगों के बड़े बड़े अधिकारी तक दावा करते हैं कि वो शामिल थे।
15: आपने मूसलाधार बारिश के बीच छात्रों के आंदोलन की आग देखी। आपने विधानसभा घेराव के दौरान इन छात्रों का हौसला देखा। आपने छात्रों पर रांची पुलिस की ज्यादती देखी। छात्रों पर लाठियां बरसते देखा और उन्हें एक एक कर घायल होते देखा।
16: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो,
17: पूरे देश के युवाओं पर लाठी चले,
16: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, लाठी चार्ज कर रही है पुलिस, हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
15: रांची में दो दिन पहले क्या क्या हुआ इसे पूरे देश ने देखा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सहानुभूति के बजाय पुलिस का बचाव करते दिखे।
18: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है। अध्यक्ष महोदय, जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आता।
15: सोरेन यहीं ठहर जाते तब भी गनीमत होती, लेकिन अब वो जुल्म पर उतर आए हैं, बदले पर उतर आए हैं। खबर है कि रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
13: घड़ी में छात्रों की संख्या बढ़ने लगती थी वो आज अब आधे से भी कम होने लगी है। ज्यादातर छात्र या तो जा चुके हैं या इस समय धरनास्थल पर मौजूद नहीं है। बीती रात प्रशासन यहां पर आया। छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई और अब इस उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोग?
19: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी, अब सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी। अब इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था। जो हम लोग का लाइट वो जल रहा था जो जनरेटर से हम लोग का चल रहा था।
20: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। सरकार ये बात समझती है इसलिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये दबाव उस सच को नहीं दबा सकता जो एक एक कर सामने आ रहा। सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली।
21: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही राज्य की सीआईडी के सामने अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने सीआईडी से पूछताछ में बताया है कि कैसे अलग अलग परीक्षाओं में लाखों रुपए में नौकरी की डील हुई। अभय तिवारी ने यह बताया है कि उसने किन परीक्षाओं में करोड़ों की राशि की वसूली की, कैसे एजेंट्स के जरिए जो नियोक्ता एजेंसियां थी उनको लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में सीआईडी अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि सीआईडी की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं उनका यह कहना है कि सीबीआई जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक रांची।
0: क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टियां जेंजीज पर डोरे डाल रही हैं? सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2027 में यूपी से लेकर देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इन चुनावी राज्यों में जेंजी वोटर्स एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। सियासी पार्टियों को मैसेज बहुत ही क्लियर है, साफ है, जहां जेंजीज वहां पड़ला भारी। फिर चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या संघ प्रमुख मोहन भागवत या फिर विपक्ष, हर कोई जेंजीज को अपने पाले में खींचने के लिए भरपूर कोशिश में जुटा है।
22: जेन जी के सहारे देश के चुनाव सारे। कैसे जेन जी को लुभाने में जुटा देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जेन जी वोटर की प्लानिंग शुरू। जंतर मंतर से ताकत दिखाई, सबको जेन जी की याद आई। जेन जी साथ आएगा तो चुनाव जिताएगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ जेन जी ने दम दिखाया तो सिस्टम को हिला डाला। इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, लेकिन जेन जी की ताकत का एहसास हर सियासी पार्टी को हो गया।
23: लाखों युवाओं से मैं मिला,
24: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि
22: पीएम मोदी इंस्टा पर आ गए और जेन जी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की और आज भी पीएम मोदी देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी को मैसेज दे रहे हैं। जी हां, मौका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी के विमोचन का था, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा मैसेज जेन जी को दिया।
1: रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है।
22: जेन जी की ताकत हर कोई समझ रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जेन जी आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर संघर्ष के लिए आगे आ रहा है। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है, इसलिए ये अपनी समस्याओं को केवल निजी चर्चा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें सार्वजनिक बहस का विषय बना देती है। भारत में जेन जी ने विरोध का एक नया मॉडल विकसित किया है। छात्र केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड, हैशटैग कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है।
2: सारे जेन जी की जगह ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, आप लोगों का स्वागत है। इस भारत को आप ही लोगों को संभालना है, क्योंकि आप लोगों की आबादी 65% है। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे आके सुनते हैं, आप लोगों की बातों पर इतना गौर किया जा रहा है इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो मैं सारे जेन जी को प्रणाम नमन करता हूँ।
22: राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम के कैंपेन से खुद को जेन जी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं।
3: क्या है, जेन जी में सेल्फीज बड़ी कॉमन है,
5: तो चलिए
8: आप सब तैयार है जोर के साथ सेल्फी के लिए।
5: मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो।
22: तो जेन जी की ताकत को आरएसएस ने भी समझा है और जाना है, तभी तो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी के साथ संवाद किया।
25: जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
26: बिल्कुल
25: उसको ठीक करना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है।
22: आज जेन जी की आवाज को सियासी पार्टियां अनसुना नहीं करना चाहती तो उसके पीछे बड़ी वजह है। 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावी राज्यों में युवा मतदाता सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की संख्या 22.78% है, जबकि यूपी में 18 से 29 साल के उम्र के लोग 21.19%, गुजरात में 23.32%, पंजाब में 21.44%, उत्तराखंड में 22.18%, हिमाचल प्रदेश में 21.91%, मणिपुर में 23.74% और गोवा में 19.60% आबादी 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की है।
0: पूरे पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। इमरान खान जिंदा हैं या जेल के अंदर उन्हें मार दिया गया? आपको बता दें कि अमेरिका में बैठे एक पाकिस्तानी पत्रकार ने दावा यह किया कि रावलपिंडी की आदियाला जेल में इमरान खान नहीं रहे। पत्रकार वजाहत सईद खान ने यह भी दावा किया है कि GHQ यानी कि पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर के 3 ऑफिसर्स के हवाले से उन्हें यह खबर मिली है।
22: इमरान खान जिंदा है या मर गए, सच क्या है? इमरान खान की मौत की खबर खुद फैली या फैलाई गई? इमरान की खबर में सच्चाई है या मुनीर का कोई गेम प्लान है? इमरान की बहनें क्या बोल रही हैं? पाकिस्तानी सेना क्या बोल रही है?
6: मैं मर जाऊंगा जेल में, लेकिन मैं इस फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा।
22: रावलपिंडी की अदियाला जेल के अंदर क्या हुआ? इनसाइड स्टोरी क्या है? कहा तो 3 साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान की रिहाई के लिए बड़े आंदोलन का ऐलान होता है, और कहां अचानक से खबर आती है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं रहे। इमरान खान की मौत की खबर पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है। पहले आपको बता दें कि अमेरिका में बैठे एक पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत सईद खान दावा करते हैं कि अदियाला जेल में बंद इमरान खान की मौत हो गई है। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें ये खबर पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर के 3 अफसरों के हवाले से आई है।
7: अफसरान जो GHQ में हैं, कम से कम 3 अफसरान का ये पर्सपेक्टिव है, जाती पर्सपेक्टिव है। 3 अफसर्स ने अलग अलग तरीकों से ये इजहार किया है that Imran Khan is no longer with us, and that is the reason why the Pakistan Army and the Army Chief are keeping him from the rest of the country.
22: वजाहत सईद खान पाकिस्तानी सेना के करीबी पत्रकारों में गिने जाते हैं। उन्हें इमरान खान समर्थक पत्रकार भी माना जाता है। वो एमी पुरस्कार के लिए नामांकित हो चुके हैं और वर्तमान में पाकिस्तान में जेल की सजा से बचने के लिए अमेरिका में रहते हैं। इसीलिए इमरान खान की बहनें रावलपिंडी की जेल पहुंच जाती हैं और जेल में लागू कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और बढ़ती आशंकाओं के बीच PTI ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कल रात 10 बजे तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई तो पूरा पाकिस्तान ठप कर दिया जाएगा।
6: हमारा SOP है कि सिवाय फैमिली के और पर्सनल डॉक्टर की उनकी हेल्प पे इमरान खान का ये SOP है कि कोई और बात नहीं करेगा। हर एक ने मुंह खोल लिया, हर एक ने तमाशा बना दिया उनका, और अब जवाब दें सारे जिन्होंने शुरू किया है, ये जो एजेंसियों की बातें शुरू की हैं जिन्होंने, अब जवाब दें। जबकि वजाहत साहब ने बचा दिया है कि जी वो उनको तो जेल में खत्म कर दिया, ये कहा है ना कुछ इस किस्म की बात की, मुझे नहीं पता, मैंने सुना नहीं है, मुझे यहाँ के कई लोगों ने बताया।
22: हालांकि इमरान खान की मौत के दावों पर पाकिस्तानी सेना ने भी अपना बयान जारी किया है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने कहा है कि इमरान खान जिंदा है और अदियाला जेल में ही बंद है। लेकिन इमरान खान की मौत की खबर फैलने के बाद इमरान खान की बहनें अदियाला जेल के बाहर इंतजार करती रहीं, लेकिन उन्हें जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। आपको बता दें कि इमरान खान की बहनों की अपने भाई से मुलाकात करीब 9 महीने पहले हुई थी। इमरान की बहनों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार कहती है कि इमरान खान से मिलने के बाद उनकी बहनें बाहर आकर राजनीतिक बयान देती हैं, जिससे पाकिस्तान का माहौल बिगड़ जाता है। लेकिन अब इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि वो लिखित में ये बयान देने को तैयार हैं कि वो इमरान से मिलकर कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगी। इसके बावजूद उन्हें मिलने की इजाजत नहीं मिल रही।
6: उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई सियासी बात बाहर ना आके करें तो हम उनको कह रहे हैं कि बहनों की मुलाकात करवा दें। हमने पूरी तरीके से इत्तेफाक किया है बहनों ने, जब कोई सियासी बात
22: करेंगे। इमरान खान की बहनों का कहना है कि उनका शक बेबुनियाद नहीं है। उज्मा खान ने कल भी कहा कि आखिरी बार जब उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई थी तब उन्होंने दो टूक कहा था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिफ मुनीर उन्हें मरवा देगा। यानी ये उनकी बहनों का शक नहीं बल्कि खुद इमरान खान का दावा था।
6: उनकी जिंदगी खतरे में है, जिंदगी से खतरे की जो आखिरी बात में मुलाकात थी, पहली चीज उन्होंने कहा था
4: कि ये नहीं कहा कि मैं मुझे शक है मार देंगे, मुझे पहले कहा कि आसिम मुनीर मुझे मार देगा। देखिए ये क्लियर थी, तो ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि नीयतें खराब है।
22: पाकिस्तान के लोगों का ये भी कहना है कि आसिम मुनीर के दिमाग में इमरान खान को ठिकाना लगाने का प्लान काफी पहले से चल रहा है
9: कि अगर आसिम मुनीर का इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल है जो कि है, ये फैक्ट है, हकीकत है, इमरान खान की जिंदगी और कैद और बंद से मुतल्लिक 100% कंट्रोल उसका है, क्यों ये बात बाहर बताएगा कि आने देगा कि भाई इमरान खान नहीं रहे। लेकिन मेरा सवाल है क्यों बताएगा खुद की खबर है 100% कि ये अवाम की जहन साजी कर रहे हैं, क्योंकि आसिम मुनीर ने वादा किया हुआ है इमरान खान को रास्ते से हटाने का, और उस वादे को अगर वो पूरा कर देता है तो वो खुद सदर भी बन सकता है, और सदर बनने की ख्वाहिश उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी इस वक्त ख्वाहिश है। सीसी की तरह वो यूनिफॉर्म के अंदर प्रेसिडेंट बन के बैठना चाहता है ताकि वो स्टेट प्रोटोकॉल के साथ जाके ट्रंप को भी मिले और सऊदी बादशाहों से भी मिले और तीसरे चौथे नंबर के ऊपर जाके ना खड़ा हो। एक तो ये मामला है, दूसरा फौज अगले 10 साल तक इसका राज चले, फौज का राज तो हमेशा से रहा है लेकिन इसका राज अगले 10 साल तक चले, वो ये चाहते हैं।
22: इमरान खान की मौत की सनसनीखेज अफवाह के बीच इमरान खान की पार्टी के भीतर भी गद्दारी को लेकर बड़ा बवाल मच गया है। ये बवाल भी इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर झूठी बातें फैलाने को लेकर मचा है। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनकी ही पार्टी की सांसद मशाल यूसुफ जई ISI के इशारे पर ये अफवाह फैला रही है कि जेल में इमरान खान की तबीयत बिगड़ रही है। मशाल यूसुफ जई वकील भी हैं और इमरान खान की पार्टी से सेनेटर भी हैं। अब उन्हें पार्टी से निकालने की बात हो रही है। दूसरी तरफ मशाल ने भी चुनौती दी है कि अगर पार्टी उन्हें निकालना चाहती है तो निकाल दे। वहीं पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर और अब पत्रकार आदिल राजा ने मशाल यूसुफ जई और ISI से उनके कनेक्शन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मशाल यूसुफ जई ने ही कहा है कि अगर इमरान खान मान ले कि आसिम मुनीर को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं।
9: कम राजा साहब से किसी ने मशाल यूसुफ जई या मिशालो बी जमालो का जिक्र किया। मिशालो बी जमालो जो है वो बड़े अरसे से ऑफर कर रही है, उसी ने बताया, जो ISI ने खबर चलाई, जो PTI की लीडरशिप को बताई कि इमरान खान की तबीयत बहुत खराब है, और साथ ही उसी ने कोर कमेटी को आके कहा, मुसलसल कहा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हमायत करें, फौजी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत करें और उसके नतीजे के अंदर इमरान खान छूट जाएंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर ले इमरान खान को तो बाद में ये छोड़ेंगे, लेकिन पहले आसिम मुनीर को आईनी तौर के ऊपर अपना बाप बना के बैठा दें और उसके बाद ये इमरान खान को छोड़ देंगे। उसके बारे में सलमान अकरम राजा से जो बातचीत की गई, पहले ये एक वीडियो मैं फेयर कमेंट के लिए चाहता हूँ कि आप सुन लें, फिर मैं इसके ऊपर बात करूंगा। कुछ सेकंड का वीडियो है।
10: सदर साहब से जो मुलाकात हुई थी, इस वक्त खबरें गिर्दिश की थी कि आपको खान साहब ने कहा था कि मिशाल यूसुफ़ज़ई साहब को फारिग कर दिया जाए, और ये जब आपके पास बात थी तो आपने किया क्यों नहीं?
11: देखें देखें सुन, बिल्कुल ये आई थी, देखें सुन लीजिए, फारिग करने का क्या मतलब है? देखिए सेनेट से तो मैं फारिग नहीं कर सकता ना, सेनेट में वो मौजूद है, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं उनको सेनेट से फारिग करूँ, पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है।
0: और इसी के साथ हम यार रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे।

आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: विपक्षी हंगामे के बीच गृह मंत्री का ऑफर, सदन में हो जाए चर्चा, मैं पूरे समय बैठूंगा, दूंगा जवाब, राहुल गांधी बोले सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर, आज सदन का आखिरी दिन। 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की शिरकत, एनडीए सांसदों ने निकाली बाइक रैली। रांची छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में एबीवीपी। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बदलाव, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले छात्रों शिक्षण संस्थाओं के साथ होगी चर्चा, उच्च स्तरीय कमेटी का होगा गठन। और एयर इंडिया मामले में आज तक के पास मेंटेनेंस रिपोर्ट, एक मिनट में आए 3 बार हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट, 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान। संसद का मानसून सत्र खत्म होने वाला है लेकिन राजनीति में हंगामा लगातार जारी है। बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष सदन को चलने दे। जवाब में राहुल गांधी बोले इस्तीफा दें तो बात होगी।
1: संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले
2: गोपाल जी, व्हाट डू यू वांट टू से टू टू केसी वेणुगोपाल जी,
3: ये जेपीसी में भेजा जाए।
4: के बाद मुझे मौका मिला,
2: मैंने दिया तो समय आपको।
5: गुरुवार को संसद का मानसून सत्र खत्म होने से पहले बुधवार को भी न संसद का हंगामा थमा, न चर्चा हुई, न संसद नियम से चल पाई, लेकिन अमित शाह का जवाबी पलटवार ऐसा आया कि अब राहुल गांधी पर गोल पोस्ट बदलने का बीजेपी का आरोप और गहरा हो गया।
6: सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है।
5: जंतर मंतर प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह के बयान की मांग करते राहुल गांधी को एक तरह से सीधी चुनौती थी। अमित शाह ने बुधवार दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू कर गुरुवार दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए राजी होने की न सिर्फ बात कही बल्कि स्पीकर ओम बिरला को अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आप विपक्ष से चर्चा करके आपसी सहमति से आज से जितने समय जितने घंटे आप उचित समझे उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। जंतर मंतर पर संसद में खुद के बयान को लेकर पहली बार आए अमित शाह के इतने स्पष्ट बयान के बाद राहुल गांधी का जवाब आता है। राहुल कहते हैं कि हमें उनकी कल्पनाओं में दिलचस्पी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री ये बताएं कि पैलेट गन से गोली किसने चलवाई।
7: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग एंड व्हेन आई से वी I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students?
5: जंतर मंतर पर संसद में अमित शाह के बयान की मांग को लेकर लगातार हंगामा चलता रहा। संसद के अंदर हंगामे से लेकर परिसर में मकर द्वार के बाहर तक जवाबी नारेबाजी होती रही।
8: मैं बहुत निराश हूँ। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी होते हैं।
5: अमित शाह ने जब ये साफ कहा कि सरकार चर्चा से कतई भाग नहीं रही, सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ।
6: लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा?
4: इस 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए गायब हो गए, यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह, उनके घर के सामने जाइए वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए।
9: इस बीच सरकार ने एफसीआरएस संशोधन बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है, जिसे मंजूरी मिल गई। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, लेकिन लड़ाई मेरा जवाब बनाम तेरा जवाब पर चलती रही।
10: आपको पता है कि जब जब गृह मंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं इनकी खाट खड़ी हो जाती है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कौन सा समझौता कर लिया चीन के साथ, एफसीआरए में जो है किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रहा है, तो सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। इसीलिए गृहमंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते, तो गृहमंत्री जी को कैसे नहीं सुनेंगे? तो हंगामा करो, हंगामा करो, हंगामा करो।
11: रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? सरकार।
12: आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उनपे लाठी बरसाते हो, आप उनपे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उनपे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस।
9: राज्यसभा में गृह मंत्री को लेकर खड़गे ने वार किया, कहा कि वो रोज नहीं आते। नड्डा बोले, आप चर्चा से भाग रहे हैं।
13: मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा, ये रोज का यही धंधा हो गया, आप बुलाइए उनको।
14: माननीय नड्डा जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और आप चर्चा से भागो मत।
9: 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चलते आंदोलन के बीच हंगामे के साथ शुरू हुई संसद में हंगामे के साथ मानसून सत्र पूरा होने जा रहा है।
0: झारखंड में छात्रों के धरना और आंदोलन करते 19 दिन हो चुके हैं। झारखंड की परीक्षाओं में धांधली की रोज नई किश्त सामने आ रही है। पता ये चला कि भर्ती प्रक्रिया में 10 लाख से 50 लाख तक के रेट लगाए गए और अभय तिवारी सब कुछ सेट करता रहा, जिसमें आयोगों के बड़े बड़े अधिकारी तक दावा करते हैं कि वो शामिल थे।
15: आपने मूसलाधार बारिश के बीच छात्रों के आंदोलन की आग देखी। आपने विधानसभा घेराव के दौरान इन छात्रों का हौसला देखा। आपने छात्रों पर रांची पुलिस की ज्यादती देखी। छात्रों पर लाठियां बरसते देखा और उन्हें एक एक कर घायल होते देखा।
16: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो,
17: पूरे देश के युवाओं पे लाठी चले,
16: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
15: रांची में 2 दिन पहले क्या क्या हुआ इसे पूरे देश ने देखा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सहानुभूति के बजाय पुलिस का बचाव करते दिखे।
18: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है। दक्षिण जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आता।
15: सोरेन यहीं ठहर जाते तब भी गनीमत होती, लेकिन अब वो जुल्म पर उतर आए हैं, बदले पर उतर आए हैं। खबर है कि रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
19: घड़ी में छात्रों की संख्या बढ़ने लगती थी, वो आज अब आधे से भी कम होने लगी है। ज्यादातर छात्र या तो जा चुके हैं या इस समय धरना स्थल पर मौजूद नहीं है। बीती रात प्रशासन यहां पर आया। छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई, और अब इस उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोग की?
20: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी और सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी। अब इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था। जो हम लोग का लाइट वो जल रहा था जो जनरेटर से हम लोग का चल रहा था।
21: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। सरकार ये बात समझती है, इसलिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है। लेकिन ये दबाव उस सच को नहीं दबा सकता जो एक एक कर सामने आ रहा। सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। ACF के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने CDPO परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली।
22: झारखंड में JPSC और JSSC की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही राज्य की CID के सामने अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने CID से पूछताछ में बताया है कि कैसे अलग अलग परीक्षाओं में लाखों रुपए में नौकरी की डील हुई। अभय तिवारी ने यह बताया है कि उसने किन परीक्षाओं में करोड़ों की राशि की वसूली की, कैसे एजेंट्स के जरिए जो नियोक्ता एजेंसियां थी उनको लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में CID अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और TDPL कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि CID की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनका यह कहना है कि CBI जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक रांची।
0: क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टियां जेंजीज पर डोरे डाल रही हैं? सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2027 में यूपी से लेकर देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इन चुनावी राज्यों में जेंजी वोटर्स एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। सियासी पार्टियों को मैसेज बहुत ही क्लियर है, साफ है, जहां जेंजीज वहां पड़ला भारी। फिर चाहे PM नरेंद्र मोदी हो या संघ प्रमुख मोहन भागवत या फिर विपक्ष, हर कोई जेंजीज को अपने पाले में खींचने के लिए भरपूर कोशिश में जुटा है।
23: जेन जी के सहारे देश के चुनाव सारे। कैसे जेन जी को लुभाने में जुटा देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जेन जी वोटर की प्लानिंग शुरू। जंतर मंतर से ताकत दिखाई, सबको जेन जी की याद आई। जेन जी साथ आएगा तो चुनाव जिताएगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ जेन जी ने दम दिखाया तो सिस्टम को हिला डाला। इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, लेकिन जेन जी की ताकत का एहसास हर सियासी पार्टी को हो गया।
24: लाखों युवाओं से मैं मिला,
25: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि
23: पीएम मोदी इंस्टा पर आ गए और जेन जी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की। और आज भी पीएम मोदी देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी को मैसेज दे रहे हैं। जी हां, मौका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी के विमोचन का था, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा मैसेज जेन जी को दिया।
1: रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है।
23: जेन जी की ताकत हर कोई समझ रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जेन जी आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर संघर्ष के लिए आगे आ रहा है। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है, इसलिए ये अपनी समस्याओं को केवल निजी चर्चा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें सार्वजनिक बहस का विषय बना देती है। भारत में जेन जी ने विरोध का एक नया मॉडल विकसित किया है। छात्र केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड, हैशटैग कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है।
2: सारे जेन जी की जगह ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, आप लोगों का स्वागत है। इस भारत को आप ही लोगों को संभालना है, क्योंकि आप लोगों की आबादी 65% है। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे आके सुनते हैं, आप लोगों की बातों पर इतना गौर किया जा रहा है इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो मैं सारे जेन जीस को प्रणाम नमन करता हूँ।
23: राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम के कैंपेन से खुद को जेन जी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं।
3: क्या है, जेन जी में सेल्फीज बड़ी कॉमन है,
5: तो चलिए
7: हम सब तैयार है सौ की सौ सेल्फी के लिए।
8: मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो।
23: तो जेन जी की ताकत को आरएसएस ने भी समझा है और जाना है, तभी तो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी के साथ संवाद किया।
26: अभी जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
27: बिल्कुल
26: उसको ठीक करना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है।
23: आज जेन जी की आवाज को सियासी पार्टियां अनसुना नहीं करना चाहती, तो उसके पीछे बड़ी वजह है। 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावी राज्यों में युवा मतदाता सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की संख्या 22.78% है, जबकि यूपी में 18 से 29 साल के उम्र के लोग 21.19%, गुजरात में 23.32%, पंजाब में 21.44%, उत्तराखंड में 22.18%, हिमाचल प्रदेश में 21.91%, मणिपुर में 23.74% और गोवा में 19.60% आबादी 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की है।
0: और सिर्फ जेन जीज ही नहीं बल्कि जेन अल्फा भी देश में अब अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। जुलाई में महीने में जंतर मंतर से उठा जेन जी का ज्वार अब जेन अल्फा तक पहुंच चुका है। जेन जी अगर बेरोजगारी, भर्ती में भ्रष्टाचार पर घेरता है तो जेन अल्फा स्कूलों की हालत, सड़क की बदहाली पर सीधा सीधा सवाल करने लगा है। और इसीलिए अब बीजेपी हो या विपक्ष, हर कोई जेन जी और जेन अल्फा के साथ सीधा कनेक्शन साधने में जुट चुका है।
23: जंतर मंतर के आंदोलन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माइलेज लेने की कोशिश की और अखिलेश यादव ने यूपी के मुद्दों को जंतर मंतर से लेकर संसद तक सामने रखा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा।
4: सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
23: तो अब यूपी में सीएम योगी और बीजेपी की पूरी मशीनरी जेन जी को लुभाने में जुट गई है। यूपी सरकार के मंत्री मनोज पांडे रायबरेली में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करते हैं और जेन जी को साधने की कोशिश करते हैं।
6: उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपनी दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है।
10: समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेताजी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे।
23: यूपी में योगी सरकार और बीजेपी ने जेन जी संवाद के लिए कैंपेन शुरू किया है जिसमें योगी सरकार के मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेन जी चौपाल करेंगे। विधानसभा बार टीमें तैयार करने की तैयारी की जा रही है।
11: चुनावी साल नजदीक है, ऐसे में अब राजनीतिक दलों को यह समझ आ चुका है कि केवल परंपरागत नारों से ही काम नहीं चलने वाला है। उन्हें मालूम पड़ गया है जेन जी का जो उबाल पूरे देश में इस वक्त देखने को मिला है अपने मुद्दों को लेकर वो मामूली तो नहीं, और इसलिए बीजेपी अब अपनी यूथ विंग के जरिए स्कूल कॉलेजों में युवाओं से युवाओं के संपर्क कराकर संपर्क साधने जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार के मंत्री भी अब इसमें आ गए हैं।
23: बड़ी बात यह है कि सिर्फ जेन जी ही नहीं बल्कि जेन अल्फा ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। अब यूपी के हमीरपुर में ही देख लीजिए, स्कूल के रास्ते में आने वाले गड्ढों के खिलाफ जेन अल्फा तिरंगा लेकर निकल पड़ता है। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। ये बच्चे डीएम ऑफिस तक पहुंचते हैं और जेन अल्फा के आक्रोश के बाद प्रशासन भरोसा देता है कि अब जल्द ही यहां 1,81,00,000 रुपए खर्च कर सड़क बनवाई जाएगी।
12: लेकिन यहाँ कोई सुनाई नहीं करता, बस बता देते हैं जा जा जा, एक हफ्ते में काम चालू हो जाए।

0: जन अल्फा के आगे झुकना भी सियासी पार्टियों की मजबूरी क्यों है वो भी आपको समझाते हैं। भारत के कानूनी नियमों के अनुसार वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 साल है। इस नियम के हिसाब से जिन अल्फा के बच्चे साल 2028 से 2042 के बीच वोटर बनने के योग्य होंगे, इस पीढ़ी के सबसे बड़े बच्चे जिनका जन्म 2010 से 2011 के बीच हुआ था, वो साल 2028 से 2029 तक 18 साल के हो जाएंगे। यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में इनका एक छोटा हिस्सा पहली बार मतदान करेगा और इसीलिए सियासी पार्टियां ना जेन जी को नजरअंदाज कर सकती हैं और ना ही जेन अल्फा को। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
1: सोचिए कि आप पूरी फैमिली के साथ एक फ्लाइट से जा रहे हो और अचानक से हवा में विमान जोर जोर से हिलने लगे, आप सीट से नीचे गिर जाए, आपके आसपास के लोग घायल हो चुके हों, ऊपर से कैबिन में रखे हुए सामान नीचे आने लगे और आप समझ ही नहीं पाए कि करना क्या है। आप कुछ नहीं कर सकते, अगर करना चाहें भी तो सिर्फ ऊपर वाले को याद करेंगे। और जब आपको पता ये चल जाए कि इस फ्लाइट को जो पायलट उड़ा रहा था वो गांजे के नशे में था, तो सोचिए होगा क्या। यही हुआ है एयर इंडिया की एक फ्लाइट के साथ।
2: क्या एयर इंडिया के पायलट ने गांजा फूंककर 137 सवारियों की जिंदगी खतरे में डाली? गांजा फूंकने वाले पायलट पर क्या एक्शन होगा? आगे ऐसा ना हो इसकी क्या गारंटी है? ये तस्वीरें डराने वाली हैं। 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें देखिए क्या हाल है। लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, सीटें उखड़ी पड़ी है, लोग घायल है और ये तब का वीडियो है जब सब कुछ हो चुका था। क्या हुआ था फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में, आगे आपको बताएंगे। उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंडिंग की बात की तस्वीरें हैं। पैसेंजर घायल है, केबिन क्रू के सदस्य घायल है, किसी की आंख पर चोट है, किसी के हाथ पर, किसी के गले पर। ये सब लोग इसी फ्लाइट में सवार थे। चार अगस्त को फुकेट से दिल्ली के लिए ये फ्लाइट चली थी AI-2379। फ्लाइट जब हवा में थी तो पैसेंजर्स को अचानक से टर्बुलेंस का एहसास हुआ। फ्लाइट के केबिन में रखा सामान लोगों के ऊपर गिरने लगा, लोग अपनी सीटों से गिर गए और चोटिल हो गए। अचानक से जहाज हवा में ही 300 फीट नीचे चला गया। फ्लाइट के अंदर चीख पुकार मच गई। इस घटना में 20 यात्रियों और 4 केबिन क्रू मेंबर्स को चोटें आईं। फ्लाइट में 137 यात्री सवार थे जिनमें 3 छोटे बच्चे भी थे और इनके अलावा 2 पायलट और 6 केबिन क्रू के सदस्य थे। अब खबर आ रही है कि इस फ्लाइट को उड़ाने वाला मेन पायलट गांजे के नशे में था। इस पायलट का दूसरा ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले पायलट का जब मेडिकल टेस्ट किया गया तो उसके शरीर में गांजे का सब्सटेंस पाया गया। DGCA ने फिलहाल प्लेन उड़ा रहे दोनों पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AIB ने कहा है कि जांच पूरी होने तक कोई नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए।
3: देखिए, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, मैंने उसको संज्ञान में नहीं लिया। अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो ये बड़ी गंभीर बात है और DGCA को इसको बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए। एयर इंडिया का जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई अभी तक, तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये बहुत ही अत्यंत संवेदनशील है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है।
4: दिस क्रिमिनल बिहेवियर, एयर इंडिया इज लायबल, दे क्रिमिनली दे मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड द गवर्नमेंट मस्ट टेक एग्जेम्पलरी एक्शन अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ एयर इंडिया एंड द प्रोसेसेस ऑब्वियसली व्हिच दे फॉलो आर नॉट रोबस्ट इनफ एंड दे हैव एंडेंजर्ड लाइव्स। दिस इज क्रिमिनल obviously which they follow are not robust enough and they have endangered lives. And this is criminal behavior and in fact there must be exemplary punishment levied on Air India and all those concerned.
2: Bataya ja raha hai ki jab chhatkon mein phans gaya tha aur phir achanak se 300 feet niche aa gaya, yatriyon ne dawa kiya

0: कि उड़ान भरने के डेढ़ घंटे के बाद फ्लाइट में झटके लगे। सुबह का वक्त था तो यात्री सो रहे थे। अब पता चला है कि फ्लाइट का पायलट गांजा पिए हुए था। पायलट दोनों बार डोप टेस्ट में फेल हो गया है। पायलट की डोप टेस्ट में मारिजुआना यानी गांजा की पुष्टि हुई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AAIB ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि विमान की ऊंचाई अचानक क्यों बदली, उस समय विमान के सिस्टम किस स्थिति में थे, मौसम और टर्बुलेंस की क्या भूमिका थी, पायलट्स ने क्या एक्शन लिया, विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड में क्या जानकारी है, यात्रियों और क्रू को किस तरह की चोटें आई, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या दर्ज है।
1: इनफैक्ट वी वांटेड टू गेट अ डायरेक्ट अपडेट फ्रॉम एयर इंडिया आल्सो ऑन द इंसिडेंट एंड वी वांटेड टू सी हाउ दे आर टेकिंग दिस इशू फ्रॉम देयर साइड एंड आई हैव टोल्ड टाइम एंड अगेन दैट फ्रॉम द मिनिस्ट्री सेफ्टी इन एविएशन is the topmost priority. There shouldn't be any compromise from any side, even the regulator or even the airlines or anyone. So this issue we have taken very, very seriously from the ministry side also. So we have just spoken to him as a preliminary task just to get an update. But I have to tell you that AIB has been given the task to continue on the investigation and we have good confidence on AIB. So I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what action, definitive action needs to be taken on this.
0: जिस विमान A320 में खराबी आई वो एयरबस है और वो फ्रांस में बनता है, इसीलिए AAIB की जांच में फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी और फ्रांस स्थित एयरबस के तकनीकी विशेषज्ञ भी मदद कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहें।

0: विपक्षी हंगामे के बीच गृह मंत्री का ऑफर, सदन में हो जाए चर्चा, मैं पूरे समय बैठूंगा, दूंगा जवाब, राहुल गांधी बोले सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर, आज सदन का आखिरी दिन। 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की शिरकत, एनडीए सांसदों ने निकाली बाइक रैली। रांची छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में एबीवीपी। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बदलाव, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले छात्रों शिक्षण संस्थाओं के साथ होगी चर्चा, उच्च स्तरीय कमेटी का होगा गठन। और एयर इंडिया मामले में आज तक के पास मेंटेनेंस रिपोर्ट, एक मिनट में आए 3 बार हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट, 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान। संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने वाला है लेकिन राजनीति में हंगामा लगातार जारी है। बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष सदन को चलने दे। जवाब में राहुल गांधी बोले इस्तीफा दें तो बात होगी।
1: संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले
2: वेणुगोपाल जी,
3: ये जेपीसी में भेजा जाए,
4: इसके बाद मुझे मौका मिला,
2: मैंने दिया तो समय आपको।
5: गुरुवार को संसद का मानसून सत्र खत्म होने से पहले बुधवार को भी न संसद का हंगामा थमा, न चर्चा हुई, न संसद नियम से चल पाई, लेकिन अमित शाह का जवाबी पलटवार ऐसा आया कि अब राहुल गांधी पर गोल पोस्ट बदलने का बीजेपी का आरोप और गहरा हो गया।
6: सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है।
5: जंतर मंतर प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह के बयान की मांग करते राहुल गांधी को एक तरह से सीधी चुनौती थी। अमित शाह ने बुधवार दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू कर गुरुवार दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए राजी होने की न सिर्फ बात कही बल्कि स्पीकर ओम बिरला को अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आप विपक्ष से चर्चा करके आपसी सहमति से आज से जितने समय जितने घंटे आप उचित समझे उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। जंतर मंतर पर संसद में खुद के बयान को लेकर पहली बार आए अमित शाह के इतने स्पष्ट बयान के बाद राहुल गांधी का जवाब आता है। राहुल कहते हैं कि हमें उनकी कल्पनाओं में दिलचस्पी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री ये बताएं कि पैलेट गन से गोली किसने चलवाई।
7: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग एंड व्हेन आई से वी I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students?
5: जंतर मंतर पर संसद में अमित शाह के बयान की मांग को लेकर लगातार हंगामा चलता है। संसद के अंदर हंगामे से लेकर परिसर में मकर द्वार के बाहर तक जवाबी नारेबाजी होती रही।
8: मैं बहुत निराश हूँ। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी होते हैं।
5: अमित शाह ने जब ये साफ कहा कि सरकार चर्चा से कतई भाग नहीं रही, सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ।
6: लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा?
7: इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए।
5: इस बीच सरकार ने एफसीआरए संशोधन बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है, जिसे मंजूरी मिल गई। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, लेकिन लड़ाई मेरा जवाब बनाम तेरा जवाब पर चलती रही।
2: आपको पता है कि जब जब गृह मंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं, इनकी खाट खड़ी हो जाती है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कौन सा समझौता कर लिया चीन के साथ, एफसीआरए में जो है किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रहा है, तो सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। इसीलिए गृहमंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते, तो गृहमंत्री जी को कैसे नहीं सुनेंगे? तो हंगामा करो।
4: रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? सरकार,
9: आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उनपे लाठी बरसाते हो, आप उनपे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उनपे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस।
5: राज्यसभा में गृह मंत्री को लेकर खड़गे ने वार किया, कहा कि वो रोज नहीं आते। नड्डा बोले, आप चर्चा से भाग रहे हैं।
10: मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है, किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा, ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको।
11: माननीय नड्डा जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और आप चर्चा से भागो मत।
5: 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चलते आंदोलन के बीच हंगामे के साथ शुरू हुई संसद में हंगामे के साथ मानसून सत्र पूरा होने जा रहा है।
0: क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टियां जेनजीज पर डोरे डाल रही हैं? सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2027 में यूपी से लेकर देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, और इन चुनावी राज्यों में जेनजी वोटर्स एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। सियासी पार्टियों को मैसेज बहुत ही क्लियर है, साफ है, जहां जेनजीज वहां पड़ला भारी। फिर चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या संघ प्रमुख मोहन भागवत या फिर विपक्ष, हर कोई जेनजीज को अपने पाले में खींचने के लिए भरपूर कोशिश में जुटा है।
12: जेन जी के सहारे देश के चुनाव सारे। कैसे जेन जी को लुभाने में जुटा देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम? 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जेन जी वोटर की प्लानिंग शुरू। जंतर मंतर से ताकत दिखाई, सबको जेन जी की याद आई। जेनजी साथ आएगा तो चुनाव जिताएगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ जेनजी ने दम दिखाया तो सिस्टम को हिला डाला। इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, लेकिन जेनजी की ताकत का एहसास हर सियासी पार्टी को हो गया।
13: लाखों युवाओं से मैं मिला,
14: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि
12: पीएम मोदी इंस्टा पर आ गए और जेन जी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की, और आज भी पीएम मोदी देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी को मैसेज दे रहे हैं। जी हां, मौका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी के विमोचन का था, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा मैसेज जेन जी को दिया।
15: रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं, इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़े। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है।
12: जेन जी की ताकत हर कोई समझ रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जेन जी आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर संघर्ष के लिए आगे आ रहा है। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है, इसलिए ये अपनी समस्याओं को केवल निजी चर्चा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें सार्वजनिक बहस का विषय बना देती है। भारत में जेन जी ने विरोध का एक नया मॉडल विकसित किया है। छात्र केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड, हैशटैग कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है।
16: सारे जेन जी की जगह ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, आप लोगों का स्वागत है। इस भारत को आप ही लोगों को संभालना है, क्योंकि आप लोगों की आबादी 65% है। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे आके सुनते हैं, आप लोगों की बातों पर इतना गौर किया जा रहा है इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो मैं सारे जेन जी को प्रणाम नमन करता हूँ।
12: राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम के कैंपेन से खुद को जेन जी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं।
17: क्या है, जेन जी में सेल्फीज बड़ी कॉमन है,
18: तो चलिए
19: आप सब तैयार हैं साथ के साथ सेल्फी के लिए।
20: मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो।
12: तो जेन जी की ताकत को आरएसएस ने भी समझा है और जाना है, तभी तो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी के साथ संवाद किया।
21: जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
22: बिल्कुल
21: उसको ठीक करना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है।
12: आज जेन जी की आवाज को सियासी पार्टियां अनसुना नहीं करना चाहती, तो उसके पीछे बड़ी वजह है। 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावी राज्यों में युवा मतदाता सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की संख्या 22.78% है, जबकि यूपी में 18 से 29 साल के उम्र के लोग 21.19%, गुजरात में 23.32%, पंजाब में 21.44%, उत्तराखंड में 22.18%, हिमाचल प्रदेश में 21.91%, मणिपुर में 23.74% और गोवा में 19.60% आबादी 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की है।
0: अब जांच चल रही है, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन सवाल अभी यह है कि जिन फ्लाइट से हम और आप रोजाना चलते हैं उन्हें किस तरह के पायलट्स उड़ा रहे हैं और पायलट के नशे को चेक करने के लिए सिस्टम क्या है। अगर कोई पायलट नशे में पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है।

0: अब जांच हो रही है और देखना होगा कि इस जांच का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मुख्य पायलट का ड्रग्स के नशे में पाया जाना एक बहुत बड़ी लापरवाही है। सोचिए उन 137 यात्रियों पर क्या बीती होगी जब 3 मिनट तक उन्होंने हवा में ये झटके महसूस किए होंगे। पता नहीं मन में क्या क्या ख्याल आए होंगे। कई बार ऐसा लगा होगा कि आज तो बचेंगे नहीं, और ये खुद इस फ्लाइट के यात्री बता रहे हैं।
1: ये दिखता है नेग्लिजेंस ऑफ द स्टाफ जो एयरलाइंस में पायलट हैं, और नेग्लिजेंस ऑफ जो सिस्टम है, क्योंकि उनको पता है कि ये करके हम बच सकते हैं, उसी लिए उन्होंने ये किया है। उनको पूरा का पूरा ये कॉन्फिडेंस है कि हम तो निकल जाएंगे।
2: जब फ्लाइट नीचे जा रही थी तो मेरे को सबसे ज्यादा चिंता हुई बच्चों की। ये हमारे पास में जो बैठा हुआ था, मेरा दोहेता बैठा हुआ था, मैंने जोर से उसको पकड़ के बेल्ट लगाई, उसमें वो हैंडल मेरे यहाँ पे घुस के रिब्स में दो में थोड़े चोट आई है। पर ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इतना मतलब फैमिलीज, इतने लोग बैठे हुए, 3 साल की बच्ची उछल के इतना पीछे तक चली गई, ये कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं यार। छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो जिंदगी भर के लिए हमारे बच्चे अब कह रहे हैं कि हमको बैठना ही नहीं कभी फ्लाइट में।
0: अब यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि हिंदुस्तान में पायलट्स के लिए नियम कायदे क्या है, ये कैसे जांचा जाता है कि पायलट नशे में है या नहीं। हर पायलट की प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट जांच होती है। पायलट के लिए नियम ये है कि वो उड़ान के 12 घंटे पहले तक शराब का नशा नहीं कर सकता, यानी उड़ान के दौरान शरीर में अल्कोहल की मात्रा 0 होनी चाहिए। इसके लिए प्री फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य किया गया है। इसी तरह से भारत के बाहर से आने वाली फ्लाइट के पायलट्स का पोस्ट फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट लिया जाता है। लेकिन प्री फ्लाइट या पोस्ट फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में केवल शराब का नशा ही चेक हो सकता है, ये ड्रग्स के नशे के लिए नहीं बना। जहां तक ड्रग्स के नशे की बात है तो आमतौर पर यह जांच नौकरी शुरू करने से पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती होने के समय, किसी दुर्घटना के बाद या फिर अचानक किसी दिन औचक आधार पर की जाती है। एयरलाइन कंपनियां हर साल अपने यहां करीब 10% फ्लाइट क्रू मेंबर्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स का औचक ड्रग टेस्ट लेते हैं, और सैंपल की जांच NABL सर्टिफाइड लैब में ही की जाती है। तो क्या भारत में ऐसे मामलों के लिए नियम कायदे कुछ ढीले हैं, और क्या सरकार को नियम बदलने होंगे?
3: That issue we are continuously studying it, and DGCA also we have asked updates on that. But I am telling you that we are taking it very, very seriously. And if we feel that it is not up to the mark, the present regulation, then we will respond in it very seriously and improve whatever.
0: Flight operations में नशा करना यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है, इसीलिए इसे बड़े अपराध की तरह देखा जाता है। यही वजह है कि नशे के आरोप सही पाए जाने पर DGCA सख्त एक्शन लेता है। प्री फ्लाइट टेस्ट में अगर पायलट को शराब के नशे में पाया जाता है तो पहली गलती पर लाइसेंस 3 महीने के लिए, दूसरी गलती पर 3 साल के लिए, और तीसरी गलती होने पर स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है। पोस्ट फ्लाइट टेस्ट में पहली गलती पर लाइसेंस 1 साल के लिए और दूसरी गलती पर स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है। पायलट के लिए ड्रग्स के नशे को लेकर नियम अलग है। पहली बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो पहली गलती मानकर उड़ान भरने से रोक दिया जाता है और नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाता है। पायलट अपनी ड्यूटी पर तभी लौट सकते हैं जब नशा पूरी तरह से छूट चुका है। दूसरी बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई यानी दूसरी गलती हुई तो लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड होता है, और तीसरी बार अगर ऐसा हुआ तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर पायलट ने ड्रग टेस्ट देने से इनकार किया तो भी लाइसेंस 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और नशा मुक्ति प्रोग्राम से जुड़ना होता है। दूसरी बार अगर टेस्ट देने से मना किया तो लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड होता है, और तीसरी बार भी अगर ऐसा किया तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाता है। यानी पायलट के लिए नशा करके फ्लाइट उड़ाना एयर ऑपरेशंस में एक बड़ा अपराध है, इसीलिए पायलट को माफी नहीं मिलती बल्कि एक्शन होता है। हालांकि एयर इंडिया कह रहा है कि अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। आज तक ब्यूरो।
4: पूरे पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर एक बहुत बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। इमरान खान जिंदा है या जेल के अंदर उन्हें मार दिया गया? आपको बता दें कि अमेरिका में बैठे एक पाकिस्तानी पत्रकार ने दावा यह किया कि रावलपिंडी की आदियाला जेल में इमरान खान नहीं रहे। पत्रकार वजाहत सईद खान ने यह भी दावा किया है कि GHQ यानी कि पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर के 3 ऑफिसर्स के हवाले से उन्हें यह खबर मिली है।
5: इमरान खान जिंदा है या मर गए, सच क्या है? इमरान खान की मौत की खबर खुद फैली या फैलाई गई? इमरान की खबर में सच्चाई है या मुनीर का कोई गेम प्लान है? इमरान की बहनें क्या बोल रही हैं, पाकिस्तानी सेना क्या बोल रही है।
6: मैं मर जाऊंगा जेल में, लेकिन मैं इस फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा।
5: रावलपिंडी की अदियाला जेल के अंदर क्या हुआ, इनसाइड स्टोरी क्या है, कहा तो 3 साल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान की रिहाई के लिए बड़े आंदोलन का ऐलान होता है, और कहां अचानक से खबर आती है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं रहे। इमरान खान की मौत की खबर पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच क्या है। पहले आपको बता दें कि अमेरिका में बैठे एक पाकिस्तानी पत्रकार वजाहत सईद खान दावा करते हैं कि अदियाला जेल में बंद इमरान खान की मौत हो गई है। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें ये खबर पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर के 3 अफसरों के हवाले से आई है।
7: अफसरान जो GHQ में हैं, कम से कम 3 अफसरान का ये पर्सपेक्टिव है, जाती पर्सपेक्टिव है। 3 अफसर्स ने अलग अलग तरीकों से ये इजहार किया है that Imran Khan is no longer with us, and that is the reason why the Pakistan Army and the Army Chief are keeping him from the rest of the country.
5: वजाहत सईद खान पाकिस्तानी सेना के करीबी पत्रकारों में गिने जाते हैं। उन्हें इमरान खान समर्थक पत्रकार भी माना जाता है। वो एमी पुरस्कार के लिए नामांकित हो चुके हैं और वर्तमान में पाकिस्तान में जेल की सजा से बचने के लिए अमेरिका में रहते हैं। इसीलिए इमरान खान की बहनें रावलपिंडी की जेल पहुंच जाती हैं और जेल में लागू कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और बढ़ती आशंकाओं के बीच PTI ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कल रात 10 बजे तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई, तो पूरा पाकिस्तान ठप कर दिया जाएगा।
8: हमारा SOP है कि सिवाय फैमिली के और पर्सनल डॉक्टर क्योंकि हेल्थ पे इमरान खान का ये SOP है कि कोई और बात नहीं करेगा। हर एक ने मुंह खोल लिया, हर एक ने तमाशा बना दिया उनका, और अब जवाब दें सारे जिन्होंने शुरू किया है, ये जो एजेंसियों की बातें शुरू की है जिन्होंने, अब जवाब दें। जबकि वजाहत साहब ने बचा दिया है कि जी वो उनको तो जेल में खत्म कर दिया, ये कहा है ना कुछ इस किस्म की बात की, मुझे नहीं पता, मैंने सुना नहीं है, मुझे यहाँ के कई लोगों ने बताया।
5: हालांकि इमरान खान की मौत के दावों पर पाकिस्तानी सेना ने भी अपना बयान जारी किया है। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने कहा है कि इमरान खान जिंदा है और अदियाला जेल में ही बंद है। लेकिन इमरान खान की मौत की खबर फैलने के बाद इमरान खान की बहनें अदियाला जेल के बाहर इंतजार करती रहीं, लेकिन उन्हें जेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। आपको बता दें कि इमरान खान की बहनों की अपने भाई से मुलाकात करीब 9 महीने पहले हुई थी। इमरान की बहनों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार कहती है कि इमरान खान से मिलने के बाद उनकी बहनें बाहर आकर राजनीतिक बयान देती हैं, जिससे पाकिस्तान का माहौल बिगड़ जाता है। लेकिन अब इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि वो लिखित में ये बयान देने को तैयार हैं कि वो इमरान से मिलकर कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगी। इसके बावजूद उन्हें मिलने की इजाजत नहीं मिल रही।
8: उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई सियासी बात बाहर ना आके करें तो हम उनको कह रहे हैं कि बहनों की मुलाकात करवा दें। हमने पूरी तरीके से इत्तेफाक किया बहनों ने, कोई सियासी बात बाहर।
5: इमरान खान की बहनों का कहना है कि उनका शक बेबुनियाद नहीं है। उज्मा खान ने कल भी कहा कि आखिरी बार जब उनकी मुलाकात इमरान खान से हुई थी तब उन्होंने दो टूक कहा था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिफ मुनीर उन्हें मरवा देगा। यानी ये उनकी बहनों का शक नहीं बल्कि खुद इमरान खान का दावा था।
9: उनकी जिंदगी खतरे में है, जिंदगी से खतरे की जो आखिरी बात में मुलाकात थी, पहली चीज उन्होंने कहा था कि ये नहीं कहा कि मैं मुझे शक है मार देंगे, मुझे पहले कहा कि आसिम मुनीर मुझे मार देगा। देखिए ये कैफ थी, तो ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि नीयतें खराब है।
5: पाकिस्तान के लोगों का ये भी कहना है कि आसिम मुनीर के दिमाग में इमरान खान को ठिकाना लगाने का प्लान काफी पहले से चल रहा है
10: कि अगर आसिम मुनीर का इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल है जो कि है ये फैक्ट है हकीकत है इमरान खान की जिंदगी और कैदो बंद से मुतल्लिक 100% कंट्रोल उसका है क्यों ये बात बाहर बताएगा कि आने देगा कि भाई इमरान खान नहीं रहे लेकिन मेरा सवाल है अभी मेरा सवाल है क्यों बताएगा खुद की खबर है 100% कि ये अवाम की जहन साजी कर रहे हैं क्योंकि आसिम मुनीर ने वादा किया हुआ है इमरान खान को रास्ते से हटाने का और उस वादे को अगर वो पूरा कर देता है तो वो खुद सदर भी बन सकता है और सदर बनने की ख्वाहिश उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी इस वक्त ख्वाहिश है सीसी की तरह वो यूनिफॉर्म के अंदर प्रेसिडेंट बन के बैठना चाहता है ताकि वो स्टेट प्रोटोकॉल के साथ जाके ट्रंप को भी मिले और सऊदी बादशाहों से भी मिले और तीसरे चौथे नंबर के ऊपर जाके ना खड़ा हो एक तो ये मामला है दूसरा फौज अगले 10 साल तक इसका राज चले फौज का राज तो हमेशा से रहा है लेकिन इसका राज अगले 10 साल तक चले वो ये चाहते हैं
5: इमरान खान की मौत की सनसनीखेज अफवाह के बीच इमरान खान की पार्टी के भीतर भी गद्दारी को लेकर बड़ा बवाल मच गया है ये बवाल भी इमरान खान की सेहत को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर झूठी बातें फैलाने को लेकर मचा है इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि उनकी ही पार्टी की सांसद मशाल यूसुफ जई ISI के इशारे पर ये अफवाह फैला रही है कि जेल में इमरान खान की तबीयत बिगड़ रही है मशाल यूसुफ जई वकील भी हैं और इमरान खान की पार्टी से सेनेटर भी हैं अब उन्हें पार्टी से निकालने की बात हो रही है दूसरी तरफ मशाल ने भी चुनौती दी है कि अगर पार्टी उन्हें निकालना चाहती है तो निकाल दे वहीं पाकिस्तानी सेना के पूर्व मेजर और अब पत्रकार आदिल राजा ने मशाल यूसुफ जई और ISI से उनके कनेक्शन को लेकर बड़ा दावा किया है उन्होंने कहा है कि मशाल यूसुफ जई ने ही कहा है कि अगर इमरान खान मान दे कि आसिम मुनीर को राष्ट्रपति बना दिया जाए तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं
10: राजा साहब से किसी ने मशाल यूसुफ जई या मिशालो बी जमालो का जिक्र किया मिशालो बी जमालो जो है वो बड़े अरसे से ऑफर कर रही है उसी ने बताया जो ISI ने खबर चलाई जो PTI की लीडरशिप को बताई कि इमरान खान की तबीयत बहुत खराब है और साथ ही उसी ने कोर कमेटी को आके कहा मुसलसल कहा कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हमायत करें फौजी इस्टेब्लिशमेंट की हमायत करें और उसके नतीजे के अंदर इमरान खान छूट जाएंगे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लें इमरान खान को तो बाद में ये छोड़ेंगे लेकिन पहले आसिम मुनीर को आईनी तौर के ऊपर अपना बाप बना के बैठा दें और उसके बाद ये इमरान खान को छोड़ देंगे उसके बारे में सलमान अकरम राजा से जो बातचीत की गई पहले ये एक वीडियो मैं फेयर कमेंट के लिए चाहता हूँ कि आप सुन लें फिर मैं इसके ऊपर बात करूंगा कुछ सेकंड का वीडियो है
11: सदर साहब से जो मुलाकात हुई थी इस वक्त खबरें गिर्दिश की थी कि आपको खान साहब ने कहा था मिसाल यूसुफ़ज़ई साहब को फारिग कर दिया जाए और ये जब आपके पास बात थी
12: देखें सुन बिल्कुल ये आई थी देखें सुन लीजिए फारिग करने का क्या मतलब है देखिए सेनेट से तो मैं फारिग नहीं कर सकता ना सेनेट में वो मौजूद है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं कि मैं उनको सेनेट से फारिग करूँ पार्टी से उनको निकालने का एक अमल है
4: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे हमारे साथ

0: विपक्षी हंगामे के बीच गृह मंत्री का ऑफर, सदन में हो जाए चर्चा, मैं पूरे समय बैठूंगा, दूंगा जवाब, राहुल गांधी बोले सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर, आज सदन का आखिरी दिन। 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की शिरकत, एनडीए सांसदों ने निकाली बाइक रैली। रांची छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में एबीवीपी। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बदलाव, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले छात्रों शिक्षण संस्थाओं के साथ होगी चर्चा, उच्च स्तरीय कमेटी का होगा गठन। और एयर इंडिया मामले में आज तक के पास मेंटेनेंस रिपोर्ट, एक मिनट में आए 3 बार हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट, 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान। संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने वाला है लेकिन राजनीति में हंगामा लगातार जारी है। बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष सदन को चलने दे। जवाब में राहुल गांधी बोले इस्तीफा दें तो बात होगी।
1: संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले
2: गोपाल जी, व्हाट डू वांट टू से टू टू केसी बेनगोपाल जी,
3: ये जेपीसी में भेजा जाए।
4: ये बात मुझे मौका मिला,
2: मैंने दिया तो समय आपको।
5: गुरुवार को संसद का मानसून सत्र खत्म होने से पहले बुधवार को भी न संसद का हंगामा थमा, न चर्चा हुई, न संसद नियम से चल पाई। लेकिन अमित शाह का जवाबी पलटवार ऐसा आया कि अब राहुल गांधी पर गोल पोस्ट बदलने का बीजेपी का आरोप और गहरा हो गया।
6: सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है।
5: जंतर मंतर प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह के बयान की मांग करते राहुल गांधी को एक तरह से सीधी चुनौती थी। अमित शाह ने बुधवार दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू कर गुरुवार दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए राजी होने की न सिर्फ बात कही बल्कि स्पीकर ओम बिरला को अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आप विपक्ष से चर्चा करके आपसी सहमति से आज से जितने समय जितने घंटे आप उचित समझे उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। जंतर मंतर पर संसद में खुद के बयान को लेकर पहली बार आए अमित शाह के इतने स्पष्ट बयान के बाद राहुल गांधी का जवाब आता है। राहुल कहते हैं कि हमें उनकी कल्पनाओं में दिलचस्पी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री ये बताएं कि पैलेट गन से गोली किसने चलवाई।
7: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग एंड व्हेन आई से वी I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students?
5: जंतर मंतर पर संसद में अमित शाह के बयान की मांग को लेकर लगातार हंगामा चलता है। संसद के अंदर हंगामे से लेकर परिसर में मकर द्वार के बाहर तक जवाबी नारेबाजी होती रही।
8: मैं बहुत निराश हूँ। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी होते हैं।
5: अमित शाह ने जब ये साफ कहा है कि सरकार चर्चा से कतई भाग नहीं रही, सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ।
6: लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा?
7: इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए।
4: इस बीच सरकार ने एफसीआरएस संशोधन बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है, जिसे मंजूरी मिल गई। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, लेकिन लड़ाई मेरा जवाब बनाम तेरा जवाब पर चलती रही।
9: आपको पता है कि जब जब गृह मंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं, इनकी खाट खड़ी हो जाती है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कौन सा समझौता कर लिया चीन के साथ, एफसीआरए में जो है किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रहा है, तो सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। इसीलिए गृहमंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते, तो गृहमंत्री जी को कैसे नहीं सुनेंगे? तो हंगामा करो।
10: रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? सरकार,
11: आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस।
4: राज्यसभा में गृह मंत्री को लेकर खड़गे ने वार किया, कहा कि वो रोज नहीं आते। नड्डा बोले, आप चर्चा से भाग रहे हैं।
12: मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है, किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा, ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको।
13: माननीय नड्डा जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं जी। सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और आप चर्चा से भागो मत।
4: 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चलते आंदोलन के बीच हंगामे के साथ शुरू हुई संसद में, हंगामे के साथ मानसून सत्र पूरा होने जा रहा है।
0: झारखंड में छात्रों के धरना और आंदोलन करते 19 दिन हो चुके हैं। झारखंड की परीक्षाओं में धांधली की रोज नई किश्त सामने आ रही है। पता ये चला कि भर्ती प्रक्रिया में 10 लाख से 50 लाख तक के रेट लगाए गए और अभय तिवारी सब कुछ सेट करता रहा, जिसमें आयोगों के बड़े बड़े अधिकारी तक दावा करते हैं कि वो शामिल थे।
14: आपने मूसलाधार बारिश के बीच छात्रों के आंदोलन की आग देखी। आपने विधानसभा घेराव के दौरान इन छात्रों का हौसला देखा। आपने छात्रों पर रांची पुलिस की ज्यादती देखी। छात्रों पर लाठियां बरसते देखा और उन्हें एक एक कर घायल होते देखा।
15: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो,
16: पूरे देश के युवाओं पे लाठी चले,
15: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, लाठी चार्ज कर रही है पुलिस। हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
14: रांची में दो दिन पहले क्या क्या हुआ, इसे पूरे देश ने देखा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सहानुभूति के बजाय पुलिस का बचाव करते दिखे।
17: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया, वो भी अभूतपूर्व है। अध्यक्ष महोदय, जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आता।
14: सोरेन यही ठहर जाते तब भी गनीमत होती, लेकिन अब वो जुल्म पर उतर आए हैं, बदले पर उतर आए हैं। खबर है कि रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
18: घड़ी में छात्रों की संख्या बढ़ने लगती थी वो आज अब आधे से भी कम होने लगी है। ज्यादातर छात्र या तो जा चुके हैं या इस समय धरना स्थल पर मौजूद नहीं है। बीती रात प्रशासन यहां पर आया। छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई और अब इस उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोग?
19: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी और सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी। अब इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था। जो हम लोग का लाइट वो जल रहा था जो जनरेटर से हम लोग का चल रहा था।
14: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। सरकार ये बात समझती है इसलिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये दबाव उस सच को नहीं दबा सकता जो एक एक कर सामने आ रहा। सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली।
20: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही राज्य की सीआईडी के सामने अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने सीआईडी से पूछताछ में बताया है कि कैसे अलग अलग परीक्षाओं में लाखों रुपए में नौकरी की डील हुई। अभय तिवारी ने ये बताया है कि उसने किन परीक्षाओं में करोड़ों की राशि की वसूली की, कैसे एजेंट्स के जरिए जो नियोक्ता एजेंसियां थी उनको लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में सीआईडी अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि सीआईडी की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं उनका यह कहना है कि सीबीआई जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक रांची।
0: क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टियां जेनजीज पर डोरे डाल रही हैं? सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2027 में यूपी से लेकर देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इन चुनावी राज्यों में जेनजी वोटर्स एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। सियासी पार्टियों को मैसेज बहुत ही क्लियर है, साफ है, जहां जेनजीज वहां पड़ला भारी। फिर चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या संघ प्रमुख मोहन भागवत या फिर विपक्ष, हर कोई जेनजीज को अपने पाले में खींचने के लिए भरपूर कोशिश में जुटा है।
21: जेन जी के सहारे देश के चुनाव सारे। कैसे जेन जी को लुभाने में जुटा देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जेन जी वोटर की प्लानिंग शुरू। जंतर मंतर से ताकत दिखाई, सबको जेन जी की याद आई। जेन जी साथ आएगा तो चुनाव जिताएगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ जेन जी ने दम दिखाया तो सिस्टम को हिला डाला। इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, लेकिन जेन जी की ताकत का एहसास हर सियासी पार्टी को हो गया।
22: लाखों युवाओं से मैं मिला,
23: फ्रेंड्स मैं जानता हूं कि
21: पीएम मोदी इंस्टा पर आ गए और जेन जी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की और आज भी पीएम मोदी देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी को मैसेज दे रहे हैं। जी हाँ, मौका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी के विमोचन का था, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा मैसेज जेन जी को दिया।
1: रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है।
21: जेन जी की ताकत हर कोई समझ रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जेन जी आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर संघर्ष के लिए आगे आ रहा है। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है, इसलिए ये अपनी समस्याओं को केवल निजी चर्चा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें सार्वजनिक बहस का विषय बना देती है। भारत में जेन जी ने विरोध का एक नया मॉडल विकसित किया है। छात्र केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड, हैशटैग कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है।
2: सारे जेन जी की जगह ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, आप लोगों का स्वागत है। इस भारत को आप ही लोगों को संभालना है, क्योंकि आप लोगों की आबादी 65% है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे आके सुनते हैं, आप लोगों की बातों पर इतना गौर किया जा रहा है इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो मैं सारे जेन जी को प्रणाम नमन करता हूँ।
21: राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम के कैंपेन से खुद को जेन जी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं।
3: क्या है, जेन जी में सेल्फीज बड़ी कॉमन है, तो चलिए हम सब तैयार हैं सर के साथ सेल्फी के लिए।
8: मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो।
21: तो जेन जी की ताकत को आरएसएस ने भी समझा है और जाना है, तभी तो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी के साथ संवाद किया।
24: जो हुआ है ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला रही।
25: बिल्कुल,
24: उसको ठीक करना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है।
21: आज जेन जी की आवाज को सियासी पार्टियां अनसुना नहीं करना चाहती, तो उसके पीछे बड़ी वजह है। 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावी राज्यों में युवा मतदाता सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की संख्या 22.78% है, जबकि यूपी में 18 से 29 साल के उम्र के लोग 21.19%, गुजरात में 23.32%, पंजाब में 21.44%, उत्तराखंड में 22.18%, हिमाचल प्रदेश में 21.91%, मणिपुर में 23.74% और गोवा में 19.60% आबादी 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की है।
0: और सिर्फ जेन जी ही नहीं बल्कि जेन अल्फा भी देश में अब अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। जुलाई में महीने में जंतर मंतर से उठा जेन जी का ज्वार अब जेन अल्फा तक पहुंच चुका है। जेन जी अगर बेरोजगारी, भर्ती में भ्रष्टाचार पर घेरता है तो जेन अल्फा स्कूलों की हालत, सड़क की बदहाली पर सीधा सीधा सवाल करने लगा है। और इसीलिए अब बीजेपी हो या विपक्ष, हर कोई जेन जी और जेन अल्फा के साथ सीधा कनेक्शन साधने में जुट चुका है।
21: जंतर मंतर के आंदोलन से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने माइलेज लेने की कोशिश की और अखिलेश यादव ने यूपी के मुद्दों को जंतर मंतर से लेकर संसद तक सामने रखा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर सरकार को घेरा।
5: सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप?
21: तो अब यूपी में सीएम योगी और बीजेपी की पूरी मशीनरी जेन जी को लुभाने में जुट गई है। यूपी सरकार के मंत्री मनोज पांडे रायबरेली में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करते हैं और जेन जी को साधने की कोशिश करते हैं।
6: उन्होंने अपनी भावनाएं भी बताई, अपने दिक्कतों को भी बताई और उन्होंने सराहना भी किया भारत के प्रधानमंत्री जी के कार्यों के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के। ये यूथ हमारा भविष्य है, ये हमारे कल है और इन यूथ के साथ संवाद होना जरूरी है।
7: समाजवादी पार्टी तो नौजवानों की पार्टी रही है और सबसे ज्यादा यंग मिनिस्टर्स और यंग लोगों को चुनाव लड़ने का मौका या यंग लोगों की बात अगर किसी ने सबसे ज्यादा की है तो वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, श्रद्धेय नेता जी ने की थी और अब उसी मशाल को आगे लेकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे।
21: यूपी में योगी सरकार और बीजेपी ने जेन जी संवाद के लिए कैंपेन शुरू किया है जिसमें योगी सरकार के मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जेन जी चौपाल करेंगे। विधानसभा वार टीमें तैयार करने की तैयारी की जा रही है।
9: चुनावी साल नजदीक है, ऐसे में अब राजनीतिक दलों को यह समझ आ चुका है कि केवल परंपरागत नारों से ही काम नहीं चलने वाला है। उन्हें मालूम पड़ गया है जेन जी का जो उबाल पूरे देश में इस वक्त देखने को मिला है अपने मुद्दों को लेकर वो मामूली तो नहीं, और इसलिए बीजेपी अब अपनी यूथ विंग के जरिए स्कूल कॉलेजों में युवाओं से युवाओं के संपर्क कराकर संपर्क साधने जा रही है। इतना ही नहीं, सरकार के मंत्री भी अब इसमें आ गए हैं।
21: बड़ी बात यह है कि सिर्फ जेन जी ही नहीं बल्कि जेन अल्फा ने भी अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। अब यूपी के हमीरपुर में ही देख लीजिए, स्कूल के रास्ते में आने वाले गड्ढों के खिलाफ जेन अल्फा तिरंगा लेकर निकल पड़ता है। स्कूल की सड़क बनवाने के लिए स्कूली बच्चों ने 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली। ये बच्चे डीएम ऑफिस तक पहुंचते हैं और जेन अल्फा के आक्रोश के बाद प्रशासन भरोसा देता है कि अब जल्द ही यहां 1,81,00,000 रुपए खर्च कर सड़क बनवाई जाएगी। जेन अल्फा के आगे झुकना भी सियासी पार्टियों की मजबूरी क्यों है वो भी आपको समझाते हैं। भारत के कानूनी नियमों के अनुसार वोट डालने की न्यूनतम उम्र 18 साल है। इस नियम के हिसाब से जेन अल्फा के बच्चे साल 2028 से 2042 के बीच वोटर बनने के योग्य होंगे। इस पीढ़ी के सबसे बड़े बच्चे जिनका जन्म 2010 से 2011 के बीच हुआ था वो साल 2028 से 2029 तक 18 साल के हो जाएंगे, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में इनका एक छोटा हिस्सा पहली बार मतदान करेगा और इसीलिए सियासी पार्टियां ना जेन जी को नजरअंदाज कर सकती हैं और ना ही जेन अल्फा को। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सोचिए कि आप पूरी फैमिली के साथ एक फ्लाइट से जा रहे हो और अचानक से हवा में विमान जोर जोर से हिलने लगे, आप सीट से नीचे गिर जाएं, आपके आसपास के लोग घायल हो चुके हों, ऊपर से कैबिन में रखे हुए सामान नीचे आने लगे और आप समझ ही नहीं पाए कि करना क्या है। आप कुछ नहीं कर सकते, अगर करना चाहें भी तो सिर्फ ऊपर वाले को याद करेंगे। और जब आपको पता यह चल जाए कि इस फ्लाइट को जो पायलट उड़ा रहा था वो गांजे के नशे में था तो सोचिए होगा क्या। यही हुआ है एयर इंडिया की एक फ्लाइट

0: पायलट ने गांजा फूंककर 137 सवारियों की जिंदगी खतरे में डाली। गांजा फूंकने वाले पायलट पर क्या एक्शन होगा, आगे ऐसा ना हो, इसकी क्या गारंटी है? ये तस्वीरें डराने वाली हैं। 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें देखिए क्या हाल है। लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, सीटें उखड़ी पड़ी हैं, लोग घायल हैं। और ये तब का वीडियो है जब सब कुछ हो चुका था। क्या हुआ था फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में, आगे आपको बताएंगे। उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंडिंग की बाद की तस्वीरें हैं। पैसेंजर घायल है, केबिन क्रू के सदस्य घायल है, किसी की आंख पर चोट है, किसी के हाथ पर, किसी के गले पर। ये सब लोग इसी फ्लाइट में सवार थे। चार अगस्त को फुकेट से दिल्ली के लिए ये फ्लाइट चली थी AI-2379। फ्लाइट जब हवा में थी तो पैसेंजर्स को अचानक से टर्बुलेंस का एहसास हुआ। फ्लाइट के केबिन में रखा सामान लोगों के ऊपर गिरने लगा, लोग अपनी सीटों से गिर गए और चोटिल हो गए। अचानक से जहाज हवा में ही 300 फीट नीचे चला गया। फ्लाइट के अंदर चीख पुकार मच गई। इस घटना में 20 यात्रियों और 4 केबिन क्रू मेंबर्स को चोटें आईं। फ्लाइट में 137 यात्री सवार थे, जिनमें 3 छोटे बच्चे भी थे और इनके अलावा 2 पायलट और 6 केबिन क्रू के सदस्य थे। अब खबर आ रही है कि इस फ्लाइट को उड़ाने वाला मेन पायलट गांजे के नशे में था। इस पायलट का दूसरा ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले पायलट का जब मेडिकल टेस्ट किया गया तो उसके शरीर में गांजे का सब्सटेंस पाया गया। DGCA ने फिलहाल प्लेन उड़ा रहे दोनों पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AIB ने कहा है कि जांच पूरी होने तक कोई नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए।
1: देखिए, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, मैंने उसको संज्ञान में नहीं लिया। अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो ये बड़ी गंभीर बात है और DGCA को इसको बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए। एयर इंडिया का जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई अभी तक। तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये बहुत ही अत्यंत संवेदनशील है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है।
2: दिस क्रिमिनल बिहेवियर, एयर इंडिया इज लायबल, दे आर क्रिमिनली, दे मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड द गवर्नमेंट मस्ट टेक एग्जेम्पलरी एक्शन अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ एयर इंडिया एंड द प्रोसेसेस ऑब्वियसली व्हिच दे फॉलो आर नॉट रोबस्ट इनफ एंड दे हैव एंडेंजर्ड लाइव्स। This is criminal behavior and in fact there must be exemplary punishment levied on Air India and all those concerned.
0: बताया जा रहा है कि जब ये टर्बुलेंस हुआ तो ये फ्लाइट 3 मिनट तक पलटी खाती रही। फ्लाइट टर्बुलेंस का मतलब ये है कि हवाई जहाज तेज हवा के झटकों में फंस गया था और फिर अचानक से 300 फीट नीचे आ गया। यात्रियों ने दावा किया कि उड़ान भरने के 1.5 घंटे के बाद फ्लाइट में झटके लगे। सुबह का वक्त था तो यात्री सो रहे थे। अब पता चला है कि फ्लाइट का पायलट गांजा पिए हुए था। पायलट दोनों बार डोप टेस्ट में फेल हो गया है। पायलट की डोप टेस्ट में मारिजुआना यानी गांजा की पुष्टि हुई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AIB ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि विमान की ऊंचाई अचानक क्यों बदली, उस समय विमान के सिस्टम किस स्थिति में थे, मौसम और टर्बुलेंस की क्या भूमिका थी, पायलट्स ने क्या एक्शन लिया, विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड में क्या जानकारी है, यात्रियों और क्रू को किस तरह की चोटें आईं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या दर्ज है।
3: इनफैक्ट वी वांटेड टू गेट अ डायरेक्ट अपडेट फ्रॉम एयर इंडिया आल्सो ऑन द इंसिडेंट एंड वी वांटेड टू सी हाउ दे आर टेकिंग दिस इशू फ्रॉम देयर साइड एंड आई हैव टोल्ड टाइम एंड अगेन दैट फ्रॉम द मिनिस्ट्री सेफ्टी इन एविएशन इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। देयर शुडंट बी एनी कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम एनी साइड, इवन द रेगुलेटर और इवन द एयरलाइंस और एनी वन। So this issue we have taken very very seriously from the ministry side also. So we have just spoken to him as a preliminary task just to get an update. But I have to tell you that AIB has been given the task to continue on the investigation and we have good confidence on AIB. So I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what action, definitive action needs to be taken on this.
0: Jis viman A320 mein kharabi aayi वो एयरबस है और वो फ्रांस में बनता है, इसीलिए AIB की जांच में फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी और फ्रांस स्थित एयरबस के तकनीकी विशेषज्ञ भी मदद कर

0: विपक्षी हंगामे के बीच गृह मंत्री का ऑफर, सदन में हो जाए चर्चा, मैं पूरे समय बैठूंगा, दूंगा जवाब, राहुल गांधी बोले सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर, आज सदन का आखिरी दिन। 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की शिरकत, एनडीए सांसदों ने निकाली बाइक रैली। रांची छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में एबीवीपी। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बदलाव, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले छात्रों शिक्षण संस्थाओं के साथ होगी चर्चा, उच्च स्तरीय कमेटी का होगा गठन। और एयर इंडिया मामले में आज तक के पास मेंटेनेंस रिपोर्ट, एक मिनट में आए 3 बार हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट, 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान। संसद का मानसून सत्र खत्म होने वाला है लेकिन राजनीति में हंगामा लगातार जारी है। बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष सदन को चलने दे। जवाब में राहुल गांधी बोले इस्तीफा दें तो बात होगी।
1: संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले
2: गोपाल जी, व्हाट डू वांट टू से टू टूकेसी वेणुगोपाल जी,
3: ये जेपीसी में भेजा जाए।
4: ये बात मुझे मौका मिला बोलने
2: दिया तो समय आपको।
5: गुरुवार को संसद का मानसून सत्र खत्म होने से पहले बुधवार को भी न संसद का हंगामा थमा, न चर्चा हुई, न संसद नियम से चल पाई, लेकिन अमित शाह का जवाबी पलटवार ऐसा आया कि अब राहुल गांधी पर गोल पोस्ट बदलने का बीजेपी का आरोप और गहरा हो गया।
6: सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है।
5: जंतर मंतर प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह के बयान की मांग करते राहुल गांधी को एक तरह से सीधी चुनौती थी। अमित शाह ने बुधवार दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू कर गुरुवार दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए राजी होने की न सिर्फ बात कही बल्कि स्पीकर ओम बिरला को अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आप विपक्ष से चर्चा करके आपसी सहमति से आज से जितने समय, जितने घंटे आप उचित समझे उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। जंतर मंतर पर संसद में खुद के बयान को लेकर पहली बार आए अमित शाह के इतने स्पष्ट बयान के बाद राहुल गांधी का जवाब आता है। राहुल कहते हैं कि हमें उनकी कल्पनाओं में दिलचस्पी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री ये बताएं कि पैलेट गन से गोली किसने चलवाई।
7: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग एंड व्हेन आई से वी I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students?
5: जंतर मंतर पर संसद में अमित शाह के बयान की मांग को लेकर लगातार हंगामा चलता रहा। संसद के अंदर हंगामे से लेकर परिसर में मकर द्वार के बाहर तक जवाबी नारेबाजी होती रही।
8: मैं बहुत निराश हूँ। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी होते हैं।
5: अमित शाह ने जब ये साफ कहा है कि सरकार चर्चा से कतई भाग नहीं रही, सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ।
6: लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा?
9: इस 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए गायब हो गए, यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह, उनके घर के सामने जाइए वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए।
10: इस बीच सरकार ने FCRA संशोधन बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है, जिसे मंजूरी मिल गई। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, लेकिन लड़ाई मेरा जवाब बनाम तेरा जवाब पर चलती रही।
11: आपको पता है कि जब जब गृहमंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं इनकी खाट खड़ी हो जाती है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कौन सा समझौता कर लिया चीन के साथ, FCRA में जो है किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रहा है, तो सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। इसीलिए गृहमंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते, तो गृहमंत्री जी को कैसे नहीं सुनेंगे? तो हंगामा करो।
12: रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? सरकार,
13: आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उनपे लाठी बरसाते हो, आप उनपे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उनपे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस।
10: राज्यसभा में गृह मंत्री को लेकर खड़गे ने वार किया, कहा कि वो रोज नहीं आते। नड्डा बोले, आप चर्चा से भाग रहे हैं।
14: मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा, ये रोज का यही धंधा हो गया, आप बुलाइए उनको।
15: माननीय नड्डा जी,
16: ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और आप चर्चा से भागो मत।
10: 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चलते आंदोलन के बीच हंगामे के साथ शुरू हुई संसद में हंगामे के साथ मानसून सत्र पूरा होने जा रहा है।
0: झारखंड में छात्रों के धरना और आंदोलन करते 19 दिन हो चुके हैं। झारखंड की परीक्षाओं में धांधली की रोज नई किश्त सामने आ रही है। पता ये चला कि भर्ती प्रक्रिया में 10 लाख से 50 लाख तक के रेट लगाए गए और अभय तिवारी सब कुछ सेट करता रहा, जिसमें आयोगों के बड़े बड़े अधिकारी तक दावा करते हैं कि वो शामिल थे।
17: आपने मूसलाधार बारिश के बीच छात्रों के आंदोलन की आग देखी। आपने विधानसभा घेराव के दौरान इन छात्रों का हौसला देखा। आपने छात्रों पर रांची पुलिस की ज्यादती देखी। छात्रों पर लाठियां बरसते देखा और उन्हें एक एक कर घायल होते देखा।
18: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो,
19: पूरे देश के युवाओं पे लाठी चले,
18: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
17: रांची में 2 दिन पहले क्या क्या हुआ इसे पूरे देश ने देखा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सहानुभूति के बजाय पुलिस का बचाव करते दिखे।
20: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है। दक्षिण जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आता।
17: सोरेन यहीं ठहर जाते तब भी गनीमत होती, लेकिन अब वो जुल्म पर उतर आए हैं, बदले पर उतर आए हैं। खबर है कि रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
15: घड़ी में छात्रों की संख्या बढ़ने लगती थी वो आज अब आधे से भी कम होने लगी है। ज्यादातर छात्र या तो जा चुके हैं या इस समय धरनास्थल पर मौजूद नहीं है। बीती रात प्रशासन यहां पर आया। छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई और अब इस उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोग की?
21: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी और सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी। अब इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था। जो हम लोग का लाइट वो जल रहा था जो जनरेटर से हम लोग का चल रहा था।
22: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। सरकार ये बात समझती है इसलिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये दबाव उस सच को नहीं दबा सकता जो एक एक कर सामने आ रहा। सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20-25 लाख की बोली लगाई गई। ACF के लिए 30-35 लाख की बोली लगी। अभय ने CDPO परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली।
23: झारखंड में JPSC और JSSC की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही राज्य की CID के सामने अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने CID से पूछताछ में बताया है कि कैसे अलग अलग परीक्षाओं में लाखों रुपए में नौकरी की डील हुई। अभय तिवारी ने यह बताया है कि उसने किन परीक्षाओं में करोड़ों की राशि की वसूली की, कैसे एजेंट्स के जरिए जो नियोक्ता एजेंसियां थी उनको लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में CID अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और TDPL कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि CID की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं उनका यह कहना है कि CBI जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदी मालम के साथ शशि भूषण, आज तक रांची।
0: क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टियां जेनजीज पर डोरे डाल रही हैं? सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2027 में यूपी से लेकर देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इन चुनावी राज्यों में जेनजी वोटर्स एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। सियासी पार्टियों को मैसेज बहुत ही क्लियर है, साफ है, जहां जेनजीज वहां पड़ला भारी। फिर चाहे PM नरेंद्र मोदी हो या संघ प्रमुख मोहन भागवत या फिर विपक्ष, हर कोई जेनजीज को अपने पाले में खींचने के लिए भरपूर कोशिश में जुटा है।
24: जेन जी के सहारे देश के चुनाव सारे। कैसे जेन जी को लुभाने में जुटा देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जेन जी वोटर की प्लानिंग शुरू। जंतर मंतर से ताकत दिखाई, सबको जेन जी की याद आई। जेन जी साथ आएगा तो चुनाव जिताएगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ जेन जी ने दम दिखाया तो सिस्टम को हिला डाला। इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, लेकिन जेन जी की ताकत का एहसास हर सियासी पार्टी को हो गया।
25: लाखों युवाओं से मैं मिला,
26: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि
24: पीएम मोदी इंस्टा पर आ गए और जेन जी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की और आज भी पीएम मोदी देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी को मैसेज दे रहे हैं। जी हां, मौका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी के विमोचन का था, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा मैसेज जेन जी को दिया।
1: रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी
0: सोचिए कि आप पूरी फैमिली के साथ एक फ्लाइट से जा रहे हो और अचानक से हवा में विमान जोर जोर से हिलने लगे, आप सीट से नीचे गिर जाएं, आपके आसपास के लोग घायल हो चुके हों, ऊपर से कैबिन में रखे हुए सामान नीचे आने लगे और आप समझ ही नहीं पाए कि करना क्या है। आप कुछ नहीं कर सकते, अगर करना चाहें भी तो सिर्फ ऊपर वाले को याद करेंगे। और जब आपको पता ये चल जाए कि इस फ्लाइट को जो पायलट उड़ा रहा था वो गांजे के नशे में था, तो सोचिए होगा क्या। यही हुआ है एयर इंडिया की एक फ्लाइट के साथ।
2: क्या एयर इंडिया के पायलट ने गांजा फूंककर 137 सवारियों की जिंदगी खतरे में डाली? गांजा फूंकने वाले पायलट पर क्या एक्शन होगा? आगे ऐसा ना हो, इसकी क्या गारंटी है? ये तस्वीरें डराने वाली हैं। 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें देखिए क्या हाल है। लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, सीटें उखड़ी पड़ी है, लोग घायल है। और ये तब का वीडियो है जब सब कुछ हो चुका था। क्या हुआ था फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में, आगे आपको बताएंगे। उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंडिंग की बाद की तस्वीरें हैं। पैसेंजर घायल है, केबिन क्रू के सदस्य घायल है, किसी की आंख पर चोट है, किसी के हाथ पर, किसी के गले पर। ये सब लोग इसी फ्लाइट में सवार थे। चार अगस्त को फुकेट से दिल्ली के लिए ये फ्लाइट चली थी AI-2379। फ्लाइट जब हवा में थी तो पैसेंजर्स को अचानक से टर्बुलेंस का एहसास हुआ। फ्लाइट के केबिन में रखा सामान लोगों के ऊपर गिरने लगा, लोग अपनी सीटों से गिर गए और चोटिल हो गए। अचानक से जहाज हवा में ही 300 फीट नीचे चला गया। फ्लाइट के अंदर चीख पुकार मच गई। इस घटना में 20 यात्रियों और 4 केबिन क्रू मेंबर्स को चोटें आईं। फ्लाइट में 137 यात्री सवार थे, जिनमें 3 छोटे बच्चे भी थे और इनके अलावा 2 पायलट और 6 केबिन क्रू के सदस्य थे। अब खबर आ रही है कि इस फ्लाइट को उड़ाने वाला मेन पायलट गांजे के नशे में था। इस पायलट का दूसरा ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले पायलट का जब मेडिकल टेस्ट किया गया तो उसके शरीर में गांजे का सब्सटेंस पाया गया। DGCA ने फिलहाल प्लेन उड़ा रहे दोनों पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AIB ने कहा है कि जांच पूरी होने तक कोई नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए।
3: देखिए, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, मैंने उसको संज्ञान में नहीं लिया। अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो ये बड़ी गंभीर बात है और DGCA को इसको बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए। एयर इंडिया का जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई अभी तक, तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये बहुत ही अत्यंत संवेदनशील है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है।
4: दिस क्रिमिनल बिहेवियर, एयर इंडिया इज लायबल, दे क्रिमिनली दे मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड द गवर्नमेंट मस्ट टेक एग्जेम्पलरी एक्शन अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ एयर इंडिया एंड द प्रोसेसेस ऑब्वियसली व्हिच दे फॉलो आर नॉट रोबस्ट इनफ एंड दे हैव एंडेंजर्ड लाइव्स। This is criminal behavior and in fact there must be exemplary punishment levied on Air India and all those concerned.
2: बताया जा रहा है कि जब ये टर्बुलेंस हुआ तो ये फ्लाइट 3 मिनट तक पलटी खाती रही। फ्लाइट टर्बुलेंस का मतलब ये है कि हवाई जहाज तेज हवा के झटकों में फंस गया था और फिर अचानक से 300 फीट नीचे आ गया। यात्रियों ने दावा किया कि उड़ान भरने के 1.5 घंटे के बाद फ्लाइट में झटके लगे। सुबह का वक्त था तो यात्री सो रहे थे। अब पता चला है कि फ्लाइट का पायलट गांजा पिए हुए था। पायलट दोनों बार डोप टेस्ट में फेल हो गया है। पायलट की डोप टेस्ट में मारिजुआना यानी गांजा की पुष्टि हुई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एआईबी ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि विमान की ऊंचाई अचानक क्यों बदली, उस समय विमान के सिस्टम किस स्थिति में थे, मौसम और टर्बुलेंस की क्या भूमिका थी, पायलट्स ने क्या एक्शन लिया, विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड में क्या जानकारी है, यात्रियों और क्रू को किस तरह की चोटें आईं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या दर्ज है।
5: In fact, we wanted to get a direct update from Air India also on the incident, and we wanted to see how they are taking this issue from their side. And I have told time and again that from the ministry, safety in aviation is the topmost priority. There shouldn't be any compromise from any side, even the regulator or even the airlines or anyone. So this issue we have taken very, very seriously from the ministry side also. So we have just spoken to him as a preliminary task just to get an update. But I have to tell you that AIB has been given the task to continue on the investigation, and we have good confidence on AIB. So I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what action, definitive action needs to be taken on this.
2: Just विमान A320 में खराबी आई वो एयरबस है और वो फ्रांस में बनता है, इसीलिए एआईबी की जांच में फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी और फ्रांस स्थित एयरबस के तकनीकी विशेषज्ञ भी मदद कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब जांच चल रही है, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन सवाल अभी यह है कि जिन फ्लाइट से हम और आप रोजाना चलते हैं उन्हें किस तरह के पायलट्स उड़ा रहे हैं और पायलट के नशे को चेक करने के लिए सिस्टम क्या है, अगर कोई पायलट नशे में पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है।

0: अब जांच हो रही है और देखना होगा कि इस जांच का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मुख्य पायलट का ड्रग्स के नशे में पाया जाना एक बहुत बड़ी लापरवाही है। सोचिए उन 137 यात्रियों पर क्या बीती होगी जब 3 मिनट तक उन्होंने हवा में ये झटके महसूस किए होंगे। पता नहीं मन में क्या क्या ख्याल आए होंगे। कई बार ऐसा लगा होगा कि आज तो बचेंगे नहीं, और ये खुद इस फ्लाइट के यात्री बता रहे हैं।
1: ये दिखता है नेग्लिजेंस ऑफ द स्टाफ जो एयरलाइंस में पायलट हैं, और नेग्लिजेंस ऑफ जो सिस्टम है, क्योंकि उनको पता है कि ये करके हम बच सकते हैं, उसी लिए उन्होंने ये किया है। उनको पूरा का पूरा ये कॉन्फिडेंस है कि हम तो निकल जाएंगे।
2: जब फ्लाइट नीचे जा रही थी तो मेरे को सबसे ज्यादा चिंता हुई बच्चों की। ये हमारे पास में जो बैठा हुआ था, मेरा दोहेता बैठा हुआ था, मैंने जोर से उसको पकड़ के बेल्ट लगाई, उसमें वो हैंडल मेरे यहाँ पे घुस के रिब्स में दो में थोड़े चोट आई है। पर ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इतना मतलब फैमिलीज, इतने लोग बैठे हुए, 3 साल की बच्ची उछल के इतना पीछे तक चली गई, ये कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं यार। छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो जिंदगी भर के लिए हमारे बच्चे अब कह रहे हैं कि हमको बैठना ही नहीं कभी फ्लाइट में।
0: अब यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि हिंदुस्तान में पायलट्स के लिए नियम कायदे क्या है, ये कैसे जांचा जाता है कि पायलट नशे में है या नहीं। हर पायलट की प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट जांच होती है। पायलट के लिए नियम ये है कि वो उड़ान के 12 घंटे पहले तक शराब का नशा नहीं कर सकता, यानी उड़ान के दौरान शरीर में अल्कोहल की मात्रा 0 होनी चाहिए। इसके लिए प्री फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य किया गया है। इसी तरह से भारत के बाहर से आने वाली फ्लाइट के पायलट्स का पोस्ट फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट लिया जाता है। लेकिन प्री फ्लाइट या पोस्ट फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में केवल शराब का नशा ही चेक हो सकता है, ये ड्रग्स के नशे के लिए नहीं बना। जहां तक ड्रग्स के नशे की बात है तो आमतौर पर यह जांच नौकरी शुरू करने से पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती होने के समय किसी दुर्घटना के बाद या फिर अचानक किसी दिन औचक आधार पर की जाती है। एयरलाइन कंपनियां हर साल अपने यहां करीब 10% फ्लाइट क्रू मेंबर्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स का औचक ड्रग टेस्ट लेते हैं, और सैंपल की जांच NABL सर्टिफाइड लैब में ही की जाती है। तो क्या भारत में ऐसे मामलों के लिए नियम कायदे कुछ ढीले हैं, और क्या सरकार को नियम बदलने होंगे?
3: That issue we are continuously studying it, and DGC also we have asked updates on that. But I am telling you that we are taking it very, very seriously. And if we feel that it is not up to the mark, the present regulation, then we will respond in it very seriously and you know improve whatever.
0: Flight operations में नशा करना यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है, इसीलिए इसे बड़े अपराध की तरह देखा जाता है। यही वजह है कि नशे के आरोप सही पाए जाने पर DGCA सख्त एक्शन लेता है। प्री फ्लाइट टेस्ट में अगर पायलट को शराब के नशे में पाया जाता है तो पहली गलती पर लाइसेंस 3 महीने के लिए, दूसरी गलती पर 3 साल के लिए, और तीसरी गलती होने पर स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है। पोस्ट फ्लाइट टेस्ट में पहली गलती पर लाइसेंस 1 साल के लिए और दूसरी गलती पर स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है। पायलट के लिए ड्रग्स के नशे को लेकर नियम अलग है। पहली बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो पहली गलती मानकर उड़ान भरने से रोक दिया जाता है और नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाता है। पायलट अपनी ड्यूटी पर तभी लौट सकते हैं जब नशा पूरी तरह से छूट चुका है। दूसरी बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई यानी दूसरी गलती हुई तो लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड होता है, और तीसरी बार अगर ऐसा हुआ तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर पायलट ने ड्रग टेस्ट देने से इनकार किया तो भी लाइसेंस 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और नशा मुक्ति प्रोग्राम से जुड़ना होता है। दूसरी बार अगर टेस्ट देने से मना किया तो लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड होता है, और तीसरी बार भी अगर ऐसा किया तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाता है। यानी पायलट के लिए नशा करके फ्लाइट उड़ाना एयर ऑपरेशंस में एक बड़ा अपराध है, इसीलिए पायलट को माफी नहीं मिलती बल्कि एक्शन होता है। हालांकि एयर इंडिया कह रहा है कि अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। आज तक ब्यूरो।
4: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।

0: विपक्षी हंगामे के बीच गृह मंत्री का ऑफर, सदन में हो जाए चर्चा, मैं पूरे समय बैठूंगा, दूंगा जवाब, राहुल गांधी बोले सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर, आज सदन का आखिरी दिन। 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की शिरकत, एनडीए सांसदों ने निकाली बाइक रैली। रांची छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में एबीवीपी। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बदलाव, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले छात्रों शिक्षण संस्थाओं के साथ होगी चर्चा, उच्च स्तरीय कमेटी का होगा गठन। और एयर इंडिया मामले में आज तक के पास मेंटेनेंस रिपोर्ट, एक मिनट में आए 3 बार हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट, 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान। संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने वाला है लेकिन राजनीति में हंगामा लगातार जारी है। बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष सदन को चलने दे। जवाब में राहुल गांधी बोले इस्तीफा दें तो बात होगी।
1: संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले
2: गोपाल जी, व्हाट डू वांट टू से यू टू केसी गोपाल जी,
3: ये जेपीसी में भेजा जाए।
4: इसके बाद मुझे मौका मिला,
2: मैंने दिया तो समय आपको।
5: गुरुवार को संसद का मानसून सत्र खत्म होने से पहले बुधवार को भी न संसद का हंगामा थमा, न चर्चा हुई, न संसद नियम से चल पाई, लेकिन अमित शाह का जवाबी पलटवार ऐसा आया कि अब राहुल गांधी पर गोल पोस्ट बदलने का बीजेपी का आरोप और गहरा हो गया।
6: सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है।
5: जंतर मंतर प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह के बयान की मांग करते राहुल गांधी को एक तरह से सीधी चुनौती थी। अमित शाह ने बुधवार दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू कर गुरुवार दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए राजी होने की न सिर्फ बात कही बल्कि स्पीकर ओम बिरला को अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आप विपक्ष से चर्चा करके आपसी सहमति से आज से जितने समय जितने घंटे आप उचित समझे उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। जंतर मंतर पर संसद में खुद के बयान को लेकर पहली बार आए अमित शाह के इतने स्पष्ट बयान के बाद राहुल गांधी का जवाब आता है। राहुल कहते हैं कि हमें उनकी कल्पनाओं में दिलचस्पी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री ये बताएं कि पैलेट गन से गोली किसने चलवाई।
7: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग एंड व्हेन आई से वी I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students?
5: जंतर मंतर पर संसद में अमित शाह के बयान की मांग को लेकर लगातार हंगामा चलता रहा। संसद के अंदर हंगामे से लेकर परिसर में मकर द्वार के बाहर तक जवाबी नारेबाजी होती रही।
8: मैं बहुत निराश हूँ। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी होते हैं।
5: अमित शाह ने जब ये साफ कहा कि सरकार चर्चा से कतई भाग नहीं रही, सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ।
6: लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा?
7: इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए।
5: इस बीच सरकार ने FCRA संशोधन बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है, जिसे मंजूरी मिल गई। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, लेकिन लड़ाई मेरा जवाब बनाम तेरा जवाब पर चलती रही।
4: आपको पता है कि जब जब गृह मंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं, इनकी खाट खड़ी हो जाती है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कौन सा समझौता कर लिया चीन के साथ, FCRA में जो है किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रहा है, तो सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। इसीलिए गृहमंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते, तो गृहमंत्री जी को कैसे नहीं सुनेंगे? तो हंगामा करो।
9: रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? सरकार,
10: आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उनपे लाठी बरसाते हो, आप उनपे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उनपे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस।
5: राज्यसभा में गृह मंत्री को लेकर खड़गे ने वार किया, कहा कि वो रोज नहीं आते। नड्डा बोले, आप चर्चा से भाग रहे हैं।
11: मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम से बिल है, किसी कारण वो एब्सेंट है तो चलेगा, ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको।
12: माननीय नड्डा जी, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और आप चर्चा से भागो मत।
5: 20 जुलाई को जंतर मंतर पर चलते आंदोलन के बीच हंगामे के साथ शुरू हुई संसद में हंगामे के साथ मानसून सत्र पूरा होने जा रहा है।
0: झारखंड में छात्रों के धरना और आंदोलन करते 19 दिन हो चुके हैं। झारखंड की परीक्षाओं में धांधली की रोज नई किश्त सामने आ रही है। पता ये चला कि भर्ती प्रक्रिया में 10 लाख से 50 लाख तक के रेट लगाए गए और अभय तिवारी सब कुछ सेट करता रहा, जिसमें आयोगों के बड़े बड़े अधिकारी तक दावा करते हैं कि वो शामिल थे।
13: आपने मूसलाधार बारिश के बीच छात्रों के आंदोलन की आग देखी। आपने विधानसभा घेराव के दौरान इन छात्रों का हौसला देखा। आपने छात्रों पर रांची पुलिस की ज्यादती देखी। छात्रों पर लाठियां बरसते देखा और उन्हें एक एक कर घायल होते देखा।
14: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो,
15: पूरे देश के युवाओं पे लाठी चले,
14: झारखंड के युवाओं को रुला रहे हो, लाठी चार्ज कर रही है पुलिस, हमारे सर पैर में चोट लगा हुआ है, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
13: रांची में दो दिन पहले क्या क्या हुआ इसे पूरे देश ने देखा, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों से सहानुभूति के बजाय पुलिस का बचाव करते दिखे।
16: और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है। अध्यक्ष महोदय, जहां 12 महीना 144 लागू रहता हो, संवेदनशील स्थान माना जाता हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद, उसके एक सीमित दायरे तक कोई नहीं आता।
13: सोरेन यहीं ठहर जाते तब भी गनीमत होती, लेकिन अब वो जुल्म पर उतर आए हैं, बदले पर उतर आए हैं। खबर है कि रांची में अनशन पर बैठे छात्रों को मिल रही बिजली की सप्लाई काट दी गई।
17: घड़ी में छात्रों की संख्या बढ़ने लगती थी वो आज अब आधे से भी कम होने लगी है। ज्यादातर छात्र या तो जा चुके हैं या इस समय धरनास्थल पर मौजूद नहीं है। बीती रात प्रशासन यहां पर आया। छात्रों का आरोप है कि पंडाल खाली कराने की कोशिश गई, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई और अब इस उमस भरी गर्मी में जब मौसम भी साथ नहीं देता है तब इस पंडाल में बिजली भी नहीं है। कब से बिजली काटी गई आप लोगों की?
18: रात में पुलिस प्रशासन के द्वारा आई गई थी, अब सारे स्ट्रीट लाइट ऑफ करवा दी थी। अब इधर भी जो लाइट ऑफ चलते थे वो भी ऑफ करवा दिया गया था। जो हम लोग का लाइट वो जल रहा था जो जनरेटर से हम लोग का चल रहा था।
13: आज इस आंदोलन का 19वां दिन है। छात्रों की संख्या ऐसे ही घटती जा रही है। सरकार ये बात समझती है इसलिए सरकार ने दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये दबाव उस सच को नहीं दबा सकता जो एक एक कर सामने आ रहा। सीआईडी की पूछताछ में मास्टरमाइंड अभय तिवारी ने धांधली के सारे राज उगल दिए। अभय तिवारी ने बताया कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में 7 छात्रों के नंबर उसने पैसे लेकर बढ़वाए। नंबर बढ़वाने के लिए लाखों की डील की गई। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए उसने 20 प्रतियोगियों से करीब 5,80,00,000 रुपए की वसूली की। एफआरओ के एक पद के लिए 20 से 25 लाख की बोली लगाई गई। एसीएफ के लिए 30 से 35 लाख की बोली लगी। अभय ने सीडीपीओ परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से 10 लाख लेने की बात कबूली।
19: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर के एक तरफ जहां छात्रों का आंदोलन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जांच कर रही राज्य की सीआईडी के सामने अभय तिवारी ने कई अहम खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभय तिवारी ने सीआईडी से पूछताछ में बताया है कि कैसे अलग अलग परीक्षाओं में लाखों रुपए में नौकरी की डील हुई। अभय तिवारी ने यह बताया है कि उसने किन परीक्षाओं में करोड़ों की राशि की वसूली की, कैसे एजेंट्स के जरिए जो नियोक्ता एजेंसियां थी उनको लाभ पहुंचाया गया। इस मामले में सीआईडी अलग अलग किंगस्पिन से पूछताछ कर रही है। मुंबई से एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है और टीडीपीएल कंपनी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि सीआईडी की जांच कैसे आगे बढ़ती है। हालांकि छात्र जो 19वें दिन भी इस मामले में आंदोलन पर बैठे हुए हैं उनका यह कहना है कि सीबीआई जांच जरूर हो। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक रांची।
0: क्यों सभी पॉलिटिकल पार्टियां जेंजीज पर डोरे डाल रही हैं? सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2027 में यूपी से लेकर देश के 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इन चुनावी राज्यों में जेंजी वोटर्स एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। सियासी पार्टियों को मैसेज बहुत ही क्लियर है, साफ है, जहां जेंजीज वहां पड़ला भारी। फिर चाहे पीएम नरेंद्र मोदी हो या संघ प्रमुख मोहन भागवत या फिर विपक्ष, हर कोई जेंजीज को अपने पाले में खींचने के लिए भरपूर कोशिश में जुटा है।
20: जेन जी के सहारे देश के चुनाव सारे। कैसे जेन जी को लुभाने में जुटा देश का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव, जेन जी वोटर की प्लानिंग शुरू। जंतर मंतर से ताकत दिखाई, सबको जेन जी की याद आई। जेन जी साथ आएगा तो चुनाव जिताएगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ जेन जी ने दम दिखाया तो सिस्टम को हिला डाला। इस्तीफा तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हुआ, लेकिन जेन जी की ताकत का एहसास हर सियासी पार्टी को हो गया।
21: लाखों युवाओं से मैं मिला,
22: फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि
20: पीएम मोदी इंस्टा पर आ गए और जेन जी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की और आज भी पीएम मोदी देश की युवा पीढ़ी यानी जेन जी को मैसेज दे रहे हैं। जी हां, मौका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी के विमोचन का था, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा मैसेज जेन जी को दिया।
1: रील का जमाना है, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर आपको खींच के कहीं कहीं ले जाते हैं। इस शॉर्टकट के युग में भी एक बात हम जरूर याद रखें, रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, कुछ लोगों को पटरी पर कूद करके जाने की आदत होती, ब्रिज पर नहीं जाते, तो वहां लिखा होता है शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। और अगर शॉर्टकट के रास्ते से भी कहीं बाहर निकलना है तो मैं नौजवानों को कहूंगा, आपको जिसका भी पसंद हो, ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ें। ऑटोबायोग्राफी उस कालखंड की इतिहास की घटनाओं को अलग तरीके से समझने का अवसर देती है।
20: जेन जी की ताकत हर कोई समझ रहा है, क्योंकि दुनिया भर में जेन जी आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर संघर्ष के लिए आगे आ रहा है। आज की युवा पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है, इसलिए ये अपनी समस्याओं को केवल निजी चर्चा तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें सार्वजनिक बहस का विषय बना देती है। भारत में जेन जी ने विरोध का एक नया मॉडल विकसित किया है। छात्र केवल धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने मीम्स, सोशल मीडिया ट्रेंड, हैशटैग कैंपेन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद की है।
2: सारे जेन जी की जगह ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, आप लोगों का स्वागत है। इस भारत को आप ही लोगों को संभालना है, क्योंकि आप लोगों की आबादी 65% है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे आके सुनते हैं, आप लोगों की बातों पर इतना गौर किया जा रहा है इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो मैं सारे जेन जीज को प्रणाम नमन करता हूँ।
20: राहुल गांधी छात्रों की गूंज नाम के कैंपेन से खुद को जेन जी को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं।
3: क्या है, जेन जी में सेल्फीज बड़ी कॉमन है, तो चलिए हम सब तैयार हैं सर के साथ सेल्फी के लिए।
21: मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। 21वीं सदी में अगर देश प्रगति करता है तो दो चीजों के बल पे करता है, यूथ पोटेंशियल जो आप में है और डेटा जो आप क्रिएट करते हो।
20: तो जेन जी की ताकत को आरएसएस ने भी समझा है और जाना है, तभी तो खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी के साथ संवाद किया।
23: जो भाई ग्रीवंस तो जेनाइन है, भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला,
24: बिल्कुल
23: उसको ठीक करना चाहिए। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है।
20: आज जेन जी की आवाज को सियासी पार्टियां अनसुना नहीं करना चाहती तो उसके पीछे बड़ी वजह है। 2027 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावी राज्यों में युवा मतदाता सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की संख्या 22.78% है, जबकि यूपी में 18 से 29 साल के उम्र के लोग 21.19%, गुजरात में 23.32%, पंजाब में 21.44%, उत्तराखंड में 22.18%, हिमाचल प्रदेश में 21.91%, मणिपुर में 23.74% और गोवा में 19.60% आबादी 18 से 29 साल की उम्र के लोगों की है।
0: सोचिए कि आप पूरी फैमिली के साथ एक फ्लाइट से जा रहे हो और अचानक से हवा में विमान जोर जोर से हिलने लगे, आप सीट से नीचे गिर जाएं, आपके आसपास के लोग घायल हो चुके हों, ऊपर से कैबिन में रखे हुए सामान नीचे आने लगे और आप समझ ही नहीं पाए कि करना क्या है। आप कुछ नहीं कर सकते, अगर करना चाहें भी तो सिर्फ ऊपर वाले को याद करेंगे। और जब आपको पता ये चल जाए कि इस फ्लाइट को जो पायलट उड़ा रहा था वो गांजे के नशे में था, तो सोचिए होगा क्या। यही हुआ है एयर इंडिया की एक फ्लाइट के साथ।
25: ये
4: क्या एयर इंडिया के पायलट ने गांजा फूंक कर 137 सवारियों की जिंदगी खतरे में डाली? गांजा फूंकने वाले पायलट पर क्या एक्शन होगा? आगे ऐसा ना हो, इसकी क्या गारंटी है? ये तस्वीरें डराने वाली हैं। 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें देखिए क्या हाल है। लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, सीटें उखड़ी पड़ी हैं, लोग घायल हैं, और ये तब का वीडियो है जब सब कुछ हो चुका था। क्या हुआ था फुकेट से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में, आगे आपको बताएंगे। उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लैंडिंग की बाद की तस्वीरें हैं। पैसेंजर घायल है, केबिन क्रू के सदस्य घायल है, किसी की आंख पर चोट है, किसी के हाथ पर, किसी के गले पर। ये सब लोग इसी फ्लाइट में सवार थे। चार अगस्त को फुकेट से दिल्ली के लिए ये फ्लाइट चली थी AI-2379। फ्लाइट जब हवा में थी तो पैसेंजर्स को अचानक से टर्बुलेंस का एहसास हुआ। फ्लाइट के केबिन में रखा सामान लोगों के ऊपर गिरने लगा, लोग अपनी सीटों से गिर गए और चोटिल हो गए। अचानक से जहाज हवा में ही 300 फीट नीचे चला गया। फ्लाइट के अंदर चीख पुकार मच गई। इस घटना में 20 यात्रियों और 4 केबिन क्रू मेंबर्स को चोटें आईं। फ्लाइट में 137 यात्री सवार थे, जिनमें 3 छोटे बच्चे भी थे, और इनके अलावा 2 पायलट और 6 केबिन क्रू के सदस्य थे। अब खबर आ रही है कि इस फ्लाइट को उड़ाने वाला मेन पायलट गांजे के नशे में था। इस पायलट का दूसरा ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया है। इस फ्लाइट को उड़ाने वाले पायलट का जब मेडिकल टेस्ट किया गया तो उसके शरीर में गांजे का सब्सटेंस पाया गया। DGCA ने फिलहाल प्लेन उड़ा रहे दोनों पायलट को जांच पूरी होने तक ड्यूटी से हटा दिया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AIB ने कहा है कि जांच पूरी होने तक कोई नतीजा नहीं निकाला जाना चाहिए।
6: देखिए, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, मैंने उसको संज्ञान में नहीं लिया। अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो ये बड़ी गंभीर बात है और DGCA को इसको बहुत संवेदनशीलता से लेना चाहिए। एयर इंडिया का जो अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है अभी तक, तो ये जो सारे मुद्दे हैं ये बहुत ही अत्यंत संवेदनशील है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है।
7: दिस क्रिमिनल बिहेवियर, एयर इंडिया इज लायबल, दे आर क्रिमिनली, दे मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड द गवर्नमेंट मस्ट टेक एग्जेम्पलरी एक्शन अगेंस्ट द मैनेजमेंट ऑफ एयर इंडिया एंड द प्रोसेसेस ऑब्वियसली व्हिच दे फॉलो आर नॉट रोबस्ट इनफ एंड दे हैव एंडेंजर्ड लाइव्स। दिस इज क्रिमिनल बिहेवियर एंड इनफैक्ट दे मस्ट बी एग्जेम्पलरी पनिशमेंट लेविड ऑन एयर इंडिया एंड ऑल दोस कंसर्न्ड।
4: बताया जा रहा है कि जब ये टर्बुलेंस हुआ तो ये फ्लाइट 3 मिनट तक पलटी खाती रही। फ्लाइट टर्बुलेंस का मतलब ये है कि हवाई जहाज तेज हवा के झटकों में फंस गया था और फिर अचानक से 300 फीट नीचे आ गया। यात्रियों ने दावा किया कि उड़ान भरने के 1.5 घंटे के बाद फ्लाइट में झटके लगे। सुबह का वक्त था तो यात्री सो रहे थे। अब पता चला है कि फ्लाइट का पायलट गांजा पिए हुए था। पायलट दोनों बार डोप टेस्ट में फेल हो गया है। पायलट की डोप टेस्ट में मारिजुआना यानी गांजा की पुष्टि हुई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी है। AIB ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि विमान की ऊंचाई अचानक क्यों बदली, उस समय विमान के सिस्टम किस स्थिति में थे, मौसम और टर्बुलेंस की क्या भूमिका थी, पायलट्स ने क्या एक्शन लिया, विमान के मेंटेनेंस रिकॉर्ड में क्या जानकारी है, यात्रियों और क्रू को किस तरह की चोटें आईं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या दर्ज है।
8: In fact, we wanted to get a direct update from Air India also on the incident, and we wanted to see how they are taking this issue from their side. And I have told time and again that from the ministry, safety in aviation is the topmost priority. There shouldn't be any compromise from any side, even the regulator or even the airlines or anyone. So this issue we have taken very, very seriously from the ministry side also. So we have just spoken to him as a preliminary task just to get an update. But I have to tell you that AIB has been given the task to continue on the investigation, and we have good confidence on AIB. So I would say that let us wait for the full-fledged report to come from AIB so that we can see what action, definitive action needs to be taken on this.
4: Jis viman A320 mein kharabi aayi, वो एयरबस है और वो फ्रांस में बनता है, इसीलिए AIB की जांच में फ्रांस की विमान दुर्घटना जांच एजेंसी और फ्रांस स्थित
9: एयरबस के तकनीकी विशेषज्ञ मदद कर रहे हैं। आज तक भी
0: अब जांच चल रही है, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन सवाल अब यह है कि जिन फ्लाइट से हम और आप रोजाना चलते हैं उन्हें किस तरह के पायलट्स उड़ा रहे हैं और पायलट के नशे को चेक करने के लिए सिस्टम क्या है। अगर कोई पायलट नशे में पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है।

0: अब जांच हो रही है और देखना होगा कि इस जांच का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मुख्य पायलट का ड्रग्स के नशे में पाया जाना एक बहुत बड़ी लापरवाही है। सोचिए उन 137 यात्रियों पर क्या बीती होगी जब 3 मिनट तक उन्होंने हवा में ये झटके महसूस किए होंगे। पता नहीं मन में क्या क्या ख्याल आए होंगे। कई बार ऐसा लगा होगा कि आज तो बचेंगे नहीं, और ये खुद इस फ्लाइट के यात्री बता रहे हैं।
1: ये दिखता है नेग्लिजेंस ऑफ द स्टाफ जो एयरलाइंस में पायलट हैं, और नेग्लिजेंस ऑफ जो सिस्टम है, क्योंकि उनको पता है कि ये करके हम बच सकते हैं, उसीलिए उन्होंने ये किया है। उनको पूरा का पूरा ये कॉन्फिडेंस है कि हम तो निकल जाएंगे।
2: जब फ्लाइट नीचे जा रही थी तो मेरे को सबसे ज्यादा चिंता हुई बच्चों की। ये हमारे पास में जो बैठा हुआ था, मेरा दोहेता बैठा हुआ था, मैंने जोर से उसको पकड़ के बेल्ट लगाई, उसमें वो हैंडल मेरे यहाँ पे घुस के रिब्स में दो में थोड़ी चोट आई है। पर ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है, इतना मतलब फैमिलीज, इतने लोग बैठे हुए, 3 साल की बच्ची उछल के इतना पीछे तक चली गई, ये कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं यार। छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं जो जिंदगी भर के लिए हमारे बच्चे अब कह रहे हैं कि हमको बैठना ही नहीं कभी फ्लाइट में।
0: अब यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि हिंदुस्तान में पायलट्स के लिए नियम कायदे क्या है, ये कैसे जांचा जाता है कि पायलट नशे में है या नहीं। हर पायलट की प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट जांच होती है। पायलट के लिए नियम ये है कि वो उड़ान के 12 घंटे पहले तक शराब का नशा नहीं कर सकता, यानी उड़ान के दौरान शरीर में अल्कोहल की मात्रा 0 होनी चाहिए। इसके लिए प्री फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य किया गया है। इसी तरह से भारत के बाहर से आने वाली फ्लाइट के पायलट्स का पोस्ट फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट लिया जाता है। लेकिन प्री फ्लाइट या पोस्ट फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में केवल शराब का नशा ही चेक हो सकता है, ये ड्रग्स के नशे के लिए नहीं बना। जहां तक ड्रग्स के नशे की बात है तो

0: एयरलाइन कंपनियां हर साल अपने यहां करीब 10% फ्लाइट क्रू मेंबर्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर्स का औचक ड्रग टेस्ट लेते हैं और सैंपल की जांच NABL सर्टिफाइड लैब में ही की जाती है। तो क्या भारत में ऐसे मामलों के लिए नियम कायदे कुछ ढीले हैं और क्या सरकार को नियम बदलने होंगे?
1: That issue we are continuously studying it. And DGC also, we have asked updates on that. But I am telling you that we are taking it very, very seriously. And if we feel that it is not up to the mark, the present regulation, then we will respond in it very seriously and, you know, improve whatever.
0: Flight operations में नशा करना यात्रियों की जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है, इसीलिए इसे बड़े अपराध की तरह देखा जाता है। यही वजह है कि नशे के आरोप सही पाए जाने पर DGCA सख्त एक्शन लेता है। प्री फ्लाइट टेस्ट में अगर पायलट को शराब के नशे में पाया जाता है तो पहली गलती पर लाइसेंस 3 महीने के लिए, दूसरी गलती पर 3 साल के लिए और तीसरी गलती होने पर स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है। पोस्ट फ्लाइट टेस्ट में पहली गलती पर लाइसेंस 1 साल के लिए और दूसरी गलती पर स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है। पायलट के लिए ड्रग्स के नशे को लेकर नियम अलग है। पहली बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो पहली गलती मानकर उड़ान भरने से रोक दिया जाता है और नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया जाता है। पायलट अपनी ड्यूटी पर तभी लौट सकते हैं जब नशा पूरी तरह से छूट चुका है। दूसरी बार रिपोर्ट पॉजिटिव आई यानी दूसरी गलती हुई तो लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड होता है और तीसरी बार अगर ऐसा हुआ तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर पायलट ने ड्रग टेस्ट देने से इनकार किया तो भी लाइसेंस 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और नशा मुक्ति प्रोग्राम से जुड़ना होता है। दूसरी बार अगर टेस्ट देने से मना किया तो लाइसेंस 3 साल के लिए सस्पेंड होता है और तीसरी बार भी अगर ऐसा किया तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाता है। यानी पायलट के लिए नशा करके फ्लाइट उड़ाना एयर ऑपरेशंस में एक बड़ा अपराध है, इसीलिए पायलट को माफी नहीं मिलती बल्कि एक्शन होता है। हालांकि एयर इंडिया कह रहा है कि अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
3: बाप के किए गए उपायों से संतान को लाभ होता है? क्या माँ बाप के किए गए उपायों से संतान का विवाह जल्दी हो सकता है? क्या माँ बाप के किए गए उपाय संतान को सफलता दिला सकते हैं? माँ बाप कौन सा करें उपाय संतान की किस्मत संवर जाए, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: विपक्षी हंगामे के बीच गृह मंत्री का ऑफर, सदन में हो जाए चर्चा, मैं पूरे समय बैठूंगा दूंगा जवाब, राहुल गांधी बोले सिर्फ बताएं किसने दिया छात्रों पर एक्शन का ऑर्डर, आज सदन का आखिरी दिन। 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा अभियान कर्तव्य पथ के कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की शिरकत, एनडीए सांसदों ने निकाली बाइक रैली। रांची छात्र आंदोलन पर दिल्ली तक राजनीति, आज तक से बोले केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, सीआईडी पर नहीं है स्टूडेंट्स को भरोसा, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी में एबीवीपी। महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षा सिस्टम में होगा बदलाव, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले छात्रों शिक्षण संस्थाओं के साथ होगी चर्चा, उच्च स्तरीय कमेटी का होगा गठन। और एयर इंडिया मामले में आज तक के पास मेंटेनेंस रिपोर्ट, एक मिनट में आए 3 बार हाइड्रोलिक फेलियर अलर्ट, 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान। संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने वाला है लेकिन राजनीति में हंगामा लगातार जारी है। बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, विपक्ष सदन को चलने दे। जवाब में राहुल गांधी बोले इस्तीफा दें तो बात होगी।
1: संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले
2: गोपाल जी, व्हाट डू यू वांट टू से टू टू केसी वेणुगोपाल जी,
3: ये जेपीसी में भेजा जाए।
4: के बाद मुझे मौका मिला,
2: मैंने दिया तो समय आपको।
5: गुरुवार को संसद

0: का मानसून सत्र खत्म होने से पहले बुधवार को भी न संसद का हंगामा थमा, न चर्चा हुई, न संसद नियम से चल पाई। लेकिन अमित शाह का जवाबी पलटवार ऐसा आया कि अब राहुल गांधी पर गोल पोस्ट बदलने का बीजेपी का आरोप और गहरा हो गया।
1: सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया, जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है।
0: जंतर मंतर प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन को लेकर अमित शाह के बयान की मांग करते राहुल गांधी को एक तरह से सीधी चुनौती थी। अमित शाह ने बुधवार दोपहर 3 बजे से चर्चा शुरू कर गुरुवार दोपहर 3 बजे तक चर्चा के लिए राजी होने की न सिर्फ बात कही, बल्कि स्पीकर ओम बिरला को अमित शाह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि आप विपक्ष से चर्चा करके आपसी सहमति से आज से जितने समय, जितने घंटे आप उचित समझे, उतना समय आवंटित करने की कृपा करें। मैं निर्धारित समय के दौरान सदन में उपस्थित रहकर इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं और विपक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार। जंतर मंतर पर संसद में खुद के बयान को लेकर पहली बार आए अमित शाह के इतने स्पष्ट बयान के बाद राहुल गांधी का जवाब आता है। राहुल कहते हैं कि हमें उनकी कल्पनाओं में दिलचस्पी नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री ये बताएं कि पैलेट गन से गोली किसने चलवाई।
2: वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन। वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग, एंड व्हेन आई से वी, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students?
0: जंतर मंतर पर संसद में अमित शाह के बयान की मांग को लेकर लगातार हंगामा चलता है। संसद के अंदर हंगामे से लेकर परिसर में मकर द्वार के बाहर तक जवाबी नारेबाजी होती रही।
3: मैं बहुत निराश हूँ। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में, और ओपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है और विपक्ष का भी जिम्मेदारी होते हैं।
0: अमित शाह ने जब ये साफ कहा है कि सरकार चर्चा से कतई भाग नहीं रही, सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ।
1: लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा?
4: इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए।
0: इस बीच सरकार ने FCRA संशोधन बिल 2026 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC के पास भेजने का प्रस्ताव लोकसभा में रखा है, जिसे मंजूरी मिल गई। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे, लेकिन लड़ाई मेरा जवाब बनाम तेरा जवाब पर चलती रही।
5: आपको पता है कि जब जब गृह मंत्री जी बोलने के लिए खड़े होते हैं, इनकी खाट खड़ी हो जाती है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, राहुल गांधी जी ने कौन सा समझौता कर लिया चीन के साथ, FCRA में जो है किस तरह से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा ले रहा है, तो सारे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। इसीलिए गृहमंत्री जी को सुनना ही नहीं चाहते, तो गृहमंत्री जी को कैसे नहीं सुनेंगे? तो हंगामा करो।
6: रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? सरकार,
7: आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस।
0: राज्यसभा में गृह मंत्री को लेकर खड़गे ने वार किया, कहा कि वो रोज नहीं आते। नड्डा बोले, आप चर्चा से भाग रहे हैं।
8: मैं यही चाहता हूं कि जिनके नाम